0: जय श्री बालाजी सरकार। आप सभी के सामने मैं आपका आचार्य परमानंद पुनः आपका स्वागत करता हूं। जीवन की समस्याओं को लेकर के आप आएंगे, समाधान मैं बताऊंगा, और इसी श्रृंखला में हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक कॉलर। जानना चाहेंगे उनकी समस्या क्या है और बताना चाहेंगे उसका समाधान क्या है। जय श्री बालाजी।
1: जय श्री बालाजी सरकार महाराज।
0: जय श्री बालाजी, कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: आशीष बात कर रहे हैं, आशीष जी एमपी मध्य प्रदेश।
0: जी आशीष जी, क्या जानना चाहते हैं, क्या समस्या आपके जीवन में?
1: जी पंडित जी, हमारा जो है सर दर्द होता रहता है।
0: ठीक है
1: जी,
0: स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है
1: जी।
0: माफ कीजिएगा आशीष जी,
1: जी
0: आप मुझे एक बात बताने का कष्ट करेंगे कि आप अभी कुछ दिन पहले कहीं बाहर घूमने गए थे क्या?
1: हाँ जी।
0: और वहाँ पे आपने रास्ते में चलते हुए मीठा खाया होगा?
1: जी हाँ।
0: तो भैया, मीठा खाने के साथ साथ में आप इस बात का ध्यान रखते कि मीठा रास्ते में चलते हुए नहीं खाते, क्योंकि जब मीठा खाते हैं तो किसी प्रकार के दुष्ट शक्तियां जो हैं वो हमारे आसपास होती हैं, वो परेशानियां खड़ी करती हैं, जिस वजह से क्या है कि आप दुष्ट शक्तियों के प्रभाव में आ चुके हैं, परेशानियां ज्यादा बन रही हैं और काफी समय से आप दिक्कत में आ रहे होंगे, परेशानियों में आ रहे होंगे। आशीष जी, मैं
1: बहुत करवाए हैं गुरु जी।
0: हाँ, दवा कराए होंगे, रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आया होगा, दवा का असर नहीं होगा
1: जी।
0: आशीष जी, मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताता हूँ, उसको आप करना, आपके जीवन में परेशानियां जो हैं दूर हो जाएंगी और स्वास्थ्य आपको लाभ प्राप्त होगा। पहला उपाय मैं आपको ये बताता हूँ कि आपने 5 काली मिर्च लेनी है और काली मिर्च लेकर के और चौराहे पर रख देना है उसको
1: जी।
0: चौमुखा दिया जलाना है, उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखना, अपने घर चले जाना है
1: जी।
0: ये उपाय करना है इतवार को। 5 उपाय करेंगे, आपके जीवन में परेशानी काफी तक दूर हो जाएंगी, आपको स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। बालाजी आपके ऊपर आशीर्वाद प्रदान करते रहे, आपके ऊपर आशीर्वाद बना के रखें। जय श्री बालाजी। दर्शकों, हमारे जीवन में परेशानी जो आती है स्वास्थ्य को लेकर के हो चाहे कैसे भी हो, उनका सभी का समस्या का समाधान है। दर्शकों, जीवन को जय श्री बालाजी बेटा, खुश रहो। अगले कॉलर जुड़ चुके हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। जय श्री बालाजी बेटा।
2: जय श्री कला सरकार।
0: नाम बोलो बेटा, क्या है?
2: पंडित जी, मैं शरद जोशी बात कर रहा हूँ।
0: जी शरद, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
2: मैं बोरीवली मुंबई से बात कर रहा हूँ।
0: जी बताएं, क्या जानना चाहते हैं, क्या समस्या है?
2: पंडित जी, मैं एक लड़की के साथ पिछले 7 साल से रिलेशनशिप में था।
0: ठीक है।
2: और हम दोनों का बहुत ही अच्छा संबंध था और हम एक पति पत्नी के घर रह रहे थे, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं थी
0: जी।
2: लेकिन अचानक से उस लड़की का स्वभाव इतना ज्यादा बदल गया कि मुझे लग रहा है कि मैं उसके कभी करीब ही नहीं था या हम दोनों का कभी कोई रास्ता ही नहीं था। मतलब अचानक से उसका प्रभाव मेरे प्रति इतना नेगेटिव हो जाना, मैं बहुत चिंतित हूँ।
0: पिछले 7-8 महीने से ऐसा हो रहा है क्या?
2: नहीं सर, पंडित जी लगभग 7-8 महीने से प्रॉब्लम हो रही है मुझे।
0: और क्या वो जो लड़की है वो जॉब करती है?
2: हाँ पंडित जी, वो जॉब कर रही है, टिकट में है वो।
0: ठीक है भैया, ऐसा है कि उस लड़की का जो है आपका और उसका विद्वेषण कर दिया गया है, मन दूसरे एक दूसरे से हट गया है। चाहे बेशक आप कितना ही उसके लिए कुछ कर रहे हो, कैसे भी कर रहे हो, लेकिन उसका मन आपके प्रति आसक्त नहीं है, जिस कारण से क्या है, और आप दोनों के बीच में किसी तीसरे व्यक्ति का पदार्पण हो चुका है। उसने विद्वेषण के माध्यम से ये कार्य को आप उसने क्रियान्वित किया है, जिस कारण, क्योंकि पहले ही वो उसके ऊपर नजर रखे हुए था, लेकिन जब आपका और उसका संबंध विच्छेद नहीं हुआ तो उसने विद्वेषण क्रिया की हुई है। आपने कार्य ये करना है, पान लेना है, पान का पत्ता उस पर कत्था लगाना है और माँ कामाख्या का ध्यान करते हुए, बालाजी सरकार का ध्यान करते हुए आपने उसको खिला देना है और बालाजी से प्रार्थना करनी है, बाबा अगर मेरा प्रेम सच्चा है, उसका प्रेम सच्चा है और किसी तीसरे व्यक्ति का पदार्पण हो चुका है, तो उसको आप दूर करें और हमें पुनः मिलाएं, कैसे, जैसे भगवान श्री राम और सीता को मिलाया था। आप एक बार ही यदि ये करते हैं तो निसंदेह आपको आपका प्रेम अवश्य प्राप्त होगा। और कथा के साथ में आपने थोड़ी केसर और डाल लेनी है बेटा, ये कार्य करेंगे। जय श्री बालाजी।
2: जय श्री बालाजी।
0: जी बेटा देखिए, जीवन है, जीवन में बहुत सी परेशानियां आती हैं, चाहे प्रेम विवाह हो, चाहे प्रेम का हो, चाहे वैवाहिक जीवन क्यों ना हो और चाहे व्यापार संबंधित क्यों ना हो, क्योंकि जब समस्याएं आती हैं और जब रास्ता नहीं मिलता, अगर स्वास्थ्य खराब है और स्वास्थ्य खराब होने के बाद भी डॉक्टर्स जो हैं उसका आप उपाय नहीं बता पा रहे हैं, उसका निराकरण नहीं कर पा रहे हैं, परेशानियां दर परेशानियां बढ़ रही हैं, तो इसका अर्थ यह है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऊपरी बाधा, प्रेत बाधा, भूत बाधा अथवा तो किसी प्रकार का भी और तंत्र मंत्र का चक्कर वो आपके जीवन को प्रभावित कर रहा है। आज के युग में लोग विश्वास नहीं करते, परंतु सत्यता है। हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं, बात करते हैं। जय श्री बालाजी बेटा।
2: जय श्री बालाजी।
0: हाँ बेटा, क्या नाम आपका?
2: रवि बात कर रहा हूँ गुरु जी।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं बेटा?
2: नोएडा से बात कर रहा हूँ जी।
0: हाँ बेटा, क्या जानना चाहते हो, क्या समस्या आ गई है?
2: जी, एक लड़की से प्रेम करता हूँ गुरु जी।
0: जी।
2: घर वाले नहीं मानते हैं।
0: जी
2: जी
0: बेटा, ऐसा है, घर इंटरकास्ट है क्या वो?
2: जी
0: अंतर जातीय है क्या? आपकी कास्ट के नहीं है?
2: जी गुरु जी, अंतर जाती है।
0: कितने वर्ष हो गए? 5 वर्षों से उससे प्रेम कर रहे हो?
2: जी जी जी जी गुरु जी।
0: उसका नाम ना से शुरू होता है, ना से नल।
2: जी जी जी।
0: बेटा ऐसा है कि घर वाले मान जाएंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं, एक कार्य करना पड़ेगा तुम्हें।
2: जी गुरु जी बताइए।
0: हनुमान जी के मंदिर में जाना, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनको प्रसाद चढ़ाना और हनुमान जी के दाएं पैर का सिंदूर ले लेना आप
2: जी।
0: खुद लगाना और खुद लगा करके माता पिता को लगा देना, ठीक है
2: जी।
0: और उनसे हनुमान जी से प्रार्थना करना, प्रभु मेरे जीवन में जो कष्ट आ रहा है आप उसको दूर करें और जिससे मैं प्रेम करता हूँ वो मेरे उसको मेरे परिवार वाले उसको स्वीकार करें और मेरे जीवन की परेशानी को दूर करें। बालाजी कृपा हो, 5 मंगलवार करोगे आपका कार्य बन जाएगा बेटा। जय श्री बालाजी।
2: जय बालाजी, मेरा भी प्रणाम।
0: खुश रहो बेटा, सदा सुखी रहो। क्या नाम बेटा?
2: हर्षवर्धन तिवारी।
0: कहाँ से बोल रहे हो हर्षवर्धन?
2: जी छत्तीसगढ़ से बात कर रहे हैं महाराज जी।
0: क्या समस्या आ गई बेटा जीवन में?
2: भट्टे का कार्य है, कार्य चल नहीं रहा है हमारा।
0: कार्य चल नहीं रहा है, काय का कार्य करते हैं आप? क्या कार्य है आपका?
2: ईंट का है, ईंट बनाते हैं।
0: ईंट भट्टे का कार्य है बेटा? ईंट भट्टे का कार्य लगभग 7 से 8 महीने हो चुके हैं बंद हुए
2: जी। हाँ।
0: और इसमें मुझे आप एक बार बताएं, ये जब आप पिछले दिनों जब आप भट्टे पे गए थे उस समय किसी प्रकार का एक व्यक्ति जिसका नाम र से शुरू होता है, रा से राकेश इत्यादि करके, वो था क्या?
2: जी जी राघव।
0: राघव था, और उससे आपका झगड़ा भी हुआ और उसको आपने बाहर निकाल दिया?
2: जी हाँ।
0: उसके निकलने के बाद ही परेशानियां चालू हुई आपके जीवन में?
2: जी गुरु जी।
0: तो बेटा उसने तांत्रिक प्रयोग कराया है, तांत्रिक प्रयोग करा करके आपके भट्टे को बांध दिया है। बांधने की वजह से सारा का सारा परेशानियां बहुत ज्यादा आ रही हैं और भट्टे का काम नहीं चल रहा, आपको नुकसान पे नुकसान हो रहा है, कर्ज पे कर्ज चढ़ रहा होगा। बेटा एक कार्य तुम्हें करना है, पीली सरसों लेनी है, लोवान और गूगल लेना है, उसमें हनुमान जी का 12 नाम जो है, 12 नाम का जाप करना है और उसको अभिमंत्रित करके 12 नामों से आपने भट्टे के चारों तरफ डाल देना है। शनिवार को यह कार्य करना है, आपका भट्टा चालू हो जाएगा, 7 शनिवार लगातार करना होगा, धीरे धीरे परेशानी जो है काफी तक दूर हो जाएंगे। और राघव नाम का व्यक्ति जो है उसको आप संपर्क में मत रखिएगा, वो दोबारा उसने प्रयास किया होगा आने के लिए और आपका विचार बन रहा होगा उसको दोबारा रखने के लिए। तो बेटा उसको रखना मत, परेशानियां बढ़ जाएंगी, इसलिए अपना ध्यान रखना और थोड़ा सा जो उपाय बताया जा रहा है आप उसको करने का प्रयास करना। जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी।
3: जय श्री राम गुरु जी।
0: जय श्री राम बेटा, खुश रहो, सदा सुखी रहो, सदा फलो फूलो। हाँ बेटा, कहाँ से बोल रहे हो, क्या नाम है?
3: जी मैं विंध्याचल से बोल रही हूँ।
0: हाँ बेटा, समस्या बताओ, क्या परेशानी आ गई है?
3: मेरे घर में बहुत कलेश रहता है गुरु जी।
0: घर में कलेश रहता है, पिछले दिनों में कुछ आवाजें भी सुनाई दी थी तुम्हें, छत पे कोई कूद रहा है, कुछ आ रहा जा रहा है?
3: मतलब आपस में सब लोगों की नहीं बनती है, सब लोग आपस में किसी की बातें किसी को अच्छी नहीं लगती।
0: बेटा मैं ये कह रहा हूँ कि क्या तुम्हें ऐसा लगा पिछले दिनों रात को सोते समय 12-1 बजे के आसपास कि छत पे कोई चल रहा है, छत पे कोई आवाज आ रही है?
3: जी जी।
0: और जब तुम जाके देखे तो वहाँ पे कुछ नहीं मिला? बेटा ऐसा है कि समस्या ये आ रही है कि तुम्हारे घर के अंदर जो कुछ चीजें हैं वो थोड़ी सी परेशानी भरी हैं, क्योंकि किसी ने ऐसा प्रयोग किया है कि तुम्हारे घर में किसी की मति एक जैसी ना हो, किसी की मति जो है सबकी मति फ्री रहे, सारे के सारे एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते रहें, सुख शांति घर की खत्म हो जाए। और जिस वजह से क्या है कि तुम्हारे पड़ोस में किसी सा नाम की कोई औरत रहती है क्या? हेलो।
3: हाँ जी जी जी जी
0: उसकी उम्र लगभग 45 साल के आसपास है बेटा, उस वजह से थोड़ा कोई ना कोई परेशानी बनाई है उसने, तो परेशानी आ रही है। तुम्हें एक काम करना होगा, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, 5 पाठ करने हैं रोजाना 1 हफ्ते तक, और हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद में गंगा जल लेना है कटोरी में, और 5 पाठ करने के बाद गंगा जल में फूक मारनी है, 3 फूक मारनी है और पूरा गंगा जल घर में छिड़क देना तुमने, और थोड़ा सा गंगा जल पीने वाले पानी में डाल देना बेटा, तो तुम्हारी सारी परेशानियां जो है दूर हो जाएंगी। धीरे धीरे बालाजी अपनी कृपा करेंगे और तुम्हारी परेशानियों को दूर करके तुम्हारे परिवार में खुशहाली सुख संपत्ति लेके आएंगे और तुम्हें अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे बेटा। जय श्री बालाजी बेटा, खुश रहो, सदा सुखी रहो।
2: उनका साथ बिल्कुल ही ठीक लगेगा गुरु जी, मान लीजिए कि हर प्रत्येक महीने 15,000 रुपए का इलाज में करवाना ही पड़ता है।
0: और रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा होगा?
2: रिपोर्ट में नॉर्मल सब डॉक्टर बताते हैं कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन फिर भी डॉक्टर जो है पैसा खाए जा रहे हैं मेरा।
0: हाँ बेटा, ऐसा है कि तुम्हारा जो है सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि तुम्हारे घर में किसी प्रेतात्मा का जो है वो वास हो चुका है। प्रेतात्मा का वास होने के कारण ही सारी समस्याएं बन रही हैं, और जो प्रेतात्मा का जब वास वैसे नहीं हुआ, किसी ने कराया हुआ है, तो मंत्रों की ताकत से तुम्हारा प्रेतात्मा का जो वास हो रखा है घर में, इस वजह से तुम्हारी घरवाली की तबीयत खराब रहेगी, पैसा खराब होगा, काम धंधा चलेगा नहीं, झगड़ा बनेगा और परेशानी ज्यादा से ज्यादा बनेंगी। जिस वजह से बेटा ऐसा है, किसने कराया ये तो नहीं बता सकते हम, लेकिन इसमें यह है कि आपको उपाय जरूर बता देंगे कि किस प्रकार से आपकी समस्याओं का समाधान हो सकता है।
2: जी उपाय बता दीजिए
0: बेटा। एक काम करना, तुमने गोला लेना है, गोले में बताशे रखने हैं, लौंग रखनी है, और साथ ही साथ इसके अंदर एक जायफल रखना है, नींबू काट के रख लेना, घर के ऊपर वार करके आपने चौराहे पे जा करके उसको जला देना है।
2: जी।
0: आप जब ऐसा करो अथवा तो पानी में बहा देना दोनों।
2: कितने दिन करना है
0: बेटा? ये करना है तुम्हें लगभग 21 दिन करना होगा बेटा।
2: अच्छा।
0: 21 दिन करोगे तो सारी समस्याएं तुम्हारी दूर हो जाएंगी, परेशानी खत्म हो जाएंगे, घर में सुख शांति इत्यादि का वास होगा और सारी परेशानी जो है सारी की सारी समाप्त हो जाएंगी बेटा। बालाजी कृपा करेंगे, बालाजी कृपा हुई तो तुम्हें पुनः परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, हमेशा हमेशा के लिए जो प्रेतात्मा का वास है वो खत्म हो जाएगा बेटा। जय श्री बालाजी, सदा सुखी रहो, सदा खुश रहो बेटा, खुश रहो बेटा, सदा सुखी रहो, सदा फलो फूलो। मेरे प्यारे दर्शकों, बालाजी की कृपा जिसके घर के ऊपर होती है, जिस व्यक्ति के ऊपर होती है, उसको परेशानी छू भी नहीं सकती। अगर परेशानियां आई हैं, परेशानियां चल रही हैं, तो जल्दी से जल्दी खत्म हो जाती है। हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं, जानना चाहेंगे क्या समस्या है। जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी बेटा।
2: श्री बालाजी महाराज,
0: खुश रहो बेटा, सदा सुखी रहो। क्या नाम तुम्हारा?
2: ऋषि नाम है महाराज।
0: कहाँ से बोल रहे हो ऋषि?
2: मैं गाजीपुर से बात कर रहा हूँ।
0: गाजीपुर से बेटा, समस्या बताओ, समस्या क्या है?
2: महाराज जी, हमारा एक लव लेटर है, मैं किसी को लाइक करता था।
0: अच्छा।
2: तो नियंत्रण देखा जाए उसमें लगभग 4 महीने से ब्रेकअप चल रहा है, शादी भी करना चाहता था।
0: ठीक है।
2: और लड़की भी तो राजी है, एग्री है, तो घर वाले नहीं मान रहे हैं हमारे।
0: आपके घर वाले नहीं मान रहे?
2: जी महाराज।
0: कोई बात नहीं, घर वाले मान जाएंगे। एक काम करना है, शुक्रवार के दिन तुमने पेड़ा लेने हैं 5, और 5 पेड़ा में माँ भगवती का नाम लेना है, माँ भगवती के मंत्र का जाप करना है और माँ भगवती से प्रार्थना करनी है, माँ जिससे मैं प्रेम करता हूँ, जिसको चाहता हूँ, उससे मेरा विवाह कराइए, मेरे घर वालों को मनाइए। उसमें माता पिता जो जो नहीं मान रहे उन सब का नाम लेना और माँ से प्रार्थना करना, मैया कृपा करेंगे, तुम्हारा विवाह जो है उसी के साथ कराने के लिए राजी हो जाएंगे, जिसको तुम्हें चाहते हो, जिससे प्रेम करते हो। टेलीविजन स्क्रीन पर जो संस्थान के नंबर दिए गए हैं, आप उन पर कॉल कर सकते हैं। अगले एपिसोड में आकर के पुनः मैं आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा, पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप खुश रहें, सुखी रहें और आप अपने आचार्य परमानंद को इजाजत दें, आज्ञा दें, बालाजी कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे, उनका आशीर्वाद सभी को प्राप्त होता रहे। जय श्री बालाजी सरकार, जय श्री राम।

0: जय श्री बालाजी सरकार। आप सभी के सामने मैं आपका आचार्य परमानंद पुनः आपका स्वागत करता हूं। जीवन की समस्याओं को लेकर के आप आएंगे, समाधान मैं बताऊंगा। और इसी श्रृंखला में हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक कॉलर, जानना चाहेंगे उनकी समस्या क्या है और बताना चाहेंगे उसका समाधान क्या है। जय श्री बालाजी।
1: जय श्री बालाजी सरकार
0: महाराज। जय श्री बालाजी, कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: हम आशीष बात कर रहे हैं, आशीष जी एमपी मध्य प्रदेश।
0: जी आशीष जी, क्या जानना चाहते हैं, क्या समस्या आपके जीवन में?
1: जी पंडित जी, हमारा जो है सर दर्द होता रहता है।
0: ठीक है
1: जी।
0: स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है
1: जी।
0: माफ कीजिएगा आशीष जी,
1: जी
0: आप मुझे एक बात बताने का कष्ट करेंगे कि आप अभी कुछ दिन पहले कहीं बाहर घूमने गए थे क्या?
1: हाँ जी।
0: और वहाँ पे आपने रास्ते में चलते हुए मीठा खाया होगा?
1: जी हाँ।
0: तो भैया, मीठा खाने के साथ साथ में आप इस बात का ध्यान रखते कि मीठा रास्ते में चलते हुए नहीं खाते, क्योंकि जब मीठा खाते हैं तो किसी प्रकार के दुष्ट शक्तियाँ जो हैं वो हमारे आसपास होती हैं, वो परेशानियाँ खड़ी करती हैं, जिस वजह से क्या है कि आप दुष्ट शक्तियों के प्रभाव में आ चुके हैं, परेशानियाँ ज़्यादा बन रही हैं और काफ़ी समय से आप दिक्कत में आ रहे होंगे, परेशानियों में आ रहे होंगे। आशीष जी, मैं
1: बहुत करवाए हैं गुरुजी।
0: हाँ, दवा कराए होंगे, रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आया होगा, दवा का असर नहीं होगा
1: जी।
0: आशीष जी, मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताता हूँ, उसको आप करना, आपके जीवन में परेशानियां जो हैं दूर हो जाएंगी और स्वास्थ्य आपको लाभ प्राप्त होगा। पहला उपाय मैं आपको ये बताता हूँ कि आपने 5 काली मिर्च लेनी है और काली मिर्च लेकर के और चौराहे पर रख देना है उसको
1: जी।
0: चौमुखा दिया जलाना है, उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखना, अपने घर चले जाना है
1: जी।
0: ये उपाय करना है इतवार को। 5 उपाय करेंगे, आपके जीवन में परेशानी काफी तक दूर हो जाएंगी, आपको स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। बालाजी आपके ऊपर आशीर्वाद प्रदान करते रहें, आपके ऊपर आशीर्वाद बना के रखें। जय श्री बालाजी। दर्शकों, हमारे जीवन में परेशानी जो आती है, स्वास्थ्य को लेकर के हो चाहे कैसे भी हो, उनका सभी का समस्या का समाधान है। दर्शकों, जीवन को जय श्री बालाजी बेटा, खुश रहो। अगले कॉलर जुड़ चुके हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। जय श्री बालाजी बेटा।
2: जय श्री बालाजी सरकार।
0: नाम बोलो बेटा, क्या है?
2: पंडित जी, मैं शरद जोशी बात कर रहा हूँ।
0: जी शरद, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
2: मैं बोरीवली मुंबई से बात कर रहा हूँ।
0: जी बताएं, क्या जानना चाहते हैं, क्या समस्या है?
2: पंडित जी, मैं एक लड़की के साथ पिछले 7 साल से रिलेशनशिप में था।
0: ठीक है।
2: और हम दोनों का बहुत ही अच्छा संबंध था और हम एक पति पत्नी के साथ रह रहे थे, कोई भी परेशानी नहीं थी
0: जी।
2: लेकिन अचानक से उस लड़की का स्वभाव इतना ज्यादा बदल गया कि मुझे लग रहा है कि मैं उसके कभी करीब ही नहीं था या हम दोनों का कभी कोई रास्ता ही नहीं था। मतलब अचानक से उसका प्रभाव मेरे प्रति इतना नेगेटिव हो जाना, मैं बहुत चिंतित हूँ।
0: पिछले 7-8 महीने से ऐसा हो रहा है क्या?
2: पंडित जी, लगभग 7-8 महीने से प्रॉब्लम हो रही है मुझे।
0: और क्या वो जो लड़की है वो जॉब करती है?
2: हाँ पंडित जी, वो जॉब कर रही है, टिकट में है वो।
0: ठीक है भैया, ऐसा है कि उस लड़की का जो है आपका और उसका विद्वेषण कर दिया गया है, मन दूसरे एक दूसरे से हट गया है। चाहे बेशक आप कितना ही उसके लिए कुछ कर रहे हो, कैसे भी कर रहे हो, लेकिन उसका मन आपके प्रति आसक्त नहीं है, जिस कारण से क्या है, और आप दोनों के बीच में किसी तीसरे व्यक्ति का पदार्पण हो चुका है। उसने विद्वेषण के माध्यम से ये कार्य को आप उसने क्रियान्वित किया है, जिस कारण, क्योंकि पहले ही वो उसके ऊपर नजर रखे हुए था, लेकिन जब आपका और उसका संबंध विच्छेद नहीं हुआ तो उसने विद्वेषण क्रिया की हुई है। आपने कार्य ये करना है, पान लेना है, पान का पत्ता, उस पर कत्था लगाना है और माँ कामाख्या का ध्यान करते हुए, बालाजी सरकार का ध्यान करते हुए आपने उसको खिला देना है और बालाजी से प्रार्थना करनी है, बाबा अगर मेरा प्रेम सच्चा है, उसका प्रेम सच्चा है और किसी तीसरे व्यक्ति का पदार्पण हो चुका है तो उसको आप दूर करें और हमें पुनः मिलाएं, कैसे, जैसे भगवान श्री राम और सीता को मिलाया था। आप एक बार ही यदि ये करते हैं तो निसंदेह आपको आपका प्रेम अवश्य प्राप्त होगा। और कत्था के साथ में आपने थोड़ी केसर और डाल लेनी है बेटा, ये कार्य करेंगे। जय श्री बालाजी।
2: जय श्री बालाजी।
0: जी बेटा देखिए, जीवन है, जीवन में बहुत सी परेशानियां आती हैं, चाहे प्रेम विवाह हो, चाहे प्रेम का हो, चाहे वैवाहिक जीवन क्यों ना हो और चाहे व्यापार संबंधित क्यों ना हो, क्योंकि जब समस्याएं आती हैं और जब रास्ता नहीं मिलता, अगर स्वास्थ्य खराब है और स्वास्थ्य खराब होने के बाद भी डॉक्टर्स जो हैं उसका आप उपाय नहीं बता पा रहे हैं, उसका निराकरण नहीं कर पा रहे हैं, परेशानियां दर परेशानियां बढ़ रही हैं, तो इसका अर्थ यह है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऊपरी बाधा, प्रेत बाधा, भूत बाधा अथवा तो किसी प्रकार का भी और तंत्र मंत्र का चक्कर वो आपके जीवन को प्रभावित कर रहा है। आज के युग में लोग विश्वास नहीं करते, परंतु सत्यता है। हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं, बात करते हैं। जय श्री बालाजी बेटा।
2: जय श्री बालाजी सरकार।
0: हाँ बेटा, क्या नाम आपका?
2: जी,

0: जी
1: जी जी
0: घर वाले नहीं मानते हैं
1: बेटा,
0: जी जी
1: ऐसा है, इंटर कास्ट है क्या वो? अंतर जातीय है क्या? आपकी कास्ट के नहीं है?
0: गुरु जी अंतर जाती है जी
1: कितने वर्ष हो गए? 5 वर्षों से उससे प्रेम कर रहे हो?
0: जी जी जी गुरु जी
1: उसका नाम ना से शुरू होता है, ना से नल।
0: जी जी
1: बेटा, ऐसा है कि घर वाले मान जाएंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। एक कार्य करना पड़ेगा तुम्हें,
0: जी गुरु जी बताइए
1: हनुमान जी के मंदिर में जाना। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनको प्रसाद चढ़ाना और हनुमान जी के दाएं पैर का सिंदूर ले लेना आप,
0: जी
1: खुद लगाना, और खुद लगा करके माता पिता को लगा देना, ठीक है? और उनसे हनुमान जी से प्रार्थना करना, प्रभु मेरे जीवन में जो कष्ट आ रहा है आप उसको दूर करें, और जिससे मैं प्रेम करता हूँ वो मेरे उसको मेरे परिवार वाले उसको स्वीकार करें और मेरे जीवन की परेशानी को दूर करें। बालाजी कृपा हो, 5 मंगलवार करोगे आपका कार्य बन जाएगा बेटा। जय श्री बालाजी।
0: जय वाला जी मेरा भी प्रणाम।
1: खुश रहो बेटा, सदा सुखी रहो। क्या नाम बेटा? कहाँ
0: हर्षवर्धन तिवारी जी
1: से बोल रहे हो हर्षवर्धन?
0: छत्तीसगढ़ से बात करें महाराज जी।
1: क्या समस्या आ गई बेटा जीवन में?
0: भट्ठी का कार्य है, कार्य चल नहीं रहा है हमारा।
1: कार्य चल नहीं रहा है। काय का कार्य करते हैं आप? क्या कार्य है आपका?
0: ईंट का है, ईंट का बनाते हैं
1: ईंट भट्टे का कार्य है बेटा। ईंट
0: जी
1: भट्टे का
0: जी
1: कार्य लगभग लगभग 7 से 8 महीने हो चुके हैं बंद हुए,
0: जी हाँ
1: और इसमें मुझे आप एक बार बताएं, ये जब आप पिछले दिनों जब आप भट्टे पे गए थे उस समय किसी प्रकार का एक व्यक्ति जिसका नाम र से शुरू होता है, र से राकेश इत्यादि करके, वो था क्या?
0: जी राघव
1: राघव था, और उससे आपका झगड़ा भी हुआ और उसको आपने बाहर निकाल दिया।
0: जी हाँ
1: उसके निकलने के बाद ही परेशानियां चालू हुई आपके जीवन में।
0: जी गुरु जी
1: तो बेटा उसने तांत्रिक प्रयोग कराया है, तांत्रिक प्रयोग करा करके आपके भट्टे को बांध दिया है। बांधने की वजह से सारा का सारा परेशानियां बहुत ज्यादा आ रही हैं और भट्टे का काम नहीं चल रहा, आपको नुकसान पे नुकसान हो रहा, कर्ज पे कर्ज चढ़ रहा होगा। बेटा एक कार्य तुम्हें करना है, पीली सरसों लेनी है, लोवान और गूगल लेना है, उसमें हनुमान जी का 12 नाम जो है, 12 नाम का जाप करना है, और उसको अभिमंत्रित करके 12 नामों से आपने भट्टे के चारों तरफ डाल देना है। शनिवार को यह कार्य करना है, आपका भट्टा चालू हो जाएगा। 7 शनिवार लगातार करना होगा, धीरे धीरे परेशानी जो है काफी हद तक दूर हो जाएंगे। और राघव नाम का व्यक्ति जो है उसको आप संपर्क में मत रखिएगा, वो दोबारा उसने प्रयास किया होगा आने के लिए और आपका विचार बन रहा होगा उसको दोबारा रखने के लिए,
0: जी
1: तो बेटा उसको रखना मत, परेशानियां बढ़ जाएंगी, इसलिए अपना ध्यान रखना और थोड़ा सा जो उपाय बताया जा रहा है आप उसको करने का प्रयास करना। जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी।
2: जय श्री राम गुरु
1: जय श्री राम बेटा, खुश रहो, सदा सुखी रहो, सदा फलो फूलो। हाँ बेटा, कहाँ से बोल रहे हो, क्या नाम है?
2: जी मैं विंध्याचल से बोल रही हूँ।
1: हाँ बेटा, समस्या बताओ, क्या परेशानी आ गई है?
2: मेरे घर में बहुत कलेश रहता है गुरु जी।
1: घर में कलेश रहता है, पिछले दिनों में कुछ आवाजें भी सुनाई दी थी तुम्हें, छत पे कोई कूद रहा है, कुछ आ रहा जा रहा है?
2: मतलब आपस में सब लोगों की नहीं बनती है, सब लोग आपस में किसी की बातें किसी को अच्छी नहीं लगती।
1: बेटा मैं ये कह रहा हूं कि क्या तुम्हें ऐसा लगा पिछले दिनों रात को सोते समय 12-1 बजे के आसपास कि छत पे कोई चल रहा है, छत पे कोई आवाज आ रही है,
2: जी।
1: और जब तुम जाके देखे तो वहां पे कुछ नहीं मिला? बेटा ऐसा है कि समस्या ये आ रही है कि तुम्हारे घर के अंदर जो कुछ चीजें हैं वो थोड़ी सी परेशानी भरी हैं, क्योंकि किसी ने ऐसा प्रयोग किया है कि तुम्हारे घर में किसी की मति एक जैसी ना हो, किसी की मति जो है सबकी मति फ्री रहे, सारे के सारे एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते रहें, सुख शांति घर की खत्म हो जाए, और जिस वजह से क्या है कि तुम्हारे पड़ोस में किसी सा नाम की कोई औरत रहती है क्या? हेलो,
2: हाँ जी।
1: उसके उम्र लगभग 45 साल के आसपास है बेटा, उस वजह से थोड़ा कोई ना कोई परेशानी बनाई है उसने, तो परेशानी आ रही है। तुम्हें एक काम करना होगा, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, 5 पाठ करने हैं रोजाना 1 हफ्ते तक, और हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद में गंगा जल लेना है कटोरी में, और 5 पाठ करने के बाद गंगा जल में फूक मारनी है, 3 फूक मारनी है, और पूरा गंगा जल घर में छिड़क देना तुमने, और थोड़ा सा गंगा जल पीने वाले पानी में डाल देना बेटा, तो तुम्हारी सारी

0: परेशानियां जो है दूर हो जाएंगे, धीरे धीरे बालाजी अपनी कृपा करेंगे और तुम्हारी परेशानियों को दूर करके तुम्हारे परिवार में खुशहाली सुख संपत्ति लेके आएंगे और तुम्हें अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे बेटा। जय श्री बालाजी बेटा, खुश रहो, सदा सुखी रहो।
1: उनका साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं रहता गुरु जी, वाल्मीकि हर प्रत्येक महीने 15,000 रुपए का इलाज में करवाना ही पड़ता है।
0: और रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा होगा?
1: रिपोर्ट में नॉर्मल सब डॉक्टर बताते हैं कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन फिर भी डॉक्टर जो है पैसा खाए जा रहे हैं मेरा।
0: हाँ बेटा, ऐसा है कि तुम्हारा जो है सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि तुम्हारे घर में किसी प्रेतात्मा का जो है वो वास हो चुका है। प्रेतात्मा का वास होने के कारण ही सारी समस्याएं बन रही हैं। और जो प्रेतात्मा का जब वास वैसे नहीं हुआ, किसी ने कराया हुआ है, तो मंत्रों की ताकत से तुम्हारा प्रेतात्मा का जो वास हो रखा है घर में, इस वजह से तुम्हारी घरवाली की तबीयत खराब रहेगी, पैसा खराब होगा, काम धंधा चलेगा नहीं, झगड़ा बनेगा और परेशानी ज्यादा से ज्यादा बनेंगी। जिस वजह से बेटा ऐसा है, किसने कराया ये तो नहीं बता सकते हम, लेकिन इसमें यह है कि आपको उपाय जरूर बता देंगे कि किस प्रकार से आपकी समस्याओं का समाधान हो सकता है।
1: जी उपाय बता दीजिए
0: बेटा। एक काम करना, तुमने गोला लेना है, गोले में बताशे रखने हैं, लौंग रखनी है और साथ ही साथ इसके अंदर एक जायफल रखना है, नींबू काट के रख लेना, घर के पर वार करके आपने चौराहे पे जा करके उसको जला देना है।
1: जी।
0: आप जब ऐसा करोगे अथवा तो पानी में बहा देना दोनों।
1: कितने दिन करना है
0: बेटा? ये करना है तुम्हें लगभग 21 दिन करना होगा बेटा।
1: अच्छा।
0: 21 दिन करोगे तो सारी समस्याएं तुम्हारी दूर हो जाएंगे, परेशानी खत्म हो जाएंगे, घर में सुख शांति इत्यादि का वास होगा और सारी परेशानी जो है सारी की सारी समाप्त हो जाएंगी बेटा। बालाजी कृपा करेंगे, बालाजी कृपा हुई तो तुम्हें पुनः परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा हमेशा हमेशा के लिए। जो प्रेतात्मा का वास है वो खत्म हो जाएगा बेटा। जय श्री बालाजी, सदा सुखी रहो, सदा खुश रहो बेटा। खुश रहो बेटा, सदा सुखी रहो, सदा फलो फूलो। मेरे प्यारे दर्शकों, बालाजी की कृपा जिसके घर के ऊपर होती है, जिस व्यक्ति के ऊपर होती है, उसको परेशानी छू भी नहीं सकती। अगर परेशानियां आई हैं, परेशानियां चल रही हैं, तो जल्दी से जल्दी खत्म हो जाती है। हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं, जानना चाहेंगे क्या समस्या है। जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी बेटा।
1: श्री बालाजी महाराज,
0: खुश रहो बेटा, सदा सुखी रहो। क्या नाम तुम्हारा?
1: ऋषि नाम है महाराज।
0: कहाँ से बोल रहे हो ऋषि?
1: मैं गाजीपुर से बात कर रहा हूँ।
0: गाजीपुर से बेटा, समस्या बताओ, समस्या क्या है?
1: महाराज जी, हमारा एक लंबेटर है, मैं किसी को लाइक करता था।
0: अच्छा।
1: तो नियंत्रण देखा जाए उसमें लगभग में 4-5 महीने से ब्रेकअप चल रहा है, शादी भी करना चाहता था।
0: ठीक है।
1: और लड़की भी तो राजी है, एग्री है, तो पूर्ण रूप से, लेकिन घर वाले नहीं मान रहे हैं हमारे।
0: आपके घर वाले नहीं मान रहे?
1: जी महाराज।
0: कोई बात नहीं, घर वाले मान जाएंगे। एक काम करना है, शुक्रवार के दिन तुमने पेड़ा लेने हैं 5, और 5 पेड़ा में माँ भगवती का नाम लेना है, माँ भगवती के मंत्र का जाप करना है और माँ भगवती से प्रार्थना करनी है, माँ जिससे मैं प्रेम करता हूँ, जिसको चाहता हूँ, उससे मेरा विवाह कराइए, मेरे घर वालों को मनाइए। उसमें माता पिता जो जो नहीं मान रहे उन सब का नाम लेना और माँ से प्रार्थना करना, मैया कृपा करेंगे, तुम्हारा विवाह जो है उसी के साथ कराने के लिए राजी हो जाएंगे, जिसको तुम्हें चाहते हो, जिससे प्रेम करते हो। टेलीविजन स्क्रीन पर जो संस्थान के नंबर दिए गए हैं, आप उन पे कॉल कर सकते हैं। अगले एपिसोड में आकर के पुनः मैं आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा, पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप खुश रहें, सुखी रहें और आप अपने आचार्य परमानंद को इजाजत दें, आज्ञा दें, बालाजी कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे, उनका आशीर्वाद सभी को प्राप्त होता रहे। जय श्री बालाजी सरकार, जय श्री राम।

परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज़ टुडे पर।

0: क्या आपके विदेश जाने में अड़चन आ रही है? क्या आप विदेश में बसना चाहते हैं लेकिन असफलता मिल रही है? कौन से ग्रहों का विदेश से है संबंध और कौन से ग्रह विदेश में देते हैं लाभ? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
2: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लाल।
3: पितृपक्ष में बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़, ब्रह्म कपाल तीर्थ में तर्पण, पिंडदान के लिए पहुंच रहे हैं लोग। गया जी में भी देश भर से तर्पण के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु। बारिश बर्फबारी से बदला पहाड़ों का मौसम, सीजन की दूसरी बर्फबारी से मनाली में खिले सैलानी व्यापारियों के चेहरे, पर्यटन में अच्छे कारोबार की उम्मीद। भिवानी में जेवलिन स्टार यशवीर सिंह के घर जबरदस्त जश्न, एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल जीतने पर पूरे गांव ने मनाया जश्न। फुटबॉल के महामुकाबले के लिए सज रहा है कोलकाता का सॉल्ट लेक स्टेडियम, 3 तारीख को ब्राजील से इंटरनेशनल फ्रेंडली मैच। एशियन गेम्स में आज भी मेडल्स की आस, महिला हॉकी में सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका से भिड़ंत, कुश्ती के मुकाबलों का भी आज होगा आगाज, तीरंदाजी में ओलंपिक कोटा दांव पर। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। और चलिए अब देख लेते हैं अच्छी बात पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ।
4: हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश करते हैं, राम जी को हृदय में रख करके प्रवेश करते हैं। आहा हा, श्री हनुमान जी महाराज लंका में घर घर जाते, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां अगणित जोधा। हनुमान जी हर घर में जाकर जानकी माता को देख रहे हैं, क्या यहां हमारी मां है? नहीं। दूसरे घर में जाते, क्या यहां हमारी मां है? नहीं। तो किसी ने हनुमान जी से पूछा, क्या आपने मां को देखा? बोले देखा नहीं। तो पर कैसे पहचानोगे? अरे हम उनके हाव भाव से जानते हैं, जिनके पल पल हर पल राम जी होंठों पर होंगे, आंखों में उनके प्रति ललक होगी, वही हमारी मां जानकी होगी। अच्छा हाँ, अब हनुमान जी घर घर जाते हुए एक भवन में देखा।

दशानन यानी रावण के मकान में हनुमान जी गए। अब रावण लेटा है अपने मकान में, लेकिन अति विचित्रता, हे हनुमान जी आपने ये लंका में क्या विचित्रता देखी? हनुमान जी बोले मत पूछो। नहीं नहीं बताओ। हनुमान जी कहते हैं आंजनेय पुस्तक में, उसमें बहुत प्यारा श्री चक्रधर सिंह जी हुए, उन्होंने बहुत अच्छी पुस्तक लिखी आंजनेय की आत्मकथा, बड़ी प्यारी पुस्तक है। उसमें वर्णन है हनुमान जी की लंका यात्रा। आहा क्या वर्णन है। हनुमान जी वर्णन कर रहे लंका में रावण के घर का। बोले रावण अपने कमरे में लेटा है, भारी शरीर, 20 भुजाएं, 10 सिर, पान की पीक टबक रही, मद में एकदम मस्त, पी के खा के लेटा। इसमें क्या विचित्रता है? अरे पूछो मत। बहुत सी स्त्रियां अगल बगल लेटी, बड़ी सुंदर सुंदर स्त्रियां, कोई मृदंग बजाए हुए पकड़े लेटी, कोई तमूरा लिए हुए लेटी, कोई रावण की बाजू को दबा रही, कोई रावण के सिर को दबा रही, कोई रावण के तलवे को मल रही। उन सुंदर सुंदर स्त्रियों को देखकर हनुमान जी को लगा इनमें ही कोई हमारी मां तो नहीं है। थोड़ी देर देखें, सुंदरता देखें, अरे ये तो बड़ी सुंदर है, लगता हमारी मां है जानकी। लेकिन ऐसी नहीं हो सकती, चित्र तो सुंदर है, इनका चरित्र ठीक नहीं दिख रहा, ये हमारी मां नहीं हो सकती। बार बार सबको देखते देखते हनुमान जी को अपने ऊपर घृणा आ गई। क्यों? हनुमान जी ऊपर बैठे बैठे सोचने लगे मैं तो ब्रह्मचारी हूं, स्त्रियों को माताओं को इस अवस्था में देखना मुझ ब्रह्मचारी के लिए पाप है, पाप, मुझे नहीं देखना चाहिए। राम राम राम राम राम राम, अपराध हो गया। एक तो माता जी नहीं मिली, ऊपर से ये अपराध हो गया, मुझे तो इससे अच्छा मर जाना चाहिए। पर मन में विचार आया मरूं क्यों, अभी राम जी का काम तो हुआ ही नहीं, पर हमने लंका का घर घर देख लिया पर कहीं हमारी मां नहीं मिली, अब कहां मिलेगी। ऐसा विचार करके हनुमान जी रोने लगे, आंखों में आंसू आ गए, माता जी कहां मिलेंगी। रोते रोते हनुमान जी ने विचार किया एक काम करते हैं, जब काम ना बने तो राम राम जपते हैं। अब गांव में घूमने लगे लंका में हनुमान जी, राम राम जपते हुए, राम श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम।

0: जी महाराज ने देखा एक मकान के बाहर राम लिखा है, जय श्री राम,
1: जय श्री राम।
0: हनुमान जी खुश हो गए, वाह वाह वाह वाह वाह, लगता है ये हमारी पार्टी वाले का मकान। जैसे किसी दूसरे प्रदेश में कोई पार्टी का कार्यकर्ता जाए और अपनी ही पार्टी वाले का झंडा देख ले तो खुश हो जाता कि अपनी पार्टी वाला है। ऐसे ही हनुमान जी लंका में जाकर आहा रामायुध अंकित ग्रह शोभा वरणि न जाए, नव तुलसी का वृंदत है देख हरस कपिराय। हनुमान जी ने देखा दरवाजे के बाहर राम लिखा, तुलसी का पौधा रखा, आहा लगता हमारी पार्टी वाला है। लेकिन ये तो लंका है, लंका में कौन राम जी का भगत है।

ये हनुमान जी मन में सोच ही रहे थे, तब तक उस घर का मालिक उठ गया, जाग गया। क्यों जागा? क्योंकि आज तक लंका में कोई ये मंत्र ही नहीं जपा। कौन सा मंत्र? श्री

आजकल लोग अपना मोबाइल चेक करते हैं। राम राम राम राम। भैया पुराने जमाने में सोकर कोई उठता था, पृथ्वी माता को प्रणाम करता था, हाथों को देखता था, हथेलियों को मलता था। राम जी जब उठ

ये शिक्षा घर लेके जाओ, जो बालक बालिका प्रातः काल उठकर अपने से बड़ों को प्रणाम करता है, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर विद्या यशो बलम, चार चीजें उसकी बढ़ती हैं, आयु बढ़ती, विद्या बढ़ती, बल बढ़ता, यश बढ़ता। मेरे युवान भाइयों, युवा बहनों, हम प्रार्थना करें, एक बात तुम याद रखना, झुकते वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो एक मुर्दे की पहचान होती है। प्रातःकाल जाग कर, पहले के जमाने में कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य तु सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम, वर्तमान में प्रभाते कप दर्शनम, राम राम राम राम राम राम। इसलिए भैया विभीषण सुंदर कांड पढ़ो, विभीषण जी जागते क्या कर रहे हैं, जरा पढ़िए राम।

0: हनुमान जी ने देखा विभीषण जी राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम कहते हुए जागे। सज्जन की पहचान क्या? सज्जन की पहचान ही है जो प्रातः काल भगवान से शुरू करे वो सज्जन, और जो प्रातः काल खाने पीने से शुरू करे वो दुर्जन। बोलो सीताराम,
1: सीताराम।
0: बोलो बोलो बोलो बोलो। बुरा न मानना, और यदि तुम बुरा मान भी जाओ तो हमें कौन सा तुम्हारे घर रोटी खाने आना है। हाँ सुनो, अब और सुनो, खरी खरी सुनो। खाना पीना तो ठीक है, कुछ लोग सुबह सुबह से ही खाते पीते नहीं, पीते खाते हैं। आ आ, अरे राम राम राम राम, खाते पीते नहीं है, पीते खाते हैं, और दोनों में अंतर है। कोई अमीर आदमी का लड़का हो तो क्या कहते, खाते पीते घर का है, और कोई धीरे से कह दे खाते पीते घर का तो है पर पीता खाता भी है, सब मामला गड़बड़ हो जाता है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। इसलिए मेरे श्रोताओ, मेरे प्रियजनों, हमारी प्रार्थना है प्रातः काल उठते ही भगवान का नाम लो, श्री विभीषण जी से सीखो। प्रातः काल हनुमान जी महाराज को देखकर राम राम तेहि सुमरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। विभीषण जी हनुमान जी के पास आ गए। हनुमान जी ब्राह्मण का भेष बना के मिले। विप्र

ब्राह्मण रूप में श्री हनुमान जी को प्रणाम किया। हनुमान जी को प्रणाम करके विभीषण जी बोले, हमको एक संदेह हो रही। हनुमान जी बोले, क्या? कि तुम हरि दास

0: क्या राम जी के भक्त हैं या राम जी के दास हैं या राम जी ही हैं? हनुमान जी बोले क्यों? बोले आपको देख करके प्रेम उमड़ रहा, हर्ष हो रहा। देखो ये पहचान है भक्त की। पूछो क्या पूछो। कुछ लोग नजदीक बैठते हैं तो इतना बुरा लगता कि ये कब चले जाए। हाँ, कुछ लोग हमारे पास आते बात करने, हमको 5 मिनट चाहिए। हाँ बैठो बैठो बैठो। और जब उसकी एनर्जी देखते हैं 1-2 मिनट में ही लगता यार कब चला जाए। और कुछ लोग ऐसे होते जिनके पास बैठते ही लगता और बैठे रहो और बैठे रहो और बैठे। ये ऑरा जो है ना, इसका बड़ा प्रभाव है माई बाप। ऑरा कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? ऑरा। इसका बड़ा प्रभाव है। यदि तुम जपी तपी भजनानंदी रहोगे तो कोई तुम्हारे पास 5 मिनट भी बैठेगा ना तो उसे लगेगा और बैठ जाए। और यदि तुम खराब रहोगे, गड़बड़, तुम किसी के पास बैठोगे तो उसको लगेगा कब खिसक जाओ। हाँ, हनुमान जी का ऑरा बड़ा प्यारा है। विभीषण जी कह रहे, देख कर कि तुम हरी दासन में कोई मोरे हृदय प्रीत अस हो। आप कौन हैं? हनुमान जी ने अपना परिचय दिया। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। अच्छा देखो, इस दोहा में भी, छठवें दोहा में कितना गूढ़ छिपा। हनुमान जी ने नाम बाद में बताया। तब हनुमंत कही सब राम कथा, पहले कथा सुनाई फिर नाम। मतलब हनुमान जी सम्मान को नहीं चाहते, राम को चाहते हैं। पहले राम जी की महिमा बताई फिर अपनी बताई। पुत्र वही है जो पहले माता पिता का परिचय दे फिर अपना परिचय दे। शिष्य वही है जो पहले गुरु का परिचय दे फिर अपना परिचय दे। भक्त वही है जो पहले अपने भगवान का परिचय दे फिर अपना दे। ये हनुमान जी का संकेत छुपा। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। हनुमान जी ने अपना नाम बताया, राम कथा बताई। तो विभीषण जी बोले अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, जानकी माता की खबर लेने आए हो? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। हनुमान जी बोले एक बात बोले। विभीषण जी बोले बोलो। हनुमान जी बोले भैया तुम हमें जानकी माता का पता बता दो, हम तुम्हें राम जी का बता दें। तुम्हें भी एक बीमारी है और हमें भी एक बीमारी। विभीषण जी बोले कौन सी बीमारी? हनुमान जी बोले तुम्हें बीमारी है कि तुम्हें जानकी माता तो मिल गई, राम जी नहीं मिले। और हमें भी एक बीमारी है, राम जी मिल गए माता जी नहीं मिली। एक काम करो, तुम राम जी के दर्शन कराने का हमसे वचन ले लो और हमें जानकी माता के दर्शन करा दो। तुम्हारा भी काम बन जाएगा, हमारा भी काम बन जाएगा। बोलो सीताराम। विभीषण जी बोले पहले सुनो, हम बड़ी आफत में हैं। क्या आफत है? बोले जैसे दांतों के बीच में जीव रहती, हम भी राक्षसों के बीच में रह रहे। हनुमान जी बोले टेंशन ना लो, कुछ दिन निकालो, जल्दी ही डॉक्टर साहब आने वाले। डॉक्टर साहब कौन? राम जी। और राक्षस कौन है? दांत। जीव कौन है? विभीषण। अच्छा, जीव पकड़ के देखो, जरा पकड़ो जीव को, अपनी अपनी जीव छुओ, छुओ छुओ छुओ छुओ। बताओ हड्डी है? बताओ बताओ बताओ, हड्डी है? अरे पकड़ के तो देखो पहले। अब बताओ हड्डी है? है? लेकिन ये हड्डी तोड़वा देती है। आओ, आओ, आओ, हड्डी नहीं है पर तुम्हारी हड्डी तोड़वा देती है ये। अभी तुम बगल वाले को गाली दे के देखो, एक चांटा ना पड़े तो हमारा नाम बदल देना। बोलो सीताराम। जोर से बोलो और जोर से बोलो। जीव में हड्डी नहीं है पर हड्डी तोड़वा देती है। अच्छा, जीव में हड्डी क्यों नहीं है? कुदरत को ना पसंद थी, कुदरत को ना पसंद थी शक्ति बयान में। कुदरत को ना पसंद थी शक्ति बयान में, इसलिए उसने हड्डी ही नहीं दी जवान में। उसे पसंद ही नहीं, इसलिए उसने जवान में हड्डी नहीं दी। लेकिन हड्डी जीव बड़ी खतरनाक। तो विभीषण जी बोले हम जीव राक्षस दांत लंका मुंह। हनुमान जी बोले टेंशन ना लो, डॉक्टर साहब आने वाले। बोले डॉक्टर कौन? बोले राम जी। और सुनो, जब दांत दर्द करता ना, तब जीभ ही डॉक्टर को बताती है कि ये वाला है, ये वाला है। पर डॉक्टर क्या करता, संसी से उसी को निकाल देता। और मान लो जीभ थोड़ी सी चालाकी करे, जो दांत ज्यादा लुक लुक करता हो उस पे धर देवे, तो वो भी गया काम से। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, जोर से बोलो। और सच में विभीषण ने यही काम किया। जब राम जी लंका आए तो जीव की तरह विभीषण जी राम जी पीछे, राम जी के पीछे खड़े खड़े बोलते रहे, ये वो है, ये वो है, इसको मारो, इसको मारो। तो जो डॉक्टर काम करता, राम जी ने भी वही काम किया। हनुमान जी बोले टेंशन मत लो, तुम जीव हो तो राम जी डॉक्टर हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, जोर से बोलो, हरे हरे महादेव। इसलिए भैया विभीषण जी बोले तब तक हम करें क्या? बोले राम जी का नाम लो।
1: क्या आपके विदेश जाने में अड़चन आ रही है? क्या आप विदेश में बसना चाहते हैं लेकिन असफलता मिल रही है? कौन से ग्रहों का विदेश से है संबंध और कौन से ग्रह विदेश में देते हैं लाभ? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज
7: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: पहाड़ों पर कुदरत की मेहरबानी बरकरार, मनाली में सीजन की दूसरी बर्फबारी, व्यापारियों के साथ साथ खिले पर्यटकों के चेहरे। पितृपक्ष में बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़, ब्रह्म कपाल तीर्थ में तर्पण, गया जी में भी पितरों के मोक्ष के लिए धार्मिक अनुष्ठान। एशियन गेम्स में आज भी मेडल्स की आस, महिला हॉकी में सेमीफाइनल्स में दक्षिण अफ्रीका से भिड़ंत, कुश्ती के मुकाबलों का भी आज होगा आगाज, तीरंदाजी में ओलंपिक कोटा दांव पर। महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंचे क्रिकेटर रिंकू सिंह, विधि विधान से किए दर्शन, बाबा महाकाल से की सुख समृद्धि की कामना। ब्रिटिश म्यूजियम में कोरिया की 2000 साल पुरानी विरासत का प्रदर्शन, युवा पीढ़ी को संस्कृति से जोड़ने का प्रयास।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम।
2: एशियन गेम्स में भारतीय महिला रिले टीम ने 4x400 मीटर में गोल्ड मेडल जीतकर रचा इतिहास, भारतीय टीम ने 3:29 का शानदार समय दर्ज करते हुए स्वर्ण पदक किया अपने नाम। रेस की शुरुआत से ही भारतीय धाविकाओं ने जबरदस्त तालमेल और रफ्तार दिखाई, आखिरी लैप में मुकाबला बेहद रोमांचक रहा, लेकिन भारतीय टीम ने अपना दम बनाए रखा। भारतीय पुरुष रिले टीम ने भी 4x400 मीटर में किया शानदार प्रदर्शन, ब्रॉन्ज जीतकर देश का बढ़ाया मान। इससे पहले एशियन गेम्स में नीरू ढांडा ने रचा इतिहास, विमेन्स ट्रैप स्पर्धा में भारत के लिए जीता गोल्ड। नीरू ने फाइनल में 28 अंक हासिल कर बनाया नया एशिया रिकॉर्ड, मौजूदा एशियन गेम्स में यह भारत का 5वां गोल्ड मेडल। FIDE एक्सीलेंस अवार्ड में बेस्ट चेस प्लेयर फीमेल चुनी गई भारतीय चेस ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख, एक साल में उनके खिताबी प्रदर्शन को देखते हुए मिला सम्मान। भारत ने लगातार तीसरी बार नोना गैप्रिडांशली ट्रॉफी अपने नाम की, इससे पहले भारतीय टीम ने 2022 में चेन्नई और 2024 में बुडापेस्ट में हुए चेस ओलंपियाड में ट्रॉफी जीती थी। ICC 1 अक्टूबर को जारी करेगा वनडे वर्ल्ड कप 227 का स्केड्यूल, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेला जाएगा टूर्नामेंट। वर्ल्ड कप में पहली बार 14 टीमें 57 मैचों में लेंगी हिस्सा, इस टूर्नामेंट में 12 वेन्यू भी शामिल। 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन ब्राजील के खिलाफ फीफा फ्रेंडली मैच खेलने के लिए कोलकाता पहुंची भारतीय टीम, 3 अक्टूबर को सॉल्ट लेक स्टेडियम में खेला जाएगा महामुकाबला। राजस्थान के डांटौर में NH-911 पर सेना ने हेलीकॉप्टर लैंडिंग की ट्रेनिंग की, रुद्र ध्रुव और चेतक ने हाईवे से टेक ऑफ और लैंडिंग का अभ्यास किया। भारत पाक सीमा के करीब सेना ने हाईवे को अस्थायी रनवे में बदला, इससे मुश्किल हालात में वैकल्पिक जगहों से ऑपरेशन की क्षमता परखी गई। कठिन रेगिस्तानी माहौल में सेना के एयर क्रू ने सटीक लैंडिंग टेक ऑफ का अभ्यास किया, पायलट्स के साथ ग्राउंड टीम ने भी तालमेल की ट्रेनिंग की। रुद्र ध्रुव और चेतक हेलीकॉप्टर्स ने NH-N11 पर ऑपरेशन किया, अभ्यास का मकसद एयरबेस के अलावा दूसरी जगहों से भी हेलीकॉप्टर चलाने की तैयारी है। डांटौर का इलाका लंबी दूरी, गर्म मौसम और सीमित सुविधाओं के लिए चुनौतीपूर्ण है, इसी माहौल में सेना ने वैकल्पिक लैंडिंग साइट पर अपनी तैयारी जांची। जोधपुर में एक्सरसाइज तरंग शक्ति जारी, पावर इन पार्टनरशिप है इस साल की थीम। जोधपुर एयरबेस के ऊपर आसमान में उड़ान भरते नजर आए, इस एक्सरसाइज में हिस्सा लेने वाले देशों के फाइटर जेट्स और सपोर्ट एयरक्राफ्ट, दिखा शानदार नजारा। भारत के अलावा 7 मित्र देश अपने लड़ाकू विमानों और सैन्य संस्थानों के साथ हिस्सा ले रहे हैं। 32 अन्य देश ऑब्जर्वर के तौर पर शामिल। भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स भी दिखा रहे हैं कमाल। एक्सरसाइज में राफेल, सुखोई 30, एमकेआई, एलसीए तेजस, जैगुआर और एमआईजी मिग-29 शामिल। इस मेगा एक्सरसाइज में पहली बार अमेरिकी वायुसेना का 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट F-35 भारत की धरती पर किसी युद्धाभ्यास में ले रहा हिस्सा। बारामूला एलिवेटेड कॉरिडोर का तीसरा फेज शुरू, गृहमंत्री अमित शाह ने किया उद्घाटन। पंद्रह मिनट में तय होगा मयूर विहार से एम्स तक का सफर। दिल्ली के सड़क नेटवर्क और यातायात व्यवस्था को मिली नई रफ्तार। इस प्रोजेक्ट से पूर्वी और दक्षिणी दिल्ली के बीच सिग्नल फ्री होगी कनेक्टिविटी, ट्रैफिक जाम में भी जाएगी भारी कमी। अस्पतालों में लंबी लाइन से मिलेगी छुट्टी, यूपी ट्रेड शो में प्रदर्शित डीओडी मशीन से 10 मिनट में होंगे 75 से ज्यादा बॉडी टेस्ट। राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान के स्टॉल पर डीओडी यानी डॉक्टर्स ऑन ड्यूटी मशीन की गई पेश। वजन, बीपी, शुगर से लेकर 25 से ज्यादा लंग्स फंक्शन टेस्ट करती है ये मशीन। अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था को नए स्तर पर ले जाने की तैयारी शुरू, बढ़ाई जा रही है एनएसजी की भूमिका। अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था का आकलन कर नए सुरक्षा प्लान तैयार कर रही है एनएसजी, कई प्रमुख स्थलों का कर रही है निरीक्षण। दीपोत्सव 2026 में अयोध्या में दिव्यता और भव्यता की बिखरेगी चमक, रामनगरी में 30 लाख दीपों से मनाया जाएगा दीपोत्सव। पितृपक्ष में बद्रीनाथ के ब्रह्म कपाल में श्रद्धालुओं की भीड़, पितरों की मोक्ष कामना के लिए कर रहे हैं तर्पण। देश के अलग अलग हिस्सों से अपने पितरों और पूर्वजों की मोक्ष कामना के लिए बद्रीनाथ पहुंच रहे श्रद्धालु, पिंडदान समेत धार्मिक अनुष्ठान। महाराष्ट्र में आस्था का मेला, मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में अंगार की संकष्टी चतुर्थी की रौनक। मंगलवार और अंगार की चतुर्थी के दुर्लभ संयोग पर सुबह से ही उमड़ रही भक्तों की भारी भीड़, भक्ति में माहौल में डूबा पूरा मंदिर परिसर। रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया पूरा मंदिर, सीसीटीवी कैमरे, मेटल डिटेक्टर और स्कैनर के जरिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पुणे के प्रसिद्ध श्रीमंत दगड़ू शेठ हलवाई गणपति मंदिर में भी बप्पा का भव्य श्रृंगार, चारों ओर गणपति बप्पा मोरिया। सुबह सवेरे बप्पा की मंगला आरती में बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु, लिया बप्पा का आशीर्वाद। अकोला के मंदार गणपति मंदिर में 1968 से तने में दिखे गणेश स्वरूप की पूजा हो रही है, भक्त से स्वयंभू गणपति मानते हैं, अंगार की चतुर्थी पर उमड़ी भीड़। अंगार की संकष्टी चतुर्थी पर मंदिर में सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ लगी, गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों से मंदिर परिसर गूंज उठा। विसर्जन के कुछ दिन बाद ही अंगार की चतुर्थी ने भक्तों को फिर मंदिरों तक पहुंचा दिया, कोला में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक 1968 में मंदिर के तने में गणेश जी जैसा स्वरूप नजर आया, तभी से यहां पूजा की परंपरा चली आ रही है। मान्यता है कि गणपति ने मंदार वृक्ष के नीचे वास और शमी पत्र को प्रिय होने का वरदान दिया, इसी वजह से गणेश पूजा में दोनों का विशेष महत्व माना जाता है। जालना में राजूरेश्वर गणपति मंदिर में अंगार की संकष्टी चतुर्थी पर आस्था का सैलाब, उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। गणपति मंदिर के गर्भगृह में फूलों से की गई आकर्षक सजावट, रात से ही दर्शन के लिए लंबी कतार में खड़े हैं श्रद्धालु। महाराष्ट्र के 3.5 शक्तिपीठों में से एक संपूर्ण शक्तिपीठ के रूप में मशहूर है राजूर स्थित राजेश्वर गणपति देवस्थान, श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र। रंग बिरंगी रोशनी से की गई पूरी मंदिर परिसर की सजावट, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया के जयघोष से गूंज उठा पूरा परिसर। मंगलवार के दिन पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी को कहा जाता है अंगार की संकष्टी चतुर्थी, भगवान गणेश को समर्पित और सभी संकष्टी चतुर्थी व्रतों में सबसे उत्तम मानी जाती है। रेल यात्रियों के लिए बड़ी सौगात लेकर आई भारतीय रेलवे। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ के दौरान चलेंगी 12 जोड़ी यानी 24 पूजा स्पेशल ट्रेन्स। कक्षा 9 में टैक्स की पढ़ाई, नई एनसीईआरटी किताब में छात्रों को आयकर की गणना सिखाई जाएगी। टैक्स को नागरिक जिम्मेदारी से जोड़ा गया है। शासन के प्रतीकों की छात्रों को मिलेगी जानकारी, किताब में सत्यमेव जयते और सिंगूल का जिक्र, सुशासन की सात खूबियां भी समझाई गई। छात्र जानेंगे लज्जत पापड़ की कहानी, सात महिलाओं ने 80 रुपए से शुरू किया था कारोबार, किताब में इससे महिला उद्यमिता का उदाहरण बताया गया है।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे विदेश यात्रा के बारे में और विदेश में बसाने वाले योगों के बारे में। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं विदेश यात्रा के बारे में और विदेश में बसने के बारे में। विदेश यात्रा

भी लंबी यात्रा जिसमें कम से कम 3 पहर लगे, 9 घंटे लगे, वो विदेश यात्रा समझी जाती थी। कुंडली में पंचम, नवम और द्वादश भाव मुख्य रूप से विदेश यात्रा से संबंधित होते हैं। अष्टम भाव की भी विदेश यात्रा में भूमिका देखी गई है। क्रूर और पाप ग्रहों की विदेश यात्रा में बड़ी भूमिका होती है। ज्योतिष में राहु एक ऐसा ग्रह है जो व्यक्ति को सबसे ज्यादा विदेश जाने में सहायता करता है। इसके बाद शनि और मंगल भी विदेश यात्रा में सहायता करते हैं। जब किसी व्यक्ति की शनि की 7.5 चले या शनि की 2.5 चले तो भी व्यक्ति विदेश जाता है या विदेश यात्रा में सहायता मिलती है। आपने कुछ लोगों को देखा होगा जो विदेश जा करके परमानेंटली वहीं बस जाते हैं, वहीं रह जाते हैं, बाकी जीवन उनका वहीं बीतता है। तो कब व्यक्ति विदेश जाकर स्थायी रूप से बस जाता है? आम तौर पर शनि या राहु के मजबूत होने पर ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति घर से दूर जाकर स्थायी रूप से बस जाता है। सूर्य अगर कुंडली में कमजोर हो या चंद्रमा अगर कमजोर हो तो ऐसे लोग भी विदेश जाकर स्थायी रूप से बस जाते हैं। वृषभ, कन्या, मकर, मिथुन, तुला और कुंभ राशि वालों के विदेश में बस जाने की संभावना ज्यादा होती है। जिनकी जन्मतिथि महीने की 2, 11, 20 या 29 हो उनके विदेश में बस जाने की संभावना ज्यादा होती है। जैसा आपको पहले बताया कि कुंडली में अगर पाप ग्रहों का प्रभाव हो, कुंडली का 12वां, 8वां या 4वां भाव अगर पीड़ित हो, निगेटिव इन्फ्लुएंस हो, तो व्यक्ति विदेश जाता है और उसके विदेश में बसने की संभावना बहुत होती है। अब ये जानते हैं कि विदेश जाने में या विदेश यात्रा में बाधाएं कब आती हैं। अगर कुंडली में चंद्रमा या शुक्र मजबूत हो तो आदमी अपने मदर या मदरलैंड से दूर नहीं जा पाता, और अगर जाता है तो लौटकर वापस आता है। अगर कुंडली में शुभ ग्रहों की दशा चल रही हो तो भी विदेश यात्रा में या विदेश जाने में दिक्कतें आती हैं। अगर आपके पासपोर्ट के नंबर में या वीजा के नंबर में 1, 5 या 9 अंक की प्रधानता हो तब भी विदेश जाने में बाधा आती है। अगर किसी व्यक्ति की जन्म तारीख 4, 13, 22 या 31 तारीख हो
तो

0: या तो व्यक्ति बहुत बार विदेश जाता है या जीवन में ऐसे मौके ही नहीं आते, कभी नहीं जा पाता। अगर व्यक्ति की कुंडली जल तत्व प्रधान हो तो ये मदरलैंड से दूर नहीं जाने देती। व्यक्ति अपनी मातृभूमि से, अपने देश से दूर नहीं जा पाता, विदेश जाने में बाधा जरूर आती है। अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं और विदेश यात्रा करने में बाधा आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो क्या उपाय करेंगे? शनि के तांत्रिक मंत्र का रोज शाम को जप करिएगा। मंत्र होगा ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का रोज शाम को 108 बार जप करें। कुंडली का जो नवम भाव है उसके स्वामी ग्रह को मजबूत करें। हल्के नीले रंग के, लाइट ब्लू कलर के कपड़ों का खूब प्रयोग करें और एक बार नदी पार करके नाव से या स्टीमर वगैरह से कोई यात्रा जरूर कर लें। अगर ऐसा कर लेते हैं तो विदेश जाने की संभावना बन जाएगी। अब आप विदेश यात्रा तो कर लेते हैं, चले भी जाते हैं, चले भी आते हैं, लेकिन वास्तव में आप विदेश में बसना चाहते हैं तो इसके लिए क्या उपाय करेंगे? स्नान के जल में जरा सी हल्दी मिलाकर नियमित रूप से स्नान करें। एक कांच की छोटी सी शीशी में हल्दी भरकर अपने सिरहाने रख लें और रोज सुबह मां दुर्गा को एक लाल फूल अर्पित करें और माता से प्रार्थना करें कि आपको विदेश में बसने में सुविधा हो। देखिए, कलम या किताब को बिना वजह के, बिना कारण खुला हुआ मत रखिए। आपने किताब पढ़ ली, किताब बंद कर दीजिए। आपने लिखने का काम कर लिया, कलम बंद कर दें, उसका कैप लगा दें। अगर आप अपनी पेन या अपनी किताब कॉपी सामान्यतः खुला रखते हैं तो ऐसा करने से आपकी याददाश्त कमजोर होगी। अगर आपको सर से, ब्रेन से संबंधित कोई समस्या है तो क्या करेंगे? एक नारियल ले लीजिए, इस पर सिंदूर से स्वस्तिक बनाइए और सर पर से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज 9 बार घुमा लीजिए। उसके बाद एक बार में नारियल को पटक करके तोड़ दें, फोड़ दें। स्वास्थ्य की चिंताएं और समस्याएं दूर होंगी। इस उपाय को करने के साथ आप डॉक्टर का परामर्श भी माने, उनकी दवाइयां भी लें। 6 महीने में एक बार अगर आप ये उपाय करें तो आपको लाभ होगा। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
3: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लाल।
4: एशियन गेम्स में भारत की झोली में आया सातवां गोल, तीरंदाजी में चीन को पछाड़कर भारतीय महिलाओं ने किया कमाल, कंपाउंड तीरंदाजी में जीता सोना। पहाड़ों पर कुदरत की मेहरबानी बरकरार, मनाली में सीजन की दूसरी बर्फबारी, व्यापारियों के साथ साथ खिले पर्यटकों के चेहरे। पितृपक्ष में बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़, ब्रह्म कपाल तीर्थ में तर्पण, गया जी में भी पितरों के मोक्ष के लिए धार्मिक अनुष्ठान। महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंचे क्रिकेटर रिंकू सिंह, विधि विधान से किए दर्शन, बाबा महाकाल से की सुख समृद्धि की कामना। ब्रिटिश म्यूजियम में कोरिया की 2000 साल पुरानी विरासत का प्रदर्शन, युवा पीढ़ी को संस्कृति से जोड़ने का प्रयास।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका गुड लक टुडे में और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार।
0: तो आज के गुड लक के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि कब व्यक्ति के जीवन में ऐसा मौका आता है कि वो विदेश जाने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है, कौन से ग्रह होते हैं जो इसके पीछे होते हैं जो उसे विदेश ले जाते हैं, इस पर विस्तार से करेंगे हम पंडित जी से चर्चा। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र।
2: देखिए, कलम या किताब को बिना वजह के, बिना कारण खुला हुआ मत रखिए। आपने किताब पढ़ ली, किताब बंद कर दीजिए। आपने लिखने का काम कर लिया, कलम बंद कर दें, उसका कैप लगा दें। अगर आप अपनी पेन या अपनी किताब कॉपी सामान्यतः खुला रखते हैं तो ऐसा करने से आपकी याददाश्त कमजोर होगी।
0: और आइए जान लेते हैं 30 सितंबर 2026 यानी कि बुधवार का पंचांग क्या है।
2: दिनांक 30 सितंबर 2026 दिन बुधवार, तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, दोपहर 2:55 तक। नक्षत्र है भरणी नक्षत्र, प्रातः 7:36 तक। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, दोपहर 1:13 तक। राहु काल का समय दोपहर 12:00 से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: और चलिए जानेंगे हम पंडित जी से ही कि ज्योतिष के अनुसार विदेश यात्रा के योग का क्या अर्थ है, कौन से ग्रह इसके लिए जिम्मेदार होते हैं।
2: देखिए, आज हम बात कर रहे हैं विदेश यात्रा के बारे में और विदेश में बसने के बारे में। विदेश यात्रा के योग के होने का अर्थ क्या है, कब व्यक्ति विदेश की यात्रा करता है, विदेश जाता है। देखिए, विदेश यात्रा का अर्थ होता है ज्योतिष में समुद्र पार करने की यात्रा। सामान्यतः पहले ऐसा मानते थे कि कोई भी लंबी यात्रा जिसमें कम से कम 3 लगें, 9 लगें, वो विदेश यात्रा समझी जाती थी। कुंडली में पंचम, नवम और द्वादश भाव मुख्य रूप से विदेश यात्रा से संबंधित होते हैं। अष्टम भाव की भी विदेश यात्रा में भूमिका देखी गई है। क्रूर और पाप ग्रहों की विदेश यात्रा में बड़ी भूमिका होती है। ज्योतिष में राहु एक ऐसा ग्रह है जो व्यक्ति को सबसे ज्यादा विदेश जाने में सहायता करता है। इसके बाद शनि और मंगल भी विदेश यात्रा में सहायता करते हैं। जब किसी व्यक्ति की शनि की 7.5 चले या शनि की 2.5 चले तो भी व्यक्ति विदेश जाता है या विदेश यात्रा में सहायता मिलती है।
0: और अब वक्त हो गया आज के राशिफल के बारे में जानने का, तो चलिए जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि वालों का क्या कहता है राशिफल।
2: मेष राशि, धन का लाभ इस समय आपको हो सकता है, परिवार में व्यस्तता रहेगी, किसी अतिथि का आगमन होगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, काम में व्यस्तता रहेगी, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा, हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मिथुन राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, करियर में सफलता मिलेगी, वाद विवाद से बचाव करें, गणेश जी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: और चलिए अब जान लेंगे कि कब व्यक्ति विदेश जाकर स्थायी रूप से वहां बस जाता है।
2: आपने कुछ लोगों को देखा होगा जो विदेश जा करके परमानेंटली वहीं बस जाते हैं, वहीं रह जाते हैं, बाकी जीवन उनका वहीं बीतता है। तो कब व्यक्ति विदेश जाकर स्थायी रूप से बस जाता है? आम तौर पर शनि या राहु के मजबूत होने पर ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति घर से दूर जाकर स्थायी रूप से बस जाता है। सूर्य अगर कुंडली में कमजोर हो या चंद्रमा अगर कमजोर हो तो ऐसे लोग भी विदेश जाकर स्थायी रूप से बस जाते हैं। वृषभ, कन्या, मकर, मिथुन, तुला और कुंभ राशि वालों के विदेश में बस जाने की संभावना ज्यादा होती है। जिनकी जन्मतिथि महीने की 2, 11, 20 या 29 हो उनके विदेश में बस जाने की संभावना ज्यादा होती है। जैसा आपको पहले बताया कि कुंडली में अगर पाप ग्रहों का प्रभाव हो, कुंडली का 12वां, 8वां या 4वां भाव अगर पीड़ित हो, निगेटिव इन्फ्लुएंस हो, तो व्यक्ति विदेश जाता है और उसके विदेश में बसने की संभावना बहुत होती है।
0: और अब वक्त हो गया है कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के राशिफल को जानने का।
2: कर्क राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिख रहा है, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाद विवाद से बचाव करें, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा, हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही लाभ होगा।
0: और चलिए अब जान लेते हैं आज का पहला सवाल पंडित जी को कहां से और किसने भेजा है।
2: जी, आज का पहला प्रश्न सुष्मिता जी ने हमें लिखा है, कोलकाता पश्चिम बंगाल से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 20 मार्च 1980। जन्म का समय सुबह के 9:30। जन्म स्थान है कोलकाता। सुष्मिता जी कह रही हैं कि इनका एक पुराना मकान है, वो पारिवारिक विवाद में फंसा हुआ है, तो कब तक ये विवाद हल होगा और मकान इनको कब तक मिल पाएगा और कब तक उसको दोबारा बना पाएंगी। सुष्मिता जी, आपकी कुंडली के हिसाब से जो पारिवारिक संपत्ति का मामला है वो साल 2027 के मध्य में हल होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको कुछ पैसे रुपए देने पड़ेंगे लेकिन आपका मामला बड़ी आसानी से हल हो जाएगा और अगले ही साल जून जुलाई के बाद अगर आप चाहें तो अपना मकान दोबारा से बनवा सकती हैं। फिलहाल ऐसा करिए, सुबह शाम दोनों समय संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करिए और हर शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए, आपको लाभ होगा।
0: अगर आपके मन में भी कोई सवाल है और आप चाहते हैं पंडित जी उसका जवाब दें तो आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। अपने सवाल भेजने के लिए हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। और इसी के साथ वक्त हो गया आज के दूसरे प्रश्न का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज का दूसरा प्रश्न वो किसका लेने वाले हैं।
2: जी, अगला प्रश्न नारद जी ने हमें लिखा है और नारद जी हमें मेल लिखते हैं देवरिया उत्तर प्रदेश से, अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 9 अक्टूबर 1992, जन्म का समय शाम के 3:11, जन्म स्थान है देवरिया। ये पूछ रहे हैं कि मेरी पुत्री का विवाह कब तक होगा और उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। नारद जी, आपकी पुत्री की कुंडली के हिसाब से उनके विवाह का समय चल रहा है साल 2027 के शुरुआती समय में, उनके विवाह के योग बनते हैं। जब भी विवाह किया जाए कुंडली मिला करके सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा, क्योंकि इनके वैवाहिक जीवन में थोड़ी समस्याएं दिखाई दे रही हैं। शीघ्र और बेहतर विवाह के लिए इनको एक मोती बनवा के पहनाइए, 10-12 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती इनको धारण कराएं और अपनी पुत्री से कहें कि ये रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा।
0: और चलिए अब जान लेते हैं कि हम विदेश जाना चाहते हैं, लेकिन विदेश यात्रा में कब ऐसा होता है कि लगातार बाधाएं आती रहती हैं, आइए जानते हैं।
2: अब ये जानते हैं कि विदेश जाने में या विदेश यात्रा में बाधाएं कब आती हैं। अगर कुंडली में चंद्रमा या शुक्र मजबूत हो तो आदमी अपने मदर या मदरलैंड से दूर नहीं जा पाता, और अगर जाता है तो लौटकर वापस आता है। अगर कुंडली में शुभ ग्रहों की दशा चल रही हो तो भी विदेश यात्रा में या विदेश जाने में दिक्कतें आती हैं। अगर आपके पासपोर्ट के नंबर में या वीजा के नंबर में 1, 5 या 9 अंक की प्रधानता हो तब भी विदेश जाने में बाधा आती है। अगर किसी व्यक्ति की जन्म तारीख 4, 13, 22 या 31 तारीख हो तो या तो व्यक्ति बहुत बार विदेश जाता है या जीवन में ऐसे मौके ही नहीं आते, कभी नहीं जा पाता। अगर व्यक्ति की कुंडली जल तत्व प्रधान हो तो ये मदरलैंड से दूर नहीं जाने देती, व्यक्ति अपनी मातृभूमि से, अपने देश से दूर नहीं जा पाता, विदेश जाने में बाधा जरूर आती है।
0: और चलिए अब जानेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का क्या कहता है राशिफल।
2: तुला राशि, करियर में बड़ी सफलता मिलती हुई दिख रही है, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, चोट चपेट से सावधान रहें। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, करियर में सफलता मिलेगी, परिवार में शुभ कार्य होंगे, कोई यात्रा इस समय हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, धन की समस्याएं हल होंगी, करियर में कुछ बदलाव होगा, पुरस्कार सम्मान का लाभ मिलेगा। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: अगर विदेश यात्रा के लिए जाना चाहते हैं तो क्या क्या उपाय हैं जो आपको करने चाहिए जिससे आपकी विदेश यात्रा का जो सफर है वो बिल्कुल आसान हो जाए, आइए जानते हैं।
2: अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं और विदेश यात्रा करने में बाधा आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो क्या उपाय करेंगे? शनि के तांत्रिक मंत्र का रोज शाम को जप करिएगा। मंत्र होगा ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का रोज शाम को 108 बार जप करें। कुंडली का जो नवम भाव है उसके स्वामी ग्रह को मजबूत करें। हल्के नीले रंग के लाइट ब्लू कलर के कपड़ों का खूब प्रयोग करें और एक बार नदी पार करके नाव से या स्टीमर वगैरह से कोई यात्रा जरूर कर लें। अगर ऐसा कर लेते हैं तो विदेश जाने की संभावना बन जाएगी।
0: अगर आप विदेश में बसना चाहते हो तो आपको क्या उपाय करने चाहिए, चलिए जान लेते हैं पंडित जी से।
2: अब आप विदेश यात्रा तो कर लेते हैं, चले भी आते हैं, लेकिन वास्तव में आप विदेश में बसना चाहते हैं तो इसके लिए क्या उपाय करेंगे? स्नान के जल में जरा सी हल्दी मिलाकर नियमित रूप से स्नान करें। एक कांच की छोटी सी शीशी में हल्दी भरकर अपने सिरहाने रख लें और रोज सुबह माँ दुर्गा को एक लाल फूल अर्पित करें और माता से प्रार्थना करें कि आपको विदेश में बसने में सुविधा हो।
0: और अब वक्त हो गया आज के अंतिम राशिफल के बारे में जानने का, यानी कि मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के राशिफल को जानने का।
2: मकर राशि, स्वास्थ्य का अपने इस समय ध्यान बनाए रखें, सेहत का ध्यान दें, परिवार में विवादों से बचाव करें, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कुंभ राशि, धन का लाभ होगा, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: और आइए अब जानते हैं आज का तीसरा प्रश्न, पंडित जी को कहां से और किसने भेजा है।
2: जी, अगला प्रश्न राजेश जी ने हमें लिखा है, मध्य प्रदेश सागर से लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 6 जून 1970। जन्म का समय रात में 10 बजे। जन्म स्थान है सागर, मध्य प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मैं काफी समय से व्यापार करता हूं, लेकिन मेरा व्यापार आजकल अच्छा नहीं चल रहा है और मेरे ऊपर कर्ज भी हो गया है। तो व्यापार में सुधार कब तक होगा, कर्ज से मुक्ति कब तक मिलेगी। राजेश जी, आपकी कुंडली के हिसाब से मई 2027 तक आपको सावधानी रखनी चाहिए बड़े धन के नुकसान से या मुश्किलों से बचना चाहिए। मई 2027 के बाद जीवन बेहतर होना शुरू होगा, उसके बाद व्यापार भी बेहतर होगा और आप कर्जे भी चुका सकेंगे। सुबह और शाम दोनों समय संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें और एक पन्ना लगभग 8-9 रत्ती का चांदी में दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार की शाम को अगर आप धारण करें तो आपके लिए बेहतर होगा।
0: इसी के साथ गुड लक में वक्त हो गया आज के अंतिम प्रश्न का, तो चलिए जान लेते हैं पंडित जी से आज का अंतिम प्रश्न वो किसका लेने वाले हैं।
2: जी,

0: कृष्ण प्रसाद जी ने हमें लिखा है, पटना बिहार से मेल लिखते हैं, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 10 सितंबर 1994, सुबह के 11 बजे, जन्म स्थान है पटना बिहार। कृष्ण प्रसाद जी पूछ रहे हैं कि मेरे पुत्र के करियर में बार बार उतार चढ़ाव आता है, फिलहाल तो वो एक ठीक ठाक नौकरी पा गया है, लेकिन आने वाले समय में करियर में उतार चढ़ाव ना हो इसके लिए मेरे पुत्र को क्या करना चाहिए। देखिए, आपके पुत्र की जो कुंडली बनती है उसमें शनि की जो स्थिति है वो करियर में बार बार उतार चढ़ाव दिखाती है, तो आप अपने पुत्र से कहें कि वो रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें और एक मूंगा लगभग 10-12 रत्ती का तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में मंगलवार को सवेरे अगर धारण करवाएं तो बेहतर रहेगा।
1: जिनका जन्मदिन आने वाला है उन्हें हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे टू यू। आइए जानते हैं आपका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा।

0: 30 सितंबर को है, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में करियर की स्थिति मजबूत बनी रहेगी, धन की स्थिति में सुधार होता जाएगा, लेकिन स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव से बचिएगा। अगर आप अविवाहित हैं तो इस साल आपका विवाह हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर बृहस्पति मंत्र का अगर जप करें, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और अब वक्त हो गया इसी के साथ आज की जिज्ञासा के बारे में जानने का, तो चलिए जान लेते हैं आज की जिज्ञासा क्या है।
0: देखिए, आज की जिज्ञासा ये है कि लोग कहते हैं कि अगर मारक दशा चले तो उसमें व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। क्या वास्तव में मारक दशा में मृत्यु होना ही है, होती ही है? देखिए, मारक दशा में मृत्यु हो जाए ये कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन मारक दशाओं में अक्सर काफी कठिनाई का और कष्ट का सामना करना पड़ता है। अगर कुंडली में सुरक्षा के ग्रह मजबूत हों तो मारक दशा में कष्ट कम हो जाता है और व्यक्ति की रक्षा अवश्य होती है।
1: और चलिए अब जानते हैं 30 सितंबर 2026 यानी कि बुधवार का शुभ पहर कौन सा है।
0: दिनांक 30 सितंबर 2026 दिन बुधवार, शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय

0: सुधार होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 30 सितंबर बुधवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में।
1: और चलिए अब जान लेते हैं गुडलक राशि कौन सी है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग पूजा में किस चीज का प्रयोग जरूर करें। आज की गुडलक राशि है कुंभ। इनको पूजा में सुगंधित धूप बत्ती का प्रयोग जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से इनकी मानसिक स्थिति और इनकी एकाग्रता बेहतर बनी रहेगी।
1: और इसी के साथ हम पहुंच गए आज के एपिसोड के अंतिम पड़ाव पर, जहां पंडित जी रोज हमें एक नया महा उपाय बताते हैं। तो चलिए जान लेते हैं पंडित जी से ही कि आज का महा उपाय क्या है।
0: जी, आज के महा उपाय में आपको बताते हैं कि अगर आपको सर से, ब्रेन से संबंधित कोई समस्या है तो क्या करेंगे। एक नारियल ले लीजिए, इस पर सिंदूर से स्वस्तिक बनाइए और सर पर से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज 9 बार घुमा लीजिए। उसके बाद एक बार में नारियल को पटक करके तोड़ दें, फोड़ दें। स्वास्थ्य की चिंताएं और समस्याएं दूर होंगी। इस उपाय को करने के साथ आप डॉक्टर का परामर्श भी माने, उनकी दवाइयां भी लें। 6 महीने में एक बार अगर आप ये उपाय करें तो आपको लाभ होगा।
1: पंडित जी, तमाम जानकारी के लिए और महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो पंडित जी से महा उपाय तो आपने जान लिया, बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
3: अविश्वास में विश्वास बसता है
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
2: गुड न्यूज टुडे.
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से
6: की शानदार खबर, एशियन गेम्स में भारत को मिला 7वां गोल्ड मेडल. जी हां, एशियन गेम्स में भारत को मिला 7वां गोल्ड. महिला कंपाउंड तीरंदाजी में आया गोल्ड मेडल. तो इस वक्त की शानदार खबर, महिला कंपाउंड तीरंदाजी में आया गोल्ड मेडल. भारत के फाइनल मुकाबले में चीन को हराया, भारत ने चीन को हरा दिया है और इसी के साथ 7वां गोल्ड भारत ने जीता. चिकिता, प्रतिका और ज्योति का इसमें कमाल है. इस वक्त की शानदार खबर, भारत के पास 7 गोल्ड, 21 सिल्वर, 26 ब्रॉन्ज.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें.
7: क्या आपके विदेश यात्रा में बाधाएं आ रही हैं? क्या विदेश में बसने में समस्याओं का सामना कर रहे हैं? कौन से ग्रहों का विदेश से है संबंध और कैसे उठाएं इनका लाभ, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन.
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: और अब बात करते हैं पहाड़ों पर बर्फबारी और मौसम में हो रहे बदलाव की। कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक भारी बर्फबारी हो रही है, जिसमें मौसम का मिजाज बदल दिया है और तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। आमतौर पर मौसम का ये रंग नवंबर के आखिरी हफ्ते और दिसंबर की शुरुआत में दिखता है, लेकिन इस बार सितंबर के अंत में ही मौसम मेहरबान हो गया है। वहीं हिमाचल के किन्नौर में ट्रैकिंग के दौरान कोलकाता की 12 सदस्य टीम आधे रास्ते में फंस गई, जिसका ITBP और स्थानीय लोगों ने सुरक्षित रेस्क्यू करके उनको बचा लिया।

0: पहाड़ों पर भारी बर्फबारी से मौसम का मिजाज बदल गया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में ताज़ा बर्फबारी और लगातार हो रही बारिश से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, तो वहीं निचले इलाकों में बारिश और ठंडी हवाओं ने मौसम को सुहाना बना दिया है। पहाड़ों पर मौसम ने करवट ली है। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में ताज़ा बर्फबारी ने पहाड़ों की खूबसूरती को और बढ़ा दिया है। ऊंची चोटियां बर्फ की सफेद चादर में लिपटी नजर आ रही हैं। मनाली और धर्मशाला के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम का ये बदला मिजाज आने वाले दिनों में पर्यटन के लिहाज से भी दिलचस्प तस्वीर पेश कर रहा है, तो वहीं गुलमर्ग के ऊंचे पहाड़ों पर ताज़ा बर्फबारी ने नज़ारे को और बेहद खूबसूरत बना दिया है। कश्मीर के खूबसूरत वादियों में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में बर्फबारी के साथ बारिश भी देखने को मिली है, यानी सितंबर के आखिरी दिनों में ही कश्मीर की पहाड़ियों ने सर्दियों की आहट दे दी है। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के गुलमर्ग में ताज़ा बर्फबारी हुई है। इस बर्फबारी ने पूरे इलाके को स्वर्ग सा बना दिया है। अफरवाद पीक पर गिरी बर्फ ने पहाड़ों को सफेद चादर से ढक दिया है। यहाँ हो रही बर्फबारी और बादलों की आवाजाही के बीच गुलमर्ग का मौसम सर्द एहसास दे रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ों पर बर्फबारी और ठंडी हवाओं के कारण मैदानी इलाकों में दिन के तापमान में 8 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आई है। बता दें कि दिसंबर से फरवरी के दौरान गुलमर्ग में भारी बर्फबारी होती है, जो विंटर टूरिज्म और स्कीइंग के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में भी बर्फबारी से सजे खूबसूरत पहाड़ों का दीदार हो रहा है। करीब 14,000 फीट पर स्थित कैलाश कुंड की पहाड़ियों और चटरगला बाईपास इलाके में ताज़ा बर्फबारी से पूरा इलाका सफेद चादर में ढक गया। ऊंचाई वाले इलाकों में बदले मौसम के बीच बर्फ से ढके पहाड़ों का खूबसूरत नजारा बेहद आकर्षक है। मौसम विभाग ने ऊपरी इलाकों में ठंड बरकरार रहने और हल्की बर्फबारी की संभावना जताई है। प्रशासन ने भी ऊंचाई वाले मार्गों पर यात्रियों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। वहीं हिमाचल प्रदेश की बात करें तो धौलाधार की सफेद चोटियां, नीचे छाए बादल और बारिश से धुली हरियाली कांगड़ा की वादियों की खूबसूरती देखते ही बन रही है। धौलाधार ही नहीं बल्कि हिमाचल के दूसरे ऊंचाई वाले इलाकों में भी ताज़ा बर्फबारी से लोगों के चेहरे खिल गए हैं। किन्नौर, लाहौल स्पीति और कुल्लू की ऊंची चोटियां भी बर्फ से ढकी नजर आ रही हैं। सितंबर में दूसरी बार हुई बर्फबारी से धौलाधार की ऊंची चोटियां चांदी के मुकुट की तरह चमक उठे हैं। बादलों के बीच बर्फ से ढकी चोटियों का ये नज़ारा बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है। वहीं धर्मशाला और आसपास के इलाकों में बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई। सितंबर के आखिरी हफ्ते में ही मौसम ने ऐसा रंग बदला कि पहाड़ों पर सर्दी का एहसास होने लगा। मौसम के जानकारों के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से कांगड़ा की धौलाधार पर्वतमाला ने एक बार फिर बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है।
1: बीते 24 घंटों में प्रदेश के कई क्षेत्रों में हल्के से मध्यम बारिश के साथ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में एक दो स्थानों में हैवी रेनफॉल दर्ज की गई है। सबसे अधिक बारिश कांगड़ा स्टेशन में रिकॉर्ड की गई लगभग 70 mm के आसपास, उसके उपरांत जो सेकेंड

0: और यहाँ पे हल्की बर्फबारी रिपोर्ट की गई।
1: बर्फ की सफेद चादर में लिपटी पहाड़ियाँ और उन पर पड़ती सुबह की सुनहरी धूप, मानो आसमान से उतरकर सफेद रंग ने पूरी वादियों को अपने आगोश में ले लिया हो। ताजा बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट आई है और मनाली की फिजाओं में ठंडक बढ़ गई है। ताजा बर्फबारी से हिमाचल में मनाली के पहाड़ों की खूबसूरती भी निखर गई है। वहीं बर्फ से ढके पहाड़, ठंडी हवाएं और धूप में चमकती चोटियां, सितंबर के आखिर में मनाली का ये नजारा सर्दियों की आहट का एहसास करा रहा है। हिमाचल के पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में भी कमोबेश मौसम का सही मिजाज देखने को मिला है। वहां भी ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। ये तस्वीरें केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब की हैं, जहां ताजा बर्फबारी से ठंड पड़ गई है। ठंडी हवाओं के बीच सुबह और शाम के वक्त तापमान में गिरावट का असर साफ महसूस किया जा रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 29 और 30 सितंबर को राज्य के पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है।
2: डिस्टर्बेंस की वजह से काफी अच्छी एक्टिविटी हुई है, साथ साथ में जो ये डिप्रेशन था जो कि आ गया कि वेलमाक लो प्रेशर एरिया में कमजोर हुआ, फिर लो प्रेशर एरिया में, और आज सुबह जो है लेसमाक हो गया, इसका भी असर देखने को मिला, जिसकी वजह से उत्तराखंड में और आसपास के जो पहाड़ी राज्य हैं वहां पर भी बर्फबारी देखने को मिली। आज भी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो करके 68 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड के आसपास केंद्रित है, जिसको देखते हुए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर जो भारी वर्षा का जो है अलर्ट जारी किया गया है, साथ साथ में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी भी हो सकती है।
1: पहाड़ों पर हो रही ताजा बर्फबारी और बारिश की वजह से अचानक मौसम बदला तो पहाड़ों पर ट्रैकिंग कर रहे पर्वतारोहियों की मुसीबतें बढ़ गईं। हिमाचल के किन्नौर में माउंट लियो पारगिल 2 की ओर बढ़ रही कोलकाता की 12 सदस्यीय हिमालयाज बीकन टीम आधे रास्ते में फंस गई।
3: लियो पारगिल हम लोग एक्सपीडिशन में थे, लियो पारगिल 2, लियो पारगिल नॉट लियो पारगिल, लियो पारगिल एंड लियो पारगिल देयर इज टू पीक, देयर अटेम्प्ट लियो पारगिल 2, लेकिन हम लोग का समिट जो दिन था हम लोग समिट में पहुंचा, समिट से थोड़ा नीचे हम लोग का छोड़ के आने पड़ा है ड्यू टू द हाई अल्टीट्यूड सिकनेस ऑफ वन ऑफ द मेंबर, एंड हम लोग देन वी आर रिटर्न बैक फ्रॉम बेस कैंप दैट डे, द स्नोफॉल स्टार्ट फ्रॉम द मिडनाइट एंड देयर इज कंटीन्यूअस स्नोफॉल।
1: बर्फबारी से रास्ते ढक चुके थे और लौटना भी आसान नहीं था, लेकिन बिगड़ते मौसम के बीच टीम के पास लौटने के अलावा कोई रास्ता बचा नहीं था, लिहाजा बर्फ में फंसी टीम ने मदद के लिए स्थानीय पुलिस और आईटीबीपी से संपर्क किया।
3: बीच में बहुत स्नो गिरा है तो उसमें वो लोग का चलने का दिक्कत हो रहा था, तो हमारा पास भी 2-3 आदमी था जो थोड़ा से उम्र में ज्यादा है, वो लोग को सबसे चलने में दिक्कत होता था, तो उसी टाइम हम सोचा है हमको असिस्टेंट जरूरी है, तो हम लोग पहले आईटीबीपी से कांटेक्ट किया, उसके बाद पुलिस से कांटेक्ट किया, तो आईटीबीपी पुलिस थोड़ा बोलता है देर लगेगा हम लोग का अरेंज करने में।
1: साथ ही स्थानीय लोगों से भी मदद मांगी गई, जिसके बाद तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू किया गया।
3: तो ऊपर में तक जहाँ तक हम लोग का आदमी को मिले उतना तक वो लोग पहुंचे, क्यों ना वो लोग अगर उसको मिल जाएगा तो उसको भी थोड़ा साहस मिल जाएगा जे हमारा लिए आदमी आ गया, रेस्क्यू टीम आ रहा है, तो उसका बाद दासी जी खुद चला गया ऊपर में वो लोग का रूट देखने के लिए, पुलिस भी इतना में आ गया था, पुलिस का जो टीम था तो दासी जी पुलिस टीम को लेके भी उस उधर छोड़ा है।
1: इसके बाद आईटीबीपी के जवान अपनी मेडिकल टीम के साथ मौके पर पहुंचे और राहत बचाव अभियान में जुट गए।
3: बाद में आईटीबीपी पूरा मेडिकल टीम लेकर आया, आईटीबीपी का सबसे बड़ा असिस्टेंट जो था हम लोग का लिए उसका मेडिकल टीम रेडी रहता है हमेशा, तो हमारा अगर कोई मेडिकल असिस्टेंट रहता है तो वो लोग जरूर देता है, तो इस बार तो वो नेपाली एवं पुलिस का जो बंदा था वो लोग सबसे पहले पहुंच गया था रेस्क्यू के लिए, तो हमारा जो एक बंदा था वो जो चल नहीं सकता है उसको नेपाली लोग कंधा में उठाया, रोप से उठा के नीचे लेके आया, तो यहाँ तो वो हम लोग का जो स्नो का लिए जो दिक्कत हो रहा था वो तो सारा रास्ता ही वो दिक्कत हम लोग बोझ रहा है।
1: राहत बचाव टीम और स्थानीय लोग पहुंचे तो सभी ने राहत की सांस ली, टीम ने एक बीमार पर्वतारोही को सुरक्षित बाहर निकाला।
3: सही सलामत सब सेफ्टी में हम लोग।

0: यहाँ तक पहुँच गया, सबको असिस्टेंट मिला के हम लोग का पूरा टीम सेफ पहुँच गया नाको में। सबसे बड़ा इसमें रोल था हम लोग का नाको का जो हमारा होमस्टे का जो ओनर है दासी जी, वो सारा दिन इसमें ही बिता दिया रेस्क्यू में, उसका भी एक बड़ा भूमिका था इस हम लोग का रेस्क्यू ऑपरेशन में। तो हम लोग का अभी जो मेंबर है सारा मेंबर ठीक ठाक है।
1: आईटीबीपी की टीम और स्थानीय की मदद के बाद आखिरकार बर्फीली मुश्किलों के बीच फंसी टीम सकुशल सुरक्षित स्थान पर पहुंच गई। मौसम विभाग के अनुसार देश के ज्यादातर हिस्सों से मॉनसून की विदाई शुरू हो चुकी है, जिसके कारण आने वाले दिनों में मौसम में काफी बदलाव देखने को मिलेगा।
2: बर्फबारी भी हुई थी पहाड़ों पर कुछ स्थानों पर, वहां से ठंडी हवाएं भी आ रही थी, साथ साथ में वर्षा गतिविधि भी हुई, क्लाउडी कंडीशंस बनी हुई थी, जिसकी वजह से जो तापमान है उसमें गिरावट देखी गई थी। हालांकि आने वाले समय में जैसे जैसे कंडीशंस जो है साफ होंगी, बादल भी कम हो जाएंगे, साथ साथ में जो ठंडी हवा है इसमें भी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होगा, तो ये जो अभी के टेम्परेचर चल रहे हैं इसमें इजाफा देखने को मिलेगा। देखिए मुख्य रूप से हम देखेंगे तो कोई खास जो है ऐसी वर्षा गतिविधि नहीं है, हालांकि थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जरूर जो हमारा राजस्थान का क्षेत्र है पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान वहां पर हो सकती है, साथ साथ में भारी वर्षा जो है पंजाब हरियाणा में कुछ स्थानों पर हो सकती है।
1: वहीं उत्तर पूर्वी राज्यों में आने वाले दिनों में कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। कुल मिलाकर पूरे देश के स्तर पर देखा जाए तो आने वाले हफ्तों में बारिश की मात्रा सामान्य से कम रहने की उम्मीद है। किन्नौर से विशेषर नेगी, धर्मशाला से पूजा शर्मा, शिमला से विकास शर्मा और चमोली से कमलन सिलोड़ी के साथ दिल्ली से मनीषा लड्डा, गुड न्यूज टुडे।
3: और अब चलते चलते आपको उन वीडियोस के साथ छोड़े जाते हैं जिन्हें सोशल मीडिया पर बेहद पसंद किया जा रहा है, क्योंकि इनमें से कुछ आपको हंसाएंगे, कुछ आपको गुदगुदाएंगे तो कुछ आपको इमोशनल कर जाएंगे।
1: स्टेज पर सजी धजी खड़ी इन नन्ही बच्चियों ने अपनी मासूमियत से हर किसी का दिल जीत लिया। भरतनाट्यम की प्रस्तुति के लिए
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
9: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लाल।
3: भारत ने एशियन गेम्स में जीता 7वां गोल्ड, महिला तीरंदाजी टीम ने चीन को हराया, 238 अंक के स्कोर के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी की। दिल्ली एनसीआर में नया ग्रैप लागू, एक्यूआई स्तर के मुताबिक 4 चरण में लगाई जाएंगी पाबंदियां, स्कूलों में हाइब्रिड पढ़ाई का मिलेगा विकल्प। रामनगरी अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारियां तेज, राम की पैड़ी का रंगरोगन का काम तेज, इस बार 30 लाख दीयों से जगमग होगी धर्मनगरी।
10: झांसी में विश्व शांति महायज्ञ का भव्य समापन, बैंड की प्रस्तुतियों ने बांधा समा, भगवान आदिनाथ के रथ को श्रद्धालुओं ने खींचा।
3: कुदरत की मेहरबानी बरकरार, मनाली में सीजन की दूसरी बर्फबारी, व्यापारियों के साथ साथ खिले पर्यटकों के चेहरे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख
2: उम्मीदों भरे पहर की खुशभरी शुरुआत, सुप्रभात, मैं हूँ आपके साथ गीतिका पंत, नई सुबह नई आशा, गुड न्यूज का मॉर्निंग डोज लेकर।
3: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ पूजा शर्मा, बिना रुके बिना थमे अगले एक घंटे गुड न्यूज की मैराथन दौड़ होगी, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं उन पांच खबरों पर जिनमें इंडिया के लिए शुभ समाचार।
0: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ।
2: शुभ समाचार की शुरुआत मौसम के साथ करेंगे। पहाड़ों पर एक बार फिर से मौसम कूल कूल हो गया है, बर्फबारी ने खूबसूरती में चार चांद लगा दिए हैं। गुलमर्ग से मनाली तक ऊंची चोटियां बर्फ की सफेद चादर से ढक गई हैं, हर तरफ बर्फबारी का खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा है। देवदार के पेड़ और पहाड़ बेहद आकर्षक नजर आ रहे हैं, यानी बर्फबारी के बीच पहाड़ों की खूबसूरती देखते ही बन रही है, तो ये नजारा भी होगा थोड़ी देर में आपके सामने।
3: उधर यूपी के भदोही में इंडिया कारपेट एक्सपो आयोजित होने जा रहा है, इसकी शुरुआत 4 अक्टूबर से होगी। इस एक्सपो में 65 देशों के 300 से अधिक कारोबारी शामिल होंगे। एक्सपो में 200 से अधिक भारतीय कालीन निर्यातक अपने उत्पाद पेश करेंगे और इसके लिए निर्यातकों ने नए और आकर्षक डिजाइन भी सैंपल तैयार किए हैं। खास बात यह है कि इस बार आयोजकों का ब्रिक्स देशों पर अधिक फोकस है, तो वहां भी आपको लिए चलेंगे।
2: तो बात एशियन गेम्स की भी होगी, जहां पदकों की संख्या 50 पार हो चुकी है। भारत ने एशियन गेम्स 2026 में 7वां गोल्ड मेडल जीत लिया है। टीम इंडिया ने महिला कंपाउंड टीम इवेंट में चीन को 238-234 से हराया। वहीं तीरंदाजी में भारतीय जोड़ी मिक्स इवेंट के फाइनल में पहुंच गई है। इसके अलावा भारतीय महिलाओं ने स्क्वाश में भी मेडल पक्का कर लिया है, तो इसकी पूरी मेडल टैली होगी थोड़ी देर में आपके सामने।
3: साथ ही कोलकाता में फुटबॉल प्रेमियों के बीच गजब का उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि 3 अक्टूबर को सॉल्ट लेक स्टेडियम में भारतीय टीम ब्राजील के साथ इंटरनेशनल फ्रेंडली मैच खेलेगी। यह पहला मौका है जब 5 बार की चैंपियन अब भारत में जलवा दिखाएगी। तमाम तैयारियां अंतिम चरण में है और इस मैच को लेकर फैंस में गजब का एक्साइटमेंट है, तो ये उत्साह भी आगे दिखाएंगे।
2: इसके अलावा युगांडा में टीवी एंकर बन गए राजा, युगांडा में नए राजा के चूरो राज्य में परंपरागत रीति से नए राजा का स्वागत हुआ। खास बात यह है कि बबीटो कबीले का नया शासक पहले टीवी एंकर हुआ करते थे, कौन है वो आगे आपको बताएंगे। फिलहाल वक्त हो गया फटाफट अंदाज में सुबह 9 बजे की 9 गुड न्यूज का।
3: जापान में चल रहे एशियन गेम्स से भारत के लिए शानदार खबर, भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने चीन को शिकस्त देकर गोल्ड मेडल पर किया कब्जा। चिकिता प्रतिका और ज्योति की तिकड़ी ने पूरे टूर्नामेंट में जिस तरह का संयम और सटीकता दिखाई, वहीं मेडल की संख्या की बात करें तो भारत के पास अब तक कुल 7 गोल्ड, 21 सिल्वर और 26 ब्रॉन्ज मेडल हैं, कुल मेडल की संख्या 54।
2: भिवानी में जेवलिन स्टार यशवीर सिंह के घर जश्न का माहौल है। एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल जीतकर यशवीर ने देश और अपने गांव का नाम रोशन किया है। उनकी शानदार कामयाबी पर गांव में खुशी की लहर है, ढोल नगाड़ों के साथ लोगों ने जमकर जश्न मनाया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी।
3: रामनगरी अयोध्या में इस बार का दीपोत्सव भव्य होने जा रहा है। राम की पैड़ी पर 30 लाख दीपों से रोशनी का अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। दीपोत्सव में ड्रोन शो, लेजर शो और आतिशबाजी खास आकर्षण होंगे। सरयू घाट पर 2100 वैदिक आचार्य महाआरती में हिस्सा लेंगे, तो वहीं 240 से ज्यादा मंदिरों और मठों में भी दीप प्रज्वलन किया जाएगा। देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए UPSTDC ने खास दीपोत्सव अयोध्या टूर पैकेज भी तैयार किया है।
2: ग्वालियर के ऐतिहासिक महाराज बाड़े के गोरखी परिसर में संध्या राजवंश की 300 साल पुरानी परंपरा निभाई गई। केंद्रीय मंत्री और संध्या राजवंश के महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सूफी संत मंसूर शाह की पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद लिया।
3: 3 दिन से थमी थी बाबा केदार की यात्रा, मौसम खुलने के बाद फिर से शुरू हो गई है। बारिश की वजह से यात्रा रोक दी गई थी और श्रद्धालु सोनप्रयाग में मौसम ठीक होने का इंतजार कर रहे थे। ऐसे में चौथे दिन जैसे ही केदारनाथ की पैदल यात्रा खुली यात्रा मार्गों पर रौनक लौट आई, पुलिस की मौजूदगी में श्रद्धालुओं को जत्थों में केदारनाथ के लिए रवाना किया गया।
2: फैशन की दुनिया में जॉर्जियो अरमानी ने महिलाओं के परिधानों का नया कलेक्शन लॉन्च किया है। एवोल्यूशन नाम के इस कलेक्शन में अरमानी के सिग्नेचर स्टाइल की झलक साफ दिखाई दी। आइवरी ब्लैक और सुनहरे रंगों को खास तौर पर शामिल किया गया। कलेक्शन में 80 के दशक से प्रेरित शार्प शोल्डर जैकेट्स, घुटनों तक की ट्राउजर्स, बोल्ड ज्योमेट्री और बॉडी स्कीमिंग इवनिंग गाउन पेश किए गए।
3: बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा आज मध्य प्रदेश के आगरमालवा जिले के नलखेड़ा पहुंचे। यहां पर उन्होंने प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की और माता के दर्शन भी किए। साथ ही मंदिर के मुख्य पुजारी ने गोविंदा का माता की चुनरी ओढ़ाकर स्वागत भी किया और गोविंदा के मंदिर पहुंचने की खबर जैसे ही फैली प्रशंसकों की भीड़ उमड़ गई। तेलंगाना के मुलुगु जिले के ऐतिहासिक मेदाराम समक्का सरलम्मा मंदिर में अभिनेता नानी ने विशेष पूजा अर्चना की। इसके बाद नानी ने सदियों पुराने तुलादान की परंपरा निभाई। मंदिर में तुलादान के तहत अपने वजन के बराबर गुड़ देवी को अर्पित करने की परंपरा है। नानी के भी अपने वजन के बराबर गुड़ माँ समक्का सरलम्मा को चढ़ाया। तो भारत अंडर 19 ने पहले यूथ टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को पारी और 48 रन से हराया। राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में खेले गए मैच में भारत ने पहली पारी में 494 रन बनाए, जबकि जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली पारी में 217 और दूसरी पारी में 229 रन पर ही सिमट गई। भारतीय टीम की इस जीत में लक्ष्य रायचंदानी के दोहरे शतक ने बड़ी भूमिका निभाई।

0: शुभ समाचार में आज सबसे पहले बात कूल कूल मौसम की करेंगे और पहाड़ों की खूबसूरती की भी करेंगे। पहाड़ों पर एक बार फिर मौसम कूल कूल हो गया है और पहाड़ों पर बर्फबारी ने खूबसूरती में चार चांद लगा दिए हैं। मनाली से लेकर धर्मशाला तक ऊंची चोटियां बर्फ की सफेद चादर से ढक गई हैं। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भी बर्फबारी का खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा है। गुलमर्ग की पहाड़ियों और ढलान सफेद बर्फ से ढक गए हैं। बर्फ की मोटी परत के बीच देवदार के पेड़ और पहाड़ बेहद आकर्षक नजर आ रहे हैं। गुलमर्ग की बर्फीली वादियां सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रही हैं। वहीं उत्तराखंड में भी ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ का शानदार नजारा देखने को मिल रहा है। हेमकुंड साहिब से लेकर केदारनाथ तक पहाड़ों की चोटियां बर्फ से लदी हुई नजर आ रही हैं। बर्फबारी के बीच पहाड़ों की खूबसूरती देखते ही बन रही है।
1: तो पहाड़ों की सभी खूबसूरत तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं मनाली में, जहां पर पहाड़ों की रंगत ऐसी है कि नजारों से हटाना नामुमकिन है। चारों तरफ बर्फी चादर बिछी हुई है, पहाड़ों की चोटियों पर सफेदी सी चमक है। तो ये तस्वीरें आप मनाली की देख रहे हैं। सितंबर में नवंबर जैसी ठंड मनाली में आ चुकी है, मौसम कूल कूल बना हुआ है और सैलानियों के लिए एक बहार बनकर ये बर्फ आई है और सफेद चादर में अब मनाली पूरा ढका हुआ नजर आ रहा है। भारी संख्या में सैलानी यहां पर पहुंच रहे हैं बर्फ का लुत्फ उठाने के लिए। तो कश्मीर से हिमाचल तक पहाड़ बर्फीले नजर आ रहे हैं और ये मनाली की तस्वीरें आप देख रहे हैं। मनाली में पहाड़ों पर मौसम बदल गया है और स्नोफॉल हुई है और इसी के साथ मौसम अब काफी ज्यादा ठंडा कूल कूल नजर आ रहा है।
2: मतलब हमें अंदाजा नहीं था कि स्नो मिलेगी, क्योंकि हमने रील वगैरह पे देखा था कि अभी मौसम काफी नॉर्मल चल रहा है, सब बर्फबारी नहीं हुई है। बाकी जब हम कल आए और हमने सुबह देखा तो मतलब मौसम काफी ऐसा हो गया था, बर्फ गिर रही थी, पानी आ रहा था थोड़ा बहुत। जब बाहर निकल के देखा तो पहाड़ों पर बर्फ जम रही थी। फिर जब हम लोहतांग पास गए तो वहाँ पे देखा पहाड़ पे तो बर्फ आ रही है। कल
3: बहुत ही सुंदर वैली हो रखी है इस समय घूमने आने के लिए और सरप्राइजिंग एक्चुअली आइडिया। स्नोफॉल की उम्मीद में हार्ड स्नोफॉल होगी, बट अभी गाजियाबाद यूपी में भी ठंडी हवाएं चल रही है, वहाँ भी बारिशें काफी हुई है, तो पता चल गया था कि यहाँ पे भी स्नोफॉल हुई है तभी वहाँ इतनी ठंडी।
0: और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं सीधे श्रीनगर, जहां डल झील की खूबसूरती इन दिनों लोगों को अपनी ओर खींच रही है। मौसम का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी यहां पहुंच रहे हैं। ठंडी हवाओं के बीच डल झील का शांत पानी, शिकारे की सैर और चारों तरफ नजर आती पहाड़ियों का खूबसूरत नजारा पर्यटकों के लिए किसी यादगार अनुभव से कम नहीं है। मौसम में ठंडक बढ़ने के साथ ही डल झील के आसपास की रौनक और भी ज्यादा बढ़ गई है। तो ये नजारा है श्रीनगर के डल लेक का। आप देखिए किस तरह से लोग जो हैं, पर्यटक जो हैं, वहां शिकारा राइड का मजा ले रहे हैं। मौसम भी बेहद सुहाना हो गया है, हल्की हल्की सर्दी अभी से पड़ने लगी है और पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर सी ढक चुकी है और लोग इस मौसम का मजा लेने के लिए सितंबर में नवंबर जैसी ठंड का एहसास लेने के लिए पहाड़ों की तरफ रुख कर रहे हैं। ये नजारा है श्रीनगर के डल लेक का, जहां लोग शिकारा राइड का लुत्फ लेते हुए नजर आ रहे हैं।
4: मैं अभी कल पहलगाम गया था, पहलगाम भी देख के आया, पूरे दिन का विजिट था वहां का, बढ़िया लगा। और अभी शाम के टाइम आके यहाँ रिटर्न, फिर डल लेक घूमे, डल लेक भी बढ़िया लगा। आज मेरा टूर गुलमर्ग के लिए है, अगर जिसको बर्फ़ देखना हो तो अभी एक डेढ़ महीने लेट आया, नहीं तो इसमें बर्फ़ कहीं है नहीं। बाकी ऐसे तो ग्रीनरी हर जगह है, कहीं भी जाइए हर साइड पे ग्रीनरी है, तो बेस्ट है। मौसम ठीक है, मौसम भी बहुत ठंडा नहीं है, नॉर्मल है।
1: देखिए कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक भारी बर्फबारी हो रही है, जिससे कि मौसम का मिजाज बदल गया है और तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। आमतौर पर मौसम का ये रंग नवंबर के आखिरी हफ्ते और दिसंबर की शुरुआत में दिखता है, लेकिन इस बार अक्टूबर की शुरुआत में ही मौसम मेहरबान हो गया है।

0: कश्मीर की वादियों में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में बर्फबारी के साथ बारिश और गरज चमक भी देखने को मिली है। यानी सितंबर के आखिरी दिनों में ही कश्मीर की पहाड़ियों ने सर्दियों की आहट दे दी है। गुलमर्ग के ऊंचे पहाड़ों पर ताजा बर्फबारी ने नजारे को बेहद खूबसूरत बना दिया है। आफरवाद पीक पर गिरी बर्फ ने पहाड़ों को सफेद चादर ओढ़ा दी है। बर्फ की सफेदी और बादलों की आवाजाही के बीच गुलमर्ग का मौसम सर्द एहसास करा रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में भी बर्फबारी से सजे खूबसूरत पहाड़ों का दीदार हो रहा है। कठुआ के ज्यादा ऊंचाई वाले कैलाश कुंड पहाड़ों और चतरगला बाईपास इलाके में ताजा बर्फबारी हुई है। ऊंचे इलाकों में मौसम बदलने के साथ ही करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फ से ढका नजारा दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग ने ऊपरी इलाकों में ठंड बरकरार रहने और हल्की बर्फबारी की संभावना जताई है। प्रशासन ने ऊंचाई वाले मार्गों पर यात्रियों को भी सावधानी बरतने की सलाह दी है। अगर आप भी पहाड़ों की इस ताजी रंगत का दीदार करना चाहते हैं तो कठुआ की सुंदर वादियां आपका इंतजार कर रही हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो सितंबर के आखिरी दिनों में यहां भी मौसम सर्द हो गया। सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के असर से कांगड़ा की धौलाधार पर्वतमाला ने एक बार फिर से बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। सितंबर में दूसरी बार हुई बर्फबारी से धौलाधार की ऊंची चोटियां चांदी के मुकुट की तरह चमक उठी हैं। बादलों के बीच बर्फ से ढकी चोटियों का ये नजारा बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है। धौलाधार की सफेद चोटियां, नीचे छाए बादल और बारिश से धुली हरियाली कांगड़ा की वादियों की खूबसूरती को चार चांद लगा रही है। सिर्फ धौलाधार ही नहीं, हिमाचल के दूसरे ऊंचाई वाले इलाकों में भी ताजा हिमपात हुआ है। किन्नौर, लाहौल स्पीति और कुल्लू की ऊंची चोटियों पर भी बर्फबारी हुई है। धर्मशाला और आसपास के इलाकों में बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई। सितंबर के आखिरी हफ्ते में ही मौसम ने ऐसा रंग बदला कि पहाड़ों पर सर्दी का एहसास होने लगा।
1: बीते 24 घंटों में प्रदेश के कई क्षेत्रों में हल्के से मध्यम बारिश के साथ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में एक दो स्थानों में हैवी रेनफॉल दर्ज की गई है। सबसे अधिक बारिश कांगड़ा स्टेशन में रिकॉर्ड की गई थी, लगभग 70 mm के आसपास। उसके उपरांत जो सेकंड हाईएस्ट है धर्मशाला में 60 mm के आसपास रिकॉर्ड की गई थी। वहीं जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं शिमला, सिरमौर, मंडी और किन्नौर, यहाँ पे मॉडरेट कैटेगरी की बारिश रिपोर्ट की गई। और जो हमारे ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं स्पेशली डिस्ट्रिक्ट किन्नौर, लाहौल स्पीति और कुल्लू में, और यहाँ पे हल्की बर्फबारी रिपोर्ट की गई।
0: सितंबर में बर्फ और बारिश की दस्तक बता रही है कि हिमाचल की पहाड़ियों पर सर्द मौसम ने एक बार फिर से कुछ जल्दी ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। ताजा हिमपात से हिमाचल में मनाली के पहाड़ों की खूबसूरती भी निखर आई है। ऊंची पहाड़ी चोटियों पर हुई ताजा बर्फबारी के बाद ये खूबसूरत नजारा दिखा। बर्फ की सफेद चादर में लिपटी पहाड़ियां और उन पर पड़ती सुबह की सुनहरी धूप, मानो आसमान से उतरकर सफेद रंग ने पूरी वादियों को अपनी आगोश में ले लिया हो। ताजा बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट आई है और मनाली की फिजाओं में ठंडक पड़ गई है। सितंबर के आखिर में मनाली का ये नजारा सर्दियों की आहट का एहसास करा रहा है। बर्फ से ढके पहाड़, ठंडी हवाएं और धूप में चमकती चोटियां, मनाली की खूबसूरती इस वक्त देखते ही बन रही है। धर्मशाला से पूजा शर्मा और शिमला से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: उत्तराखंड में भारी बर्फबारी के बाद अलग अलग ट्रैकिंग और पर्वतारोहण इलाकों में फंसे ट्रैकर्स और पोर्टर्स की सुरक्षित वापसी के लिए प्रशासन ने रेस्क्यू अभियान चलाया, जिसके तहत 27 और लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। जबकि सोमवार को कालिंदी बेस और ऑडन कोल बेस क्षेत्र से 40 सदस्यों को सुरक्षित निकाला गया था।
0: ये तस्वीरें हैं उत्तराखंड के उन ऊंचे पहाड़ों की, जहां इस वक्त बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। हर तरफ बर्फ से लदे पहाड़ और इन पहाड़ों के बीच ट्रैकर्स के रेस्क्यू के लिए उड़ता हेलीकॉप्टर, जो 27 जिंदगियों के लिए वरदान साबित हुआ। ये रेस्क्यू ऑपरेशन बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि रास्ते बर्फ से ढक चुके थे, मौसम लगातार चुनौती दे रहा था। ऐसे में जिला प्रशासन ने हेलीकॉप्टर्स के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और 27 लोगों को सुरक्षित हर्षिल पहुंचाया।
3: पर्वतारोही सतोपंत एक्सपेडिशन के पे जा रहे थे और हम वासुकी ताल पे हमारा बेस कैंप था। तब हमें 2 दिन की स्नोफॉल मिली और हम वहाँ ही अटक गए। 5 फीट के करीब स्नोफॉल गिरी थी वहाँ। और इस सभी के दौरान हमें जो प्रशासन की तरफ से मदद मिली है, बहुत बहुत बहुत अभिनंदन हम उनसे अपना प्रकट करते हैं। ADM मैम मुक्ता मिश्रा मैम ने हमें बहुत सपोर्ट किया, LTRF भी यहाँ पे मौजूद था, संजय सर यहाँ थे, और बहुत इम्पोर्टेंटली कर्नल सपाल यहाँ पे थे कुमाऊं रेजिमेंट के, जिन्होंने आर्मी का हमें हेलीपैड यूज़ करने का मौका दिया। बहुत ही अच्छा रहा हमारा रेस्क्यू।
0: इससे पहले सोमवार को कालिंदी बेस और ऑडिन कोल बेस क्षेत्र से 40 लोगों को सुरक्षित निकाला गया था। इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी जिला प्रशासन के स्तर पर की गई। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी प्रशांत आर्य कंट्रोल रूम से रेस्क्यू अभियान पर लगातार नजर बनाए थे, जबकि अपर ADM मुक्ता मिश्रा हर्षिल में मौजूद रहकर रेस्क्यू से जुड़ी व्यवस्थाओं की निगरानी कर रही थी।
4: काशी में हाई एल्टीट्यूड के एरियाज में एक्सपेडिशन और ट्रैकिंग ग्रुप्स जाते रहते हैं, अभी भी गए हुए थे सितंबर मंथ में ड्यू परमिशन लेके, लेकिन मौसम अचानक खराब होने के कारण वो दल फंस गए थे। इसलिए शासन के निर्देशों के क्रम में ट्रैकिंग एजेंसीज की रिक्वेस्ट पे हम एयर एविकेशन मिशन चला रहे हैं। इसमें कल 28 सितंबर को 40 लोगों को रेस्क्यू किया गया ऑडिंस कॉल और कालिंदी पास से। हर्षिल हेलीपैड में हमारी सभी स्टेक होल्डर, सभी डिपार्टमेंट, सेकेंड कुमाऊं रेजिमेंट, SDRF, सप्लाई डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम अवेलेबल है। जो सुरक्षित लोग आ रहे हैं उनके स्वास्थ्य परीक्षण और खान पान की व्यवस्था की गई है।
0: दो दिन तक चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना, NDRF, पुलिस, वन विभाग, आपदा प्रबंधन और नागरिक उड्डयन विभाग की टीमों ने अहम भूमिका निभाई, जिनकी बदौलत इन ट्रैकर्स और पोर्टर्स को नया जीवनदान मिला है। उत्तरकाशी से ओमकार बहुड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: अगर आप इस बार दीपावली के दौरान अयोध्या जाने का प्लान बना रहे हैं और खासतौर से दीपोत्सव में आपको शामिल होना है तो ये एक अच्छी खबर आपके लिए है, क्योंकि इस बार रामनगरी में दीपोत्सव में अलग ही माहौल दिखाई देगा। दरअसल देसी विदेशी पर्यटकों के लिए इस बार उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने एक खास योजना बनाई है, जिसके तहत दीपोत्सव अयोध्या टूर पैकेज तैयार किया गया है। इस टूर पैकेज में 6 से 8 नवम्बर तक श्रद्धालुओं को श्रीराम जन्मभूमि मंदिर, हनुमानगढ़ी जैसे कई और ऐतिहासिक जगहों के दर्शन कराते हुए अयोध्या के आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व से भी रूबरू कराया जाएगा।

0: हर साल सरयू के पावन तट पर बसी अयोध्या जब दीपों की रोशनी से जगमगाती है तो मानो आस्था, संस्कृति और परंपरा का अद्भुत संगम साकार हो उठता है। दीपोत्सव के अवसर पर लाखों दीयों की लौ अयोध्या की आध्यात्मिक आभा को और भी भव्य बना देती है। जैसे जैसे अंधकार मिटता है और दीयों की कतारों से रोशनी बिखरती है तो पूरी अवध नगरी ही एक दिव्य और मनमोहक दुनिया में बदल जाती है। लेकिन ऐसा नहीं कि रामनगरी में इस बार के इस भव्य दीपोत्सव समारोह की तैयारियां केवल दीपों की जगमगाहट तक ही सीमित रहेगी। दरअसल दीपोत्सव के वक्त यहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी कुछ विशेष किया जा रहा है। UPSTDC ने श्रद्धालुओं के लिए एक खास दीपोत्सव अयोध्या टूर पैकेज लॉन्च किया है। ये पैकेज महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और दूसरे राज्यों के श्रद्धालुओं के लिए है। इस टूर पैकेज के तहत श्रद्धालु राम मंदिर, हनुमानगढ़ी, कनक भवन और नागेश्वर नाथ मंदिर के दर्शन करेंगे। दीपोत्सव अयोध्या टूर पैकेज के साथ ही दीपोत्सव की तैयारियों में इस बार 30 लाख दीयों को जगमगाने का भी फैसला लिया गया है। यानी इस दौरान स्थानीय लोगों के साथ देसी विदेशी श्रद्धालुओं की भी जिम्मेदारी है कि वो दीपों की रोशनी के इस त्योहार में शामिल होकर पर्व की सुंदरता और उसकी आभा में चार चांद लगाएं। बता दें कि राम की पैड़ी को 30 लाख दीयों से जगमगाया जाएगा। इसके अलावा शानदार लेजर शो और 2100 ड्रोन शो आयोजित करने की भी योजना है। सरयू नदी के तट पर 2100 वैदिक पुजारी महाआरती करेंगे। वहीं दीप प्रज्वलन में 240 से ज्यादा मंदिर और मठ हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही रामकथा पार्क से लेकर राम की पैड़ी तक लगभग एक दर्जन जगहों पर खास कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जाहिर है अयोध्या में दीपोत्सव केवल दिया जलाने का उत्सव ही नहीं बल्कि भगवान राम के आदर्शों, मर्यादा और अवध नगरी की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को नमन करने का अवसर है। यकीनन इस साल 30 लाख दीयों की रोशनी, ड्रोन और लेजर शो और श्रद्धालुओं के लिए दीपोत्सव अयोध्या टूर पैकेज के साथ होने वाले कई और कार्यक्रम दीपोत्सव की रंगत को और बढ़ाएंगे। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और चलिए आपको लेकर चलते हैं उज्जैन महाकाल के दरबार में जहां हर दिन भक्तों का हुजूम उमड़ता है। आज इसी आस्था के दरबार में क्रिकेटर रिंकू सिंह भी पहुंचे और दर्शन पूजन कर महाकाल का उन्होंने आशीर्वाद लिया। महाकाल के दरबार में आस्था के इस रंग में रिंकू सिंह भी पूरी तरह से रंगे नजर आए। तो देखिए, महाकाल के दरबार में क्रिकेटर रिंकू सिंह पहुंचे हैं। उन्होंने वहां दर्शन किए, पूजा अर्चना की और भक्ति में पूरी तरह से लीन नजर आए क्रिकेटर रिंकू सिंह।
2: अच्छा लगा दर्शन करके, क्योंकि मैं पहली बार 2013 में आया था जब मैं अंडर-19 खेलता था, तो अब कितने साल बाद आया हूँ, तो काफ़ी अच्छा लगा दर्शन करके यहाँ पर। देश के लिए तो यही है कि बस हमारी टीम और ऊंचाई पे पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा वर्ल्ड कप जीते।
1: इन दिनों पितृ पक्ष में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भू वैकुंठ नगरी श्री बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं, जहां पर वो भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के बाद ब्रह्म कपाल तीर्थ में अपने पितरों का तर्पण और पिंडदान कर रहे हैं। तो तीर्थ पुरोहित से जानेंगे कि क्या है ब्रह्म कपाल तीर्थ में पिंडदान कराने का महत्व और दिखाएंगे आपको वो तस्वीर भी जब देसी ही नहीं बल्कि विदेशी श्रद्धालु भी बद्रीनाथ धाम आकर अपने पुरखों का पिंडदान करा रहे हैं।
0: जहाँ बहती है अलकनंदा की पवित्र धारा, उसी बद्रीनाथ के आंगन में पितरों की आत्मिक शांति के लिए पिंडदान हो रहा है। देवभूमि उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में जहाँ चार धाम यात्रा दर्शन के रंग बिखरे हैं, हर तरफ श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है, तो वहीं इन दिनों पितृपक्ष के दौरान भगवान विष्णु का ये धाम सिर्फ चार धाम दर्शन का केंद्र ही नहीं बल्कि पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता और स्मरण का भी पवित्र स्थल बना हुआ है। दरअसल यहाँ के ब्रह्म कपाल जी मोक्ष की कामना और पितरों के प्रति श्रद्धा जैसी भावनाओं को लेकर अच्छी खासी संख्या में श्रद्धालु तर्पण के लिए पहुँच रहे हैं, अपने पूर्वजों के निमित्त पिंडदान कर रहे हैं। श्राद्ध परंपरा का भगवान बद्री विशाल के आंगन में होना ही इन तमाम श्रद्धालुओं को पुरखों के प्रति सम्मान और आध्यात्मिकता की अनुभूति दे रहा है।
3: कहा गया है इस स्थान पर पिंड देने से सात पीढ़ियों के पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ पर भगवान बद्री विशाल के बाल मोक्ष से मनुष्य अपने पितरों को पिंड और तर्पण देता है, सात पीढ़ियों के पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और आप देख रहे हैं आजकल पितृपक्ष में काफी संख्या में लोग अपने पितरों को उद्धार के लिए धर्म का पानी आए।
0: पितरों की मुक्ति के लिए श्री हरि के इस पावन धाम की दिव्यता ही ऐसी है कि यहाँ कराए जाने वाले पिंडदान और तर्पण को लेकर श्रद्धालुओं का विश्वास अटूट है। यही कारण है कि ब्रह्मकपाल में पिंडदान और तर्पण की मान्यता और परंपरा को अब विदेशी भी आत्मसात करते दिख रहे हैं। दरअसल भारत आए सात रूसी तीर्थयात्रियों ने भी यहाँ विधि विधान के साथ अपने पितरों के निमित्त पिंडदान और तर्पण किया। वैसे पहले भी सनातनी परंपरा उसके प्रति आस्था विदेशियों को काफी आकर्षित करती रही है। ऐसे में बद्रीनाथ धाम में विदेशी श्रद्धालुओं का अपने पुरखों का पिंडदान एक बार फिर दर्शा रहा है कि आस्था की कोई सीमा नहीं होती। ब्रह्म कपाल में पिंडदान का धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कर इन विदेशी श्रद्धालुओं का सनातनी परंपराओं और मान्यताओं के प्रति भाव जता रहा है कि संस्कृति अलग हो सकती है लेकिन पूर्वजों के प्रति श्रद्धा का भाव कमोबेश सभी जगह पर एक ही जैसा है। चमोली से कमल नयन सिलोरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
1: और बुलेटिन में इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए एशियन गेम्स में भारत का जलवा।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ रही है।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: भारत ने एशियन गेम्स में जीता 7वां गोल्ड, महिला तीरंदाजी टीम ने चीन को हराया, 238 अंक के स्कोर के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी की।
12: दिल्ली एनसीआर में नया ग्रैप लागू, एक्यूआई स्तर के मुताबिक 4 चरणों में लगाई जाएंगी पाबंदियां, स्कूलों में हाइब्रिड पढ़ाई का मिलेगा विकल्प।
1: रामनगरी अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारियां तेज, राम की पैड़ी पर रंग रोगन का काम तेज, इस बार 30 लाख दीपों से जगमग होगी धर्मनगरी।
12: झांसी में विश्व शांति महायज्ञ का भव्य समापन, वैन की प्रस्तुतियों ने बांधा समा, भगवान आदिनाथ के रथ को श्रद्धालुओं ने खींचा।
1: पहाड़ों पर कुदरत की मेहरबानी बरकरार, मनाली में सीजन की दूसरी बर्फबारी, व्यापारियों के साथ साथ खिले पर्यटकों के चेहरे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।

0: फिर से स्वागत है आपका शुभ समाचार में। बात कर लेते हैं एशियन गेम्स की, जिसका आज भी भारत को मेडल में आस है। दरअसल महिला हॉकी में सेमीफाइनल में भारत का सामना आज दक्षिण अफ्रीका से होगा। कुश्ती के मुकाबले भी आज से शुरू हो रहे हैं, साथ ही तीरंदाजी में ओलंपिक कोटा भी दांव पर है। तो महिला ट्रैप व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड जीतने के 24 घंटे से भी कम समय के भीतर नीरू धांडा आज एक बार फिर से एक्शन में दिखेंगी।
1: वहीं बॉक्सिंग में प्रिया घंगास, लवलीना बोरगोहेन और कपिल पोखरिया मिशन गोल्ड को आगे बढ़ाएंगी। लिहाजा मेडल्स के लिहाज से आज का दिन भी भारत के लिए खास रह सकता है। वहीं मंगलवार को भारतीय खिलाड़ियों ने कई कीर्तिमान रचे। मंगलवार को एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल समेत भारत की झोली में कुल 8 मेडल आए।
0: इसी के साथ भारत के कुल पदकों की संख्या 53 हो गई है। 7 गोल्ड, 21 सिल्वर और 26 ब्रॉन्ज के साथ भारत मेडल टैली में नवे स्थान पर है। नीरू ढांडा ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए व्यक्तिगत स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीता।
1: इसी के साथ नीरू व्यक्तिगत ट्रैप इवेंट में एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। इसके अलावा आशिमी अहलावत और मनीष कीर की तिकड़ी ने वुमेन्स ट्रैप टीम इवेंट में सिल्वर पर निशाना साधा।
0: महिलाओं की 400 मीटर रिले रेस में भी भारतीय एथलीट्स में दमखम दिखाया और किरण पहल, एमआर पुवम्मा, प्राची चौधरी और विद्या रामराज की चौकरी ने विमेंस 4x400 मीटर रिले रेस में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है।
1: तो गुलवीर सिंह ने मेंस 5000 मीटर रेस में ब्रॉन्ज मेडल जीता। वहीं पूजा सिंह ने विमेंस हाई जंप फाइनल में 1.84 मीटर की छलांग लगाकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। एशियन गेम्स में जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीतने वाले यशवीर सिंह के घर भिवानी में जबरदस्त जश्न का माहौल है। उनके गांव देवसर में आतिशबाजी की गई और पूरे गांव ने अपने लाल की कामयाबी का उत्सव मनाया। इससे पहले यशवीर ने कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। परिवार को उम्मीद है कि यशवीर ओलंपिक में भी देश के लिए गोल्ड जीतेंगे।
2: बहुत खुशी है, खूब दिल में खुशी है, भगवान की दया से कई दिन तक बात देख रहे थे, बहुत खुशी है।
0: कोलकाता में फुटबॉल प्रेमियों के बीच गजब का उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि 3 अक्टूबर को साल्ट लेक स्टेडियम में भारतीय टीम ब्राजील के साथ इंटरनेशनल फ्रेंडली मैच खेलेगी। ये पहला मौका है जब 5 बार की चैंपियन भारत में जलवा दिखाएगी। तमाम तैयारियां अंतिम चरण में है और इस मैच को लेकर फैंस में गजब की एक्साइटमेंट है।
3: दुर्गा पूजा से पहले कोलकाता में फुटबॉल का रोमांच उमड़ने वाला है। सिटी ऑफ जॉय 3 तारीख को ब्राजील के साथ होने जा रहे फीफा फ्रेंडली मैच के लिए तैयार हो रही है। ब्राजील की टीम पहुंच चुकी है विवेकानंद युवा भारती क्रीडांगन में। इस ऐतिहासिक मैच के लिए तैयारियां अंतिम चरण में हैं। खास बात यह है कि इस फुटबॉल मैच के दौरान पश्चिम बंगाल की संस्कृति के रंग भी देखने को मिलेंगे। मेहमान खिलाड़ियों को माँ दुर्गा की प्रतिमाएं, दार्जिलिंग चाय, स्थानीय हस्तशिल्प से सजे गिफ्ट दिए जाएंगे, साथ ही खालिस बंगाली व्यंजनों के साथ डिनर की भी व्यवस्था की जा रही है। इस इवेंट को लेकर प्रशासन बेहद उत्साहित है। उम्मीद ये भी है कि ऐसे आयोजन से फुटबॉल की दुनिया में भारत का कद बढ़ेगा।
4: विश्व का जो एक बहुत बड़ा टीम, एक फुटबॉल पावर हाउस जिसको कहता है, वो ब्राजील नेशनल टीम फुल टीम आएगा। उसके बाद उरुग्वे नेशनल टीम आएगा, जो वही वर्ल्ड कप खेला है, वर्ल्ड कप जीता भी है पहले। तो उसके साथ साथ इसके बाद रशियन नेशनल वुमेन्स टीम भी खेलेगा इंडियन नेशनल वुमेन्स टीम के खिलाफ। तो एक के बाद एक इंटरनेशनल मैच हो रहा है और ये पहले बार हो रहा है पूरा भारतवर्ष में। और जिस तरह से पश्चिम बंगाल में हम लोग फुटबॉल को हम सब बहुत प्यार करते हैं, हम लोग एक रसगुल्ला को प्यार करते हैं तो आपको पता ही है, और फिर रसगुल्ला से भी ज्यादा फुटबॉल को प्यार करते हैं, फुटबॉल को पसंद करते हैं।
3: 10 महीने पहले इसी साल्ट लेक स्टेडियम में अर्जेंटीना के सुपरस्टार लियोनेल मेसी का इवेंट हुआ था, लेकिन इस बार पुरानी गलतियों से सबक लेकर पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि फुटबॉल के रोमांच में कोई खलल ना पड़े।
5: सब मिलकर के एक अच्छा मैच हो, इसकी प्रयास है। पहली बार भारत में ब्राजील खेल रहा है, अच्छी बात है, पिछले 80 वर्षों में कभी ऐसा हुआ नहीं है। और यदि इससे भारत के फुटबॉल के मान लीजिए कि इंटरनेशनल प्रेजेंस बनता है तो खुशी होगी, क्योंकि आमतौर पर भारत को एक बाजार के रूप से देखा जाता है।
6: वैसे मैदान की तैयारी में भी कोई कमी नहीं है। हम लोग अभी ब्राजील टीम की जो ड्रेसिंग रूम है उसी के अंदर है, और देख सकते हैं कि ये जो ड्रेसिंग रूम है ये जो लॉकर रूम है यहाँ पे हर एक प्लेयर्स की अलग अलग जो लॉकर्स है उसको यहाँ पे ब्लॉक कर दिया गया है। ये देख सकते हैं कि डॉगलस सैंटोस, डेनिलो मार्किनोस, गैब्रियल वैंडरसन, हुगो सूजा, पूरी ब्राजील टीम इस वक्त कोलकाता में आने वाली है और सामने की तरफ है रफीना, एंड्रिक, ब्रूनो गुइमारेस और यही जो स्टार प्लेयर्स है और उसके साथ साथ इस वक्त 07 स्टार प्लेयर उनका भी फोटो लगा हुआ है। ये जो है लॉकर रूम है युवा भारती क्रीड़ांगन की लॉकर रूम है, यहाँ पे हर तरीके से हर एक चीज की व्यवस्था रखी जा रही है, पूरी तरीके से डेकोरेशन जैसे चल रही है वैसे फैसिलिटीज भी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज है। ये जो मैदान है यानी कि स्वामी विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन जहां पे ये इतनी बड़ी मैच होने वाली है इंडिया वर्सेस ब्राजील और ब्राजील के साथ ये पहली बार जो है इंडिया में खेलेगा ब्राजील और इंडिया और यही जो मैच है इसको टारगेट करके आगे की विजन सेट करना है ऐसा ही सबका कहना है।
3: जाहिर है यहाँ फुटबॉल फैंस बेहद रोमांचित हैं क्योंकि अब 5 बार की चैंपियन के खिलाफ ब्लू टाइगर्स के दहाड़ने का वक्त आ गया है और हर फुटबॉल प्रेमी इस रोमांचक मुकाबले का गवाह बनना चाहता है। अनिर्बान सिन्हा रॉय, कोलकाता, गुड न्यूज टुडे।
1: और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं कालीन नगरी भदोही जो एक बार फिर हाथ से बने कालीन के वैश्विक बाजार के केंद्र में होगी। वहां 4 अक्टूबर से इंडिया कारपेट एक्सपो आयोजित होने जा रहा है। इस एक्सपो में 65 देशों के 300 से अधिक बायर शामिल होंगे। एक्सपो में 200 से अधिक भारतीय कालीन निर्यातक अपने उत्पाद पेश करेंगे। इसके लिए निर्यातकों ने नए और आकर्षक डिजाइन सैंपल्स तैयार किए हैं। खास बात यह है कि इस बार आयोजकों का ब्रिक्स देशों पर अधिक फोकस है।

0: ये है कारपेट एक्सपो मार्ट, जहां 4 अक्टूबर से इंडिया कारपेट एक्सपो आयोजित होने जा रहा है। ऐसे में एक्सपो को लेकर तैयारियां भी जोर शोर से जारी हैं। इन तैयारियों के तहत मार्ट में स्टॉल्स बनाने का काम तेजी से हो रहा है। बताया जा रहा है कि एक्सपो में 200 से ज्यादा भारतीय कालीन निर्यातक अपने उत्पाद पेश करेंगे। इसके लिए निर्यातकों ने नए और आकर्षक डिजाइन सैंपल तैयार कर दिए हैं। कालीन निर्यात संवर्धन परिषद के वाइस चेयरमैन असलम महबूब ने बताया कि अभी तक 325 बायर्स के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और ये संख्या और बढ़ सकती है।
1: इससे काफी एक्सपेक्टेशन है, जिस तरह से बायर्स का रुझान आ रहा है, जिस तरह से उनका रजिस्ट्रेशन आ रहे हैं, उससे हम लोग काफी होपफुल हैं कि फेयर बहुत अच्छा जाएगा। हमारा ये लैंडमार्क 50th फेयर भी है, उसके हिसाब से भी हमारी तैयारी है।
0: 4 अक्टूबर से शुरू हो रहा ये एक्सपो बायर्स और सेलर के बीच एक महत्वपूर्ण ब्रिज का काम करता है। एक्सपो में नए फैशन और डिजाइन सामने आते हैं, जिससे निर्यातकों को नए नए ऑर्डर्स मिलते हैं और बुनकरों को भी काम मिलता है। इस एक्सपो को लेकर कालीन निर्यातकों ने नए नए डिजाइन सैंपल फेयर में डिस्प्ले करने के लिए तैयार कर लिए हैं।
2: और ज्यादा इस बार फोकस नेचुरल प्रोडक्ट पर, जूट हो गया, रियल सिल्क हो गया, और ऐसे प्रोडक्ट की तैयारी हो रही है जिसका कॉस्ट कम हो, ताकि उसकी उसके तरफ बायर ज्यादा से ज्यादा जो है अट्रैक्ट हो और अच्छा काम हो।
0: आपको बता दें कि ईरान अमेरिका वॉर के कारण पिछले दिनों दिल्ली और जर्मनी में आयोजित होने वाला फेयर रद्द हो गया था, जिससे काली निर्यातकों में मायूसी थी। लेकिन अब भदोई में होने जा रहे इस एक्सपो से एक बार फिर काली निर्यातकों की उम्मीद जगी है। एक्सपो में अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, रशिया, कनाडा, इटली, स्पेन समेत विश्व के 65 देशों के बायर्स हिस्सा लेने वाले हैं।
3: ज्यादा से ज्यादा हम लोग ऐसे प्रोडक्ट को बनाएंगे या अभी इसे बनाना शुरू भी कर चुके हैं, जैसे पेटियान का होता है, जो सस्टेनेबल होता है, जो एनवायरमेंट को प्रॉब्लम या एनवायरमेंट को उससे हार्म नहीं होता है, ऐसे प्रोडक्ट को हम लोग बना रहे हैं और कस्टमर्स भी हमारे ऐसे ही प्रोडक्ट को मांग रहे हैं।
0: इस 50वीं इंडिया कारपेट एक्सपो के आयोजकों का कहना है कि इस बार ब्रिक्स देशों पर अधिक फोकस है, इसलिए यहां बायर्स के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। भदोई से महेश जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: चलिए अब आपको युगांडा के टूरो राज्य में हुए एक अनूठे उत्सव की झलक दिखाते हैं। यहां पर परंपरागत रीति से नए राजा का स्वागत हुआ। खास बात यह है कि बबीटो कबीले का एक नया शासक पहले टीवी एंकर हुआ करते थे। दरअसल 21 सदस्यों के दल ने एडवर्ड रुकिडी नाम के एक शख्स को राजा चुना और अब किजानांगमोमा की विधिवत ताजपोशी भी की जा रही है।
5: युगांडा के टूरो में मौजूद फोर्ट पोर्टल में उत्सव मनाया जा रहा है। नए राजा की ताजपोशी का जश्न मनाया जा रहा है। एडवर्ड रुकिडी किजानांगमोमा यहां के नए राजा चुने गए हैं, जिन्होंने पूर्व शासक ओयो नियम्बा कम्बाबा इरुगु रुकिडी फोर्थ की जगह ली है। ओयो नियम्बा का पिछले महीने 34 साल की उम्र में कैंसर से निधन हो गया था। यूं तो युगांडा एक संवैधानिक गणराज्य है, जहां एक निर्वाचित राष्ट्रपति शासन करता है, लेकिन औपनिवेशिक काल से पहले के यहां के 4 राज्य आज भी पुरानी परंपराओं और रीतियों के अनुसार चलते हैं। भले ही इनके पास कोई राजनीतिक शक्ति न हो, इसके बावजूद ये काफी प्रभावशाली राज्य हैं। इन्हीं में से एक है शाही बबीटो कबीला, जहां नए राजा की ताजपोशी का इस वक्त जश्न मनाया जा रहा है। नए राजा एडवर्ड रुकिडी किजानांगमोमा पहले एक टीवी एंकर हुआ करते थे। इस समारोह में उन्हें नया नाम भी दिया गया, एडवर्ड रुकिडी नियम्बोगो। किजानांगमोमा पूर्व शासक ओयो नियम्बा के चचेरे भाई हैं और शाही बबीटो कबीले की 21 सदस्यों वाली समिति ने बतौर शासक इनका चुनाव किया है। ताजपोशी के इस पारंपरिक उत्सव के साथ ही कबीले में उत्तराधिकार को लेकर चला आ रहा विवाद भी समाप्त हो गया और बबीटो कबीले को नया सरदार भी मिल गया, एडवर्ड रुकिडी नियम्बोगो। परंपरागत रीतियों और जश्न के साथ यहां नए राजा का शाही स्वागत किया जा रहा है। जाहिर है इस उत्सव में यहाँ की लोक संस्कृति के रंग भी हर ओर बिखरे नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: गुजरात के जूनागढ़ का ऐतिहासिक ऊपरकोट किला इन दिनों चर्चा में है। यहाँ एक भव्य लाइट एंड साउंड शो का आगाज हुआ है जिसने पर्यटकों का दिल जीत लिया। राजपूतों से लेकर मुगलों और नवाबों के दौर तक और फिर जूनागढ़ की आजादी के लिए लड़ी गई जंग तक इस गौरवशाली इतिहास को पर्यटकों के लिए किले की दीवारों पर लाइट एंड साउंड शो के जरिए उतारा जा रहा है।

0: अंधेरे में जगमगाता ऐतिहासिक ऊपरकोट किला, किले की दीवारों पर पड़ती रंग बिरंगी रोशनी, ये गाथा है जूनागढ़ की आजादी के लिए लड़ी गई उस ऐतिहासिक लड़ाई की, जिसमें संघर्ष था, संकल्प था और अपनी धरती को आजाद कराने का जुनून था।
1: धन्य हो गया, आज मेरा मस्तक दान में मांग कर तुमने मुझे इतिहास में नाम अमर करने का अवसर दे दिया।
0: ये कहानी है उस दौर की जब जूनागढ़ के इतिहास ने करवट ली, जब रियासत के भविष्य को लेकर उठे सवालों के बीच एक अस्थायी सरकार का गठन हुआ और जूनागढ़ को भारत में शामिल कराने के लिए एक निर्णायक संघर्ष शुरू हुआ।
1: उस दौरान उनकी रानियों में से एक सोमदे रानी अपने पुत्र को जन्म देती है और पुत्र दासी को सौंप कर कहती है,
2: बाल बाल जाओ बोली दर गाँव में जाकर मेरे धर्म भाई देवाय गोदर को कहना कि मेरे नौजवान को बड़ा करके जूनागढ़ की गद्दी पर बिठा के धर्म का पालन करे।
0: 1472 से शुरू होकर 9 नवंबर 1947 को जूनागढ़ की आजादी तक का ये सफर अब ऊपरकोट जिले की दीवारों पर रोशनी और आवाज के जरिए जीवंत हो रहा है।
1: फिर 12वीं बार जूनागढ़ पर चढ़ाई कर 12 बरस तक किले की घेराबंदी की थी, फिर भी ऊपरकोट का किला अड़िग रहा था।
3: जूनागढ़ का इतिहास 2500 साल पुराना है। 2500 साल पुराना इतिहास को 20 मिनट में दिखाना बहुत मुश्किल बात है, फिर भी इस लाइट एंड साउंड शो में ये सभी बातें दिखाई गई है। तो पूरे दुनिया के जो लोग हैं और टूरिस्ट है, विद्यार्थी है, वो जो लोग ऊपरकोट के ये लाइट एंड साउंड शो देखने के लिए आएंगे, उसको पता चलेगा कि जूनागढ़ का 2500 साल का पुराना इतिहास कैसा रहा था।
0: मोहम्मद घोरी के दौर से लेकर राजपूत और मुगलों के शासन तक, नवाबों के दौर से लेकर जूनागढ़ की आजादी की निर्णायक लड़ाई तक, हर दौर की कहानी को लाइट साउंड विजुअल इफेक्ट्स के जरिए पेश किया जा रहा है। इसे बनाने में करीब 4 साल की कड़ी मेहनत लगी है।
4: अच्छी बात यह है कि करीब 4 साल की मेहनत लगी है इसकी स्टोरी लाइन डेवलप करने में, लेकिन जो सभी का सबका अभिप्राय

0: इन्वॉल्विंग था कि एक एक सेकंड तक सभी लोग दर्शक उसमें इन्वॉल्व रहे थे, तो ये बहुत अच्छा अभिप्राय हमको मिला हुआ है।
1: इस लाइट एंड साउंड शो का मकसद है जूनागढ़ में आने वाले पर्यटकों के लिए रोमांच को बढ़ाना। यानी यहाँ सिर्फ किले की दीवारों को, प्राचीन संरचनाओं को देखकर पर्यटक वापस न लौटे, बल्कि इन दीवारों के पीछे छिपी कहानी को भी महसूस करें। लाइट एंड साउंड शो के प्रमोशन कार्यक्रम में करीब 200 लोगों ने हिस्सा लिया, जिसे देखने के बाद दर्शकों ने इसे सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि जूनागढ़ के इतिहास को करीब से महसूस करने वाला अनुभव बताया। कभी जर्जर स्थिति में पहुंच चुका ऊपरकोट किला आज अपने पुराने गौरव को फिर से हासिल कर रहा है। सवाणी हेरिटेज कंपनी की ओर से किले का रिनोवेशन और रेस्टोरेशन किया गया है। 28 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इसे पर्यटकों के लिए दोबारा खोला था। अब किले के 3 साल पूरे होने के मौके पर पूरे साल करीब 40 अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भार्गव जोशी के साथ जूनागढ़, कुन्नू स्टूडियो।
2: जापान में चल रहे एशियन गेम्स में भारत को आज दूसरा गोल्ड मेडल मिला है। खास बात यह है कि दूसरा गोल्ड भी आर्चरी में मिला है। इससे पहले भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने देश का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। फाइनल मुकाबले में चीन को शिकस्त देकर भारतीय टीम ने गोल्ड मेडल पर कब्जा जमा लिया है। तो आज भारत को तीरंदाजी में मिला दूसरा गोल्ड मेडल। तो पुरुष मिक्स कंपाउंड आर्चरी में आया गोल्ड और भारत के पास अब तक कुल 8 गोल्ड मेडल हो चुके हैं। चिकिता और साहिल ने कमाल कर दिखाया। तो भारत के पास 8 गोल्ड, 21 सिल्वर और 26 ब्रॉन्ज, कुल मेडल की संख्या 55। तो आज भारत को तीरंदाजी में मिला दूसरा गोल्ड मेडल और इसी के साथ फाइनल मुकाबले में चीन को शिकस्त देकर भारतीय टीम ने गोल्ड मेडल पर कब्जा जमा लिया। भारत के पास अब तक कुल 8 गोल्ड, 21 सिल्वर और 26 ब्रॉन्ज मेडल हैं। कुल मेडल की संख्या 55 हो चुकी है। तो भारत की तरफ से लगातार शानदार प्रदर्शन जारी है। पुरुष मिक्स कंपाउंड आर्चरी में आया गोल्ड और इसी के साथ भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने देश का सर फिर से गर्व से ऊंचा कर दिया। इंस्टा स्टोरी में अब आपको उन कलाकारों की इंस्टा रील दिखाते हैं जो अभिनय की दुनिया में तो कमाल कर ही रहे हैं, साथ ही साथ सोशल मीडिया पर अपने फैंस को हंसाने में भी पीछे नहीं है। देखिए कृष्णा अभिषेक की फनी इंस्टा स्टोरी।
3: भाई यार, कब से वेट लॉस के लिए ट्राई कर रहा हूँ, हो ही नहीं रहा है, क्या करूँ कि वेट लॉस हो जाए।
4: आपका दिनचर्या कैसा होता है, मतलब करते क्या हो सारा दिन?
3: भाई देखो, सुबह देखो 9 बजे एक तो ब्रेकफास्ट करता हूँ, पोहा उपमा कुछ खा लेता हूँ। उसके बाद 2 बजे लंच करता हूँ, 5 रोटी दाल सब्जी कुछ खा लेता हूँ। शाम को उपमा या पोहा जो बच जाता है वो शाम को खा लेता हूँ। रात को 9 बजे अपना डिनर हो जाता है।
4: बहुत सिंपल है, आपको साइकिल ब्रेक करनी है।
2: इसी के साथ इन तमाम खबरों के बाद शुभ समाचार में आज के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम अच्छी और पॉजिटिव खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
8: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से

0: कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है।
2: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
3: एशियन गेम्स में भारत का गोल्डन दिन, तीरंदाजी में मिला दूसरा गोल्ड मेडल, भारत के पास अब तक कुल 55 मेडल। दिल्ली एनसीआर में नया ग्राफ लागू, AQI सर के मुताबिक 4 चरणों में लगाई जाएंगी पाबंदियां, स्कूलों में हाइब्रिड पढ़ाई का मिलेगा विकल्प। रामनगरी अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारियां तेज, राम की पैड़ी पर रंग रोगन का काम तेज, इस बार 30 लाख दियों से जगमग होगी धर्मनगरी। झांसी में विश्व शांति महायज्ञ का भव्य समापन, बैंड की प्रस्तुतियों ने बांधा समा, भगवान आदिनाथ के रथ को श्रद्धालुओं ने खींचा। पहाड़ों पर कुदरत की मेहरबानी बरकरार, मनाली में सीजन की दूसरी बर्फबारी, व्यापारियों के साथ साथ खिले पर्यटकों के चेहरे।
2: सुंदर भी स्मार्ट भी एटम वर्क BLDC फैंस।
4: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे विदेश यात्रा के बारे में और विदेश में बसाने वाले योगों के बारे में। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक विशेष उपाय के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 30 सितंबर 2026 दिन बुधवार, तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, दोपहर 2:55 तक। नक्षत्र है भरणी नक्षत्र, प्रातः 7:36 तक। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं दोपहर 1:13 तक। राहु काल का समय दोपहर 12 से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं विदेश यात्रा के बारे में और विदेश में बसने के बारे में। विदेश यात्रा के योग के होने का अर्थ क्या है, कब व्यक्ति विदेश की यात्रा करता है, विदेश जाता है। देखिए, विदेश यात्रा का अर्थ होता है ज्योतिष में समुद्र पार करने की यात्रा। सामान्यतः पहले ऐसा मानते थे कि कोई भी लंबी यात्रा जिसमें कम से कम 3 लगें, 9 लगें, वो विदेश यात्रा समझी जाती थी। कुंडली में पंचम, नवम और द्वादश भाव मुख्य रूप से विदेश यात्रा से संबंधित होते हैं। अष्टम भाव की भी विदेश यात्रा में भूमिका देखी गई है। क्रूर और पाप ग्रहों की विदेश यात्रा में बड़ी भूमिका होती है। ज्योतिष में राहु एक ऐसा ग्रह है जो व्यक्ति को सबसे ज्यादा विदेश जाने में सहायता करता है। इसके बाद शनि और मंगल भी विदेश यात्रा में सहायता करते हैं। जब किसी व्यक्ति की शनि की साढ़े साती चले या शनि की ढैया चले तो भी व्यक्ति विदेश जाता है या विदेश यात्रा में सहायता मिलती है। मेष राशि, धन का लाभ इस समय आपको हो सकता है। परिवार में व्यस्तता रहेगी, किसी अतिथि का आगमन होगा। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, काम में व्यस्तता रहेगी, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, करियर में सफलता मिलेगी। वाद विवाद से बचाव करें, गणेश जी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिख रहा है। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। आपने कुछ लोगों को देखा होगा जो विदेश जा करके परमानेंटली वहीं बस जाते हैं, वहीं रह जाते हैं, बाकी जीवन उनका वहीं बीतता है। तो कब व्यक्ति विदेश जाकर स्थायी रूप से बस जाता है? आम तौर पर शनि या राहु के मजबूत होने पर ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति घर से दूर जाकर स्थायी रूप से बस जाता है। सूर्य अगर कुंडली में कमजोर हो या चंद्रमा अगर कमजोर हो तो ऐसे लोग भी विदेश जाकर स्थायी रूप से बस जाते हैं। वृषभ, कन्या, मकर, मिथुन, तुला और कुंभ राशि वालों के विदेश में बस जाने की संभावना ज्यादा होती है। जिनकी जन्मतिथि महीने की 2, 11, 20 या 29 हो उनके विदेश में बस जाने की संभावना ज्यादा होती है। जैसा आपको पहले बताया कि कुंडली में अगर पाप ग्रहों का प्रभाव हो, कुंडली का 12वां, 8वां या 4वां भाव अगर पीड़ित हो, निगेटिव इन्फ्लुएंस हो, तो व्यक्ति विदेश जाता है और उसके विदेश में बसने की संभावना बहुत होती है। सिंह राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाद विवाद से बचाव करें, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तुला राशि, करियर में बड़ी सफलता मिलती हुई दिख रही है, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। चोट चपेट से सावधान रहें। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, करियर में सफलता मिलेगी, परिवार में शुभ कार्य होंगे, कोई यात्रा इस समय हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि विदेश जाने में या विदेश यात्रा में बाधाएं कब आती हैं। अगर कुंडली में चंद्रमा या शुक्र मजबूत हों तो आदमी अपने मदर या मदरलैंड से दूर नहीं जा पाता, और अगर जाता है तो लौटकर वापस आता है। अगर कुंडली में शुभ ग्रहों की दशा चल रही हो तो भी विदेश यात्रा में या विदेश जाने में दिक्कतें आती हैं। अगर आपके पासपोर्ट के नंबर में या वीजा के नंबर में 1, 5 या 9 अंक की प्रधानता हो तब भी विदेश जाने में बाधा आती है। अगर किसी व्यक्ति की जन्म तारीख 4, 13, 22 या 31 तारीख हो तो या तो व्यक्ति बहुत बार विदेश जाता है या जीवन में ऐसे मौके ही नहीं आते, कभी नहीं जा पाता। अगर व्यक्ति की कुंडली जल तत्व प्रधान हो तो ये मदरलैंड से दूर नहीं जाने देती। व्यक्ति अपनी मातृभूमि से, अपने देश से दूर नहीं जा पाता। विदेश जाने में बाधा जरूर आती है। धनु राशि, धन की समस्याएं हल होंगी, करियर में कुछ बदलाव होगा, पुरस्कार सम्मान का लाभ मिलेगा। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य का अपने इस समय ध्यान बनाए रखें, सेहत का ध्यान दें, परिवार में विवादों से बचाव करें, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, धन का लाभ होगा, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, काम की अधिकता रहेगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं और विदेश यात्रा करने में बाधा आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो क्या उपाय करेंगे? शनि के तांत्रिक मंत्र का रोज शाम को जप करिएगा। मंत्र होगा ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का रोज शाम को 108 बार जप करें। कुंडली का जो नवम भाव है उसके स्वामी ग्रह को मजबूत करें। हल्के नीले रंग के लाइट ब्लू कलर के कपड़ों का खूब प्रयोग करें और एक बार नदी पार करके नाव से या स्टीमर वगैरह से कोई यात्रा जरूर कर लें। अगर ऐसा कर लेते हैं तो विदेश जाने की संभावना बन जाएगी। अब आप विदेश यात्रा तो कर लेते हैं, चले भी जाते हैं, चले भी आते हैं, लेकिन वास्तव में आप विदेश में बसना चाहते हैं तो इसके लिए क्या उपाय करेंगे? स्नान के जल में जरा सी हल्दी मिलाकर नियमित रूप से स्नान करें। एक कांच की छोटी सी शीशी में हल्दी भरकर अपने सिरहाने रख लें और रोज सुबह मां दुर्गा को एक लाल फूल अर्पित करें और माता से प्रार्थना करें कि आपको विदेश में बसने में सुविधा हो। देखिए, कलम या किताब को बिना वजह के, बिना कारण खुला हुआ मत रखिए। आपने किताब पढ़ ली, किताब बंद कर दीजिए। आपने लिखने का काम कर लिया, कलम बंद कर दें, उसका कैप लगा दें। अगर आप अपनी पेन या अपनी किताब कॉपी सामान्यतः खुला रखते हैं तो ऐसा करने से आपकी याददाश्त कमजोर होगी। अगर आपको सर से, ब्रेन से संबंधित कोई समस्या है तो क्या करेंगे? एक नारियल ले लीजिए, इस पर सिंदूर से स्वस्तिक बनाइए और सर पर से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज 9 बार घुमा लीजिए। उसके बाद एक बार में नारियल को पटक करके तोड़ दें, फोड़ दें। स्वास्थ्य की चिंताएं और समस्याएं दूर होंगी। इस उपाय को करने के साथ आप डॉक्टर का परामर्श भी माने, उनकी दवाइयां भी लें। 6 महीने में एक बार अगर आप ये उपाय करें तो आपको लाभ होगा। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
6: हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश करते हैं, राम जी को हृदय में रख करके प्रवेश करते हैं। आहा हा, श्री हनुमान जी महाराज लंका में घर घर जाते, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां अगणित जोधा। हनुमान जी हर घर में जाकर जानकी माता को देख रहे हैं, क्या यहां हमारी माँ है? नहीं। दूसरे घर में जाते, क्या यहां हमारी माँ है? नहीं। तो किसी ने हनुमान जी से पूछा, क्या आपने माँ को देखा? बोले देखा नहीं। तो पर कैसे पहचानोगे? अरे हम उनके हाव भाव से जानते हैं, जिनके पल पल हर पल राम जी होंठों पर होंगे, आंखों में उनके प्रति ललक होगी, वही हमारी माँ जानकी होगी। अच्छा हाँ, अब हनुमान जी घर घर जाते हुए एक भवन में देखा,

दशानन यानी रावण के मकान में हनुमान जी गए। अब रावण लेटा है अपने मकान में, लेकिन अति विचित्रता, हे हनुमान जी आपने ये लंका में क्या विचित्रता देखी? हनुमान जी बोले मत पूछो। नहीं नहीं बताओ। हनुमान जी कहते हैं आंजनेय पुस्तक में, उसमें बहुत प्यारा श्री चक्रधर सिंह जी हुए, उन्होंने बहुत अच्छी पुस्तक लिखी आंजनेय की आत्मकथा, बड़ी प्यारी पुस्तक है। उसमें वर्णन है हनुमान जी की लंका यात्रा। क्या वर्णन है! हनुमान जी वर्णन कर रहे लंका में रावण के घर का। बोले रावण अपने कमरे में लेटा है, भारी शरीर, 20 भुजाएं, 10 सिर, पान की पीक टबक रही, मद में एकदम मस्त, पी के खा के लेटा। इसमें क्या विचित्रता है? अरे पूछो मत। बहुत सी स्त्रियां अगल बगल लेटी, बड़ी सुंदर सुंदर स्त्रियां, कोई मृदंग बजाए हुए पकड़े लेटी, कोई तमूरा लिए हुए लेटी, कोई रावण की बाजू को दबा रही, कोई रावण के सिर को दबा रही, कोई रावण के तलवे को मल रही। उन सुंदर सुंदर स्त्रियों को देखकर हनुमान जी को लगा इनमें ही कोई हमारी मां तो नहीं है। थोड़ी देर देखें, सुंदरता देखें, अरे ये तो बड़ी सुंदर है, लगता हमारी मां है जानकी। लेकिन ऐसी नहीं हो सकती, चित्र तो सुंदर है, इनका चरित्र ठीक नहीं दिख रहा, ये हमारी मां नहीं हो सकती। बार बार सबको देखते देखते हनुमान जी को अपने ऊपर घृणा आ गई। क्यों? हनुमान जी ऊपर बैठे बैठे सोचने लगे मैं तो ब्रह्मचारी हूं, स्त्रियों को माताओं को इस अवस्था में देखना मुझ ब्रह्मचारी के लिए पाप है, पाप, मुझे नहीं देखना चाहिए। राम राम राम राम राम राम, अपराध हो गया, एक तो माता जी नहीं मिली, ऊपर से ये अपराध हो गया, मुझे तो इससे अच्छा मर जाना चाहिए। पर मन में विचार आया मरूं क्यों, अभी राम जी का काम तो हुआ ही नहीं, पर हमने लंका का घर घर देख लिया पर कहीं हमारी मां नहीं मिली, अब कहां मिलेगी। ऐसा विचार करके हनुमान जी रोने लगे, आंखों में आंसू आ गए, माता जी कहां मिलेंगी। रोते रोते हनुमान जी ने विचार किया, एक काम करते हैं, जब काम ना बने तो राम राम जपते हैं। अब गांव में घूमने लगे लंका में हनुमान जी, राम राम जपते हुए, राम श्री राम जय राम, जय जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम, बोलो।

0: जी महाराज ने देखा एक मकान के बाहर राम लिखा है, जय श्री राम,
1: जय श्री राम।
0: हनुमान जी खुश हो गए, वाह वाह वाह वाह वाह, लगता है ये हमारी पार्टी वाले का मकान। जैसे किसी दूसरे प्रदेश में कोई पार्टी का कार्यकर्ता जाए और अपनी ही पार्टी वाले का झंडा देख ले तो खुश हो जाता कि अपनी पार्टी वाला है, ऐसे ही हनुमान जी लंका में जाकर आह रामायुध अंकित गृह शोभा वरणी न जाए, नव तुलसी का वृंद तय देख हरस कपिराय। हनुमान जी ने देखा दरवाजे के बाहर राम लिखा, तुलसी का पौधा रखा, आहा लगता हमारी पार्टी वाला है, लेकिन ये तो लंका है, लंका में कौन राम जी का भगत है।

ये हनुमान जी मन में सोच ही रहे थे, तब तक उस घर का मालिक उठ गया, जाग गया। क्यों जागा? क्योंकि आज तक लंका में कोई ये मंत्र ही नहीं जपा। कौन सा मंत्र? श्री

बोलते हैं। आज के जमाने में बहुत उल्टा हुई गवा, मोबाइल देखते हैं। अच्छा, बार बार कुछ लोग मोबाइल

आजकल लोग अपना मोबी आन चेक करते हैं। राम राम राम राम। भैया पुराने जमाने में सोकर कोई उठता था, पृथ्वी माता को प्रणाम करता था, हाथों को देखता था, हथेलियों को मलता था। राम जी जब उठते थे तो

इस शिक्षा घर लेके जाओ, जो बालक बालिका प्रातः काल उठकर अपने से बड़ों को प्रणाम करता है, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर विद्या यशो बलम, चार चीजें उसकी बढ़ती हैं, आयु बढ़ती, विद्या बढ़ती, बल बढ़ता, यश बढ़ता। मेरे युवान भाइयों, युवा बहनों, हम प्रार्थना करें, एक बात तुम याद रखना, झुकते वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो एक मुर्दे की पहचान होती है। प्रातः काल जाग कर, पहले के जमाने में कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य तु सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम, वर्तमान में प्रभाते कप दर्शनम, राम राम राम राम राम राम। इसलिए भैया विभीषण सुंदर कांड पढ़ो, विभीषण जी जागते क्या कर रहे हैं, जरा पढ़िए राम।

0: हनुमान जी ने देखा विभीषण जी राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम कहते हुए जागे। सज्जन की पहचान क्या? सज्जन की पहचान ही है जो प्रातः काल भगवान से शुरू करे वो सज्जन, और जो प्रातः काल खाने पीने से शुरू करे वो दुर्जन। बोलो सीताराम,
1: सीताराम।
0: बोलो बोलो बोलो बोलो। बुरा ना मानना, और यदि तुम बुरा मान भी जाओ तो हमें कौन सा तुम्हारे घर रोटी खाने आना है। हाँ सुनो, अब और सुनो, खरी खरी सुनो। खाना पीना तो ठीक है, कुछ लोग सुबह सुबह से ही खाते पीते नहीं, पीते खाते हैं। आ आ, अरे राम राम राम राम, खाते पीते नहीं है, पीते खाते हैं, और दोनों में अंतर है। कोई अमीर आदमी का लड़का हो तो क्या कहते, खाते पीते घर का है, और कोई धीरे से कह दे खाते पीते घर का तो है पर पीता खाता भी है, सब मामला गड़बड़ हो जाता है। बोलो सीतारा, जोर से बोलो और जोर से बोलो। इसलिए मेरे श्रोता, मेरे प्रियजनों, हमारी प्रार्थना है प्रातः काल उठते ही भगवान का नाम लो, श्री विभीषण जी से सीखो। प्रातः काल हनुमान जी महाराज को देखकर राम राम तेहि सुमरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। विभीषण जी हनुमान जी के पास आ गए। हनुमान जी ब्राह्मण का भेष बना के मिले,

क्या राम जी के भक्त हैं या राम जी के दास हैं या राम जी ही हैं? हनुमान जी बोले क्यों? बोले आपको देख करके प्रेम उमड़ रहा, हर्ष हो रहा। देखो ये पहचान है भक्त की। पूछो क्या पूछो। कुछ लोग नजदीक बैठते हैं तो इतना बुरा लगता कि ये कब चले जाएं। हाँ, कुछ लोग हमारे पास आते बात करने, हमको 5 मिनट चाहिए। हाँ बैठो बैठो बैठो। और जब उसकी एनर्जी देखते हैं 1-2 मिनट में ही लगता यार कब चला जाए। और कुछ लोग ऐसे होते जिनके पास बैठते ही लगता और बैठे रहो और बैठे रहो और बैठे। ये ऑरा जो है ना, इसका बड़ा प्रभाव है माई बाप। ऑरा कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? ऑरा। इसका बड़ा प्रभाव है। यदि तुम जपी तपी भजनानंदी रहोगे तो कोई तुम्हारे पास 5 मिनट भी बैठेगा ना तो उसे लगेगा और बैठ जाए। और यदि तुम खराब रहोगे गड़बड़, तुम किसी के पास बैठोगे तो उसको लगेगा कब खिसक जाओ। हाँ, हनुमान जी का ऑरा बड़ा प्यारा है। विभीषण जी कह रहे देख कर कि तुम हरि दासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीत अस होई। आप कौन है? हनुमान जी ने अपना परिचय दिया। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। अच्छा देखो, इस दोहा में भी, छठवें दोहा में कितना गूढ़ छिपा। हनुमान जी ने नाम बाद में बताया। तब हनुमंत कही सब राम कथा, पहले कथा सुनाई फिर नाम। मतलब हनुमान जी सम्मान को नहीं चाहते, राम को चाहते हैं। पहले राम जी की महिमा बताई फिर अपनी बताई। पुत्र वही है जो पहले माता पिता का परिचय दे फिर अपना परिचय दे। शिष्य वही है जो पहले गुरु का परिचय दे फिर अपना परिचय दे। भक्त वही है जो पहले अपने भगवान का परिचय दे फिर अपना दे। ये हनुमान जी का संकेत छुपा। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। हनुमान जी ने अपना नाम बताया, राम कथा बताई। तो विभीषण जी बोले अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, जानकी माता की खबर लेने आए हो? हाँ हाँ हाँ, अच्छा बहुत बढ़िया। हनुमान जी बोले एक बात बोले। विभीषण जी बोले बोलो। हनुमान जी बोले भैया तुम हमें जानकी माता का पता बता दो, हम तुम्हें राम जी का बता दें। तुम्हें भी एक बीमारी है और हमें भी एक बीमारी। विभीषण जी बोले कौन सी बीमारी? हनुमान जी बोले तुम्हें बीमारी है कि तुम्हें जानकी माता तो मिल गई, राम जी नहीं मिले। और हमें भी एक बीमारी है, राम जी मिल गए माता जी नहीं मिली। एक काम करो, तुम राम जी के दर्शन कराने का हमसे वचन ले लो और हमें जानकी माता के दर्शन करा दो। तुम्हारा भी काम बन जाएगा, हमारा भी

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी जोड़ों का दर्द है, यानी घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे का दर्द, तो ये शो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनकी उम्र 70 साल से 100 साल तक है, और इस उम्र में भी इन लोगों को जरा भी जोड़ों का दर्द नहीं है, यानी ये लोग इस उम्र में भी कहीं जाने के लिए, उठने बैठने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है। एक लाइन में कहें तो ये लोग इस उम्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर है।
7: मैं पिछले 1 साल से आयुर्वेदिक महाशक्तिशाली फॉर्मूला ले रहा हूँ, फौजी 360 इसका नाम है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
8: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है, अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
9: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैनू जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है, अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
6: फौजी 360 को अब तक जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किया है, उन सभी लोगों को जोड़ों के पुराने से पुराने दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे के दर्द से पूरी तरह आजादी मिली है। और ये दावा हम नहीं, वो लोग खुद कर रहे हैं जो फौजी 360 इस्तेमाल कर चुके हैं।
10: इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं, और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
11: और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसे हर बंदा ले सकता है, डायबिटीज वाला मरीज ले सकता है, ब्लड प्रेशर वाला मरीज ले सकता है, और मेरा खुद का दर्द खत्म हुआ यार, इसीलिए मैं खुल के बताता हूँ कि ये फौजी गजब की चीज है।
6: फौजी 360 के सिर्फ एक कोर्स के बाद 80-90 साल के बुजुर्ग भी जवानों की तरह सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पोते पोतियों को गोदी में लिए घंटों उनके साथ खेल रहे हैं।
12: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने।
6: ये बात सुनने में बड़ी हैरान करने वाली है, पर इन बुजुर्गों ने इंटरनेट पर प्रूफ के साथ वीडियोस भी अपलोड करे हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है और जोड़ों के दर्द के तेल और स्प्रे बेचने वाले दुकानदार परेशान है, क्योंकि फौजी 360 लेने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी इन जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाली दवाएं जैसे तेल, गोली और स्प्रे के चक्कर में दोबारा कभी नहीं फंसेगा।
13: 3 साल से आंटी जी के घुटनों में इतना दर्द था कि इनका घुटना मुड़ता भी नहीं था, जरा भी नहीं मुड़ता था, और आज की स्थिति देखते हैं आप। ये देखिए, इनका पूरा घुटना मुड़ रहा है, हॉस्पिटल खुद चल के आई हैं, और ये सब कमाल हुआ है फौजी 360 से। हम रिपोर्ट से समझते हैं, देखिए इनके पुरानी रिपोर्ट है, पूरी घुटने जकड़ चुके थे, जाम हो चुके थे, जिसके कारण घुटनों में पूरी तरीके से मूवमेंट खत्म हो गया था। और आज की डेट है, जब से इन्होंने फौजी 360 यूज करना शुरू किया है, उसके बाद उनके घुटनों में एक तरीके से नई जान आई है। और हमें इतना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि लोगों के पैसे बच रहे हैं और लोगों को फौजी 360 जैसे नेचुरल प्रोडक्ट से आराम मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिन भी लोगों को जोड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है, एक बार फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
6: फौजी 360 के इफेक्ट्स और रिजल्ट्स को जानने के लिए हमने बहुत से एक्सपर्ट से बात करी, और लगभग सभी का यही कहना था कि फौजी 360 जोड़ों के दर्द जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे के दर्द के लिए राम बाण की तरह काम करता है।
14: किट में मिलने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं जैसे तेल, स्प्रे, ये सिर्फ ऊपरी और टेम्परेरी राहत देते हैं, और वहीं फौजी 360 शरीर के अंदर जाकर जोड़ों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
15: ये साहिल जी हैं, 2 महीने पहले आए थे, कह रहे थे मेरे दोनों घुटने बदल दो क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी इन्हें चलने फिरने में। मैंने कहा हम पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, आप फौजी 360 का एक कोर्स लेके देखिए, फिर मिलते हैं। आज आए हैं, बताइए सर कैसे रिजल्ट मिले आपको, क्या स्थिति है अभी?
14: पहले तो जितना धन्यवाद आपको दूं उतना कम है डॉक्टर साहब, क्योंकि पूरा चल लेता हूं मैं मोटरसाइकिल चलाने लगा हूं वापस से अपनी, अब बिल्कुल भी बुरी स्थिति नहीं है, एकदम बिल्कुल दर्द खत्म हो चुका है। अब तो आप मुझे बोलो 5 किलोमीटर चले जाओ, मैं बिल्कुल चले जाऊंगा, अभी भी सीढ़ी चढ़ के आया हूं हॉस्पिटल में।
6: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
12: 2 साल से घुटने और कमर के कारण पलंग पकड़ लिया था, सब पलंग पे ही हो रहा था, अग्ना मुतना भी पलंग पे हो रहा था, जरा भी नहीं चल पाता था। 3 महीने से ये फौजी 360 पाउडर ले रहा हूँ, अब खुद से उठ जाता हूँ, बाथरूम हो जाता हूँ, चल फिर लेता हूँ, बहुत आराम है, बहुत राहत है।
6: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है, और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
10: रोज 150 सीढ़ी चढ़कर मैं मेरे भोले बाबा के मंदिर जाती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है मेरे घुटनों में, और ये कमाल किसी तेल या स्प्रे से नहीं हुआ है, क्योंकि उनसे कुछ होता ही नहीं है। मुझे तो फायदा हुआ है फौजी 360 से। अरे कमाल का ट्रीटमेंट है, इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं, और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
6: दुनिया के किसी भी तेल या स्प्रे के साथ कभी भी कोई गारंटी नहीं मिलती, यानी दर्द खत्म होगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं, लेकिन फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है। यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले, तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
16: 15 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, तब से शरीर के हर कोने में दर्द बना रहता था, होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, ये तेल, वो स्प्रे, सब ट्राई कर लिया, मगर आराम मिला 3 महीने पहले इस फौजी 360 से। अब कसम खा के बता रहा हूँ, जरा भी दर्द नहीं है शरीर में।
10: घुटने के दर्द के कारण मैं चल भी नहीं पाती थी, पर ये जब से फौजी 360 लिया है ना, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। अब आप देखो, मैं घर का पूरा काम खुद कर लेती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है।
17: 5 साल से तो मैंने नमाज भी अदा नहीं की थी, क्योंकि घुटना मेरा मुड़ता ही नहीं था। अब घुटने बदलवाने के लिए जितने पैसे भी नहीं थे कि घुटने बदलवा लें इस उम्र में, फिर ये फौजी 360 जब से लेना शुरू किया है, अब मैं खुद चल लेता हूँ, खुद का काम पूरी तरीके से कर लेता हूँ, और जो मैंने पलंग पकड़ लिया था ना वो वहाँ से बच गया हूँ मैं। अब ये तो ताकत है फौजी 360 की, ये अल्लाह की दुआ से कम नहीं है फौजी 360। अब खुद का काम मैं खुद से करता हूँ बिल्कुल।
18: हमारे नेपाल में पहाड़ी इलाका है तो चलना फिरना बहुत होता है, जोड़ों में बहुत दर्द का प्रॉब्लम शाप को रहता है, पर हमने कभी तेल या स्प्रे नहीं लगाते, कुछ नहीं होता उससे। सारे लोग मेरी उम्र के यहाँ फौजी 360 लेते हैं, बहुत कमाल का दवाई है, बिल्कुल भी जोड़ों में दर्द नहीं है इसको लेने से।
6: अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों का दर्द अंदर से पूरी तरह ठीक हो सके और आपको पूरी तरह आराम मिल सके, तो सिर्फ एक कॉल करके इस कमाल के आयुर्वेदिक फॉर्मूले फौजी 360 को अपने घर मंगा सकते हैं और जोड़ों के दर्द से पूरी तरह आजादी पा सकते हैं।
19: बॉलीवुड का एक गाना है ना, लंदन देखा, पेरिस देखा और

0: आज तक नहीं हुआ था।
1: फौजी 360 के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारी टीम उस आयुर्वेदिक आश्रम तक पहुंची जहां फौजी 360 बनाया जाता है और उन एक्सपर्ट से बात करी और वो सीक्रेट जानने की कोशिश करी कि कैसे सिर्फ एक फॉर्मूले से लोगों के जोड़ों का दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, पूरी तरह ठीक हो रहा है।
2: इसमें कुछ ऐसी औषधियां हैं जो आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है, जो आपके लिगामेंट में जो फ्लूइड की कमी हो गई है ये उसे दोबारा रिस्टोर करने में मदद करता है, और साथ ही दूसरी दवाओं से ये बेहतर इसीलिए है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, इसे ब्लड प्रेशर का मरीज ले सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह सुरक्षित है और आपको पहले दिन से फायदा दिखने लगेगा। ये ताकत है फौजी 360 की। बस यही कारण था कि हमने सोचा कि अब समय आ चुका है लोगों की, जनता की सेवा करने का और घर घर इसे भिजवाने का। तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं आप इस पर फोन कर सकते हैं, हमारे केंद्र पर डायरेक्ट फोन होगा, आप अपनी समस्या बताइए। अगर आपको बात सही लगती है, फौजी 360 आपको लगता है कि हाँ अब समय है कि जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक करना है, तो आप इसे मंगा सकते हैं। और साथ ही इसमें कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो आपको पूरे समय आपके शरीर में चुस्ती बनाए रखता है।
1: फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
3: फौजी 360 मार्केट में मिलने वाले दूसरे जो पेन किलर ऑयल्स होते हैं, स्प्रे होते हैं, उनसे कैसे अलग है मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूँ कि ऐसा क्या है इस ट्रीटमेंट में जो इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है। देखिए, कोई भी तेल या स्प्रे कैसे काम करता है सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आपके दर्द वाले हिस्से पे जब आप तेल लगाते हैं तो ये बाहर से आपके उस पर्टिकुलर एरिया को सुन्न कर देता है, मतलब आपके बॉडी के अंदर दर्द तो रहता है, उस जोड़ के अंदर दर्द तो है, और वहीं फौजी 360 जो है ये अंदर से काम करता है, क्योंकि जब आप इसे कंज्यूम करते हैं बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो जोड़ों को मजबूत बनाता है अंदर से, जो जोड़ों की चिकनाहट कम हो गई है ना ये उसको दोबारा लौटाता है। तो ये एक अंदर से काम करने वाली चीज है, यानी ये पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से ठीक करता है, और वहीं तेल और स्प्रे सिर्फ टेंपरेरी राहत देते हैं। तो आप अगर अभी भी जोड़ों के दर्द के लिए तेल या स्प्रे यूज कर रहे हैं तो आप आज से ही वो सब बंद कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे बर्बाद करने की बात है और टेंपरेरी रिलीफ की बात है। अगर आप पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आप एक बार ये फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
4: पिछले महीने मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी तो बहुत दर्द रहता था पेट में, डॉक्टर ने कहा कुछ L1 L2 का कुछ तो बताया था, पर इन्होंने फौजी 360 लाके दिया और उससे इतना आराम हुआ है कि अब जरा भी दर्द नहीं है। मम्मी पापा जी ने भी लेना शुरू किया है और उनको भी जो घुटनों में दर्द था उन्हें भी राहत मिली है। तो हर घर में मुझे लगता है ये फौजी 360 होना ही चाहिए।
5: मैं तो 12 महीने ही केदारनाथ बाबा के चरणों में ही रहता हूँ, और यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि ठंड के चक्कर में पूरे समय शरीर अकड़ा हुआ रहता है, सारे जोड़ में बड़ा दर्द बना रहता था, पर जब से ये फौजी 360 किया है ना शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता, बर्फ में भी चल लेता हूँ, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। ये ताकत है इस आयुर्वेदिक फौजी 360 की।
1: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
6: टीवी पे फौजी के बारे में देखा तो मैंने फोन करके फौजी 360 को सीधा घर मंगा लिया, क्योंकि 3 साल से कमर में इतना भयंकर दर्द था कि घर के सारे कामों के लिए मैं पूरी तरीके से बाइयों पे निर्भर हो चुकी थी। सिर्फ 15 दिन हुए हैं और अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है, कमर में जरा भी दर्द नहीं है, इतना शक्तिशाली है ये फौजी 360।
7: बिना सहारे के मैं 2 कदम भी नहीं चल पाती थी, पूरे समय बहू और बेटे की मदद ही लेनी पड़ती थी, पर जब से ये फौजी 360 लिया है कमर में घुटने में जरा भी दर्द नहीं है। अब सीढ़ियां चढ़ जाती हूँ, उतर जाती हूँ, चल लेती हूँ आराम से, इधर का सारा काम कर लेती हूँ, अब दर्द में पूरी तरीके से राहत है।
8: मेरी उम्र 88 साल है, रोज 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, लेकिन फिर भी जरा भी दर्द नहीं है। ये शक्ति है फौजी 360 की।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो या या कंधे का दर्द हो या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
0: एक साल पहले दोनों घुटने बदलने के लिए बोल दिया था,

0: मगर मैंने घर बैठे आयुर्वेद के एक फॉर्मूले से अपने घुटने और जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक किया है और अब मैं वो सब कर सकता हूँ जो जवान आदमी भी नहीं कर सकता। आप में दम हो आप करके बताओ। जोड़ों के दर्द के लिए जो भी लोग तेल या स्प्रे लगाते हैं ना, उन्हें आज से ही ये सब बकवास चीजें बंद करना चाहिए। इससे कुछ नहीं होता है क्योंकि जोड़ों के दर्द का इलाज अंदर से होता है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में यानी घुटने कमर कहीं भी जरा भी दर्द नहीं और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
1: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
2: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो कहीं चलना हो बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
3: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है मैनू जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो या कंधे का दर्द हो या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
4: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने का।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 अपने घर मंगा सकते।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होगी। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर रात सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लाल।
3: एशियन गेम्स में भारत का गोल्डन दिन, तीरंदाजी में मिला दूसरा गोल्ड मेडल, बॉक्सिंग में प्रिया घंगास को ब्रॉन्ज। दिल्ली एनसीआर में नया ग्रैप लागू, एक्यूआई स्तर के मुताबिक 4 चरणों में लगाई जाएंगी पाबंदियां, स्कूलों में हाइब्रिड पढ़ाई का मिलेगा विकल्प। रामनगरी अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारियां तेज, राम की पैड़ी पर रंग रोगन का काम तेज, इस बार 30 लाख दियों से जगमग होगी धर्मनगरी। झांसी में विश्व शांति महायज्ञ का भव्य समापन, बैंड की प्रस्तुतियों ने बांधा समा, भगवान आदिनाथ के रथ को श्रद्धालुओं ने खींचा। पहाड़ों पर कुदरत की मेहरबानी बरकरार, मनाली में सीजन की दूसरी बर्फबारी, व्यापारियों के साथ साथ पर्यटकों के भी खिले चेहरे।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव। और देखिए, बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक शानदार खबर के साथ जो इस वक्त एशियन गेम्स से आ रही है। आपको बता दें कि एशियन गेम्स में भारत लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है। और बॉक्सिंग की अगर हम बात करें तो बॉक्सिंग में प्रिया घंगास ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया है। महिला 60 किलोग्राम वर्ग कैटेगरी में प्रिया घंगास ने ये मेडल जीता है। और इसी के साथ भारत के पास अब तक कुल 8 गोल्ड, 21 सिल्वर और 27 ब्रॉन्ज मेडल हैं। और अगर कुल मेडल टैली की हम बात करें तो 56 मेडल हो गए हैं भारत के पास। तो लगातार बेहतरीन प्रदर्शन भारत की ओर से। और एक और भारत की बेटी ने नाम रोशन किया है। आपको बता दें कि 8 गोल्ड, 21 सिल्वर और 27 ब्रॉन्ज मेडल भारत के पास एशियन गेम्स में हो गए हैं। और अब तक कुल 55 मेडल टैली की यहाँ पर आपको बात बता दें कि 55 मेडल्स हो चुके हैं। और आपको बता दें कि ये मेडल में भारत को एक और मेडल मिला है बॉक्सिंग में। 60 किलोग्राम वर्ग में ये मेडल भारत ने अपने नाम किया है, ब्रॉन्ज मेडल। तो आपको बता दें कि आज का दिन एशियन गेम्स से भारत के लिए अब तक गोल्डन दिन रहा है। आज तीरंदाजी में भारत को 2 गोल्ड मेडल मिल चुके हैं। भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। फाइनल मुकाबले में चीन को शिकस्त देकर भारतीय टीम ने गोल्ड मेडल पर कब्जा जमा लिया। इस शानदार जीत के साथ ही भारत ने महामुकाबले में तिरंगा सबसे ऊंचे पायदान पर फहरा दिया है। चिकित्सा प्रतिका और ज्योति की तिगड़ी ने कमाल का प्रदर्शन किया है। तो एशियन गेम्स से लगातार जो है शानदार खबर सामने आ रही है। भारत लगातार जो है मेडल्स जीत रहा है और भारत का तिरंगा फहराया जा रहा है।
1: बहुत खुशी है हमें, लाइक आज हमारा फर्स्ट मेडल मैच था आर्चरी में, हमने गोल्ड जीता। एंड बहुत बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमने एज ए टीम बहुत मेहनत करी है। एंड आज फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल दोनों मैच में भी अपने तरफ से पूरी कोशिश किया एंड अपने 100% दिया।
2: अच्छा लग रहा है मुझे बहुत कि हम ये गोल्ड मेडल जीत पाए, मेरे टीममेट्स के साथ मैंने जीता। बस मेरे शॉट्स पे भरोसा किया और मेरे टीममेट्स में भरोसा किया, बस वही।
3: आर्चरी का दिमाग में कब से आया, कब से आपने आर्चरी शुरू की?
2: मैंने 4th स्टैंडर्ड से आर्चरी शुरू किया है स्कूल में से।
0: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं जीएनटी एक्सप्रेस।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
0: एशियन गेम्स में भारत का गोल्डन दिन, तीरंदाजी में मिले 2 गोल्ड मेडल, महिला 60 किलोग्राम वर्ग कैटेगरी में मिला ब्रॉन्ज। एशियन गेम्स में भारतीय महिला तीरंदाजी टीम ने चीन की टीम को हराया, भारत को दिलाया गोल्ड मेडल। शिखिता प्रतिका और ज्योति की तिगड़ी ने किया कमाल, 238 रन के स्कोर के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी की। एशियन गेम्स में भारतीय कंपाउंड मिक्स आर्चरी चिकिता तनिपार्थी और राजेश जाधव की जोड़ी ने कोरिया तीरंदाजी को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। एशियन गेम्स में महिला 60 किलोग्राम वर्ग कैटेगरी में प्रिया घंगास ने किया कमाल, जीता ब्रॉन्ज मेडल। फुटबॉल के महामुकाबले के लिए सज रहा कोलकाता का सॉल्ट लेक स्टेडियम, तैयारियां पूरी। ब्राजील की स्टार टीम के स्वागत की तैयारियां पूरी, खिलाड़ियों को मां दुर्गा की प्रतिमा, दार्जिलिंग चाय और बंगाली व्यंजन परोसे जाएंगे। 3 अक्टूबर को भारत के खिलाफ उतरेगी 5 बार की वर्ल्ड कप चैंपियन ब्राजील, मैच को लेकर खेल प्रेमियों में काफी उत्साह। भारत अंडर 19 ने पहले यूथ टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को पारी और 48 रनों से हराया था, रायचंदानी ने खेली शानदार पारी। भारत ने पहली पारी में 494 रन बनाए, जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली पारी में 217 और दूसरी पारी में 229 रन पर ही सिमटी। महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंचे क्रिकेटर रिंकू सिंह, विधि विधान से किए दर्शन पूजन। बाबा महाकाल से की सुख समृद्धि की कामना, भोलेनाथ का लिया आशीर्वाद। सूरत के रहने वाले 14 साल के विवान शाबा ने गुजरात के सबसे कम उम्र के चेस इंटरनेशनल मास्टर ज्वाल पटेल का तोड़ा रिकॉर्ड। विवान शाह ने 2400 FIDE रेटिंग पार की और 3 IM नॉर्म्स हासिल किए, अब ग्रैंड मास्टर टाइटल पर नजर। एमपी रणजी टीम का ऐलान, रजत पाटीदार हुए बाहर, शुभम होंगे कप्तान। पुरी में जगन्नाथ मंदिर में दर्शन के लिए उमड़ा आस्था का जनसैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए भगवान जगन्नाथ के दर्शन। पुरी में गुंडीचा मंदिर भक्तों और तीर्थयात्रियों के लिए खुला, बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। मंदिर खोलने से पहले प्रशासन के विधि विधान से पूजा अर्चना, भक्तों ने लगाए जय जगन्नाथ के जयकारे। झांसी में विश्व शांति महायज्ञ का भव्य समापन, बैंड की प्रस्तुति ने बांधा समा। भगवान आदिनाथ के रथ को श्रद्धालुओं ने खींचा, भक्तों ने लगाए जयकारे। तेलंगाना के हनुमकोंडा में हजार खंभों वाले मंदिर में सुरक्षा बलों का मॉक ड्रिल, जवानों ने सुरक्षा व्यवस्था को परखा। ऑक्टोपस कमांडो ने आतंकी हमला और आपदा से निपटने की तैयारी की, मंदिर परिसर का भी लिया जायजा। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की गौ सेवा, मवेशियों को खिलाया चारा। प्रवासी पक्षियों से गुलजार हुआ थूथुकुड़ी, बड़ी संख्या में पहुंचे विदेशी पक्षी। पेंडेक्स स्टॉक, ग्लासी आइबिस और पर्पल हिरॉन जैसे जल पक्षियों का जमावड़ा, देखने के लिए लग रही है लोगों की भारी भीड़। मुंबई में गणपति राज्य महोत्सव 2026 के तहत बप्पा ओ आरजी गाथा गणेश कथांची डिजिटल पुरालेख पहल का शुभारंभ, सीएम देवेंद्र फडणवीस उसमें शामिल। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में पाडुंगा कार्यक्रम में सीएम चंद्रबाबू नायडू हुए शामिल, डिप्टी सीएम पवन कल्याण भी रहे इस दौरान मौजूद। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह सिंधु ने महिला सुरक्षा को लेकर दौलत राम कॉलेज को किया दौरा, छात्रों से भी की मुलाकात। श्रीनगर में हिंदी रंगमंच 2026 कार्यक्रम का हुआ आगाज, एलजी मनोज सिन्हा इसमें शामिल। एलजी मनोज सिन्हा ने हिंदी भाषा में टॉप करने वाले छात्रों को किया सम्मानित, स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक और नाट्य प्रस्तुति दी। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2026 का समापन हुआ, 6,00,000 लोग पहुंचे। ट्रेड शो के दौरान करीब 6,500 करोड़ रुपए के 4,400 एमओयू पर हस्ताक्षर हुए, बिजनेस एक्वायरी के आधार पर करीब 15,500 करोड़ रुपए कारोबार का अनुमान। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में रूस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, सिंगापुर, बेलारूस और वियतनाम के पार्टनर कंट्री के तौर पर हिस्सा लिया। ट्रेड शो में प्रदेश के सभी 75 जिलों के पारंपरिक शिल्प, हथकरघा, पीतल, कालीन और चमड़ा उत्पाद प्रदर्शित, उत्पाद बने आकर्षण का मुख्य केंद्र। पणजी में गोवा राज्य सांस्कृतिक पुरस्कार समारोह का हुआ आयोजन, सीएम सावंत ने कई लोगों को किया इस दौरान सम्मानित। रेल यात्रियों के लिए बड़ी सौगात लेकर आई भारतीय रेलवे, दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ के दौरान चलेंगी 12 जोड़ी यानी 24 पूजा स्पेशल ट्रेनें। कक्षा 9 में टैक्स की पढ़ाई, नई एनसीईआरटी की किताबों में छात्रों को आयकर की गणना सिखाई जाएगी, टैक्स को नागरिक जिम्मेदारी से जोड़कर देखा जा रहा है। शासन के प्रतीकों के छात्रों को मिलेगी जानकारी, किताब में सत्यमेव जयते और सेंगुल का जिक्र, सुशासन की 7 खूबियां भी समझाई गई हैं। छात्र जानेंगे लिज्जत पापड़ की कहानी, 7 महिलाओं ने 80 रुपए से शुरू किया था ये कारोबार, किताब में इसे महिला उद्यमिता का उदाहरण बताया गया है। छात्रों को भारत के 120 से ज्यादा यूनिकॉर्न की जानकारी मिलेगी, रोजगार और इनोवेशन में स्टार्टअप की भूमिका समझाई जाएगी। धौलपुर के समाजसेवी डॉक्टर आरएस गर्ग और मधु गर्ग की संघर्ष की कहानी केबीसी तक पहुंची, गुड न्यूज टुडे पर कहानी दिखाने के बाद केबीसी ने दंपति को शो में बुलाया। केबीसी में अमिताभ बच्चन ने करीब 5 मिनट तक डॉक्टर दंपति से उनके संघर्ष की कहानी सुनी, मयूरी विशेष विद्यालय की कहानी सुनकर उन्हें सम्मानित भी किया गया। बेटी मयूरी के इलाज और पढ़ाई के दौरान डॉक्टर गर्ग ने धौलपुर में विशेष स्कूल खोलने का फैसला किया, साल 2000 में शुरू हुआ स्कूल आज 400 से ज्यादा बच्चों को आत्मनिर्भर बना चुका है। मयूरी विशेष विद्यालय की शुरुआत बेटी समेत से 6 बच्चों से हुई थी, आज 70 से ज्यादा बच्चे यहां पर रहकर निःशुल्क शिक्षा, प्रशिक्षण और थेरेपी ले रहे हैं। मुंबई से लौटे डॉक्टर दंपति ने गुड न्यूज टुडे का आभार जताया। कहा गुड न्यूज टुडे की वजह से उनकी कहानी केबीसी तक पहुंची और अब देश विदेश में इसकी चर्चा हो रही है। पहाड़ों पर कुदरत की मेहरबानी लगातार बरकरार, मनाली में सीजन की दूसरी बर्फबारी। पहाड़ों पर बिछी बर्फ की मोटी चादर, तापमान में भी आई गिरावट। बर्फबारी के बाद सैलानियों से गुलजार मनाली, व्यापारियों के साथ साथ खिले पर्यटकों के चेहरे। गोपालगंज में बड़ा गंडक नदी का जलस्तर, कई इलाके पानी में डूबे। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोग ले रहे हैं नाव का सहारा, मवेशियों को भी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है इसके पढ़ने।
5: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रविगिरि का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रविगिरि है, मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है। और सबसे ज़्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए। और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूँ गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयां खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रविगिरि आपसे वादा करता हूं कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है वादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है, तो सुनिए इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना, जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती, और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा, ये कोई मामूल। लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाइयों और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान, जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाइयों और बहनों, मैं बाबा रवि गिरी आपसे वादा करता हूँ कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूँ। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूर्णकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणुरोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हरड़। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं, ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो, इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लैटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च, जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक, चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है। यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लैटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूर्णकंद, यह है सूर्णकंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और यह है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास, अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में, और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू, लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो सब पर ये काम करता है। इसके बाद में है कचनार, कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है, वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में। ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में ये है इंद्रायन, ये है इंद्रायन की जड़, इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
4: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
0: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
0: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
0: एशियन गेम्स में भारत का गोल्डन दिन, तीरंदाजी में मिला दूसरा गोल्ड मेडल, बॉक्सिंग में प्रिया घंगास को ब्रॉन्ज। दिल्ली एनसीआर में नया ग्रैप लागू, एक्यूआई स्तर के मुताबिक 4 चरणों में लगाई जाएंगी पाबंदियां, स्कूलों में हाइब्रिड पढ़ाई का मिलेगा विकल्प। रामनगरी अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारियां तेज, राम के पेड़ पर रंग रोगन का काम तेज, इस बार 30 लाख दीयों से जगमग होगी धर्मनगरी। झांसी में विश्व शांति महायज्ञ का भव्य समापन, बैंड की प्रस्तुतियों ने बांधा समा, भगवान आदिनाथ के रथ को श्रद्धालुओं ने खींचा। पहाड़ों पर कुदरत की मेहरबानी बरकरार, मनाली में सीजन की दूसरी बर्फबारी, व्यापारियों के साथ साथ खिले पर्यटकों के चेहरे।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं कि संसार की गति शक्ति से ही होती है, इसीलिए आदिशक्ति माँ जगदम्बा ने सृष्टि की रचना की। आदिशक्ति देवी माँ का एक स्वरूप है माँ बगलामुखी, जो 10 महाविद्याओं में से एक है। यहाँ विराजमान माँ बगलामुखी को कलयुग की देवी कहा गया है। यही वजह है कि मुश्किल दौर हो या फिर खुशी का पल, बॉलीवुड के बड़े कलाकार भी यहाँ पर आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचते हैं। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी हो या फिर एक्टर गोविंदा, टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर हूँ या फिर हरभजन सिंह, माँ के दरबार में सिर झुकाने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए वो अक्सर ही हाजिरी लगाते हैं। हाल ही में फिल्म एक्टर गोविंदा नलखेड़ा में बगलामुखी माँ के मंदिर पहुंचे और उन्होंने इस दौरान रीति रिवाज के साथ पूजा अर्चना भी की और माँ का आशीर्वाद भी लिया। शत्रुओं पर विजय दिलाने वाली सिद्धपीठ और तंत्र साधना का सर्वोच्च केंद्र मध्य प्रदेश के नलखेड़ा में मौजूद माँ बगलामुखी का दरबार, जो आस्था का एक ऐसा महासंगम है जहाँ हर संकट का निवारण होता है। मान्यता है कि माँ पीताम्बरा के दर पर लगाई गई अर्जी कभी खाली नहीं जाती। यही वजह है कि देश के बड़े बड़े राजनेताओं और खेल जगत के दिग्गजों से लेकर बॉलीवुड और साउथ सिनेमा के बड़े बड़े सितारे माँ भगवती का आशीर्वाद लेने के लिए नलखेड़ा खिंचे चले आते हैं।
1: द्वापर युग का वो जागृत तंत्रपीठ जहां राजा से लेकर रंक, फिल्मी सितारों से लेकर राजनेताओं तक जब भी जिस पर संकट गहराता है तो कदम यहीं खींचे चले आते हैं।
2: चलिए चलिए चलिए चलिए चलिए।
1: विरोधी को शिकस्त देनी हो या किस्मत का बंद ताला खोलना हो, अगर मालवा के नलखेड़ा में मौजूद माँ बगलामुखी का ये दरबार हर बड़े संकट का इकलौता जवाब है। यही वजह है कि माँ के इस दरबार में नेताओं से लेकर अभिनेताओं तक सबके सिर झुकते हैं। बॉलीवुड के हीरो नंबर 1 यानी गोविंदा उन्हीं में से एक हैं। वो पहले माँ बगलामुखी के परम भक्तों में शामिल हैं। एक बार फिर गोविंदा आगर मालवा के नलखेड़ा में माँ बगलामुखी के दरबार में नतमस्तक हुए। फिल्मी पर्दे पर करोड़ों दिलों को जीतने वाले गोविंदा ने नलखेड़ा पहुंचकर करीब आधे घंटे तक विशेष तांत्रिक अनुष्ठान किया। माँ के दरबार में गोविंदा ने मंदिर के गर्भगृह में विधि विधान से पूजा अर्चना की और माँ के चरणों में शीश नवाकर आशीर्वाद लिया। मंदिर के मुख्य पुजारी ने वैदिक रीति रिवाज से पूजा संपन्न कराई, जिसके बाद मुख्य पुजारी ने माँ बगलामुखी की सिद्ध चुनरी ओढ़ाकर गोविंदा का सम्मान किया। माँ के दर्शन के बाद गोविंदा काफी प्रसन्न और भक्ति भाव में सराबोर नजर आए। लेकिन गोविंदा अकेले नहीं है। फिल्मी चकाचौंध से दूर जब जब अपनों पर संकट आया, तब तब बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा शिल्पा शेट्टी ने भी माँ बगलामुखी की शक्ति को पुकारा। जब परिवार संकटों के बीच घिरा तो शिल्पा शेट्टी माँ का आशीर्वाद लेने पहुंची और उन्होंने माँ बगलामुखी के सामने विशेष स्तंभन अनुष्ठान कराया ताकि हर परेशानी पर विराम लग सके। खेल के मैदान पर भारत का परचम लहराने वाले दिग्गज खिलाड़ी गौतम गंभीर भी इस तांत्रिक पीठ के आगे नतमस्तक हैं। टीम इंडिया के मौजूदा हेड कोच और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर भी मां के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंच चुके हैं। गौतम गंभीर ने यहां विशेष रूप से मां का पीताम्बरी पूजन और हवन अनुष्ठान किया था ताकि मां बगलामुखी का विशेष आशीर्वाद उन पर सदा बना रहे। पीले वस्त्र धारण कर पंडितों और आचार्यों के सानिध्य में गंभीर ने माँ को पीले फूल, पीले मिष्ठान और वस्त्र अर्पित किए थे, जिसके बाद उन्होंने विशेष अनुष्ठान और आहुतियां दे वैदिक मंत्रोच्चार और शंखनाद के बीच माँ पीताम्बरा की साधना भी की। गंभीर के अलावा भारतीय क्रिकेट के दिग्गज स्पिनर और टर्मिनेटर के नाम से मशहूर हरभजन सिंह भी माँ बगलामुखी के दरबार में हाजिरी लगाने नलखेड़ा पहुँच चुके हैं। क्रिकेट के मैदान पर अपनी फिरकी से दुनिया भर के बल्लेबाजों को नचाने वाले हरभजन सिंह माँ के दरबार में पूरी तरह भक्तिभाव में लीन थे। माँ पीताम्बरा के दरबार में हरभजन भी पीले वस्त्र में दिखे। उन्होंने पुजारियों की मौजूदगी में विशेष पूजन किया, माँ को पीले वस्त्र और पीले मिष्ठान भेंट किए और माँ बगलामुखी का आशीर्वाद लिया। इसी कड़ी में बॉलीवुड के मशहूर कोरियोग्राफर और फिल्म निर्देशक रेमो डिसूजा अपनी पत्नी लिजेल डिसूजा के साथ माँ बगलामुखी के दरबार पहुँचे थे। डांस की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने वाले रेमो और उनकी पत्नी मंदिर प्रांगण में बेहद सादगी और भक्तिभाव में थे। दोनों ने माँ पीताम्बरा के दर्शन कर उनके चरणों में शीश नवाया और परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना की। साउथ सिनेमा की लेडी सुपरस्टार और प्रसिद्ध अभिनेत्री नयनथारा भी माँ बगलामुखी के दर्शन के लिए नलखेड़ा पहुंची थीं। अपनी दमदार एक्टिंग से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली नयनथारा माँ के दरबार में पूरी तरह भक्तिभाव में लीन थीं। उन्होंने गर्भगृह में सिर झुकाकर माँ पीताम्बरा का आशीर्वाद लिया था। माँ आदिशक्ति इस दरबार में पिछले 5000 साल से भक्तों को कल्याण का वरदान दे रही हैं। धर्मशास्त्रों के मुताबिक माँ हल्दी रंग के जल से प्रकट हुई थीं। पीले रंग के कारण माँ को पीताम्बरा देवी भी कहा जाता है, इसीलिए माँ को पीला रंग अति प्रिय है और उनके पूजन में पीले रंग की सामग्री का ही उपयोग होता है। मान्यता है कि महाभारत युद्ध में विजय के लिए स्वयं भगवान कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से इस मंदिर की स्थापना कराई थी। आज भी जब जीवन की जंग मुश्किल होती है तो बॉलीवुड से लेकर सियासत के सूरमा तक इस दरबार में आकर ही चैन पाते हैं। प्रमोद कारपेंटर, आगर मालवा, गुड न्यूज टुडे।
0: माँ के इस दरबार में जो भी भक्त अपनी मन्नत लेकर आता है, माँ उसकी हर मन्नत पूरी करती है। पांडव कालीन माँ के इस दरबार में माँ शक्ति सिद्धियां भी देती हैं और शक्ति भी, जिससे जीवन की परेशानी से सामना करने की ताकत और हौसला दोनों ही मिलते हैं। माँ बगलामुखी की आराधना करने वालों के बारे में कहा जाता है कि उन्हें तीनों लोकों में कोई हरा नहीं सकता। माँ बगलामुखी की आराधना करने से दुश्मन आपको कभी हरा नहीं पाएंगे और अगर एक बार आपके दुश्मन आपसे दूर हो गए तो आपकी खुशियां आपको हमेशा के लिए मिल जाएंगी।

0: वो माँ है देवी पार्वती का रुद्र अवतार। वो देवी खोलती है विजय श्री का द्वार। माँ बगला मुखी की साधना दिलाएगी बाधाओं से मुक्ति।
1: कृपा से तुम्हारी शरण में, तुम्हारी कृपा से
0: माँ की भक्ति से मिलेगी ओजस्वी वाणी की शक्ति।
1: सुखी हो जाए सुखी,
0: माँ की महिमा अनंत है। माँ बगला मुखी शत्रु नाशनी है। मान्यता है कि माँ बगला मुखी की तपस्या श्री हरि ने भी की थी।
1: शरण में तुम्हारी कृपा से, तुम्हारी शरण में
0: 10 महाविद्या में 8वीं स्वरूप देवी माँ बगला मुखी है। माता बगला मुखी पीली आभा से युक्त है, इसलिए इन्हें पीताम्बरा कहा जाता है। इसलिए बगला मुखी की पूजा में पीले रंग का विशेष महत्व है। ज्योतिषी मानते हैं कि माँ बगला मुखी की पूजा उपासना से शत्रुओं से जुड़ी हर बाधा दूर हो जाती है। तो चलिए सबसे पहले आपको माँ बगला मुखी की महिमा बताते हैं। इनका प्राकट्य स्थान गुजरात का स्वराष्ट्र में माना जाता है। माँ बगला मुखी स्तंभन शक्ति की अधिष्ठात्री देवी है। देवी के 10 महाविद्या स्वरूप में से 8वां स्वरूप माँ बगला मुखी का ही है। माँ बगला मुखी को पीताम्बरा भी कहा जाता है। माँ बगला मुखी का रंग सोने के समान पीला है।
2: 10 महाविद्या होती है। 10 महाविद्याओं के क्रम में 8वें नंबर पर माँ बगला मुखी आती है, जिन्हें अष्टम महाविद्या कहा जाता है। माँ बगला मुखी की पूजा करने के कई नियम है, जैसे की साधना काल के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए साधना करना होता है। पीला वस्त्र धारण करके पीले आसन पर बैठ करके हल्दी की माला से जाप किया जाता है, और बगला मुखी का जब मंत्र जाप किया जाता है, साधना अनुष्ठान किया जाता है, तो रात्रिकालीन अनुष्ठान इनका होता है।
0: मान्यता है कि बगला मुखी माता का अवतार तब हुआ जब ब्रह्मा जी के वेदों को दैत्यों ने चुरा लिया था। माता ने बगला का रूप धारण करके उन दैत्यों का वध किया और वेदों को वापस लौटाया। माँ बगला मुखी की महिमा का ना तो कोई पैमाना है और ना ही कोई अंत, लेकिन जिस पर भी माँ की कृपा हो जाए उसके जीवन में हर भय बाधा खत्म हो जाती है। ये अपने भक्तों के भय को दूर करती है, शत्रुओं और बुरी शक्तियों का नाश करती है। माँ बगला मुखी को पीला रंग अति प्रिय है। इनके पूजन में पीले रंग की सामग्री का प्रयोग ज्यादा होता है। माता बगला मुखी की पूजा तंत्र विधि की पूजा होती है, इसलिए इनकी पूजा बिना किसी गुरु के निर्देशन में नहीं करनी चाहिए।
2: ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के उपदेश पर पांडवों ने यहाँ पर साधना की थी, तो पांडवों ने महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए माँ बगला मुखी की साधना की थी। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को उपदेश दिया था, तभी से परंपरा है कि शत्रुओं के शमन हेतु माँ बगला मुखी की विशेष पूजा अनुष्ठान किए जाते हैं, और इसी से शत्रुओं पर विजय श्री का आशीर्वाद मिलता है। माँ बगला मुखी एकमात्र ऐसी शक्ति है जो शत्रुओं पर विजय प्राप्त करवा सकती है।
0: शास्त्रों के अनुसार माँ बगला मुखी की पूजा शत्रु के नाश के लिए नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि माँ बगला मुखी की पूजा उपासना करने वाले भक्त की हर मनोकामना माँ के आशीर्वाद से पूरी हो जाती है। लेकिन माँ की पूजा की कुछ नियम और सावधानियां भी हैं, तो चलिए हम आपको वो नियम बताते हैं, गौर से देखिए। पूजा में पीले आसन, पीले वस्त्र, पीले फल और पीले भोग का प्रयोग करें। माँ बगला मुखी के मंत्र जाप के लिए हल्दी की माला का प्रयोग करें। पूजा के लिए उपयुक्त समय संध्या काल या मध्य रात्रि मानी गई है। हमेशा किसी गुरु या विद्वान के निर्देश में ही पूजा करें। पूजा में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें।
2: देखो, हर परिस्थिति में माँ बगला मुखी की पूजा की जा सकती है। विशेष रूप से शत्रु बाधा निवारण के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, कोई भी कोर्ट केस चल रहा हो उसके निवारण के लिए, विजय प्राप्ति के लिए, किसी भी क्षेत्र में विजय श्री के आशीर्वाद के लिए माँ बगला मुखी की पूजा की जा सकती है।
0: माना जाता है कि अगर विधि विधान और नियम से माँ बगला मुखी की उपासना की जाए तो जीवन में शत्रुओं की बाधा खत्म हो जाती है, साथ ही विरोधी भी शांत हो जाते हैं और दरिद्रता का नाश हो जाता है। माँ बगलामुखी करेंगे विरोधियों को शांत। चौकी पर पीले रंग का आसन बिछाएं, इस पर माँ बगलामुखी की प्रतिमा स्थापित करें। माँ बगलामुखी के समक्ष अखंड दीपक जलाएं। इसके बाद माता को पीले वस्त्र और पीले भोग अर्पित करें। इसके बाद बगलामुखी कवच का पाठ करें। इसके बाद अपने संकल्प के साथ माँ के मंत्र का जाप करें। मंत्र का कम से कम 44,000 या 1,00,000 मंत्र जाप करना फलदायी माना गया है। जितनी संख्या में मंत्र का जाप किया जाए उतना ही दशांश हवन भी करना चाहिए।
2: देखिए, नलखेड़ा में जो बगलामुखी माता जी विराजमान है वो स्वयंभू विराजमान है। अनादि काल से भगवती यहाँ पर विराजमान है, जो है पिंड रूप में भगवती यहाँ पर स्थापित है। त्रिशक्ति के रूप में देवी यहाँ पर विराजमान है। बीच में बगलामुखी, दाएं बाएं लक्ष्मी और सरस्वती जी, त्रिशक्ति के रूप में देवी यहाँ पर विराजमान है। यहाँ पर एक परंपरा है, नित्य निरंतर यहाँ पे हवन अनुष्ठान जारी रहते हैं। देवी की कृपा से सारे लोग यहाँ पर आते हैं, हवन अनुष्ठान करते हैं और सभी की मनोकामनाएं पूरी होती है।
0: माँ बगलामुखी अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती, वो सदा अपने भक्तों का कल्याण करती हैं। आपकी हर भय बाधा हर लेंगी माँ बगलामुखी। आगे हम आपको शत्रु बाधा दूर करने के महा उपाय बताएंगे और साथ ही जानेंगे माँ बगलामुखी के स्थान कहाँ कहाँ पर हैं। तब तक आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार।
3: माँ बगलामुखी की भक्ति में वो शक्ति है जो बड़ी से बड़ी परेशानी को भी पल भर में दूर कर दे। लेकिन माँ बगलामुखी की आराधना का सही तरीका और सही विधि विधान जानना भी बेहद जरूरी है। उनकी उपासना का सही तरीका आखिर क्या है, कैसे माँ को प्रसन्न किया जा सकता है, आपको बताते हैं माँ बगलामुखी की उपासना के तरीके और उससे जुड़ी सावधानियों के बारे में।

0: माँ बगलामुखी भाई का नाश करने वाली है। आत्मविश्वास में वृद्धि और साहस का संचार करने वाली है। माँ बगलामुखी शक्ति की अधिष्ठात्री देवी है। शत्रु बाधा का विनाश कर मार्ग निष्कंटक करने वाली है माँ बगलामुखी। आज के दौर में आप कहीं ना कहीं किसी न किसी की बुरी नजर का शिकार हो जाते हैं, चाहे आप नौकरी करते हो या फिर बिजनेस। कभी आपकी कामयाबी या फिर कभी आपके बढ़ते प्रभाव के कारण आपके कई गुप्त शत्रु बन जाते हैं, जिनके कारण आपको जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार कानूनी चक्रों में इंसान ऐसा उलझ कर रह जाता है कि उससे निकलना नामुमकिन सा हो जाता है, पर आपकी इन सभी परेशानियों का समाधान है माँ बगलामुखी की उपासना। कहते हैं कि शत्रु और विरोधियों को शांत करने और कानूनी मामलों से छुटकारे के लिए माँ बगलामुखी की उपासना अचूक होती है।
1: कलयुग के हिसाब से देखा जाए तो संकट हरने के लिए सबसे पहले माँ बगलामुखी महाविद्या की ही पूजा की जा सकती है। सिद्ध विद्या है, 10 महाविद्याओं में एक सिद्ध विद्या कही जाती है, श्री कुल की देवी है, तो किसी भी प्रकार के संकट का हरण कर लेती है माँ बगलामुखी की पूजा अनुष्ठान के माध्यम से।
0: माना जाता है कि अगर घर में दरिद्रता है तो भी माँ बगलामुखी की उपासना करने से आपकी ये समस्या भी दूर हो सकती है। कैसे, खुद ही देखिए। दरिद्रता नाश करने के लिए नियमित माँ बगलामुखी की उपासना करनी चाहिए। हल्दी की माला से दरिद्रता नाश करने के लिए इस मंत्र का जाप करें। श्रीं ह्रीं ऐं भगवती बगले में श्रियं देहि देहि स्वाहा। माँ बगलामुखी को 2 गांठ हल्दी अर्पित करें। माँ से शत्रु और विरोधियों से शांति।

0: तो जीवन सुखमय और भयमुक्त हो जाता है।
1: देखिए, नलखेड़ा का मंदिर जो है वो प्राकट्य पीठ है, स्वयंभू पीठ है, स्थापित पीठ देखा जाए तो दतिया में एक स्थापित पीठ है, वहाँ पर स्वामी जी महाराज ने स्थापना करी थी और यहीं से जोत ले जा करके स्थापना करी थी, ऐसी मान्यता है। और एक हिमाचल कांगड़ा में भी माँ बगलामुखी का 250-300 वर्ष पुराना लगभग मंदिर है वहाँ पर।
0: भारत में माँ बगलामुखी के तीन ही प्रमुख ऐतिहासिक मंदिर माने गए हैं। ये मंदिर मध्य प्रदेश के दतिया, शाजापुर नलखेड़ा और हिमाचल के कांगड़ा में स्थित है। देवी के तीनों ही मंदिरों का विशेष महत्व है। मध्य प्रदेश में तीन मुखों वाली त्रिशक्ति माता बगलामुखी का मंदिर बहुत चमत्कारी है। नलखेड़ा स्थित मां बगलामुखी की मूर्ति स्वयंभू है। महाभारत में विजय पाने के लिए श्री कृष्ण के निर्देश पर युधिष्ठिर ने इस मंदिर की स्थापना की थी। कहते हैं कि मां बगलामुखी के साधक को कभी कोई शत्रु, डर या बाधा परेशान नहीं कर सकती। तो यदि आप भी मां बगलामुखी की कृपा चाहते हैं तो आप भी शुभ मुहूर्त में सच्चे मन से कीजिए मां बगलामुखी की आराधना। आपके सभी संकटों का नाश मां की कृपा से हो जाएगा। आगे हम आपको मां के महामंत्रों की महिमा बताएंगे।
2: तो हम बात कर रहे हैं देवी माँ बगलामुखी की। शक्ति स्वरूपा माँ बगलामुखी के कुछ ऐसे मंत्र हैं जिनका जाप आपके मन से भय और द्वेष को समाप्त करता है और आपके अंदर ऊर्जा की नई लौ जगाता है। कौन से है वो मंत्र, चलिए जानते हैं।
0: माँ बगलामुखी जिनकी उपासना महाभारत के युद्ध में विजय पाने के लिए धर्मराज युधिष्ठिर ने की थी। माँ बगलामुखी की उपासना एक शक्ति की उपासना है। कहते हैं अगर माँ बगलामुखी प्रसन्न हो जाए तो उनके भक्त को तीनों लोकों में कोई हरा नहीं सकता है। तो आप भी माँ को मना लीजिए। चलिए आपको माँ बगलामुखी से जुड़े विशेष मंत्र बताते हैं।
1: देखिए, माँ बगलामुखी के चमत्कारिक मंत्र तो कई है, सारे मंत्र ही चमत्कारिक है। उसमें विशेष रूप से ओम लिम बगलामुखी सर्व दुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम कीलय बुद्धिम विनाशय ह्रलिम ओम स्वाहा, यह बगलामुखी का सबसे चमत्कारिक और मूल मंत्र है।
0: ओम ह्रीं ह्रीं ह्रीं बगले सर्व भयम हना। रुद्राक्ष की माला से पांच माला ओम बगलामुखी दैव्ये ह्रीं ह्रीं क्लीं शत्रु नाशम कुरु। ओम हांग हांग हांग ह्रींग वज्र कवचाय। ओम ह्रीं ह्रीं ह्रीं बगलामुखी देव्ये ह्रीं साफल्यम देहि देहि स्वाहा। ओम हंग ह्रीं बगलामुखी देव्ये कुमारं रक्ष रक्ष। श्रीं ह्रीं ऐं भगवती बगले में श्रियं देहि देहि स्वाहा। बुरी शक्तियों और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए बगलामुखी कवच और स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। मां बगलामुखी अपने मंत्रों का दुख समझ जाती हैं, बस जरूरत है देवी तक अपनी परेशानियों को पहुंचाने की और उनसे कल्याण की कामना करने की। तो आप भी मां बगलामुखी को प्रसन्न करें और अपनी हर समस्या को दूर करें।
2: तो चलिए इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।

0: देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: तो चलिए आगे बढ़े, आपको बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी जो खबर है वो एशिया खेलों के मंच से आ रही है। भारत को एशियन गेम्स में दिन का तीसरा गोल्ड मेडल हासिल हो गया है और इसके साथ ही एक और गोल्ड मेडल भारत की झोली में। आपको बता दें नीरू ढांडा और किनान चेनई ने मिक्स शूटिंग में ये जो मेडल है अपने नाम किया है, उन्होंने सोना जीता है। और भारतीय जोड़ी ने कुल 32 अंकों के साथ ईरान को पीछे छोड़ते हुए ये ऐतिहासिक जीत हासिल की। तो चलिए चलते चलते आपको उन वीडियोस के साथ छोड़ जाते हैं जिन्हें सोशल मीडिया पे खूब पसंद किया जा रहा है, क्योंकि इनमें कुछ हंसाने वाले हैं तो कुछ इमोशनल करने वाले।
7: स्टेज पर सजी धजी खड़ी इन नन्ही बच्चियों ने अपनी मासूमियत से हर किसी का दिल जीत लिया। भरतनाट्यम की प्रस्तुति के लिए पारंपरिक पोशाक में तैयार बच्चों के चेहरे की क्यूटनेस और उनकी प्यारी अदाएं देखते ही बन रही हैं। इशारों से भाव जताती ये बच्चियां बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं। उनकी मासूमियत और नटखट अंदाज ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सोशल मीडिया पर बच्चियों की ये प्यारी तस्वीरें और वीडियो खूब पसंद किए जा रहे हैं। प्यास किसे नहीं लगती, इंसान हो या जानवर, पानी हर किसी की जरूरत है, लेकिन इस हाथी का पानी पीने का अंदाज कुछ अलग ही है। पहले हाथी अपनी सूंड में पानी भरता है और फिर बड़े आराम से उसी पानी को अपने मुंह में डालकर पीता है। पानी पीने का यह अनोखा तरीका देखकर हर कोई हैरान है। हाथी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और लोग इसे देखकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं। उम्र छोटी है लेकिन जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। कंधे पर ईंटों का बोझ उठाए ये बच्चा मेहनत करता नजर आ रहा है। बचपन खेलने और मुस्कुराने की उम्र होती है, लेकिन हालात जब जिम्मेदारियां बढ़ा दें तो छोटी उम्र में ही बड़े काम करने पड़ते हैं। बच्चे के कंधे पर रखा ईंटों का बोझ उसकी मेहनत और जिम्मेदारी दोनों की कहानी बयां कर रहा है। सोशल मीडिया पर बच्चे का ये वीडियो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है।

कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर,

0: अरुणाचल प्रदेश के वानु गांव की तीन छोटी बहनें अपनी सुरीली आवाज से इंटरनेट पर छा गई हैं। बिना किसी फैंसी सेटअप और बिना किसी फिल्टर के तीनों बहनों ने अपनी मासूम मुस्कान और खूबसूरत आवाज से लोगों का दिल जीत लिया। साथ में गाती इन बच्चियों का अंदाज बेहद प्यारा है, उनकी आवाज में मासूमियत भी है और हुनर भी। सोशल मीडिया पर बच्चियों का ये वीडियो खूब पसंद किया जा रहा है और लोग उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। खुश रहने के लिए दौलत नहीं बस जज्बा चाहिए। इस महिला को देखकर जिंदगी का यही सबक मिलता है। सिर पर ईंटों का बोझ है लेकिन चेहरे पर मुस्कान बरकरार है। इतना ही नहीं, ईंटों का वजन सिर पर संभालते हुए महिला शानदार तरीके से डांस भी करती नजर आ रही है। मुश्किल हालात के बीच उसका ये अंदाज हर किसी का ध्यान खींच रहा है। सोशल मीडिया पर महिला के हुनर और उसके गजब के बैलेंस की खूब तारीफ हो रही है।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज़ टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है।
2: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
3: एशियन गेम्स में भारत की गोल्डन हैट्रिक, शूटिंग में नीरू चेन्नई ने जीता सोना, बॉक्सिंग में प्रिया घंघास को ब्रॉन्ज मेडल। जोधपुर में तरंग शक्ति युद्धाभ्यास की गर्जना, आसमान में F-16 और राफेल समेत 8 देशों के विमानों का शक्ति प्रदर्शन, 12 अक्टूबर तक चलेगा युद्धाभ्यास। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ के बाद मिशन जिंदगी तेज, कुशीनगर में NDRF SDRF की टीमें अलर्ट, राहत बचाव का काम भी तेज। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टेंटेटिव लिस्ट में भारत की 5 नई साइट शामिल, बटेश्वर मंदिर के साथ मध्य प्रदेश की 4 साइट, लिस्ट में अब भारत की 78 साइट दर्ज।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम
1: सज गई है खबरों की प्लेट, तैयार है गुड न्यूज का मेन्यू। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शगुफ्ता साहिंदे।
2: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ पूजा शर्मा। खबरों की रफ्तार वही है, बस परिभाषाएं नहीं है, हम आपको ट्रेंडिंग न्यूज से लेकर हर अहम खबर दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं 5 मिनट 25 अच्छी खबरों के साथ।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: एशियन गेम्स में भारत का गोल्डन दिन, तीरंदाजी और शूटिंग मिक्स ट्रैप टीम ने जीता 3 गोल्ड मेडल, महिला 60 किलोग्राम वर्ग कैटेगरी में मिला ब्रॉन्ज मेडल। एशियन गेम्स में भारतीय महिला तीरंदाजी टीम ने चीन की टीम को हराया, भारत को दिलाया गोल्ड मेडल। चिखिता पृथिका और ज्योति की तिकड़ी ने किया कमाल, 238 अंक के स्कोर के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी की। एशियन गेम्स में भारतीय कंपाउंड मिक्स्ड आर्चरी चिकिता तनिपार्थी और राजेश जाधव की जोड़ी ने कोरियाई तीरंदाजी में हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। एशियाई खेलों में भारत का लगातार शानदार प्रदर्शन, शूटिंग मिक्स ट्रैप टीम ने जीता गोल्ड मेडल।
2: महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंचे क्रिकेटर रिंकू सिंह, विधि विधान से किए गए दर्शन। फुटबॉल के महामुकाबले के लिए सज रहा है कोलकाता का सॉल्ट लेक स्टेडियम, तैयारियां पूरी। सूरत के रहने वाले 14 साल के विवान शाह बने गुजरात के सबसे कम उम्र के चेस इंटरनेशनल मास्टर, ज्वाल पटेल का तोड़ा रिकॉर्ड। भारत अंडर 19 ने पहले यू टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को पारी और 48 रन से हराया, वहीं रायचंदानी ने खेली शानदार पारी। एमपी रणजी टीम का ऐलान, रजत पाटीदार हुए बाहर, शुभमन होंगे कप्तान।
1: पुरी में जगन्नाथ मंदिर में दर्शन के लिए उमड़ा आस्था का जनसैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए भगवान जगन्नाथ के दर्शन। पुरी में गुंडीचा मंदिर भक्तों और तीर्थयात्रियों के लिए खुला, बड़ी संख्या में पहुंचे भक्तगण। झांसी में विश्व शांति महायज्ञ का भव्य समापन हुआ, बैंड की प्रस्तुतियों ने बांधा समा। गोरखपुर में सीएम योगी ने की गौ सेवा, मवेशियों को खिलाया चारा। तेलंगाना के हनमकोंडा में 1000 खंभों वाले मंदिर में सुरक्षा बलों का मॉक ड्रिल, जवानों ने सुरक्षा व्यवस्था को परखा।
2: मुंबई में गणपति राज्य महोत्सव 2026 के तहत बप्पा ओ आर जी गाथा गणेश कथांजी डिजिटल पुरालेख पहल का शुभारंभ हुआ, सीएम देवेंद्र फडणवीस हुए शाम। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में पाडुगा कार्यक्रम में सीएम चंद्रबाबू नायडू शामिल हुए, डिप्टी सीएम पवन कल्याण भी मौजूद रहे। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह सिंधु ने महिला सुरक्षा को लेकर दौलतराम कॉलेज का दौरा किया, छात्रों से की मुलाकात। श्रीनगर में हिंदी रंगमंच 2026 कार्यक्रम का आयोजन, एलजी मनोज सिन्हा शामिल हुए। एलजी मनोज सिन्हा ने हिंदी भाषण में टॉप करने वालों को छात्रों को सम्मानित किया, स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक और नाट्य की दी प्रस्तुति।
1: राजकुमार राव की फिल्म प्रहार का ट्रेलर रिलीज, 16 अक्टूबर को फिल्म होगी रिलीज। आयुष्मान खुराना सारा अली खान की फिल्म उड़ता तीर का पहला गाना रिलीज, 9 अक्टूबर को फिल्म सिनेमाघरों में देगी दस्तक। जैकी श्रॉफ और शरद केलकर की हॉरर फिल्म काली खेती की रिलीज डेट का ऐलान हो गया है, 23 अक्टूबर को ये फिल्म रिलीज होगी। राजस्थानी फिल्म धूड़ का टीजर लॉन्च, 23 अक्टूबर 2026 को फिल्म होगी रिलीज, फिल्म में पद्म सिंह और हीरा देवी मुख्य किरदार में। विनोद कापरे की पुरस्कार विजेता फिल्म फायर 23 अक्टूबर को सिनेमाघरों में होगी रिलीज।

0: तो चलिए इन्हीं सेलिब्रेशन की तस्वीरों को आगे बढ़ाते हैं। एशियन गेम्स में भारत के तमाम एथलीट्स लगातार देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं, तो लंच टाइम की शुरुआत उसी के साथ करते हैं। सबसे पहले बात भारत के गोल्डन दिन की, जो आज रहा। आज का दिन एशियन गेम्स में भारत के लिए अब तक गोल्डन दिन रहा, क्योंकि भारत ने गोल्ड का हैट्रिक लगा दिया। आज तीरंदाजी में भारत को 3 गोल्ड मेडल मिले हैं। भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने देश का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। फाइनल मुकाबला हुआ जिसमें चीन को शिकस्त देकर भारतीय टीम ने गोल्ड मेडल पर अपना कब्जा कर लिया।
1: इस शानदार जीत के साथ ही भारत ने महामुकाबले में तिरंगा सबसे ऊंचा पायदान पर फहरा दिया और चिकिता प्रतिका और साथ ही ज्योति की तिकड़ी ने कमाल का प्रदर्शन किया। शूटिंग मिक्स्ड ट्रैप टीम की नीरू डांडा और कायन चेनाई की जोड़ी ने भी गोल्ड जीतकर विजय पताका लहरा दिया है।
2: बहुत खुशी है हमें, आज हमारा फर्स्ट मेडल मैच था आर्चरी में एंड हमने गोल्ड जीता एंड बहुत बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमने एज ए टीम बहुत मेहनत करी है एंड आज फाइनल सेमीफाइनल फाइनल दोनों मैच में भी अपने तरफ से पूरी कोशिश किया एंड अपने 100% दिया।
3: अच्छा लग रहा है मुझे बहुत कि हम ये गोल्ड मेडल जीत पाए, मेरे टीममेट्स के साथ मैंने जीता, बस मेरे शॉट्स पे भरोसा किया और मेरे टीममेट्स में भरोसा किया, बस वही।
4: आर्चरी का दिमाग में कब से आया, कब से आपने आर्चरी शुरू की?
3: मैंने फोर्थ स्टैंडर्ड से आर्चरी शुरू किया है स्कूल में से।
1: देखिए, एशियन गेम्स में आज भारत की दमदार शुरुआत रही। आज भारत ने सुबह से अब तक 4 मेडल जीत लिए हैं, जिसमें से 3 गोल्ड 1 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। वहीं एथलेटिक्स इवेंट के आखिरी दिन रिले टीमें पदक की दौड़ में होंगी शामिल। इसके अलावा कई खेलों में भी भारतीय खिलाड़ी पदक की दावेदारी पेश करेंगे।
0: और देखिए, 11वें दिन भारत ने 4 मेडल अपने नाम किए हैं। आज भारत ने भारतीय महिला तीरंदाजी टीम, भारतीय कंपाउंड मिक्स्ड आर्चरी और शूटिंग मिक्स ट्रैप टीम ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। भारतीय महिला तीरंदाजी टीम की चिकिता प्रतिका और ज्योति की तिकड़ी ने कमाल किया, इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। भारतीय कंपाउंड मिक्स्ड आर्चरी में चिकिता तनिपार्थी और राजेश जाधव की जोड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है। शूटिंग मिक्स ट्रैप टीम की नीरू ढांडा और कायन चेनाई की जोड़ी ने गोल्ड मेडल जीता। महिला 60 किलोग्राम वर्ग कैटेगरी में प्रिया घंगास ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। भारत ने अब तक 9 गोल्ड 21 सिल्वर और 27 ब्रॉन्ज मेडल जीत लिए हैं। इसके साथ ही 57 मेडल्स के साथ भारत पदक तालिका पर 9वें नंबर पर है।

0: तो देखिए एशियन गेम्स में जैवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीतने वाले यशवीर सिंह के घर हरियाणा के भिवानी में जबरदस्त जश्न हुआ। उनके गांव देवसर में आतिशबाजी की गई और पूरे गांव ने अपने लाल की कामयाबी का उत्सव मनाया।
1: इससे पहले यशवीर ने कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। परिवार को उम्मीद है कि यशवीर ओलंपिक में भी देश के लिए गोल्ड मेडल जीतेंगे।
2: बहुत खुशी है, खूब दिल में खुशी से भगवान की दया से कई दिन तक बाट देख रहे थे, बहुत खुशी है।
0: कोलकाता में फुटबॉल प्रेमियों के बीच में गजब का उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि 3 अक्टूबर को सॉल्ट लेक स्टेडियम में भारतीय टीम ब्राजील के साथ इंटरनेशनल फ्रेंडली मैच खेलेगी। ये पहला मौका है जब 5 बार की चैंपियन भारत में जलवा दिखाएगी। तमाम तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इस मैच को लेकर फैंस में गजब का एक्साइटमेंट देखा जा सकता है।
3: दुर्गा पूजा से पहले कोलकाता में फुटबॉल का रोमांच उमड़ने वाला है। सिटी ऑफ जॉय 3 तारीख को ब्राजील के साथ होने जा रही फीफा फ्रेंडली मैच के लिए तैयार हो रही है। ब्राजील की टीम पहुंच चुकी है विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन में। इस ऐतिहासिक मैच के लिए तैयारियां अंतिम चरण में हैं। खास बात यह है कि इस फुटबॉल मैच के दौरान पश्चिम बंगाल की संस्कृति के रंग भी देखने को मिलेंगे। मेहमान खिलाड़ियों को माँ दुर्गा की प्रतिमाएं, दार्जिलिंग चाय, स्थानीय हस्तशिल्प से सजे गिफ्ट दिए जाएंगे। साथ ही खालिस बंगाली व्यंजनों के साथ डिनर की भी व्यवस्था की जा रही है। इस इवेंट को लेकर प्रशासन बेहद उत्साहित है। उम्मीद ये भी है कि ऐसे आयोजन से फुटबॉल की दुनिया में भारत का कद बढ़ेगा।
4: विश्व का जो एक बहुत बड़ा टीम, एक फुटबॉल पावर हाउस जिसको कहता है, वो ब्राजील नेशनल टीम फुल टीम आएगा। उसके बाद उरुग्वे नेशनल टीम आएगा, जो वही वर्ल्ड कप खेला है, वर्ल्ड कप जीता भी है पहले। तो उसके साथ साथ इसके बाद रशियन नेशनल वुमेन्स टीम भी खेलेगा इंडियन नेशनल वुमेन्स टीम के खिलाफ। तो एक के बाद एक इंटरनेशनल मैच हो रहा है और ये पहले बार हो रहा है पूरा भारतवर्ष में। और जिस तरह से पश्चिम बंगाल में हम लोग फुटबॉल को हम सब बहुत प्यार करते हैं, हम लोग एक रसगुल्ला को प्यार करते हैं तो आपको पता ही है, और फिर रसगुल्ला से भी ज्यादा फुटबॉल को प्यार करते हैं, फुटबॉल को पसंद करते हैं।
3: 10 महीने पहले इसी साल्ट लेक स्टेडियम में अर्जेंटीना के सुपरस्टार लियोनेल मेसी का इवेंट हुआ था, लेकिन इस बार पुरानी गलतियों से सबक लेकर पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि फुटबॉल के रोमांच में कोई खलल ना पड़े।
5: सब मिल करके एक अच्छा मैच हो, इसकी प्रयास है। पहली बार भारत में ब्राजील खेल रहा है, अच्छी बात है, पिछले 80 वर्षों में कभी ऐसा हुआ नहीं है। और यदि इससे भारत के फुटबॉल के मान लीजिए कि इंटरनेशनल प्रेजेंस बनता है तो खुशी होगी, क्योंकि आमतौर पर भारत को एक बाजार के रूप से देखा जाता है।
6: वैसे मैदान की तैयारी में भी कोई कमी नहीं है। हम लोग अभी ब्राजील टीम की जो ड्रेसिंग रूम है उसी के अंदर है, और देख सकते हैं कि ये जो ड्रेसिंग रूम है, ये जो लॉकर रूम है, यहाँ पे हर एक प्लेयर्स की अलग अलग जो लॉकर्स है उसको यहाँ पे ब्लॉक कर दिया गया है। ये देख सकते हैं कि डॉगलस सैंटोस, डेनिलो मार्किनोस, गैब्रियल वैंडरसन, हुगो सूजा, पूरी ब्राजील टीम इस वक्त कोलकाता में आने वाली है। और सामने की तरफ है रफीना, एंड्रिक, ब्रूनो गुइमारेज, और यही जो स्टार प्लेयर्स है। और उसके साथ साथ इस वक्त 07 स्टार प्लेयर, उनका भी फोटो लगा हुआ है। ये जो है लॉकर रूम है, युवा भारती क्रीड़ांगन की लॉकर रूम है। यहाँ पे हर तरीके से हर एक चीज की व्यवस्था रखी जा रही है, पूरी तरीके से डेकोरेशन जैसे चल रही है वैसे फैसिलिटीज भी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज है। ये जो मैदान है यानी कि स्वामी विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन, जहां पे ये इतनी बड़ी मैच होने वाली है इंडिया वर्सेस ब्राजील, और ब्राजील के साथ ये पहली बार जो है इंडिया में खेलेगा ब्राजील और इंडिया, और यही जो मैच है इसको टारगेट करके आगे की विजन सेट करना है, ऐसा ही सबका कहना है।
3: जाहिर है यहाँ फुटबॉल फैंस बेहद रोमांचित हैं, क्योंकि अब 5 बार की चैंपियन के खिलाफ ब्लू टाइगर्स के दहाड़ने का वक्त आ गया है, और हर फुटबॉल प्रेमी इस रोमांचक मुकाबले का गवाह बनना चाहता है। अनिर्बान सिन्हा रॉय, कोलकाता, गुड न्यूज टुडे।
0: चलिए अब बात करते हैं पर्दे पर प्रहार की।
1: 26/11/2008 को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पर हुए हमले को हम सब ने देखा। करीब 18 साल पहले की वो घटना हम सभी के जहन में होगी। पूरे देश को झकझोर देने वाली इस घटना को कई फिल्मकारों ने पर्दे पर भी उतारा।
0: वो देखिए, एक बार फिर से ये घटना पर्दे पर उजागर होने जा रही है, लेकिन अंदाज पूरी तरह से नया है। फिल्म का नाम है प्रहार, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ उज्ज्वल निगम। कैसे ये फिल्म मुंबई हमले पर आई, अब तक की फिल्मों से अलग होगी, हम आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन पहले देखिए उसकी छोटी सी झलक।
7: 26 नवंबर को जब CST पर अटैक्स हुए थे, वो याद है आपको?
8: इस बार आप स्टेट ऑफ महाराष्ट्र को नहीं, पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
9: लेट द वर्ल्ड आल्सो सी के इंडिया और पाकिस्तान में क्या फर्क है। हमारे लिए आतंकवादी के लिए भी संविधान है, और उनके यहाँ पर तो आतंकवाद ही संविधान है।
10: अगर आपके पास कोई सबूत है तो वो सबके सब हमें पेश कर दीजिए। आप
11: सबूत चाहिए तो जाके हाफिज सईद से मांगिए, नहीं तो दाऊ के घर चले जाइए कराची में, उससे तो बातचीत होती होगी। आप
12: जनाब निकम, अपने ईमान का हिसाब मुझे अपने रब को देना, आपको नहीं जनाब।
13: ना तो उज्ज्वल निकम भी हनुमान जयंती के दिन पैदा हुआ था, मेरा हिसाब भी बजरंग बली लेंगे और मेरे दुश्मनों का भी।
14: मुझे केस जीतने की खुशी तब तक नहीं मिलती जब तक क्रिमिनल को उसकी गलती दिल में ना चुभे, और अगर तेरा कहीं दिल है ना कसाब, उसे ढूंढ निकालूंगा मैं।
15: मुझे डर नहीं लगता क्योंकि तू मेरे साथ है।
16: हमें भी पाकिस्तान में खुश के मारना चाहिए।
17: निकम, क्या आप इस केस को सही अंजाम दे पाएंगे?
18: ये केस तब तक चलता रहेगा जब तक मैं इसका हर जुर्म, हर क्राइम, हर कॉन्स्पिरेसी को बेनकाब ना कर दूं। और ये मेरा वादा है उन सैकड़ों लोगों से जिन्होंने अपनी जान गंवाई है रोनन, ये वादा है मेरा।
19: मुझे टॉर्चर करके कबूलनामा साइन करवाया इन्होंने, मैं तो बंबई घूमने आया था जनाब। उधर जूह चौपाटी पे था तो अमिताभ बच्चन का बंगला देखने चला गया, उधर पुलिस वालों ने पकड़ लिया।
20: आई उज्ज्वल निकम अस एक्यूज अजमल अमीर कसाब शुड बी हैंग्ड टिल हिज डेथ।

0: तो देखिए, अभी जो आपने द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ उज्जवल निकम प्रहार के ट्रेलर की झलक देखी, उससे आप ये अंदाजा तो लगा ही लिया होगा कि ये कोर्टरूम ड्रामा है जिसमें उज्जवल निकम मुंबई अटैक के गुनहगार कसाब को उसके अंजाम तक पहुंचाते हैं। फिल्म में दिखाया गया है कि उज्जवल निकम ने कैसे इस मुश्किल केस को आसानी से जीत लिया,
1: क्या क्या चुनौतियां उन्होंने फेस की, कैसे कसाब के आका पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया। सोमवार को प्रहार द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ उज्जवल निकम के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में खुद उन्होंने इससे पर्दा उठाया है और फिल्म में उज्जवल निकम का किरदार राजकुमार राव ने निभाया है।
2: 26 नवंबर को जब CST पर अटैक्स हुए थे, वो याद है आपको?
3: वो रात मैं कभी नहीं भूल सकती।
4: छब्बीस नवंबर 2008 इतिहास में दर्ज एक ऐसी तारीख है जिसे कभी कोई हिंदुस्तानी भूल नहीं सकता। एक तरफ ये तारीख भारत के सुरक्षा बलों की अदम्य वीरता के रूप में दर्ज है, तो दूसरी ओर पाकिस्तान की उस कायराना हरकत की गवाह है जब सीमा पार से आए 10 हथियारबंद आतंकियों ने मुंबई को दहला कर रख दिया था।
2: के लिए भी संविधान है और उनके यहाँ पर तो आतंकवाद ही संविधान है।
4: जब मुट्ठी भर आतंकियों ने करीब 60 घंटों तक देश की आर्थिक राजधानी को बंधक बनाकर रख दिया था।
5: क्या ये डिजिटल फोटोग्राफ्स मॉर्फ किए जा सकते हैं?
6: मेरी फोटोज मॉर्फ।
4: मुंबई अटैक की वो चिर परिचित कहानी पर्दे पर एक बार फिर नमूदार होने वाली है, लेकिन एक नए अंदाज में। प्रहार द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ उज्जवल निकम।
7: योर ऑनर, हाउ कैन यू कॉल मी दैट?
8: आई मीन बाय द टेररिस्ट लॉयर।
9: इस्लामाबाद से एक डेलीगेशन आ रहा है मुंबई।
4: जैसे कि फिल्म के नाम से जाहिर है, इस बार पर्दे पर सिर्फ गोली और बंदूक नहीं चलेगी। सबूत और सच्चाई से उस खौफनाक मंजर को अंजाम देने वालों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा।
2: आपको नहीं चला
10: ना, तो उज्जवल निकम भी हनुमान जयंती के दिन पैदा हुआ था। मेरा हिसाब भी बजरंग बली लेंगे और मेरे दुश्मनों का भी।
4: उनके आकाओं को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया जाएगा। असल जिंदगी में ये काम किया था देश के नामी गिरामी वकील उज्जवल निकम ने, जिनका किरदार फिल्म में राजकुमार राव ने निभाया है।
2: और अगर तेरा कहीं दिल है ना कसाब, उसे ढूंढ निकालूंगा मैं।
11: अब हमेशा कहते हैं कि आपको डर नहीं लगता।
4: जाहिर सी बात है, जब कहानी रियल हो और शख्सियत इतनी बड़ी हो तो उसके लिए तैयारी भी कुछ खास करनी पड़ी होगी।
12: ये केस तब तक चलता रहेगा जब तक मैं इसका हर जुर्म, हर क्राइम, हर कॉन्स्पिरेसी को बेनकाब ना कर दूं।
13: जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी, जैसे क्योंकि आपने कहा कि उज्जवल सर हैं, वो ये फिल्म देखेंगे, उनकी फैमिली है वो ये फिल्म देखेंगी और बहुत सारे उनके जानने वाले लोग हैं, तो जिम्मेदारी थी कि किस तरह से हम उनकी जिंदगी को पर्दे पर उतार रहे हैं, उन सच्चाइयों को कहानी के रूप में लोगों के सामने ला रहे हैं, तो उस सच्चाई को भी मेंटेन रखना, उनकी ज़िंदगी को, उनके तौर तरीके को, उनके बोलने के तरीके को कैसे मैं अपना पाऊं कि लोग जब देखें स्क्रीन पर तो वो राज को ना देखें, वो उज्जवल निकम जी को देखें, तो उसके लिए मेहनत थी। ऑफ कोर्स मेहनत तो होती है जब एक डराने वाला काम होता है कि ये मुझसे इतना अलग दिखते हैं, बोलते हैं, मैं कैसे कर पाऊंगा, पर जहां डर होता है वहां मजा भी आता है।
14: राजकुमार जी ने जिस अंदाज में मैं कोर्ट में आर्गुमेंट्स करता हूं, उसी अंदाज में उन्होंने कहा है। एक ही डायलॉग उनका बोलता हूं ताकि आपको समझ सकते हैं। याला मारू नका, हाय जीवंत एविडेंस है। दिस इज अ मराठी डायलॉग व्हिच ही हैज अ टर्न इन द सेम फोर्स इन द सेम लैंग्वेज।
2: 26 नवंबर को जब CST पर अटैक्स हुए थे,
4: प्रहार के ट्रेलर की शुरुआत होती है मुंबई शहर की झलक के साथ,
3: मैं कभी नहीं
4: भूल। और फिर एक सीन आता है जहां राजकुमार राव कोर्ट रूम में एक बच्ची से पूछते हैं कि 26/11 हमले के दौरान क्या हुआ था,
2: जिसने आप पर, आपकी माँ पर गोलियां चलाई थी, वो आज है यहाँ इस कोर्ट में।
4: इसके बाद दिखाया जाता है कि कैसे उज्जवल निकम कसाब को फांसी दिलाने के लिए लड़ते हैं और आतंकवादियों को एक करारा जवाब देते हैं।
2: पाकिस्तान में क्या फर्क है? हमारे लिए आतंकवादी के लिए भी संविधान है और उनके यहाँ पर तो आतंकवाद ही संविधान है।
4: सोमवार को मुंबई में प्रहार फिल्म का ट्रेलर लॉन्च इवेंट रखा गया, जिसमें एक्टर राजकुमार राव, वामिका गब्बी, जयदीप अहलावत, डायरेक्टर अविनाश निकम, प्रोड्यूसर दिनेश विजन के साथ खुद उज्जवल निकम भी शामिल हुए। उज्जवल निकम ने इस दौरान बताया कि मुंबई हमले के गुनहगारों को उनके अंजाम तक पहुंचाने में इतना वक्त कैसे लगा।
15: आपकी AK-47 है, बता सकते हैं कौन सी वाली?
16: नो सर।
14: असल में देखा जाएगा तो इसको ज्यादा वक्त नहीं लगा, क्योंकि 26/11 पर मुंबई पे हमला हुआ 2008 को, और ये केस की ट्रायल की सुनवाई 6 मई 2009 को शुरुआत हुई और फांसी की सजा कसाब को दी गई थी, मुकर्रर अनाउंसमेंट किया गया था 6 मई 2010, यानी एक साल के अंदर कसाब का निकाल लग गया था। और उसी दरमियान फिर हाईकोर्ट का अपील, हमारे कानून के मुताबिक उसे 6 महीने लगे, उसके बाद एक साल लगा, 2012 में अंतिम फैसला हुआ। और इस पूरी ट्रायल के दरमियान कसाब ने जो हथकंडे अपनाए, और कई हथकंडे तो ऐसे हैं कि पहले बार कसाब ने कहा कि मैं नाबालिग हूँ, फिर कहा मैं तो जूहू चौपाटी में आया था 26/11 को नहीं तो 6/11 को आया था क्योंकि मुझे बॉलीवुड का अट्रैक्शन था। फिर उसने कहा कि मुझे पॉइजन दिया जा रहा है, फिर उसने फिर कहा कि हाँ मैं इकबाली बयान करना चाहता हूँ, फिर मोड़ गया, फिर इकबाली बयान में कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, अबू इस्माइल ने किया, मेरा जो साथी था। इस प्रकार अलग अलग हथकंडे अपनाया था और हमें कानून के माध्यम से पूरे डिसमेंटल करना पड़ा।
6: This case is full of holes, Your Honor.
16: मुंबई अटैक की कहानी कई बार पर्दे पर उतारी जा चुकी है, लेकिन इस बार प्रहार के जरिए कोर्ट रूम ड्रामा को दिखाया जाएगा कि कैसे भारत की संवैधानिक न्याय व्यवस्था एक आतंकी को भी अपना पक्ष रखने का मौलिक अधिकार देती है। यानी ये फिल्म वकीलों के बीच जिरह और बहस से भरपूर होगी, जैसा कि ट्रेलर में दिखाई भी दे रहा है।
2: का हिसाब मुझे अपने रब को देना है, आपको नहीं जाना।
10: ना तो उज्जवल निकम भी हनुमान जयंती के दिन पैदा हुआ था, मेरा हिसाब भी बजरंग बली लेंगे और मेरे दुश्मनों का भी।
17: इतना शॉकिंग इंसिडेंट था और यही जो सवाल सबको उठ रहे थे कि यार इतना वक्त क्यों लगा, मतलब ऐसे एक आतंकवादी को हमने ये ट्रायल क्यों दिया, मतलब वो गुस्सा था, वो सारे सवालों के जवाब नहीं थे। और जब उज्जवल जी से मिले, बातें हुई, और ऑब्वियसली एक सबसे मुश्किल चीज़ जो रास्ता होता है वो चुनना बहुत मुश्किल होता है, मुझे ऐसा लगता है। और ये जो न्याय का रास्ता है, जो आसान रास्ता नहीं है, मुश्किल रास्ता है, वक्त लगता है, यू नो, और एक आतंकवादी को भी एक फेयर ट्रायल देना, ये मतलब ये संवैधानिक जो हमारी वैल्यूज को अफोल्ड करना, वो इतना एक मुश्किल टास्क था जो मुझे लगता है कि उस वक्त के गवर्नमेंट ने, आपने सारे मतलब ये न्याय व्यवस्था को इस तरह से बरकरार रखना, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी चीज़ थी। और यही एक चीज की वजह से मुझे इस स्टोरी में इंटरेस्ट आया।
16: कोर्ट में आतंकी कसाब के वकील बने सिकंदर खेर के साथ राजकुमार राव का टशन देखने को मिलता है। तो इस्लामाबाद से कसाब को बचाने के लिए इंडिया आई डेलीगेशन को लीड कर रहे जयदीप अहलावत और राजकुमार के बीच कोर्ट में हुई बहस भी जोरदार है।
7: नहीं तो दाऊ के घर चले जाइए कराची में, उससे तो बातचीत होती होगी। आप जनाब निकम,
16: फिल्म में राजकुमार राव की पत्नी का रोल वामिका गब्बी ने निभाया है। वामिका के किरदार का नाम ज्योति है, जो कि असल में उज्जवल निकम की पत्नी है। वामिका के लिए रियल लाइफ किरदार को पर्दे पर उतारना कितना चैलेंजिंग था वो भी सुनिए।
18: मैं बहुत डर गई थी पहले तो कि मैं ये कैरेक्टर कैसे प्ले करूँगी। फिर जब मैं ज्योति मैम से मिली और मुझे समझ में आया कि वो कितनी स्ट्रॉन्ग और उनका कितना बड़ा रोल रहा है उज्जवल जी की इस लड़ाई में, तो मुझे तो बहुत ही खुशी हुई कि मुझे ये पार्ट प्ले करने को मिला। मैम की थोड़ी बॉडी लैंग्वेज और इस सब पे, और मैं पहली बार एंड प्लस वर्किंग विद हिम, कोई भी एक्टर वैसे ही थोड़ा बिकॉज ही सो गुड, तो मैंने तो फुल स्टूडेंट की तरह तैयारी की थी कि मुझे अच्छा करना है, जितना मुझे पार्ट मिला आई हैव टू डू माई बेस्ट। वो तो अब आप फिल्म देख कर ही बता पाएंगे कि मेरी जो भी तैयारी थी वो कुछ पर्दे पर आपको कुछ अच्छी लगी है कि नहीं, एंड आई होप फिल्म देखने के बाद लोगों को पसंद आएगा।
16: प्रहार के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस भी शामिल हुए। फडणवीस ने कहा कि ये फिल्म दुनिया के सामने एक मजबूत संदेश रखती है कि भारत कानून के जरिए न्याय में विश्वास रखता है।
19: उज्जवल निकम जी को मैं इसलिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने केवल किसी आतंकवादी को फांसी तक पहुंचाने का काम नहीं किया, तो उन्होंने उसके पीछे की डिजाइन, उसके पीछे की कॉन्स्पिरसी, इसको दुनिया के सामने उजागर किया और ये जघन्य अपराध करने वाली इस आतंकवाद को पूरे तरीके से मदद करने वाली जो पाकिस्तान की सोच थी, इट वॉज अ स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, इसको दुनिया के सामने एस्टेब्लिश करने का काम ये उज्ज्वल निकम जी ने करके दिखाया।
20: निकम, क्या आप इस
16: प्रहार द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ उज्ज्वल निकम का ट्रेलर तो जोरदार है, सोशल मीडिया पर इसे रिस्पांस भी खूब मिल रहा है।
21: और ये मेरा वादा है उन सैकड़ों लोगों से जिन्होंने अपनी जान गंवाई है रोनन, ये वादा है मेरा।
16: उम्मीद है कि रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड ये फिल्म भी असरदार होगी। प्रहार 18 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: अब बात कर लेते हैं आतंकवाद के खिलाफ जंग में बड़ी कामयाबी की। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में सुरक्षा बलों ने आज पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर के कमांडर मूसा को मार गिराया। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच देर रात मुठभेड़ हुई। सेना के मुताबिक खुफिया जानकारी के आधार पर सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने यूएसमर्ग के कोराग इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया था।
22: जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में सुरक्षा बलों और सेना को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है जब लश्कर के प्रमुख कमांडर हाशिम, जिसको कोड वर्ड था फौजी मूसा, वो मारा गया है। उसका शव सुरक्षा बलों को बरामद हुआ है और भारी मात्रा में हथियार और गोली बारूद भी। दरअसल पिछले 2 साल से इस पाकिस्तानी लश्कर कमांडर की तलाश सेना और सुरक्षा बलों को थी, क्योंकि वो उस ग्रुप का एक प्रमुख था जो पिछले 3 साल के दौरान रजौरी, पुंछ, कुटवा, डोडा के साथ साथ कश्मीर के कई इलाकों में कई आतंकी हमलों में मुलविस था। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के बाद इस ग्रुप को लेकर सेना और पैराट्रूप्स, जो भारतीय सेना का विशेष दल है, वो हर जंगल को खंगाल रही थी और आखिरकार इस पूरे आतंकी ग्रुप का जो है सफाया सेना करने में सफल हो गई है। अगर फौजी मूसा की बात की जाए तो कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान का एक एसएसजी कमांडो रह चुका है, वहाँ पर प्रशिक्षित था और वो ग्रुप जिसकी वो अध्यक्षता या जिसका ग्रुप का वो सरगना था, वो ग्रुप जंगलों के वारफेयर में काफ़ी ट्रेन भी था और उसको जंगलों में लड़ने की महारत भी थी। कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में सेना और सुरक्षा बलों के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी कि पाकिस्तान का ये लश्कर का ग्रुप अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। बड़गाम से इरशाद मलिक के साथ अशरफ वानी।
1: देखिए, कभी कभी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जो पुलिस की आमतौर पर कड़क छवि से बिल्कुल हटकर होती हैं। कुछ ऐसी तस्वीरें जो पुलिस डिपार्टमेंट को लेकर नजरिया बदल देती हैं। ऐसी ही एक तस्वीर यूपी के झांसी से आई, जब समर्थ थाने में तैनात रामचंद्र 40 साल की सेवा देने के बाद उप निरीक्षक पद से रिटायर हो गए। विदाई समारोह में उनकी आंखें छलक पड़ी, उनके सहकर्मियों ने माला पहनाकर उनका सम्मान किया। थाने में माहौल काफी भावुक हो गया, उनके साथी गमगीन हो गए। सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है।
23: जीवन में उतार चढ़ाव तो बहुत आए हैं और नौकरी में आनंद भी बहुत आया, कष्ट भी मिले, लेकिन ऊपर वाले कृपा से सब सफलताएं मिल गई।
24: लगभग कितने वर्षों का कार्यकाल रहा और कैसे कैसे गुजारा आपने?
23: हमारा कार्यकाल तो लगभग 40 साल का रहा पुलिस सेवा में, और ईमानदारी से नौकरी की मैंने, और ईमानदार लोगों का मैंने, जो गरीब टाइप के थे या ईमानदार थे, उनकी हमेशा मदद की और अपराधियों के खिलाफ रहा।
1: चलिए अब आपको लेकर चलते हैं भदोही, जो एक बार फिर से हाथ से बने कालीन के वैश्विक बाजार के केंद्र में होगी। दरअसल वहां पर 4 अक्टूबर से इंडिया कार्पेट एक्सपो आयोजित होने जा रहा है और इस एक्सपो में 65 देशों के 300 से अधिक बायर शामिल होंगे। एक्सपो में 200 से अधिक भारतीय कालीन निर्यातक अपने उत्पाद पेश करेंगे और इसके लिए निर्यातकों ने नए और आकर्षक डिजाइन सैंपल भी तैयार किए हैं। खास बात यह है कि इस बार आयोजकों का ब्रिक्स देशों पर अधिक फोकस होगा।

0: ये है कारपेट एक्सपो मार्ट, जहां 4 अक्टूबर से इंडिया कारपेट एक्सपो आयोजित होने जा रहा है। ऐसे में एक्सपो को लेकर तैयारियां भी जोर शोर से जारी हैं। इन तैयारियों के तहत मार्ट में स्टॉल्स बनाने का काम तेजी से हो रहा है। बताया जा रहा है कि एक्सपो में 200 से ज्यादा भारतीय कालीन निर्यातक अपने उत्पाद पेश करेंगे। इसके लिए निर्यातकों ने नए और आकर्षक डिजाइन सैंपल तैयार कर दिए हैं। कालीन निर्यात संवर्धन परिषद के वाइस चेयरमैन असलम महबूब ने बताया कि अभी तक 325 बायर्स के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और ये संख्या और बढ़ सकती है।
1: इससे काफी एक्सपेक्टेशन है, जिस तरह से बायर्स का रुझान आ रहा है, जिस तरह से उनका रजिस्ट्रेशन आ रहे हैं, उससे हम लोग काफी होपफुल हैं कि फेयर बहुत अच्छा जाएगा। हमारा ये लैंडमार्क 50th फेयर भी है, उसके हिसाब से भी हमारी तैयारी है।
0: 4 अक्टूबर से शुरू हो रहा ये एक्सपो बायर्स और सेलर के बीच एक महत्वपूर्ण ब्रिज का काम करता है। एक्सपो में नए फैशन और डिजाइन सामने आते हैं, जिससे निर्यातकों को नए नए ऑर्डर्स मिलते हैं और बुनकरों को भी काम मिलता है। इस एक्सपो को लेकर कालीन निर्यातकों ने नए नए डिजाइन सैंपल फेयर में डिस्प्ले करने के लिए तैयार कर लिए हैं।
2: और ज्यादा इस बार फोकस नेचुरल प्रोडक्ट पर, जूट हो गया, रियल सिल्क हो गया, और ऐसे प्रोडक्ट की तैयारी हो रही है जिसका कॉस्ट कम हो, ताकि उसकी उसके तरफ बायर ज्यादा से ज्यादा जो है अट्रैक्ट हो और अच्छा काम हो।
0: आपको बता दें कि ईरान अमेरिका वॉर के कारण पिछले दिनों दिल्ली और जर्मनी में आयोजित होने वाला फेयर रद्द हो गया था, जिससे कालीन निर्यातकों में मायूसी थी। लेकिन अब भदोई में होने जा रहे इस एक्सपो से एक बार फिर कालीन निर्यातकों की उम्मीद जगी है। एक्सपो में अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, रशिया, कनाडा, इटली, स्पेन समेत विश्व के 65 देशों के बायर्स हिस्सा लेने वाले हैं।
3: ज्यादा से ज्यादा हम लोग ऐसे प्रोडक्ट को बनाएंगे या अभी इसे बनाना शुरू भी कर चुके हैं, जैसे पेटियान का होता है जो सस्टेनेबल होता है, जो एनवायरमेंट को प्रॉब्लम या एनवायरमेंट को उससे हार्म नहीं होता है, ऐसे प्रोडक्ट को हम लोग बना रहे हैं और कस्टमर्स भी हमारे ऐसे ही प्रोडक्ट को मांग रहे हैं।
0: इस 50वीं इंडिया कारपेट एक्सपो के आयोजकों का कहना है कि इस बार ब्रिक्स देशों पर अधिक फोकस है, इसलिए यहां बायर्स के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। भदोई से महेश जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: चलिए इसके साथ लंच टाइम में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए पहाड़ों पर मौसम कूल।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
12: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: एशियन गेम्स में भारत की गोल्डन हैट्रिक शूटिंग में जीता नीरू चेन्नई ने सोना, बॉक्सिंग में प्रिया घंघास को ब्रॉन्ज, एक और गोल्ड मेडल देश के नाम हुआ। जोधपुर में तरंग शक्ति युद्धाभ्यास की गर्जना, आसमान में F-16 और राफेल समेत 8 देशों के विमानों का शक्ति प्रदर्शन, 12 अक्टूबर तक चलेगा युद्धाभ्यास। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ के बाद मिशन जिंदगी तेज, कुशीनगर में NDRF SDRF की टीमें अलर्ट, राहत बचाव का काम तेज। रामनगरी अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारियां तेज, राम की पैड़ी पर रंग रोगन का काम तेज, इस बार 30 लाख दीयों से जगमगाया होगा धर्मनगरी।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।

0: देखिए पहाड़ों पर एक बार फिर से मौसम कूल हो गया है। पहाड़ों पर बर्फबारी ने खूबसूरती में चार चांद लगा दिए। मनाली से लेकर धर्मशाला तक ऊंची चोटियां बर्फ की सफेद चादर से ढक गई हैं।
1: जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भी बर्फबारी का खूबसूरत नजारा देखने को मिला। गुलमर्ग की पहाड़ियां और ढलान सफेद बर्फ से ढक गए हैं। बर्फ की मोटी परत के बीच देवदार के पेड़ और पहाड़ बेहद ही आकर्षक नजर आ रहे हैं। गुलमर्ग की बर्फीली वादियां सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, तो उत्तराखंड में भी ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ का शानदार नजारा देखने को मिला। हेमकुंड साहिब से लेकर केदारनाथ तक पहाड़ों की चोटियां बर्फ से लदी हुई नजर आ रही है। बर्फबारी के बीच पहाड़ों की खूबसूरती देखते बन रही है।

0: कश्मीर की वादियों में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में बर्फबारी के साथ बारिश और गरज चमक भी देखने को मिली है। यानी सितंबर के आखिरी दिनों में ही कश्मीर की पहाड़ियों ने सर्दियों की आहट दे दी है। गुलमर्ग के ऊंचे पहाड़ों पर ताजा बर्फबारी ने नजारे को बेहद खूबसूरत बना दिया है। आफरवाद पीक पर गिरी बर्फ ने पहाड़ों को सफेद चादर ओढ़ा दी है। बर्फ की सफेदी और बादलों की आवाजाही के बीच गुलमर्ग का मौसम सर्द एहसास करा रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में भी बर्फबारी से सजे खूबसूरत पहाड़ों का दीदार हो रहा है। कठुआ के ज्यादा ऊंचाई वाले कैलाश कुंड पहाड़ों और चतरगला बाईपास इलाके में ताजा बर्फबारी हुई है। ऊंचे इलाकों में मौसम बदलने के साथ ही करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फ से ढका नजारा दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग ने ऊपरी इलाकों में ठंड बरकरार रहने और हल्की बर्फबारी की संभावना जताई है। प्रशासन ने ऊंचाई वाले मार्गों पर यात्रियों को भी सावधानी बरतने की सलाह दी है। अगर आप भी पहाड़ों की इस ताजी रंगत का दीदार करना चाहते हैं, तो कठुआ की सुंदर वादियां आपका इंतजार कर रही हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो सितंबर के आखिरी दिनों में यहां भी मौसम सर्द हो गया। सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के असर से कांगड़ा की धौलाधार पर्वतमाला ने एक बार फिर से बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। सितंबर में दूसरी बार हुई बर्फबारी से धौलाधार की ऊंची चोटियां चांदी के मुकुट की तरह चमक उठी हैं। बादलों के बीच बर्फ से ढकी चोटियों का ये नजारा बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है। धौलाधार की सफेद चोटियां, नीचे छाए बादल और बारिश से धुली हरियाली कांगड़ा की वादियों की खूबसूरती को चार चांद लगा रही है। सिर्फ धौलाधार ही नहीं, हिमाचल के दूसरे ऊंचाई वाले इलाकों में भी ताजा हिमपात हुआ है। किन्नौर, लाहौल स्पीति और कुल्लू की ऊंची चोटियों पर भी बर्फबारी हुई है। धर्मशाला और आसपास के इलाकों में बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई। सितंबर के आखिरी हफ्ते में ही मौसम ने ऐसा रंग बदला कि पहाड़ों पर सर्दी का एहसास होने लगा।
1: बीते 24 घंटों में प्रदेश के कई क्षेत्रों में हल्के से मध्यम बारिश के साथ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में एक दो स्थानों में हैवी रेनफॉल दर्ज की गई है। सबसे अधिक बारिश कांगड़ा स्टेशन में रिकॉर्ड की गई, लगभग 70 mm के आसपास। उसके उपरांत जो सेकेंड हाईएस्ट है धर्मशाला में 60 mm के आसपास रिकॉर्ड की गई। वहीं जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं शिमला, सिरमौर, मंडी और किन्नौर, यहाँ पे मॉडरेट कैटेगरी की बारिश रिपोर्ट की गई। और जो हमारे ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं स्पेशली डिस्ट्रिक्ट किन्नौर, लाहौल स्पीति और कुल्लू में, और यहाँ पे हल्की बर्फबारी रिपोर्ट की गई।
0: सितंबर में बर्फ और बारिश की दस्तक बता रही है कि हिमाचल की पहाड़ियों पर सर्द मौसम ने एक बार फिर से कुछ जल्दी ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। ताजा हिमपात से हिमाचल में मनाली के पहाड़ों की खूबसूरती भी निखर आई है। ऊंची पहाड़ी चोटियों पर हुई ताजा बर्फबारी के बाद ये खूबसूरत नजारा दिखा। बर्फ की सफेद चादर में लिपटी पहाड़ियां और उन पर पड़ती सुबह की सुनहरी धूप, मानो आसमान से उतरकर सफेद रंग ने पूरी वादियों को अपने आगोश में ले लिया हो। ताजा बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट आई है और मनाली की फिजाओं में ठंडक पड़ गई है। सितंबर के आखिर में मनाली का ये नजारा सर्दियों की आहट का एहसास करा रहा है। बर्फ से ढके पहाड़, ठंडी हवाएं और धूप में चमकती चोटियां, मनाली की खूबसूरती इस वक्त देखते ही बन रही है। धर्मशाला से पूजा शर्मा और शिमला से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: उत्तराखंड में भारी बर्फबारी के बाद अलग अलग ट्रैकिंग और पर्वतारोहण इलाकों में फंसे ट्रैकर्स और पोर्टर्स की सुरक्षित वापसी के लिए प्रशासन ने रेस्क्यू अभियान चलाया, जिसके तहत 27 और लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि सोमवार को कालिंदी बेस और ऑडनकोल बेस क्षेत्र से 40 सदस्यों को सुरक्षित निकाला गया था।
0: ये तस्वीरें हैं उत्तराखंड के उन ऊंचे पहाड़ों की, जहां इस वक्त बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। हर तरफ बर्फ से लदे पहाड़ और इन पहाड़ों के बीच ट्रैकर्स के रेस्क्यू के लिए उड़ता हेलीकॉप्टर, जो 27 जिंदगियों के लिए वरदान साबित हुआ। ये रेस्क्यू ऑपरेशन बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि रास्ते बर्फ से ढक चुके थे, मौसम लगातार चुनौती दे रहा था। ऐसे में जिला प्रशासन ने हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और 27 लोगों को सुरक्षित हर्षिल पहुंचाया।
3: पर्वतारोही सतोपंत एक्सपेडिशन के पे जा रहे थे और हम वासुकी ताल पे हमारा बेस कैंप था। तब हमें 2 दिन की स्नोफॉल मिली और हम वहाँ ही अटक गए। 5 फीट के करीब स्नोफॉल गिरी थी वहाँ, और इस सभी के दौरान हमें जो प्रशासन की तरफ से मदद मिली है, बहुत बहुत बहुत अभिनंदन हम उनसे अपना प्रकट करते हैं। ADM मैम मुक्ता मिश्रा मैम ने हमें बहुत सपोर्ट किया, SDRF भी यहाँ पे मौजूद था, संजय सर यहाँ थे, और बहुत इम्पोर्टेंटली कर्नल सपाल यहाँ पे थे कुमाऊं रेजिमेंट के, जिन्होंने आर्मी का हमें हेलीपैड यूज करने का मौका दिया। बहुत ही अच्छा रहा हमारा रेस्क्यू।
0: इससे पहले सोमवार को कालिंदी बेस और ऑडिन कोल बेस क्षेत्र से 40 लोगों को सुरक्षित निकाला गया था। इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी जिला प्रशासन के स्तर पर की गई। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी प्रशांत आर्य कंट्रोल रूम से रेस्क्यू अभियान पर लगातार नजर बनाए थे, जबकि अपर ADM मुक्ता मिश्रा हर्षिल में मौजूद रहकर रेस्क्यू से जुड़ी व्यवस्थाओं की निगरानी कर रही थी।
4: काशी में हाई एल्टीट्यूड के एरियाज में एक्सपेडिशन और ट्रैकिंग ग्रुप्स जाते रहते हैं, अभी भी गए हुए थे सितंबर मंथ में ड्यू परमिशन लेके, लेकिन मौसम अचानक खराब होने के कारण वो दल फंस गए थे। इसलिए शासन के निर्देशों के क्रम में ट्रैकिंग एजेंसीज की रिक्वेस्ट पे हम एयर एविकेशन मिशन चला रहे हैं। इसमें कल 28 सितंबर को 40 लोगों को रेस्क्यू किया गया ऑडिन कॉल और कालिंदी पास से। हर्षिल हेलीपैड में हमारी सभी स्टेक होल्डर, सभी डिपार्टमेंट, सेकेंड कुमाऊं रेजिमेंट, SDRF, सप्लाई डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम अवेलेबल है। जो सुरक्षित लोग आ रहे हैं उनके स्वास्थ्य परीक्षण और खान पान की व्यवस्था की गई है।
0: दो दिन तक चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना, NDRF, पुलिस, वन विभाग, आपदा प्रबंधन और नागरिक उड्डयन विभाग की टीमों ने अहम भूमिका निभाई, जिनकी बदौलत इन ट्रैकर्स और पोर्टर्स को नया जीवनदान मिला है। उत्तरकाशी से ओमकार बहुड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: और चलिए एशियन गेम्स की बात कर लेते हैं। भारत के झोले में एक और गोल्ड मेडल आया है, यानी आज का दिन एक बार फिर से भारतीय एथलीट्स के नाम रहा। एशियन गेम्स में भारत को मिला है 10वां गोल्ड मेडल। मेंस कंपाउंड आर्चरी में भारत को एक और गोल्ड मेडल मिला है, तो वहीं मुक्केबाजों का भी शानदार प्रदर्शन जारी है। पुरुषों के 90 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल मुकाबले में कपिल पोखरिया ने अपने दमदार खेल का प्रदर्शन किया और ब्रॉन्ज अपने नाम कर लिया।
5: भारत के पास अब तक कुल 10 गोल्ड मेडल हैं और 21 सिल्वर, 27 ब्रॉन्ज और 59 टोटल ये मेडल हो गए, तो मेडल टैली में भारत 7वें स्थान पर अब पहुंच गया है।
2: तो इसी के साथ देखिए मेडल टैली में भारत का प्रदर्शन भी लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत अब 7वें नंबर पर पहुंच गया है। गोल्ड आज लाने का दिन है, तो एशियन गेम्स में आज भारत का गोल्डन दिन कह सकते हैं, क्योंकि एक और गोल्ड मेडल भारत की झोली में गिरा है। भारत के एथलीट्स लगातार एशियन गेम्स में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी टैली को लगातार बढ़ा भी रहे हैं।
5: 10 गोल्ड भारत के नाम हासिल हुए हैं और भारत अब 7वें स्थान पर पहुंच चुका है। मेंस कंपाउंड आर्चरी में भी अब भारत ने गोल्ड हासिल कर लिया है। साहिल कुशल ने अपने नाम गोल्ड किया और शानदार खबर ये आपको बता रहे हैं, सिल्वर भारत के पास 21 है और आज भारत के लिए गोल्डन दिन माना जा रहा है, क्योंकि 10 गोल्ड अब भारत के पास है। मेंस कंपाउंड आर्चरी में भी अब गोल्ड मेडल भारत को हासिल हुआ है।
2: देखिए भारत की आर्चरी टीम लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है और तीरंदाजों ने सीधा गोल्ड मेडल पर निशाना लगाया है। 10 गोल्ड है हमारे पास, 21 सिल्वर है, 28 ब्रॉन्ज है और एशियन गेम्स में भारत का ये दमदार प्रदर्शन लगातार जारी है। अगर आप इस बार दीपावली के दौरान अयोध्या जाने का प्लान बना रहे हैं और खास तौर से दीपोत्सव में आपको शामिल होना है, तो ये अच्छी खबर आपके लिए है, क्योंकि इस बार रामनगरी में दीपोत्सव में अलग ही माहौल दिखाई देगा। दरअसल देसी विदेशी पर्यटकों के लिए इस बार उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने खास योजना बनाई है, जिसके तहत दीपोत्सव अयोध्या टूर पैकेज तैयार किया गया है। इस टूर पैकेज में 6 से 8 नवम्बर तक श्रद्धालुओं को श्री राम जन्मभूमि मंदिर, हनुमानगढ़ी जैसे कई और ऐतिहासिक जगहों के दर्शन कराते हुए अयोध्या के आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व से रूबरू करवाया जाएगा।

हर साल सरयू के पावन तट पर बसी अयोध्या जब दीपों की रोशनी से जगमगाती है तो मानो आस्था, संस्कृति और परंपरा का अद्भुत संगम साकार हो उठता है। दीपोत्सव के अवसर पर लाखों दीयों की लौ अयोध्या की आध्यात्मिक आभा को और भी भव्य बना देती है।

0: भव्य दीपोत्सव समारोह की तैयारियां केवल दीपों की जगमगाहट तक ही सीमित रहेगी। दरअसल दीपोत्सव के वक्त यहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी कुछ विशेष किया जा रहा है। UPSTDC ने श्रद्धालुओं के लिए एक खास दीपोत्सव अयोध्या टूर पैकेज लॉन्च किया है। ये पैकेज महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और दूसरे राज्यों के श्रद्धालुओं के लिए है। इस टूर पैकेज के तहत श्रद्धालु राम मंदिर, हनुमानगढ़ी, कनक भवन और नागेश्वर नाथ मंदिर के दर्शन करेंगे। दीपोत्सव अयोध्या टूर पैकेज के साथ ही दीपोत्सव की तैयारियों में इस बार 30 लाख दीयों को जगमगाने का भी फैसला लिया गया है। यानी इस दौरान स्थानीय लोगों के साथ देसी विदेशी श्रद्धालुओं की भी जिम्मेदारी है कि वो दीपों की रोशनी के इस त्योहार में शामिल होकर पर्व की सुंदरता और उसकी आभा में चार चांद लगाएं। बता दें कि राम की पैड़ी को 30 लाख दीयों से जगमगाया जाएगा। इसके अलावा शानदार लेजर शो और 2100 ड्रोन शो आयोजित करने की भी योजना है। सरयू नदी के तट पर 2100 वैदिक पुजारी महाआरती करेंगे। वहीं दीप प्रज्वलन में 240 से ज्यादा मंदिर और मठ हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही रामकथा पार्क से लेकर राम की पैड़ी तक लगभग एक दर्जन जगहों पर खास कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जाहिर है अयोध्या में दीपोत्सव केवल दिया जलाने का उत्सव ही नहीं बल्कि भगवान राम के आदर्शों, मर्यादा और अवध नगरी की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को नमन करने का अवसर है। यकीनन इस साल 30 लाख दीयों की रोशनी, ड्रोन और लेजर शो और श्रद्धालुओं के लिए दीपोत्सव अयोध्या टूर पैकेज के साथ होने वाले कई और कार्यक्रम दीपोत्सव की रंगत को और बढ़ाएंगे। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: चलिए इसी के साथ लंच टाइम में रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए जीएनटी।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम।
9: अब आपको लेकर चलते हैं उज्जैन महाकाल बाबा के दरबार में, जहां हर दिन भक्तों का हुजूम उमड़ता है। आज इसी आस्था के दरबार में क्रिकेटर रिंकू सिंह भी पहुंचे और दर्शन पूजन कर महाकाल का आशीर्वाद लिया। महाकाल के दरबार में आस्था के

0: इस रंग में रिंकू सिंह भी पूरी तरह से रंगे नजर आए।
1: अच्छा लगा दर्शन करके, क्योंकि मैं पहली बार 2013 पे आया था जब मैं अंडर 19 खेलता था, तो अब कितने साल बाद आया हूँ, तो काफ़ी अच्छा लगा दर्शन करके यहाँ पर। देश के लिए तो यही है कि बस हमारी टीम और ऊंचाई पे पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा वर्ल्ड कप जीते।
0: साथ इन तमाम खबरों के बाद लंच टाइम में आज के लिए बस इतना ही,
2: और चलिए हम दोनों को इजाजत दीजिए। अच्छी खबरें दिन भर जारी हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।
3: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में, कहीं है खुशियां तो कहीं ड्रामा। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच की।
1: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में, कहीं है खुशियाँ तो कहीं ड्रामा। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोग
2: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
3: एशियन गेम्स में भारत को मिला आज का चौथा गोल्ड, तीरंदाजी 3 और शूटिंग में आया 1 गोल्ड मेडल। मेडल टैली में इंडिया 7वें नंबर पर है।

जोधपुर में तरंग शक्ति युद्धाभ्यास की गर्जना, आसमान में F-16 और राफेल समेत 8 देशों के विमानों का शक्ति प्रदर्शन, 12 अक्टूबर तक चलेगा युद्धाभ्यास।

राम नगरी अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारियां तेज। राम की पैड़ी पर रंग रोगन का काम तेज। इस बार 30 लाख दियों से जगमग होगी धर्मनगरी।

0: आपको बता देते हैं, भारत ने एशियन गेम्स में आज अब तक 4 गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिए हैं। दिन का पहला गोल्ड भारतीय महिला टीम ने तीरंदाजी के कंपाउंड इवेंट में जीता है। फिर चिकिता तनिपार्थी और साहिल राजेश जाधव की जोड़ी मिक्स्ड इवेंट में चैंपियन बनी। इस तरह भारत को अब तक कुल 10 गोल्ड मेडल मिल चुके हैं। तो एक बार टैली के ऊपर भी नजर डाल लेते हैं। भारत के झोले में है 10 गोल्ड, सिल्वर है 21, ब्रॉन्ज है 27 और कुल मिलाकर अब मेडल्स की जो संख्या है वो पहुंच गई है 59 तक। तो मेडल टैली में भारत का 7वां नंबर है। साहिल, कुशल और गणेश की तिकड़ी ने कमाल करके दिखाया है। भारत की झोली में इन्होंने गोल्ड मेडल डाला है और अब संख्या हो गई है 59। तो चलिए इस वक्त की शानदार खबर आपको दिखा रहे हैं। एशियन गेम्स में भारत का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है। आज का दिन भी भारत का गोल्डन दिन रहा क्योंकि अब भारत की झोली में कुल 4 गोल्ड मेडल आज के दिन में आए हैं। दिन का पहला गोल्ड भारतीय महिला टीम ने तीरंदाजी के कंपाउंड इवेंट में अपने नाम किया। उसके बाद चिकिता तनिपार्थी और साहिल राजेश ने कमाल करके दिखाया है। इनकी जोड़ी मिक्स्ड इवेंट में मैदान में उतरी और चैंपियन बनकर बाहर आई। इस तरह भारत को अब तक 10 गोल्ड मेडल मिल चुके हैं। मेंस कंपाउंड आर्चरी में एक और गोल्ड मेडल भारत की झोली में आया है। गोल्ड हो गए हैं 10, सिल्वर है 21, ब्रॉन्ज है 27 और कुल मेडल्स की संख्या हो गई है 59। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और रुक कर लेते हैं जीएनटी एक्सप्रेस का।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
0: एशियन गेम्स में भारत का गोल्डन दिन तीरंदाजी और शूटिंग में स्ट्रैप टीवी ने जीता 4 गोल्ड मेडल। प्रिया घंघास और कपिल पोखरिया ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। एशियन गेम्स में भारतीय महिला तीरंदाजी टीम ने चीन की टीम को हराया, भारत को दिलाया है गोल्ड मेडल। चिकिता, पृथिका और ज्योति की तिकड़ी ने किया कमाल, 238 अंक के स्कोर के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी की। एशियन गेम्स में भारतीय कंपाउंड मिक्स्ड आर्चरी में चिकिता तनिपार्थी और राजेश जाधव की जोड़ी ने कोरियाई तीरंदाजी में हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी, शूटिंग मिक्स ट्रैप टीम ने जीता है गोल्ड मेडल। नीरू ढांडा और कायन चेन्नई की भारतीय जोड़ी ने किया कमाल, 7वें स्थान पर पहुंचा भारत। भारतीय पुरुष कंपाउंड तीरंदाजी की टीम में साहिल, कुशल और गणेश की जोड़ी ने जीता गोल्ड मेडल, चीन की टीम को हराया। एशियन गेम्स में महिला 60 किलोग्राम वर्ग कैटेगरी में प्रिया घंघास ने किया कमाल, जीता ब्रॉन्ज मेडल। एशियाई खेलों में भारत के कपिल पोखरिया ने किया कमाल, 90 किलोग्राम वर्ग में जीता ब्रॉन्ज मेडल। एशियन गेम्स में भारत ने अब तक कुल 10 गोल्ड, 21 सिल्वर और 28 ब्रॉन्ज मेडल जीत लिए हैं, कुल मेडल की संख्या हुई 59। फुटबॉल के महामुकाबले के लिए सज रहा कोलकाता का सॉल्ट लेक स्टेडियम, तैयारियां पूरी। ब्राजील की स्टार टीम के स्वागत की तैयारियां पूरी, खिलाड़ियों को मां दुर्गा की प्रतिमा, दार्जिलिंग चाय और बंगाली व्यंजन परोसे जाएंगे। तीन अक्टूबर को भारत के खिलाफ उतरेगी 5 बार की वर्ल्ड कप चैंपियन ब्राजील, मैच को लेकर खेल प्रेमियों में उत्साह देखा जा सकता है। भारत अंडर 19 ने पहले यूथ टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को पारी और 48 रन से हरा दिया, रायचंदानी ने खेली शानदार पारी। भारत ने पहली पारी में 494 रन बनाए, जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली पारी में 217 और दूसरी पारी में 229 रन पर सिमट कर रह गई। महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंचे क्रिकेटर रिंकू सिंह, विधि विधान के साथ किए दर्शन पूजन। बाबा महाकाल से की सुख समृद्धि की कामना, भोलेनाथ का लिया आशीर्वाद। सूरत के रहने वाले 14 साल के विवान शाह बने गुजरात के सबसे कम उम्र के चेस इंटरनेशनल मास्टर. ज्वाल पटेल का तोड़ा रिकॉर्ड. विवान शाह ने 2400 फिडे रेटिंग पार की और 3 आईएम नॉर्म्स हासिल किए. अब ग्रैंड मास्टर टाइटल पर नजर है उनकी. एमपी रणजी टीम का कमाल ऐलान हो गया है. रजत पाटीदार हुए बाहर. शुभमन होंगे कैप्टन. पुरी में जगन्नाथ मंदिर में दर्शन के लिए उमड़ा आस्था का जनसैलाब. बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए भगवान जगन्नाथ के दर्शन. पुरी में गुंडीचा मंदिर भक्तों और तीर्थयात्रियों के लिए खोला गया. बड़ी संख्या में पहुंचे भक्त. मंदिर खोलने से पहले प्रशासन ने की विधि विधान के साथ पूजा पाठ. भक्तों ने लगाए जय जगन्नाथ के जयकारे. झांसी में विश्व शांति महायज्ञ का भव्य समापन हुआ. बैंड की प्रस्तुतियों ने बांधा समा. भगवान आदिनाथ के रथ को श्रद्धालुओं ने खींचा. भक्तों ने लगाए जयकारे. तेलंगाना के हनमकोंडा में हजारों खंभों वाले मंदिर में सुरक्षा बलों का मॉक ड्रिल. जवानों ने सुरक्षा व्यवस्था को परखा. ऑक्टोपस कमांडो ने आतंकी हमला और आपदा से निपटने की तैयारी की. मंदिर परिसर का जायजा भी लिया. गोरखपुर में सीएम योगी ने गौ सेवा की. मवेशियों को खिलाया चारा. प्रवासी पक्षियों से गुलजार हुआ थूथुकुड़ी. बड़ी संख्या में पहुंचे विदेशी पक्षी. पेंटेड स्टॉक, ग्लॉसी आइबिस और पर्पल हेरन जैसे जल पक्षियों का जमावड़ा देखने के लिए लगी लोगों की भारी भीड़. मुंबई में गणपति राज्य महोत्सव 2026 के तहत बप्पा गाथा गणेश कंथाची डिजिटल पुरालेख पहल का शुभारंभ. सीएम देवेंद्र फडणवीस हुए शामिल. आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में पांडुंगा कार्यक्रम में सीएम चंद्रबाबू नायडू हुए शामिल. डिप्टी सीएम पवन कल्याण भी रहे मौजूद. दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह सिंधू ने महिला सुरक्षा को लेकर दौलत राम कॉलेज का दौरा किया. छात्रों के साथ की मुलाकात. श्रीनगर में हिंदी रंगमंच 2026 कार्यक्रम का आयोजन हुआ. एलजी मनोज सिन्हा हुए इसमें शामिल. एलजी मनोज सिन्हा ने हिंदी भाषा में टॉप करने वालों छात्रों को सम्मानित किया. स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक और नाट्य की प्रस्तुति भी दी. जोधपुर में एक्सरसाइज तरंग शक्ति जारी. पावर इन पार्टनरशिप है इस साल की थीम. आसमान में दिखा फाइटर जेट सपोर्ट एयरक्राफ्ट के जरिए. मल्टीनेशनल एयर पावर का शानदार प्रदर्शन. 12 अक्टूबर तक चलेगा अभ्यास. जोधपुर के आसमान में दिखी 6 F-35 की ताकत. सेनाएं जटिल ऑपरेशंस और आपसी तालमेल को मजबूत करने का अभ्यास कर रही. इस अभ्यास में फ्रांस के राफेल और A400M UAE के F-16 और ग्लोबल 6000 समेत कई अत्याधुनिक विमानों ने दिखाया अपना करतब. तरंग शक्ति में भारतीय वायुसेना के राफेल Su-30 MKI LCA तेजस जैगुआर और MiG-29 की दिखी ताकत. यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2026 का समापन. 6 लाख लोग पहुंचे. के दौरान करीब 6500 करोड़ रुपए के 4400 MOU पर साइन किए गए. बिजनेस इंक्वायरी के आधार पर करीब 15500 करोड़ रुपए कारोबार का अनुमान. यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में रूस, ऑस्ट्रिया, जापान, सिंगापुर, बेलारूस, वियतनाम ने पार्टनर कंट्री के तौर पर हिस्सा लिया था. ट्रेड शो में प्रदेश के सभी 75 जिलों के पारंपरिक शिल्प, हथकरघा, पीतल, कालीन और चमड़ा उत्पाद प्रदर्शित. उत्पाद बने आकर्षण का केंद्र. पणजी में गोवा राज्य सांस्कृतिक पुरस्कार समारोह का आयोजन हुआ। सीएम सावंत ने कई लोगों को सम्मानित किया। रेल यात्रियों के लिए बड़ी सौगात लेकर आई भारतीय रेलवे। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ के दौरान चलेंगी 12 जोड़ी यानी 24 पूजा स्पेशल ट्रेनें। कक्षा 9 में टैक्स की पढ़ाई। नई एनसीईआरटी किताब में छात्रों को आयकर की गणना सिखाई जाएगी। टैक्स को नागरिक जिम्मेदारी से जोड़ा गया है। शासन के प्रतीकों की छात्रों को मिलेगी जानकारी। किताब में सत्यमेव जयते और सेंगोल का जिक्र है। सुशासन के साथ खूबियां भी समझाई गई हैं। छात्र जानेंगे लज्जत पापड़ की कहानी। 7 महिलाओं ने 80 रुपए से शुरू किया था कारोबार। किताब में इसे महिला उद्यमिता का उदाहरण बताया गया। छात्रों को भारत के 120 से ज्यादा यूनिकॉर्न की जानकारी मिलेगी। रोजगार और इनोवेशन में स्टार्टअप की भूमिका भी समझाई जाएगी। धौलपुर के समाजसेवी डॉक्टर आरएस गर्ग और मधु गर्ग की संघर्ष की कहानी केबीसी तक पहुंची। गुड़िया सुडे पर कहानी दिखाने के बाद केबीसी ने दंपत्ति को शो में बुलाया। केबीसी में अमिताभ बच्चन ने करीब 5 मिनट तक डॉक्टर दंपत्ति से उनकी संघर्ष गाथा सुनी। मयूरी विशेष विद्यालय की कहानी सुनकर उन्हें सम्मानित किया। बेटी मयूरी के इलाज और पढ़ाई के दौरान डॉक्टर गर्ग ने धौलपुर में विशेष स्कूल खोलने का फैसला किया। साल 2000 में शुरू हुआ स्कूल आज 400 से ज्यादा बच्चों को आत्मनिर्भर बना चुका है। मयूरी विशेष विद्यालय की शुरुआत बेटी समेत सिर्फ 6 बच्चों से हुई थी। आज 70 से ज्यादा बच्चे यहां रहकर निःशुल्क शिक्षा, प्रशिक्षण और थेरेपी ले रहे हैं। मुंबई से लौटे डॉक्टर दंपत्ति ने गुड न्यूज टुडे का आभार जताया। कहा जीएनटी की वजह से उनकी कहानी केबीसी तक पहुंची और अब देश विदेश में इसकी चर्चा हो रही है। दिल्ली एनसीआर में नया ग्रैप लागू। एक्यूआई स्तर के मुताबिक 4 चरणों में लगाई जाएंगी पाबंदियां। स्कूलों में हाइब्रिड पढ़ाई का मिलेगा ऑप्शन। ऑफिस में आधे स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम की अनुमति। पाली में स्कूल बस में घुसा सांप। ड्राइवर ने सांप का रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। कौशाम्बी में बच्चों की गुहार पर डीएम अंकल ने लिया तत्काल संज्ञान। गांव में लगी स्ट्रीट लाइट। बच्चों ने डीएम को किया थैंक यू। भोपाल के वीआईपी रोड पर तेल से भरा टैंकर पलटा। सड़क पर फैला तेल, लूटने की मची होड़। पहाड़ों पर कुदरत की मेहरबानी बरकरार। मनाली में सीजन की दूसरी बर्फबारी। पहाड़ों पर बिछी बर्फ की मोटी चादर। तापमान में भी दर्ज की गई गिरावट। बर्फबारी के बाद सैलानियों से गुलजार हुआ मनाली। व्यापारियों के साथ खिले पर्यटकों के चेहरे भी। गोपालगंज में बढ़ा गड़ग नदी का जलस्तर। कई इलाके पानी में डूबे। एक जगह से दूसरी जगह लाने के लिए लोग ले रहे हैं नाव का सहारा। मवेशियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम कर रहे हैं लोग। गोपालगंज में मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। हर संभव मदद देने का भरोसा दिया। बिहार के खगड़िया में कोसी और बागमती नदी का बढ़ा जलस्तर। प्रशासन ने बढ़ाई सतर्कता। बाढ़ को लेकर प्रशासन ने तैनात की 10 नावें। पीड़ितों के रहने के लिए बनाए गए 7 राहत शिविर। नेपाल से छोड़े गए लाखों क्यूसेक पानी से डूबा पूर्वी चंपारण। कई जगहों पर जलभराव हुआ। बाढ़ से कई गांवों में भर गया पानी। जिला मुख्यालय से कई गांवों का संपर्क टूट गया।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
2: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में। कहीं है खुशियां तो कहीं ड्रामा। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: एशियन गेम्स में भारत को मिला आज का चौथा गोल्ड, तीरंदाजी में 3, शूटिंग में आया एक और गोल्ड मेडल, मेडल टैली में इंडिया 7वें नंबर पर। जोधपुर में तरंग शक्ति युद्धाभ्यास की गर्जना, आसमान में F-16 और राफेल समेत 8 देशों के विमानों का शक्ति प्रदर्शन, 12 अक्टूबर तक चलेगा ये युद्धाभ्यास। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ के बाद मिशन जिंदगी तेज, कुशीनगर में NDRF SDRF की टीमें अलर्ट, राहत बचाव का काम तेज। कोलकाता में शक्ति उपासना की तैयारियां तेज, मां दुर्गा की प्रतिमा को अंतिम रूप देने में जुटे कारीगर। रामनगरी अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारियां तेज, राम की पैड़ी पर रंग रोगन का काम तेज, इस बार 30 लाख दियों से जगमग होगी धर्मनगरी।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
4: दोस्तों मनोरंजन का पिटारा लेकर मैं हाजिर हूँ। टेलीविजन की दुनिया के ड्रामे से लेकर OTT और रियलिटी शोज की हर हलचल पर रहेगी हमारी नजर, लेकिन उससे पहले शुरुआत करते हैं आज की खास हेडलाइंस के साथ।
5: प्रेम रतन धन पायो, प्रेम रतन धन पायो।
6: सास बहू और बेटियां की एंटरटेनमेंट से भरी गुड न्यूज में आज देखिए, झूम कर नाचेगी अनुपमा, सब मनाएंगे मान डे। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में घर छोड़कर भागेगी मायरा, अरमान और अभीरा होंगे परेशान।

0: परमा नदी सुंदर में फिर लगेगा राध्या पर इल्जाम, शुरू होगा अंतरा और दादी का नया तमाशा।
1: रुको अंतरा, रुको, सिर मत करो, मत जाओ अंतरा, रुक जाओ, रुक जाओ।
2: एक तरफ तो ये राध्या ऐसी हरकतें करती है जैसे इसे बच्चे से कोई लगाव ही नहीं है, दूसरी तरफ ये पालना मंगवा कर वो दिखावा करती है जैसे उसे बच्चे की बड़ी परवाह है।
0: सीरियल पति ब्रह्मचारी में सूरज, ईशा और घरवाले करेंगे पूजा, शुरू होगा ईशा का नया मिशन।

रैप होगी दुआ, मन्नत और विक्रांत बनेंगे दबंग। और अंगद और किंचुक से करेंगे खास मुलाकात, देखेंगे कैसी है इनकी दोस्ती, कैसे ये साथ साथ जिम करते हैं, देखेंगे ये सभी नज़ारे सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटियों में।

सीरियल पति ब्रह्मचारी में घर में होने वाली पूजा को लेकर खुशी का माहौल है, तो वहीं दूसरी तरफ एक नए मिशन में जुट गई है ईशा। और ये मिशन है चंदू के दोनों बच्चों ऋषि और कृति को सुधारने का। क्या ईशा अपने इस मुश्किल मिशन में कामयाब हो पाती है, देखना दिलचस्प होगा।

ईशा और सूरज की हैप्पी फैमिली। ईशा ने उठाई ऋषि और कृति को सुधारने की जिम्मेदारी।

0: दंगल टीवी के सीरियल पति ब्रह्मचारी में आज ड्रामा नहीं बल्कि सब कुछ हैप्पी हैप्पी हो रहा है। आज तो सूरज भी अपने पुराने अवतार में लौट आया है जिसे देखकर सभी घर वाले हैरान हो गए हैं। लेकिन ये लुक सूरज ने ईशा के लिए लिया है क्योंकि आज वो हो रहा है रोमांटिक।
1: लव स्टोरी हो ना तो आप दोनों जैसी हो खुल्लम खुल्ला रोमांस करने का। बस बाबू बाबू बोलते हैं वो भी अकेले।
2: खाली मुंह चलाती रहेगी कुछ काम भी कर लिया।
0: वहीं दूसरी तरफ सूरज का परफ्यूम लगा लिया है चंदू ने। ऐसे में देखिए कैसे सूरज इस बात से भी चिढ़ रहा है। भाई सूरज को तो चंदू बिल्कुल भी पसंद नहीं है लेकिन ताई जी के कारण इन सभी को एक हैप्पी फैमिली बनकर रहना पड़ रहा है।
3: आगे से ध्यान दें कि कॉमन बाथरूम में अगर कोई चीज दिखाई दे तो उसे कॉमन समझ के रख मत लेना।
0: खैर इनकी बातें चल ही रही होती है कि आ जाते हैं ऋषि और कृति और देखिए कैसे आज ईशा के कहने पर ये दोनों भगवान की आरती कर रहे हैं और बारी बारी कर सभी घर वाले पूजा में शामिल होते हैं और भगवान जी की आरती करते हैं।
4: चलिए जल्दी से पूजा कर लेते हैं।

आज तो चंदू भी हैरान है कि उसके बच्चों ने आरती कैसे कर ली, लेकिन ये सब कुछ किया धरा ईशा का है, जिसने उठा लिया है ऋषि और कृति को सुधारने का जिम्मा।

0: सरला, तुम्हारी बहु ईशा ने तो चमत्कार कर दिया। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे बच्चे हाल उठाकर भगवान की आरती करेंगे।
1: टाइम आपने याद है जब मैं इस घर में शादी करके आई थी, तब आपने डांट डांट कर मुझे सब कुछ सिखा दिया था।
2: कोई बात नहीं, याद करके बैठी रहेगी
1: जिंदगी भर।
2: अगर मैंने तेरे साथ उस समय सख्ती नहीं बरती होती तो तुझे ये सब सिखा पाती क्या?
1: वही तो ताइमा, अब आप देखो कैसे मैं ऋषि और प्रीति को सब कुछ सिखा पाती। बहुत तेज भूख लगी है, नाश्ता कर ले, क्यों नहीं आओ।
3: तो भाई अब देखना होगा कि ईशा अपने इस नए मिशन में कामयाब हो पाती है या नहीं। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
4: दंगल टीवी के सीरियल मन अति सुंदर में एक बार फिर अंतरा और दादी के षड्यंत्र का शिकार बनी राध्या। जहां उस पर लगा अंतरा के होने वाले बच्चे को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम, ऐसे में प्रथम किसका साथ देगा, चलिए देखते हैं।
3: और दादी का षड्यंत्र।
1: मैंने तुमसे कहा ना राध्या, वजह ये है, ये पालना।
3: फिर फंसी राध्या।
1: एक तरफ तो ये राध्या ऐसी हरकतें करती है जैसे इसे बच्चे से कोई लगाव ही नहीं है, दूसरी तरफ ये पालना मंगवाकर वो दिखावा करती है जैसे उसे बच्चे की बड़ी परवाह है। बस करो राध्या, ये अपना नाटक बंद करो।
3: घर में शुरू हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा।
1: सब अपने आप हो जाता है। तुम्हारा ना ये नाटक सुन सुन के पक चुकी हूँ मैं, कहीं तुम्हारी बकवास सुन सुन कर। अरे अगर
5: और आपसे देखना था दुकान से पालना आपके सामने आ गया है, अभी कभी स्कीम के बारे में कुछ भी नहीं पता
6: है। छोटी मक्का हो तुम, पिछले कुछ दिनों से ऐसे ऐसे षड्यंत्र रचे जा रही है जिससे अंतरा की प्रेगनेंसी का तुम्हारा सफर
3: दंगल टीवी के सीरियल मन अति सुंदर में फिर एक बार ड्रामा शुरू हो चुका है। और ये सारा षड्यंत्र किसी और ने नहीं बल्कि दादी और अंतरा ने मिलकर रचा है, वो भी राध्या के खिलाफ। देखिए कैसे। राध्या तो होने वाले बच्चे के लिए ये पालना लेकर आई थी, लेकिन इस पालने को लेकर भी बवाल शुरू हो गया। देखिए कैसे दादी अंतरा को भड़का रही है कि वो घर छोड़कर जाने का ड्रामा करे। और शुरू हो गया इन दोनों का ये तमाशा।
6: अंतरा, जल्दी से दो चार जोड़े कपड़े को बैग में डालकर नीचे लेकर आ। तुम्हें अभी के अभी घर छोड़ने का नाटक करना है।

0: ऐसे में सभी घर वाले इकट्ठा हो जाते हैं और फिर असली तमाशा शुरू होता है, जहां अंतरा फिर एक बार राध्या पर इल्जाम लगा रही है और घर छोड़कर जाने की धमकी दे रही है।
1: मैं सिर्फ ये पालना लेकर नहीं जा रही, बल्कि मैं भी साथ में जा रही
2: हूँ। अचानक तुम इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकती हो?
1: ये फैसला मैंने अचानक नहीं लिया, बल्कि बहुत सोच समझ कर लिया। पिछले कुछ दिनों से इस घर में जो कुछ भी हो रहा है, वो सब ध्यान में रखकर ही मैंने ये फैसला लिया है। पर तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हारा बच्चा लेके भाग रही हूँ। मैं तुम्हें अपना नया एड्रेस भेज दूंगी, जब बच्चा होगा तो तुम वहां पर आकर ले लेना। मैं तुम्हें तुम्हारा बच्चा सौंप दूंगी। मैंने तुमसे कहा ना राध्या, वजह ये है, ये पालना। एक तरफ तो ये राध्या ऐसी हरकतें करती है जैसे इसे बच्चे से कोई लगाव ही नहीं है, और दूसरी तरफ ये पालना मंगवा कर वो दिखावा करती है जैसे उसे बच्चे की बड़ी परवाह है। बस करो राध्या, ये अपना नाटक बंद करो। आज तो तुमने मुझे गिरा ही दिया था, वजह से बच्चे को चोट लग सकती थी।
3: जी देखिए, आप हमारा यकीन कीजिए, हम सच बोल रहे हैं, हमने कुछ भी नहीं किया है।
0: अंतरा का गुस्सा आज शांत होने वाला नहीं है, क्योंकि आज ही तो उसे मिला है मौका राध्या के खिलाफ कई सारी बातें कहने का, और देखिए कैसे उसके कड़वे बोल निकल रहे हैं। भाई अंतरा गुस्से में अपना हाथ इस पालने पर मारती है, जिस वजह से पालने में लगी कीर अंतरा के हाथ में चुभ जाती है, और ऐसे में दादी को मिल जाता है मौका एक बार फिर से राध्या पर इल्जाम लगाने का और उसे खरी खोटी सुनाने का।
1: हाँ बिल्कुल, तुम तो कभी कुछ करती नहीं हो, सब अपने आप हो जाता है। तुम्हारा ना ये नाटक सुन सुन के पक चुकी हूँ मैं, कहीं तुम्हारी बकवास सुन सुन कर। देखा देखा कैसा पालना मंगवाया राधा ने, तो मेरे हाथ में चोट लगी है। तुमको अगर बच्चा इसमें सोता तो उसे कितनी चोट लगती।
4: अरे इसको कील है
2: क्या?
5: क्या छेड़खानी की तुमने पालने के साथ?
3: और आपसे देखा ना, दुकान से पालना आपके सामने आ गया है, कभी स्कीम के बारे में कुछ भी नहीं पता है।
5: नंबर की झूठी मक्का हो तुम। ऐसे ऐसे षड्यंत्र रचे जा रही हो जिससे अंतरा की
0: ऐसे में राध्या सबको ये समझाने की कोशिश कर रही है कि उसने कुछ भी नहीं किया, लेकिन कोई भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं। ऐसे में अंतरा ने एक और ड्रामा शुरू कर दिया घर छोड़कर जाने की जिद का, जिसके आगे प्रथम को हाथ जोड़ने पड़े, और ऐसे में देखिए कैसे प्रथम ने कर दिया है अंतरा से वादा कि वो हर मोड़ पर उसका साथ देगा, यानी कि अंतरा का मकसद तो पूरा हो गया है।
1: मदद करना मेरे लिए बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। मैं इनकी जिंदगी को पूरी कर रही हूँ, लेकिन फिर भी राध्या मुझ पर इल्जाम लगाती है, मेरी प्रेगनेंसी पर शक करती है। ये
0: सिर्फ दादी और अंतरा राध्या पर इल्जाम लगाते हैं, बल्कि उसे नुकसान भी पहुंचाते हैं। तभी तो देखिए दादी राध्या को कुछ काम देकर गई, और जैसे ही राध्या आई अंतरा और दादी ने मिलकर ये वायर बीच में लगा दिया, और राध्या गिरने ही वाली होती है कि खुद को संभालती है, लेकिन उसके हाथ में ये लग जाता है।

0: वैराध्या तो कुछ देर पहले काफी खुश थी, प्रथम को वो सरप्राइज भी देने गई थी, लेकिन उसकी सारी खुशी पर पानी फिर गया अंतरा और दादी की वजह से। खैर राध्या अब काफी मायूस हो गई है, लेकिन अब देखना होगा कि कैसे राध्या खुद को सही साबित करती है। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
1: सीरियल मन्नत में हो गया है मन्नत की बेटी दुआ का किडनैप, और इसे लेकर भड़क गए हैं विक्रांत मन्नत, और देखने को मिला दोनों का दबंग रूप। तो चलिए चलते हैं मन्नत के सेट पर और देखते हैं कि क्या हो रहा है वहाँ।
2: हो गया हो गया हो गया हो गया आ, आ, आ, तो।
3: मन्नत
0: मन्नत बनी मर्दानी। विक्रांत की दबंगई। पिट गया अंकित।

0: बस बस बस।
1: कलर्स की सीरियल मन्नत में धैर्य ने तो अपना हुलिया बदल लिया है और देखिए कैसे उसने अंकित की मदद कर मन्नत और विक्रांत की बेटी दुआ को कर लिया है किडनैप और थमा दिया है अंकित के हाथों। तो वहीं मन्नत और विक्रांत ने भी हार नहीं मानी अपनी दुआ को ढूंढने में, लेकिन उन्हें क्या पता कि धैर्य जिंदा है और धैर्य ही है जिसने उसकी बेटी का किडनैप किया है।
0: चलो वीर लेके जाए नू कमाल,
2: चलो दुआ चलो दुआ।
1: दुआ,
3: ये तो दुआ की आवाज है।
4: इंस्पेक्टर साहब मुझे दुआ की लोकेशन मिल गई, मैं आपको लाइव लोकेशन भेज रहा हूँ, प्लीज कोई टीम भेजना आप। थैंक यू।
0: मैं तेनू कह रहे थे तेरे को कुड़ी नहीं सामी जाती यार, हद हो गई यार। मैं कह रहे थे तेनू तू कला नहीं सामभ पाएगा, हूं तू फोन कर यार, केड़े तेरे गुंडे हैं चटर मटर, फोन कर इन। बस काके यार एडी कि गल होगी, चल घूम के आइए।
3: हेलो, हाँ तुम लोग दोनों फौरन बेरा उस बार आ जाओ, एक बच्ची पर ध्यान रखना है, जल्दी आओ।
1: अपनी बेटी दुआ की आवाज सुनकर मन्नत अंदर तो चली आई, लेकिन जैसे ही उसने अपनी बेटी को बंधा हुआ पाया वो हैरान रह गई और देखिए कैसे उसके अंदर मर्दानी रूप आ गया और उसने धैर्य पर ही हमला कर दिया और तो और अंकित को भी सबक सिखाना चाहा, लेकिन अंकित मन्नत से उसकी बेटी दुआ को छीन कर लेकर भागने की फिराक में रहा, लेकिन ऐसा वो कर ना पाया क्योंकि अपनी बेटी को बचाने के लिए मन्नत किसी भी हद तक जा सकती है।
5: सॉरी मन्नत जी, बुरा बनने में ना मैं आपसे कहीं आगे हूँ, आपको मेरा प्लान बर्बाद करने नहीं दूंगा।
3: चुप चुप कर,
6: छोड़ मेरी बेटी को। आगे बेटा चिंता मत करो, मम्मा पापा दोनों आगे ओके, आपको बचा नहीं, कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं होगा। स्टे हियर, स्टे हियर, स्टे हियर।
3: इस बार तू मुझे रोक नहीं पाएगी, मैंने तेरी बेटी को बेचने की सारी तैयारियां कर दी हैं।
1: इतनी मार खाने के बावजूद भी मन्नत ने हार नहीं मानी और देखिए कैसे उसने अंकित को रोकना चाहा, लेकिन अंकित उसने तो मन्नत के हाथों से ही डंडा छीन लिया और देखिए कैसे निर्दयी होकर वो मन्नत को ही उस डंडे से मारने लगा। ऐसे में दुआ को ढूंढते हुए विक्रांत को सुनाई दे जाती है दुआ और मन्नत दोनों की आवाज़ और देखिए कैसे वो दौड़ा चला आता है। इससे पहले कि अंकित मन्नत को और नुकसान पहुंचाता और दुआ को वहां से लेकर जाता, विक्रांत ने कर दिया अंकित पर हमला।

0: Hey, hey, okay, huh?
1: Let's go. Let's go. Let's go. Come.
2: Hey, hey, hey.

0: वही माँ और पापा दोनों ही मिलकर बदमाशों को सबक सिखा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी को बचाने के लिए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि धैर्य जिंदा है और बहरूपिया बनकर वही दुआ को निशाने पर रखा हुआ है। जरा देखिए कैसे दोनों बदमाशों को मार ही रहे थे कि इन सब का फायदा उठाते हुए धैर्य चुपचाप दुआ को वहाँ से उठाकर ले गया और मन्नत विक्रांत कुछ कर नहीं पाए। इसी बीच वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है जो उन बदमाशों को पकड़ तो लेती है, लेकिन मन्नत और विक्रांत दोनों ही हताश हो जाते हैं क्योंकि हाथ में आई थी उनकी बिटिया रानी, वो हाथ से फिर से फिसल गई। अब देखना होगा कि अपनी बेटी दुआ को बचाने के लिए मन्नत और विक्रांत अगला कदम क्या उठाएंगे, क्या उन्हें पता चल पाएगा कि धैर्य जिंदा है।
1: ये देखो दुआ का हाथ, उसकी उंगलियां मूव कर रही है। दुआ जुहू बीच पे 16th रोड पर है।
2: इस वीडियो से हमें अंकित राजवंश का तो पता चल गया, बट हम क्या कर सकते हैं?
3: एक प्लान है मेरे पास, मैं जाऊंगी वहां पर, मैं भी जाऊंगी मन्नत के साथ।
0: मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
2: ये सिर्फ दो लोगों की टीम नहीं, मैं भी जाऊंगा इन दोनों के साथ।
4: सीरियल लक्ष्मी निवास में वीर और राधिका संग बड़ा हादसा होने से टल गया है और इस हादसे के पीछे वेदिका और उसका भाई है जिन्होंने ये जानलेवा चाल चली थी। अब ऐसे में वीर और राधिका कैसे इनके खतरनाक इरादों से वाकिफ होते हैं, देखने के लिए चलते हैं सीरियल के सेट पर।
5: बाल बाल बचे वीर, राधिका और नलिनी। देविका का षड्यंत्र, कोटा दादी का गुस्सा। सीटीवी के सीरियल लक्ष्मी निवास में वीर, राधिका और नलिनी निकले थे तीर्थ यात्रा के लिए, लेकिन भाई उन्हें क्या पता था कि बीच रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाएगा। और ऐसे में देखिए जैसे ही ये बात घर वालों को पता चली, भाई यहाँ सभी उनके लिए परेशान होने लगे। लेकिन अगर कोई नौटंकी कर रहा था तो वो थी देविका, क्योंकि भाई ये पूरा षड्यंत्र उसने ही रचा है।
6: जैसा ना उस लक्ष्मी उस मनहूस की वजह से हुआ है, ना उस अब सगुनी के

0: गई थी।
1: पापा दादी का मम्मा दादी आप सब ठीक हो ना? डॉक्टर डॉक्टर ने बताया कि मेरे पापा की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। मेरे पापा आप ठीक हो ना? मेरे पापा कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बोलो ना। अंडरस्टैंड थैंक यू लिख के मेरे मेडिसिन बॉक्स में डालूंगी। थैंक यू बोल।
0: लेकिन निया के जाते ही देखिए कैसे दादी फिर एक बार राधिका पर भड़क उठी और इस एक्सीडेंट का जिम्मेदार उसे ठहराने लगी।
2: अभी जो आज हमने जो सीन शूट किया है उसमें वीर राधिका और नलिनी का एक्सीडेंट हो गया है, और ये जो एक्सीडेंट है वो देविका के भाई और देविका की मिलीजुली प्लानिंग है। एक्सीडेंट तो हो जाता है मगर भगवान की कृपा है तो बच जाते हैं तीनों के तीनों। कुछ नहीं होता है, मतलब हल्की फुल्की झटके आया है बट एज सच कोई मेजर कोई इंजरी नहीं। और एक्सीडेंट तब होता है जब नलिनी जो है वो तीर्थ यात्रा का सोचती है जाने के लिए, अपने घर के वारिस के लिए मन्नत मांगने। तो अब वो वापस आ गई है घर में, वो वीर और राधिका वापस आ गए क्योंकि वो उनका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। अब ये जो करंटली जो हम सीन शूट कर रहे हैं वो ये है कि क्योंकि ये एक्सीडेंट क्योंकि वीर गाड़ी चला रहा था तो ये एक्सीडेंट जो है वो उसको पुराना जो उसने आदित्य के साथ उसका जो एक्सीडेंट हुआ था उसके ट्रॉमा में ले जाता है। और उस ट्रॉमा में वो जब आ गया है उसको वो पूरा रिकैप हुआ है पूरा एक्सीडेंट, तो वो इस टाइम पे ट्रॉमाटाइज्ड है, फ्लैशबैक में चला गया है। तो ये चीज़ नलिनी जो है वो भांप लेती है, उसको कहीं ना कहीं ये पता लग जाता है कि हाँ उसका बच्चा जो है वो ठीक नहीं है, मेंटली वो बहुत डिस्टर्ब हो चुका है। तो अब हम जो है वो ये शूट करेंगे कि आगे नलिनी गजेंद्र और आलोक और वीर इनकी एक कॉन्वर्सेशन होगी जिसमें नलिनी मना कर देती है कि मैं नहीं जाऊंगी तीर्थ यात्रा में अपने बच्चे को छोड़ के, लेकिन वीर उनको कन्विंस कर लेता, बोलता है कि अगर ये आप नहीं गए तो ये ब्लेम भी राधिका पे आएगा। और क्योंकि वो राधिका के साथ इतना अच्छा नलिनी का बॉन्ड बन चुका है कि वो नहीं चाहती कि अम्मा जी जो है वो राधिका को ब्लेम करें इस एक्सीडेंट के लिए। तो फाइनली वो डिसाइड करती है कि नहीं, जो होगा देखा जाएगा, मैं तो जाऊंगी। सो यही सीन शूट कर रहे हैं।
3: एक तो तुम तीनों एक साथ ही घर से बाहर निकले, वो सबसे गलत बात होती है, किसी पता ना होता है का तीन बिगाड़ा काम बिगाड़ा, और ऊपर से तीनों में से एक कौन था, ये कुलक्षणी थी तो फिर ऐसा तो हो रहा ही था ना। इसका तुझे ही एक एक मकसद है इसका, हमारे परिवार की बर्बादी हम तो पहले दिन से ही बोले जा रहे हैं। जब से आए उसका कुछ उल्टा सीधा होता ही जाता है।
0: लेकिन नलिनी काफी टेंशन में है और देखिए कैसे वो इन सब तमाशों के बीच यहाँ से उठकर अपने बेटे के साथ चली गई। ऐसे में राधिका भी एक गहरी सांस लेकर बैठ नहीं जा रही होती है, तो देखिए कैसे फिर एक बार राधिका गुस्सा भड़क उठा।
3: किसी के धर्म कर्म कीरत में इतना बड़ा व्यवधान डालना, तो पता है ना उसकी सजा क्या होती है। देखो ना कुछ भूचाल आ गया हमारे घर में, और महारानी यहाँ बैठ रही है।
0: लेकिन दादी की आवाज सुनकर फिर एक बार नलिनी आई और उसने अपनी बहू का साथ दिया। इतना ही नहीं भाई देखिए कैसे गले लगाकर फूट फूट कर रो रही है।
3: अरे इसकी टोक लगी है तुमको नलिनी, तुम समझती काय ना हो, इसीलिए तो मरती मरती बची हो। अरे माई मानो तू अपना जी जो कार्यक्रम है ना इसको रद्द कर दो। आप कहते हैं
2: ये वैसे लोग कह रहे हैं यहाँ पर सेट पे तो कि जब से वो नलिनी को स्टंट डला है तो वो राधिका के नाम का स्टंट डल गया। ऐसा मजाक उड़ा रहे हैं सब मेरा, स्पेशली नर्मदा जी यानी कि मेरी सास। लेकिन हाँ हृदय परिवर्तन हो गया है उसके बिहेवियर से, उसके प्यार से, उसकी छोटी छोटी चीज़ों से कि घर का ध्यान रखना और किस तरीके से वो घर गृहस्थी संभाल रही है, वीर को संभाल रही है। तो इस तरीके से जो है वो नलिनी कहीं ना कहीं देख पा रही है कि जो आइडल फ्रेम उसने एक अपनी बहू के लिए बना के रखा था उसमें राधिका जो है वो धीरे धीरे फिट इन हो रही है।
0: भाई ये पहली बार नहीं है कि दादी राधिका और निया पर गुस्सा कर रही है, देखिए कैसे इसके पहले भी जब वीर ने लक्ष्मी निवास के परिवार के लिए

0: लिटरी बनाया कैसे वो निया पर भड़क उठी।
1: अरे काम किया नहीं ना? अरे इतनी बार मना किया है इसको, खबरदार हमारी चीजों को छुआ अब तक। अब क्या किया इसने? हमारा हमारे जश्मे को छुआ इसने? दूसरों की गलतियों के पर्दे डाल, पहले पहले बच्चे थे फिर बहुएं आई। अरे फिर मत बोलना, समझे ना कि हमने ना बताया था। एक दिन हम कह दे रहे कुत्तों की तो
2: मैंने कहा कि शादी की नाराजगी का कोई अंत नहीं हो रहा है और वीर नहीं चाहता कि उनकी डांट उनके गुस्से में कुछ भी निकला अब तक उसका प्रभाव बच्चे पे पड़े, इसलिए उसने उनके निया के कानों पे रुई डाल दी जिससे वो सुने ही ना। दादी भी अपना बड़बड़ा के चली जाए, निया भी ऐसे हामी बढ़ती रहे बल्कि उसे अपनी बात सुनी नहीं, तो एक तरीके से आई पैसिफाइड द सिचुएशन।
0: ऐसे में अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या परिवार वालों को ये पता चल जाएगा कि इस एक्सीडेंट के पीछे देविका का हाथ है। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
3: चलिए अब आपको दिखाते हैं एक दोस्ती वाला डे आउट, जहां सीरियल बरेली के बच्चन के गंगा भैया यानी किंशुक महाजन और एक्टर अंगद हसीजा दोनों दोस्तों का जिम में भाई वाला प्यार देखने को मिल रहा है, और ये दोनों जिम में एक साथ पसीना भी बहा रहे हैं और कर रहे हैं एक दूसरे को मोटिवेट।

0: शुरुआत हुई थी विदाई के साथ, जहां वो बने थे रणवीर राजवंश और वहां उनके पर्दे के भाई थे अंगद, हसीजा यानी आलेख राजवंश। इसके बाद पंड्या स्टोर में किंगशुक फिर भाई बने और आजकल बरेली के बच्चन में एक बार फिर से इनके तीन तीन भाई हैं।
1: भैया भाभी कहाँ है? जी कृष्णा कहाँ ले गया भाभी को? भैया बोलो ना कहाँ गई है भाभी?
2: अरे बोलिए भैया।
3: कैसे बताएं तुम दोनों को कि वो चली गई?
0: पर्दे के भाई लेकिन रियल लाइफ में इन्होंने कमाई है ढेर सारी दोस्ती। ऐसे ही पूरे 19 साल की दोस्ती है अंगद हसीजा और किंगशुक महाजन की।

आज पूरे 19 साल बाद विदाई के ये राजवंश भाई एक बार फिर से मिले हैं, इस बार जिम में। भाई दोनों रियल लाइफ में दोस्त हैं, लेकिन साथ साथ जिम बडीज भी, साथ साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपने शो विदाई की यादें ताजा कर रहे हैं सास बहू और बेटिया संग। तो मिलते हैं पर्दे के इन भाइयों से, जो आज गलती से एक साथ मिल गए हैं जिम में, और जब जिम में है तो जमकर वर्कआउट होगा और साथ साथ होगा ढेर सारा भाईचारा।

0: मैंने बोला था कि हम लोग साथ में वर्कआउट करेंगे क्योंकि जहाँ पर इसका जिम है वहाँ नीचे मेरा शूट चल रहा है, इसी सेम फ्लोर के नीचे मेरा शूट चल रहा है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया था,
1: जिम की इंटरव्यू देता नहीं है लेकिन आज इसका एक तो इसकी मेंबरशिप भी नहीं है जिम में।
0: मेरी मेंबरशिप भी नहीं है, मैं सिर्फ वर्कआउट करने थोड़ी देर के लिए आया हूँ। और इसको बहुत एम्बेरस किया आज कि सब लोग सडनली आप भी आ गए, सब आ गए हम लोग इसके पास
1: कि आप चले अंगद के ये तो इंटरव्यू दे के और वर्कआउट करके चले जाएगा लेकिन रोज मुझे इस जिम में आना है।
0: कल तो ये भी हो सकता है इसको जिम से निकाल दिया जाए।
1: हाँ ये भी हो सकता है।
0: ऐसा होगा नहीं।
2: किंग शुक आजकल फिर से फिटनेस फ्रीक हो गए हैं क्योंकि बलिनी के बच्चन में जल्द ही उनकी शादी होने वाली है और इसमें उनका साथ दे रहे हैं उनके पुराने दोस्त अंकल सतीजा, तो खुद एक फिटनेस फ्रीक है। तो चलिए आज विदाई के दोनों भाइयों संग करते हैं ये फिटनेस वाला डे आउट। सबसे पहले इनका ये अनोखा चैलेंज,
1: ये अपर चेस्ट की एक्सरसाइज है और ये वेट कुछ मतलब बेसिकली आप लोग इंटरव्यूज ले रहे हो तो इसलिए हमने 150 kg
0: नहीं उठ गया ऐसा नहीं है, मतलब कोई ये नहीं कि ऐसी ऐसी डाल दिया उसने, वो लगा लेता है वर्कआउट कर लेता है उसको आती है। नहीं हंस क्यों रहा है, ऐसे हंसते नहीं है। आज एक्चुअली किंचुक मेरी वजह से फंस गया बहुत बुरी तरह से क्योंकि हम मैं ट्राई करता हूँ नहीं बिल्कुल नहीं पड़ेगा, हम सेम लगाएंगे।
1: नहीं टिप्पणी मैं क्या दूंगा बिकॉज आज अंगद मेरी सारी फॉर्म्स करेक्ट करवा रहा है और अंगद तो काफ़ी साल से बॉडी बिल्डिंग कर रहा है बिकॉज जिमिंग कर रहा है और एक्चुअली अगर देखा जाए तो इसी ने मुझे इंस्पायर किया था वर्कआउट्स करने के लिए। या
0: वेरी नाइस, मज़ा आया बड़ा, मतलब चेस्ट मेरी फेवरेट है और अपर चेस्ट बहुत फेवरेट है, मैं रोज अपर चेस्ट करता हूँ जब भी वर्कआउट करता हूँ। हाँ मैं रोज करता हूँ क्योंकि कहते हैं कि जो जो सा बॉडी पार्ट आपका थोड़ा सा वीक हो उसको आपको रोज ट्रेन करना चाहिए। कि मैं कुछ बताना भूल गया क्योंकि हम लोग बहुत टाइम से वर्कआउट कर रहे हैं, क्या क्या बताऊँ। तो मैंने इसको बताना भूल गया कि हमारे
1: टू बी रियली ऑनेस्ट हम लोगों ने एक्चुअली अगर देखा जाए तो अपना वर्कआउट कंप्लीट कर लिया था लेकिन आप लोग ही वैसे हम लोगों को वापस सेट्स मारने पड़ रहे हैं।
0: और किंचु को मैं कब से वर्कआउट करा रहा हूँ, कब से हम लोग लगे पड़े और सडनली पता चला आप आए हो और अभी वापस से हमें वर्कआउट दोबारा करना पड़ रहा है।
1: ठीक है, वो विजुअल्स के लिए आप देख लीजिएगा हम लोग कैसे रीवर्कआउट करते हैं। देखिए अभी हमें भी नहीं पता हम लोग किस एरिया में जा रहे हैं लेकिन
0: चलते हैं
1: यार,
0: जरूर जरूर करना है वर्कआउट, खत्म नहीं करना अभी हमने अपना।

अंगद हथीजा है फिटनेस फ्रीक और आज वो किन्जो को भी इंस्पायर कर रहे हैं, वे चाहे चेस्ट की एक्सरसाइज हो, कार्डियो हो या फिर अलग अलग एक्सरसाइज, क्योंकि जिम में आज दोनों जिम बडीज बनकर पसीना बहा रहे हैं। तो देखते हैं क्या है इन दोनों भाइयों का फिटनेस रूटीन।

0: रोहित दो बार, एक बार अपने लिए और एक बार आप लोगों के लिए.
1: हम बहुत टाइम से लगे हुए हैं लेकिन और फाइनली वर्कआउट खत्म हो गया हमारा और अभी हम एब्स करेंगे, उसके बाद हम स्ट्रेचिंग्स करेंगे. स्ट्रेचिंग्स मतलब जब जिम में आते हैं तो स्ट्रेचिंग्स करते हैं, जब वर्कआउट खत्म होता है तो उसके बाद जो स्ट्रेचिंग्स करते हैं वो अभी करेंगे एब्स के बाद.
2: फिर कार्डियो भी है,
1: उसके बाद कार्डियो भी है.
0: कार्डियो भी है भाई, आप कर लो कार्डियो वार्डियो, हम भाग रहे हैं. बुमरांग होता है, एक ऐप मारी और बाकी लूप पे आप उसको डाल दो, ऑडियंस को लगेगा कि बार बार ऐप.
3: मुझे याद है वो बातें मेरे बचपन की, डैडी कहते थे छोटा सिक्का चलेगा नहीं.
4: भाई अंगद देखे जबरदस्त तरीके से ऐप की एक्सरसाइज कर रहे हैं, किंगशिप को भी मजबूर होकर उनके साथ एक्सरसाइज करनी पड़ी. भाई पर्दे पर उनका जल्द ही मेकओवर होगा बरेली के बच्चन में और इसमें अंगद उनका साथ दे रहे हैं. वैसे पर्दे के पीछे ऑन स्क्रीन भाइयों की मस्ती देखने लायक है.

0: सो गाइज आई एम डन फॉर द डे. हम लोग 3 घंटा हो गया कि वर्कआउट कर रहे हैं, लेकिन ये आदमी जो मेरे साइड पे है वो थकता नहीं है, रुकता नहीं है, और उसको 3-4 घंटे करने की वर्कआउट आदत है. आप ऐसे के देख सकते हैं कि अंगद ससिजा एक्सपेरिमेंट, मतलब एप्स करते करते आप इंटरव्यू देना चाहोगे फर्स्ट टाइम ऑन आज तक टीवी.
1: मेरा अभी तक वर्कआउट खत्म नहीं हुआ और ये बोल रहा है बस हो गया, क्योंकि अभी मेरा कार्डियो रहता है, एब्स भी रहते हैं, और जब तक वर्कआउट खत्म नहीं होता तब तक मैं जिम से कैसे जाऊँ.
0: अगर आपकी शूटिंग है इसके बाद तो आपको जाना ही पड़ेगा. और दूसरी बात, अगर आपका जिम पार्टनर फेंट वेंट हो जाए तो आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा. तो कई बार आपको अपना वर्कआउट छोड़ना पड़ता है.
1: ऐसा नहीं होता, अगर पेंट भी हो जाए तो वो अपने आप चला जाएगा ना, मैं वर्कआउट क्यों छोड़ के जाऊँ अपना.
0: देखिए एक्चुअली अंगद ने वर्कआउट करके एक रिकॉर्ड बना दिया है. कम से कम पहला बंदा ऐसा है जो कि मैंने देखा कि 3-4 घंटे जिम से हिलने का नाम नहीं लेता.
2: एक्चुअली वर्कआउट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं वर्कआउट करता ही हूँ. और कभी कभी ऐसा हुआ है कि मैं 12-12, 1-1 बजे भी वर्कआउट मैंने किया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फिटनेस हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चाहे एक्टर हो या फिर कोई भी क्यों ना हो. और आजकल ये भी देखा है मैंने कि हर कोई बहुत ज़्यादा फिटनेस फ्रीक है, चाहे वो सर्विस वाले लोग हों या फिर यू नो कोई भी बिजनेसमैन हो. एक्टर्स की बहुत दूर की बात है कि एक्टर्स वर्कआउट एक्टर्स फिट रहते हैं, लेकिन आज के टाइम हर कोई फिट रहता है, हर कोई अपने डाइट पे ध्यान रखता है, वर्कआउट्स पे ध्यान रखता है. तो यस, वो बहुत ज़रूरी है. किंशुक महाजन,
0: आप तो ये भी बोल सकते थे कि वर्कआउट ज़रूरी है. आपने ऑडियंस को बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी है. खैर अब ये भी बता दीजिए आपकी वर्कआउट में रूटीन क्या होता है आपका, जो कैसे आप वर्कआउट आप खाते क्या है और क्या नहीं खाते.
2: जब ये बहुत थक जाता है ना तो ये बहुत भी नॉन स्टॉप हंसता है. और हाँ, लेकिन वर्कआउट की रूटीन तो यही है कि 2-3 घंटे तो मैं करता ही हूँ वर्कआउट. आज थोड़ा ज़्यादा हो गया क्योंकि
0: आप लोग आने वाले थे, आज तक आने वाला था.
2: जब तक आज तक आया तब तक हम लोगों का उस टाइम वर्कआउट ख़त्म हो गया था, जब आया फिर से वापस हमें करना पड़ा, तो कुल मिला के 4 घंटे हो गए. लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है, मतलब वर्कआउट तो जितना करो उतना कम है.
0: सही बात है, मैं अंगद और आज तक को थैंक यू बोलना चाहता हूँ. इन्होंने मुझे ऐसा सरप्राइज दिया जिम में, आई वाज लाइक नॉट एक्सपेक्टिंग. आज अंगद आया था मेरे जिम में मेरे को ये बोल के कि इसका जिम बंद है और इसको एक ट्रायल सेशन चाहिए. और ट्रायल सेशन लेते लेते इसने पूरी इंटरव्यू करवा दी. सो थैंक यू अंगद एंड थैंक यू आज तक.
2: आज सास बहू बेटियों का थैंक्स, क्योंकि सास बहू बेटियाँ आज आ रहे थे मेरे सेट पर शूटिंग मेरा वो करने के लिए कि मेरी रूटीन शूट की कैसे चल रहा है, लुक क्या है क्या नहीं है. वो तो हो नहीं पाया क्योंकि मेरा कॉल टाइम लेट हो गया और मुझे जिम में इन्होंने पकड़ लिया. उन्होंने कहा छोड़ना तो हमने है नहीं, अब हम जिम में आ रहे हैं. तो आज तक की टीम मेरी जिम में आई और जिम में मिल गए कि
0: आपके जिम में नहीं, मेरे जिम में आई और आप
2: आपके जिम में आई. आज मैं और आज तक दोनों किराए के हैं यहाँ पर इनके जिम में. तो वर्कआउट खत्म है, अभी थोड़ी स्ट्रेचिंग करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है वर्कआउट के बाद करनी. अब तू हंसी हो मत बिल्कुल भी, क्योंकि स्ट्रेचिंग क्योंकि थोड़ी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वर्कआउट के बाद, ताकि आपको इंजरीज ना हो और आपकी बॉडी का मसल जो है वो रिलैक्स हो, क्योंकि जब रिलैक्स होगी बॉडी तो ग्रो करेगी. तो इसलिए स्ट्रेचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है.
0: और अगर आप मैं स्ट्रेचिंग ना करना चाहूँ तो मैं सिर्फ दूर से देखना चाहूँ कि आप कैसे स्ट्रेचिंग करते हैं, तो
2: चल थोड़ी सी कर ले, ज़्यादा ना करिए.
0: नहीं देखिए ऐसा है, थैंक यू सो मच. मैं मेरी लाइफ का सबसे 4 घंटे का वर्कआउट पहली बार किया मैंने, सो आई एम वेरी हैप्पी. अंगद हसीजा आप बताओ स्ट्रेचिंग कैसे होती है, कैसे नहीं होती है, कौन सी फॉर्म होती है, वो सब आपको अंगद बताएंगे.
2: चलो मैं बता दूंगा मुझे क्या, मैंने तो करनी है. ओके आइए.
3: अंगद और किंशुक का वर्कआउट हुआ पूरा, अब फाइनली दोनों भाइयों ने क्वालिटी टाइम स्पेंड किया. 19 साल पुराना ये रिश्ता शुरू हुआ था पिताई के साथ, और उसके बाद आज भी दोनों अच्छे दोस्त हैं. इनकी फैमिली और अब तो फैमिली फ्रेंड्स और रियल लाइफ ब्रदर्स भी बन चुके हैं. और आज सास बहू बेटिया ने इसी खूबसूरत रिश्ते को ताजा किया जो बना था पर्दे पर, लेकिन अब रियल हो गया है.

0: सास बहू बेटिया की टीम आ गई यहाँ पर, थैंक यू सो मच, क्योंकि ये टीम मेरी हमेशा फेवरेट है, क्योंकि जब भी मैं कुछ नया प्रोजेक्ट शुरू करता हूँ हमेशा आप मेरे साथ रहते हो और हमेशा आप मुझे कैप्चर करते हो, और आज स्पेशल इसलिए क्योंकि आज फर्स्ट टाइम किंचुक और मेरी स्टोरी आपने कैप्चर की, क्योंकि हम लोग वर्कआउट एक्चुअली कभी किया ही नहीं है, आई थिंक दूसरी बार किया होगा हमने वर्कआउट साथ में, और आज आप दोनों आप लोग आए हमारे पास और थैंक यू सो मच। लेकिन हाँ, आपने आना शूटिंग पे था मेरी, लेकिन जिम में आ गए और किंचुक फंस गया।
1: आई एम थैंकफुल टू सास बहू बेटियाँ, बिकॉज काफ़ी हमारे काफ़ी सालों का एसोसिएशन है, एंड वट एवर वी डू दे ऑलवेज कम एंड दे विश अस लक, एंड दिस इज द ओनली मीडियम थ्रू विच वी गेट कनेक्टेड टू आर ऑडियंस एंड दे नो अबाउट, आई थिंक सो मेरे एक कुछ काफ़ी स्टोरीज मतलब होता है ना जो कि फर्स्ट टाइम ब्रेक हुई हैं वो सास बहू बेटियों के थ्रू हुई थी, इवन माय व्हेन किड्स वर बॉर्न और व्हाटएवर जो भी स्टोरी, सो थैंक यू सो मच। और ये एक्चुअली फर्स्ट टाइम किसी ने मेरे जिम की भी स्टोरी, अभी तक मैंने लाइफ में कभी भी अपने आप कभी भी किसी को जिम की स्टोरी नहीं करने दी, लेकिन आज जो सास बहू बेटियों ने ही फर्स्ट टाइम ये चीज़ स्टोरी क्रैक की है, एंड थैंक यू सो मच।
2: तो ये थे किंचुक महाजन, जो आजकल बरेली के बच्चों में अपने नए भाइयों के साथ दिख रहे हैं, लेकिन अंगद हसीजा है उनके ओजी भाई, जो 19 साल पहले उनके भाई बने थे लेकिन अब उनका परिवार बन चुके हैं, और आज पर्दे के भाइयों की रियल लाइफ केमिस्ट्री हमने आपको दिखाई। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
3: ग्लैमर गॉसिप और हाई वोल्टेज ड्रामा, मनोरंजन की दुनिया से हम लेकर आए हैं कुछ ऐसी रॉकिंग और शॉकिंग खबरें जो आपके चेहरे पर ले आएंगी एक प्यारी सी मुस्कान। आइए आपको ले चलते हैं आज की रॉकिंग खबरों की ओर।
4: फ्रेश है बॉलीवुड, ओटीटी और टीवी की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें। हो जाइए तैयार, क्योंकि जल्द आने वाला है लॉकअप सीजन 2, वो भी नेटफ्लिक्स पर। ऐसे में नेटफ्लिक्स ने की है इसकी अनाउंसमेंट।

0: नजर डाल लीजिए डॉक्टर आरंभी के आने वाले नए ट्विस्ट पर, जहां पर आरंभी पर लगाया जाएगा झूठा इल्जाम, जिस वजह से आरंभी को लगेगी हथकड़ी।
1: अब तुम सड़ों की जेल में और मैं करूंगा अवंतिका से शादी।
2: मम्मा!
3: कुछ नहीं हुआ है बेटा, आपको अपनी मम्मा पे ट्रस्ट है ना?
1: मुझे पता है तुमने मर्डर नहीं किया है।
4: जाओ साबित करो कि तुमने खून नहीं किया।
2: मैंने नहीं किया सर।
0: बिग बॉस में होने वाला है कैप्टन सी टास्क, ऐसे में क्या घरवाले करेंगे गुल्लू को टारगेट?
5: घरवालों, क्या आप गुल्लू को वापस इस हफ्ते कैप्टेंसी की दावेदारी का मौका देना चाहेंगे?
2: ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बहुत ही वाहियात लगी सच बोलूं तो।
6: घर के लीडर का एक कंट्रोल होता है, वो थोड़ा मुझे मिसिंग लगा।
7: कुछ काम ऐसे होते हैं जो सुबह ही होने चाहिए।
8: मुझे लगता है गुल्लू हमेशा ये कोशिश करते रहते हैं कि वो सबकी गुड बुक्स में रहें।
9: मेरे को कोई शौक नहीं किसी की गुड बुक्स में रहने का।
10: मैन चाइल्ड सुना है? सुना नहीं है, देखा नहीं है, बताऊं?
11: गोल्ड डिगर सुना है? गोल्ड डिगर तो बहुत ही कॉमन है।
0: राइज एंड फॉल की ये खास झलक देख लीजिए, जहां पर नए टास्क के साथ साथ शुरू हो गया है नया बवाल।
12: ये यहां से भी पिटके जाएगा, मुझे कल गोल्ड डिगर बोलते हैं।
13: एक मिनट के लिए नहीं सो पाई मैं इस लीच जैसे इंसान की वजह से। मेरे परिवार को पालने वाली मैं हूँ।
14: सुबह सुबह ड्रामा शुरू।
15: तमाचा यहाँ खाएगा और तालियां उतनी जोर से बाहर बजेगी।
16: I don't want to get into this shit, boss, with people saying all kinds of rubbish stuff. No, I'm done here.
17: Teju bhaiya, in mazdooron ko dekhiye. Aap wahan pe malai kha rahe hain, Teju bhaiya. Teju bhaiya, kya aap mazdooron pe atyachar kijiyega?
18: Hum kya atyachar kar rahe hain mazdoor pe? Aapko shobha nahi deta hai. Aap baba hain.
17: Aap insaan hain, aap mazdooron pe atyachar nahi kar sakte.
18: Nahi manenge. Okay lenge. Nahi okay.
0: गुम हुई यादें के सेट से सामने आए हैं ये बीटीएस नज़ारे, जो शेयर किए हैं गुल की जोशी ने, जहां शूटिंग के साथ साथ चल रही है मस्ती भी।

0: इतनी रात हो गई है, बस घर पहुंच जाऊं।
1: प्लीज छोड़ दीजिए।
2: डर का काम होता है डराना।
3: सीरियल ये फितूर 13 में जल्द आने वाला है रोमांटिक ट्विस्ट, जहां करीब आएंगे जीत और सौम्या।

0: वो शिक्षक के साथ साथ एक इंसान भी हूँ।
1: ध्वनि भानुशाली और आसिम गुलाटी की बन गई है जोड़ी, ये दोनों जल्द नजर आएंगे आने वाली फिल्म कहाँ शुरू कहाँ खत्म में, जो कि जियो हॉट स्टार पर स्ट्रीम होगी।
2: चीर के निकल जाए
3: मुंडे खड़े सोच रहे,
4: जब तक मीरा मंडप पे नहीं बैठती कोई घर नहीं जाएगा। अभी से लॉकडाउन।
5: सीरियल अनुपमा में अनुपमा और अनुज की लव स्टोरी को याद करते हुए मांडे सेलिब्रेट किया जा रहा है, जहां राही और प्रेम अनुपमा और अनुज का किरदार निभा रहे हैं और घर में नाच गाना और सेलिब्रेशन का माहौल है। चलिए हम भी हो जाते हैं इनके सेलिब्रेशन में शामिल।
6: कह

अनुज की यादों में झूम कर नाची अनुपमा दीवानी। प्रेम और राही ने दोहराई अनुपमा अनुज की प्रेम कहानी। मोहब्बत की कहानी अनुपमा की जुबानी। स्टार्टर्स के सीरियल अनुपमा में आज हो रहा है स्पेशल सेलिब्रेशन और ये सेलिब्रेशन का नाम है मान डे। वही बर्थडे एनिवर्सरी डे और न जाने कौन कौन से दिन को सेलिब्रेट करते हुए तो आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन पहली बार आज अनुपमा के परिवार वाले सेलिब्रेट कर रहे हैं अनुपमा और अनुज की प्रेम कहानी को। तभी तो देखिए कैसे आज अनुपमा को सरप्राइज देने के लिए सभी ने रखी है ये पार्टी और इस पार्टी का नाम है हैप्पी मांडे। चारों तरफ है अनुपमा और अनुज की तस्वीरें। ऐसे में ये सब नजारा देखकर अनुपमा हो रही है बेहद खुश और खुशी के मारे आज अनुपमा अपने आप को रोक नहीं पाई। जरा देखिए कैसे अनुपमा झूम झूम कर नाचने लगी और अपने अनुज को पुकारने लगी और सभी घर वाले दे रहे हैं अनुपमा का साथ भी।

0: जो ज्यादा अनुपमा को प्यार करते हैं, जैसे कि पहली वाली जनरेशन में किंजल, फिर परी, फिर प्रेम, राही, अंश, बापूजी, तो ये सब ने मिलके ये मान डे सेलिब्रेट करने के बारे में सोचा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मान की अपनी एक लव स्टोरी है, और वो लव स्टोरी जेन्यूनली ऑडियंस को इतनी पसंद आई थी कि लोग उसे एक अपने एग्जाम्पल की ले रहे थे कि ऐसा होना चाहिए, रिलेशनशिप ऐसे होने चाहिए, और बहुत लोगों को उन्होंने दाखिला दिया है, बहुत लोगों को इंस्पिरेशन मिली है, और इसीलिए आज हमने मांडे सेलिब्रेट करने का सोचा।
1: थीम ड्रेस कोड के बारे में अगर हम बोलेंगे तो हम सब ने ब्लू वेयर किया है, और यहाँ पे आज हम मान डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। जब मम्मी और पॉप्स पहली बार मिले थे और उनकी जो भी मेमोरी है वो सब मम्मी हमें बता रही है कि कैसे क्या हुआ था, कैसे प्यार की शुरुआत हुई थी एंड कैसे वो दोनों साथ में थे, क्या क्या मेमोरीज थी, तो या वो सुनने में भी बहुत अच्छा लग रहा था।
2: भाई अपने अनुज के लिए अनुपमा ऐसी झूमी है कि सभी लोग अनुपमा के साथ उसी के रंग में रंग गए हैं, लेकिन अनुपमा उसकी खुशी दुगनी होने वाली है क्योंकि उसकी बेटी राही और दामाद प्रेम उसे एक और सरप्राइज देने वाले हैं। उसके प्यार की कहानी दोहराकर जरा देखिए कैसे राही अनुपमा के अंदाज में अनुपमा के सामने आ गई, और अनुपमा का दामाद प्रेम वो ढल गया है अनुज के अंदाज में, और देखिए कैसे दोनों ने अनुपमा और अनुज की पहली मुलाकात को दर्शाया, जिसे देखकर अनुपमा दीवानी हो रही है और तो बैठे ही बैठे झूम भी रही है और अनुज की यादों में खो भी रही है।

0: ऐसा कोई किसी भी इंसान को सरप्राइज मिलेगा तो कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। तो सबसे बड़ी बात कि बहुत ज़्यादा वो स्पेशल फील करेंगी, तो जो उन्होंने किया है और ये इट्स लाइक प्री प्लान, हम सब ने मिलके ये प्लान किया था क्योंकि मंडे हम सबको पता है कि मम्मी के लिए पॉप्स का क्या मायने हैं एंड मम्मी कितना प्यार करती है, कितना अभी भी उनके साथ वो जुड़ी हुई है। तो बस इसी के ऊपर ही ये सीन था जहाँ पे हम सब एक साथ है और मम्मी से पूछ रहे कि आप बताओ आपकी लाइफ में मतलब आपने कैसे पॉप्स के साथ ये प्यार का इजहार किया था, कैसे शुरू हुआ था। तो इसके ऊपर ही था सीन और सीन में बहुत कुछ जानने को मिला जो टेलीकास्ट में कभी कभी होता है कि हम भूल जाते हैं, मिस कर जाते हैं या फिर जो देखा नहीं है वो इधर जब आप किसी के मुँह से सुनते हो स्टोरी के वाइज तो आप एकदम मतलब क्विकली आप उस मोमेंट में चले जाते हो।
1: बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अनुपमा उसी मोमेंट को आज जी रही है और खुश भी हो रही है। इतना ही नहीं, उसने तो हाथ जोड़कर सभी का शुक्रिया अदा भी किया है क्योंकि आज उसे इतना बेहतरीन सरप्राइज जो मिला है। लेकिन इसी सरप्राइज के साथ साथ वो अनुज की तारीफों के पुल बांधने लगी जिसे सभी चुपचाप सुन रहे हैं। और बा उन्होंने तो अनुपमा को फिर से टोक दिया,
2: अब ये मीरा बन के अनुज के रात जाएगी।
3: तो
2: नहीं तो फिर दो दिलों को एक कर लेता। कहां मैं ऐसी तीन बच्चों की माँ घर में सारा पाक तोड़ के काम कर रही, पर कहां मेरे अनुज एकदम टिप टॉप। बचपन से यही सीख कर बड़ी हुई थी कि पति परमेश्वर होता है,
1: अब जिन लोगों ने अनुपमा और अनुज का प्यार देखा है वो तो जानते ही हैं, लेकिन जो नई जनरेशन है उन्हें पता ही नहीं है कि अनुपमा और अनुज कैसे मिले, कैसे उनके बीच प्यार हुआ। बस फिर क्या, सभी ने गुजारिश कर दी और अनुपमा ने सभी की गुजारिश को मानते हुए शुरू कर दी सभी के सामने अपनी प्रेम कहानी कि कैसे अनुपमा पहली बार अनुज को मिली थी और कैसे उसने अनुज के साथ डांस भी किया था और उसी डांस के चलते कैसे मिस्टर शाह ने घर में बवाल मचा दिया था। खैर, इन बवाल के बीच भी अनुज ने कभी अनुपमा का साथ नहीं छोड़ा और तो और अनुपमा हर तस्वीर की तरफ देखती और हर तस्वीर की कहानी भी बताती।
2: पहली बार कोई मुझसे किसी की बेटी, किसी की माँ, किसी की पत्नी बोल के बात नहीं कर रहा, कोई मुझे सिर्फ अनुपमा मानकर मुझसे बातें करते थे। और यही बात किसी को पसंद नहीं आया, घर में कलेश तनाव टेंशन लेने लगा, किसी ना किसी को रोज प्रॉब्लम हो जाती थी। मतलब कि एक माँ, एक सास, एक एक्स वाइफ, एक एक्स बहू, एक एक सोतन तक किसी आदमी के साथ, वो भी ऐसे कामयाब आदमी के साथ बातें कैसे कर सकती है, अकेले बार कैसे घूम सकती है, दोस्त भी कैसे कर सकती है। तो फिर एक दिन सब से तब आके मैंने उनसे कह दिया, सिर्फ काम तक ही हमारा रिश्ता है, उसके आगे और किसी चीज को मिल नहीं करना।
4: बहुत कुछ रिकलेक्ट हुआ क्योंकि एक एक्स बहू किसी और की फिर से बीवी बनने जा रही है, दादी की फिर से शादी हो रही है, कोई और फिर से कोई रिलेशन में जा रहा है और मैं बीइंग अ सास जो हमेशा अपने आप को अनुपमा की सास ही मानती हूँ, इनके लिए तो एक हक था, मतलब अनुपमा पे हक था, एक हमेशा एक ऐसा था कि ये कहीं नहीं जा सकती, ये आगे कुछ नहीं कर सकती, तो वो मेरी एक हार थी और वो हार को एक्सेप्ट करना एक सास के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता था। और ये पूरी प्रोसेस में वापस मुझे वो फिर से याद आ गया कि कहाँ कहाँ मैंने वो रोड़े डाले थे, कि कहाँ कहाँ मैंने ऑब्जेक्शन लिया था, तकलीफ़ें दी थी कि ताकि रिलेशनशिप आगे ना बढ़ पाए। पर जैसे जहाँ खुदा या भगवान चाहता हो कि एक रिलेशनशिप आगे बढ़े और सुंदर लव स्टोरी बने, वहाँ किस कौन रोक सकता है।
5: मान डे के बाद अभी अगला आने वाला है हसीला डे, हसमुख और लीला का डे, बिकॉज अगर हम वक्त में पीछे जा ही रहे हैं तो थोड़ा और पीछे जाके हमें ये भी ये लव स्टोरी भी देखनी चाहिए, करना पड़ेगा अभी।
0: उनका दिन हसीला डे।
5: ये मैं राजन सर से विनती करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि एक हसीला डे भी होना चाहिए। और ऐसा ही तीन चार
4: तो तुम्हारा और राही का क्या मरा डे होगा।
1: कहानी का सिलसिला चलता रहा, अनुपमा को अनुज याद आता रहा। इसी के साथ अनुपमा ने सभी को ये भी बताया कि लाइफ पार्टनर बनने से पहले दोनों बिजनेस पार्टनर हुआ करते थे।
2: सच कहूँ तो पहली बार मैंने आसमान छुआ तो अनुज की वजह से। मतलब ये कि पहली बार ये अनुपमा जो कभी अहमदाबाद के बाहर तक नहीं गई थी, जा जाके गई थी तो सिर्फ बाके माके जामनगर, वो भी बस में बैठ के, वो भी दो तीन बार जीवन में, वो हवाई जहाज में बैठी पहली बार।
0: आजकल की जनरेशन को एक्चुअली पता नहीं है एक्चुअल प्यार कैसा होता है, इट्स सो फास्ट पेस्ड आज के ज़माने में। तो ये एक यू कैन से आइडियल रिलेशनशिप है जैसा होना चाहिए, प्यार कैसे स्लोली स्लोली डेवलप होता है एक दूसरे के लिए, और ऐसे बहुत कम लोगों को मिलता है। सो आई एम ग्लैड हमें एक एग्जाम्पल मिला।
3: बोलते हैं ना ऐसे कि जोड़ियाँ ऊपर से बन के आती है, ये सोलमेट वाला कनेक्शन है। आजकल तो ऐसे ही मिल जाते हैं सब, बट सोलमेट कनेक्शन मिलना इज वेरी डिफिकल्ट।
5: जोड़ियाँ ऊपर से बनकर आती है, इनकी ऊपर से ही टूट जाती है।
4: आजकल तो जोड़िया ऐसे राइट स्वाइप, राइट स्वाइप,
3: राइट स्वाइप, राइट स्वाइप, लेफ्ट स्वाइप, आजकल ये सब चीजें बहुत कॉमन और हाँ इजीली एक्सेसिबल हो गई है चीजें।
5: इसमें मैं एक दलील पेश करना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए बच्चे कहाँ से सीखेंगे, जवान लोग क्या माँ बाप खुल के अपनी लव स्टोरी बच्चों को बताते हैं? हर चीज आज बता रहे हैं वो, इसीलिए हम बताना चाहते हैं कि सारे पेरेंट्स को कि अब बताओ अपने बच्चों को कि प्यार कैसे होता है और बच्चों को सिखाओ।
4: सुनो, हर हाँ। किसी की लव मैरिज भी नहीं होती है ना, अरेंज मैरिज,
5: बट प्यार तो हो ही जाता होगा ना आगे जाके।
1: बिजनेस पार्टनर के बाद कैसे दोनों धीरे धीरे नजदीक आए, और कैसे अनुज ने अनुपमा से अपने प्यार का इजहार किया, और कैसे अनुपमा ने अनुज के प्यार का इकरार भी किया। ये सारी बातें अनुपमा अपनी नई जनरेशन को बता रही है और सभी चुपचाप मंत्रमुग्ध होकर सुन भी रहे हैं। इतना ही नहीं, अनुपमा ने तो ये भी बताया कि जब उसने अनुज का प्यार कबूला तो घर में बवाल मच गया था, लेकिन अनुपमा ने हार नहीं मानी, उसने तो प्यार के लिए बगावत भी कर दी, वो भी शाह परिवार से।
0: प्यार हो या किसी भी रिलेशनशिप में हो, अप्स एंड डाउन्स हर किसी इंसान के लाइफ में चलता ही रहता है। इट्स अ कॉन्स्टेंट प्रोसेस, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जब तक आपको लगता है कि आपके सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात नहीं आई है या फिर ऐसा कुछ नहीं हो गया है जिससे आप उस इंसान के साथ और रहना ही नहीं चाहते हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। वो तो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा ऑफकोर्स, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आजकल ना बहुत छोटी छोटी बातों पर लोग ब्रेकअप कर देते हैं, अलग हो जाते हैं। तो मेरे लिए मतलब मैं सबको एक ही मैसेज देना चाहूँगी कि चीज़ें या कोई भी रिश्ता तोड़ना बहुत आसान होता है, जोड़ना बहुत मुश्किल होता है. सो इफ़ यू लव, आई मीन अगर आप सच में किसी से प्यार करते हो और अगर आप फ्यूचर देखते हो उसके साथ, तो अप्स एंड डाउन्स, झगड़ा, ये सब तो होता रहेगा. लेकिन जो प्यार आपको एक बार मिला है ना, अगर मिला है आपको प्यार, तो उसको जाने मत दो, क्योंकि प्यार बहुत किस्मत से मिलती है, मतलब बहुत मिलता है बहुत किस्मत से. तो अगर आपको मिला है तो प्लीज़ उसको कोने मत दो, और अप्स एंड डाउन्स साथ में मिल के कर लो. वो तो उल्टा, आप साथ रहोगे ना तो वो डाउन कम होगा, अप्स ही ज़्यादा होगा, क्योंकि आपको एक सपोर्ट मिलेगा.
1: भाई अनुपमा अपने और अनुज की कहानी बता तो रही है, लेकिन कहानी बताते बताते उसकी आंखें नम भी हो रही हैं, क्योंकि उसे अपने अनुज की याद जो आ रही है. अनुज हो चाहे ना हो, लेकिन अनुपमा और अनुज का प्यार हमेशा बरकरार रहेगा. मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट.
6: सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में मायरा को लेकर घर में हंगामा मचा है, क्योंकि मायरा कबीर से शादी करने के लिए घर से भाग चुकी है. ऐसे में अभिरा और अरमान का अगला कदम अब क्या होगा, देखना दिलचस्प होगा.
7: जब चूड़ियां खनके कंगना छनके छनके कंगना जग जग सजना कंगना रे कंगना रे.
1: अरमान को लगा सदमा,

बढ़ी अभीरा की बेचैनी। स्टार्स के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अरमान ने डिसाइड कर लिया है मायरा को न्यूजीलैंड भेजने का। ऐसे में आज वो मायरा को लेकर एयरपोर्ट की ओर निकल चुका है, लेकिन रास्ते में मायरा अपने पापा से डिमांड रखती है कि उसे जाने से पहले मंदिर जाके भगवान का आशीर्वाद लेना है। बस फिर क्या, बेटी की बात को मानते हुए अरमान ने उसे जाने दिया। लेकिन तभी आया कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि मंदिर के बाहर कुछ लोगों ने मायरा को खींच लिया और करने लगे डांस। ऐसे में अरमान वो देख तो रहा है, लेकिन उसी पल अरमान के चेहरे पर पीला झंडा आ गया, जिसके चलते अरमान की आंखों से ओझल हो गई मायरा।

0: मायरा न्यूजीलैंड जा रही है, घर वाले मतलब मम्मा पापा ने डिसाइड किया कि मायरा को बाहर भेज देंगे. एंड सबको ऐसा ही लगता है कि जा रहे हैं न्यूजीलैंड ही जा रहे हैं. बट रास्ते में मायरा बोलती है कि मुझे मंदिर जाना है. तो हम मंदिर उतरते हैं एंड वहाँ पे बहुत भीड़ है. भीड़ में कुछ लोग कालवेलिया फोक डांस कर रहे हैं. तो अचानक से किसी का धक्का लगता है अरमान को एंड मायरा को उतने में डांस के लिए खींच लेते हैं वो लोग. तो अब पापा इतनी सारी लड़कियों के बीच में जा नहीं पाते कि कैसे जाएं, कैसे निकालें मायरा को बाहर. और ऐसा उनकी आंखों के सामने 2 सेकंड के लिए झंडा आता है एंड मायरा गायब. तो वो ही है, नजर हटी दुर्घटना घटी वाला सीन है और मायरा गायब हो जाती है.
1: भाई मायरा तो अपने चाचू क्रिश की बातों में आकर अपने पापा को चकमा देकर वहाँ से भाग निकली है. लेकिन अरमान उसका डर बढ़ने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बेटी का किडनैप हो गया है. इसी बीच उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है जो बड़ा सा बोरा कंधे पर लाद कर ले जा रहा है. उसे लगता है कि उसकी बेटी उसी बोरे के अंदर है. बस फिर क्या, गुस्साया पापा पहुंच जाता है उस आदमी को रोकने. और जैसे ही वो बोरा खोल कर देखता है तो उसके अंदर कुछ अलग ही सामान होता है, जिसके चलते अरमान उस आदमी से माफी मांगने लगता है.

0: यहाँ अरमान की बेचैनी बढ़ रही है क्योंकि मायरा लापता हो गई है, तो वहाँ घर में अभीरा को भी अनहोनी होने का एहसास हो गया है। जरा देखिए कैसे वो अपने परिवार की तस्वीर को ढूंढ रही है, इधर उधर बेचैन हो रही है और कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द उसे पता चले आखिर अरमान अपनी बेटी को एयरपोर्ट छोड़कर आया है या नहीं। खैर यहाँ अभीरा परेशान हो रही है तो वहाँ अरमान भी परेशान हो रहा है और भक्तों की भीड़ उसके इर्द गिर्द से गुजर रही है। इसी बीच उस भीड़ में से किसी ने अरमान के हाथों में एक लेटर थमा दिया, जिसे देखकर अरमान हैरान हो रहा है क्योंकि वो लेटर किसी और का नहीं बल्कि मायरा का है।
1: अभी तो मायरा और मायरा भाग चुकी है, अब देखते हैं वो लोग कहाँ भागे हैं, क्या होगा आगे। घर वाले तो ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा परेशान होंगे, मम्मा पापा पे क्या बीतेगी पता नहीं, बट देखते हैं।
0: भाई लेटर पढ़कर अरमान को एहसास होता है कि उसकी बेटी मायरा भाग चुकी है, ऐसे में अरमान हो गया है बेहद ही दुखी और देखिए कैसे बेसुध होकर वो जमीन पर लेट गया है।
1: लेटर में क्या है मुझे नहीं पता, बस लास्ट में लव मायरा लिखा होता है और पापा बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हैं एंड सब लोग आसपास चल रहे हैं, उनके चोट के ऊपर से चोट का बुरा हाल हो चुका है, बहुत ही क्रेजी सीन है। लेटर के साथ एक ऑइंटमेंट दिया हुआ है कि प्लीज़ ये दवाई अपने वाउंड पे लगा लेना, क्योंकि पापा ने बहुत दिनों से अपनी चोट पे पट्टी नहीं की, दवाई नहीं लगाई है, तो मायरा ने दवाई दी है कि दवाई लगा लेना, बट दवाई की जगह खून लग जाता है उस चोट पे। ओह बहुत, अरे यार मैं नहीं देख, मतलब वो इमेजिन वो चोट इतनी बुरी होती जा रही है, लोग उसके ऊपर से आगे पीछे से जा रहे हैं, उससे और खून निकल रहा है।
0: अब मायरा वाकई में भागी है या फिर इसके पीछे क्रिश का कोई हाथ है, ये तो आने वाले एपिसोड्स में पता चल ही जाएगा, क्योंकि क्रिश ज्यादा से ज्यादा अरमान और अभीरा दोनों को ही दुखी पहुंचाना चाहता है। खैर अरमान की हालत ठीक नहीं है और अभीरा उसकी हालत को बखूबी समझ रही है, इतना ही नहीं अभीरा तो हो रही है उसके लिए परेशान भी। देखना होगा जब अरमान को होश आएगा और अपनी बेटी मायरा को नहीं पाएगा तो कहानी में क्या ट्विस्ट आएगा। मुंबई से कैमरामैन अजय उग्रेजा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
2: आपके दिन को खास बनाने और चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए हम हाजिर हैं कुछ बेहद रॉकिंग और शॉकिंग खबरों के साथ, तो चलिए आपको दिखाते हैं मनोरंजन की दुनिया के अलग अलग रंग और देखते हैं क्या है आज की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें।
3: स्टार प्लस के सीरियल सयोनी के सेट से सामने आए हैं ये बीटीएस नजारे, जहां शूटिंग करते नजर आए आदित्य और सानवी।

0: खेलों के खिलाड़ी सीजन 15 का जल्द ही फिनाले होने वाला है। ऐसे में शुरू हो चुकी है कंटेस्टेंट्स के बीच फिनाले रेस की जंग।
1: द फिनाले इज योर फराना, जिसने डर को ही डरा दिया। अविनाश एक सॉलिड खिलाड़ी,
2: माइंड में कुछ नहीं, बस जीतना है।
3: इसी स्टंट के बाद पता चल जाएगा कि कौन असली प्लेयर।
1: The finale is here. अगला स्टंट करेंगे मेरे दो भाई, दोनों तबाही, ऋत्विक एंड वही।
4: दोस्ती अपनी जगह है और कंपटीशन अपनी जगह है। अगर जंग में आपके सामने आपका भाई भी खड़ा हो तो आपको अपने कर्म और अपने धर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए।
0: जी टीवी के आने वाले नए शो शुभ शगुन शहनाइयां में नजर आएंगे पैरेलल लीड निभाते हुए इंद्रजीत मोदी।

0: हंसी ठहाके और नॉन स्टॉप मनोरंजन। भारती और हर्ष के रियलिटी शो इंडियन गेम शो के सेट पर सितारों की मस्ती देखने को मिली। मजेदार गेम्स और सितारों के ठहाकों से भरा ये माहौल कैसा रहा, चलिए देखते हैं।
1: वेलकम टू इंडियन गेम शो विद भारती एंड हर्ष।
2: श्रेया अपना खुखार रूप दिखाओ।
3: अब मुझे पता चला प्रिंस का क्या हाल होता होगा। ये क्या किया?
1: अब तू देख तेरी क्या हालत करती है ये।
2: जन्नत तुम ठीक हो?
4: मैं इसकी आशिकी से परेशान हूँ भाई।
2: जन्नत मुंह साफ करना।
5: मुंह में कुछ है ही नहीं, क्या साफ करूँ?
3: कुत्ता।
1: ये ऐसे लग रहा है कि दो पाँव के बीच में एक बड़ा रखा हुआ है।
2: हाँ ये खींच ले, डाल ले, ऐसे डाल ले।

0: पहले आएंगे दोनों लड़के।
1: भाई मैं नहीं खेल रहा, प्लीज भाई ये नहीं जाऊंगा।
0: हाँ ठीक है जा अभी।
2: हर को

0: हम इस लुखे को और मेरी दूर की बीवी को दिखाएंगे कि गेम कैसे होती है।
1: दूर की बीवी क्या होता है भाई,
0: पास की बीवी वो घर पे है,
1: घर जाके फिर आपको पास से समझाएगी वो।
2: ये वो गेम है जो हम सब का नहीं पूरे हिंदुस्तान का फेवरेट हो चुका है।
3: मेरी स्किन निकाल दिया और उसने ऐसे लग रहा था सच्ची में उसकी दुश्मन हूँ मैं, भूल गया मैं बीवी हूँ।
1: पति पत्नी का जब झगड़ा होता है
0: जन्नत दे लो। इसमें कोई अभिनत नहीं है, इसमें जन्नत का ही फॉल्ट है।

सीरियल्स के सेट पर मचे हंगामों और पर्दे के पीछे की इनसाइड स्टोरीज के साथ आज का हमारा ये सफर यहीं पूरा होता है। लेकिन मनोरंजन का ये सिलसिला कल फिर जारी रहेगा और हम लेकर आएंगे कुछ और दिलचस्प और मसालेदार खबरें। कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लाल।
3: एशियन गेम्स में भारत को मिला आज का चौथा गोल्ड मेडल, तीरंदाजी में तीन और शूटिंग में आया एक गोल्ड, मेडल टैली में इंडिया सातवें नंबर पर आया। जोधपुर में तरंग शक्ति युद्धाभ्यास की गर्जना, आसमान में F-16 और राफेल समेत आठ देशों के विमानों का शक्ति प्रदर्शन, 12 अक्टूबर तक चलेगा युद्धाभ्यास। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ के बाद मिशन जिंदगी तेज, कुशीनगर में NDRF SDRF की टीमें अलर्ट मोड पर, राहत बचाव का कार्य तेज। कोलकाता में शक्ति उपासना की तैयारियां तेज, मां दुर्गा की प्रतिमा को अंतिम रूप दे रहे कार्यक्रम। रामनगरी अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारियां तेज, राम की पैड़ी पर रंग रोगन का काम तेज, इस बार 30 लाख दीयों से जगमग होगी धर्मनगरी।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
3: एशियन गेम्स में भारत का गोल्डन दिन, तीरंदाजी और शूटिंग मिक्स ट्रैप टीम ने जीता 4 गोल्ड, प्रिया गंगास और कपिल पोखरिया ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। एशियन गेम्स में भारतीय महिला तीरंदाजी टीम ने चीन की टीम को हराया, भारत को दिलाया गोल्ड मेडल। चिकिता प्रतिका और ज्योति की तिकड़ी ने किया कमाल, 238 अंक के स्कोर के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी की। एशियन गेम्स में भारतीय कंपाउंड मिक्स आर्चरी चिकिता तनिपार्थी और राजेश जाधव की जोड़ी ने कोरिया तीरंदाजी में हरा के गोल्ड मेडल हासिल किया। एशियाई खेलों में भारत का लगातार शानदार प्रदर्शन जारी, शूटिंग मिक्स ट्रैप टीम ने जीता गोल्ड। नीरू डांडा और कायन चेनाई की भारतीय जोड़ी ने किया कमाल, 7वें स्थान पर पहुंचा भारत। भारतीय पुरुष कंपाउंड तीरंदाजी की टीम साहिल कुशल और गणेश की जोड़ी ने जीता गोल्ड, चीन की टीम को हराया। एशियन गेम्स में महिला 60 किलोग्राम वर्ग कैटेगरी में प्रिया घंघास ने किया कमाल, जीता ब्रॉन्ज मेडल। एशियाई खेलों में भारत की कपिल पोखरिया ने भी किया कमाल, 90 किलोग्राम वर्ग में जीता ब्रॉन्ज मेडल। एशियन गेम्स में भारत ने अब तक कुल 10 गोल्ड, 21 सिल्वर और 28 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है, कुल मेडल की संख्या हुई 59। फुटबॉल के महामुकाबले के लिए सज रहा है कोलकाता का सॉल्ट लेक स्टेडियम, तैयारियां पूरी। ब्राजील की स्टार टीम के स्वागत की तैयारियां पूरी, खिलाड़ियों को मां दुर्गा की प्रतिमा, दार्जिलिंग चाय और बंगाली व्यंजन परोसे जाएंगे। 3 अक्टूबर को भारत के खिलाफ उतरेगी 5 बार के वर्ल्ड कप चैंपियन ब्राजील, मैच को लेकर खेल प्रेमियों में काफी उत्साह। भारत अंडर 19 ने पहले यूथ टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को पारी और 48 रनों से हराया, रायचंद दानी ने खेली शानदार पारी। भारत ने पहली पारी में 494 रन बनाए, जबकि जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली पारी में 217 और दूसरी पारी में 229 रन पर ही सिमट गई। महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंचे क्रिकेटर रिंकू सिंह, विधि विधान से किए दर्शन पूजन। बाबा महाकाल से की सुख समृद्धि की कामना, भोलेनाथ का लिया आशीर्वाद। सूरत के रहने वाले 14 साल के विवान शर्मा ने गुजरात के सबसे कम उम्र के चेस इंटरनेशनल मास्टर ज्वाल पटेल का तोड़ा रिकॉर्ड। विवान शाह ने 2400 FID रेटिंग पार की और 3 IM नॉर्म्स हासिल किए, अब ग्रैंड मास्टर टाइटल पर नजर है। MP रणजी टीम का ऐलान, रजत पाटीदार हुए बाहर, शुभम होंगे कप्तान। कोलकाता में शक्ति उपासना की तैयारियां तेज, मां दुर्गा की प्रतिमा को अंतिम रूप दे रहे कारीगर। कोलकाता का कुमारटुली इलाके में कलाकार दिन रात मां की प्रतिमाओं को सजाने संवारने में जुटे हुए हैं। छोटी से लेकर बड़ी प्रतिमाएं बना रहे हैं कारीगर, खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। रामनगरी अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारियां तेज, राम की पैड़ी पर रंग रोगन का काम तेज। राम के पैड़ी में साफ सफाई का काम जारी, इस बार 30 लाख दियों से जगमग होगी धर्मनगरी। पुरी में जगन्नाथ मंदिर में दर्शन के लिए उमड़ा आस्था का जनसैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए। पुरी में गुंडीचा मंदिर भक्तों और तीर्थयात्रियों के लिए खोला गया, बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। मंदिर खोलने से पहले प्रशासन ने की विधि विधान से पूजा अर्चना, भक्तों ने लगाए जय जगन्नाथ के जयकारे। झांसी में विश्व शांति महायज्ञ का भव्य समापन, बैंड की प्रस्तुतियों ने बांधा समा। भगवान आदिनाथ के रथ को श्रद्धालुओं ने खींचा, भक्तों ने लगाए जयकारे। तेलंगाना के हनुमकोंडा में हजार खंभ वाले मंदिर में सुरक्षा बलों का मॉक ड्रिल, जवानों ने सुरक्षा व्यवस्था को परखा। ऑक्टोपस कमांडो ने आतंकी हमला और आपदा से निपटने की तैयारी की, मंदिर परिसर का भी जायजा लिया। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौ सेवा की मवेशियों को चारा खिलाया। प्रवासी पक्षियों से गुलजार हुआ थूथुकुड़ी, बड़ी संख्या में पहुंचे विदेशी पक्षी। पेंटेड स्ट्रॉक, ग्लासी आइबिस और पर्पल हेरॉन जैसे जल पक्षियों का जमावड़ा, देखने के लिए लग रही लोगों की भीड़। मुंबई में गणपति राज्य महोत्सव 2026 के तहत बप्पा ओआरजी गाथा गणेश कथांचे डिजिटल पुरालेख पहल का शुभारंभ, सीएम देवेंद्र फडणवीस इसमें शामिल हुए। आंध्र प्रदेश के नेलोर में पांडु का कार्यक्रम में सीएम चंद्रबाबू नायडू शामिल हुए, डिप्टी सीएम पवन कल्याण भी रहे इस दौरान मौजूद। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह सिंधु ने महिला सुरक्षा को लेकर दौलतराम कॉलेज को किया दौरा, छात्रों से की मुलाकात। श्रीनगर में हिंदी रंगमंच 2026 कार्यक्रम का हुआ आयोजन, एलजी मनोज सिन्हा इसमें शामिल हुए। एलजी मनोज सिन्हा ने हिंदी भाषा में टॉप करने वाले छात्रों को सम्मानित किया, स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक और नाट्य प्रस्तुति दी। जोधपुर में एक्सरसाइज तरंग शक्ति जारी, पावर इन पार्टनरशिप है इस साल की थीम। आसमान में दिखा फाइटर जेट और स्पोर्ट एयरक्राफ्ट के जरिए मल्टीनेशनल एयर पावर का शानदार प्रदर्शन, 12 अक्टूबर तक चलेगा यह अभ्यास। जोधपुर के आसमान में दिखी 6 F-35 की ताकत, सेनाएं जटिल ऑपरेशन और आपसी तालमेल को मजबूत करने का कर रही अभ्यास। अभ्यास में फ्रांस के राफेल और A400M, UAE के F-16 और ग्लोबल 6000 समेत कई अत्याधुनिक विमानों ने दिखाए अपना कर्तव्य। तरंग शक्ति में भारतीय वायुसेना के राफेल, SU-30M के ILCA तेजस, जैगुआर और MiG-29 की भी दिखी ताकत। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 का समापन, 6 लाख लोग पहुंचे। ट्रेड शो के दौरान करीब 6500 करोड़ रुपए के 4400 एमओयू पर हस्ताक्षर हुए, बिजनेस इंक्वायरी के आधार पर करीब 15500 करोड़ रुपए कारोबार का अनुमान। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में रूस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, सिंगापुर, बेलारूस और वियतनाम ने पार्टनर कंट्री के तौर पर हिस्सा लिया था। ट्रेड शो में प्रदेश के सभी 75 जिलों के पारंपरिक शिल्प, हस्तकरघा, पीतल, कालीन और चमड़ा उत्पादन प्रदर्शित उत्पाद बने आकर्षण का केंद्र। पणजी में गोवा राज्य सांस्कृतिक पुरस्कार समारोह का आयोजन हुआ, सीएम सावंत ने कई लोगों को सम्मानित किया। दिल्ली NCR में नया ग्रैप लागू किया गया, AQI स्तर के मुताबिक 4 चरणों में लगाई जाएंगी पाबंदियां। स्कूलों में हाइब्रिड पढ़ाई का मिलेगा विकल्प, ऑफिस में आधे स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम होने की अनुमति मिलेगी। पाली में स्कूल बस में घुसा सांप, ड्राइवर ने सांप का रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। कौशाम्बी में बच्चों की गुहार पे डीएम अंकल ने लिया तत्काल संज्ञान, गांव में लगी स्ट्रीट लाइट, बच्चों ने डीएम को धन्यवाद किया। भोपाल के VIP रोड पर तेल से भरा टैंकर पलटा, सड़क पर फैला तेल, लूटने की मची होड़। पहाड़ों पर कुदरत की मेहरबानी बरकरार, मनाली में सीजन की दूसरी बर्फबारी। पहाड़ों पर पिछली बर्फ की मोटी सफेद चादर, तापमान में भी आई भारी गिरावट। बर्फबारी के बाद सैलानियों से गुलजार हुआ मनाली, व्यापारियों के साथ साथ पर्यटकों के भी खिले चेहरे। गोपालगंज में बड़ा गंडक नदी का जलस्तर, कई इलाके पानी में डूबे। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोग ले रहे हैं नाव का सहारा, मवेशियों को भी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रहे हैं लोग।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: भाई और बहनों नमस्कार। मैं बाबा रवि गिरी आज जो कार्यक्रम लेके आया हूं वो आपकी आंखें खोल देगा। क्या आप जानते हैं कि मैं 78वें वर्ष में चल रहा हूं, लेकिन आपको शायद ये जानकर विश्वास ना हो कि मैं आज भी रोज कई किलोमीटर आराम से चलना ही नहीं बल्कि दौड़ भी लगा सकता हूं। इस उम्र में जहां लोग दर्द से, खासकर जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं, मैं इस उम्र में भी पूरी तरह फिट हूं। न मुझे जोड़ों का कोई भी दर्द है और ना मेरी एनर्जी कम है। आप जानते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो पाया? तो मैं आपको बता दूं कि मेरे बनाए नुस्खों की वजह से, जो इस उम्र में भी मुझे हाथ पैर कंधे घुटने के दर्द से दूर रखते हैं। और आज के कार्यक्रम से ये आपके साथ भी मैं साझा कर रहा हूं, आप भी अगर जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं, दवाएं खाते खाते परेशान हो गए हैं, तो एक बार मेरे नुस्खों को आजमा कर देखें, आपको 100% लाभ मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है। और ये नुस्खे कितने कारगर है इसका जीता जागता साबूत मैं आपके सामने बैठा हूं। इस उम्र में भी मेरे शरीर के सारे जोड़ चुस्त हैं, दुरुस्त हैं। मैंने ये नुस्खे अपने 50 वर्षों से भी अधिक के आयुर्वेदिक अनुभवों के ज्ञान और लंबे शोध के बाद तैयार किए हैं और हजारों लोगों को मैंने ठीक भी किया है। अगर आपको कई सालों से जोड़ों के दर्द की समस्या है, कोई चोट की वजह से दर्द है, बढ़ती उम्र के साथ दर्द बढ़ रहा है, या फिर कम उम्र में ही जोड़ों में, खासकर घुटनों में दर्द रहने लगा है, जोड़ों में ग्रीस कम हो गया है, गैप आ गया है, या फिर पानी भर गया है, समस्या चाहे जो भी हो और आपकी उम्र भी चाहे जो भी हो, आपको मेरे बनाए नुस्खे जरूर फायदा देंगे। ये मेरा आपसे वादा है। आपको बता दूं कि पुरुषों के मुकाबले जोड़ों के दर्द की समस्या महिलाओं को जल्दी और ज्यादा होती है, जिसका कारण हार्मोनल असंतुलन की वजह से, यानी मेनोपॉज भी आपको हो सकता है। लेकिन मैं बाबा रवि गिरी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ये सभी समस्याएं मेरे नुस्खों से बिल्कुल ठीक हो सकती है और जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाकर आप बिना दर्द के चलना फिरना ही नहीं दौड़ना भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए ये जो नंबर हैं इन पे कॉल करना है, आपको आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको लगता है कि बढ़ती उम्र में जोड़ों का दर्द होता ही होता है, तो मैं आपको बता दूं कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। अगर आप ध्यान देंगे, सही दिनचर्या अपनाएंगे और अपने जोड़ों का ध्यान रखेंगे, तो आपके जोड़ आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, बल्कि उम्र भर आपके शरीर का अच्छे से बोझ उठाएंगे और आपको चुस्त और दुरुस्त रखेंगे। और ऐसा करने में आपको मेरे नुस्खे हर तरह से मदद करेंगे। इन नुस्खों को मैंने इन्हीं सभी बातों को और समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया है। यदि हिम्मत और दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आपकी सोच और आपके प्रयास ही आपको आगे बढ़ाते हैं। जब मैं इस उम्र में भी आराम से कई किलोमीटर तक दौड़ सकता हूं, तो आप क्यों नहीं दौड़ सकते? तो आप अभी ये नीचे जो नंबर दिए गए हैं इन पे कॉल करके मेरे नुस्खों का फायदा उठाएं और अपनी दवा बुक करें। अगर आप सुबह उठते ही अपने घुटनों या पीठ में दर्द महसूस करते हैं तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या आपको वो दिन याद है जब आप बच्चों के साथ पार्क में दौड़ा करते थे या बिना थके सीढ़ियां चढ़ लेते थे और अब थोड़ा सा चलना भी भारी लगने लगता है। जोड़ों का दर्द ना सिर्फ हमारे शरीर को तकलीफ देता है बल्कि हमारी जिंदगी के कई खूबसूरत पलों को भी हमसे छीन लेता है। न रोज के काम अच्छे से कर पाते हैं और न ही हर दिन की भागदौड़ में वो आत्मविश्वास रह जाता है। जरा सी सीढ़ियां चढ़ने पर घुटनों में दर्द होने लगता है, जमीन पर बैठना मुश्किल हो गया है और चलने में भी डर लगता है कि कहीं दर्द और ना बढ़ जाए। सच तो ये है कि जोड़ों का दर्द सिर्फ शारीरिक तकलीफ नहीं देता, ये हमारे अंदर की हिम्मत को भी गिरी पाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दर्द होता क्यों है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण है गठिया यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये सबसे आम प्रकार है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों की घिसावट की वजह से होता है। इसमें कार्टिलेज जो हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है जिससे जोड़ों में दर्द और अकड़न होती है। क्या आप जानते हैं कि गठिया के 100 से ज्यादा प्रकार हैं जिनमें हल्के से लेकर गंभीर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। रोमेटॉइड आर्थराइटिस जोड़ों के दर्द की ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम खुद ही जोड़ों पर हमला करने लगती है। इससे जोड़ों में सूजन, दर्द और समय के साथ हड्डियों की बनावट तक बदल सकती है। तो भाइयों और बहनों, मेरे नुस्खे इन सारी समस्याओं में असरकारक है क्योंकि इनमें ढेरों शक्तिशाली जड़ी बूटियों को मैंने अपने 50 साल से ज्यादा के अनुभव से अलग अलग फार्मूलेशन में मिलाया है जो आपको आपकी समस्या के हिसाब से बनाकर दी जाती है। इसलिए ये बिल्कुल सीधा असर करती है। मैंने ये नुस्खे पुरुष हो चाहे महिला हो, उम्र चाहे 20 साल हो चाहे फिर 70-80 साल हो, चलने में दिक्कत हो, सीढ़ियां चलने में दर्द होता हो, जोड़ों से कटकट की आवाज आती हो, इन सभी समस्याओं पर गहन चिंतन और शोध के बाद ही ये नुस्खे तैयार किए हैं जिनका असर अचूक है। चलती रहनी चाहिए जिंदगी बिना दर्द के और बिना रुकावट के। मैं बाबा रविगिरी आपको कुछ ऐसे नुस्खे और जड़ी बूटियां बताऊंगा जिससे आप अपने जोड़ों का समाधान तुरंत पा सकते हैं। जोड़ों के दर्द में प्रयोग की जाने वाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो मैं बताने जा रहा हूं उनमें सबसे पहला है तेलपर्ण। इसको तेलपर्ण क्यों कहा जाता है कि इसके पत्तों में तेल होता है, इसलिए इसको तेलपर्ण कहते हैं। वैसे आम भाषा में इसको नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है ये है सती तेल। ये सूजन को घटाता है, अंदर तक समाकर यह सूजन बढ़ाने वाले इंटरल्यूकिन स्तर को कम करता है और सूजन को घटाता है। इसके बाद में है ये तेजोवती। इसमें मौजूद लिनालूल और लिमोनेन कफ दोष शमन करके और सूजन को घटाता है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर यानी TNF और इंटरल्यूकिन 6 के बढ़े हुए लेवल्स को घटाता है ये। इसके बाद में है ये तेज पत्ता यानी त्वक पत्तर। ये जोड़ों में जकड़न से निजात दिलाता है, जोड़ों में गतिशीलता देता है। इसके बाद में यह है ज्योतिषमती, ये वात और कफ को संतुलित करके जोड़ों के दर्द में आराम दिलाता है। ये है गंध पत्र, ये गंधपुरा पत्र में 85 से 99% तक मिथाइल सिलिसिलेट होता है जो दर्द निवारक है। तो इससे मांसपेशियों, जोड़ों, हड्डियों के दर्द में आराम मिलता है। इसके बाद में ये है लवंग, इसमें प्रस्तुत यूजेनॉल दर्द को और सूजन को कम करता है और अंदर के इन्फेक्शंस को खत्म कर देता है। इसके बाद में यह है तिल का तेल, बहुत अच्छी चीज है ये। तिल के तेल में एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है जो घुटनों में होने वाली सूजन और दर्द को कम करने में प्रभावी होता है। इसके बाद में ये तेल है, ये मेजन करी तेल, इस पौधे में औषधीय गुण होते हैं और इसका उपयोग पारंपरिक रूप से विभिन्न बीमारियों जैसे पेट दर्द और गैस्ट्रो इंट्राइस्टिस के साथ साथ मधुमेह, एडिमा, सर्दी, गठिया, अस्थमा और दर्दनाक चोट के इलाज के लिए किया जाता है। उसके बाद में यह है सुरंजन कटु, ये सूजन रोधी एवं दर्द निवारक प्रभावों के लिए जाना जाता है। यह एक प्रोपेरिएटरी मेडिसिन है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के गठिया में मसल्स और हड्डियों के समर्थन के लिए किया जाता है। इसके बाद में यह है चित्रक मूल, ये गठिया के लक्षणों को कम करने के लिए यानी चित्रक की जड़ अत्यंत फायदेमंद मानी जाती है। यह एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है, यह दर्द निवारक, सूजन को कम करने वाली, एक बैक्टीरिया और फंगस का नाश करने वाली भी है। यह है ट्रिक टू, इसमें मौजूद बायो एक्टिव कंपाउंड जोड़ों के दर्द, सूजन, लालिमा एवं जोड़ों की कठोरता को कम करने में मदद करता है। यह है अजवाइन, अजवाइन पाचन को दुरुस्त करता है, टॉक्सिन को बाहर निकालता है, प्रोटीन, फैट, फाइटोकेमिकल, फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन जैसे पोषक तत्व इसमें प्रचुर मात्रा में भरे हुए हैं। आखिर में है अबरक भस्म, यह कफ को संतुलित करके आरए फैक्टर को कंट्रोल करता है और सर्दियों में जो जोड़ों का दर्द ठंड की वजह से बढ़ जाता है उसको नियंत्रित करता है। साइटिका से आजकल बहुत लोग परेशान है, साइटिका आप सभी जानते हैं कि एक टांग में होने वाला दर्द है जिसका उद्गम रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है क्योंकि वहां की नस हिल जाती है। मेरे पास ऐसी अभिमंत्रित ताबीज भी है जो इस दर्द को दूर कर देगी। जोड़ों का दर्द एक असहनीय रोग है, यह एक व्यक्ति से उसकी आत्मनिर्भरता छीन लेता है। तो मेरी एक ही सलाह है, अब गोलियों से नहीं इलाज सिर्फ नुस्खों से करें क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और असर 100% मिलेगा। ये मेरा यानी बाबा रविगिरी का वादा है। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करना है और अपने लिए मेरे नुस्खे मंगवाने हैं। फिर देखिए दर्द कैसे खुद ब खुद भागता है, ये मेरा वादा है। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए और तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो राम राम भाई और बहनों, नमस्कार।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ रही है।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
3: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में
3: विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: एशियन गेम्स में भारत को मिला आज का चौथा गोल्ड मेडल, तीरंदाजी में 3 और शूटिंग में आया 1 गोल्ड मेडल, टैली में इंडिया 7वें नंबर पर आया। जोधपुर में तरंग शक्ति युद्धाभ्यास की गर्जना, आसमान में F-16 और राफेल समेत 8 देशों के विमानों का शक्ति प्रदर्शन, 12 अक्टूबर तक चलेगा युद्धाभ्यास। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ के बाद मिशन जिंदगी तेज, कुशीनगर में NDRF SDRF की टीमें अलर्ट मोड पर, राहत बचाव का कार्य तेज। कोलकाता में शक्ति उपासना की तैयारियां तेज, मां दुर्गा की प्रतिमा को अंतिम रूप दे रहे कारीगर। रामनगरी अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारियां तेज, राम की पैड़ी पर रंग रोगन का काम तेज, इस बार 30 लाख दीयों से जगमग होगी धर्मनगरी।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
2: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंचवास्तव और आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। पितरों से आशीर्वाद पाने, उनकी कृपा पाने का समय पितृपक्ष चल रहा है। पितृपक्ष में लोग अपने पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए श्रद्धा और तर्पण कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि पितृपक्ष के दिनों में माँ लक्ष्मी की कृपा भी आसानी से मिल जाती है। जी हाँ, कुछ खास उपाय और नियमों को ध्यान में रखते हुए अगर पितृपक्ष में माँ लक्ष्मी की उपासना की जाए तो धन से जुड़ी हर समस्या खत्म हो सकती है। तो देखिए क्यों खास है पितृपक्ष में लक्ष्मी जी की उपासना।
3: पितृपक्ष में कैसे करें आत्मशुद्धि। दक्षिण दिशा से आएगी समृद्धि,

0: जानिए पूर्वजों का कैसे करना है सत्कार। महाप्रयोग से खुलेगा मुक्ति का द्वार। पीपल की परिक्रमा पूरी करेगी मनोकामना। परम फलदायी है पितृपक्ष में मां लक्ष्मी की आराधना। जीवन में संपन्नता और प्रसन्नता तब तक नहीं मिल सकती जब तक मां लक्ष्मी की कृपा न हो, क्योंकि मां लक्ष्मी की कृपा के बगैर ना तो धन आता है और ना ही वैभव। पितृपक्ष चल रहा है, लोग अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध और तर्पण कर रहे हैं, लेकिन शायद आपको ये ना पता हो कि पितृपक्ष में कुछ खास उपायों से मां लक्ष्मी की कृपा भी पाई जा सकती है।
1: को प्रसन्न करने के लिए महा उपाय यह है, जातवे दशे सुनुवाम सोम मराती तो निदहाते वेदहा सन परिषद दुर्गाण विश्वा नामेव सिंधु धृतात्यग्नि। ऋग्वेद का यजुर्वेद का मंत्र है। ये बहुत बड़ा सागर पार करना है या कोई नदी पार करना है, नाव में बैठते हैं हम लोग। नाव का जो चलाने वाले जो है केवट जो है, एक बूंद पानी हम लोग को लगने नहीं देते, आराम से वहाँ इस पार से उस पार छोड़ देते हैं। देवी जो है उनका आराधना पूजन सत्यता सदाचारता अगर हमारे पास है, देवी अवश्य प्रसन्न हो जाएगी, हम लोग को पार लगाएगी।
0: पितृपक्ष में करें धन प्राप्ति के महाप्रयोग। आज हम आपको वो दिव्य प्रयोग बताएंगे, वो उपाय जितने छोटे हैं उतने ही अचूक और कारगर भी। इन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाइए और जीवन भर के लिए माँ लक्ष्मी की कृपा के भागी बन जाइए। लेकिन पहले बताते हैं कि पितृपक्ष में कैसे होती है माँ लक्ष्मी की आराधना। पितृपक्ष में माँ लक्ष्मी की आराधना, पितृपक्ष के बाद नवरात्रि की शुरुआत होती है। नवरात्रि में शक्ति पूजा के पूर्व पितृपक्ष में लक्ष्मी पूजा का प्रावधान है, ताकि शक्ति प्राप्ति के पूर्व आर्थिक रूप से मजबूती आ सके। पितृपक्ष में लक्ष्मी प्राप्ति के या लक्ष्मी संबंधी प्रयोग वही करेंगे जिन पर पितृपक्ष का बंधन नहीं है। जो लोग श्राद्ध कर रहे हैं या पितृपक्ष का पालन कर रहे हैं, ऐसे लोग ये प्रयोग नहीं करेंगे। धन की देवी है माँ लक्ष्मी, विष्णु प्रिय देवी। लक्ष्मी की कृपा से ही धन पाना संभव है। अन्न वस्त्र वैभव संपन्नता सब कुछ धन से ही संभव है। इसलिए हम आपको बताएंगे कि पितृपक्ष के खास दिनों में माँ लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करें। अगर चाहते हैं जीवन में नियमित रूप से धन की प्राप्ति बनी रहे, तो देखिए ये महा उपाय। नियमित धन की प्राप्ति का प्रयोग, माँ लक्ष्मी के उस स्वरूप की स्थापना करें जिसमें उनके हाथों से धन गिर रहा हो। चित्र के समक्ष घी का एक बड़ा सा दीपक जलाएं, इसके बाद उनको इत्र समर्पित करें। वही इत्र नियमित रूप से प्रयोग करें, इससे धन प्राप्ति आसानी से होगी। ये बात सर्वमान्य है कि माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना से धन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। ये बात भी सभी जानते हैं, पर माँ लक्ष्मी की कृपा से मनुष्य के संपूर्ण जीवन का भी कल्याण हो सकता है। सभी प्रकार की संपत्ति सिद्धि और ऐश्वर्य की देवी है माँ लक्ष्मी। इनकी उपासना से हर प्रकार की सुख समृद्धि मिल सकती है।
2: मंदिर निकटतम कोई स्थान में जाकर के वहाँ पर कुछ गरीबों को भोजन करावे। नित्य गोग्रास अवश्य निकाला करें। गोग्रास निकालने से अत्यंत पितृ तृप्त होते हैं पितृपक्ष में, और घर में आयु आरोग्य ऐश्वर्य शांति का वो हमेशा वास होता है। वहाँ पर लक्ष्मी आती है। वहाँ पर पितृपक्ष में लक्ष्मी का बहुत विशेष विधान भी कुछ जगह बतलाया गया है कि पितृपक्ष में अगर आप नित्य पितृ आचरण करते हुए सूर्य देवता को जल देना इत्यादि नित्य कर्म शुभ कर्म करते हैं, तो लक्ष्मी का आगमन आपके घर पे हो जाता है, ऐसा शास्त्र में।
0: शास्त्रों के अनुसार लक्ष्मी को चंचला कहा जाता है, यानी वो कभी एक स्थान पर टिककर नहीं रहती। ऐसे में कई बार माँ लक्ष्मी की कृपा मिलने के बावजूद इंसान को फिर से घोर विपत्ति का सामना करना पड़ता है। तो अगर आप धन की बचत नहीं कर पा रहे, तो हम आपको बताएंगे इसका भी अचूक उपाय। साथ ही बताएंगे कारोबार में धन की प्राप्ति का अद्भुत प्रयोग। पितृपक्ष में ये खास प्रयोग पूरे विधि विधान से माँ लक्ष्मी की उपासना कीजिए, आपका उद्धार कर देंगे। बने रहिए हमारे साथ।
3: धन की देवी की उपासना हर समय फलदायी मानी गई है, लेकिन श्राद्ध के दिनों में अगर माँ लक्ष्मी की आराधना की जाए तो उससे धन की देवी शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। पितृपक्ष में देवी लक्ष्मी की पूजा परम कल्याणकारी है, लेकिन इसके कुछ नियम हैं। तो अगर आप धन की बचत नहीं कर पा रहे हैं या फिर कारोबार में उन्नति का वरदान चाहते हैं तो गौर से देखिए, ये खास उपाय भी आपके लिए काफी ज्यादा कारगर साबित हो सकते हैं।
0: पितृपक्ष में धन की देवी करेगी मालामाल। पूर्वजों के आशीर्वाद से होगा कमाल। अचूक है पितृपक्ष में धन प्राप्ति के महाप्रयोग। कट जाएंगे जीवन पर छाने वाले दुरुपयोग। पूर्वजों से कृपा और आशीर्वाद पाने का महापर्व है पितृपक्ष। पितृपक्ष यानी पितरों का पक्ष। इस पक्ष में पूरी श्रद्धा से किया जाता है अर्पण और तर्पण। श्राद्ध और पिंडदान के जरिए पितरों की आत्मा की शांति और उनके मोक्ष के लिए उनके परिजन करते हैं प्रार्थना। ज्योतिषी कहते हैं कि श्रद्धा से किए गए श्राद्ध और पितरों को तर्पण करने से असीम फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि पितृपक्ष के 15 दिन हमारे पूर्वज धरती पर ही रहते हैं।
2: पितृपक्ष में महालक्ष्मी जी का कृपा पाने के लिए उपाय, सबसे घर में लक्ष्मी दरिद्रता आने का 200 प्रकार का दोष है। एक काल सर्प दोष है, एक पितृ दोष है। काल सर्प दोष में ऊपर राहु है, नीचे केतु है, उस बीच में शनि बैठ गया, महाकाल सर्प होता है। उसमें पितरों का भयंकर दोष लगता है उसमें, और घर में झगड़ा, अशांति, दरिद्रता, ये सभी पितृ दोष से ही होती है। पितरों के लिए मुक्ति के लिए विशेष रूप से हर साल पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण, अमावस्या, तीर्थों में श्राद्ध, वो भी परम पवित्र गया नगरी में पिंडदान श्राद्ध करने से पितृदोष निवारण होने का एक उपाय है। इससे लक्ष्मी प्राप्ति अवश्य होगी।
0: पुराणों और ग्रंथों में पितृपक्ष की महिमा का वर्णन मिलता है। ज्योतिषी कहते हैं कि पितृपक्ष में पितृ को प्रसन्न कर सकते हैं खास प्रयोगों और महा उपायों से। देवी माँ लक्ष्मी को भी प्रसन्न किया जाता है।
2: महालक्ष्मी का आराधना, केवल महालक्ष्मी का आराधना करने से लक्ष्मी प्राप्ति नहीं होती। हम लोग प्रातः काल उठकर कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती बोलते हैं। कर अग्र में लक्ष्मी है, सरस्वती है, करमूले गोविंद बोलते हैं। ये मंत्र बनने से लक्ष्मी नहीं प्राप्त होती। बड़े विदेश, देश विदेश में कोई लक्ष्मी का पूजा नहीं करते हैं, फिर भी वो लोग लक्ष्मीवान होते हैं, पैसा वाले। यहाँ लक्ष्मी का पूजा करने से भी पैसा नहीं मिलता। इसका अर्थ है, कराग्रे वसते लक्ष्मी का अर्थ ये है, हाथों से कर्म करो, मेहनत करो, तब लक्ष्मी का प्राप्ति होती है। अगर लक्ष्मी का प्राप्ति हो, पितरों के लिए भी कुछ श्रद्धांजलि, तिलांजलि, तर्पण इत्यादि करते रहने से लक्ष्मी प्रसन्न होती है। मुख्य नारायण का प्रसन्न करो, तब लक्ष्मी प्रसन्न हो ही जाती है।
0: चाहे सुख की कामना हो या धन वैभव की लालसा, माँ लक्ष्मी की कृपा के बिना संसार में कुछ भी संभव नहीं। ज्योतिष के जानकार कहते हैं कि पितृपक्ष में माँ लक्ष्मी को खास प्रयोगों से प्रसन्न किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि ये प्रयोग वही लोग कर सकते हैं जो श्राद्ध क्रम में शामिल नहीं है या फिर जिन पर श्राद्ध और तर्पण की बंदिश नहीं है। तो चलिए अब आपको बताते हैं धन की बचत का प्रयोग। धन की बचत का प्रयोग माँ लक्ष्मी के उस स्वरूप की स्थापना करें जिससे उनके पास अनाज की ढेरी हो। चावल की ढेरी पर भी लक्ष्मी जी का स्वरूप स्थापित कर सकते हैं। लक्ष्मी जी के समक्ष घी का दीपक जलाएं, उनको चांदी का सिक्का अर्पित करें। पूजा के उपरांत उसी चांदी के सिक्के को अपने धन स्थान पर रख दें, इससे धन की बचत होगी। ये प्रयोग बेहद कारगर है। पितृपक्ष के दिनों में इन्हें आजमाने से धन से जुड़ी मनोकामना शीघ्र पूरी होती है। तो अगर आप कारोबार में धन की प्राप्ति चाहते हैं, तो गौर से देखिए महाप्रयोग, खास आपके लिए। कारोबार में होगी धन की प्राप्ति। लक्ष्मी जी के उस स्वरूप की स्थापना करें जिसमें दोनों तरफ उनके साथ हाथी हो। लक्ष्मी जी के समक्ष घी के 3 दीपक जलाएं। माँ लक्ष्मी को एक गुलाब का फूल अर्पित करें। पूजा के उपरांत उसी गुलाब को अपने धन वाली जगह पर रख दें। रोज इस गुलाब को बदल दें। ऐसा मानते हैं कि पितरों का आशीर्वाद सूक्ष्म लोक से परिवारजनों को मिलता रहता है। हर साल पितृपक्ष में पितर अपनी संतानों के बीच ही आकर रहते हैं, और जब संतानें उन्हें जल अर्पित करती हैं, उनका श्राद्ध करती हैं, तो प्रसन्न होकर पितृ उन्हें सुख समृद्धि और कष्टों से मुक्ति का आशीर्वाद देते हैं।
1: धन का उपाय से देव पितृकार्याभ्याम न प्रमदितव्यम। देव कार्य पितृकार्य कदापि त्याग नहीं करना, देवता कार्य पितृकार्य करते रहना, धन का आगमन होगा। उसी में कहा गया, आयु प्रजाम धनम विद्याम स्वर्गम मोक्षम सुखानि च प्रयच्छन्तु तथा राज्यम पितरश्च पितामहः। पितर पितामह दादा इत्यादि लोग नर्तन होकर आपको आयु आरोग्य धन मनोकामना इत्यादि सौख्य इत्यादि संतति वृद्धि करते हैं। इसलिए पितरों का कार्य करने से धन का वृद्धि होती है।
0: जहाँ विश्वास होता है वहीं आस्था होती है। तो देर ना कीजिए, पितृपक्ष के इन दिनों में आजमा लीजिए ये महाप्रयोग, क्योंकि अगर माँ लक्ष्मी की कृपा मिल गई तो आपके जीवन में सुख संपन्नता और खुशियों की चमक हर ओर बिखर जाएगी।
3: हम आपको पितृपक्ष में लक्ष्मी उपासना की विधि और महत्व बता रहे हैं। पितृपक्ष में माँ लक्ष्मी की उपासना से नौकरी में तरक्की और उन्नति का भी वरदान मिल सकता है। कैसे, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में।

0: धन की देवी है माँ लक्ष्मी। वैभव की कारक है माँ लक्ष्मी। धन है तो जीवन में है खुशियां। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि कभी धन की कमी ना आने पाए। जीवन में खुशियां तभी हैं जब धन वैभव की कमी ना हो, परिवार में सुख शांति हो, और ये तभी संभव है जब माँ लक्ष्मी आप पर मेहरबान हो। माँ की कृपा पाने के लिए उन्हें प्रसन्न करना बेहद जरूरी है। धन तो तभी मिलता है जब देवी लक्ष्मी की कृपा होती है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो पितृपक्ष के इन दिनों में कुछ सरल उपायों से जीवन भर पाई जा सकती है माँ लक्ष्मी की कृपा। बस छोटे छोटे बदलाव आपको हमेशा के लिए वैभवशाली बना सकते हैं।
1: सूर्य नारायण से प्रार्थना करें कि सभी पितृ पूर्वज लोग उनकी मोक्ष प्राप्ति हो और हमें आयु आरोग्य ऐश्वर्य आशीर्वाद मिलता रहे। घर में जिनके पितृ पूर्वज नहीं हैं उनके लिए ये 15 दिन नित्य आप तिलोदक तर्पण करें अथवा उन पितरों के नाम से दक्षिण दिशा में जल दें, गौग्रास पंचबली इत्यादि निकाला करें। अपने घर में पितृनिमित्तिक होम इत्यादि को रखें, नित्य गोइठे को जला करके कुछ होम इत्यादि को करें, तिल का हवन करें तिल और घी मिला करके। देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्यैव च नमस्वधायै स्वाहायै नित्यमेव नमो नमः। इस मंत्र का निरंतर जप करते हुए इस मंत्र से ही आहुति भी देवे।
0: अगर आप नौकरी में तरक्की और धन की बढ़ोतरी चाहते हैं तो देखिए महाउपयोग। नौकरी में होगी धन की बढ़ोतरी। गणेश जी के साथ लक्ष्मी जी की स्थापना करें। गणेश जी को पीले और लक्ष्मी जी को गुलाबी फूल चढ़ाएं। लक्ष्मी जी को अष्टगंध चरणों में अर्पित करें। नित्य प्रातः स्नान के बाद उसी अष्टगंध का तिलक लगाएं। इससे आपको नौकरी में तरक्की और धन की बढ़ोतरी का वरदान मिलेगा। तो अब आपकी जैसी कामना हो, धन से जुड़ी आपकी जो भी समस्या हो, उसे दूर करने के लिए कीजिए ये महा उपाय। माँ लक्ष्मी जी की कृपा से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी।
2: तो आप भी अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने का विधान कीजिए। आप पर भी बरसेगी पितरों की असीम कृपा। तो आज के शो में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं।
7: तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज़ टुडे पर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: गुजरात के जूनागढ़ का ऐतिहासिक ऊपरकोट किला इन दिनों चर्चा में है। यहाँ एक भव्य लाइट एंड साउंड शो का आगाज हुआ है जिसने पर्यटकों का दिल जीत लिया है। राजपूतों से लेकर मुगलों और नवाबों के दौर और फिर जूनागढ़ की आजादी के लिए लड़ी गई जंग तक इस गौरवशाली इतिहास को पर्यटकों के लिए किले की दीवारों पर लाइट एंड साउंड शो के जरिए उतारा जा रहा है।

0: अंधेरे में जगमगाता ऐतिहासिक ऊपरकोट किला, किले की दीवारों पर पड़ती रंग बिरंगी रोशनी, ये गाथा है जूनागढ़ की आजादी के लिए लड़ी गई उस ऐतिहासिक लड़ाई की, जिसमें संघर्ष था, संकल्प था और अपनी धरती को आजाद कराने का जुनून था।
1: धन्य हो गया, आज मेरा मस्तक दान में मांग कर तुमने मुझे इतिहास में नाम अमर करने का अवसर दे दिया।
0: ये कहानी है उस दौर की जब जूनागढ़ के इतिहास ने करवट ली, जब रियासत के भविष्य को लेकर उठे सवालों के बीच एक अस्थायी सरकार का गठन हुआ और जूनागढ़ को भारत में शामिल कराने के लिए एक निर्णायक संघर्ष शुरू हुआ।
1: अफरातफरी मच गई। उस दौरान उनकी रानियों में से एक सोमदे रानी अपने पुत्र को जन्म देती है और पुत्र दासी को सौंप कर कहती है,
2: बाल बाल जाओ बोली दर गाँव में जाकर मेरे धर्म भाई देवा एक बोलर को कहना कि मेरे नौगुण को बड़ा करके जूनागढ़ की गद्दी पर बिठा के धर्म का पालन करें।
0: 1472 से शुरू होकर 9 नवंबर 1947 को जूनागढ़ की आजादी तक का ये सफर अब ऊपरकोट जिले की दीवारों पर रोशनी और आवाज के जरिए जीवंत हो रहा है।
1: फिर 12वीं बार जूनागढ़ पर चढ़ाई कर 12 बरस तक किले की घेराबंदी की थी, फिर भी ऊपरकोट का किला अड़िग रहा था।
3: जूनागढ़ का इतिहास 2500 साल पुराना है। 2500 साल पुराना इतिहास को 20 मिनट में दिखाना बहुत मुश्किल बात है, फिर भी इस लाइट एंड साउंड शो में ये सभी बातें दिखाई गई है, तो पूरे दुनिया के जो लोग हैं और टूरिस्ट है, विद्यार्थी है, वो जो लोग ऊपरकोट के

0: अच्छी बात यह है कि करीब 4 साल की मेहनत लगी है इसकी स्टोरी लाइन डेवलप करने में, लेकिन जो सबका अभिप्राय आया है वो ऑलमोस्ट परफेक्ट के आसपास आया है। पूरा जूनागढ़ का इसमें इतिहास कवर हुआ है, राज नवगण के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, अशोका के बारे में, किले पर जब 12 साल तक घेराबंदी रही थी उसमें युद्ध का क्या परिणाम आया था, पूरा सब कुछ कवर किया गया है। और ये इतना ही इन्वॉल्विंग था कि एक एक सेकंड तक सभी लोग दर्शक उसमें इन्वॉल्व रहे थे, तो ये बहुत अच्छा अभिप्राय हमको मिला हुआ है।
1: इस लाइट एंड साउंड शो का मकसद है जूनागढ़ में आने वाले पर्यटकों के लिए रोमांच को बढ़ाना। यानी यहाँ सिर्फ किले की दीवारों को, प्राचीन संरचनाओं को देखकर पर्यटक वापस न लौटे, बल्कि इन दीवारों के पीछे छिपी कहानी को भी महसूस करें। लाइट एंड साउंड शो के प्रमोशन कार्यक्रम में करीब 200 लोगों ने हिस्सा लिया, जिसे देखने के बाद दर्शकों ने इसे सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि जूनागढ़ के इतिहास को करीब से महसूस करने वाला अनुभव बताया। कभी जर्जर स्थिति में पहुंच चुका ऊपरकोट किला आज अपने पुराने गौरव को फिर से हासिल कर रहा है। सवाणी हेरिटेज कंपनी की ओर से किले का रिनोवेशन और रेस्टोरेशन किया गया है। 28 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इसे पर्यटकों के लिए दोबारा खोला था। अब किले के 3 साल पूरे होने के मौके पर पूरे साल करीब 40 अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भार्गवी जोशी के साथ जूनागढ़ कुंजुड़े।
2: तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो आपको हंसाएंगे, कुछ गुदगुदाएंगे और कुछ आपको भावुक कर जाएंगे।
3: स्टेज पर सजी धजी खड़ी इन नन्ही बच्चियों ने अपनी मासूमियत से हर किसी का दिल जीत लिया। भरतनाट्यम की प्रस्तुति के लिए पारंपरिक पोशाक में तैयार बच्चों के चेहरे की क्यूटनेस और उनकी प्यारी अदाएं देखते ही बन रही हैं। इशारों से भाव जताती ये बच्चियां बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं। उनकी मासूमियत और नटखट अंदाज ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सोशल मीडिया पर बच्चियों की ये प्यारी तस्वीरें और वीडियो खूब पसंद किए जा रहे हैं। प्यास किसे नहीं लगती, इंसान हो या जानवर, पानी हर किसी की जरूरत है। लेकिन इस हाथी का पानी पीने का अंदाज कुछ अलग ही है। पहले हाथी अपनी सूंड में पानी भरता है और फिर बड़े आराम से उसी पानी को अपने मुंह में डालकर पीता है। पानी पीने का यह अनोखा तरीका देखकर हर कोई हैरान है। हाथी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और लोग इसे देखकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं। उम्र छोटी है लेकिन जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। कंधे पर ईंटों का बोझ उठाए ये बच्चा मेहनत करता नजर आ रहा है। बचपन खेलने और मुस्कुराने की उम्र होती है, लेकिन हालात जब जिम्मेदारियां बढ़ा दें तो छोटी उम्र में ही बड़े काम करने पड़ते हैं। बच्चे के कंधे पर रखा ईंटों का बोझ उसकी मेहनत और जिम्मेदारी दोनों की कहानी बयां कर रहा है। सोशल मीडिया पर बच्चे का ये वीडियो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है।

0: अरुणाचल प्रदेश के वानु गांव की तीन छोटी बहनें अपनी सुरीली आवाज से इंटरनेट पर छा गई हैं। बिना किसी फैंसी सेटअप और बिना किसी फिल्टर के तीनों बहनों ने अपनी मासूम मुस्कान और खूबसूरत आवाज से लोगों का दिल जीत लिया। साथ में गाती इन बच्चियों का अंदाज बेहद प्यारा है, उनकी आवाज में मासूमियत भी है और हुनर भी। सोशल मीडिया पर बच्चियों का ये वीडियो खूब पसंद किया जा रहा है और लोग उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। खुश रहने के लिए दौलत नहीं, बस जज्बा चाहिए। इस महिला को देखकर जिंदगी का यही सबक मिलता है। सिर पर ईंटों का बोझ है, लेकिन चेहरे पर मुस्कान बरकरार है। इतना ही नहीं, ईंटों का वजन सिर पर संभालते हुए महिला शानदार तरीके से डांस भी करती नजर आ रही है। मुश्किल हालात के बीच उसका ये अंदाज हर किसी का ध्यान खींच रहा है। सोशल मीडिया पर महिला के हुनर और उसके गजब के बैलेंस की खूब तारीफ हो रही है।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव

0: अनुभव मुझ में ही है।
1: और दुर्भाग्य कहता है
0: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
2: अविश्वास में विश्वास बसता है।
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
0: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है।
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है
5: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
0: एशियन गेम्स में भारत की चमक बरकरार। 87 किलोग्राम ग्रीको रोमन रेसलिंग इवेंट में सुनील कुमार ने जीता ब्रॉन्ज। आज तीरंदाजी में 3 और शूटिंग में आया 1 गोल्ड। भारत के खाते में 10 गोल्ड मेडल। एशियन गेम्स गोल्ड मेडल जीतने वाले कबड्डी स्टार सुमित सांगवान का भव्य स्वागत। करेंसी नोट और फूल मालाओं से हुआ वेलकम। जोधपुर में तरंग शक्ति युद्धाभ्यास में F-16 और रफाल समेत 8 विमानों का शक्ति प्रदर्शन। 8 देशों के विमानों का शक्ति प्रदर्शन। 12 अक्टूबर तक चलेगा युद्धाभ्यास। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ के बाद मिशन जिंदगी तेज। कुशीनगर में एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें अलर्ट, राहत बचाव के काम तेज। कोलकाता में शक्ति उपासना की तैयारियां तेज। मां दुर्गा की प्रतिमा को अंतिम रूप दे रहे हैं कार्यकर्ता।

0: अपेरेंटली 2 लाख फॉलोअर्स के बाद ना लड़की शादी मटेरियल नहीं रखती। अरे आपकी बिटिया तो बड़ी फेमस है, हमारे साथ एडजस्ट करने में इसे प्रॉब्लम हो जाएगी।
1: लोकप्रियता की दीवार, आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। बात सोशल मीडिया स्टेटस और शादी की। एक वीडियो इंस्टाग्राम पर बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है और इस वीडियो के जरिए ये बताया गया है कि सोशल मीडिया पर सेलिब्रिटी जैसा बनने से शादी के लिए रिश्ते बनने में अड़चन आती है। लड़के पक्ष के लोगों की सोच, उनका नजरिया अलग हो जाता है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ है, कहां का है मामला, ये आपको बताएंगे इस बुलेटिन में और चर्चा भी करेंगे इसी को लेकर।

0: तो आज का मुद्दा सोशल मीडिया और शादी से जुड़ा हुआ है। दरअसल मामला हरियाणा का है। हरियाणा की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का ये वीडियो है जो खूब चर्चा में है, और ये वीडियो सर्जन डॉक्टर जैस्मीन कलसी ने खुद बनाया है। जैस्मीन का दावा है कि सोशल मीडिया की वजह से उनके रिश्तों में अड़चन आ रही है। इंस्टाग्राम पर जैस्मीन के 2 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। डॉक्टर जैस्मीन के मुताबिक इंस्टा के बारे में पता लगने पर लड़के वाले रिजेक्ट कर देते हैं, परिवार से रिश्ते वाले बोलते हैं कि आपकी बेटी तो बहुत फेमस है। डॉक्टर जैस्मीन ने यह भी बताया कि लड़के वाले यहां तक कह देते हैं कि हमारे यहां एडजस्ट नहीं कर पाएगी। जैस्मीन वैसे पेशे से सर्जन है और कंटेंट क्रिएटर भी हैं। ऐसे में अब उनके वीडियो सामने आने के बाद अब बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर जेंडर एक्सपेक्टेशन क्यों होती है, क्या शादी के लिए सोशल मीडिया पर लोकप्रियता भी मायने रखती है, और जेंडर के आधार पर ही क्यों धारणा बनाई जाती है। ये बहुत सारे सवाल हैं जिनको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। पुरुष कमाऊ महिला देखभाल वाली सोच क्यों है, क्या अब समाज की सोच बदलने का वक्त आ गया है, और क्या अब महिलाओं की सोच बदल रही है, इसी पर आज हम आगे चर्चा करेंगे। तो सोशल मीडिया स्टेटस और शादी की आज चर्चा होगी। एक वीडियो जो कि इंस्टाग्राम पर सुर्खियां बटोर रहा है, और इस वीडियो को अब तक लाखों लोग देख चुके हैं। इसे 11,000 से ज्यादा लोगों ने लाइक भी किया है, 2,000 से ज्यादा लोगों ने कमेंट किया है। वीडियो में जैस्मीन ने यह कहा है कि सोशल मीडिया पर सेलिब्रिटी जैसा बनने से शादी के लिए रिश्ते बनने में अड़चन आ रही है।
1: 2 लाख फॉलोअर्स के बाद ना लड़की शादी मटेरियल नहीं रहती है, और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि रिसेंटली मेरे घर वाले मेरे लिए मैचेस देख रहे हैं। फैमिली को फैमिली पसंद आती है, प्रोफाइल पसंद आती है, बातचीत पसंद आती है, सब कुछ अरेंज्ड मैरिज के सिलेबस के अकॉर्डिंग चलता है, और फिर सामने से मेरी फोटो के लिए डिमांड आती है। तो मेरे पेरेंट्स बोलते हैं कि आप इंस्टाग्राम पर एक बार डॉक्टर जैस्मीन कलसी नाम से सर्च कर लो और देख लो लड़की को। एंड सडनली सामने से रिस्पॉन्स पता क्या आता है, अरे आपकी बिटिया तो बड़ी फेमस है, हमारे साथ एडजस्ट करने में इसे प्रॉब्लम हो जाएगी। गाइज मुझे एक जेन्युइन क्वेश्चन पूछना है, मैं इंस्टाग्राम पे क्या डालती हूँ? मेडिकल एजुकेशन और पेशेंट अवेयरनेस। लेकिन अपेरेंटली ना बन पाए लड़के वालों के लिए ये ओनली फैंस का पेज है, बट विद इंडियन मेडिकल वर्जन। प्रभु इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखी आपने, इंसान नहीं, और मैं सेलिब्रिटी नहीं हूँ, मैं बस एक डॉक्टर हूँ जिसकी कुछ रील्स थोड़े लोग देख लेते हैं। और सबसे हिलारियस अजम्पशन पता है मुझे क्या लगती है, यार ये तो अपनी रीच से बाहर की लड़की है, रीच मेरी इंस्टाग्राम की है, औकात की नहीं। 2 लाख लोग मुझे फॉलो करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि 2 लाख लोग मेरी पर्सनैलिटी कमेटी में बैठे हुए हैं, उसमें तो खैर सिर्फ 36,000 ही हैं पर्सनैलिटीज मेरी। बट एनीवे, रियल लाइफ में मैं अब भी वही घर पे मम्मी के सामने, हाँ जी मम्मा अभी आई अभी करती हूँ बोलने वाली। फॉलोअर्स ने बस एक चीज चेंज की है, मेरी विजिबिलिटी। और ऑनेस्टली अगर किसी लड़की को सक्सेसफुल इंडिपेंडेंट विजिबल लड़की देख के एक इनसिक्योरिटी हो जाती है ना, तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि लड़की बहुत फेमस है, प्रॉब्लम ये है कि लड़के का ईगो बहुत फ्रेजाइल है, क्योंकि तुम्हें ऐसा पार्टनर चाहिए जिसके सामने तुम खुद को बहुत बड़ा समझ सको और उस लड़की को दबा के रख सको। बस घूंघट या बुरके की कमी है, या एक काम करो ना, औरत को घर में बंद करके रखो, ना किसी को दिखेगी ना तुमसे आगे निकलेगी। मॉरल ऑफ द स्टोरी बस इतनी सी है कि अगर 2 लाख फॉलोअर्स तुम्हें 2 लाख प्रॉब्लम्स लग रहे हैं ना, तो कांग्रेचुलेशंस।
0: बस यही वीडियो है जिसको लेकर अब चर्चा हर जगह पर हो रही है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करा देती हूँ। शालू चावला डायरेक्टर हैं, मेक माय लगन से मैट्रिमोनियल एक्सपर्ट भी हैं, साथ ही साथ मनीषा सिंगल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, मीनल पाठक सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ मौजूद है, और कुछ ही देर में हमारे साथ दीप्ति रंजन साहू भी जुड़ेंगे जो कि प्रेजिडेंट हैं इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के। शालू जी पहले आप ही के पास आना चाहूंगी, बहुत सारे रिश्ते आप बनाती भी हैं, इस वीडियो को देखकर पहला रिएक्शन क्या लगता है मामला?
2: एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि लेडीज का सक्सेसफुल होना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है पेरेंट्स का अजम्पशन करना। हम लोग क्या करते हैं सोशल मीडिया पर देखकर कि गर्ल के इतने फॉलोअर हैं, जैसे उसने कहा दिस इज एब्सोल्युटली राइट, आज की डेट में हर किसी को कोई भी हाउसवाइफ गर्ल नहीं चाहिए, एवरीवन इज लुकिंग फॉर इंडिपेंडेंट गर्ल कि उसको जो उनको समझे उनको देखे, बट जहां पर होता है वो अपनी अजम्पशन कर लेते हैं कि एटमोसफेयर में एडजस्ट नहीं हो पाएगी। तो फैमिलीज को अपनी सोच चेंज करने की नीड है।
0: शालू जी मैं लौटती हूँ आपके पास, मीनल क्या लगता है इस पूरे मामले को देखने के बाद, क्या आप जो सोशल मीडिया प्रोफाइल है वही एक नया बायोडाटा बन गया है?
3: सोशल मीडिया प्रोफाइल है वो आपका पब्लिक प्रोफाइल है, ऑब्वियसली लोग उसको देखते हैं और आपको जज भी करते हैं बहुत बार, लुकिंग एट योर प्रोफाइल, दैट आप प्रोफाइल पे क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं, आप प्रोफाइल पे क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं, उन एक्टिविटीज को देखकर आपको जज भी करते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर तो ये डॉक्टर है और इनके प्रोफाइल पे सिर्फ डॉक्टर से रिलेटेड और यू नो बहुत ही बेसिक और बहुत ही नॉलेजेबल चीजें हैं। सो आई एम रियली सरप्राइज्ड कि ऐसे सिंपल बेसिक एक प्रोफाइल को देखकर भी अगर लोग जज कर रहे हैं और ऐसा यू नो आई जस्ट फील कि इट्स अ केस ऑफ इंटिमिडेशन। लाइक कोई नॉर्मल एक डॉक्टर से यू नो शादी करने से इसलिए झिझक है कि अरे उनके तो प्रोफाइल पे बहुत सारे यू नो फॉलोअर्स हैं और ये बहुत अच्छा बोलती हैं और इनका ये इनको बहुत ज्यादा अच्छी नॉलेज है, तो वो आई बिलीव द अदर पर्सन इज जस्ट गेटिंग इंटिमिडेटेड आउट ऑफ नथिंग। शी इज एब्सोल्युटली ग्रेट एट हर वर्क, का कॉन्टेंट बहुत अच्छा है, शी टॉक्स वेरी वेल, उन्होंने बहुत अच्छी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन की है, which I think अगर मैं लड़का होती तो I would have been someone who would say कि हाँ यार this girl is very good, she is very good with her work।
0: नहीं नहीं, लेकिन लेकिन चले ठीक है, वो सारी बातें ठीक है, वो खुद एक सर्जन है, हम वो एक डॉक्टर भी हैं और बहुत अच्छी पढ़ाई करके मेहनत करके यहाँ तक पहुंची हैं, एक अच्छी कंटेंट क्रिएटर भी हैं, लेकिन क्या एक बार शालू जी मेरी आवाज आप तक आ रही, क्योंकि आपका जवाब अधूरा रह गया, बहुत इंपॉर्टेंट है।
2: yes.
0: क्योंकि आप रिश्ते जोड़ती हैं, बनाती हैं, बहुत सारे बायोडाटर्स आपके पास आते भी होंगे, बहुत सारे लड़के वाले लड़की वाले आपको अप्रोच करते होंगे, मैं आपसे ये बात समझना चाहूंगी कि जो बायोडाटा होता है क्या उसके साथ साथ सोशल मीडिया बायोडाटा भी आजकल देखा जा रहा है, क्या वो इतना इंपॉर्टेंट हो गया है, क्या सोच रहती है ये समझाइए जरा हमारे दर्शकों।
2: सोशल मीडिया बायोडाटा उतना ही इंपॉर्टेंट हो गया है, लोगों को लगता है कि हम उससे उसको जज कर लेंगे,
0: क्या वाकई लोग पूछ रहे हैं आजकल? नहीं, मैं वापस से आपसे सवाल कर रही हूँ, देखिए मैं फिर से सवाल कर रही हूँ, कोई लड़का किसी लड़की को देखने जा रहा है तो क्या उसका सोशल मीडिया खंगालता है, या लड़की लड़के को देखने जा रही है क्या उसका सोशल मीडिया खंगाला जाता है, क्या वो इतना इंपॉर्टेंट हो गया है पेरेंट्स के लिए भी, क्या इतना इंपॉर्टेंट है, परिवार से ज्यादा ये चीजें इंपॉर्टेंट हो गई है?
2: That's why divorces are happening, because लोग जो है commercial चीजों पे जा रहे हैं, people are judging them through their social medias only. तभी तो हमारे इंडिया में इतने डिवोर्स रेटो जो रेशो है वो इतना बढ़ गया है, बिकॉज पीपल आर लुकिंग ऑन देयर सोशल मीडिया प्रोफाइल। इवन जिन बच्चों का सोशल मीडिया प्रोफाइल नहीं है, कई बार उसके ऊपर ऑब्जेक्शन भी आने लग जाता है कि इसका तो इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल ही नहीं है, ये तो एक्टिव ही नहीं है, तो शायद ये डम होगी, या इसने अपना प्रोफाइल क्यों हाइड किया हुआ है, समटाइम्स हमारे पास ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं।
0: यानी आपके पास अब परिवार की डिटेल्स के साथ साथ सोशल मीडिया डिटेल्स भी मांगी जाती है, मतलब कि मैट्रिमोनियल साइट्स पे ये भी चीजें मेंशन होती हैं और पूछा yes, जाता है।
2: यस यस, लोग हमें आकर बोलते हैं कि उनका सोशल मीडिया अकाउंट कौन सा है, आप हमें उसका लिंक दे दीजिए, वी वांट टू लुक एट देयर पिक्चर्स, वो लोग किसको फॉलो कर रहे हैं। आई जस्ट वांट टू शेयर एन एग्जांपल, इफ यू कैन लिसन।
0: नहीं नहीं, बिल्कुल मैं चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम में अगला सवाल मेरा यही था कि अगर ऐसा कोई केस है तो प्लीज यहाँ पर बताइए।
2: अभी एक हमने एक दो बच्चों की बातचीत चल रही थी, दोनों बच्चों की बातचीत बहुत अच्छी चल रही थी, और मतलब दे वर लाइक ऑन द वर्जन ऑफ से यस टू ईच अदर, और एक दिन सुबह हमारे पास किसी बॉय का कॉल आता है, किसी गर्ल का फोन आता है, एंड शी सेड कि दीदी आप ना बॉय को मना कर दो, एंड वी सेड कि क्या हुआ ऐसा कि आप चाहते हो कि बॉय को मना कर दो या कुछ, लोग उसने बोला नो मैं कोई रीजन बताना नहीं चाहती, बस आप मना कर दो। हमने बार बार पूछा, उसने रीजन नहीं बताया, तो हमने मना कर दिया। आफ्टर वन मंथ दैट गर्ल केम टू आवर ऑफिस, वी वर जस्ट डिस्कसिंग, तो मैंने कहा उस केस में ऐसा क्या हुआ था, आई जस्ट वॉन्ट टू अंडरस्टैंड ऑन माई बिहाफ माई नॉलेज कि ऐसा क्या हुआ जो तुमने रातों रात मना कर दिया। तो उस गर्ल ने मुझे रीजन क्या दिया कि बॉय ने रात को इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट को शेयर किया था और उसने पोस्ट को लाइक किया था, और उसमें कुछ वुमेन्स के खिलाफ या कुछ ऐसा लिखा हुआ था कि वुमेन्स आर लाइक डॉग्स, डॉग्स को वुमेन्स के साथ कंपेयर किया गया था, तो उस बॉय की सोच बहुत खराब है, तो मुझे इसलिए उससे शादी नहीं करनी। एंड आई डोंट लाइक कि मतलब
0: आज का मुद्दा ना शालू जी, वाकई आपने और इंटरेस्टिंग बना दिया है इस स्टोरी को शेयर करते हुए। ऐसे मेरे ख्याल से बहुत सारे केसेस होंगे जो आगे हमें बताइएगा। चलिए, दीप्ति रंजन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीप्ति रंजन जी, एक और जिम्मेदारी अब आप पर, समाज को समझना अब इतना आसान नहीं रह गया है। हम जिसकी चर्चा करते हैं ना कि AI वर्ल्ड है, सोशल मीडिया की दुनिया है, भाई रिश्ते तो ऊपर वाला बना के भेजता है, या फिर जब रिश्ते बनते हैं तो हम परिवारों को देखते हैं, अब परिवार पीछे हैं, अब सोशल मीडिया पहले देखे जाते हैं।
4: जो बदलते हुए परिदृश्य जो है समाज का, उसमें जो कालखंड में देखते हैं जहां पे बाजार और सोशल मीडिया और जो लाइफस्टाइल चॉइसेस में बदलाव आ रहा है, उसमें काफी बदलता हुआ स्वरूप तो है, लेकिन साथ साथ हमारे भारतीय समाज में जो एक स्थिति है उसमें एक चीज ये भी दिखा जा रहा है कि जो पितृसत्तात्मक सोच है, क्योंकि उससे भी जो पब्लिक स्फीयर है, सार्वजनिक क्षेत्र है, और जो प्राइवेट स्फीयर है वो भी काफी प्रभावित होता है। तो उसी आधार पे यदि आप देखेंगे कि फैमिली मैरिज ये सारे जो संस्थाएं हैं, उस संस्थाओं में बदलाव तो है, बहुत सारे टेक्नोलॉजी मदद भी कर रहा है और टेक्नोलॉजी बहुत परेशान भी कर रहा है। तो सोशल मीडिया के माध्यम से जो एक सेलिब्रिटी स्टेटस है और एक जो एक डॉक्टर एक एस्टैब्लिश्ड प्रोफेशन के रूप में है, और उसके बाद व्यवहारिक रूप में वो देखते हैं, वो सही है, लेकिन उनका जो सोशल सर्कल या जो जिसको कह सकते हैं विजिबिलिटी है, वो परेशानी करता है। तो इसमें एक कहीं ना कहीं वो एक वही अगेन स्टीरियोटाइप्स और माइंडसेट में चला जाता है, क्योंकि हम सब समाज में है, कोई मंगल ग्रह से तो पैदा नहीं हुई। तो समाज में मंगल ग्रह से पैदा नहीं होने से क्या होता है कि जो सोच पले बढ़े, हम लोग जब भी आए हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं, जानकार लोग भी हैं, जागरूक लोग भी हैं, उसके बावजूद भी उस सोच से कभी भी बिल्कुल
0: जी। जल्दी से एक सवाल फिर, हमारे साथ इस वक्त मनीषा जी भी मौजूद हैं, साइकोलॉजिस्ट, उनके पास जाऊंगी। दीप्ति रंजन जी, देखिए अभी एक एग्जाम्पल शालू जी ने यहाँ पर रखा। शालू जी हमारे साथ हैं और ये शादियां करवाती, मेक माई लगन से जुड़ी हुई हैं और मैट्रिमोनियल साइट है इनकी। सोशल मीडिया पर एक शख्स की सोच क्या है किसी महिला को लेकर, जब वो रिश्ता होने जा रहा था, लड़की ने देख लिया, उसको ये लगा कि भाई इसने किसी को लाइक किया है, इसका मतलब इसकी सोच ऐसी हो सकती है और मैं इसके साथ शादी नहीं कर सकती। देखिए ये चीजें अगर बाद में पता चले तो बुरा होता है, क्योंकि शादियां टूटती हैं। अब ये चीज पहले पता चल रही है, एक तरीके से देखा जाए तो ये अच्छी बात भी है, लेकिन दूसरी बात अगर देखी जाए, हम लड़का परिवार, लड़का या लड़की दोनों किसी की भी बात कर सकते हैं, परिवार को ना देखकर हम सोशल मीडिया से जज कर लेते हैं कि वो कैसा होगा या फिर उसका बैकग्राउंड कैसा होगा, उसकी सोच कैसी होगी। इसमें दोनों की बात हो रही, लड़के की भी लड़की की भी।
4: मनीषा जी से पूछ रहे हैं?
0: नहीं नहीं, मैं दीप्ति रंजन जी आपसे एक रिएक्शन, फिर मनीषा जी के पास जाऊंगी।
4: मैं ये कह रहा हूं कि ये सोच, व्यक्तिगत सोच अलग है और एक पारिवारिक सोच और उसकी जो उनके परिवार के लोग उनकी सोच अलग है। तो इसलिए पीढ़ी जो है, जनरेशन गैप को भी आप उसको कॉन्टेक्स्ट में लाना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोगों को विजिबिलिटी बहुत पसंद है, सेलिब्रिटी स्टेटस बहुत पसंद है, उनकी इकोनॉमिक स्टेटस बहुत पसंद है, बट कहीं ना कहीं फैमिली के जो और लोग हैं, पैरेंटल अप्रूवल है और बहुत सारे ऐसी कम्युनिटी के अप्रूवल है, उसमें आप देखेंगे जैसे कि फॉर एग्जांपल आज की तारीख में जो सारे मैट्रिमोनियल साइट्स है, उसमें भी हम लोगों ने बहुत सारे स्टडीज को देखा कि वहां पे जाति और क्षेत्र और बहुत सारे चीज को काफी बढ़ावा दी जा रही है।
0: नहीं, नहीं, ये तो रहता ही है, जाहिर सी बात है, कास्ट वाला फैक्टर तो उसमें रहता है, लेकिन सोशल मीडिया फैक्टर इतना हावी हो गया है। मनीषा जी एक बार आपके पास आना चाहूंगी, आप क्या सोचते हैं इसको लेकर?
5: आपकी डिबेट आज बहुत अच्छी है और इसमें मैं सबसे पहले पॉइंट आउट करना चाहूंगी, वर्चुअल वर्ल्ड वर्सेस रियल वर्ल्ड। तो हमारी जो हम जिस सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं कि क्यों सोशल मीडिया को इतनी ज्यादा तवज्जो दी जा रही है और सोशल मीडिया अकाउंट्स चेक किए जाते हैं शादियों के लिए, क्योंकि शादी एक बहुत ही सीरियस एक रिलेशनशिप है, सीरियस अफेयर है। तो अगर कोई भी कमिटेड रिलेशनशिप में आता है तो वो उस इंसान के बारे में, स्पेशली अरेंज मैरिजेस का केस अगर हम लेते हैं, तो उसमें उस इंसान के, चाहे वो लड़की है लड़का, दोनों के ही पास्ट के बारे में जानने के लिए उत्सुक होती है फैमिली भी, और लड़का और लड़की वो दोनों भी। अब क्योंकि आज के टाइम में हमारा 50% हर केस में नहीं, लेकिन मोस्टली जितने हम हमारे इर्द गिर्द हम लोग देखते हैं, तो उनका वर्चुअल दुनिया में वो लोग ज्यादा जी रहे हैं। अब वो जैसे अपने अकाउंट्स, इंस्टा अकाउंट हो गया, फेसबुक अकाउंट हो गया, और बहुत सारे इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, तो वहां पर उनका उनकी दुनिया क्या है, किससे वो कनेक्ट कर रहे हैं, कितने फॉलोअर्स हैं, किस तरह के फॉलोअर्स हैं, किन लोगों को वो फॉलो कर रहे हैं, तो ये सारी चीजों से कुछ एक जो बाहर रियल लाइफ के बाहर उनकी क्या उनकी सोच है. सो यहाँ एक और चीज, जैसे मैंने आपको बोला वर्चुअल वर्ल्ड वर्सेस रियल वर्ल्ड, सो सेम कॉन्शियस माइंड वर्सेस सबकॉन्शियस माइंड. सो कॉन्शियस वर्सेस सबकॉन्शियस, तो एक तो हुआ कॉन्शियसली इंसान क्या कर रहा है, दूसरा सबकॉन्शियस लेवल पे वो क्या सोच रहा है, वो क्या करना चाहता है. और वर्चुअल वर्ल्ड में वो सब चीजें, मैक्सिमम चीजें इंसान अचीव करना चाहता है, चाहे वो फॉल्स हीरोइज्म ही क्यों ना हो, या किसी भी तरह की जैसे आजकल सेल्फीज लोग शेयर कर देते हैं, अब ट्रिक फोटोग्राफी का यूज किया जाता है, एक्चुअल में वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो उस तरह की फोटोज अपनी खिंचवा के एआई का उपयोग करके वो उस तरह की फोटोज वो शेयर करते हैं जिससे बाकी दुनिया को लगे कि हाँ ये तो बहुत ब्रेव है, या अगर ऐसा भी ना लगे तो उनको लाइक्स मिल जाए, उनको कुछ अच्छे खूबसूरत कमेंट्स मिल जाए, तो
0: हाँ,
5: जिससे उनकी एक कहीं ना कहीं ईगो सेटिस्फाई होती है.
0: मैं इसी पर एक सेकंड मनीषा जी, मीनल मीनल आपके पास आना चाहूंगी. लाइक्स मिल जाएं, मेरे शेयर्स हो जाएं, मेरे फॉलोअर्स बढ़ जाएं, ये भी एक चीज है. दूसरी बात ये है कि किसी को उसके सोशल मीडिया से जज करना. देखो मीनल, ये बात हम सभी जानते हैं. अभी मनीषा जी ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि बहुत सारी तस्वीरें हम फेक डालते हैं, फेक इन द सेंस कि हम एआई जनरेटेड वीडियोज डाल देते हैं जिसमें हम बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, कोई किसी को पसंद भी वहां पर कर लेता है. लेकिन वर्चुअल वर्ल्ड और रियलिटी में बहुत फर्क है. ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया, इसमें बहुत सारी चीजें हैं. वर्चुअली सोशल मीडिया पर हम कितनी चीजें डाल रहे हैं वो कितनी रियल हैं, या हम सिर्फ इसलिए डाल रहे हैं कि मुझे ज्यादा लाइक्स मिल जाए, मेरे ज्यादा फॉलोअर्स हो जाए, क्या उससे किसी शख्स की शख्सियत का अंदाजा लगाया जा सकता है?
3: जी, जब आप किसी का शादी जैसे रिलेशन में आप आने वाले हैं ना, तो आप एक बैकग्राउंड चेक करवाते हैं. और अगर आप किसी का प्रोफाइल पब्लिक है, प्राइवेट नहीं है, वो ओपनली अब बहुत सारी चीजें शेयर कर रहा है, तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि लोग उस चीज से उसको जज करेंगे. लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि जो आपका पब्लिक प्रोफाइल है वो आपका वो फेस है जो आप लोगों को दिखाना चाहते हैं. लेकिन आप सिर्फ उस चीज से उस इंसान को जज नहीं कर सकते, बिकॉज देयर इज अनदर फेस ऑफ यू व्हिच यू डोंट वांट टू शो. जैसे अगर मेरा अपना जो फिटनेस का प्रोफाइल है उसमें अपने आपको सिर्फ एज अ फिटनेस एंथुसियास्ट दिखाती हूँ, मैं अपने फिटनेस के वीडियोस दिखाती हूँ और फिटनेस से रिलेटेड चीजें दिखाती हूँ. अब उससे बिल्कुल अलग मेरा एक फैमिली का प्रोफाइल है, मेरा एक फैमिली के साथ रिलेशन है जिसमें द वे आई टेक केयर ऑफ माई फैमिली, माई किड्स, माई एल्डरलीज इन द होम, वो बिल्कुल नहीं है. तो अगर आज किसी को यू नो आई एम जस्ट गिविंग यू यू नो जस्ट एग्जाम्पल, अगर आज मेरे जैसे प्रोफाइल से किसी को जज करना हुआ तो किसी को लगेगा ओ माय गॉड, ये फैमिली कैसे संभालेगी, बिकॉज शी इज सो आउट गोइंग. एंड यू नो फिटनेस में हम किस किस तरह के कपड़े डाल के वर्कआउट करते हैं, सो पीपल कैन जज मी ऑन दैट ऑल्सो. लेकिन अगर आप मेरा घर का प्रोफाइल देखें और मुझे देखें, मैं घर में किस तरह से रहती हूँ, आई एम वेरी होमली. और यू नो देर आर डेज वेन आई इट्स बीन लाइक कई बार हफ्ते भी होते हैं आई डोंट स्टेप आउट, आई गेट सो बिजी विद एवरीथिंग एट होम. सो ये बहुत गलत भी है और बहुत सही भी है. इन द सेंस गलत है कि आप पूरा पर्सपेक्टिव नहीं लेते, लेकिन अगर आप किसी का बैकग्राउंड चेक करोगे तो आप उनका लिंक्डइन प्रोफाइल, उनका फेसबुक प्रोफाइल, उनका इंस्टा प्रोफाइल, ये तो डेफिनेटली चेक करोगे.
0: शालू जी, तो आपका काम मुश्किल हुआ है कि आसान हुआ है? ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी चीज है. देखिए मनीषा जी ने बड़े अच्छे से इसको समझाया है और मीनल ने भी इसको बताया कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो वर्चुअल वर्ल्ड में होते हैं हम रियल वर्ल्ड में वैसे नहीं होते हैं. ये बहुत बार ऐसा होता है. एक टाइम था कि लोग आपके पास आते थे कि भाई इनका फैमिली बैकग्राउंड चेक करवा दीजिए, ये कहां से है. दीप्ति रंजन जी, आपके पास आऊंगी, इसी का जवाब आपको भी देना है. लेकिन आज की तारीख में सोशल मीडिया से कैसे आप जज कर लेंगे कि हम इनके साथ रिश्ता बना लेंगे, हम सारी उम्र इनके साथ रह लेंगे, क्या ये मेरे घर को देख पाएगी नहीं देख पाएगी, क्या ये लड़का इसकी सोच ऐसी है कि महिलाओं के बारे में हो सकता है वो ना सोचता हो, उसने ऐसे ही सोशल मीडिया पर लिख दिया हो.
2: यस, तो मैं इसके लिए कहना चाहूंगी सोशल मीडिया से बेनिफिट भी बहुत हुए हैं और नुकसान भी बहुत हो रहे हैं. कई बार सोशल मीडिया हमारे लिए बहुत यूजफुल भी होता है, बिकॉज सोशल मीडिया पे लोगों को बहुत इजीली कनेक्शन मिल जाता है. जब किसी को किसी की इंक्वायरी करनी होती है, जब वो सोशल मीडिया पे देखता है कि हमारे साथ कॉमन फ्रेंड सर्कल में है, कुछ भी है, तो वो उससे पूछकर उसके बारे में पता लगा लेते हैं, जिसके लिए लोगों को बहुत ईजी हो जाता है डिसीजन लेना. बट जहां पर ये जजमेंट शुरू होती है, दैट शुड नॉट बी देयर. बिकॉज आज के अगर मैं बात करूं, बिकॉज शादियां जो हैं बहुत ज्यादा डिवोर्सेज में कन्वर्ट हो रही है, बिकॉज जो रियल जो शादी जिसको देख के करनी चाहिए हम उसको नहीं देख रहे हैं. हम उसका सोशल प्रोफाइल देख रहे हैं, उसका फैमिली का कहाँ रहता है ये देख रहे हैं, वो कितना एक्टिव है ये देख रहे हैं, बट रियल उसकी वैल्यूज क्या है उसको भूलते जा रहे हैं. तो हमें मतलब आई वुड लाइक टू एडवाइस एवरी पीपल कि डोंट जज फ्रॉम देयर सोशल प्रोफाइल. उस पर्सन से मिलो, उसको जानो, उसकी सोच को समझो, तब कोई डिसीजन लेना चाहिए.
0: मनीषा जी, अच्छा दीप्ति रंजन जी, पहले इस पर आप ही का एक जवाब कि एक जमाना था कि परिवार का बैकग्राउंड पता लगाया जाता था और फिर उसके बाद रिश्ते बनते थे, और हम बार बार इस बात को कहते हैं हमारा समाज ऐसे बना, भारतीय समाज कम से कम ऐसे पाश्चात्य समाज की तरफ नहीं बढ़ा है. आज की तारीख में भी परिवार ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि शादियां परिवारों की होती हैं ऐसा कहा जाता है, और अगर लड़के लड़की में कहीं डिफरेंस आता है तो उसको कहीं ना कहीं क्लियर करने में माता पिता परिवार के लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, और इसीलिए परिवारों की शादियां कहा जाता है भारतीय समाज में होती हैं. लेकिन अगर इस तरीके से होने लग गया तो कितना मुश्किल होगा ये.
4: देखिए, देयर इज अ पैराडाइम शिफ्ट, हम लोग कहते हैं कि पहले जो आप कह रहे थे मैरिज बिटवीन टू फैमिलीज होते थे, अब मैरिज बिटवीन टू इंडिविजुअल्स है, दो व्यक्तियों के बीच में शादी हो रही है, और उसमें क्या है ना, परिवार जो है उसमें सम्मिलित हो जाता है कि चलो ठीक है इन दोनों का पसंद है तो हम कर लें. बट अब जो ये चीज हो रहा है, जैसे डॉक्टर साहब की जो इंस्टाग्राम वो है, वो भी हमको लग रहा है कि वो द पर्सनल इश्यूज आर बिकमिंग मोर यू नो सोशल करना चाह रही है, जिससे कि वो हो सकता है अटेंशन सीकिंग बिहेवियर हो, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है. तो इसलिए मैं कभी कभी कहता हूँ कि इम्प्रेशन के आधार पे कोई भी समाज की पहलुओं को, सामाजिक सोशल फेनोमेना या कोई भी इंडिविजुअल फेनोमेना को देखना चाहिए, नहीं चाहिए बल्कि वो एक कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक सिचुएशंस को समझना पड़ेगा, क्योंकि उनकी परिवार के बारे में हमको कुछ बैकग्राउंड नहीं पता है. वो जिस तरह की सिलेक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं, जो लोग इनको रिजेक्ट कर रहे हैं उनके बारे में भी हमको पता नहीं है. जस्ट ये हम केवल इंप्रेशन ले रहे हैं कि व्हाट दैट डॉक्टर साहिबा इज स्पीकिंग इन अ पब्लिक प्लेस, सो पब्लिक प्लेटफॉर्म में जो बता रही है उसके बेसिस पे हमको भी जज नहीं करना चाहिए. तो क्योंकि इन सभी चीजों में जो प्रोस एंड कॉन्स है उसके बिना समझे हम एक जनरल ओपिनियन देना ठीक नहीं है. ये बात सही है, मीडिया इज अ मैसेज, मीडिया बहुत मैसेज देता है, मीडिया बहुत मदद भी करता है, तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात तो है, लेकिन जो असेसमेंट है, वो जो आकलन है, वो आकलन एक रिलेशनशिप का जो आधार है वो रेसिप्रोसिटी है, म्यूचुअलिटी है, एक एक आपसी है, एक कमिटेड कमिटमेंट की बात है, वो तो एक फिजिकल रिलेशनशिप को फिजिकली आपको समझना,
0: ठीक है.
4: मीडिया के माध्यम से जज नहीं किया जा सकता है वो तो एक. लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारे सब आते हैं, हमको बहुत पसंद करते हैं, फिर उसके बाद वो जब देखते हैं वो आगे है कि पीछे है वो हम थोड़ी जानते हैं कि
0: बिल्कुल.
4: भाई वो पहले बताए कि
0: आज
4: बाद में.
0: हमारे इस पैनल में ना दीप्ति जी आप मौजूद हैं, समाजशास्त्री मौजूद हैं, मैट्रिमोनियल साइड से हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, और साथ ही साथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं. तो ये बैलेंस इसलिए रखा गया कि हम समझ सके कि वर्चुअल वर्ल्ड की रियलिटी रियल वर्ल्ड को कितना इफेक्ट कर रही है, रियल वर्ल्ड और वर्चुअल वर्ल्ड कैसे अलग है और कैसे ये रिश्तों पर असर डालता है. मनीषा जी, यही से आपसे सवाल, आप एक मैरिज काउंसलर भी हैं और अक्सर इधर शालू जी पे जिम्मेदारी होती है शादियां करवाने की और आप पे जिम्मेदारी है शादियां बिल्कुल बनी रहे. आपके पास तमाम वो लोग आते हैं जहां कहीं भी थोड़ा सा डिस्प्यूट होता है. ये इस चीज ने क्या रिश्तों को और कॉम्प्लिकेट बना दिया? क्या आप लोगों का जो जॉब है, टास्क है, वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, या ये इजी है कि वर्चुअली आप किसी को जज कर ले रहे हैं और फिर उसके बाद आप अपनी धारणा बना ले रहे हैं? ये बाद में भी हो सकता है, शादी के बाद भी हो सकता है कि लड़का बहुत ज्यादा सोशली एक्टिव हो, सोशल मीडिया पर एक्टिव हो, या फिर लड़की बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाए, वाइस वर्सा हो सकता है, और किसी एक को पसंद ना आए. ये कितना कितना कॉम्प्लिकेटेड है ये.
5: किसी भी स्टेज पे हो सकता है, जरूरी नहीं है कि शादी के पहले ही ये सारे डाउट्स और यू नो क्वेश्चन मार्क्स आए, ये किसी भी स्टेज पे हो सकता है. और सोशल मीडिया जो वर्चुअल वर्ल्ड है, इसने आसान कितना बनाया है चीजों को, मैं इस चीज पे नहीं कमेंट करूंगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी है आसान हमारी हुई है, बहुत सारी चीजें आसान हुई हैं, लेकिन जो रिश्ते हैं उनमें थोड़ा सा गैप आ गया है और रिश्ते थोड़ा मुश्किल में आ गए हैं सोशल मीडिया की वजह से. और जो पॉइंट आपने रखा इसमें, देखिए आजकल फेक अकाउंट्स भी बनते हैं. अब अगर शादियां अकाउंट्स चेक करके ही की जा रही हैं तो आपका नहीं आपको नहीं पता कि इस इंसान के कितने अकाउंट्स और हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि उनका एक ही अकाउंट हो। और कुछ लोग कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो जो किसी भी इंसान के अकाउंट्स बना देते हैं और उन आईडीज को वो यूज करते हैं गलत इंटेंशंस के साथ में। तो आप कौन सी आईडी को चेक कर रहे हैं, ये भी एक चीज है। दूसरा, जो जिस समाज में हम रह रहे हैं, अब जो लड़की है उसकी फैमिली और लड़का है उसकी फैमिली, आप थोड़ा सा साइकोलॉजी समझने की कोशिश करिएगा। सो जिस समाज में हम रह रहे हैं वहां पे शुरू से ऐसा एक ट्रेंड चला आ रहा है, पैटर्न चला आ रहा है, जिसमें लड़का बाहर जाता है, काम करता है और लड़कियां घर में रहती हैं, जो धीरे धीरे चेंज हुआ है और बहुत ज्यादा चेंज हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं, जो मैंने पॉइंट आपको बोला था, कॉन्शियस वर्सेस सबकॉन्शियस, सो कहीं ना कहीं एक सबकॉन्शियसली ये एक है कि हाँ, लड़की है तो वो क्या हमारे घर में निभा पाएगी या नहीं, या अगर लड़के की फैमिली है तो वो उनकी उनकी थोड़ा सा फीलिंग्स ऐसी होती हैं। सेम लड़की के फैमिली को ये
0: बिल्कुल
5: लगता है कि लड़के क्या ये सिक्योरिटी रहेगी कि लड़का कहीं और लड़के के रिलेशंस ना हो, या वो किन्हीं गलत आदतों में ना हो। ऑल्दो आजकल दोनों ही जेंडर का कोई इसमें रहा ही नहीं है, ये दोनों ही जेंडर्स को जाती हैं ये चीजें, बट स्टिल एक वो जो सोच है टिपिकल वो
0: बिल्कुल।
5: है कहीं ना कहीं।
0: और एक
5: सो उसकी
0: धारणा, हाँ मनीषा जी लौटती हूँ आपके पास, ब्रेक लेना है मुझे, लेकिन साथ ही साथ एक धारणा ये भी रहती है ना कि अगर सोशल मीडिया पर लड़के के बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं तो ये कहा जाता है कि भाई ये तो उसके प्रोफेशन की डिमांड है, वो इतना पॉपुलर है देखिए। और यही अगर लड़की के ज्यादा फॉलोअर्स है तो कहा जाता है कि वो ये एडजस्ट कर लेगी घर पे। यहीं से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, फिलहाल एक ब्रेक आप रही हमारे साथ।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: लोकप्रियता की दीवार, इसी को लेकर आज हम चर्चा करें। खास मेहमान हमारे साथ लगातार मौजूद है। एक बार फिर से आपको बता देती हूँ, दरअसल डॉक्टर जैस्मीन कलसी हैं जिन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया है। उनके अच्छे खासे फॉलोअर्स, और उनका ये कहना है कि उनके इतने फॉलोअर्स होने के बाद उनके परिवार को उनके लिए लड़का ढूंढने में बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है, क्योंकि लोग उन्हें उनके इंस्टा प्रोफाइल से जज करते हैं। अब मीनल, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, दो चीजें ब्रेक पर जाने से पहले जो मैंने चर्चा की थी कि अगर लड़के के इतने सारे फॉलोअर्स हों तो ये कहा जाता है कि भाई देखिए उसके प्रोफेशन की डिमांड है, वो इतना फेमस है, इतना पॉपुलर है। अब यही अगर लड़की के इतने सारे फॉलोअर्स हो तो ये कहा जाता है अब ये घर का काम कर लेगी। वही सोच जो मनीषा जी कह रही थी कि सोच अभी भी बहुत सारी जगह पर नहीं बदली है।
1: तो नहीं, दिस इज वेरी राइट कि हम गर्ल्स को बहुत अलग ढंग से जज करते हैं और बॉयज की तो जज करते ही नहीं है। दे यू नो वी जस्ट से कि हाँ वो तो चलता है, वैसा तो हमारा समाज है ही। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जैसे यू नो लोगों को ये भी लग सकता है कि हमें इतनी आउटगोइंग और ऐसी लड़की नहीं चाहिए जो सोशल मीडिया पे इतनी बात करती हो। लोगों को यू नो इस बात की झिझक होती है कि हमारी फैमिली मैटर्स ओपन में आ जाएंगे। और आप देखिए, जैसे अभी इन्होंने अपना वीडियो बनाया है तो शी इज टॉकिंग अबाउट हर पर्सनल लाइफ, उनकी पर्सनल लाइफ में किस तरह से सब हो रहा है। सो यू नो लॉट ऑफ पीपल गेट लिटिल स्केयर्ड अबाउट ऑल दीज थिंग्स। उनको ऐसा लगता है कि उनकी जो फैमिली के मैटर्स हैं वो फैमिली में ही रहने चाहिए। और आजकल ऐसा हो रहा है बिकॉज सी इंडिपेंडेंट गर्ल्स भी इंडिपेंडेंट है, बॉयज भी इंडिपेंडेंट है, तो कोई भी झुकने के लिए रेडी नहीं है। तो पीपल डोंट वॉन्ट कि कल ऐसे कोई भी यू नो रिलेशन में प्रॉब्लम आए, वो सारी की सारी प्रॉब्लम खुल के सोशल मीडिया पे डिस्कस हो और लोगों के सामने बहुत सारा यू नो वॉशिंग, जैसे बोलते हैं वॉशिंग योर डर्टी लिनन इन द पब्लिक। पीपल वुड वॉन्ट कि ये चीजें उनकी फैमिली में ही रहे। और ऐसा हुआ भी, आप देख रहे हैं कि जैसे उन्होंने बनाया है, जैस्मिन ने वीडियो बनाया है जिसमें उन्होंने बात बोली है, तो कल ऐसा भी हो सकता है वो अपनी फैमिली से रिलेटेड और भी बातें बोले जो पीपल आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट एज सच। एंड और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप इस मीडिया वाली लाइन में आ जाते हैं ना, तो कोई भी ऐसी, चाहे आपकी आपसे फैमिली से रिलेटेड हो या आपके यू नो बिजनेस से रिलेटेड हो, आप उस चीज को यू नो बहुत लोग ये वाली जो एक थिन लाइन होती है ना आपके पर्सनल और प्राइवेट और पब्लिक चीज की, वो नहीं समझते हैं और उसको भी डिस्कस करते हैं। सो एग्जैक्टली ये यहाँ हुआ है। तो फिर बिकॉज होता क्या है कि देखिए, जो आपका कुछ बहुत ही पर्सनल है उस पे लोग बहुत ज्यादा शेयर भी करेंगे, बहुत ज्यादा उस पे कमेंट्स भी आएंगे, बिकॉज इससे लोग बहुत इजिली रिलेट कर पाते हैं। तो ऐसा कुछ कंटेंट बनाने का मतलब है कि बहुत ज्यादा आपका प्रोफाइल वायरल।
0: अच्छा, अगर इतने सारे फॉलोअर्स हो जाते हैं तो मीनल क्या एक प्रेशर भी रहता है क्या? हम जब कहते हैं ना कि कोई शख्स बहुत फेमस हो गया तो उस पर प्रेशर है उस पोजीशन को सस्टेन करने का, क्या इतने फॉलोअर्स के बाद? हालांकि देखिए, अगर लड़के वाले ये सोच रहे हैं तो वो सोच भी तो गलत नहीं है ना, क्योंकि बहुत सारे परिवारों में ऐसी सोच होती है कि भाई हम नहीं चाहते कि हमारे परिवार की जो निजी चीजें हैं वो सामने आए। हम बहुत सारे सेलिब्रिटीज को भी देखते हैं, कई बार वो अपने बच्चों के साथ फोटो डालेंगे लेकिन बच्चों के चेहरे पर वो हार्ट बना देते हैं, कुछ इमोजी लगा देते हैं जिसमें वो नहीं चाहते हैं। हमने देखा है बहुत सारे सेलिब्रिटीज कहते हैं कि हमारी पर्सनल लाइफ को हम नहीं शेयर करना चाहते, हम सामने आएंगे लेकिन अकेले इंडिविजुअली। तो ये सोच भी गलत नहीं अगर कोई लड़के वाले इस तरह की सोच रखते हैं तो? दोनों का जवाब दीजिए, क्या प्रेशर होता है और इस सोच के बारे में?
1: So I think it depends from person to person. और आप देखिए, सोशल मीडिया पे शेयरिंग एंड ओवर शेयरिंग का जो कंसेप्ट है ना, ये बहुत ज्यादा बाहर के देशों से आया है। तो अगर मैं बाहर के देशों के कॉन्टेंट की बात करूँ ना, तो पीपल वुड इवन शो देयर बेबी कमिंग आउट प्रोसेस, मतलब की वो जितना हो सके वो इतना क्लोज दिखाते हैं, बिकॉज उस टाइप का कंटेंट वहां पर यू नो एग्रीएबल है। और बहुत सारे लोग इस तरह से आपको एक आउटसाइड पर्सनालिटी नहीं मान के ऐसा फील करते हैं, जैसे वीलॉग्स। तो मैंने देखा है किसी ने अपना यू नो हाउ बेबी इज बॉर्न उसका प्रॉपर वीलॉग बना के वो डाला है। कैन यू इमेजिन, मतलब इट्स समथिंग सो पर्सनल टू अस, हम एज अ पर्सन शायद नहीं करेंगे, मेरी पर्सनल चॉइस है, बट बहुत सारे लोग ये भी करते हैं बिकॉज इससे आपकी जो ऑडियंस है ना वो आपसे बहुत ज्यादा रिलेट करती है, उनको ऐसा लगता है कि ये बहुत रियल कॉन्टेंट है। हाँ। तो इट्स सो पर्सनल।
0: एक बार मनीषा जी इस पर आपकी भी राय में जानना चाहूंगी। देखिए, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जाहिर सी बात है कि जब आप एक फैमिली में आ गए, फैमिली हो सकता है ना चाहती हो, उसकी रिस्पेक्ट भी करनी पड़ेगी चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। और दूसरी बात यह है कि जब आपके इतने फॉलोअर्स हो जाते हैं तो क्या ये प्रेशर होता है कि मुझे हर दिन कोई ना कोई कंटेंट पोस्ट करना ही करना है?
2: बिल्कुल, एक प्रेशर के साथ में एक फन एलिमेंट आ जाता है और एक क्यूरियोसिटी हो जाती है कि हाँ लेट्स सी अब इस वाले पोस्ट में मेरे कितने लाइक्स आएंगे। और एक कंपैरिजन अपने आप से ही एक अपने साथ ही एक एक कंपैरिजन कह लीजिए उसको, या कंपटीशन कह लीजिए, वो शुरू हो जाता है. और वो कंपटीशन कहीं ना कहीं किसी और के साथ भी हो रहा होता है, जो भी उनके जिन जिन लोगों को भी वो फॉलो करते हैं या आइडलाइज करते हैं. और इसमें जो पर्सनल अपना अपनी लाइफ शेयर करना या नहीं करना, ये उस इंसान की बिल्कुल पर्सनल चॉइस है. बहुत सारे लोग कर रहे हैं, जो आज हम जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, जो हमने रील देखी है, उसमें भी उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ काफी हद तक शेयर की हुई है. तो ये बिल्कुल अपनी चॉइस है, इंडिविजुअल की चॉइस है कि वो करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं. अब कुछ लोग जो कर जाते हैं उसमें भी, क्योंकि उनके लाइक्स उनको मिलते हैं, तो हमारा फोकस क्या है, अल्टीमेटली हमारा इंटेंशन क्या है, हमारा एम क्या है, ये मैटर करता है. व्हाट इज अ पर्सन्स चॉइस. सो वो चॉइस अगर मीट कर रही है उनकी एक्सपेक्टेशन से, तो वो उस पाथ पे आगे चलते जाते हैं. सो देन देर इज नो लिमिट. जैसे कि मीनाल जी ने भी बोला कि आप एक आगे जाते जाते जाते जब आपको पॉपुलैरिटी मिलने लगती है, तो कहीं ना कहीं वो एक वो डिमार्केशन होता है ना, वो आप समझ नहीं पाते हैं. सो इंसान को मैटर ही नहीं करता है. ठीक है भाई, कोई बात नहीं. उस अगर लोग जानने चाह रहे हैं उनके बारे में, तो एक वो फन फैक्टर कहीं ना कहीं वो आने लगता है.
0: और उस फन फैक्टर को लोग एंजॉय भी करते हैं। दीप्ति रंजन जी, क्या ये भी एक बड़ी वजह है रिश्तों में दरार की, जिस तरीके से हम आजकल सोसाइटीज में देख रहे हैं?
3: देखिए, दरार के लिए हम सभी जो भी बात कर रहे हैं ना, एक जनरल ट्रेंड की बात कर रहे हैं. बट आप देखिए कि जब भी सोसाइटी को हम देखते हैं, कॉन्टेक्स्ट बहुत जानना जरूरी है. क्योंकि अभी आप देखिए, जनरली आप देखेंगे कुछ ऐसे परिवार में लोग होते हैं, वो कहते हैं कि माई लाइफ माई रूल्स, और एक उसी परिवार के पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं, तुम्हारे माई लाइफ तुम्हारे रूल्स नहीं हो सकता है. तो उसमें फिर वो ब्लेंडिंग करते हैं, मिलाते हैं दोनों को, उसमें एक कॉम्प्रोमाइजिंग रोड पे, एक मिडिल रेंज में चलते हैं. ऐसे भी सिचुएशंस आता है जहाँ पे ये कॉन्टेक्स्ट भी आता है. तो इसी तरह से आप देखे होंगे जहाँ पे पेरेंट्स और बच्चों में एकदम यूनिफॉर्मिटी है, सब लोग आपस में बात करके वो करते हैं, वो एक अलग बात है. इसी तरह से आप देखेंगे कि क्या बैकग्राउंड है, सोशल बैकग्राउंड क्या है, जिसको हम लोग कहते हैं सोशलाइजेशन, आपकी समाजीकरण, आपकी ट्रेनिंग, आपकी प्रशिक्षण, आपकी एक्सपोजर, और उससे भी चीजें बहुत सारे तो पता चलता है. तो मेरा ये कहना है कि जो बहुत सारे रियलिटीज को देखना है, परसिप्ड रियलिटी को देखना और एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी को देखना जो दिखाई दे रहा है, तो उसमें बंतर तो होता है, लेकिन केस टू केस बहुत अंतर आता है. बहुत सारे फैमिली में आपने देखा होगा, व्यक्ति दोनों शादी करते हैं लेकिन परिवार उससे कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं. बहुत सारे परिवार में ये होता है कि परिवार की शादी को पसंद करते हैं लेकिन व्यक्ति अपनी पसंद से वो पता है. तो ये सब बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट अलग अलग तरीके से पाता है, केस टू केस डिफरेंट होता है. आई थिंक साइकोलॉजिस्ट जो भी है वो लोग इसके ऊपर हैंडल कर सकते हैं, लेकिन हम एज ए सोशियोलॉजी स्टूडेंट हम ये कह रहे
0: ठीक
3: हैं
0: है।
3: कि समाजशास्त्री के रूप में ये जो है, बिना कॉन्टेक्स्ट देखते हुए सामान्यकरण करना जरूरी नहीं है. लेकिन ये बात सही है कि परसेप्टिव रियलिटी का जो ओपिनियन है वो खासतौर पे मेल के लिए इतना इफेक्ट नहीं करता है, वुमेन के लिए अभी भी कर रहा है, क्योंकि वो स्टीरियोटाइप से हम दूर नहीं हुए. जेंडर स्टीरियोटाइप अभी भी है, वो टूटा नहीं. अभी अभी भी वही चीज है जो उसके कि पढ़े लिखे लोग, जानकार लोग, जागरूक लोग भी उसी तरह की सोच रखते हैं. तो इसके लिए मैं कहता हूं कि मंगल ग्रह से हम लोग पैदा नहीं हुए हैं. तो हम लोगों की जो सोच है, नॉलेज है, एटीट्यूड है, प्रैक्टिसेस में कहीं आपको मिलेगा दर्जे डिसजंक्शन, मतलब एक दोनों एक यूनिफॉर्म नहीं है, साथ में साथ नहीं जा रहा है.
0: बिल्कुल
3: तो
0: शालू जी, हाँ मैं लौटती हूँ दीप्ति जी। शालू जी, आपके पास आना चाहूंगी। आपने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर दिया था। क्या ऐसे एग्जाम्पल्स आपके पास और भी आते हैं? क्योंकि जब लोग रिश्ता ढूंढने के लिए आते हैं, क्या पूछा जाता है कि सोशल मीडिया पर कितने एक्टिव हैं या सोशल मीडिया पर कितने फॉलोअर्स हैं? इस तरह की कोई चर्चा होती है या सीधा फैमिली बैकग्राउंड, जो कि अभी तक कहा जाता रहा या पूछा जाता था कि भाई परिवार कैसा है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या सिर्फ यहीं तक इन्फॉर्मेशन लोग मांगते हैं?
4: एक्चुअली ना, दैट थिंग डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, फैमिली टू फैमिली। अभी हमारे साथ एक रिसेंट इंसिडेंट हुआ कि हमने एक फैमिली को एक बायोटा भेजा, एंड देन इन दैट प्रोफाइल इट वाज रिटन कंटेंट राइटर। तो पेरेंट्स को इतना आइडिया नहीं था कि क्या होता है कंटेंट राइटर। उनको गर्ल दिखने में बहुत स्मार्ट लगी, उन्होंने बोला कि मेरे बच्चों की मीटिंग करा दो। हमने बच्चों की मीटिंग करा दी, दोनों बच्चों को बात करके मिलके बहुत अच्छा लगा। बच्चे 4-5 बार मिल लिए, क्योंकि पेरेंट्स आके पहले बोलते हैं कि जहां बच्चे को पसंद आएगा हम वहां शादी कर देंगे। तो जब चार पांच मीटिंग हो गई, उसके बाद जब फैमिलीज मिली और जब बॉय के फादर ने इसका सोशल मीडिया अकाउंट देखा, या उसी उन्हें मतलब उनके मतलब उनके किसी फ्रेंड ने उनको बताया कि यार तुम ऐसी लड़की को अपने घर की बहू बनाएगा जो तो सोशल मीडिया पे इतनी एक्टिव है, उसके इतने फॉलोअर्स हैं, उसका तो करेक्टर ही खराब होगा एंड वो तो ऐसी होगी वैसी होगी, तो उसकी उनके माइंड में वो चीज बैठ गई और वो उसको अपनी डॉटर इन लॉ एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं।
0: नहीं, ये सिर्फ लड़की के साथ होता है या लड़के के साथ भी ऐसा हुआ है कभी?
4: के साथ होता है, इसको हम
0: बॉयज के साथ कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी बताइए जरा।
4: तो इसमें उनकी फैमिली में आज भी प्रॉब्लम चल रही है, बिकॉज बॉय कह रहा है कि मुझे शादी इसी से करनी है एंड उसके फादर कह रहे हैं कि मैं ये शादी होने नहीं दूंगा। तो ऐसा बहुत बार बॉयज के साथ भी होता है, बिकॉज जब बॉयज सोशली बहुत एक्टिव होते हैं तो गर्ल्स वाले भी आकर बोलते हैं कि इस बॉय की तो बहुत सारी गर्लफ्रेंड होंगी, इस बॉय का तो करेक्टर खराब होगा, तो मैं अपनी डॉटर को ऐसी ही फैमिली में नहीं भेज सकता जहां पर ऐसा कुछ हो। मतलब आई वुड नॉट नेम सम पीपल, हमारे पास कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, जो लोग फिल्म इंडस्ट्री में हैं, हम उनके लिए रिश्ता देख रहे हैं, तो लोग उनके जो है उसके बारे में भी सोचते हैं, बॉय के करेक्टर के बारे में।
0: अच्छा, वो तो फिर नीचे कमेंट्स भी पढ़ते होंगे और कमेंट्स पढ़ने के बाद अपनी धारणा बन जाती है।
4: तो इसको हम जेंडर बेस्ड नहीं बोल सकते और किसी एक एग्जाम्पल के ऊपर हम नहीं कह सकते कि बॉय की।
0: तो शालू जी, अब तो बहुत मुश्किल हो गए फिर आपके लिए काम।
4: Yeah, but we are enjoying.
0: तो कैसे कैसे बैलेंस बनाते हैं, कैसे सबको सेटिस्फाई किया जाता है, लड़के वालों को भी लड़की वालों को भी?
4: इसलिए हम लोगों को समझाते हैं, आई ऑलवेज गाइड देम कि आप लोग फैमिली वैल्यूज को देखें, डोंट जज पीपल फ्रॉम देयर करेक्टर, डोंट जज पीपल फ्रॉम देयर इंस्टा प्रोफाइल, सोशल प्रोफाइल। अभी इसकी तरह ही हमने एक आगाज स्टार्ट किया है जिसमें हम बच्चों को फेस टू फेस मिलवाते हैं, क्योंकि कई बार आप किसी की एक ड्रेस की फोटो देखकर सोशल मीडिया पर फैमिली जजमेंट कर लेती है कि ये लड़की तो ऐसे ही कपड़े पहनेगी या ये हमारी फैमिली में ऐसे ही आएगी, तो इसके बेस पे आप जजमेंट नहीं कर सकते हैं किसी को। तो आपको उसका रियल वैल्यू, रियल करेक्टर देखना चाहिए, ना कि उसका सोशल मीडिया प्रोफाइल से जजमेंट करनी चाहिए। अभी बहुत अच्छी बात बताई मनीषा जी ने भी और एक ही कि आपका बहुत सारी चीजें आप कॉन्शियसली करते हैं और बहुत सारी चीजें सबकॉन्शियसली होती रहती हैं, तो हमें उस पर्सन से मिलके जजमेंट करनी चाहिए, ना कि सोशल मीडिया प्रोफाइल से।
0: मीनल, ये तो बात बाद में भी आ सकती है, और मैं अगर गलत नहीं, अभी मनीषा जी शायद अगला कोई एग्जांपल दे ही देंगी हमें कि शादी के बाद भी लड़के ने देखा, लड़की ने कोई कंटेंट पोस्ट किया, नीचे कमेंट आ गया, तो भाई वहीं से दोनों के झगड़े शुरू हो गए। लड़की ने या लड़के के किसी पोस्ट के नीचे कमेंट पढ़ लिया तो वहीं से झगड़े शुरू हो गए, ये तो कभी भी आ सकती है।
1: आ सकती है, बट मुझे ऐसा लगता है आफ्टर मैरिज आप लोगों में वैसा रिलेशन बन जाता है, आप में वो अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। फॉर एग्जांपल, आई एम समबडी हु इज वेरी सोशली आउटगोइंग और मैं बहुत पोस्ट करती हूँ, एंड माय हस्बैंड इज समवन हु डजंट वांट टू बी देयर, मतलब शायद उनका इंस्टा प्रोफाइल भी नहीं है, सो आई डोंट टैग हिम एंड आई डोंट डू लॉट ऑफ पोस्टिंग इन विच ही इज प्रेजेंट। बट हाँ, कुछ फिटनेस के वैसे वाले जो राउंड्स होते हैं जिसमें कपल के कुछ चैलेंजेस वगैरह होते हैं, मैं फन वे में मयंक को ऐड कर लेती हूँ एंड ही इज लाइक ओके गुड विद इट। सो आई थिंक वो आपकी एक पर्सनल अंडरस्टैंडिंग भी बन जाती है। तो आई बिलीव कि इट्स ऑल अबाउट हाउ मच अंडरस्टैंडिंग यू हैव विद योर पार्टनर अबाउट दिस, बिकॉज आई हैव सीन लॉट ऑफ, लाइक यू सेड, आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल नॉट लाइकिंग इट पर से, और बहुत लोगों ने अपने ये बंद भी किया है इंस्टा की, माई हस्बैंड वाजंट वेरी कीन ऑन मी गोइंग सोशली आउटगोइंग। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा भी होता है क्या, बट मुझे तो ऐसा लगे कि ये तो मेरी एक पर्सनालिटी का पार्ट है, दिस इज समथिंग बट आई एम, जो मैं करती हूँ आई वांट टू शो इट टू द पीपल, बिकॉज फॉर मी इट इज अ वे इन विच आई एम गिविंग बैक टू द सोसाइटी अबाउट देयर फिटनेस एंड टिप्स एंड ट्रिक्स इन विच दे कैन लिव अ बेटर एवरीडे लाइफ। तो अगर मुझे कोई बोले ये बंद करने को, तो आई थिंक मैं तो एक्सेप्ट नहीं करूंगी। सो आई
0: बिलीव, ठीक है मनीषा जी, सोशल मीडिया रिश्तों को जोड़ने की वजह भी बना है और रिश्तों के टूटने की वजह भी बना है।
2: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जैसे अभी मीनल जी ने बोला कि पर्सनल अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, और ऐसा नहीं है कि केवल सोशल मीडिया ही रीजन है, यहाँ पे और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। एक अगर शादी हो चुकी है तो मैरिड कपल का सेपरेशन, अनऑफिशियल सेपरेशन, ऑफिशियल सेपरेशन, उसकी भी बहुत सारी वजह होती है, केवल सोशल मीडिया ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। अगर कहीं ट्रस्ट कहीं हिला हुआ है या कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है। अब अगर कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो ही एक दूसरे के बारे में आप पता कर सकते हो, तो ही एक दूसरे के बारे में जान सकते हो। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो बिना मुंह से बोले भी दो लोग अगर रह रहे हैं, चाहे वो मैरिड कपल है या वो लिव इन रिलेशनशिप में है, चाहे वो भाई बहन ही क्यों ना हो, दो दोस्त भी क्यों ना हो, माँ बाप अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं, तो वो समझ पाते हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें मुंह से बोल के भी समझ नहीं आती है। सो वो केसेस वो होते हैं जिनमें कहीं कुछ और भी होता है, कुछ और रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है जिसकी वजह से वो कम्युनिकेशन ब्रेक ऑलरेडी हो चुका होता है, तो वो कहीं जा रही है लेकिन अंदर तक नहीं पहुंच रही है, या वो उस सेंस में समझ नहीं आ पा रही है। और सोशल मीडिया की जहां तक बात है, डेफिनेटली ये जो जितने भी अकाउंट्स हैं, लाइक्स हैं, सेल्फीज हैं, पोस्ट करना इधर उधर बहुत सारे अकाउंट्स पे, तो अगर आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है ठीक है, अगर नहीं है तो ये सारी चीजें शुड बी डिस्कस्ड वेरी क्लियरली बिफोर हैंड। अगर बाद में भी ये
0: पहले से
2: होती
0: इसको आप कह रही हैं कि डिस्कस करना चाहिए। छोटा सा एक जवाब चाहूंगी शालू जी आपसे, क्योंकि वक्त की कमी है। शालू जी एक और सवाल कि अभी तक तो कहा जाता था कि शादी के लिए आईएएस आईपीएस ऑफिसर का रिश्ता ढूंढो, डॉक्टर का रिश्ता, इंजीनियर का, लेकिन आजकल एक नई कैटेगरी सोशल मीडिया भी ऐड हो गई और आजकल तो इन्फ्लुएंसर्स अच्छा खासा कमा भी रहे हैं, कितनी डिमांड इनकी रहती है?
4: ट्रू नहीं, दैट डिपेंड्स ऑन कि आप अपना रिश्ता कहाँ कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, बिकॉज जब हम रिश्ता ढूंढते हैं या जब हम उससे क्वेश्चन पूछते हैं कि आप सोशल प्रोफाइल कितना एक्सेप्ट कर सकते हो, देयर आर सो मेनी पीपल जिनको चाहिए होता है कि उनकी वाइफ जो आए या उनके घर में जो बॉय आए वो सोशल, उनका प्रोफाइल बहुत एक्टिव होना चाहिए। बहुत बार रिश्ते इसकी वजह से भी जुड़ रहे हैं। तो आप कहाँ रिश्ता कर रहे हैं, वेदर दैट पर्सन इज कंपैटिबल टू यू या नहीं। अगर आप किसी ऐसी जगह रिश्ता कर रहे हैं जहां पर जो फैमिली एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है, तो डेफिनेटली दैट रिलेशनशिप विल नॉट
0: वर्क। आपके पास ऐसे केसेस आते हैं कि सोशल मीडिया वाला सोशल मीडिया को ही पसंद करें या उसे ही खोजें, क्योंकि भाई बाकियों के साथ एडजस्ट होना तो मुश्किल हो जाएगा फिर।
4: यस, जिनका ऐसा प्रोफेशन है उनको ऐसी ही गर्ल्स चाहिए होती है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे डिजाइनर्स के रिश्ते हैं जो हमें बोलते हैं कि जो हमें गर्ल चाहिए उसका सोशल प्रोफाइल एक्टिव होना चाहिए, बिकॉज कल को वो हमारे बिजनेस को भी बूस्ट करेगा। तो दैट डिपेंड्स ऑन द कैरियर की उनकी डिमांड आती है कि हमारे को ऐसा प्रोफाइल चाहिए। बहुत बार ऐसा भी होता है कि सोशल मीडिया की वजह से लोगों के रिश्ते खराब भी होते हैं। छोटा सा एक एग्जांपल देना चाहूंगी, आपसे बात करते करते याद आया मुझे, हमने किसी फैमिली का रोका कराया। उस गर्ल का ड्रीम था कि मुझे कि मैंने मेरी फ्रेंड को देखा था कि उसको उसके हस्बैंड ने प्रपोज किया था आईफल टावर के आगे, तो मुझे पेरिस जाकर वहां पे प्रपोज करना है। तो उनका एक छोटा सा रोके का फंक्शन चल रहा था, बॉय ने बहुत अच्छा सरप्राइज प्लान किया गर्ल के लिए। जब बॉय ने उसको प्रपोज करा तो गर्ल खुश होने के बजाय बॉय के पास जाके फेस बना के बोल रही है, आई टोल्ड यू कि मुझे सोशल मीडिया पे अपना प्रपोजल डालना था पेरिस में, तो व्हाई यू डिड सो।
0: ये भी एक नई बहस आपने शालू जी टॉपिक हमको दे दिया है, क्योंकि रोका सेरेमनी कैसी हो, आईफिल टावर के सामने प्रपोजल हो, और अगर नहीं होगा तो फिर वहीं से रिश्तों में खटास शुरू हो जाती। तो ये यानी कि आजकल आज की तारीख में वक्त अब इतना ही, लेकिन कुल मिलाकर आज की तारीख में आपका बायोडाटा उतना मैटर नहीं करता है, सोशल मीडिया वाला बायोडाटा भी उतना ही इक्वली मैटर करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, हम देखते रहिए गुड न्यूज़।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: किस तरह का आहार आपके विचारों पर असर डालता है? आहार में परिवर्तन करके विचारों को कैसे बदल सकते हैं, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: आइए आपको दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
6: स्टेज पर सजी धजी खड़ी इन नन्ही बच्चियों ने अपनी मासूमियत से हर किसी का दिल जीत लिया। भरतनाट्यम की प्रस्तुति के लिए पारंपरिक पोशाक में तैयार बच्चों के चेहरे की क्यूटनेस और उनकी प्यारी अदाएं देखते ही बन रही हैं। इशारों से भाव जताती ये बच्चियां बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं। उनकी मासूमियत और नटखट अंदाज ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सोशल मीडिया पर बच्चियों की ये प्यारी तस्वीरें और वीडियो खूब पसंद किए जा रहे हैं। प्यास किसे नहीं लगती, इंसान हो या जानवर, पानी हर किसी की जरूरत है, लेकिन इस हाथी का पानी पीने का अंदाज कुछ अलग ही है। पहले हाथी अपनी सूंड में पानी भरता है और फिर बड़े आराम से उसी पानी को अपने मुंह में डालकर पीता है। पानी पीने का यह अनोखा तरीका देखकर हर कोई हैरान है। हाथी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और लोग इसे देखकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं। उम्र छोटी है लेकिन जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। कंधे पर ईंटों का बोझ उठाए ये बच्चा मेहनत करता नजर आ रहा है। बचपन खेलने और मुस्कुराने की उम्र होती है, लेकिन हालात जब जिम्मेदारियां बढ़ा दें तो छोटी उम्र में ही बड़े काम करने पड़ते हैं। बच्चे के कंधे पर रखा ईंटों का बोझ उसकी मेहनत और जिम्मेदारी दोनों की कहानी बयां कर रहा है। सोशल मीडिया पर बच्चे का ये वीडियो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है।

0: अरुणाचल प्रदेश के वानू गांव की तीन छोटी बहनें अपनी सुरीली आवाज से इंटरनेट पर छा गई हैं। बिना किसी फैंसी सेटअप और बिना किसी फिल्टर के तीनों बहनों ने अपनी मासूम मुस्कान और खूबसूरत आवाज से लोगों का दिल जीत लिया। साथ में गा तीन बच्चियों का अंदाज बेहद प्यारा है, उनकी आवाज में मासूमियत भी है और हुनर भी। सोशल मीडिया पर बच्चियों का ये वीडियो खूब पसंद किया जा रहा है और लोग उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। खुश रहने के लिए दौलत नहीं, बस जज्बा चाहिए। इस महिला को देखकर जिंदगी का यही सबक मिलता है। सिर पर ईंटों का बोझ है, लेकिन चेहरे पर मुस्कान बरकरार है। इतना ही नहीं, ईंटों का वजन सिर पर संभालते हुए महिला शानदार तरीके से डांस भी करती नजर आ रही है। मुश्किल हालात के बीच उसका ये अंदाज हर किसी का ध्यान खींच रहा है। सोशल मीडिया पर महिला के हुनर और उसके गजब के बैलेंस की खूब तारीफ हो रही है।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
2: किस तरह का आहार आपके विचारों पर असर डालता है? आहार में परिवर्तन करके विचारों को कैसे बदल सकते हैं, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
2: तो भाई 5 बज गए हैं, चाय भी आ गई है, समोसे भी आ गए, माहौल बन गया है क्योंकि आज है गोल्डन डे भारत के लिए। बात कर रहे हैं एशियन गेम्स से, जहां से गुड न्यूज आई है। एशियन गेम्स में आज का दिन भारत के लिए गोल्डन डे साबित हुआ है। आश्री में गोल्ड की हैट्रिक लगी है, तो शूटिंग में भी भारतीय निशानेबाजों ने सोने पर निशाना साधा है। जापान में तिरंगा लहराया तो हिंदुस्तान में मेडल वीरों की जीत का जश्न मनाया।
3: बिल्कुल, जीत का जश्न मन रहा है, जापान से लेकर इंडिया तक यहाँ पर जश्न मन रहा है। आपको बता दें तो एक तरफ जापान में भारतीय खिलाड़ी गोल्ड मेडल बरसा रहे हैं, तो दूसरी तरफ देश में गोल्ड खरीदारों के लिए भी अच्छे दिन आ गए हैं। दरअसल सराफा बाजार से आम जनता के लिए गुड न्यूज आई है। सोना अभी खरीदें या फिर इंतजार करें? सोने के साथ चांदी की कीमतों का क्या है हाल, ये सब कुछ आपको बताएंगे।
2: नमस्कार, मैं शगुफ्ता, स्वागत है आप सभी का चाय पर चर्चा में। बात भगवान राम की नगरी अयोध्या की भी करेंगे, जहां हर साल की तरह इस साल भी दीपोत्सव के लिए खास तैयारियां की जा रही हैं। इस बार यहां दीपोत्सव में अलग ही माहौल दिखाई देगा। खास बात यह है कि देसी विदेशी पर्यटकों के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने दीपोत्सव अयोध्या टूर पैकेज तैयार किया है। पूरी जानकारी इसके बारे में आपको देंगे।
4: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव। तो देखिए, कोलकाता की भी आज बात होगी, जहां दुर्गा पूजा की जो तैयारियां हैं वो जोर शोर से की जा रही हैं। किस तरीके से मां दुर्गा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है, इसकी तस्वीरें भी थोड़ी देर में आपके सामने होंगी। और प्रतिमाओं को खरीदने के लिए लोगों में किस तरीके का उत्साह है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे।
5: नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा। देखिए, बात देश की बढ़ती रक्षा शक्ति की भी होगी। जोधपुर एयरबेस पर इस समय तरंग शक्ति युद्धाभ्यास का दूसरा एडिशन चल रहा है। इसमें भारतीय वायुसेना के फाइटर प्लेन अमेरिकी फाइटर प्लेन के साथ अभ्यास कर रहे हैं। इसकी तमाम तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं देश भर की बड़ी खबरें।
1: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
3: एशियन गेम्स में भारत की चमक बरकरार। 87 किलोग्राम रोमन रेसलिंग इवेंट में सुनील कुमार ने जीता ब्रोंज। आज तीरंदाजी में 3 और शूटिंग में आया 1 गोल्ड। भारत के खाते में कुल 10 गोल्ड मेडल। एशियन गेम्स गोल्ड मेडल जीतने वाले कबड्डी स्टार सुमित सांगवान का भव्य स्वागत। करेंसी नोट और फूल मालाओं से हुआ वेलकम। हिमाचल के मंडी में थलौट में बदलेगा 4 लेन का स्वरूप। 200 करोड़ से बनेगी राज्य की पहली 500 मीटर लंबी नई बॉक्स टनल। जोधपुर में तरंग शक्ति युद्धाभ्यास में F-16 और रफेल समेत 8 देशों के विमानों का शक्ति प्रदर्शन। 12 अक्टूबर तक चलेगा युद्धाभ्यास। कोलकाता में शक्ति उपासना की तैयारियां तेज। मां दुर्गा की प्रतिमा को अंतिम रूप दे रहे कारीगर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन जो जापान में इस वक्त माहौल बना हुआ है वो माहौल यहाँ भी बनना जरूरी है।
4: बिल्कुल,
3: तो शुरू करें।
6: इंडिया
2: थकेंगे नहीं आज हम बोलते
3: हुए, क्योंकि
2: गुड न्यूज ही ऐसी,
3: गुड न्यूज ऐसी है। गोल्ड पे गोल्ड आ रहा है भाई। आपको बता दें कि जापान की धरती पर भारतीय सूरमाओं ने ऐसा स्वर्णिम इतिहास रचा है आज, जिसकी गूंज पूरे एशिया में सुनाई दे रही है। एशियन गेम्स 2026 में आज भारत के तिरंगे का परचम कुछ ऐसा लहराया कि पदकों की झड़ी लग गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि 4 गोल्ड और 3 ब्रोंज मेडल के साथ आज का दिन भारत के लिए पूरी तरह गोल्डन डे साबित हुआ है।
2: बिल्कुल, देखिए आज की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक कामयाबी आई तीरंदाजी के मैदान से, जहां भारतीय तीरंदाजों ने सटीक निशाना साधकर कंपाउंड वर्ग के तीनों स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिए। तीरंदाजी के बाद निशानेबाजी की रेंज पर भी भारत का जलवा यूं ही बरकरार रहा। ट्रैप मिक्स टीम के फाइनल में नीरू ढांडा और कीनन चेनाई की जोड़ी ने चौथा गोल्ड मेडल भारत के नाम किया। नीरू ढांडा का इस एशियन गेम्स में ये लगातार दूसरा स्वर्ण पदक है। उधर बॉक्सिंग रिंग से भी भारत के लिए गुड न्यूज आई। लेटेस्ट खबर ये है कि ग्रीको रोमन कुश्ती में पहलवान सुनील कुमार ने 87 किलो वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल देश के नाम किया। जापान में भारतीय खिलाड़ियों की कामयाबी से देश भर में सेलिब्रेशन का माहौल दिखाई दे रहा है।

0: जापान में चल रहे एशियन गेम्स में आज भारतीय खिलाड़ियों ने ऐसा प्रदर्शन किया जिसने पूरे देश को गर्व से भर दिया। एशियन गेम्स के 12वें दिन दोपहर 3 बजे तक भारत ने 4 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज समेत कुल 6 मेडल अपने नाम कर लिए थे। आर्चरी से लेकर शूटिंग और बॉक्सिंग तक भारतीय खिलाड़ियों ने ऐसा दम दिखाया कि पूरा एशियन गेम्स तिरंगे के रंग में रंगा नजर आया। भारत के लिए आज का दिन गोल्डन डे बन गया। सबसे पहले तीरंदाजी के मैदान से गोल्ड पदक जीतने की खबर आई। कंपाउंड आर्चरी में भारतीय महिला टीम ने चीन को हराकर गोल्ड अपने नाम किया। ज्योति चिखिता तानी परथी और पृथिका की भारतीय तिकड़ी ने फाइनल में चीन को 238-234 से हराया। और सिर्फ गोल्ड ही नहीं, भारतीय टीम ने इस मुकाबले में वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी भी कर दी। भारत का सुनहरा सफर यही नहीं रुका, इसके बाद बारी थी कंपाउंड मिक्स्ड आर्चरी टीम फाइनल की। चिकिता तानी परथी और साहिल जाधव की जोड़ी ने कंपाउंड मिक्स टीम फाइनल में दक्षिण कोरिया को शूट ऑफ में हराकर गोल्ड मेडल जीता। ये जीत इसलिए भी बेहद खास रही क्योंकि इसके साथ भारत ने लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक्स के मिक्स कंपाउंड इवेंट का कोटा भी हासिल कर लिया है। आर्चरी में भारत की गोल्डन हैट्रिक अभी बाकी थी। पुरुष कंपाउंड टीम फाइनल में कुशल दलाल, साहिल जाधव और गणेश मणिरत्नम थ्रुमुरु का सामना चीन से था। मुकाबला बेहद रोमांचक, हर तीर के साथ बढ़ता तनाव और आखिरकार भारतीय तिकड़ी ने चीन को 238-237 से मात दी। सिर्फ 1 अंक के अंतर से मिली इस जीत के साथ कंपाउंड आर्चरी में भारत ने गोल्ड की हैट्रिक पूरी कर ली।
1: बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे किसी भी एथलीट को गोल्ड जीतने पे बहुत अच्छा ही लगेगा। और इतने दिनों से जो हमने हार्ड वर्क किया था, पैशनेट थे इसके लिए, तो वो हार्ड वर्क पेज ऑफ।
2: तो क्या कुछ चल रहा था आज दिमाग में, क्योंकि सुबह से आपके दो टीम से जो है गोल्ड मेडल निकाला था, तो प्रेशर आ गया था कि अब गोल्ड के बिना नहीं जाना है?
1: नहीं, प्रेशर तो नहीं था, बस वही था दिमाग में कि जो करते आए हैं वही करना है, वैसे ही परफॉर्म करना है। और ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि हमारे जो सीनियर्स थे उन्होंने हमें बहुत अच्छा गाइड किया था, और हमारे पास कोच भी थे, फिजियो साइकोलॉजिस्ट, मतलब पूरी टीम ने हमें इतना अच्छे से सपोर्ट किया कि प्रेशर का फील ही नहीं हुआ हमें कहीं पे।
0: आर्चरी के बाद अब बारी थी शूटिंग रेंज की। यहाँ भी भारतीय निशानेबाजों ने सोने पर निशाना लगाया। नीरू ढांडा और कीनन चेनाई की जोड़ी ने मिक्स्ड ट्रैप टीम फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए कतर को 1 अंक से हराकर गोल्ड मेडल जीता। नीरू ढांडा के लिए ये तो उपलब्धि और भी खास रही। नीरू के लिए एशियन गेम्स में उनका ये लगातार दूसरा गोल्ड है। एक दिन पहले ही नीरू ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड जीता था। गोल्डन डे की कहानी में ब्रॉन्ज का जज्बा भी शामिल रहा। बॉक्सिंग में प्रिया घंघास का सफर महिला 60 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में समाप्त हुआ, लेकिन उन्होंने भारत के लिए कांस्य पदक सुनिश्चित किया। पुरुष 90 किलोग्राम वर्ग में कपिल पोखरिया को सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कांस्य पदक जीतकर भारत की झोली में एक और मेडल डाल दिया। आर्चरी में गोल्ड की हैट्रिक, शूटिंग में रिकॉर्ड के साथ सोना और बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज। भारत के लिए एशियन गेम्स का ये दिन सिर्फ मेडल का दिन नहीं बल्कि दम, जुनून और तिरंगे की शान का दिन बन गया। जापान में भारतीय खिलाड़ी मेडल जीत रहे हैं तो भारत में मेडल वीरों के घर पर जश्न का माहौल बना हुआ है। हरियाणा में भिवानी के देवसर गांव में ये है जैवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीतने वाली यशवीर सिंह का घर, जहां उनकी कामयाबी का जश्न मनाया गया। परिजनों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और आतिशबाजी करके मेडल जीतने की खुशी का इजहार भी किया।
3: मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि ये टूर्नामेंट ऑफकोर्स एक अपने लेवल पे बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, और इसमें इंडिया को 2 गोल्ड मेडल देना, अपने पेरेंट्स को, अपने कोचेस को, अपने सपोर्ट स्टाफ को, जो स्पॉन्सर है उनको प्राउड फील कराना, ऑफ कोर्स इट्स लाइक ये मतलब मेरा ही काम है, और मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है कि मैंने उस चीज को डिलीवर किया।
0: एशियन गेम्स 2026 में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय कबड्डी टीम के सदस्य अयान लोबचप का झज्जर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। चारों तरफ उत्सव का माहौल देखने को मिला। परिजनों और गांव वालों ने मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी। इस मौके पर अयान लोहचब ने कहा कि एशियन गेम्स में हमारी टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और आगे भी हमारी टीम अच्छा प्रदर्शन करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
4: तो देखिए, खिलाड़ी भारत के लिए सोना ला रहे हैं, आप लोग भी सोना खरीद सकते हैं। वैसे सोना सस्ता हो गया,
5: सोना सस्ता,
6: खबर तो बहुत अच्छी आई है।
5: ये तो गुड न्यूज़ है यार, लड़कियों के लिए स्पेशली गुड न्यूज़ है।
6: वो भी देखिए, दिवाली धनतेरस से पहले
7: सुबह ही ना घर में डिस्कशन चल रहा था कि यार इतना महंगा हो गया है, क्या ले। एक टाइम था कि इंसान ले लेता था, लेकिन अब ना सभी के लिए, इनफैक्ट ये नहीं है कि मिडिल मैन के लिए इतना महंगा हो गया, सभी को बहुत महंगा लग रहा था।
4: नहीं, लेकिन अब और नीचे आया है गोल्ड, काफी नीचे आ गया।
5: एक और चीज है कि जिनकी शादी अभी तक नहीं हुई है, वो इन्वेस्टमेंट के तौर पे उनके घर वाले तो कहेंगे ना कि सोना खरीद लेते हैं।
7: मुझे बताया, मुझे
4: सब लड़कियों को गोल्ड डायमंड बहुत पसंद होता है, इसलिए हम सिर्फ शादी तक सीमित नहीं रहते, वो जो लालच और इच्छाएं होती है ना, वो हमेशा रहती
5: नहीं। और सही है ना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है,
6: ये इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा तरीका है।
8: एज के बाद ऐसा फील होता है कि जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी पे हम पैसे इन्वेस्ट कर रहे थे ना, वो ना करें। समय के साथ, मैच्योरिटी के साथ ये समझ आ जाता है कि सोना कितना सोना है।
7: मुझे तो हमेशा से ही गोल्ड डायमंड असली वाला ही अच्छा लगता है।
4: नहीं, लेकिन आजकल अगर आपको सस्ती ज्वेलरी लेनी, 14 कैरेट में भी बहुत सारी अच्छी
6: ज्वेलरी कई, मुझे लगता है कि ब्रांड्स ने ऑलरेडी निकाल दी है, ऑफिस वेयर्स कई निकाल दिए, जैसे कि हम जैसे ऑफिस गोअर्स हैं, उनके लिए छोटी लाइट वेट ज्वेलरी कम कीमत में।
4: बिल्कुल, तो चलिए हम आपको सराफा बाजार की सैर भी करा देते हैं। सोने चांदी की कीमतों में फिलहाल कमी देखी जा रही है, और त्योहारी सीजन से ठीक पहले ये गुड न्यूज आई है।
8: तो देखिए, दिवाली आने वाली है, ऐसे में एक खबर जो है गुड न्यूज से कम नहीं है। सोने के भाव में सितंबर के दौरान लगातार कमजोरी जो है वो देखी जा रही है। सितंबर की शुरुआत में 24 कैरेट सोने का भाव 15,826 प्रति ग्राम था, जबकि 30 सितंबर को ये करीब 14,895 रुपए प्रति ग्राम हो गया है।

0: एक तरफ जहां एशियन गेम्स के मैदान में एक से बढ़कर एक खुशखबरी आ रही है और भारत के खिलाड़ी देश की झोली में एक के बाद एक गोल्ड मेडल बरसा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सराफा बाजार से भी आम जनता के लिए गुड न्यूज सामने आई है। देश में सोने की कीमतों में पिछले कुछ दिनों में गिरावट आई है। हालांकि भले ही हल्का उछाल देखा गया हो, लेकिन सितंबर के आखिरी दिन भारतीय बाजार में सोने की चमक फीकी रही। त्योहारी सीजन से ठीक पहले घरेलू बाजार में सोने के भाव गिरना एक शुभ संकेत माना जा सकता है। दामों में आई इस लगातार गिरावट के बाद अब 24 कैरेट वाला 10 ग्राम शुद्ध सोना दिल्ली से लेकर पटना और चेन्नई तक 1,48,000 के आसपास है, जबकि 22 कैरेट वाला सोना 1,47,000 के आसपास है। चांदी की अगर बात करें तो 1 किलो चांदी 2,27,000 के भाव में बिक रही है।
1: रेट डाउन हुआ है और बहुत लोगों के, जैसे अभी शादी ब्याह आने वाला है, उनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है रेट डाउन आया है। वो बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे खरीदारी की, तो अब ये उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सर, सोने की कीमतें कम होना हमारे व्यवसाय के लिए पॉजिटिव है, पर कैसा होता है ना, एक साथ में अगर कीमतें गिरती है तो एक बार कस्टमर वेट एंड वॉच में आ जाता है कि और कितनी गिरेगी और कुछ ज़्यादा मंदी तो नहीं है। पर एक बार स्टेबल होके जब वो थोड़ा सा ऊपर जाने लगता है ना, तब कस्टमर मन बनाता है, नहीं चलो अब ठीक है, अब मैं इसकी खरीदारी करता हूँ।
0: क्योंकि आने वाले दिनों में नवरात्रि और दिवाली जैसे बड़े त्योहार हैं, साथ ही शादी ब्याह का सीजन भी शुरू होने वाला है, ऐसे में सोने की कीमतों में आ रही ये सुस्ती आम खरीदारों के चेहरों पर मुस्कान ला रही है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय संकेत ऐसे ही रहे तो खरीदारी का ये अच्छा मौका साबित हो सकता है। खैर, एशियन गेम्स में भारतीय के सिर सज रहा सोने का ताज हो या फिर सराफा बाजार में जेब को राहत देता सोने का भाव, देशवासियों के लिए ये गोल्डन टाइम खुशियों की सौगात लेकर आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: चलिए देखिए, सोने की बात हो गई और दीपावली की भी बात हो रही है, तो हम आपको बता दें कि अयोध्या में भी हर बार की तरह इस बार भी दीपावली को लेकर, क्योंकि वहां दीपोत्सव होता है हम सभी जानते हैं, और हर बार एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है अपने आप में, अद्भुत होता है देखना, नहीं?
3: हाँ, हम तो इनफैक्ट हर बार जीएनटी पर दिखाते भी हैं, कोई ना कोई हमारी टीम से पहुंचा होता है, हम तो काउंट कर रहे होते हैं कब सारे दिए जलेंगे और रिकॉर्ड बनेगा, बट वो दृश्य बहुत सुंदर होता है।
2: बिल्कुल, आप लोगों के एक्सपीरियंसेस बताइए।
4: मतलब मुझे जीएनटी के माध्यम से पता चला दीपोत्सव के बारे में कि इतने ज्यादा लोग वहां पर आते हैं और लोग उस त्योहार को इतनी ज्यादा धूमधाम से मनाते हैं, ये पहले मुझे मालूम नहीं था, और बहुत ही मंत्रमुग्ध कर देने वाली तस्वीरें जो है वो होती है,
3: और कई दिन पहले तैयारियां शुरू हो जाती हैं, और इस बार तो और एक नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी हो रही है।
2: बिल्कुल, आपको बता दें सरयू के तट पर ये सब कुछ हो रहा होता है और वहां पर हर स्टेट से वॉलंटियर आते हैं, क्योंकि एक बार जब मेरा जाना हुआ था तो मैंने वहां पर ये देखा था कि आप जब जाएंगे ना तो अलग अलग सेक्शंस दे दिए जाते हैं, क्योंकि कोई एक इंसान देख नहीं सकता या फिर कुछ कोई एक ग्रुप नहीं देख सकता, तो एक पूरी एक एक पैड़ी जो होती है, एक पूरा इलाका दे दिया जाता है कुछ डेजिग्नेटेड लोगों को, और वो अपने अपने स्टेट से वो उस एरिया को वो देखते हैं जिनके अंडर में 1,000 दिए होते हैं, 5,000 दिए होते हैं, वो इस तरह से देखते हैं कि कोई तेल ना घट जाए, बत्ती ना बुझ जाए, या फिर वो हमेशा जलता रहे। फिर एक ऐसा टाइम आता है जब आप देखेंगे दोनों ही तट पर, सरयू के दोनों ही घाट पर आप देखेंगे एक साथ दिए जलते हैं, और वो नजारा अद्भुत होता है, और पूरी रामायण की ड्रोन से पूरी छवि आकाश में देखने को मिलती है, तो कुछ ऐसा ही इस बार भी देखने को मिल रहा है। दीपिका बताइए आप।
5: बिल्कुल, देखिए अगर आप भी इस बार दीपावली के दौरान अयोध्या जाने का प्लान बना रहे हैं और खासतौर से दीपोत्सव में आपको शामिल होना है, तो ये एक अच्छी खबर आपके लिए है, क्योंकि इस बार रामनगरी में दीपोत्सव में अलग ही माहौल नजर आने वाला है।
2: बिल्कुल, क्या अलग माहौल होगा आपको बता दें, दरअसल देसी विदेशी पर्यटकों के लिए इस बार उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने एक खास योजना बनाई है, जिसके तहत दीपोत्सव अयोध्या टूर पैकेज तैयार किया गया है। इस टूर पैकेज में 6 से 8 नवंबर तक श्रद्धालुओं को श्री राम जन्मभूमि मंदिर, हनुमानगढ़ी जैसे कई ऐतिहासिक जगहों के दर्शन कराते हुए अयोध्या के आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व से भी रूबरू कराया जाएगा।

0: हर साल सरयू के पावन तट पर बसी अयोध्या जब दीपों की रोशनी से जगमगाती है तो मानो आस्था, संस्कृति और परंपरा का अद्भुत संगम साकार हो उठता है। दीपोत्सव के अवसर पर लाखों दीयों की लौ अयोध्या की आध्यात्मिक आभा को और भी भव्य बना देती है। जैसे जैसे अंधकार मिटता है और दीयों की कतारों से रोशनी बिखरती है तो पूरी अवध नगरी ही एक दिव्य और मनमोहक दुनिया में बदल जाती है। लेकिन ऐसा नहीं कि रामनगरी में इस बार के इस भव्य दीपोत्सव समारोह की तैयारियां केवल दीपों की जगमगाहट तक ही सीमित रहेगी। दरअसल दीपोत्सव के वक्त यहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी कुछ विशेष किया जा रहा है। UPSTDC ने श्रद्धालुओं के लिए एक खास दीपोत्सव अयोध्या टूर पैकेज लॉन्च किया है। ये पैकेज महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और दूसरे राज्यों के श्रद्धालुओं के लिए है। इस टूर पैकेज के तहत श्रद्धालु राम मंदिर, हनुमानगढ़ी, कनक भवन और नागेश्वर नाथ मंदिर के दर्शन करेंगे। दीपोत्सव अयोध्या टूर पैकेज के साथ ही दीपोत्सव की तैयारियों में इस बार 30 लाख दीयों को जगमगाने का भी फैसला लिया गया है। यानी इस दौरान स्थानीय लोगों के साथ देसी विदेशी श्रद्धालुओं की भी जिम्मेदारी है कि वो दीपों की रोशनी के इस त्योहार में शामिल होकर पर्व की सुंदरता और उसकी आभा में चार चांद लगाएं। बता दें कि राम की पैड़ी को 30 लाख दीयों से जगमगाया जाएगा। इसके अलावा शानदार लेजर शो और 2100 ड्रोन शो आयोजित करने की भी योजना है। सरयू नदी के तट पर 2100 वैदिक पुजारी महाआरती करेंगे। वहीं दीप प्रज्वलन में 240 से ज्यादा मंदिर और मठ हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही रामकथा पार्क से लेकर राम की पैड़ी तक लगभग एक दर्जन जगहों पर खास कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जाहिर है अयोध्या में दीपोत्सव केवल दिया जलाने का उत्सव ही नहीं बल्कि भगवान राम के आदर्शों, मर्यादा और अवध नगरी की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को नमन करने का अवसर है। यकीनन इस साल 30 लाख दीयों की रोशनी, ड्रोन और लेजर शो और श्रद्धालुओं के लिए दीपोत्सव अयोध्या टूर पैकेज के साथ होने वाले कई और कार्यक्रम दीपोत्सव की रंगत को और बढ़ाएंगे। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: अब देखिए अयोध्या की बात हो रही है तो अयोध्या में राम मंदिर की सुरक्षा को और मजबूत करने की प्लानिंग की जा रही है। रामलला के दरबार की सुरक्षा में पहले से कई सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद हैं लेकिन अब राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG की सक्रिय भूमिका भी काफी हद तक बढ़ाई जा रही है।
2: बिल्कुल, राम मंदिर से लेकर हनुमानगढ़ी जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों तक NSG की टीम सुरक्षा व्यवस्था का बारीकी से आकलन कर रही है। कहीं मॉक ड्रिल के जरिए इमरजेंसी रिस्पॉन्स को परखा जा रहा है तो कहीं एंटी एग्जिट और संवेदनशील जगहों की सुरक्षा की समीक्षा हो रही है। यानी अयोध्या में किसी भी संभावित चुनौती से निपटने के लिए सुरक्षा का पूरा सिस्टम मुस्तैद है।
3: रामनगरी अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था को नए स्तर पर ले जाने की तैयारी शुरू हो गई है। राम मंदिर और हनुमानगढ़ी समेत प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के लिए पहले से कई एजेंसियां तैनात हैं। अब इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG की भूमिका भी बढ़ाई जा रही है। NSG की टीम लगातार अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था का आकलन कर नए सुरक्षा प्लान तैयार कर रही है। इसी के तहत मंदिर परिसर में NSG के कमांडो पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पहले ये तय कार्यक्रम के मुताबिक 24 सितंबर से 29 सितंबर तक राम मंदिर में सुरक्षा से जुड़ी एक एजेंसी के साथ बैठक और समीक्षा का दौर चला। NSG अधिकारियों ने सुरक्षा में तैनात वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री श्री राम मंदिर परिसर में 3 दिनों तक मॉक ड्रिल भी चली। इस दौरान एनएसजी कमांडो मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था का बारीकी से जायजा लेते नजर आए। इस अभ्यास के जरिए आपात स्थिति में सुरक्षा बलों की प्रतिक्रिया, आपसी समन्वय और सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों को परखा गया।
4: राम जन्मभूमि के अंदर एनएसजी कमांडेंट फिर से तैनात हैं और अभी जस्ट इन्होंने एंट्री की है यहाँ पे और पीएफसी कार्यालय के बाद सीधा ये राम जन्मभूमि परिसर के अंदर एंट्री की है। और यहाँ जब से एनएसजी हब बनने की बात हुई तब से लगातार आज दूसरा दिन है जो राम जन्मभूमि में आज एनएसजी कमांडेंट लगातार निरीक्षण करने पहुंची है।
3: सुरक्षा एजेंसियों ने मंदिर परिसर की मौजूदा व्यवस्था की समीक्षा के साथ साथ संभावित आपात परिस्थितियों से निपटने की तैयारियों का भी आकलन किया। मंदिर के प्रवेश और निकास मार्गों समेत संवेदनशील स्थानों की सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा की गई। हनुमानगढ़ी मंदिर में एनएसजी टीम ने कनक भवन समेत अन्य प्रमुख स्थलों का निरीक्षण किया। मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था, प्रवेश निकास, भीड़ प्रबंधन और संवेदनशील बिंदुओं को परखा गया।
4: अयोध्या रामनगरी की सुरक्षा और भी मजबूत होती दिख रही है। जब से यहाँ एनएसजी हब बनने की बात हुई है तब से अयोध्या में लगातार 3 दिन से निरीक्षण किया जा रहा है। एनएसजी कमांडेंट यहाँ पे लगातार घूम रहे हैं। राम मंदिर हो चाहे हनुमानगढ़ी हो, तो आज हनुमानगढ़ी परिसर में पूरी डायरेक्शन दी गई है, बाकायदे कंट्रोल रूम पूरे चेक किए गए हैं। तो यहाँ लगातार जो है अयोध्या की रामनगरी की सुरक्षा को लेकर खास इंतजाम किए जा रहे हैं। ये हनुमानगढ़ी परिसर है और हनुमानगढ़ी में लगातार यहाँ पे आज तीसरा दिन है, 2 दिन लगातार राम जन्मभूमि में निरीक्षण हुआ है और आज तीसरा दिन है जो हनुमानगढ़ी का निरीक्षण किया जा रहा है।
3: खबरों के मुताबिक अयोध्या में एनएसजी का हब बनाए जाने की प्रक्रिया भी चल रही है। ऐसे में राम मंदिर की सुरक्षा को लेकर एनएसजी की सक्रिय भूमिका को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राम मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इसे देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था में तकनीक निगरानी और सुरक्षा बलों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया जा रहा है। एनएसजी कमांडो की मौजूदगी और लगातार मॉक ड्रिल के जरिए सुरक्षा तंत्र को और अधिक मजबूत बनाने की कवायद की जा रही है। अयोध्या से मयंक शुक्ला, गुड न्यूज टुडे।
2: तो देखिए, भारत की जो खूबसूरती है ना वो ये है कि यहाँ पर एक त्योहार खत्म होता नहीं कि दूसरा शुरू हो जाता है। अब नवरात्रों का मुझे बहुत इंतजार है क्योंकि कोलकाता में तो दुर्गा पूजा की जो आहट है वो सुनाई देने लगी है। लेकिन मुझे लगता है कि मिनी कोलकाता अगर आपको देखना है ना दिल्ली में तो सीआर पार्क, मैं तो हर साल जाती हूँ। आप लोगों का कैसा अनुभव?
5: हमारे लोग भी शॉपिंग करने पीछे नहीं हटते, ये सारे पहुंचे होते हैं एक एक करके,
6: लाती नजर है ना। इस बार मैंने एक भी साड़ी नहीं खरीदी है।
5: मैं तभी तो कह रही हूँ जाओ, तो अभी तो पूजा की शुरुआत भी नहीं हुई है,
6: पहली शॉपिंग होती है ना, आपको तैयारी करनी होती है। लेकिन ये है कि हाँ,
5: आई गॉट यू,
6: कोलकाता से लेकर सीआर पार्क तक अगर आपको वाकई दुर्गा पूजा फील करना है,
5: रंग दे,
6: तो मैं सच बता रही हूँ कि अगर आप कोलकाता नहीं जा पा रहे तो आप सीआर पार्क जाइए। और वो जो शुरुआत होती है ना षष्ठी से लेकर फिर उसके बाद सिंदूर खेला तक हर दिन, और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताती हूँ, माहौल इतना अच्छा, इतना सिक्योर होता है। स्पेशली दिल्ली की भी मैं बात बता रही हूँ, रात के वक्त भी आप कभी भी चले जाइए, बहुत यंगस्टर्स वहां पर होते हैं लेकिन वो बहुत अच्छा सेफ सिक्योर माहौल होता है पूरा, आप जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। सिंदूर खेला तो मुझे भी याद है, साल 2013 में कवर किया था मैंने और बड़ा ही अच्छा अनुभव था वहां पर। सभी महिलाएं
5: लाल पाट साड़ी पहनी थी?
6: हाँ बिल्कुल वही पहनी थी मैंने, आज भी मुझे याद है। और अब देखिए फिर ये समय आने वाला है।
5: मैं एक बात मैं आगे बढ़ू तो मैं ईशा गुप्ता को बता दूं, वहाँ साड़ियों के अलावा ना खाने पीने का बहुत अच्छा।
7: एग्जैक्टली मैं वही बोलने वाली थी, बहुत ही टेस्टी खाना मिलता है वहाँ पे और हर तरीके का खाना मिलता है।
5: तो इस बार मुझे लगता है लड़कियों को पहुंच जाना चाहिए
8: सीआर पार्क। और वैसे आपको बता दें नोएडा में कई सेक्टर्स में जहाँ पर बंगाली कम्युनिटी रहती है, 27 हो गया सेक्टर, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े पंडाल बनते हैं, कई बॉलीवुड सिंगर्स वहाँ पे आते हैं, उनके प्रोग्राम्स वैसे होते हैं, श्रेया घोषाल से लेके तमाम लोग आते हैं। और खाने पीने जहाँ बंगाली है ऑफ कोर्स वहाँ पे खाने पीने
5: कोई कमी नहीं,
8: चटपटी चीजें, वेज नॉन वेज जो बोलिए सब मिलेगा।
6: तो आपको साड़ी खरीदनी है या फिर आपको दुर्गा पूजा देखनी है या फिर खाने के,
8: वहाँ पर बंगाली कम्युनिटी रहती है, 27 हो गया सेक्टर, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े पंडाल बनते हैं, कई बॉलीवुड सिंगर्स वहाँ पे आते हैं, उनके प्रोग्राम्स वैसे होते हैं, श्रेया घोषाल से लेके तमाम लोग आते हैं। हैं और खाने पीने जहाँ बंगाली है ऑफ कोर्स वहाँ पे खाने पीने
9: कोई कमी नहीं, चटपटी
8: चीजें वेज नॉन वेज जो बोलिए सब मिलेगा।
5: तो आपको साड़ी खरीदनी है या फिर आपको दुर्गा पूजा देखनी है या फिर खाने के व्यंजन वो आपको ट्राई करना है, उसके लिए आपको दिल्ली, नोएडा या फिर आप जा सकते हैं कोलकाता।
9: तो कलाकार जुट चुके हैं उनकी।
3: कहीं मूर्ति को आकार दिया जा रहा है तो कहीं माँ दुर्गा की प्रतिमा पर कलाकार रंगों की आखिरी परत चढ़ा रहे हैं, कहीं चेहरे के भाव उकेरे जा रहे हैं तो कहीं प्रतिमा को अंतिम रूप देने की जद्दोजहद चल रही है।
10: अभी जो AI से मैं रोबोटिक दुर्गा किया है उत्तर दिनाजपुर कालियागंज में, वो मारात्मक वायरल हो गया, ठीक है। उसका जो प्रतिमा है वो रोबोटिक है, उसका जो AI दुर्गा और उसका जो फेस है वो माँ का जो फेस वही फेस मैंने रखा है, लेकिन AI ने किया।
3: दुर्गा पूजा में अब बस कुछ ही दिन बाकी हैं और कोलकाता के कुमारतुली इलाके में कलाकार दिन रात प्रतिमाओं को सजाने सवारने में जुटे हैं।
11: कलकत्ता का नहीं, वो सारा वर्ल्ड में फेमस है ये दुर्गा पूजा, लेकिन अच्छा चल रहा है, कोई कमती नहीं चल रहा, अच्छा भी चल रहा है। मूर्ति उर्ति सब थोड़ा थोड़ा बिक गया, ऐसा नहीं टेंशन मत करना, और ग्राहक आते हैं ग्राहक जाते हैं ऐसा होता है।
3: बंगाल में दुर्गा पूजा सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि आस्था का सबसे बड़ा उत्सव है। इस महापर्व का इंतजार सभी पूरा साल करते हैं।
11: दो दिन तीन दिन से थोड़ा हम लोग का काज और फास्ट हो गया, जैसा मध्य चल रहा है ना मिडिल में उससे फास्ट चल रहा है अभी काज।
3: पूरे बंगाल में अलग अलग शहरों में भव्य पंडाल सजाए जाते हैं जहां इन तैयार हो रही दुर्गा प्रतिमाओं की स्थापना होगी। ऐसे में कुमारटुली के कलाकारों पर भी समय पर माँ की प्रतिमा तैयार कर पंडालों तक पहुंचाने की एक बड़ी जिम्मेदारी है।
11: एक एक स्टूडियो में कोई 20 बना रहा है, कोई 15 बना रहा है, कोई 10 बना रहा है, ऐसा करके होता, कोई 50 भी बनाया है, ऐसा नहीं है जो 10-20 ना 50 भी बना रहा ऐसा होता है, ये तो गुण नहीं पाएगा। तो सारा कलकत्ता में बाहर में सब हम लोग की मूर्ति भेज रहा है।
3: यहाँ बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी देवियों की मूर्तियाँ तैयार की जा रही हैं और उन्हें सजाया भी जा रहा है। इस काम में महिलाएं भी साथ निभा रही हैं। इन कलाकारों के हाथों से आकार पाई दुर्गा प्रतिमाएं अब बाजारों की रौनक बढ़ाएंगी। जैसे जैसे मूर्तियों की डिमांड बढ़ती जा रही है कीमत में भी उछाल देखने को मिल रहा है।
12: लगभग 10 साल से तो हम लोग यहीं से ले जा रहे हैं,
13: यहीं से ले जा रहे हैं।
12: इसके आगे हम लोग लेते थे बागमारी से, उसके बाद हम लोग यहाँ 10 साल से ले जा रहे हैं।
13: क्यों, कुमारटुली में ऐसा क्या खास है?
12: यहाँ पर हम जो चाहते वही मिल जाता है, वहाँ पर बागमारी में ये फैसिलिटी नहीं था, यहाँ पर हम जैसा बोलते हैं ये लोग वैसे ही बना देते हैं। ये बहुत पुराना, ये प्राचीन काल से चला हुआ रहा है, बागमारी का जो है और आदर्श जगह जो सब नया बना हुआ है, ये ब्रिटिश जमाना से चला हुआ आ रहा है और अभी तक लोग आप देख अगर आप यहाँ सर्वे कीजिएगा देखिएगा सबसे ज्यादा मूर्ति यहीं पर।
3: प्रतिमाओं को देखने और खरीदने के लिए लोगों की भीड़ भी उमड़ रही है। बाजारों में बढ़ती चहल पहल से साफ है कि दुर्गा पूजा का उत्साह अब लोगों के बीच नजर आने लगा है।
14: सुना बहुत था मैम लोग से, बहुत सुना था, तो मुझे बहुत ही मैं उत्साहित थी ये देखने के लिए कि क्या कैसे बनता है, वो मुझे बहुत जानना था। तो इतना सुंदर है कि मतलब उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते हम, तो बहुत ही सुंदर है, अद्भुत है ये नज़ारा।
3: आलम ये है कि खरीदार ही नहीं बल्कि पर्यटक भी इस इलाके की गलियों की रौनक देखने पहुँच रहे हैं। यहाँ पहुँचने वाले हर शख्स का मूर्तियों को आकार लेते देखने का अपना अलग अनुभव है। किसी के लिए कलाकारों की मेहनत को करीब से देखने का मौका है तो किसी के लिए दुर्गा पूजा की तैयारियों को महसूस करने का अनुभव। कुमारटुली की इन गलियों में कलाकारों की मेहनत अब अपनी अंतिम मंजिल की ओर बढ़ रही है। मिट्टी से आकार ले चुकी माँ दुर्गा की प्रतिमाएं जल्दी ही पंडालों की शोभा बढ़ाएंगी। इनके साथ ही बंगाल में भक्ति, उत्सव और उमंग का रंग भी पूरी तरह से चढ़ जाएगा। कोलकाता से राही हल्दर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे बर्फीले पहाड़ों में रेस्क्यू अभियान।
15: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुन।
1: ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, आप देख रहे हैं चाय पे चर्चा। इससे पहले आगे बढ़े नजर इस वक्त के हेडलाइंस पर।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
3: एशियन गेम्स में भारत की चमक बरकरार, 87 किलोग्राम ग्रीको रोमन रेसलिंग इवेंट में सुनील कुमार ने जीता ब्रॉन्ज। आज तीरंदाजी में 3 और

0: शूटिंग में आया एक गोल्ड, भारत के खाते में कुल 10 गोल्ड। एशियन गेम्स गोल्ड मेडल जीतने वाले कबड्डी स्टार सुमित सांगवान का भव्य स्वागत, करेंसी नोट और फूल मालाओं से हुआ वेलकम। हिमाचल के मंडी में थलौट में बदलेगा फोर लेन का स्वरूप, 200 करोड़ से बनेगी राज्य की पहली 500 मीटर लंबी नई बॉक्स टनल। जोधपुर में तरंग शक्ति युद्धाभ्यास में F-16 और राफेल समेत 8 देशों के विमानों का शक्ति प्रदर्शन, 12 अक्टूबर तक चलेगा युद्धाभ्यास। कोलकाता में शक्ति उपासना की तैयारियां तेज, मां दुर्गा की प्रतिमा को अंतिम रूप देने में जुटे कार्यकर।
1: उत्तराखंड में मौसम खराब है और ऊंचाई वाले तमाम इलाकों में बर्फबारी हो रही है। अलग अलग ट्रैकिंग और पर्वतारोहण इलाकों में फंसे ट्रैकर्स और पोर्टर्स की सुरक्षित वापसी के लिए प्रशासन ने रेस्क्यू अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत 27 और लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया।
2: आपको बता दें कि इससे पहले कालिंदी बेस और ऑर्डन कोल बेस क्षेत्र से 40 सदस्यों को सुरक्षित निकाला गया था। 2 दिन चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना, SDRF, पुलिस, वन विभाग, आपदा प्रबंधन और नागरिक उड्डयन विभाग की टीमों ने अहम भूमिका निभाई।
3: ये तस्वीरें हैं उत्तराखंड के उन ऊंचे पहाड़ों की, जहां इस वक्त बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। हर तरफ बर्फ से लदे पहाड़ और इन पहाड़ों के बीच ट्रैकर्स के रेस्क्यू के लिए उड़ता हेलीकॉप्टर, जो 27 जिंदगियों के लिए वरदान साबित हुआ। ये रेस्क्यू ऑपरेशन बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि रास्ते बर्फ से ढक चुके थे, मौसम लगातार चुनौती दे रहा था। ऐसे में जिला प्रशासन ने हेलीकॉप्टर्स के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और 27 लोगों को सुरक्षित हर्षिल पहुंचाया।
4: पर्वतारोही सतोपंत एक्सपेडिशन के पे जा रहे थे और हम वासुकी ताल पे हमारा बेस कैंप था, तब हमें 2 दिन की स्नोफॉल मिली और हम वहाँ ही अटक गए। 5 फीट के करीब स्नोफॉल गिरी थी वहाँ, और इस सभी के दौरान हमें जो प्रशासन की तरफ से मदद मिली है, बहुत बहुत बहुत अभिनंदन हम उनसे अपना प्रकट करते हैं। ADM मैम मुक्ता मिश्रा मैम ने हमें बहुत सपोर्ट किया, SDRF भी यहाँ पे मौजूद था, संजय सर यहाँ थे, और बहुत इम्पोर्टेंटली कर्नल सपाल यहाँ पे थे कुमाऊं रेजिमेंट के, जिन्होंने आर्मी का हमें हेलीपैड यूज़ करने का मौका दिया। बहुत ही अच्छा रहा हमारा रेस्क्यू।
3: इससे पहले सोमवार को कालिंदी बेस और ऑडिन कोल बेस क्षेत्र से 40 लोगों को सुरक्षित निकाला गया था। इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी जिला प्रशासन के स्तर पर की गई। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी प्रशांत आर्य कंट्रोल रूम से रेस्क्यू अभियान पर लगातार नजर बनाए थे, जबकि अपर ADM मुक्ता मिश्रा हर्षिल में मौजूद रहकर रेस्क्यू से जुड़ी व्यवस्थाओं की निगरानी कर रही थी।
5: काशी में हाई एल्टीट्यूड के एरियाज में एक्सपेडिशन और ट्रैकिंग ग्रुप्स जाते रहते हैं, अभी भी गए हुए थे सितंबर मंथ में ड्यू परमिशन लेके, लेकिन मौसम अचानक खराब होने के कारण वो दल फंस गए थे। इसलिए शासन के निर्देशों के क्रम में ट्रैकिंग एजेंसीज की रिक्वेस्ट पे हम एयर एविकेशन मिशन चला रहे हैं। इसमें कल 28 सितंबर को 40 लोगों को रेस्क्यू किया गया ऑर्डिंस कॉल और कालिंदी पास से। हर्षिल हेलीपैड में हमारी सभी स्टेक होल्डर, सभी डिपार्टमेंट, सेकेंड कुमाऊं रेजिमेंट, SDRF, सप्लाई डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम अवेलेबल है। जो सुरक्षित लोग आ रहे हैं उनके स्वास्थ्य परीक्षण और खान पान की व्यवस्था की गई है।
3: 2 दिन तक चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना, NDRF, पुलिस, वन विभाग, आपदा प्रबंधन और नागरिक उड्डयन विभाग की टीमों ने अहम भूमिका निभाई, जिनकी बदौलत इन ट्रैकर्स और पोर्टर्स को नया जीवन दान मिला है। उत्तरकाशी से ओंकार बहुड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: मुश्किल मौसम केदारनाथ धाम के लिए तीर्थयात्रियों के लिए भी चुनौतियों लेकर आया है, लेकिन आस्था के जज्बे से भरे श्रद्धालुओं के जोश के सामने सारी चुनौतियों ने घुटने टेक दिए हैं। 3 दिनों के ब्रेक के बाद केदारनाथ धाम की यात्रा ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है।
6: बिल्कुल, आपको बता दें कि यात्रा मार्ग पर SDRF के जवान श्रद्धालुओं के सबसे बड़े मददगार साबित हो रहे हैं। लैंडस्लाइड की आशंका वाले इलाकों से SDRF के जवानों ने करीब 9,000 श्रद्धालुओं को अपनी निगरानी में आगे बढ़ने का रास्ता दिया। इन जवानों की बदौलत शिव भक्तों की यात्रा पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रही है।
7: दिलों में बुलंद हौसले और जुबा पर बाबा केदार के जयकारे। मुश्किल हालात में भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं भोलेनाथ के भक्तों के कदम। केदारनाथ धाम की यात्रा में इन दिनों श्रद्धालुओं के जज्बे के आगे कुदरत की चुनौतियों ने घुटने टेक दिए। 3 दिनों तक यात्रा पर ब्रेक लगने के बाद कल जब तीर्थ यात्रा दोबारा शुरू हुई तो शिव भक्त दुगने जोश के साथ आगे बढ़ने लगे। यात्रा मार्ग पर भोलेनाथ के भक्तों की इस यात्रा को आसान बनाने का बीड़ा SDRF के जवानों ने उठाया। केदारनाथ यात्रा मार्ग में चिरबासा लैंडस्लाइड जोन सबसे संवेदनशील हिस्सा माना जाता है। इस लैंडस्लाइड जोन के करीब SDRF के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात थे। SDRF के जवानों ने यहां श्रद्धालुओं को छोटे छोटे जत्थे में रास्ता पार कराया। एहतियात के तौर पर एक जत्थे के रास्ता पार करने के बाद ही दूसरे जत्थे को आगे बढ़ने की इजाजत दी गई। इस अभियान के तहत SDRF के जवानों ने करीब 9,000 तीर्थ यात्रियों को चिरबासा जोन को पार कराया। सिर्फ चिरबासा जोन ही नहीं, केदारनाथ यात्रा के मार्ग में जहां भी चढ़ाई में चुनौतियां हैं वहां SDRF के जवान मुस्तैदी से तैनात हैं। पैदल यात्रियों के साथ घोड़े पर सवार तीर्थ यात्रियों को भी आगे बढ़ने की राह दिखाई जा रही है। SDRF के ये जवान केदारनाथ धाम की यात्रा में श्रद्धालुओं के सबसे बड़े मददगार बनकर सामने आए हैं। 3 दिनों तक यात्रा बंद रहने के दौरान सोनप्रयाग में मौजूद श्रद्धालुओं की यात्रा पर आशंका के बादल मंडराने लगे थे, लेकिन SDRF के इन जवानों की बदौलत ये यात्रा दोबारा शुरू हो सकी। इन जवानों की कोशिश रंग भी लाने लगी है। पैदल यात्रा शुरू होने के बाद 5,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं को बाबा केदार के धाम तक पहुंचने का सौभाग्य मिला। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल, गुड न्यूज टुडे।
1: चलिए इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आसमान में वायु वीरों की जांबाजी की तस्वीरें आपको दिखाएंगे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: किस तरह का आहार आपके विचारों पर असर डालता है, आहार में परिवर्तन करके विचारों को कैसे बदल सकते हैं, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: भारतीय वायुसेना जोधपुर एयरबेस पर पराक्रम का प्रदर्शन कर रही है। यहां तरंग शक्ति युद्धाभ्यास का दूसरा एडिशन चल रहा है। इस युद्धाभ्यास में भारत समेत 8 देशों की वायुसेना के 3000 से ज्यादा जवान हिस्सा ले रहे हैं।
3: और खास बात यह है कि इस साल के तरंग शक्ति अभ्यास में पहली बार अमेरिका के पांचवी पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 हिस्सा ले रहे हैं। भारत

की सरजमी पर हुए किसी भी युद्धाभ्यास में ये पहली बार होगा जब अमेरिका का F-35 फाइटर जेट शामिल हुआ है। जोधपुर एयरबेस पर 26 सितंबर से शुरू हुआ ये युद्धाभ्यास 12 अक्टूबर तक चलेगा।

राजस्थान का आसमान इन दिनों शक्तिशाली लड़ाकू विमानों की गर्जना से गूंज रहा है। जोधपुर एयरबेस पर हलचल बढ़ी हुई है। भारत की अगुवाई में दुनिया का शक्तिशाली देशों की वायुसेना अपने अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों के साथ पराक्रम का प्रदर्शन कर रही है। तरंग शक्ति अभ्यास 2.0 को शुरू हुए 6 दिन बीत चुके हैं। हर गुजरते दिन के साथ कड़ी होती जा रही है सैन्य एक्सरसाइज। दुश्मन के हवाई हमलों को रोकने और डॉग फाइट से लेकर एयरलिफ्ट और टैक्टिकल ड्रॉप्स को अंजाम दिया जा रहा है। भारतीय और विदेशी फाइटर जेट्स आसमान में उड़ान भरते हुए टैंकर विमानों से ईंधन रिफिल कर रहे हैं ताकि उनके स्ट्राइक रेंज को कई गुना बढ़ाया जा सके। इस युद्धाभ्यास का खास आकर्षण है अमेरिकी एयरफोर्स का 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट F-35, जो भारत की सरजमी पर हो रहे युद्धाभ्यास में पहली बार शामिल हुआ है। तरंग शक्ति युद्धाभ्यास को इस साल का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास बताया जा रहा है। भारत समेत 7 मित्र देश अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, UAE, बांग्लादेश और श्रीलंका अपने लड़ाकू विमानों के साथ हिस्सा ले रहे हैं। 80 से ज्यादा अत्याधुनिक एयरक्राफ्ट अपनी ताकत की नुमाइश कर रहे हैं। 3,000 से ज्यादा जवान अपने कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं। तरंग शक्ति युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना की तरफ से तेजस, सुखोई 30 MKI, राफेल, मिराज 2000, जगुआर और मिग 29 जैसे लड़ाकू विमानों को उतारा गया है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना की एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल विमान, ट्रांसपोर्ट विमान और हवा में ही ईंधन भरने वाले एयर टू एयर रिफ्यूलिंग टैंकर भी शामिल किए गए हैं। अमेरिका के F-35 लाइटनिंग 2 स्टेल्थ फाइटर जेट पहली बार भारत में हो रहे किसी युद्धाभ्यास में शामिल हुआ है। अमेरिकी एयरफोर्स के 2 KC-135 हवा में ईंधन भरने वाले विमान भी अपनी क्षमता का प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। फ्रांस वायुसेना की ओर से 7 राफेल लड़ाकू विमान, 3 A-400 सैन्य ट्रांसपोर्ट विमान और 2 हवा में ईंधन भरने वाले विमान अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात वायुसेना ने इस युद्धाभ्यास में 6 F-16 लड़ाकू विमान और 1 सैन्य निगरानी विमान भेजा है। ऑस्ट्रेलिया की वायुसेना की ओर से 1 C-30J सैन्य ट्रांसपोर्ट विमान इस युद्धाभ्यास में शामिल हुआ है। जर्मनी की वायुसेना की ओर से 1 A-400M एटलस सैन्य ट्रांसपोर्ट विमान इस युद्धाभ्यास में हिस्सा ले रहा है। बांग्लादेश वायुसेना की 1 C-130J ट्रांसपोर्ट विमान और श्रीलंका के 1 किंग एयर 350 निगरानी विमान भी इस युद्धाभ्यास में अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर रहे हैं। युद्धाभ्यास के दौरान अलग अलग देशों के ये लड़ाकू विमान एक साथ उड़ान भरकर रणनीतिक तालमेल और हवाई युद्ध की बारीकियों को आपस में साझा कर रहे हैं। एयर क्रू और मिशन प्लानर्स के साथ बैठकर जटिल रणनीतियों को अंजाम दे रहे हैं ताकि जंग के मैदान में किसी भी हालात से निपटा जा सके और भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों के लिए एक कम्बाइंड एयर ऑपरेशन आर्किटेक्चर विकसित किया जा सके। तरंग शक्ति युद्धाभ्यास का ये दूसरा संस्करण है। 12 अक्टूबर तक ये एक्सरसाइज चलेगी। 2024 में पहली बार 2 चरणों में सुलूर और जोधपुर में इस युद्धाभ्यास को आयोजित किया गया था। तब अमेरिका के A-10 और F-16 जैसे विमान पहुंचे थे, लेकिन अब पहली बार अमेरिका का सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान F-35 अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। जाहिर है वैश्विक मंच पर भारत के मजबूत होते रक्षा संबंध के बुलंद तस्वीर की ये एक नई वानगी है। शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।

तो देखिए, भविष्य के हर चुनौतियों को भांपते हुए हिंदुस्तान अपनी तैयारियां पुख्ता रखना चाहता है और यही वजह है, यही कारण है कि लगातार युद्धाभ्यास के जरिए भारत अपनी ताकत को खुद पर रखता रहता है। इसी सिलसिले में भारत पाकिस्तान सीमा के करीब सेना ने हाईवे पर हेलीकॉप्टर लैंडिंग का अभ्यास किया। दंतौर के पास

0: नेशनल हाईवे 911 के एक हिस्से को अस्थायी तौर पर मिलिट्री रनवे में तब्दील कर दिया गया। इस दौरान आर्मी की एविएशन यूनिट ने हाईवे पर ही हेलीकॉप्टर लैंडिंग का अभ्यास किया।
1: और देखिए, इस दौरान सेना के रुद्र, ध्रुव और चेतक हेलीकॉप्टर्स ने पारंपरिक रनवे से अलग हाईवे पर टेक ऑफ और लैंडिंग की काबिलियत दिखाई। रेगिस्तान के इस इलाके में कई बार तेज हवाएं लैंडिंग के लिए नई चुनौतियां पेश करती है। इस अभ्यास के दौरान सेना के पायलट्स ने इन्हीं चुनौतियों का सामना करने का अभ्यास किया। पायलट्स ने ग्राउंड टीम के साथ बेहतरीन तालमेल के साथ सफल लैंडिंग को अंजाम दिया।
2: हमारे लिए वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि खबरें अभी जारी हैं।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: दिल्ली की यमुना का प्रदूषण अब सिर्फ नदी के पानी तक सीमित नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में यमुना किनारे उगाई जाने वाली सब्जियों में भारी धातुओं का चिंताजनक मात्रा सामने आई है, और सबसे ज्यादा चौंकाने वाला आंकड़ा पालक को लेकर है, जिसमें निकेल की मात्रा तय सीमा से 97 गुना ज्यादा है। वहीं प्याज में निकेल का स्तर 65 गुना तक ज्यादा पाया गया।
7: दिल्ली यूनिवर्सिटी के वनस्पति विज्ञान विभाग की स्टडी ने इन सब्जियों को लेकर खाद्य सुरक्षा पर सवाल खड़ा कर दिया है। इस स्टडी में यमुना किनारे के कृषि क्षेत्रों में उगाई जाने वाली कई सब्जियां और वहां की मिट्टी की जांच की गई, जिसमें सब्जियों में हेवी मेटल का स्तर काफी ज्यादा खतरनाक था। स्टडी के मुताबिक इसकी एक बड़ी वजह यमुना के आसपास खेती में प्रदूषित नदी के पानी और बिना ट्रीट किए गए पानी का इस्तेमाल भी है।
8: प्रोफेसर दीना बंधु साहू सर मेरे साथ में हैं, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी के हेड हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और सर की ही ये रिसर्च है, 2 साल की मेहनत है जिसके नतीजे अब सामने आए हैं। सर हम ये तो जानते थे कि यमुना के पानी से जो सब्जियां उगाई जा रही हैं वो खतरनाक हैं सेहत के लिए, लेकिन इतनी ज़्यादा खतरनाक हैं ये अब मालूम पड़ रहा है, क्या बता रही है आपकी रिपोर्ट्स?
9: देखिए अगर आप देखेंगे हमारा जो एयर है दिल्ली का काफ़ी पॉल्यूटेड हो चुका है, पानी भी पॉल्यूटेड है। अब यमुना के ऊपर पिछले 10 साल से हमारा काम चल रहा है, पहले हमने देखा कि पानी जो है अलग अलग जगह से जब हमने लिए देखा कि हाईली पॉल्यूटेड है, और वही पानी में जब आपका सिंचाई हो रहा है सारे चीज़ें यमुना के किनारे, तो फिर हमने पहले सॉयल का टेस्टिंग किया। सॉयल टेस्टिंग में देखा गया है कि ये काफ़ी मात्रा में उसमें हैवी मेटल्स है, तो हमने सोचा है कि जो आपका यहाँ खेती हो रहा है अलग अलग टाइप का सब्जी का, तो क्यों उसको ला के हम टेस्टिंग ना करें। तो उसको जब हमने टेस्टिंग किए उसमें देखे कि काफ़ी भारी मात्रा में आप

0: टेस्टिंग किए, उसमें उसमें देखे कि काफ़ी भारी मात्रा में आपको हैवी मेटल्स पाया गया है, चाहे कैडमियम हो, क्रोमियम हो, आर्सेनिक हो, अलग अलग वेजिटेबल्स है, प्याज है, आलू है, मेथी है, धनिया है। तो उसमें हमने देखा कि ये जो कैंसर कॉजिंग हैवी मेटल्स है वो काफ़ी हैवी मात्रा में पाया गया है।
1: तो चाय पर चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही। आप रखिए अपना ख्याल, कल शाम 5 बजे फिर होगी मुलाकात चाय पर।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
2: एशियन गेम्स में भारत की चमक बरकरार। 87 किलोग्राम ग्रीको रोमन रेसलिंग इवेंट में सुनील कुमार ने जीता ब्रॉन्ज। आज तीरंदाजी में 3 और शूटिंग में आया 1 गोल्ड। भारत के खाते में कुल 10 गोल्ड मेडल। एशियन गेम्स गोल्ड मेडल जीतने वाले कबड्डी स्टार सुमित सांगवान का भव्य स्वागत। करेंसी नोट और फूल मालाओं से हुआ इनका वेलकम। हिमाचल के मंडी में थलौट में बदलेगा 4 लेन का स्वरूप। 200 करोड़ से बनेगी राज्य की पहली 500 मीटर लंबी

0: नई बॉक्स टनल। रणथंभौर में नए पर्यटन सत्र की तैयारियां पूरी, सैलानियों का इंतजार। 1 अक्टूबर से खुल रहा टाइगर रिजर्व, नियम तोड़ने वाले गाइड और ड्राइवरों पर होगी सख्ती। कोलकाता में नवरात्र की तैयारियां जोर शोर से जारी, वर्धमान में मां दुर्गा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे कारीगर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। देश में त्योहारों की मौसम की शुभ शुरुआत होने वाली है। 11 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र का शुभारंभ हो रहा है। ऐसे में देश के अलग अलग शहरों में मंदिर और पंडाल सजाए जा रहे हैं। माँ दुर्गा की मूर्तियों के निर्माण का काम अब अंतिम चरण में है। यूं तो देश भर में नवरात्र पर माँ दुर्गा की भक्ति का उत्सव मनाया जाता है, लेकिन नवरात्र का सबसे गाढ़ा रंग चढ़ता है पश्चिम बंगाल पर। बाकी जगहों पर तो उत्सव के रंग नवरात्र में बिखरेंगे, लेकिन कोलकाता का एक कोना ऐसा भी है जहां वास्तव में उत्सव पूजों की शुरुआत से पहले नजर आता है। कोलकाता का कुमारटुली इलाका देवी प्रतिमाओं के निर्माण के लिए दुनिया भर में काफी प्रसिद्ध है। कुमारटुली में इन दिनों माँ दुर्गा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यहाँ पीढ़ियों से रहते आ रहे मूर्तिकार अपनी अपनी कल्पना के आधार पर माँ के स्वरूप को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिर क्या है कुमारटुली की कहानी और क्यों सारा कोलकाता माँ की प्रतिमाओं के लिए हुगली किनारे बसे इसी मोहल्ले का रुख करता है।

0: एक ऐसा शहर जो सोता है इतिहास के पालने में। और एक रोज जब शरद ऋतु की हवाओं में घुल जाती है शिवली फूलों की महक, तब हुगली की ओर से आते मध्यम झोंकों के बीच कला की उंगलियां सहलाकर जगाती हैं जिसे, और जाग उठता है ये शहर साल के सबसे बड़े उत्सव के लिए। और इसी शहर के कोने में चुपचाप शुरू हो जाती है ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति को आकार देने की कहानी। वो कहानी जो शुरू होती है एक काठ के टुकड़े से, एक बिना तराशे पत्थर से और माँ गंगा की मिट्टी से। ये कहानी है उसी मिट्टी के साक्षात महामाया बन जाने की।
1: माँ का इतना अद्भुत यहाँ होता है कि माँ आती हैं और मतलब बेटी हैं वो, तो कैसे उसका सब कुछ होता है, उनका सजावट और वो देखने को मिल रहा है, तो वो बहुत ही सुंदर है।
2: कलकत्ता का नहीं, वो सारा वर्ल्ड में फेमस है।
0: उत्तरी कोलकाता में हुगली के किनारे बसा कुम्हार टोली, बंगाली में कुमोर यानी कुम्हार और टोली यानी बस्ती। लगभग 300 साल पुराना ये इलाका सिर्फ एक मोहल्ला नहीं बल्कि कला का एक जीवंत संग्रहालय है, जहां हर साल आकार लेता है माँ दुर्गा का वो भव्य रूप जिस पर शब्दकारों ने मुक्त कंठ से स्तुतियां पढ़ी, चित्रकारों ने प्रतिबद्ध होकर चित्र बनाए और मूर्तिकारों ने गढ़ी मूर्तियां। कोलकाता का कुम्हार टोली उन्हीं मूर्तिकारों की बस्ती है जहां के कारीगर अपने अपने दृष्टिकोण से रचते हैं माँ का ये महारूप।
3: कुम्हार टोली की मिट्टी की खुशबू ये एहसास दिलाता है कि बंगाल की सबसे श्रेष्ठ उत्सव दुर्गा पूजा बहुत नजदीक है, और इस समय हम कुम्हार टोली में ही उपस्थित है जहां से बंगाल के मैक्सिमम पंडाल्स में माता दुर्गाओं की मूर्ति पहुंचती है। माता दुर्गाओं की मूर्ति सज धज के बन ठन के जाती है इसी कुम्हार टोली से, और इस बीच कुम्हार टोली में अभी बहुत ही व्यस्तता चल रहा है। जो मृत शिल्पी है, जो आर्टिस्ट है, वो लोग दिन भर काम कर रहे हैं माताओं की मूर्ति रेडी करने के लिए।
0: बताया जाता है कि 18वीं शताब्दी के मध्य में जब राजा नवकृष्ण देव ने अपने घर में दुर्गा पूजा की शुरुआत करवाई, तब वे देवी देवताओं की सुंदर मूर्तियां बनाने के लिए बंगाल के ही कृष्णा नगर और आसपास के इलाकों से कुछ कुशल कारीगरों को लेकर यहाँ आए। धीरे धीरे ये कारीगर हुगली नदी के पास इसी इलाके में बस गए, जिसे आज कुम्हार टोली या कुम्हार टोली कहा जाता है। दिन गुजरते गए, गंगा नदी के किनारे की ये उपजाऊ और चिकनी मिट्टी इन कारीगरों का नसीब बन गई। पीढ़ी दर पीढ़ी, दादा से पिता और पिता से बेटे तक ये हुनर इस मिट्टी की तरह ही यहीं ठहर गया। आज भी इन कलाकारों के वंशज कुम्हार टोली की छोटी तंग गलियों में माँ की प्रतिमा गढ़ते हैं। जगह कम है पर माँ का आशीर्वाद बड़ा है। अब के साल भी ये कलाकार तन मन से माँ का स्वरूप गढ़ने में जुटे हैं।
4: जो इतना दिन बारिश था उससे तकलीफ हुआ था, अभी जो बारिश दिया है सूर्यदेव ने, दो दिन से जो खरा रोद उठा वो हम लोग का अच्छा है। माने एक घंटा दो घंटा में जो मिट्टी का काम होता है, अभी लास्ट टाइम में जो मिट्टी का काम को होता है वही अभी सूख रही है, ठीक है। तो और दो दिन लगेगा, फिर रंग पेंट पेंट होगा, फिर हो जाएगा कपड़ा। और मेरा 90% काम हो गया कलर का, अभी चल रही है साड़ी। माँ का जो साड़ी है अभी साड़ी चल रही है, इसके बाद आएगा ऑर्नामेंट्स, ठीक है। ये ऑर्नामेंट्स बाल जो है उस लगा के फिर मौला जब आएगा तब वो मेरा घर से चाटो प्रतिमा पार्टी आके ले जाएगी।
0: कोलकाता के कई बड़े पंडाल कुम्हार टोली से ही मूर्तियां ले जाते हैं। महीनों पहले मूर्तिकारों को बता दिया जाता है कि माँ के स्वरूप में अब की बार क्या खास होना चाहिए। ग्राहकों की मांग और अपनी कल्पना के आधार पर कुम्हार टोली के कलाकार मूर्ति बनाने में जुट जाते हैं। महीनों तक काम चलता है और आखिरकार नवरात्र से पहले माँ का स्वरूप बनकर तैयार हो जाता है।
5: यहाँ पर हम जो चाहते वही मिल जाता है। वहाँ पर बागमारी में ये फैसिलिटी नहीं था, यहाँ पर हम जैसा बोलते हैं ये लोग वैसे ही बना देते हैं। अलग है, ये बहुत पुराना है, ये प्राचीन काल से चला हुआ रहा है। बागमारी का जो है और आदर्श जगह जो सब नया बना हुआ है, ये ब्रिटिश जमाना से चला हुआ आ रहा है और अभी तक लोग आप देख अगर आप यहाँ सर्वे कीजिएगा देखिएगा सबसे ज्यादा मूर्ति यहीं पर है।
0: वास्तव में माँ दुर्गा की प्रतिमा का निर्माण केवल कला का प्रदर्शन भर नहीं है बल्कि ये एक सर्वोच्च आध्यात्मिक अनुष्ठान है। माँ की मूर्ति का निर्माण शरीर की तरह ही पांच तत्वों से शुरू होता है, लकड़ी, बांस, पुआल, रस्सी और गंगा की मिट्टी। सबसे पहले बांस और लकड़ियों की मदद से मूर्ति का मजबूत ढांचा तैयार किया जाता है, जिसे बंगाली भाषा में काटमो कहा जाता है। इस ढांचे पर काम शुरू करने से पहले भगवान गणेश की पूजा होती है। फिर बांस के ढांचे को सूखे पुआल से अच्छी तरह बांधा जाता है। इसके बाद गंगा नदी के तट की चिकनी मिट्टी, जिसे एटेल माटी कहते हैं, उसे धान की भूसी के साथ मिलाकर पहली मोटी परत चढ़ाई जाती है। मूर्ति को धूप में सुखाया जाता है और दरारों को कपड़ों की पट्टी से भरा जाता है। पहली परत सूखने के बाद बेले माटी यानी बारीक चिकनी मिट्टी की दूसरी परत लगाई जाती है। इससे मूर्ति को चिकना, गोल और सुंदर आकार मिलता है। इस चरण में चेहरे, हाथों और उंगलियों को बारीकी से गढ़ा जाता है। मूर्ति पूरी तरह सूखने के बाद उस पर सफेद रंग का प्राइमर या बेस कोट लगाया जाता है। इसके बाद स्प्रे या ब्रश का इस्तेमाल करके माँ की प्रतिमा को सुंदर रंगों से सजाया जाता है। फिर बारी आती है सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम धार्मिक अनुष्ठान चोखू दान की, जिसमें महालया या पूजा से ठीक पहले देवी की आंखें बनाई जाती हैं। अंत में मूर्ति को सुंदर वस्त्रों, आभूषणों और बालों से सजाया जाता है।
1: इट्स अ वेरी डिवाइन फीलिंग है ना। माँ को हम लोग पंडाल हॉपिंग में जब जाते हैं तो उनका पूरा सजावा रूप देखते हैं और यहाँ पर आज हम कैसे शुरुआत होती है, कैसे पुआल और मिट्टी से उनको एक पहले एक स्ट्रक्चर देते हैं, फिर उसकी आप प्लास्टर ऑफ पेरिस करते हैं, प्राइमर और कलर और फिर ज्वेलरी, तो वो जो पूरी की पूरी जर्नी हम पहले शुरू गली से शुरू होते हैं और गली के अंत तक आते आते माँ का पूरा प्रारूप ही चेंज हो जाता है और यहाँ से फिर जो पंडाल तक का सफ़र है वो बिल्कुल ही अद्भुत रहता है। आप सोच नहीं सकते कि वो पंडाल में लाइट्स के साथ में जो वो इफेक्ट आता है, ये मूर्ति जो यहाँ पे हम देखते हैं वो और भी भव्य हो जाती है।
6: वेट करने के बाद ये वाला माँ का रूप देखने को मिलता है, नहीं तो आप देखेंगे बस सजी धजी माँ पंडाल में दिख जाती है लेकिन ये वाली चीज़ कहीं नहीं दिखती, तो इसके लिए वेट करने के लिए तो आना ही पड़ेगा यहाँ पे। और इसकी जो मिट्टी की जो खुशबू आ रही है और कलर्स की जो महक आ रही है बहुत अच्छी है।
0: कुम्हार टोली में अब कई तरह की मूर्तियाँ बनती हैं, जिनमें मुख्य रूप से पारंपरिक एकचाला मूर्तियाँ होती हैं, जिनमें सारे देवता एक ही ढांचे में बनाए जाते हैं, तो वहीं आधुनिक थीम पर आधारित मूर्तियाँ भी ऑर्डर पर अब तैयार होती हैं, जिनमें सामाजिक संदेश देने वाली कलाकृतियाँ भी गढ़ी जाती हैं। बदलते वक्त के साथ कुम्हार टोली भी बदला है। अब तो यहाँ माँ की मूर्ति के निर्माण में AI की झलक भी दिखाई देने लगी है।
4: इस साल में AI बनाया है मैंने। आजकल AI से सब हो रहा है, AI से पढ़ना होता है, AI से एडिट हो रहा है, AI से आपका 20 साल का 50 साल, 100 साल, 300 साल का वही देश में कौन राजा था वो AI अभी तो सब हो जाएगा AI से। अभी जो AI से मैं रोबोटिक दुर्गा किया है उत्तर दिनाजपुर कालियागंज में, वो मारात्मक वायरल हो गया, ठीक है। उसका जो प्रतिमा है वो रोबोटिक है, उसका जो AI दुर्गा और उसका जो फेस है वो माँ का जो फेस वही फेस मैंने रखा है, लेकिन AI नहीं किया। जो तस्वीर मेरे पास आया है वो माँ का थोड़ा सा AI था, लेकिन ये तो माँ है, इसलिए माँ को मैं एक मिन्मय रूप मैंने दिया।
0: एक ही छत के नीचे माँ के अनंत रूप यहाँ नजर आते हैं। यही वजह है कि कोलकाता ही नहीं बल्कि आसपास के शहरों से भी लोग मूर्तियां लेने यहां पहुंचते हैं।
7: ये बहुत पुराना संबंध है, यहां पे आज प्राचीन काल से चले आ रहा है। एक यहां पे मूर्ति, सारा मूर्ति यहीं पे बनता है, यहीं से स्टार्टिंग हुआ है और हम लोग भी आज बचर बचर यहीं से आके लेके जा रहे हैं। हाँ, यहीं से हम लोग पूजा कबड्डी मूर्ति लेता है। आज बहुत दिन से हम लोग यहीं से लिए जा रहे हैं। ये जैसा चाहते हैं वैसा मिल भी जाता है, आते हैं हर बार, हर तरह का देख के लेके जाते हैं।
3: तो यही क्या माता दुर्गा क्या प्राण केंद्र बन चुका है?
5: एकदम 100%, इसमें कोई दो राय नहीं है।
3: आप लोगों का पंडाल के दुर्गा प्रतिमा के यहाँ से ले जा रहे हैं?
5: यहीं से ले जा रहे हैं, सामने ही मेरा मूर्ति बन रहा है, आप उसको भी देख सकते हैं।
7: ये बहुत पुराना संबंध है, यहाँ पे आज प्राचीन काल से चले आ रहा है। एक यहाँ पे मूर्ति, सारा मूर्ति यहीं पे बनता है, यहीं से स्टार्टिंग हुआ है और हम लोग भी आज बचर बचर यहीं से आके लेके जा रहे हैं। इसके इतना बड़ा जगह तो कहीं है भी नहीं ना, अगर है भी तो वहाँ पे दो चार मूर्ति बन रहा है, चाहे 10 मूर्ति बन रहा है, मगर यहाँ पे तो आप एक एक घर में 10-15 मूर्ति बन रहा है।
0: पूजा के शुभारंभ से पहले कुम्हार टोली में मूर्तियां लेने वालों के बीच ही सेल्फी लेते, मां के अर्ध निर्मित रूपों को निहारते सैलानियों की भी भरमार है। कहते हैं दुर्गा पूजा में कोलकाता की रौनक निराली होती है, लेकिन पूजों से पहले वो सारी रौनक कोलकाता के इस एक इलाके में सिमटी नजर आती है, जहां माटी से मां को गढ़े जाने की यात्रा को अपनी आंखों से देखने बड़ी तादाद में सैलानी पहुंचते हैं।
8: एक्चुअली ये मेरा फर्स्ट टाइम है और मैंने बहुत सुना था, बट आज महसूस किया और बहुत अच्छा लग रहा है। अद्भुत जिसको बोलते हैं ना, वो एक्सपीरियंस हुआ और बहुत ऐसे डिवाइन सी फीलिंग हो रही है।
3: आज क्या घूमने ही आए थे?
8: जी बिल्कुल, ये दर्शन देवी माँ के अभी दर्शन करने आए थे हम लोग।
1: मैं भी पहली बार कोलकाता में आई हूँ और ये मतलब ये सुना बहुत था, मैम लोग से बहुत सुना था, तो मुझे बहुत ही मैं उत्साहित थी ये देखने के लिए कि क्या कैसे बनता है, वो मुझे बहुत जानना था। तो इतना सुंदर है कि मतलब इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते हम, तो बहुत ही सुंदर है, अद्भुत है ये नज़ारा। अभी मैंने माँ का जो मूर्ति बनते हुए कैसे बनाते हैं और कितने मेहनत से बनाते हैं वो देखा, और कितने लगन से बनाते वो चीज़ देखा, तो वो चीज़ महसूस कर रही हूँ कि सच में माँ का कैसे, माँ मतलब वो फील आता है ना, वो फील आ रही है, बहुत सुंदर।
0: और महीनों की कड़ी मेहनत और समर्पण के बाद इसी यात्रा के अंत में आता है वो पल जिसे चोखू दान कहा जाता है। महालया के दिन जब मूर्तिकार माँ की आंखों की अंतिम लकीर खींचते हैं, तो मिट्टी का वो ढांचा जीवित हो उठता है। कुम्हार टोली की संकरी अंधेरी गलियों से निकलकर जब ये मिट्टी की प्रतिमा कोलकाता के भव्य पंडालों में रोशनी से चमकती है, तो पूरा शहर उत्सव के उल्लास से गमक उठता है। ये मूर्तियां गवाह हैं उस अटूट विश्वास की, जहां इंसान अपनी आस्था और मेहनत के दम पर मिट्टी से निराकार को साकार कर लेता है। कोलकाता के कुम्हार टोली से राही हल्दर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
9: तो ये तो बात थी बंगाल की, अब आपको लिए चलते हैं दिल्ली में बसे छोटे बंगाल यानी दिल्ली का सीआर पार्क। सीआर पार्क को दिल्ली का मिनी बंगाल भी कहा जाता है। शारदीय नवरात्र के दौरान यहाँ थीम आधारित कई दुर्गा पंडाल सजाए जाते हैं। इनमें कालीबाड़ी मंदिर में लगने वाला पंडाल की चर्चा और तैयारी तो दुर्गा पूजा के कई महीनों पहले शुरू कर दी जाती है। कोलकाता के कुमार टुली की तरह ही यहाँ भी प्रतिमा निर्माण की अपनी परंपरा है। हर साल शारदीय नवरात्र से करीब 4 महीने पहले यहाँ वर्कशॉप लगाई जाती है, जिसमें पुआल, मिट्टी और रंगों का इस्तेमाल करके भव्य दुर्गा मूर्तियां तैयार की जाती हैं। 1970 के दशक से ये परंपरा यूं ही निभाई जा रही है। फर्क यह है कि शुरुआत में इस वर्कशॉप में कुछ ही मूर्तियां आकार लेती थीं, लेकिन अब यहां हर साल करीब 800 मूर्तियां तैयार की जाती हैं। हर साल पूजों के समय सीआर पार्क की रौनक देखने लायक होती है। तो चलिए आपको दिखाते हैं और लेकर चलते हैं सीआर पार्क और दिखा देते हैं तैयारी दुर्गा पूजा की।

0: दिल्ली में बंगाल की संस्कृति, कला, साहित्य, संगीत और समृद्ध ऐतिहासिक विरासत की पहचान चितरंजन पार्क है, जो माँ दुर्गा के आगमन का इंतजार कर रहा है। 11 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र की शुरुआत होने जा रही है। नवरात्र माँ दुर्गा की आराधना और उनके 9 विशेष स्वरूपों को पूजने का पवित्र त्योहार है। हर साल शारदीय नवरात्र के दौरान चितरंजन पार्क यानी कि सीआर पार्क कोलकाता का प्रतिबिंब बन जाता है। शारदीय नवरात्र के करीब एक महीने पहले से पंडालों में अटूट आस्था, श्रद्धा, विश्वास और संकल्प के साथ माँ दुर्गा के आह्वान की तैयारी शुरू हो जाती है। 1960 के दशक में पहली बार यहाँ बसे बंगाली परिवारों ने शारदीय नवरात्र से जुड़ी सांस्कृतिक विरासत की नींव रखी थी। तब से यहाँ माँ दुर्गा की प्रतिमा को स्थापित करने की परंपरा को संजोने और समृद्ध करने का संकल्प पीढ़ी दर पीढ़ी लिया जा रहा है। यहाँ माँ दुर्गा की अलग अलग तरह की प्रतिमाओं को बनाने का काम पूरा साल चलता रहता है, लेकिन शारदीय नवरात्र के लिए माँ की मूर्तियों को तैयार करना अपने आप में विशेष अनुष्ठान की तरह होता है। चितरंजन पार्क में 3 दुर्गा पूजा समितियों की तरफ से 3 बड़े पंडाल बनाए जाते हैं। इनमें कालीबाड़ी मंदिर में दुर्गा पूजा बेहद भव्य और सबसे मशहूर है। कालीबाड़ी मंदिर में विराजमान होने वाली माँ दुर्गा की भव्य मूर्ति, रंग बिरंगी सजावट और 9 दिनों तक शाम को होने वाले सांस्कृतिक उत्सव हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं।
1: तो भाई देखिए, कोलकाता के साथ साथ दिल्ली भी पूरी तरह से तैयार हो रही है दुर्गा पूजा के लिए, क्योंकि माँ आने वाली हैं। और उसके लिए सबसे बढ़िया जो जगह होती है सीआर पार्क, जहाँ हर साल मैं आपको लेकर आती हूँ, और ये बिल्कुल सीआर पार्क का वही कालीबाड़ी मंदिर है। जरा तस्वीरें देख लीजिए, तैयारियां भी हो रही हैं, शुरुआत हो चुकी है। हालांकि बहुत जोर शोर से यहाँ तैयारियां हो रही हैं। ये वही पंडाल है जहाँ पर हर साल दुर्गा पूजा मनाई जाती है कालीबाड़ी मंदिर का। और अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर शुरुआत हुई है, यानी पंडाल अभी तैयार हो रहा है। पंडाल का थीम क्या है बहुत ही सीक्रेट रखा गया है, लेकिन इसके साथ ही साथ सबसे ज्यादा जो इंतजार रहता है वो रहता है मूर्तियों का। तो इस बार किस तरह की मूर्ति होगी, थीम क्या होगा, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर लोगों में एक्साइटमेंट होती है, क्योंकि भाई जो लोग बंगाल से बाहर रहते हैं, स्पेशली अगर हम दिल्ली की बात करें, तो उनके लिए सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट यही सीआर पार्क का एरिया होता है। तो आज मैं आपको सीधा वर्कशॉप लिए चलती हूँ, जहाँ पर मूर्तियों को बनाने का काम लगातार चल रहा है, और आपको मिलवाऊंगी उन कलाकारों से, उन कारीगरों से, जो हर साल इन मूर्तियों को आकार देते हैं। और फिर उसके बाद फाइनली, अगर आपको याद हो तो ये वो स्टेज होती है सामने, जहाँ पर पंडाल सजाया जाता है, माँ की मूर्ति को लाया जाता है। अभी भी अगर आप देखेंगे तो रफ यहाँ पर स्टेज तैयार की गई है, लेकिन चलिए मेरे साथ आपको मैं वर्कशॉप में लिए चलती हूँ और देखते हैं कि मूर्ति बनाने का काम कहाँ तक पहुँचा है। आइए।
0: हर साल दुर्गा पूजा से पहले दुर्गा प्रतिमा के निर्माण से जुड़ी कार्यशाला आयोजित की जाती है, जहाँ कुशल कारीगर बांस, पुआल और मिट्टी से देवी की भव्य मूर्तियाँ तैयार करते हैं। 1970 के दशक से कालीबाड़ी मंदिर के सहयोग से चली आ रही इस विशेष कार्यशाला में हर साल सैकड़ों प्रतिमाओं को आकार दिया जाता है, जो दिल्ली एनसीआर की 300 से अधिक पूजा समितियों को भेजी जाती है।
1: तो देखिए, मंदिर है और मंदिर के ठीक पीछे ये वो वर्कशॉप है, कार्यशाला है, जहाँ पर मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, मूर्तियों को आकार दिया जाता है। वैसे तो यहाँ पर जो काम है वो पूरा साल चलता रहता है, लेकिन जो आखिरी का समय होता है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उनमें कलर भरना है, फाइनल टच देना है। और ये वो कार्यशाला है जहाँ से मूर्तियाँ दिल्ली एनसीआर और साथ ही साथ अगल बगल के जितने राज्य हैं वहाँ पर मूर्तियाँ यहाँ से भेजी जाती हैं, और यहीं पर आकार इनको दिया जाता है, और यहाँ से फिर ये मूर्तियाँ राजस्थान, पंजाब, दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, जहाँ जहाँ भी जरूरत होती है वहाँ इनको भेजा जाता है। सबसे बड़ी और ख़ास बात यह है, अगर आपको ध्यान हो तो कोलकाता में स्पेशली और पूरे बंगाल में जहाँ जहाँ मूर्तियाँ बनाई जाती हैं वहाँ पर मिट्टी कुमारतुली से लाई जाती है, और यहाँ पर भी इन मूर्तियों को आकार देने से पहले उस पवित्र मिट्टी को इनमें शामिल किया जाता है।
0: मूर्तिकार गोविंद अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी है, जो पारंपरिक रूप से माँ दुर्गा की प्रतिमाएं बनाने के काम में खुद को समर्पित कर चुके हैं। दुर्गा माँ की प्रतिमा उनके हुनर और विरासत को भी दर्शाती है।
1: तो गोविंद जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और माँ की जो मूर्ति है उसके चेहरे को आकार दिया जा रहा है, और साथ ही साथ मैं इनका परिचय कराऊं, ये तीसरी पीढ़ी है जो लगातार माँ की मूर्तियों को और दुर्गा पूजा की तमाम मूर्तियों को बनाते आए हैं। गोविंद जी
2: नमस्कार जी।
1: नमस्ते। कहाँ तक पहुँचा है काम?
2: काम अभी बस पेंटिंग का इंतजार कर रहा है, कल से नहीं तो परसों से पेंटिंग चालू हो जाएगा हमारा, और कुछ एक दो मूर्ति में मिट्टी का काम बाकी है, वो भी अभी काम चल रहा है, तो उसी का भी तैयारी हो रहा है। इधर पेंटिंग का भी थोड़ा फिनिशिंग करके, मिट्टी का फिनिशिंग करके तो कल परसों से ही पेंटिंग चालू।
0: इस शारदीय नवरात्र की शुरुआत 11 अक्टूबर से हो रही है और इसका समापन 20 अक्टूबर को विजयदशमी यानी दशहरे के दिन होगा। कोलकाता का कुमारटोली पवित्र दुर्गा प्रतिमाएं बनाने के लिए मशहूर है। उनमें वहां बहने वाली गंगा नदी की मिट्टी को मूर्तियों के लिए सबसे अच्छा और शुभ माना जाता है। सियार पार्क के कालीबाड़ी मंदिर में मौजूद कार्यशाला में भी परंपरा और शुद्धता बनाए रखने के लिए मिट्टी वहीं से आती है।
1: अच्छा, मिट्टी आप वहां से लेकर आते हैं?
2: वहां से मिट्टी ले आते हैं, और कुछ मिट्टी यूपी का उस साइड से आता है, खेत का भी मिट्टी होता है, थोड़ा मिला के आता है। इतना सारे मिट्टी तो लाना पॉसिबल नहीं है, तो जो फेस वगैरह होता है, जो हमारा जो कलकत्ता मिट्टी स्पेशल
1: जो आप बना ही रहे हैं,
2: बिल्कुल बिल्कुल ये कलकत्ता का मिट्टी ले आते हैं, और बाकी यूपी का पंजाब का जो खेत होता है ना, खेत का मिट्टी भी आता है।
1: ठीक है, यानी कि ये पर्टिकुलर रहता है कि माँ का और जो तमाम मूर्तियों का जो फेस है वो जो बंगाल से मिट्टी आती है वो उसी से बना है।
2: फिनिशिंग अच्छा होता है, चिकनवर अच्छा होता है, उसमें कंकड़ कम होता है, फिनिशिंग अच्छा है, काम करने में अच्छा वो होता है। और दूसरी जगह मिट्टी थोड़ा कंकड़ होता है, रेत होता है, वो दूसरा काम पे आता है।
0: सनातन परंपरा में शारदीय नवरात्र का विशेष महत्व है। माना जाता है कि इस दौरान माता की पूजा अर्चना से देवी दुर्गा की खास कृपा प्राप्त होती है। माँ दुर्गा के 9 रूपों की विधिवत पूजा अर्चना भक्तों के लिए शुभ मानी जाती है। ऐसे में शारदीय नवरात्र की विशेष तैयारियां होती हैं। प्रतिमाओं के आकार लेने के दौरान हर तरफ माँ के जयकारे गूंजने लगते हैं। दिल्ली से नवजोत चंधावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: तो जैसा कि हम हर बार कहते हैं कि उत्सव यानी गुड न्यूज टुडे, तो तैयार हो जाइए, तमाम रंग आपको लगातार जीएनटी पर दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, अच्छी खबरें जारी हैं, देखते रहिए जीएनटी।
4: किस तरह का आहार आपके विचारों पर असर डालता है? आहार में परिवर्तन करके विचारों को कैसे बदल सकते हैं, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: किस तरह का आहार आपके विचारों पर असर डालता है? आहार में परिवर्तन करके विचारों को कैसे बदल सकते हैं, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: एशियन गेम्स में भारत की चमक बरकरार। 87 किलोग्राम ग्रीको रोमन रेसलिंग इवेंट में सुनील कुमार ने जीता ब्रॉन्ज। आज तीरंदाजी में 3 और शूटिंग में 1 गोल्ड आया, भारत के खाते में कुल 10 गोल्ड मेडल। एशियन गेम्स में देश को गोल्ड दिलाने वाले खिलाड़ियों का स्वदेश लौटने पर भव्य स्वागत हुआ। पहनाई गई करेंसी नोट और फूलों की मालाएं, ढोल नगाड़ों से हुआ इनका वेलकम। हिमाचल के मंडी में थलौट में बदलेगा 4 लेन का स्वरूप। 200 करोड़ से बनेगी राज्य की पहली 500 मीटर लंबी नई बॉक्स टनल। रणथंभौर में नए पर्यटन सत्र की तैयारियां पूरी, सैलानियों का इंतजार। 1 अक्टूबर से खुल रहा टाइगर रिजर्व, नियम तोड़ने वाले गाइड और ड्राइवरों पर होगी सख्ती। कोलकाता में नवरात्र की तैयारियां जोर शोर से जारी, वर्धमान में मां दुर्गा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे कारीगर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: एशियन गेम्स में भारत का गोल्डन दिन, तीरंदाजी और शूटिंग में स्ट्रैप टीम ने जीता 4 गोल्ड। प्रिया घंघास और कपिल पोखरिया ने जीता ब्रॉन्ज। एशियन गेम्स में भारतीय महिला तीरंदाजी टीम ने चीन की टीम को हराया, भारत को दिलाया गोल्ड मेडल। चिखिता पृथिका और ज्योति की तिकड़ी ने किया कमाल, 238 अंक के स्कोर के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी की। एशियन गेम्स में भारतीय कंपाउंड मिक्स्ड आर्चरी में चिकिता तनिपार्थी और राजेश जाधव की जोड़ी ने कोरियाई तीरंदाजी में गोल्ड जीता। एशियाई खेलों में भारत का लगातार शानदार प्रदर्शन, शूटिंग में स्ट्रैप टीम ने जीता गोल्ड। नीरू डांडा और कायन चेन्नई की भारतीय जोड़ी ने किया कमाल, 7वें स्थान पर पहुंचा भारत। भारतीय पुरुष कंपाउंड तीरंदाजी की टीम में साहिल कुशल और गणेश की जोड़ी ने जीता गोल्ड, चीन की टीम को हराया। एशियन गेम्स में महिला 60 किलोग्राम वर्ग कैटेगरी में प्रिया घंघास ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। एशियाई खेलों में भारत के कपिल पोखरिया ने किया कमाल, 90 किलोग्राम वर्ग में जीता ब्रॉन्ज। एशियन गेम्स में भारत ने अब तक कुल 10 गोल्ड, 21 सिल्वर और 29 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए, कुल मेडल की संख्या 60 हुई। एशियन गेम्स में ग्रीको रोमन कुश्ती में भारत को ब्रॉन्ज, पहलवान सुनील कुमार ने 87 किलोग्राम वर्ग में जीता ब्रॉन्ज। सुनील ने फिलीपींस के कैलम रॉबर्ट्स को 9-0 से हराया, टेक्निकल सुपीरियरिटी के आधार पर मिली जीत। एशियाई खेलों में 2 ग्रीको रोमन मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने सुनील, फिलीपींस के पहलवान को पहले ही राउंड में जीत किया। एशियन गेम्स में भारतीय महिला हॉकी टीम ने 1 पदक किया पक्का, दक्षिण कोरिया को 2-0 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। भारतीय महिला हॉकी टीम की अब गोल्ड पर नजर, फाइनल जीतने पर 44 लाख साल का सूखा खत्म होगा। फुटबॉल के महामुकाबले के लिए सज रहा कोलकाता का सॉल्ट लेक स्टेडियम, तैयारियां पूरी। ब्राजील की स्टार टीम के स्वागत की तैयारियां पूरी, खिलाड़ियों को मां दुर्गा की प्रतिमा, दार्जिलिंग चाय, बंगाली व्यंजन परोसे जाएंगे। 3 अक्टूबर को भारत के खिलाफ उतरेगी 5 बार की वर्ल्ड कप चैंपियन ब्राजील, मैच को लेकर खेल प्रेमियों में उत्साह। भारत अंडर 19 ने पहले यू टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को पारी और 48 रन से हराया, रायचंदानी ने खेली शानदार पारी। भारत ने पहली पारी में 494 रन बनाए, जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली पारी में 217 और दूसरी पारी में 229 परसेंट थी। महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंचे क्रिकेटर रिंकू सिंह, विधि विधान के साथ किए दर्शन। बाबा महाकाल से की सुख समृद्धि की कामना, भोलेनाथ का लिया आशीर्वाद भी। सूरत के रहने वाले 14 साल के विवान शाह बने गुजरात के सबसे कम उम्र के चेस इंटरनेशनल मास्टर, ज्वाल पटेल का तोड़ा रिकॉर्ड। विवान चाह ने 2400 फिडेर रेटिंग पार की 3 आईएम नॉर्म्स हासिल की। अब ग्रैंड मास्टर टाइटल पर नजर। एमपी रणजी टीम का ऐलान हुआ, रजत पाटीदार हुए बाहर, शुभमन होंगे कप्तान। कोलकाता में शक्ति उपासना की तैयारियां तेज, मां दुर्गा की प्रतिमा को अंतिम रूप देने में जुटे कारीगर। कोलकाता का कुमारटुली इलाके में कलाकार दिन रात मां की प्रतिमा को सजाने संवारने में जुटे हैं। छोटी से लेकर बड़ी प्रतिमाएं बना रहे कारीगर, खरीदने के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु। रामनगरी अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारियां तेज, राम की पैड़ी पर रंग रोगन का काम तेज। राम की पैड़ी में साफ सफाई का काम भी जारी, इस बार 30 लाख दीयों से जगमग होगी धर्मनगरी। अयोध्या में एनएसजी की मॉक ड्रिल, कनक भवन पर सुरक्षा अभ्यास किया गया। एनएसजी कमांडो ने संभावित खतरे की स्थिति में रेस्क्यू और जवाबी कार्रवाई का अभ्यास किया, स्थानीय पुलिस बल भी रहा साथ। एनएसजी कमांडो ने कनक भवन के हर हिस्से को परखा, चप्पे चप्पे पर कमांडो की नजर। कनक भवन की छत पर से बनाई सुरक्षा की रणनीति, राम मंदिर आसपास के इलाकों का बनाया वीडियो। एनएसजी कमांडो के जवानों ने कनक भवन में रहने वाले लोगों से बातचीत की, मंदिर के बारे में जानकारी ली। पुरी में जगन्नाथ मंदिर में दर्शन के लिए उमड़ा आस्था का जनसैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए भगवान जगन्नाथ के दर्शन। पुरी में गुंडिचा मंदिर भक्तों और तीर्थयात्रियों के लिए खुला, बड़ी संख्या में पहुंचे भक्त। मंदिर खोलने से पहले प्रशासन की विधि विधान के साथ पूजा पाठ, भक्तों ने लगाए जय जगन्नाथ के जयकारे। झांसी में विश्व शांति महायज्ञ का भव्य समापन हुआ, बैंड की प्रस्तुतियों ने बांधा समा। भगवान आदिनाथ के रथ को श्रद्धालुओं ने खींचा, भक्तों ने लगाए जयकारे। तेलंगाना के हनमकोंडा में 1000 खंभों वाले मंदिर में सुरक्षा बलों का मॉक ड्रिल, जवानों ने सुरक्षा व्यवस्था को देखा। ऑक्टोपस कमांडोज ने आतंकी हमला आपदा से निपटने की तैयारी की, मंदिर परिसर का जायजा लिया। गोरखपुर में सीएम योगी ने की गौ सेवा, मवेशियों को खिलाया चारा। प्रवासी पक्षियों से गुलजार हुआ थूथुकुड़ी, बड़ी संख्या में पहुंचे विदेशी पक्षी। पेंटेड स्टॉक, ग्लॉसी आइबिस और पर्पल हेरॉन जैसे जल पक्षियों का जमावड़ा देखने को मिल रहा। मुंबई में गणपति राज्य महोत्सव 2026 के तहत बप्पा गाथा गणेश कंथाची डिजिटल पुरालेख पहल का शुभारंभ हुआ, सीएम पहुंचे। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में पांडुगा कार्यक्रम में सीएम चंद्रबाबू नायडू हुए शामिल, डिप्टी सीएम भी रहे साथ। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह सिंधु ने महिला सुरक्षा को लेकर दौलत राम कॉलेज का दौरा किया, छात्रों से मुलाकात की। श्रीनगर में हिंदी रंगमंच 2026 कार्यक्रम का आयोजन, एलजी मनोज सिन्हा पहुंचे। एलजी मनोज सिन्हा ने हिंदी भाषा में टॉप करने वाले छात्रों को सम्मानित किया, स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक और नाट्य की प्रस्तुति दी। जोधपुर में एक्सरसाइज तरंग शक्ति जारी, पावर इन पार्टनरशिप है साल का थीम। आसमान में दिखा फाइटर जेट सपोर्ट एयरक्राफ्ट के जरिए मल्टीनेशनल एयर पावर का शानदार प्रदर्शन, 12 अक्टूबर तक चलेगा। जोधपुर के आसमान में दिखी 6 F-35 की ताकत, सेनाएं जटिल ऑपरेशंस और आपसी तालमेल को मजबूत करने में जुटी। इस अभ्यास में फ्रांस के राफेल और A400M UAE के F-16 और ग्लोबल 6000 समेत कई अत्याधुनिक विमानों ने दिखाए करतब। तरंग शक्ति में भारतीय वायुसेना के राफेल, Su-30M के ILCA तेजस, जैगुआर और MiG-29 की भी दिखी झलक। दिल्ली NCR में नया ग्रैप लागू, AQI स्तर के मुताबिक 4 चरणों में लगाई जाएंगी पाबंदियां। स्कूलों में हाइब्रिड पढ़ाई का मिलेगा ऑप्शन, ऑफिस में आधे स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम की परमिशन। पाली में स्कूल बस में घुसा सांप, ड्राइवर ने सांप का रेस्क्यू किया। कौशाम्बी में बच्चों की गुहार पर डीएम अंकल ने लिया तत्काल संज्ञान, गांव में लगी स्ट्रीट लाइट, बच्चों ने डीएम को किया थैंक यू। भोपाल के VIP रोड पर तेल से भरा टैंकर पलटा, सड़क पर फैला तेल, लूटने की मची होड़। नेपाल में लगातार बारिश से गंडक नदी का बढ़ा जलस्तर, डीएम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। बगहा में सांसद पप्पू यादव ने बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा किया, बाढ़ पीड़ितों के बीच में बांटी राहत सामग्री। टेहरी गढ़वाल में अचानक से दरकी पहाड़, सड़क पर आया मलबा, वाहनों की लगी लंबी कतारें। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ के बाद मिशन जिंदगी तेज, कुशीनगर में एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें अलर्ट। बाढ़ प्रभावित इलाकों में जवानों का राहत बचाव का काम तेज, प्रभावित लोगों को राहत केंद्रों और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा। प्रयागराज में फिर से बढ़ने लगा संगम का जलस्तर, निचले इलाकों में अलर्ट जारी। संगम का जलस्तर बढ़ने से कई घाट पानी में डूब गए, प्रशासन ने लोगों से की सतर्क होकर स्नान करने की अपील। मुरादाबाद में रामगंगा और कोसी नदी का बढ़ा जलस्तर, निचले इलाकों में भर गया पानी। साहिबगंज के महाराजपुर में गंगा कटाव से रेलवे ट्रैक पर बढ़ा खतरा, रेल परिचालन बंद, झारखंड के कई इलाकों का पश्चिम बंगाल से रेल संपर्क टूटा। बांदा में बाढ़ के बीच में सड़कों पर बने गड्ढे, कई वाहन फंस गए। बांदा में लगातार दिन से बारिश जारी, स्कूल समेत कई इलाकों में भर गया पानी। बाराबंकी में नेपाल ने एक दिन में पांच बार से छोड़ा करीब 17 लाख क्यूसेक पानी, 75 गांव जलमग्न हुए। बाढ़ से कई एकड़ फसल भी बर्बाद हो गई, किसान परेशान। गोंडा में घाघरा नदी का बढ़ा जलस्तर, 15 गांवों में जलभराव। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोग ले रहे नाव का सहारा, चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा। अलास्का के कटमाई नेशनल पार्क में भालू नंबर 89 बैकपैक ने 2026 की फैट बियर वीक जीत ली। ऑनलाइन वोटिंग के फाइनल में उसने भालू नंबर 910 को हराया। बैकपैक नाम उसे बचपन में मिला था, जब वो नदी पार करते वक्त मां की पीठ पर बैठता था। उसके सुनहरे कान भी उसे बाकी भालुओं से अलग पहचान देते हैं। फैट बियर वीक में लोग उससे भालू को वोट देते हैं जिसने सर्दी के लिए सबसे अच्छा वजन बढ़ाया हो। ২০২৫ में भालू नंबर 32 चंक ने फैट बियर वीक का खिताब जीता था। इस बार बैकपैक ने खिताब अपने नाम किया। 2026 के फाइनल में बैकपैक और भालू नंबर 910 आपने सामने थे। ऑनलाइन वोटिंग खत्म होने के बाद बैकपैक को विजेता ऐलाना गया। थियानान मेन स्क्वायर के बीच 18 मीटर ऊंची फूलों की टोकरी सजाई गई, ये चीन के राष्ट्र दिवस के मौके पर लगाई गई। इस टोकरी में 15 तरह के फूल और 5 तरह के फल लगाए गए। इसका संदेश समृद्धि और अच्छी फसल का संदेश देना। टोकरी के नीचे 45 मीटर व्यास का फूलों का बेस बनाया गया। इसमें समृद्धि का प्रतीक पैनी फूल की डिजाइन। टोकरी के एक तरफ मातृभूमि को आशीर्वाद और दूसरी तरफ राष्ट्र दिवस की बधाई लिखा हुआ। त्यानान मेन के दोनों तरफ 5,050 वर्ग मीटर में फूलों की सजावट की गई। यहां 18 बड़े फ्लोरल स्फीयर्स भी लगाए गए। मैक्सिको नेशनल गार्ड में शामिल हुआ नन्हा कमांडो 7 किलो वजन वाला चिहुआ सर्च रेस्क्यू में ट्रेनिंग ले रहा। छोटे चश्मे और टेक्निकल जैकेट में दिखा कमांडो। सिर पर कैमरा लगाकर सीढ़ियां चढ़ने और बाधाएं पार करने की ले रहा ट्रेनिंग। तेरह महीने का कमांडो कभी था एक पालतू डॉग। बुजुर्ग दंपत्ति के ना संभाल पाने पर उसे रेस्क्यू किया गया। स्कूल और सिविक इवेंट्स में जवानों के साथ जाता है कमांडो। गार्ड का मकसद उसके जरिए लोगों और सुरक्षा बलों के बीच में जुड़ाव बढ़ाना। मैक्सिको नेशनल गार्ड में करीब 350 स्निफर डॉग्स, इनमें ज्यादातर बड़े कामकाजी नस्ल के डॉग्स हैं। अमूर लेपर्ट ने 16 सितंबर को एक बच्चे को जन्म दिया। सीसीटीवी में मां अपने शावक की देखभाल करती दिखी। कैमरा में अमूर लेपर्ट का बच्चा अपनी मां के साथ आराम करता नजर आया। मां लगातार उसकी देखभाल कर रही। जू कीपर के मुताबिक शावक की अब खुल गई हैं आंखें। धीरे धीरे शावकों ने घूमना शुरू कर दिया है। जू में शावक के पिता नर अमूर लेपर्ट को भी देखा गया। जू कीपर उसे खाना खिलाते हुए नजर आए। अमूर लेपर्ट दुनिया की बेहद दुर्लभ प्रजातियों में। जू कीपर के मुताबिक जंगल में इनकी संख्या 100 से थोड़ी ज्यादा। वसान की नहर में फंसी शार्क को देखने 6 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे। इसे प्यार से बुकांग ई नाम दिया गया। अधिकारियों ने शार्क को समुद्र में भेजने की कोशिश की लेकिन वो नहर से निकली ही नहीं। बसान के संकरे जलमार्ग में शार्क 18 सितंबर से फंसी हुई है। लंबे समय से फंसे होने पर उसकी सेहत को लेकर चिंता बढ़ी। रेस्क्यू टीम अब शार्क को निकालने के लिए जाल समेत अतिरिक्त उपकरण इस्तेमाल करेगी। मकसद उसे सुरक्षित खुले समुद्र तक पहुंचाना। नहर में फंसी शार्क अब बसान में लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गई। उसे देखने के लिए 6 लाख से ज्यादा लोग पहुंच चुके हैं।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
3: किस तरह का आहार आपके विचारों पर असर डालता है? आहार में परिवर्तन करके विचारों को कैसे बदल सकते हैं, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंचे क्रिकेटर रिंकू सिंह, विधि विधान के साथ किए दर्शन, बाबा महाकाल से की सुख समृद्धि की
11: खबरें। कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं खबरें, कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: देखिए, इन दिनों पितृपक्ष में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भू वैकुंठ नगरी श्री बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं, जहां वो भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के बाद ब्रह्म कपाल तीर्थ में अपने पितरों का तर्पण और पिंडदान कर रहे हैं। पितरों की मुक्ति के लिए श्री हरि के इस पावन धाम की दिव्यता ही ऐसी है कि ब्रह्म कपाल में पिंडदान और तर्पण की मान्यता और परंपरा को अब विदेशी भी आत्मसात करते नजर आ रहे हैं। रूसी तीर्थ यात्रियों ने यहां विधि विधान के साथ अपने पितरों के निमित्त पिंडदान और तर्पण किए।
12: जहाँ बहती है अलकनंदा की पवित्र धारा, उसी बद्रीनाथ के आंगन में पितरों की आत्मिक शांति के लिए पिंडदान हो रहा है। देवभूमि उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में जहाँ चार धाम यात्रा दर्शन के रंग बिखरे हैं, हर तरफ श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है, तो वहीं इन दिनों पितृपक्ष के दौरान भगवान विष्णु का ये धाम सिर्फ चार धाम दर्शन का केंद्र ही नहीं बल्कि पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता और स्मरण का भी पवित्र स्थल बना हुआ है। दरअसल यहाँ के ब्रह्म कपाल में मोक्ष की कामना और पितरों के प्रति श्रद्धा जैसी भावनाओं को लेकर अच्छी खासी संख्या में श्रद्धालु तर्पण के लिए पहुँच रहे हैं, अपने पूर्वजों के निमित्त पिंडदान कर रहे हैं। श्राद्ध परंपरा का भगवान बद्री विशाल के आंगन में होना ही इन तमाम श्रद्धालुओं को पुरखों के प्रति सम्मान और आध्यात्मिकता की अनुभूति दे रहा है।
13: कहा गया है इस स्थान पर पिंड देने से 7 पीढ़ियों के पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ पर भगवान बद्री विशाल के बाल मोक्ष से मनुष्य अपने पितरों को पिंड और तर्पण देता है, 7 पीढ़ियों के पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और आप देख रहे हैं आजकल पितृपक्ष में काफी संख्या में लोग अपने पितरों को उद्धार के लिए ब्रह्म कपाल आए।
12: पितरों की मुक्ति के लिए श्री हरि के इस पावन धाम की दिव्यता ही ऐसी है कि यहाँ कराए जाने वाले पिंडदान और तर्पण को लेकर श्रद्धालुओं का विश्वास अटूट है। यही कारण है कि ब्रह्म कपाल में पिंडदान और तर्पण की मान्यता और परंपरा को अब विदेशी भी आत्मसात करते दिख रहे हैं। दरअसल भारत आए 7 रूसी तीर्थयात्रियों ने भी यहां विधि विधान के साथ अपने पितरों के निमित्त पिंडदान और तर्पण किया। वैसे पहले भी सनातनी परंपरा उसके प्रति आस्था विदेशियों को काफी आकर्षित करती रही है, ऐसे में बद्रीनाथ धाम में विदेशी श्रद्धालुओं का अपने पुरखों का पिंडदान एक बार फिर दर्शा रहा है कि आस्था की कोई सीमा नहीं होती। ब्रह्म कपाल में पिंडदान का धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कर इन विदेशी श्रद्धालुओं का सनातनी परंपराओं और मान्यताओं के प्रति भाव जता रहा है कि संस्कृति अलग हो सकती है लेकिन पूर्वजों के प्रति श्रद्धा का भाव कमोबेश सभी जगह पर एक ही जैसा है। चमोली से कमल नयन सिलोरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
2: अब आपको युगांडा के टूरो राज्य में हुए एक अनोखे से उत्सव की झलक दिखाते हैं। यहाँ परंपरागत रीति से नए राजा का स्वागत हुआ। खास बात यह है कि बबीटो कबीले का नया शासक पहले टीवी एंकर हुआ करता था। 21 सदस्यों के दल ने एडवर्ड रुकीडी नाम के इस शख्स को राजा चुना और अब विधिवत ताजपोशी इनकी की जा रही है।
14: युगांडा के टूरो में मौजूद फोर्ट पोर्टल में उत्सव मनाया जा रहा है।

0: की उम्र में कैंसर से निधन हो गया था। यूं तो युगांडा एक संवैधानिक गणराज्य है जहां एक निर्वाचित राष्ट्रपति शासन करता है, लेकिन औपनिवेशिक काल से पहले के यहां के चार राज्य आज भी पुरानी परंपराओं और रीतियों के अनुसार चलते हैं। भले ही इनके पास कोई राजनीतिक शक्ति न हो, इसके बावजूद ये काफी प्रभावशाली राज्य हैं। इन्हीं में से एक है शाही बबीटो कबीला, जहां नए राजा की ताजपोशी का इस वक्त जश्न मनाया जा रहा है। नए राजा एडवर्ड रुकडी किंजानाम गोमा पहले एक टीवी एंकर हुआ करते थे। इस समारोह में उन्हें नया नाम भी दिया गया, एडवर्ड रुकडी नियम्बोगो। किंजानाम गोवा पूर्व शासक ओयो नियम्बा के चचेरे भाई हैं और शाही बबीटो कबीले की 21 सदस्यों वाली समिति ने बतौर शासक इनका चुनाव किया है। ताजपोशी के इस पारंपरिक उत्सव के साथ ही कबीले में उत्तराधिकार को लेकर चला आ रहा विवाद भी समाप्त हो गया और बबीटो कबीले को नया सरदार भी मिल गया, एडवर्ड रुकिडी नियाबोगो। परंपरागत रीतियों और जश्न के साथ यहाँ नए राजा का शाही स्वागत किया जा रहा है। जाहिर है इस उत्सव में यहाँ की लोक संस्कृति के रंग भी हर ओर बिखरे नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग क्यों? हर टीवी शोरूम में दिखाई गई राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जमुई कांड में पकड़े गए आरोपियों का निकला जुलूस। बिछड़े बच्चे का माँ से भावुक मिलन। वायरल खबरों की पूरी और पक्की पड़ताल देखिए नवजोत रंधावा के साथ फैक्ट चेक शाम 7:34 पर।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़।
9: हिमाचल के मंडी में थलौर से बदलेगा 4 लेन का स्वरूप, 200 करोड़ से बनेगी राज्य की पहली 500 मीटर लंबी नई बॉक्स टन। रणथंभौर में नए पर्यटन सत्र की तैयारियां पूरी, सैलानियों का इंतजार, 1 अक्टूबर से खुल रहा टाइगर रिजर्व, नियम तोड़ने वाले गाइड और ड्राइवर्स पर होगी सख्ती। कोलकाता में नवरात्र की तैयारियां जोर शोर से जारी, बर्धमान में मां दुर्गा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे कारीगर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम।
9: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं।

0: और सात गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की सात गुड न्यूज के बारे में बताएंगे और सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की। एशियन गेम्स में आज भारतीय तीरंदाजों ने कमाल कर दिया है। कंपाउंड आर्चरी में भारतीय टीम ने 3 स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं। इतना ही नहीं, भारतीय शूटिंग टीम ने भी गोल्ड मेडल जीतकर भारत के स्वर्ण पदकों की संख्या 10 पहुंचा दी है। ऐसे में आज की जो हमारी पहली गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है। एशियन गेम्स में भारत पर बरसा सोना। जी हां, आपको बता दें कि आईची नायुगा नागोया में चल रहे एशियन गेम्स में आज भारतीय तीरंदाजों ने कमाल कर दिया है। तीरंदाजी की कंपाउंड इवेंट में आज भारतीय तीरंदाजों ने 3 गोल्ड मेडल जीता। बुधवार को पहला गोल्ड वुमेन्स कंपाउंड आर्चरी टीम ने जीता, जिसके बाद चिकिता और साहिल जाधव की जोड़ी ने मिक्स्ड कंपाउंड आर्चरी में गोल्ड जीता। इसके बाद पुरुषों के कंपाउंड आर्चरी में भी साहिल, गणेश और कुशल ने गोल्ड मेडल हासिल किया। भारत ने एशियन गेम्स के 11वें दिन 4 गोल्ड जीते, इनमें 3 गोल्ड तीरंदाजी और 1 शूटिंग में आया। शूटिंग में नीरू ढांडा और किनान चेनाई की जोड़ी को शूटिंग के ट्रैप मिक्स टीम इवेंट में गोल्ड मिला। नीरू ने लगातार दूसरे दिन गोल्ड मेडल अपने नाम किया। एशियन गेम्स में इसके साथ भारत ने 10 गोल्ड मेडल अब हो गए हैं और वो ईरान को पीछे छोड़कर मेडल टैली में 7वें नंबर पर पहुंच गया है।
1: एशियाई खेल 2026 में हमने देखा कि तीरंदाजों ने किस अंदाज से इंडिया को स्वर्ण पदक दिलाया। शुरुआत करते हैं महिलाओं के कंपाउंड आर्चरी टीम में। दक्षिण कोरिया को हराकर उन्होंने साबित कर दिया कि हां, वो दुनिया में विजय हासिल करने के लिए बहुत लायक है। विमेन्स कंपाउंड टीम ने गोल्ड जीता, लेकिन वो आखिरी गोल्ड नहीं था। सितंबर 30 का जो ये दिन है, हमें मानना चाहिए कि ये बहुत ही सुनहरा दिन है भारतीय खेलकूद के इतिहास में, क्योंकि आज के दिन में हमने देखा महिलाओं के कंपाउंड टीम के बाद पुरुषों के कंपाउंड टीम ने भी गोल्ड मेडल दिलवाया। हालांकि वो गोल्ड मेडल जो था वो लगभग जाने वाला था, लेकिन चीन की एक गलती ने हमें वो गोल्ड दे दिया। उसके साथ मिक्स्ड टीम का जो मुकाबला था आर्चरी में, उसमें भी हमने जबरदस्त प्रदर्शन किया। तो 3 लगातार गोल्ड तीरंदाजी में, और इसके लिए आज एक चौथा और सबसे बेहतरीन गोल्ड जो मिला था वो था नीरू ढांडा और काइनन चेन्नई से। नीरू ढांडा को आपको याद रखना चाहिए कि उन्होंने 2 मेडल ऑलरेडी जीत चुके थे, वो टीम सिल्वर जो ट्रैप में था और इंडिविजुअल सुनहरा जो था इंडिविजुअल गोल्ड मेडल। और आज इन्होंने काइनन चेन्नई के साथ 3 गोल्ड, तीसरा अपना मेडल जीत लिया और दूसरा गोल्ड मेडल।
0: 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी ब्राजील की टीम भारत आ रही है। ब्राजील की टीम भारत के साथ कोलकाता में दोस्ताना मैच खेलने के लिए आ रही है। कोलकाता में ब्राजील के खिलाड़ियों का भव्य स्वागत करने की तैयारियां चल रही है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो दूसरी गुड न्यूज है वो है भारत ब्राजील मुकाबले के लिए तैयार कोलकाता। जिया, आपको बता दें कि कोलकाता में खिलाड़ियों को बंगाली परंपरा के मुताबिक गिफ्ट दिए जाएंगे, जिनमें उन्हें मां दुर्गा की मूर्तियां, दार्जिलिंग चाय और पारंपरिक हस्तशिल्प उत्तरीय भेंट किया जाएगा। ब्राजील के फुटबॉलर्स के सम्मान में बंगाली व्यंजनों वाला एक खास डिनर का भी आयोजन होगा।

0: ब्राजील के फुटबॉलर विनीसियस जूनियर और राफिनिया जैसे स्टार खिलाड़ी जल्द ही भारतीय जमीन पर खेलते दिखाई देंगे, क्योंकि ब्राजील की टीम भारत में भारत के खिलाफ खेलने के लिए कोलकाता आ रही है। फुटबॉल के दीवाने कोलकाता में 3 अक्टूबर को विवेकानंद युवा भारती क्रीडांगन में भारत और ब्राजील के बीच ऐतिहासिक फ्रेंडली मैच होने जा रहा है। ब्राजील की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम अपने वर्ल्ड कप स्टार्स के साथ 1 अक्टूबर को कोलकाता पहुंचेगी। 3 अक्टूबर को उनका मुकाबला गुरप्रीत सिंह संधु और उनकी टीम से होगा। कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीडांगन में इस मैच के आखिरी दौर की तैयारियां चल रही हैं। फीफा और AIFF के अधिकारी पश्चिम बंगाल सरकार के साथ मिलकर तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं।
1: सब मिलकर के एक अच्छा मैच हो, इसकी प्रयास है। पहली बार भारत में ब्राजील खेल रहा है, अच्छी बात है। पिछले 80 वर्षों में कभी ऐसा हुआ नहीं है, और यदि इससे भारत के फुटबॉल के मान लीजिए कि इंटरनेशनल प्रेजेंस बनता है तो खुशी होगी, क्योंकि आमतौर पे भारत को एक बाजार के रूप से देखा जाता है।
0: ब्राजील की टीम पहली बार इंडिया आ रही है, लिहाजा ब्राजील की टीम का भव्य स्वागत करने की तैयारी की जा रही है।

0: पश्चिम बंगाल सरकार ब्राजीलियाई फुटबॉलरों को माँ दुर्गा की मूर्तियाँ, दार्जिलिंग चाय और पारंपरिक हस्तशिल्प उत्तरीय भेंट करेगी। ब्राजील के फुटबॉलर्स के सम्मान में बंगाली व्यंजनों वाला खास डिनर भी आयोजित किया जाएगा।
1: विश्व का जो एक बहुत बड़ा टीम, एक फुटबॉल पावर हाउस जिसको कहता है, वो ब्राजील नेशनल टीम फुल टीम आएगा। उसके बाद उरुग्वे नेशनल टीम आएगा, जो वही वर्ल्ड कप खेला है, वर्ल्ड कप जीता भी है पहले। तो उसके साथ साथ इसके बाद रशियन नेशनल विमेंस टीम भी खेलेगा इंडियन नेशनल विमेंस टीम के खिलाफ। तो एक के बाद एक इंटरनेशनल मैच हो रहा है और ये पहले बार हो रहा है पूरा भारतवर्ष में। और जिस तरह से पश्चिम बंगाल में हम लोग फुटबॉल को हम सब बहुत प्यार करते हैं, हम लोग एक रसगुल्ला को प्यार करते हैं तो आपको पता ही है, और फिर रसगुल्ला से भी ज्यादा फुटबॉल को प्यार करते हैं, फुटबॉल को पसंद करते हैं।
0: आने वाले मैच के लिए टिकटों की बिक्री जारी है और ऑनलाइन अब बस कुछ ही टिकट शेष बचे हैं। फीफा के नियमों के मुताबिक पिच को फिर से तैयार किया गया है और ड्रेसिंग रूम भी तैयार किए जा रहे हैं।
2: वैसे मैदान की तैयारी में भी कोई कमी नहीं है। हम लोग अभी ब्राजील टीम की जो ड्रेसिंग रूम है उसी के अंदर है और देख सकते हैं कि ये जो ड्रेसिंग रूम है, ये जो लॉकर रूम है, यहाँ पे हर एक प्लेयर्स की अलग अलग जो लॉकर्स है उसको यहाँ पे ब्लॉक कर दिया गया है। ये देख सकते हैं कि डॉगलस सैंटोस, डेनिलो, मार्किनोस, गैब्रियल, वैंडरसन, हुगो सूजा, पूरी ब्राजील टीम इस वक्त कोलकाता में आने वाली है।
0: ब्राजील की टीम 1 अक्टूबर को आएगी और 3 अक्टूबर की शाम को कोलकाता इस ऐतिहासिक मैच का गवाह बनेगा। अब 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन टीम के खिलाफ इस ऐतिहासिक मुकाबले में दुनिया को भारतीय टीम अपनी ताकत दिखाएगी।
2: ये जो मैदान है, यानी कि स्वामी विवेकानंद युवा भारती क्रीडांगन, जहाँ पे ये इतनी बड़ी मैच होने वाली है इंडिया वर्सेस ब्राजील, और ब्राजील के साथ ये पहली बार जो है इंडिया में खेलेगा ब्राजील और इंडिया, और यही जो मैच है इसको टारगेट करके आगे की विजन सेट करना है, ऐसा ही सबका कहना है।
0: करीब 1 साल पहले इसी सॉल्ट लेक स्टेडियम में अर्जेंटीना के सुपरस्टार लियोनेल मेसी का इवेंट हुआ था, जो कई वजहों से काफी विवादित रहा था। लेकिन अब करीब 10 महीने बाद यह स्टेडियम 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन ब्राजील की मेजबानी के लिए तैयार है। अनिर्बान सिन्हा रॉय, कोलकाता, गुड न्यूज टुडे।
3: और रामनगरी में इस साल दीपोत्सव बेहद भव्य और दिव्य होने जा रहा है, जिसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। पर्यटकों के लिए इस बार उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने एक खास योजना बनाई है, जिसके तहत दीपोत्सव अयोध्या टूर पैकेज तैयार किया गया है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो तीसरी गुड न्यूज है वो है दीपावली में 30 लाख दीयों से सजेगी अयोध्या। जी हाँ, आपको बता दें कि अयोध्या का दीपोत्सव बेहद खास होने जा रहा है। इस साल दीपोत्सव अयोध्या टूर पैकेज बनाया जा रहा है। इस टूर पैकेज में 6 से 8 नवंबर तक श्रद्धालुओं को श्री राम जन्मभूमि मंदिर, हनुमानगढ़ी जैसे कई और ऐतिहासिक जगहों के दर्शन कराते हुए अयोध्या के आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व से भी रूबरू कराया जाएगा।

हर साल सरयू के पावन तट पर बसी अयोध्या जब दीपों की रोशनी से जगमगाती है तो मानो आस्था, संस्कृति और परंपरा का अद्भुत संगम साकार हो उठता है। दीपोत्सव के अवसर पर लाखों दीयों की लौ अयोध्या की आध्यात्मिक आभा को और भी भव्य बना देती है। जैसे जैसे अंधकार मिटता है और दीयों की कतारों से रोशनी बिखरती है तो पूरी अवध नगरी ही एक दिव्य और मनमोहक दुनिया में बदल जाती है। लेकिन ऐसा नहीं कि रामनगरी में इस बार के इस भव्य दीपोत्सव समारोह की तैयारियां केवल दीपों की जगमगाहट तक ही सीमित रहेगी। दरअसल दीपोत्सव के वक्त यहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी कुछ विशेष किया जा रहा है। यूपीएसटीडीसी ने श्रद्धालुओं के लिए एक खास दीपोत्सव अयोध्या टूर पैकेज लॉन्च किया है। ये पैकेज महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और दूसरे राज्यों के श्रद्धालुओं के लिए है। इस टूर पैकेज के तहत श्रद्धालु राम मंदिर, हनुमानगढ़ी, कनक भवन और नागेश्वर नाथ मंदिर के दर्शन करेंगे।

0: दीपोत्सव अयोध्या टूर पैकेज के साथ ही दीपोत्सव की तैयारियों में इस बार 30 लाख दीयों को जगमगाने का भी फैसला लिया गया है। यानी इस दौरान स्थानीय लोगों के साथ देसी विदेशी श्रद्धालुओं की भी जिम्मेदारी है कि वो दीपों की रोशनी के इस त्योहार में शामिल होकर पर्व की सुंदरता और उसकी आभा में चार चांद लगाएं। बता दें कि राम की पैड़ी को 30 लाख दीयों से जगमगाया जाएगा। इसके अलावा शानदार लेजर शो और 2100 ड्रोन शो आयोजित करने की भी योजना है। सरयू नदी के तट पर 2100 वैदिक पुजारी महाआरती करेंगे। वहीं दीप प्रज्वलन में 240 से ज्यादा मंदिर और मठ हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही रामकथा पार्क से लेकर राम की पैड़ी तक लगभग एक दर्जन जगहों पर खास कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जाहिर है अयोध्या में दीपोत्सव केवल दिया जलाने का उत्सव ही नहीं बल्कि भगवान राम के आदर्शों, मर्यादा और अवध नगरी की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को नमन करने का अवसर है। यकीनन इस साल 30 लाख दीयों की रोशनी, ड्रोन और लेजर शो और श्रद्धालुओं के लिए दीपोत्सव अयोध्या टूर पैकेज के साथ होने वाले कई और कार्यक्रम दीपोत्सव की रंगत को और बढ़ाएंगे। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में सुरक्षा एजेंसियों की सक्रियता बढ़ गई है। अयोध्या में एनएसजी के कमांडो पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो चौथी गुड न्यूज है वो है एनएसजी संभालेगी राम मंदिर की सुरक्षा। आपको बता दें कि राम मंदिर परिसर में पिछले 3 दिनों से सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल चल रही है। इस अभ्यास के जरिए आपात स्थिति में सुरक्षा बलों की प्रतिक्रिया, आपसी समन्वय और सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों को परखा जा रहा है।

0: अयोध्या, जहां राम मंदिर में प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए हर दिन लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं, जहां हनुमानगढ़ी समेत शहर के तमाम धार्मिक स्थल पर आस्था का सैलाब उमड़ता है। ऐसे में लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा को और मजबूत किया जा रहा है। राम मंदिर से लेकर कनक मंदिर तक पूरी अयोध्या में सुरक्षा पहले से ही कई स्तरों में की जा रही है। स्थानीय पुलिस, सुरक्षा बल, खुफिया एजेंसियां और मंदिर की अपनी सुरक्षा व्यवस्था है, लेकिन बदलती सुरक्षा चुनौतियों के बीच अब राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG की भूमिका को भी और मजबूत किया जा रहा है।
1: अयोध्या में लगातार NSG का जो विशेष दस्ता है वो लगातार निगरानी कर रहा है। लोग हर एक मंच मंदिरों में जा रहे हैं, लगातार पूछताछ कर रहे हैं, यहाँ की जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। तो जिस प्रकार से अयोध्या रामनगरी में यहाँ भक्त हैं, सैलाब यहाँ आते हैं श्रद्धालु, तो उनकी खास सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यहाँ लगातार NSG के जवान यहाँ पे सीधा एक बड़ी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेकर अयोध्या पहुंचे हैं और लगातार यहाँ पे जो है निगरानी की जा रही है, चेक किया जा रहा है।
0: किसी भी खतरे से निपटने के लिए NSG की टीम अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था की बारीकी से आकलन कर रही है। मंदिर परिसर में पहुंचकर सुरक्षा इंतजामों की मॉनिटरिंग की जा रही है। प्रवेश और निकास के रास्तों से लेकर संवेदनशील स्थानों तक सुरक्षा व्यवस्था को परखा जा रहा है। राम मंदिर और कनक भवन के अलावा NSG टीम ने हनुमानगढ़ी मंदिर का निरीक्षण किया। मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था, प्रवेश निकास व्यवस्था, भीड़ प्रबंधन और संवेदनशील बिंदुओं को परखा गया।
1: अयोध्या में लगातार 3 दिन से निरीक्षण किया जा रहा है। NSG कमांडेंट यहाँ पे लगातार घूम रहे हैं। राम मंदिर हो चाहे हनुमानगढ़ी हो, तो आज हनुमानगढ़ी परिसर में पूरी डायरेक्शन दी गई है। बाकायदे कंट्रोल रूम पूरे चेक किए गए हैं। तो यहाँ लगातार जो है अयोध्या की रामनगरी की सुरक्षा को लेकर खास इंतजाम किए जा रहे हैं।
0: दरअसल अयोध्या में NSG हब स्थापित करने की प्रक्रिया भी चल रही है। ऐसे में अयोध्या में NSG की मौजूदगी को सिर्फ मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के तौर पर नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसे भविष्य की सुरक्षा जरूरतों के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है। NSG के निरीक्षण के बीच स्थानीय सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक भी की गई। बैठक में अयोध्या की मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के साथ साथ संभावित सुरक्षा खतरों और आपात स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया की तैयारियों पर चर्चा हुई। किसी भी आपात स्थिति में अलग अलग सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल कैसे हो, सुरक्षा बल कितनी तेजी से प्रतिक्रिया दे सके और श्रद्धालुओं की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करते हुए सुरक्षा व्यवस्था को कैसे मजबूत रखा जाए, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा की गई। यानी अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था सिर्फ मौजूदा इंतजामों तक सीमित नहीं है, सुरक्षा व्यवस्था को हाई

0: पर मजबूत किया जा रहा है, जिससे किसी भी श्रद्धालु की सुरक्षा खतरे में ना पड़े। अयोध्या से मयंक शुक्ला, गुड न्यूज टुडे।
1: और इन दिनों पितृपक्ष में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भू बैकुंठ नगरी श्री बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं, जहां वो भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के बाद ब्रह्म कपाल तीर्थ में अपने पूर्वजों का तर्पण और पिंडदान कर रहे हैं। इस बार कुछ विदेशी मेहमान भी पिंडदान करने बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। ऐसे में हमारी आज की अगली यानी कि जो पांचवी गुड न्यूज है वो है विदेशी मेहमान कर रहे पिंडदान। विदेशी श्रद्धालु भी बद्रीनाथ धाम आकर अपने पुरखों का पिंडदान कर रहे हैं। रूस से आए 7 श्रद्धालुओं ने अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान किया।
2: जहां बहती है अलकनंदा की पवित्र धारा, उसी बद्रीनाथ के आंगन में पितरों की आत्मिक शांति के लिए पिंडदान हो रहा है। देवभूमि उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में जहां 4 धाम यात्रा दर्शन के रंग बिखरे हैं, हर तरफ श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है, तो वहीं इन दिनों पितृपक्ष के दौरान भगवान विष्णु का ये धाम सिर्फ 4 धाम दर्शन का केंद्र ही नहीं, बल्कि पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता और स्मरण का भी पवित्र स्थल बना हुआ है। दरअसल यहाँ के ब्रह्म कपाल भी मोक्ष की कामना और पितरों के प्रति श्रद्धा जैसी भावनाओं को लेकर अच्छी खासी संख्या में श्रद्धालु तर्पण के लिए पहुँच रहे हैं, अपने पूर्वजों के निमित्त पिंडदान कर रही है। श्राद्ध परंपरा का भगवान बद्री विशाल के आंगन में होना ही इन तमाम श्रद्धालुओं को पुरखों के प्रति सम्मान और आध्यात्मिकता की अनुभूति दे रहा है।
3: कहा गया है इस स्थान पर पिंड देने से 7 पीढ़ियों के पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ पर भगवान बद्री विशाल के बाल मोक्ष से मनुष्य अपने पितरों को पिंड और तर्पण देता है, 7 पीढ़ियों के पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और आप देख रहे हैं आजकल पितृपक्ष में काफी संख्या में लोग अपने पितरों को उद्धार के लिए ब्रह्म कपाल आए।
2: पितरों की मुक्ति के लिए श्री हरि के इस पावन धाम की दिव्यता ही ऐसी है कि यहाँ कराए जाने वाले पिंडदान और तर्पण को लेकर श्रद्धालुओं का विश्वास अटूट है। यही कारण है कि ब्रह्म कपाल में पिंडदान और तर्पण की मान्यता और परंपरा को अब विदेशी भी आत्मसात करते दिख रहे हैं। दरअसल भारत आए 7 रूसी तीर्थयात्रियों ने भी यहाँ विधि विधान के साथ अपने पितरों के निमित्त पिंडदान और तर्पण किया। वैसे पहले भी सनातनी परंपरा उसके प्रति आस्था विदेशियों को काफी आकर्षित करती रही है। ऐसे में बद्रीनाथ धाम में विदेशी श्रद्धालुओं का अपने पुरखों का पिंडदान एक बार फिर दर्शा रहा है कि आस्था की कोई सीमा नहीं होती। ब्रह्म कपाल में पिंडदान का धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कर इन विदेशी श्रद्धालुओं का सनातनी परंपराओं और मान्यताओं के प्रति भाव जता रहा है कि संस्कृति अलग हो सकती है, लेकिन पूर्वजों के प्रति श्रद्धा का भाव कमोबेश सभी जगह पर एक ही जैसा है। चमोली से कमल नयन सिलोरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
1: और यूपी के भदोही में 4 अक्टूबर से 50वां इंडिया कार्पेट एक्सपो लगने जा रहा है। एक ऐसा मंच जहां भारत के हाथ से बने कालीनों की खूबसूरती से लेकर आधुनिक डिजाइन तक का संगम देखने को मिलेगा। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो छठी गुड न्यूज है वो है भदोही में सजेगा इंडिया कार्पेट एक्सपो। जी हाँ, आपको बता दें कि भदोही के कार्पेट एक्सपो मार्ट में इस साल गोल्डन जुबली संस्करण होगा, जिसे कालीन निर्यात संवर्धन परिषद यानी कि CEPC और वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। दिन कम बचे हैं, लिहाजा एक्सपो की तैयारियां तेज कर दी गई हैं।

धागा धागा जोड़कर, गांठ गांठ में हुनर पिरोकर, जब हाथों की मेहनत रंगों और डिजाइनों का रूप लेती है तो तैयार होता है वो कालीन जिसकी खूबसूरती सिर्फ जमीन नहीं सजाती बल्कि दुनिया के बाजार में हिंदुस्तान की पहचान भी बनाती है। उत्तर प्रदेश का भदोही, जिसे कालीन सिटी के नाम से जाना जाता है, अब एक बार फिर दुनिया के सामने भारतीय कारपेट इंडस्ट्री की ताकत और हुनर पेश करने जा रहा है। भदोही में 50वें इंडिया कारपेट एक्सपो का आयोजन होने जा रहा है। भदोही के कारपेट एक्सपो में 4 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक एक से बढ़कर एक कारपेट की पेशकश होगी। आयोजकों के मुताबिक एक्सपो का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं। एक्सपो में अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, रसिया, कनाडा, इटली, स्पेन सहित विश्व

0: 65 देशों के बायर्स हिस्सा लेने वाले हैं। ऐसे में एक्सपो को लेकर तैयारी जोर शोर से चल रही है। इन तैयारियों के तहत मार्ट में स्टॉल बनाने का काम तेजी से किया जा रहा है। इस एक्सपो में 200 से ज्यादा भारतीय कालीन निर्यातक अपने उत्पाद पेश करेंगे। इसके लिए निर्यातकों ने नए और आकर्षक डिजाइन सैंपल तैयार कर लिए हैं। खास बात यह है कि अभी तक 325 बायर्स के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और आने वाले दिनों में ये संख्या और बढ़ सकती है।
1: दिल्ली का फेयर हुआ तो इससे काफी एक्सपेक्टेशन है, जिस तरह से बायर्स का रुझान आ रहा है, जिस तरह से उनका रजिस्ट्रेशन आ रहे हैं, उससे हम लोग काफी होपफुल हैं कि फेयर बहुत अच्छा जाएगा। हमारा ये लैंडमार्क 50th फेयर भी है, उसके हिसाब से भी हमारी तैयारी है।
0: ये एक्सपो बायर्स और सेलर के बीच एक महत्वपूर्ण ब्रिज का काम करता है। इसमें नए फैशन और डिजाइन सामने आते हैं, जिससे निर्यातकों को नए नए ऑर्डर मिलते हैं, जिससे बुनकरों कामगारों की भी आजीविका चलती रहती है। ईरान अमेरिका वॉर की वजह से पिछले दिनों दिल्ली और जर्मनी में आयोजित होने वाला फेयर रद्द हो गया था, जिससे कालीन निर्यातकों में मायूसी थी। लेकिन अब भदोही में होने जा रहे इस एक्सपो से एक बार फिर कालीन निर्यातकों की उम्मीद जगी है।
2: और ज्यादा से ज्यादा हम लोग ऐसे प्रोडक्ट को बनाएंगे या अभी इसे बनाना शुरू भी कर चुके हैं, जैसे पेटियान का होता है, जो सस्टेनेबल होता है, जो एनवायरमेंट को प्रॉब्लम या एनवायरमेंट को उससे हार्म नहीं होता है, ऐसे प्रोडक्ट को हम लोग बना रहे हैं और कस्टमर्स भी हमारे ऐसे ही प्रोडक्ट को मांग रहे हैं।
0: पीढ़ियों से हाथों के हुनर से कालीन बुनने की परंपरा ने भदोही को दुनिया के नक्शे पर अलग पहचान दिलाई है और अब इसी पहचान को वैश्विक बाजार तक और मजबूती से पहुंचाने के लिए भदोही में 50वां इंडिया कार्पेट एक्सपो आयोजित हो रहा है। भदोही से महेश जायसवाल, गुड न्यूज टुडे।
3: सहारनपुर में सरकारी योजना ने एक व्यक्ति की जिंदगी बदल दी। देवेंद्र को सरकार की तरफ से 2 लाख रुपए का लोन मिला, जिससे उन्होंने मिट्टी के कारोबार की शुरुआत की और जब कारोबार ने रफ्तार पकड़ी तो उन्होंने 4 और लोगों को रोजगार दिया। उन्हें अब दूसरे शहरों से भी ऑर्डर मिल रहे हैं। ऐसे में आज की हमारी 7वीं और आखिरी गुड न्यूज इसी से जुड़ी है। सरकारी मदद से मिट्टी कारोबारी ने बदली जिंदगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना ने सहारनपुर के देवेंद्र कुमार की जिंदगी बदल दी। देवेंद्र बचपन से ही मिट्टी के बर्तन और अन्य सामान बनाने का काम करते आ रहे हैं। समय के साथ काम मंदा हुआ तो उन्होंने माटी कला का काम बंद कर घोड़ा बग्घी चलाना शुरू कर दिया। इससे परिवार का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में उन्हें पिछले साल मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना की जानकारी मिली, जिसके बाद उन्होंने खादी ग्रामोद्योग विभाग में आवेदन किया, जिसके बाद उन्हें 2 लाख रुपए का ऋण मिला। ऋण मिलने के बाद देवेंद्र ने दोबारा अपने पुश्तैनी काम को बड़े स्तर पर शुरू किया। अब वो मिट्टी से फ्लावर पॉट, गमले, ग्लास, गुल्लक, दीपक और मूर्तियां समेत 2 दर्जन से अधिक तरह के उत्पाद तैयार कर रहे हैं। और आपको बता दें कि सहारनपुर के अलावा अब चरथावल, मुजफ्फरनगर, करनाल और दूसरे शहरों से भी उन्हें ऑर्डर मिल रहे हैं। इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चल।
0: राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग क्यों? हर टीवी शोरूम में दिखाई गई राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जमुई कांड में पकड़े गए आरोपियों का निकला जुलूस। बिछड़े बच्चे का माँ से भावुक मिलन। वायरल खबरों की पूरी और पक्की पड़ताल देखिए नवजोत रंधावा के साथ फैक्ट चेक शाम 7:34 पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
6: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे
5: मुझे तकरीबन

0: 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: आने वाली है माँ। शक्ति उपासना का संकल्प, देवी के आह्वान की तैयारी। 30 लाख दीयों से रोशन होगी अवधपुरी। दिल्ली में सब्जियां खाएं मगर देखभाल कर। देखिए अच्छी खबर, सच्ची खबर, रात 8 बजे।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
0: आने वाली है माँ। शक्ति उपासना का संकल्प, देवी के आह्वान की तैयारी। 30 लाख दीयों से रोशन होगी अवधपुरी। दिल्ली में सब्जियां खाएं मगर देखभाल कर। देखिए अच्छी खबर, सच्ची खबर, रात 8 बजे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: एशियन गेम्स में भारत की चमक बरकरार। 87 किलोग्राम ग्रीको रोमन रेसलिंग इवेंट में सुनील कुमार ने जीता ब्रॉन्ज। आज तीरंदाजी में 3 और शूटिंग में आया गोल्ड। भारत के खाते में कुल 10 गोल्ड मेडल। एशियन गेम्स में देश को गोल्ड दिलाने वाले खिलाड़ियों का स्वदेश लौटने पर भव्य स्वागत। पहनाई गई करेंसी नोटों की माला और फूल मालाएं, ढोल नगाड़ों से वेलकम। हिमाचल के मंडी में थलौट में बदलेगा 4 लेन का स्वरूप। 200 करोड़ से बनेगी राज्य की पहली 500 मीटर लंबी नई बॉक्स टनल। रणथंभौर में नए पर्यटन सत्र की तैयारियां पूरी, सैलानियों का इंतजार। 1 अक्टूबर से खुल रहा टाइगर रिजर्व, नियम तोड़ने वाले गाइड और ड्राइवर्स पर होगी सख्ती। कोलकाता में नवरात्र की तैयारियां जोर शोर से जारी। बर्धवान में मां दुर्गा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे कार्यक्रम।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
1: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती, कभी किसी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है।
0: लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में अब खबरें सिर्फ अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहां हर किसी के हाथ में कैमरा है, हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कुछ दूर लगे। और नतीजा ये है कि लोग बिना जांचे परखे, बिना सोचे समझे ने सच मान लेते हैं, शेयर कर देते हैं, और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल, और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज ऐसी दो खबरों की पड़ताल हम करेंगे, जिसमें फैक्ट चेक में आज सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल तस्वीर की, जिसको शेयर करके ये दावा किया जा रहा है कि सोशल मीडिया स्पेशल इंटेंसिव रिविजन यानी कि SIR को लेकर 24 सितंबर को राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस दौरान एक शोरूम में लगे सभी टीवी पर सिर्फ राहुल गांधी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें ही देखने को मिली। क्या है वायरल तस्वीर और दावे की सच्चाई, आगे बताएंगे। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो की, जिसमें दावा यह किया जा रहा है कि बिहार के जमुई कांड में गिरफ्तार आरोपियों को पहले पुलिस ने पीटा और फिर सरेरा जुलूस निकाला। क्या है वायरल वीडियो और दावे की सच्चाई, आगे बताएंगे। शुरू करते हैं फैक्ट चेक।
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़।
0: सबसे पहले खबर राहुल गांधी की। रातों रात राहुल गांधी सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे। दरअसल एक वीडियो के हवाले से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को देश के कोने कोने में देखा गया, देश भर के टीवी स्क्रीन्स पर उन्हें देखा और सुना गया। असल में राहुल ने 26 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए SIR प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। कहा यह भी जा रहा है कि उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देश के सभी टीवी शोरूम्स में रखे गए टीवी पर दिखाई गई। यह तस्वीर और खबर इतनी तेजी से वायरल हुई कि हमने इसका सच जानने की कोशिश की।
8: हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें दावा किया गया था कि तीनों चुनाव आयुक्तों के बीच SIR, वोटर डेटा और फॉर्म 6 समेत कुछ मुद्दों पर मतभेद है। इसके बाद विपक्षी पार्टियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की नियत पर सवाल खड़े कर दिए। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद चुनाव आयोग ने कहा कि SIR से जुड़े सभी बड़े फैसले सर्वसम्मति से लिए गए थे और दो चुनाव आयुक्तों की कैबिनेट सचिव को भेजी गई चिट्ठियां आयोग की किसी नीति या SIR के फैसले से जुड़ी नहीं थी। इसके बावजूद कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों के सवाल खत्म नहीं हुए। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगा है और साथ ही उनके खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक टीवी शोरूम की तस्वीर शेयर की गई है, जिसमें कई टीवी पर राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूचना को डिस्प्ले होते देखा जा रहा है। यूजर्स इस तस्वीर को देश का मूड बता रहे। इस तस्वीर को शेयर करते हुए एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, मूड ऑफ द नेशन। कई लोग इस तस्वीर को सच मानकर धड़ल्ले से शेयर करते हुए ये कह रहे हैं कि हर जगह सिर्फ राहुल गांधी ही छाए हुए हैं।
0: बता दें कि हाल ही में स्पेशल इंटेंसिव रिविजन यानी कि SIR प्रक्रिया को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई थी, और इस रिपोर्ट में SIR प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए थे। रिपोर्ट में कहा गया था कि भारतीय चुनाव आयोग के तीनों सदस्य SIR की प्रक्रिया पर एक राय नहीं रखते हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इसी रिपोर्ट और पूरी SIR प्रक्रिया को लेकर 24 सितंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की थी। इसी संदर्भ

0: में ये तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें एक शोरूम में लगे सभी टीवीज पर लोग राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं। ये खबर हमें थोड़ी सी अटपटी लगी, इसलिए हमने इसकी जांच शुरू की। इस तस्वीर को बारीकी से देखने पर हमें इसमें कई गलतियां नजर आई। टीवी पर राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूचना में दाईं तरफ कोने में वोट चोरी लिखा हुआ है, लेकिन इसमें चोरी की लिखावट स्पष्ट देखने को नहीं मिल रही है। हमें राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूचना का ओरिजिनल पोस्टर उनके यूट्यूब चैनल पर मिला और इस ओरिजिनल पोस्टर में साफ साफ देखा जा सकता है कि वोट चोरी स्पष्ट और सही तरीके से लिखा हुआ है। तस्वीर को देखने पर यह भी शक हुआ कि फर्श पर कई टीवी पर रिफ्लेक्शन भी नजर आ रहा है, लेकिन इन सभी रिफ्लेक्शंस में टीवी ऑफ दिख रहा है। ये कैसे संभव हो सकता है? और गौर से देखने पर कई टीवी स्क्रीन्स की तस्वीरें भी अलग सी लग रही हैं। किसी एक शोरूम में राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई जा रही हो ये बड़ी बात नहीं है, पर इसके साथ ही जो दावे किए जा रहे हैं कि हर शोरूम में हर टीवी पर लोगों को राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई जा रही है, ये हजम होने वाली बात नहीं थी। इसलिए हमने इसकी थोड़ी और पड़ताल की। हमने ये भी ढूंढने की कोशिश की कि आखिर ये तस्वीर कहां और किस शोरूम की है। हमें इसकी कोई भी जानकारी नहीं मिली, इसीलिए हमारे सामने पहला सवाल यही था कि आखिर वायरल हो रही तस्वीर की आधिकारिक स्रोत की जानकारी क्यों नहीं दी गई। इसके बाद हमने कांग्रेस और राहुल गांधी के सोशल मीडिया अकाउंट को भी खंगाला, पर वहां भी तस्वीर नजर नहीं आई। ये बात बेहद अटपटी लगी और इसी से जुड़ा हुआ हमारा दूसरा सवाल कि जिस खबर पर सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के कसीदे पढ़े जा रहे हैं, उस खबर का राहुल गांधी या फिर कांग्रेस के किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पर जिक्र तक क्यों नहीं है। हमारा तीसरा सवाल यह कि कहीं जानबूझकर एडिटेड तस्वीर को वायरल करके लोगों के बीच भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा। सच और झूठ आप इस रिपोर्ट में जानिए।
1: बीते कुछ दिनों से ज्ञानेश कुमार के नाम पर काफी हंगामा हो रहा है। उन पर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR में पक्षपात करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। विपक्ष की पार्टियां इस पर लगातार प्रदर्शन कर रही हैं और ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांग रही हैं। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की ये तस्वीर वायरल हुई। सच और झूठ जानने के लिए फैक्ट चेक टीम इसकी जांच में जुटी। सर्च के दौरान हमें कहीं भी तस्वीर का ओरिजिनल सोर्स नहीं मिला, क्योंकि अगर ये सही होता तो इसके बारे में कहीं न कहीं आधिकारिक जानकारी जरूर होती, लेकिन कहीं कुछ भी देखने को नहीं मिला। इसके बाद हमने वायरल तस्वीर की बारीकी से जांच की और हमें इसमें कई ऐसी गलतियां देखने को मिली जिससे हमें इसके दावे पर शक हुआ। लिहाजा हमने वायरल तस्वीर की जांच AI डिटेक्टर टूल्स, हाई मॉडरेशन, ट्रुथ स्कैन, इमेज डिटेक्टर और डी कॉपी AI पर की। इन सभी टूल्स की जांच में परिणाम सामने आया कि वायरल तस्वीर के AI जनरेटेड होने के चांस काफी ज्यादा है। हाई मॉडरेशन की जांच में 63.7%, ट्रुथ स्कैन की जांच में 75%, इमेज डिटेक्टर की जांच में 75% और डी कॉपी AI की जांच में 78% AI जनरेटेड होने का परिणाम सामने आया। इस तरह हमारी जांच से यह साफ हो गया कि वायरल हो रहा दावा झूठा है। ये AI जनरेटेड तस्वीर है, इसलिए सोशल मीडिया यूजर्स का दावा भ्रामक है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
0: बात करते हैं एक और वायरल हो रही खबर की। दावा यह किया जा रहा है कि बिहार के जमुई कांड में गिरफ्तार आरोपियों को पुलिस ने सरेराह पीटा, जुलूस निकाला। कुछ लोग इस वीडियो के जरिए सम्राट सरकार के एक्शन की भी तारीफें कर रहे हैं। इस वीडियो की भी सच्चाई हमने जानने की कोशिश की, इस रिपोर्ट में देखिए।

बिहार के जमुई मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी नंदन यादव समेत 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस एनकाउंटर में आरोपी नंदन के पैर में गोली लग गई थी। इस घटना को लेकर विपक्षी पार्टियां लगातार सम्राट सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। इससे जोड़कर सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस को चेहरा ढके कुछ युवकों को पीटते हुए देखा जा रहा है। कुछ यूजर्स इसे शेयर कर दावा कर रहे हैं कि ये वीडियो जमुई मामले में गिरफ्तार आरोपियों की पिटाई का है। एक इंस्टाग्राम यूजर ने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि जमुई कांड पुलिस के अनुसार

0: मामले में नंदन यादव और हरेराम यादव के खिलाफ कार्रवाई हुई। रिपोर्टिंग के मुताबिक नंदन के पैर में गोली लगी और हरेराम भी घायल हुआ। नाबालिग पीड़ित की पहचान उजागर करने वाला वीडियो शेयर करने के मामले में करीब 120 सोशल मीडिया प्रोफाइल पर FIR की जानकारी सामने आई है। वीडियो का सच झूठ जाने बगैर लोग इसे लगातार शेयर कर रहे हैं।
1: बिहार के जमुई जिले में 19 सितंबर को एक नाबालिग छात्रा और उसके साथी के साथ बदसलूकी और छेड़खानी हुई, जिसके बाद विपक्षी पार्टियां सम्राट चौधरी पर हमलावर हो गई। हालांकि इसके बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। मुठभेड़ में गोली लगने से मुख्य आरोपी नंदन यादव घायल हो गया और एक और आरोपी हरेराम यादव भागने के दौरान घायल हो गया। हाल ही में दो और आरोपियों सौरभ राम और छोटू राम की गिरफ्तारी के बाद इस मामले में अब तक कुल 7 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। इन सबके बीच ये वीडियो इंटरनेट पर सुर्खियां बटोर रहा है। खबर यह फैलाई जा रही कि जमुई कांड में गिरफ्तार आरोपियों को पुलिस ने पहले पीटा और फिर उनका जुलूस निकाला। अब तेजी से ये वीडियो ट्रेंड कर रहा है। हमारा भी ध्यान इस वीडियो पर गया और हमने इसकी पड़ताल शुरू की। वीडियो किसी बाजार का लग रहा है जहां पर लोगों की अच्छी खासी भीड़ है। 3 युवक जिनके चेहरे ढके हुए हैं, पुलिस उन्हें पीट रही है। इस दौरान हमें एक और गौर करने वाली बात नजर आई। एक लड़का लंगड़ाता हुआ दिख रहा है। इस समय लगा कि शायद इसे देखकर सोशल मीडिया यूजर्स ये राय बनाने लगे हों कि जमुई कांड का ये मुख्य आरोपी नंदन यादव है, जिसे पुलिस मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगी है। वीडियो को फ्रेम दर फ्रेम देखने के बाद भी हमें शक हुआ पुलिस ने कहीं रेड मारकर इन आरोपियों को पकड़ा तो, क्योंकि वीडियो के आखिरी हिस्से के चंद सेकंड में एक और पुलिस की गाड़ी की एंट्री होती है। मतलब ये कि जिस वक्त रेड पड़ी उस वक्त वहां पर सिर्फ एक ही गाड़ी की मौजूदगी होगी और फिर पकड़े जाने की सूचना मिलने पर एक और गाड़ी घटनास्थल पर पहुंच गई होगी। बता दें कि जमुई कांड में मुख्य आरोपी नंदन यादव और उसके सहयोगी हरेराम यादव को एक एनकाउंटर के बाद पकड़ा गया था, जिसके तुरंत बाद इन दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इसके बाद कुछ और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन इस दौरान ऐसी कोई भी तस्वीर सामने नहीं आई कि पकड़े गए आरोपियों को सरेरा पीटा गया और उनका जुलूस निकाला गया। ऐसे में हमारा पहला सवाल यही था कि अगर दावा सच्चा है तो फिर ये वीडियो के साथ ये खबर मुख्य धारा की मीडिया में क्यों नहीं है। जमुई कांड में 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई लेकिन वीडियो में सिर्फ 3 आरोपी नजर आ रहे हैं। ऐसे में दूसरा सवाल यही कि कहीं किसी और घटना से संबंधित वीडियो को जमुई का बताकर वायरल तो नहीं किया जा रहा।
0: दावे का सच झूठ जानना जरूरी हो गया था। फैक्ट चेक टीम वीडियो की जांच में जुटी। सर्च के दौरान हमें एक फेसबुक पेज पर 15 जुलाई 2026 को वायरल वीडियो पोस्ट किया हुआ मिला। इसमें ये जानकारी थी कि बोरी क्षेत्र में एक विधवा महिला के साथ गैंग रेप और डकैती करने वाले आरोपियों को बोरी पुलिस ने कुटाई के साथ शानदार जुलूस निकाला। जमुई में छात्रा से छेड़खानी का मामला 19 सितंबर का है, जबकि वायरल वीडियो 15 जुलाई से इंटरनेट पर मौजूद है। इससे पता चलता है कि वायरल वीडियो जमुई केस से संबंधित नहीं है। सर्च के दौरान हमें एक न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल पर 16 जुलाई 2026 को अपलोड की गई एक वीडियो न्यूज मिली। इसके अनुसार ये मामला मध्य प्रदेश के अलीराजपुर के बोरी क्षेत्र का है। यहाँ आरोपियों ने डकैती के बाद एक महिला से गैंगरेप किया था। दरिंदगी के इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने बीच बाजार में आरोपियों का जुलूस निकाला था। वीडियो में पुलिस को सड़क पर चेहरा ढके आरोपियों को पीटते हुए और उनका जुलूस निकालते हुए देखा जा सकता है। वायरल वीडियो और वीडियो न्यूज में चेहरा ढके आरोपियों और पुलिसकर्मियों को साफ साफ देखा जा सकता है। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठ साबित हुआ। दरअसल ये वीडियो मध्य प्रदेश के अलीराजपुर के बोरी का है, जहां आरोपियों का पुलिस ने जुलूस निकाला था। इस घटना की वीडियो को जमुई मामले से जोड़कर वायरल किया जा रहा है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज़ टुडे।
1: और फैक्ट चेक में फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में। दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ला।
0: आने वाली है मां, शक्ति उपासना का संकल्प

0: देवी के आह्वान की तैयारी। 30 लाख दीयों से रोशन होगी अवधपुरी। दिल्ली में सब्जियां खाएं मगर देखभाल कर। देखिए अच्छी खबर सच्ची खबर रात 8 बजे।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़।
1: और वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, आपको लिए चलते हैं वायरल दुनिया में, दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं और जिन्हें खूब पसंद किया जा रहा है।
7: एक तरफ छोटे छोटे बच्चे और दूसरी तरफ सिक्योरिटी गार्ड, दोनों के बीच शुरू हुआ टग ऑफ वॉर का मुकाबला। बच्चे भी पूरी ताकत लगाकर रस्सी खींच रहे थे, लेकिन तभी सिक्योरिटी गार्ड ने ऐसा दाव चला कि पूरा खेल ही पलट गया। गार्ड ने बच्चों की तरफ कैंडी फेंक दी, कैंडी देखते ही बच्चों ने रस्सी छोड़ दी और कैंडी उठाने दौड़ पड़े। बस फिर क्या था, गार्ड ने मुकाबला जीत लिया। दिल्ली मेट्रो में सफर के दौरान अगर फोन या पर्स कहीं छूट जाए तो परेशानी होती है, लेकिन सोचिए अगर इसी भीड़ में किसी का छोटा बच्चा अपने माता पिता से बिछड़ जाए तो उस वक्त परिवार पर क्या गुजरती होगी। ऐसा ही एक भावुक मामला दिल्ली मेट्रो की मजेंटा लाइन से सामने आया है। करीब 8 से 10 साल का एक बच्चा अपनी माँ से बिछड़ गया। बच्चे को अपने माता पिता के नाम और घर का पता तो मालूम था, लेकिन घर में किसी का मोबाइल नंबर याद नहीं था। ऐसे में मेट्रो स्टाफ ने जिम्मेदारी संभाली और आखिरकार बच्चे को उसकी माँ से मिलवा ही दिया। लोगों को ये वीडियो खूब पसंद आ रहा है।
8: बच्चे के पिताजी आप हैं?
7: क्लासरूम में आमतौर पर बच्चे पढ़ाई करते हुए नजर आते हैं, लेकिन कभी कभी पढ़ाई के बीच कुछ ऐसे पल भी आ जाते हैं जो पूरे माहौल को खुशनुमा बना देते हैं। ऐसा ही एक प्यारा वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है। बच्चे एक एक भजन पर डांस करते दिखाई दे रहे हैं। बच्चे के चेहरे की मासूम मुस्कान और उसका उत्साह देख कर आसपास मौजूद टीचर्स भी खुश हो गए। बच्चों के डांस का सबसे प्यारा हिस्सा उनका एक्सप्रेशन और खुशी दिखाई देती है। वो जिस तरह से गाने पर झूमते हैं उसे देखकर किसी के भी चेहरे पर मुस्कान आ सकती है।

0: फिल्म हनुमान अंश का लोकप्रिय गाना मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान को इस विदेशी शख्स ने अपने अंदाज में गाकर लोगों का दिल जीत लिया।
1: भरोसे हनुमान सागर में नया गई,
0: आवाज में भक्ति का भाव साफ महसूस किया जा सकता है। लोग विदेशी शख्स की आवाज और उसके अंदाज की तारीफ कर रहे हैं।

0: का विकल्प है, उस पर टैप करें और व्हाट्सएप लिख कर खोजें।
1: बार सब खोल लिया मैंने।
0: अब आप व्हाट्सएप में नीचे बाईं ओर जो अपडेट्स का विकल्प है उसे दबाएं।
2: माँ को व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाना सीखना था तो उन्होंने मदद के लिए बेटे को नहीं बल्कि गूगल के एआई टूल जेमिनी को अपना गाइड बना लिया।
0: जी हाँ, स्क्रीन के निचले बाएं कोने में जो गोल आइकॉन है वो अपडेट्स का है, उसे दबाएं।
1: अच्छा, दबा दिया।
0: जी हाँ, आप अपडेट्स वाली स्क्रीन पर आ गई हैं। अब नया स्टेटस लगाने के लिए सबसे ऊपर एड स्टेटस पर टैप करें या फिर ऊपर कोने में दिए गए कैमरा या पेंसिल आइकॉन का उपयोग करें।
2: माँ और एआई के बीच हुई ये बातचीत इतनी प्यारी और मजेदार है कि लोग इस वीडियो को बार बार भी देख रहे हैं।
0: बहुत अच्छी। अब नीचे दाहिने कोने में दिए गए हरे रंग के तीर वाले बटन को दबा दें ताकि आपके स्टेटस पर लग जाए।
1: लगा दी।
0: बहुत बढ़िया, अब आपकी फोटो स्टेटस पर सफलता पूर्वक लग चुकी है।
1: सुंदर आई ना।
3: हो गए 3-2, 3-2 हो गए, 3-1 हो गए, ये भी एक जादू ही है।
2: ट्रैफिक के बीच बाइक पर तीन लोग जा रहे थे तभी सामने पुलिसकर्मी नजर आ गया। इसके बाद ऐसा जुगाड़ हुआ कि बाइक पर अचानक सिर्फ दो लोग रह गए। लगा कि चलान से बचने की तरकीब काम कर गई, लेकिन कांस्टेबल की नजरों से इस जादू बच नहीं पाया। उसने तुरंत पूरी कहानी समझ ली और फिर जो अंदाज अपनाया उसे देख कर लोग मुस्कुरा उठे।
3: हो गए 3-2, 3-2 हो गए, 3-1 हो गए, ये भी एक जादू।
2: दरअसल पुलिसकर्मी के पास पहुंचते ही बाइक पर बैठा एक व्यक्ति तुरंत नीचे उतर गया और बिना कुछ कहे ऐसे आगे बढ़ने लगा जैसे उसका बाइक से कोई लेना देना ही ना हो। उसे शायद लगा कि इस तरह पुलिस की नजरों से बच जाएगा, लेकिन कांस्टेबल की नजरें पहले ही उसकी चाल पकड़ चुकी थी। पुलिसकर्मी ने उसे जाते हुए देखा तो तुरंत रोक लिया, फिर मजेदार अंदाज में पूछा, अरे कहाँ जा रहे हो, 3-2 कैसे हो गए?
3: हो गए 3-2, 3-2 हो गए, 3-1 हो गए, ये भी एक जादू ही है। अरे कहाँ जा रहे हो,
4: क्या हुआ,
3: 3-2 कैसे हो गए?
2: बस यही वो पल था जिसने पूरे वीडियो को मजेदार बना दिया। इसके बाद मामला सिर्फ चालान तक नहीं पहुंचा। कांस्टेबल ने शख्स को समझाया कि बाइक पर तीन लोगों के बैठने के बजाय वह ऑटो से जाए, यानी पुलिस से बचने के लिए की गई छोटी सी तरकीब आखिरकार काम नहीं आई।
5: ये तो बहुत जरूरी है।
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
7: किस तरह का आहार आपके विचारों पर असर डालता है? आहार में परिवर्तन करके विचारों को कैसे बदल सकते हैं, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश न रह जाए और बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढकर लाए, ऐसी अच्छी और सच्ची खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर हम आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। आने वाली है माँ दुर्गा, शक्ति उपासना का संकल्प से पहले देवी के आह्वान की तैयारी हो रही है। 30 लाख दीयों से रोशन होगी अवधपुरी, अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां शुरू और दिल्ली में सब्जियां खाएं लेकिन देखभाल के। दिल्ली यूनिवर्सिटी की रिसर्च में यमुना किनारे सब्जियों में हैवी मेटल्स मिले हैं। डिटेल्स देंगे आगे शुरुआत हेडलाइंस के साथ।
3: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लाल।
2: कोलकाता में नवरात्रि तैयारियां जोर शोर से जारी, वर्धमान में मां दुर्गा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे कारीगर। रणथंभौर में नए पर्यटन सत्र की तैयारियां पूरी, सैलानियों का इंतजार 1 अक्टूबर से खुल रहा टाइगर रिजर्व, नियम तोड़ने वाले गाय।

0: रेट और ड्राइवर्स पर होगी सख्ती। हिमाचल के मंडी में थलौट में बनेगा फोर लेन का स्वरूप। 200 करोड़ से बनेगी राज्य की पहली 500 मीटर लंबी नई बॉक्स टनल। छत्तीसगढ़ के बस्तर में सरेंडर करने वाले 8 पूर्व नक्सलियों ने फर्स्ट डिवीजन में पास की 10वीं की परीक्षा। आगे भी पढ़ाई जारी रखने का इरादा। एशियन गेम्स में भारत की चमक बरकरार। 87 किलोग्राम ग्रीको रोमन रेसलिंग इवेंट में सुनील कुमार ने जीता ब्रॉन्ज। आज तीरंदाजी में 3 और शूटिंग में आए गोल्ड। भारत के खाते में कुल 10 गोल्ड मेडल। एशियन गेम्स में देश को गोल्ड दिलाने वाले खिलाड़ियों का स्वदेश लौटने पर भव्य स्वागत। पहनाई गई करेंसी नोट और फूलों की मालाएं। ढोल नगाड़ों से हुआ वेलकम।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
0: अच्छी खबर और सच्ची खबर में सबसे पहले हम बात करेंगे माँ दुर्गा की, उनके आगमन की, क्योंकि जल्द ही माँ आने वाली हैं। 11 अक्टूबर को कलश स्थापना के साथ ही शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो जाएगी। 9 दिनों तक माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना होगी। कोलकाता समेत पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की अद्भुत छटा देखने को मिल रही है, जिसकी तैयारियां तेजी से चल रही हैं। आज हम आपको कोलकाता की ऐसी जगह लिए चलते हैं जो देवी देवताओं की मूर्ति बनाने के लिए पूरी दुनिया में मानी जाती है।

0: आस्था का पर्व और माता रानी के स्वागत की तैयारी। कहीं माँ दुर्गा की भव्य प्रतिमाएं बनाई जा रही है तो कहीं पंडाल सजाए जा रहे हैं। आदि शक्ति आएंगी, अपने भक्तों पर कृपा बरसाएंगी। 9 दिनों के भक्ति के इस उत्सव में हर तरफ जय माता दी के जय घोष की गूंज सुनाई देगी। इसी के चलते देश भर में नवरात्र की तैयारियां तेजी से आगे बढ़ रही है। पश्चिम बंगाल और विशेषकर कोलकाता के लिए दुर्गा पूजा केवल एक धार्मिक त्योहार नहीं बल्कि बंगाली संस्कृति, कला, भाईचारे और अर्थव्यवस्था की धड़कन है। इसलिए यहाँ इन दिनों मूर्तिकारों की व्यस्तता कहीं अधिक बढ़ी हुई है। माँ दुर्गा की छोटी से लेकर बड़ी मूर्तियों को वो तेजी से आकार देने में जुटे हुए हैं। रंग रोगन का काम चल रहा है।
1: माता दुर्गा की मूर्ति सज धज के बन ठन के जाती है इसी कुमोटुली से, और इस बीच कुमोटुली में अभी बहुत ही व्यस्तता चल रहा है। लोगों का भी यहाँ पे आना जाना बन रहा है। कोई लोग आ रहा है दोस्तों के साथ फोटो खींचने, कोई यहाँ पे पूजा के पहले ही पूजा का वाइब्स लेने कुमोटुली पहुंच रहा है, माता दुर्गा की मूर्ति को दर्शन कर रहा है।
0: कोलकाता का कुम्हार टोली इलाका दुनिया भर में माँ दुर्गा की पारंपरिक और कलात्मक मूर्तियां बनाने के लिए प्रसिद्ध है। करीब 300 साल पुरानी कुम्हारों और मूर्तिकारों की इस बस्ती को पॉटर्स कॉलोनी कहा जाता है। यहाँ देवी दुर्गा की मूर्तियां विशेष रूप से गंगा की मिट्टी, बांस और भूसे के ढांचे पर हाथों से गढ़ी जाती है।
2: स्टूडियो में कोई 20 बना रहा है, कोई 15 बना रहा है, कोई 10 बना रहा है, ऐसा करके होता। कोई 50 भी बनाया है, ऐसा नहीं है जो 10-20 ना, 50 भी बना रहा ऐसा होता है। ये तो गुण नहीं पाएगा तो सारा कलकत्ता में बाहर में सब हम लोग की मूर्ति भेज रहा है।
0: कुम्हार टोली में मिट्टी की मूर्तियां बनाने वाले लगभग 300 स्टूडियो है, जहां कारीगर मूर्तियों को अब अंतिम रूप देने में व्यस्त है। लगभग सभी स्टूडियो को पहले ही एडवांस बुकिंग मिल चुकी है। यहां बनी दुर्गा प्रतिमाओं की केवल कोलकाता या देश के दूसरे हिस्सों में ही नहीं बल्कि विदेश तक डिमांड है। अब तो यहां के मूर्तिकार प्रतिमाओं के निर्माण में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक का इस्तेमाल कर रहे हैं।
3: मेरा इस साल जो हम जो ठाकुर बनाता है 12-14 माने वो आज से 2 मास पहले वो बुकिंग हो गया। अभी जो AI से मैं रोबोटिक दुर्गा किया है उत्तर दिनाजपुर कालियागंज में, वो मारात्मक वायरल हो गया। ठीक है, उसका जो प्रतिमा है वो रोबोटिक है, उसका जो AI दुर्गा और उसका जो फेस है वो माँ का जो फेस वही फेस मैंने रखा है, लेकिन AI नहीं किया। जो तस्वीर मेरे पास आया है वो माँ का थोड़ा सा AI था, लेकिन ये तो माँ है इसलिए माँ को मैं एक मिन्मय रूप मैंने दिया। ठीक है, उसको जो आँख, उसको जो सारीज, उसको जो सरस्वती, लक्ष्मी, कार्तिक, गणेश जो है, उसको जो महिषासुर, उसके जो लायन, सब आँखों में LED लाइट्स जलेंगे।
1: अच्छा,
3: साड़ी में भी, और जो अस्त्र है फाइबर का उसका भीतर में LED लाइट्स है, वो ब्लिंक करेगा।
1: अच्छा।
3: ठीक में, और उसका जो पैंडल है, वो जो रोबोट है वो घूमेगा।
1: अच्छा।
3: वो बातचीत करेगा, अब जो बोला वो बात वो आंसर दे देंगे।
4: बागमारी का जो है और आदर्श जगह जो सब नया बना हुआ है, ये ब्रिटिश जमाना से चला हुआ आ रहा है और अभी तक लोग आप देख, अगर आप यहाँ सर्वे कीजिएगा देखिएगा सबसे ज्यादा मूर्ति यहीं पर
5: है। यहाँ पे मूर्ति सारा मूर्ति यहीं पे बनता है, यहीं से स्टार्टिंग हुआ है और हम लोग भी आज बचर बचर यहीं से आके लेके जा रहे हैं।
0: यहाँ मूर्ति का ऑर्डर दे चुके लोग ही नहीं पहुँच रहे बल्कि बड़ी संख्या में कला प्रेमी भी आ रहे हैं, जो मूर्तिकारों और कारीगरों की मेहनत को करीब से देखने और समझने की इच्छा रखते हैं। यहाँ देवी माँ की दिव्य मूर्तियों को देखकर वो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। मोबाइल में तस्वीरें कैद करने के साथ खुद की तस्वीर खिंचवाते भी नजर आते हैं।
6: मैंने बहुत सुना था बट आज महसूस किया और बहुत अच्छा लग रहा है, अद्भुत जिसको बोलते हैं ना वो एक्सपीरियंस हुआ और बहुत ऐसे डिवाइन सी फीलिंग हो रही है।
7: मैं तो उत्साहित थी ये देखने के लिए कि क्या कैसे बनता है, वो मुझे बहुत जानना था। तो इतना सुंदर है कि मतलब उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते हम, तो बहुत ही सुंदर है, अद्भुत है ये नज़ारा। अभी मैंने माँ का जो मूर्ति बनते हुए कैसे बनाते हैं और कितने मेहनत से बनाते हैं वो देखा, और कितने लगन से बनाते वो चीज़ देखा, तो वो चीज़ महसूस कर रही हूँ।
8: यहाँ पर आज हम कैसे शुरुआत होती है, कैसे पुआल और मिट्टी से उनको एक पहले एक स्ट्रक्चर देते हैं, फिर उसकी आप प्लास्टर ऑफ पेरिस करते हैं, प्राइमर और कलर और फिर ज्वेलरी, तो वो जो पूरी की पूरी जर्नी हम पहले शुरू गली से शुरू होते और गली के अंत तक आते आते माँ का पूरा प्रारूप ही चेंज हो जाता है, और यहाँ से फिर जो पंडाल तक का सफर है वो बिल्कुल ही अद्भुत रहता है।
9: दुर्गा पूजा के शुरू होने से पहले ही ये जगह लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, इसके चलते यहाँ लोगों की आवाजाही बढ़ी हुई है और त्योहार से पहले ही उत्सव जैसा माहौल बन चुका है। कोलकाता से राही हलदार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
10: और इस दिन वहां की छटा देखने वाली रहेगी, अयोध्या का कोना कोना रोशनी से सराबोर होगा, और इस विशेष अवसर के लिए विशेष टूर पैकेज की घोषणा कर दी गई है, और इन सब के बीच अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी एक अलग तैयारी नजर आ रही है।

0: प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या, जहां बड़ी संख्या में भक्त रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। यहां इन दिनों दीपोत्सव की तैयारियां चल रही हैं। साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर एनएसजी कमांडोज की चहलकदमी भी देखी जा सकती है। अवधपुरी में इस बार और भव्यता के साथ दीपोत्सव मनाने की तैयारी है, और इसी को लेकर जहां एक तरफ मजदूर कामकाज में जुटे हैं, तो वहीं अधिकारी लगातार निरीक्षण करते नजर आए।
1: हम लोग यहां क्वीन हो पार्क में उपस्थित हैं। यहां पर हम लोग की प्लानिंग है कि कुछ प्रदर्शनी या झांकी जैसा कुछ दीपोत्सव के दौरान लगाया जाएगा, तो उसी के संबंध में इस पार्क का निरीक्षण किया जा रहा है। इसके अलावा राम की पैड़ी, चौधरी चरण सिंह घाट, सरयू तीर्थग्रह, जो हेलीपैड बनता है, रामकथा पार्किंग, सभी स्थानों का निरीक्षण किया जा रहा है। और कहीं पर भी जो छोटी मोटी चीजें पाई जा रही है, जिनके बारे में निर्देश दिए जाने हैं, जिनको ठीक किया जाना है, वो लगातार किया जा रहा है। लगातार इस प्रकार के निरीक्षण जारी रहे।
0: इस बार के दीपोत्सव को और ज्यादा शानदार बनाने के लिए श्रद्धालुओं के लिए एक खास योजना तैयार की गई है। UPSTDC ने दीपोत्सव अयोध्या टूर पैकेज तैयार किया है। श्रद्धालु और पर्यटक राम मंदिर, हनुमान गढ़ी, कनक भवन, नागेश्वर नाथ मंदिर के दर्शन भी कर पाएंगे।
2: एक अलग नजारा है, एक अलग दृश्य होगा जब इस बार देश से नहीं विदेशों से भी खास मेहमान आएंगे, इस दीपोत्सव में शामिल होंगे, जहां अब की बार एक वर्ल्ड रिकॉर्ड एक नया बनाया जाएगा। यहाँ अगर आते हैं टूरिस्ट तो उनके लिए खास इंतजाम भी किए गए हैं। राम मंदिर हो, कनक भवन हो या हनुमान गढ़ी, हर जगह वो दर्शन करेंगे, उनके रुकने के खास इंतजाम किए गए हैं। तो ये पूरी राम की पैड़ी को जो है पूरा दुल्हन की तरीके सजाया जा रहा है, क्योंकि बहुत जल्द वो 7 नवंबर की तारीख है जब विशालकाय दिए, इलेक्ट्रॉनिक दिए, हर एक चीज वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इस राम की पैड़ी पे इसको भव्य और दिव्य रूप दिया जा रहा है।
0: दीपोत्सव को लेकर तैयारियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं। राम की पैड़ी पर विजिटर गैलरी और सेल्फी पॉइंट्स भी तैयार किए जा रहे हैं। इस बार 30 लाख दीप जलाने का लक्ष्य है। श्रद्धालु लेजर और ड्रोन शो का आनंद भी उठा पाएंगे। सरयू घाट पर 2100 वैदिक आचार्य महाआरती करेंगे। 240 से अधिक मंदिर और मठों में भी दीप प्रज्वलित होंगे। रामकथा पार्क से लेकर राम की परिधि तक लगभग 1 दर्जन जगहों पर अलग अलग कार्यक्रम होंगे। सरयू के तट पर श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, नए घाट, एम्फीथिएटर और फूड कोर्ट्स जैसे आकर्षक केंद्र भी बनाए जाएंगे। इन सब के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG की टीम अयोध्या में समीक्षा और मॉक ड्रिल करती नजर आई। NSG की टीम राम मंदिर से लेकर हनुमान गढ़ी तक सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेती नजर आई। कनक भवन में भी NSG की टीम सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रही थी। NSG की टीम सभी महत्वपूर्ण स्थलों का निरीक्षण कर रही है और मौजूदा व्यवस्था की समीक्षा के साथ साथ संभावित आपात परिस्थितियों से निपटने की तैयारियों को भी परखा जा रहा है।
2: निरीक्षण किया जा रहा है। NSG कमांडेंट यहाँ पे लगातार घूम रहे हैं। राम मंदिर हो चाहे हनुमान गढ़ी हो, हनुमान गढ़ी परिसर में पूरी डायरेक्शन दी गई है, बाकायदे कंट्रोल रूम पूरे चेक किए गए हैं। तो यहाँ लगातार जो है अयोध्या की राम नगरी की सुरक्षा को लेकर खास इंतजाम किए जा रहे हैं। लगातार यहाँ पे निगरानी की जा रही है, लगातार चप्पे चप्पे पर NSG की तैयारी है।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अयोध्या में एक नया NSG क्षेत्रीय केंद्र बनाने की घोषणा की है। माना जा रहा है कि NSG कमांडोज की मौजूदगी और लगातार चल रही मॉक ड्रिल उसी का हिस्सा है, और आने वाले समय में अयोध्या की पूरी सुरक्षा व्यवस्था में NSG की अहम भूमिका तय की जा सकती है। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए बात ऐसी खबर की जो दिल्ली में रहने वाले लोगों को सतर्क करने के लिए है। अभी तक हरी सब्जी को सेहत और स्वास्थ्य के लिहाज से सबसे पौष्टिक आहार माना जाता रहा है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के वनस्पति विज्ञान विभाग की माने तो यमुना के किनारे उगाई जाने वाली सब्जियों के जरिए दिल्ली की थाली में यमुना का प्रदूषण पहुंच रहा है। जियो की रिसर्च के मुताबिक टेस्ट के दौरान कई सब्जियों के सैंपल्स में क्रोमियम, लेड, कैडमियम, आर्सेनिक और निकेल जैसे हैवी मेटल्स पाए गए हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक हैं। शरीर में इनके पहुंचने से कैंसर होने तक का खतरा बढ़ जाता है।

0: स्वस्थ और सेहतमंद रहने की ख्वाहिश हर किसी की होती है। नियमित व्यायाम, भरपूर नींद के अलावा संतुलित आहार को अपनाने की सलाह दी जाती है। और जब पौष्टिक भोजन की बात आती है तो उनमें सबसे ऊपर हरी सब्जियों की गिनती होती है। हालांकि दिल्ली में हरी सब्जियां खाने की सलाह देना भारी पड़ सकता है, वो भी तब जब ये सब्जियां यमुना नदी के किनारे उगाई गई हों। दिल्ली में गंदगी, प्रदूषण और दुर्गंध की वजह से अभिशप्त यमुना से एक नई चिंता जुड़ गई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के वनस्पति विभाग की चौंकाने वाली एक रिसर्च सामने आई है जो सीधे तौर पर आपकी सेहत पर बुरा असर डाल सकती है। सिर्फ यही नहीं बल्कि आपको अपने खान पान के आदतों में बदलाव के लिए मजबूर भी कर सकती है। रिसर्च के मुताबिक यमुना के आसपास की मिट्टी और उसमें उगाई जा रही कुछ सब्जियों के सैंपल में हैवी मेटल्स यानी भारी धातुएं पाई गई हैं।
1: दिल्ली में यमुना किनारे इस वक्त हम उसी जगह पर मौजूद हैं जहां से प्रोफेसर दीनबंधु साहू ने सैंपल कलेक्ट किए थे। ये यमुना का किनारा आप देख रहे हैं और यमुना का पानी अभी भी पूरी तरह से काला है, बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, पारदर्शी नहीं है, मतलब पानी बिल्कुल भी साफ नहीं है। इसी इलाके से, यमुना के इसी स्ट्रेच से लगातार 2 साल तक प्रोफेसर दीनबंधु साहू सैंपल लेते रहे। उन्होंने पानी का सैंपल लिया, मिट्टी का सैंपल लिया, फिर उनसे जो सब्जियां उगाई जा रही थी उनका सैंपल लिया। और सब्जियों में भी जो सैंपल लिया वो सिर्फ एक बार नहीं बल्कि किसी सब्जी के 3 से 4 बार उसके सैंपल अलग अलग उसकी फसल के वक्त लिए गए और उन सैंपल में वो सारी खतरनाक चीज़ें मिली हैं।
0: दिल्ली यूनिवर्सिटी के वनस्पति विज्ञान विभाग की एक टीम यमुना के जल में प्रदूषण के स्तर को लेकर लंबे समय से रिसर्च कर रही है। इसी कड़ी में यमुना के आसपास में मिट्टी की भी जांच पड़ताल की गई। तब उसमें क्रोमियम, लेड, कैडमियम, आर्सेनिक और निकेल जैसी भारी धातुएं पाई गई। इसके बाद टीम ने उसी इलाके में उगाई जाने वाली सब्जियों के सैंपल भी लिए। प्याज, आलू, मेथी, धनिया, सरसों, पालक और सफेद मूली में क्रोमियम, लेड, कैडमियम, आर्सेनिक और निकेल जैसे हैवी मेटल्स मिले जो स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है।
2: पहले हमने देखा कि पानी जो है अलग अलग जगह से जब हमने लिए देखा कि हाईली पॉल्यूटेड है और वही पानी में जब आपका सिंचाई हो रहा है सारे चीजें यमुना के किनारे, तो फिर हमने पहले सॉइल का टेस्टिंग किया। सॉइल टेस्टिंग में देखा गया कि ये काफी मात्रा में उसमें हैवी मेटल्स है। तो हमने सोचा है कि जो आपका यहाँ खेती हो रहा है अलग अलग टाइप का सब्जी का, तो क्यों उसको ला के हम टेस्टिंग ना करें। तो उसको जब हमने टेस्टिंग किए उसमें देखे कि काफ़ी भारी मात्रा में आपको हैवी मेटल्स पाया गया है, चाहे कैडमियम हो, क्रोमियम हो, आर्सेनिक हो, अलग अलग वेजिटेबल्स है, प्याज है, आलू है, मेथी है, धनिया है। तो उसमें हमने देखा कि ये जो कैंसर कॉजिंग हैवी मेटल्स है वो काफ़ी हैवी मात्रा में पाया गया है।
0: दिल्ली में यमुना नदी की 22 किलोमीटर लंबाई है। कई इलाकों में नदी के दोनों किनारों पर खेती होती है। यही वजह है कि रिसर्च टीम ने किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले पानी, मिट्टी और सब्जियों के 3 अलग अलग बार सैंपल लिए। हर बार एक ही तरह का परिणाम सामने आया। कुछ मामलों में हैवी मेटल्स की मात्रा तय अंतर्राष्ट्रीय मानकों से कई गुना ज्यादा मिली। इस दौरान यमुना के पानी में अलग अलग तरह के केमिकल के अलावा कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया भी काफी ज्यादा मात्रा में मिला।
2: एक सैंपल्स में आप कभी कोई डाटा को वैलिडेट नहीं कर पाएंगे। सैंपल्स हमेशा ट्रिप्लिकेट में होता है, तो 3 बार सैंपल्स को ट्रिप्लिकेट में हमने किया और रिजल्ट वही निकला कि हर हैवी मेटल्स का जो है काफ़ी हाई लेवल में पाया गया है। अगर आप देखेंगे दिल्ली में यमुना 22 किलोमीटर का स्ट्रेच है, पानी बिल्कुल काला है। यमुना 7-8 स्टेट में लगभग 1800 किलोमीटर का स्ट्रेच है, बट ये जो स्ट्रेच है ये काफ़ी हेविली पॉल्यूटेड है और पानी में तो कोलीफॉर्म बैक्टीरिया जो है जो सेहत के लिए पूरा हानिकारक है, उसका लोड भी बहुत ज़्यादा है। तो जब खेती होता है तो पानी वहां से आता है और सीपेज होकर भी पानी आता है।
0: दिल्ली में आजीविका चलाने के लिए कई लोग यमुना किनारे सब्जियां उगाने के काम से जुड़े हैं, जिनकी वजह से जहरीली सब्जियां बाजार में बिकने के लिए पहुंच जाती हैं। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि अगर इसी तरह के प्रदूषित पानी का इस्तेमाल खेती में किया जा रहा है तो उसका असर सब्जियों पर कितना पड़ सकता है और वो स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है। यह समझना मुश्किल नहीं है, सब्जियों में सुरक्षित सीमा से कई गुना अधिक भारी मात्रा में भारी धातुओं का मिलना जानलेवा कैंसर को न्योता देना है।
1: जैसे अभी यमुना किनारा है और मैं आपको दिखाऊं तो आप वहां पर एक वो झोपड़ी देख पा रहे हैं और उसी जगह पर ठीक उसके पास में खेती की जा रही है सब्जियों की। फिलहाल वहां जाना अभी हमारे लिए संभव नहीं है, लेकिन ऐसे पूरे ही स्ट्रेच पर आपको यमुना के जगह जगह पर लोग दिख जाएंगे जो कि सब्जियों को उगाते हैं। और आप किसी भी कोई भी ऐसे भारी तत्व जो किसी सब्जी में होते हैं या फिर फसल में होते हैं तो वो जब शरीर में जाते हैं तो आपके शरीर को वो कैंसर की तरफ ले जाते हैं, चाहे वो निकेल हो, चाहे वो क्रोमियम हो या फिर लेड हो। इन सारी चीज़ों की मात्रा सब्जियों में कई गुना ज़्यादा मिली है, वो सब्जियां जो इसी पानी से उगाई जा रही हैं।
0: दरअसल दिल्ली में यमुना में छोटे बड़े 22 नाले गिरते हैं, केवल 11 नालों का पानी ट्रीट हो रहा है। ऐसे में घरों से निकलने वाला गंदा पानी यमुना में सीधा गिर रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली की लाइफ कहे जाने वाली यमुना के किनारे पैदा होने वाली सब्जियों का ये हाल हो गया है। सबसे बड़ी बात, खेतों से लेकर हमारे किचन तक पहुंचने के बाद सब्जियों को 3-4 बार साफ पानी से धोने का भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। सब्जियों की संरचना के लिए जिम्मेदार पादप कोशिकाएं यानी प्लांट सेल से हैवी मेटल्स का निकलना नामुमकिन होता है।
1: एक बात आपको हम और बता दें कि अमूमन ये मिथ हम लोग मानते हैं कि किसी सब्जी को अगर लेकर आए हैं तो उसे 3-4 बार आप गर्म पानी से साफ कर लीजिए ताकि जो उसमें कीटाणु हैं, जो दिक्कतें हैं वो निकल जाएं। लेकिन प्रोफेसर दीनबंधु साहू का साफ साफ कहना है कि सब्जी को महज गर्म पानी से धोने भर से उसमें जो दिक्कतें हैं वो बाहर नहीं निकलने वाली, क्योंकि अगर इसी पानी से उनकी खेती की जा रही है, इसी पानी का इस्तेमाल उन सब्जियों को उगाने में किया जा रहा है तो वो सारी चीज़ें उन सब्जियों के सेल्स में होंगी, जिसे निकालना साफ करना बेहद मुश्किल है। मतलब साफ है कि अगर आप इस सब्जी का सेवन कर रहे हैं तो आपके शरीर में दिक्कत होना तय है, आज नहीं तो कल। सही, कुल मिलाकर इससे बचने के क्या तरीके हो सकते हैं वो तमाम तरीके भी बताए गए हैं, लेकिन फिलहाल आप लोगों के पास क्या ऑप्शन है, आपके पास बस एक ही ऑप्शन है कि जब भी आप सब्जी वाले के पास जाएं तो पहले उससे पूछें कि ये सब्जी कहाँ उगाई गई है, इसका सोर्स क्या है, ताकि आपको जानकारी मिल सके कि उसे उगाने में किस तरह के पानी का इस्तेमाल किया गया है। कहीं वो पानी यमुना के नदी का तो नहीं है, बिल्कुल काला तो नहीं है, क्योंकि अगर उसकी उगाई सब्जियाँ आप पीते हैं तो शायद आप धीरे धीरे कैंसर की तरफ बढ़ रहे हैं। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, दिल्ली।
3: खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत सिंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़-धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
5: किस तरह का आहार आपके विचारों पर असर डालता है, आहार में परिवर्तन करके विचारों को कैसे बदल सकते हैं, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़-धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना, हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।

0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे आपके आहार की और उससे जुड़े हुए विचार की। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में बताएंगे आपको एक विशेष उपाय के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 1 अक्टूबर 2026, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, दोपहर 12:35 तक। नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम बात कर रहे हैं आपके आहार के बारे में और आपके विचार के बारे में। हमारे जीवन में आहार की क्या भूमिका है? देखिए, जीव की मुख्य रूप से 4 आवश्यकताएं हैं: आहार, निद्रा, भय और मैथुन। इनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आहार। आहार से निर्माण और विकास की प्रक्रिया पूरी होती है। आप भले ही भोजन से, खाद्य पदार्थ से आहार ग्रहण न करें, लेकिन कहीं न कहीं से आपको ऊर्जा लेनी होगी। जैसे संत महात्मा प्रकृति से, सूर्य की किरणों से ऊर्जा लेते हैं। बिना ऊर्जा के जीवन की लंबे समय तक कल्पना नहीं की जा सकती। तो आहार ग्रहण करके, चाहे भोजन से चाहे इनडायरेक्टली, आप अपने शरीर में ऊर्जा पहुंचाते हैं और उस ऊर्जा से आपके शरीर का निर्माण होता है और काम करने की क्षमता आपके अंदर आ जाती है। मेष राशि, स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर अच्छा बना रहेगा। मानसिक चिंताएं दूर होंगी। काम की अधिकता रहेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, मानसिक चिंता समाप्त होगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। परिवार में मंगल कार्य होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, चोट चपेट लग सकती है। महत्वपूर्ण काम आपका रुक सकता है। वाद विवाद से बचाव करें। अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी, छोटी यात्रा हो सकती है, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि किस प्रकार से जो ये आहार है ये हमारे ऊपर असर डालता है। देखिए, शरीर के मानसिक स्तर का, मेंटल लेवल का निर्माण अलग अलग कोशों से होता है। इसमें एक कोश है अन्नमय कोश, जो अन्न से बनता है। इस कोश की शुद्धि के बिना आप अपने मन को शुद्ध नहीं कर सकते। आहार से ही आपकी कोशिकाओं का निर्माण होता है और फिर उन्हीं कोशिकाओं से हमारे शरीर में हार्मोन्स आते हैं, रस का क्षरण होता है। हार्मोन जो है, रस जो है, ये हमारी सोच और हमारे विकास में परिवर्तन कर देते हैं। जिस तरह का आहार हम ग्रहण करते हैं उसी तरह का व्यवहार और उसी तरह का विचार हमारे अंदर उत्पन्न होता है। पुरानी कहावत है, जैसा होगा आहार वैसे होंगे विचार, जैसे पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। तो आहार से आपके मन पर, आपके विचारों पर और आपकी सोच पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सिंह राशि, महत्वपूर्ण काम में सफलता मिलेगी, करियर की बाधाएं दूर होंगी, यात्रा के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन प्राप्ति के रास्ते बनेंगे, मनोरंजन में व्यस्त रहेंगे, भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, करियर में किसी तरह की लापरवाही मत करिएगा, परिवार में विवादों से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएं, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, नए काम में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब हम ये जानते हैं कि किन चीजों को हम सात्विक आहार नहीं कह सकते। प्याज और लहसुन को तामसिक आहार माना गया है, ये सात्विक आहार नहीं है। सरसों का साग और मशरूम, इसको भी तामसिक आहार मानते हैं, सात्विक आहार नहीं कहेंगे। मांस मछली और मादक पदार्थ भी सात्विक आहार नहीं हैं। जो खाद्य पदार्थ स्टोर करके बेचे जाते हैं, डब्बा बंद जो खाद्य पदार्थ होते हैं, वो भी सात्विक नहीं हैं। बासी खाना भी सामान्यतः सात्विक नहीं माना जाता। जो लोग आध्यात्मिक रास्ते पर ध्यान या साधना के मार्ग पर चलते हैं, सामान्यतः बासी भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। अब ये जानते हैं कि किन चीजों को हम सात्विक आहार की श्रेणी में रखते हैं। सभी प्रकार की अनाजें और सभी प्रकार की दालें ये सात्विक हैं। दूध और इनसे निर्मित पदार्थ भी सात्विक हैं। सभी प्रकार की सब्जियां, फल और मेवे ये सामान्यतः सात्विक माने जाते हैं। सब्जियों में प्याज लहसुन को छोड़ करके ज्यादातर सब्जियां, मैक्सिमम सब्जियां सात्विक मानी जाती हैं। धनु राशि, मानसिक तनाव समाप्त होगा, धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, परिवार में व्यस्तता रहेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, काम का बोझ कम करिए, खान पान पर ध्यान बनाए रखें, जीवन साथी के सलाह से आपको लाभ होगा। केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, व्यस्तता बढ़ी रहेगी, करियर में नए अवसर मिलेंगे, धन की बाधाएं दूर होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब आपका जो आहार है वो आपके स्वभाव पर, आपके विचार पर, आपकी सोच पर असर डालेगा। तो किस तरह के स्वभाव के लिए किस तरह का आहार ग्रहण करना चाहिए? अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनल हैं, बहुत ज्यादा भावुक हैं, तो गुड़ और मीठी चीजें खाइए, आपको लाभ होगा। रोटी जरूर खाइए और बासी खाना खाने से आपको बचना चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा क्रोधी हैं, बहुत गुस्सा आता है, तो प्याज लहसुन मांस मदिरा से परहेज करिए और कच्चा प्याज लहसुन बिल्कुल मत खाइए। इससे तामसिक स्थिति और आपका क्रोध बढ़ेगा। अगर आपको तनाव पालने की आदत हो, छोटी छोटी बात पर आपको टेंशन हो जाती हो, तो दूध और दूध से बनी चीजें आपको खानी चाहिए। मशरूम और कंद ये अगर आप ना खाएं तो आपके लिए बेहतर होगा। अगर आप स्वास्थ्य से परेशान हो, शरीर से परेशान हो, कोई ना कोई समस्या लगी रहती हो, तो ज्यादा से ज्यादा सब्जियां खाइए और अनाज कम से कम खाइए। अगर आप बुरे विचारों से परेशान हो, निगेटिव थॉट्स से, अश्लील या बुरे विचारों से पीड़ित हो, तो मांस मछली प्याज लहसुन इसका सेवन ना करें और मसूर की दाल से भी आपको परहेज करना चाहिए। यानी आप अगर अपने आहार में सात्विकता लाएं, थोड़ा सा अपने आहार में अगर आप परिवर्तन करें, तो आपकी समस्याएं भी दूर होंगी, आपके सोच विचार और स्वभाव में सुधार होगा। अपने घर के दरवाजे पर कोई शुभ चिन्ह या स्वस्तिक लगाइए, ओम लिखकर लगाइए या स्वस्तिक लगाइए और घर से निकलते समय उसको स्पर्श करके, उसको छू करके घर से निकलिएगा। आप जिस काम के लिए निकलेंगे आपको कार्यों में सफलता अवश्य मिलेगी। कि अगर आप खेल कूद के क्षेत्र में सफलता चाहते हैं तो क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, सादा जल। सुबह और शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए और सलाह लेकर एक मूंगा या एक पन्ना धारण करिए और मेहनत करते जाइए, आपको खेल कूद के क्षेत्र में सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
2: इन दिनों पितृपक्ष में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भू बैकुंठ नगरी श्री बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं, जहां वो भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के बाद ब्रह्म कपाल तीर्थ में अपने पितरों का तर्पण और पिंडदान कर रहे हैं। पितरों की मुक्ति के लिए श्री हरि के इस पावन धाम की दिव्यता ही ऐसी है कि ब्रह्म कपाल में पिंडदान और तर्पण की मान्यता और परंपरा को अब विदेशी भी आत्मसात करते नजर आ रहे हैं।
3: जहाँ बहती है अलकनंदा की पवित्र धारा, उसी बद्रीनाथ के आंगन में पितरों की आत्मिक शांति के लिए पिंडदान हो रहा है। देवभूमि उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में जहाँ चार धाम यात्रा दर्शन के रंग बिखरे हैं, हर तरफ श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है, तो वहीं इन दिनों पितृपक्ष के दौरान भगवान विष्णु का ये धाम सिर्फ चार धाम दर्शन का केंद्र ही नहीं, बल्कि पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता और स्मरण का भी पवित्र स्थल बना हुआ है। दरअसल यहाँ के ब्रह्म कपाल भी मोक्ष की कामना और पितरों के प्रति श्रद्धा जैसी भावनाओं को लेकर अच्छी खासी संख्या में श्रद्धालु तर्पण के लिए पहुँच रहे हैं, अपने पूर्वजों के निमित्त पिंडदान कर रही है। श्राद्ध परंपरा का भगवान बद्री विशाल के आंगन में होना ही इन तमाम श्रद्धालुओं को पुरखों के प्रति सम्मान और आध्यात्मिकता की अनुभूति दे रहा है।
4: कहा गया है इस स्थान पर पिंड देने से 7 पीढ़ियों के पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ पर भगवान बद्री विशाल के बाल मोक्ष से मनुष्य अपने पितरों को पिंड अर्पण देता है, 7 पीढ़ियों के पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और आप देख रहे हैं आजकल पितृपक्ष में काफी संख्या में लोग अपने पितरों को उद्धार के लिए कुंभ का पानी आते हैं।
3: पितरों की मुक्ति के लिए श्रीहरि के इस पावन धाम की दिव्यता ही ऐसी है कि यहाँ कराए जाने वाले पिंडदान और तर्पण को लेकर श्रद्धालुओं का विश्वास अटूट है। यही कारण है कि ब्रह्मकपाल में पिंडदान और तर्पण की मान्यता और परंपरा को अब विदेशी भी आत्मसात करते दिख रहे हैं। दरअसल भारत आए 7 रूसी तीर्थयात्रियों ने भी यहाँ विधि विधान के साथ अपने पितरों के निमित्त पिंडदान और तर्पण किया। वैसे पहले भी सनातनी परंपरा उसके प्रति आस्था विदेशियों को काफी आकर्षित करती रही है। ऐसे में बद्रीनाथ धाम में विदेशी श्रद्धालुओं का अपने पुरखों का पिंडदान एक बार फिर दर्शा रहा है कि आस्था की कोई सीमा नहीं होती। ब्रह्मकपाल में पिंडदान का धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कर इन विदेशी श्रद्धालुओं का सनातनी परंपराओं और मान्यताओं के प्रति भाव जता रहा है कि संस्कृति अलग हो सकती है लेकिन पूर्वजों के प्रति श्रद्धा का भाव कमोबेश सभी जगह पर एक ही जैसा है। चमोली से कमल नयन सिलोरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य

0: अच्छे आने चाहिए, वैसे अच्छी चीज।
1: कोलकाता में नवरात्र की तैयारियां जोर शोर से जारी। वर्धमान में मां दुर्गा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे कारीगर। रणथंभौर में नए पर्यटन सत्र की तैयारियां पूरी। सैलानियों का इंतजार, 1 अक्टूबर से खुल रहा टाइगर रिजर्व। नियम तोड़ने वाले गाइड और ड्राइवर्स पर होगी सख्ती। हिमाचल के मंडी में तलौट में बदलेगा 4 लेन का स्वरूप। 200 करोड़ से बनेगी राज्य की पहली 500 मीटर लंबी नई बॉक्स टनल। छत्तीसगढ़ के बस्तर में सरेंडर करने वाले 8 पूर्व नक्सलियों ने फर्स्ट डिवीजन से पास की 10वीं कक्षा की परीक्षा। आगे भी पढ़ाई जारी रखने का है इरादा। एशियन गेम्स में भारत की चमक बरकरार। 87 किलोग्राम ग्रीको रोमन रेसलिंग इवेंट में सुनील कुमार ने जीता ब्रोंज। आज तीरंदाजी में 3 और शूटिंग में आया 1 गोल्ड। भारत के खाते में कुल 10 गोल्ड मेडल। एशियन गेम्स में देश को गोल्ड दिलाने वाले खिलाड़ियों का स्वदेश लौटने पर भव्य स्वागत। पहनाए गए करेंसी नोट और फूलों की मालाएं, ढोल नगाड़ों से वेलकम।
2: सही तीखा सही लाल।
1: नमस्कार, मैं हूँ श्वेता झा, स्वागत है आपका न्यूज पथ में। तो आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ का सफर। और सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। और चर्चा राजस्थान में मिलिट्री रनवे बने हाईवे की भी। देखिए
3: बात रखने से बनती है। अब यही देख लीजिए, गांव में स्ट्रीट लाइट्स नहीं थे, लोग अंधेरों में रहने को मजबूर थे, पर इस बच्चे की छोटी सी कोशिश ने गांव में उजाला ला दिया। अश्विनी राव नाम के इस बच्चे ने एक वीडियो बनाया जिसमें उसने गांव में लगे बिजली के खंभों की हालत दिखाई, अंधेरा दिखाया, डीएम अंकल को बताया कि अंधेरे की वजह से किन किन मुसीबतों से दो चार होना पड़ता है, और हाथ जोड़कर उनसे इस बिजली के खंभों में रोशनी के इंतजाम की अपील की। डीएम अमित पाल तक बात जैसे पहुंची, उन्होंने फौरन संबंधित अधिकारियों से मामले की जांच करके तुरंत स्ट्रीट लाइट्स लगवाने के आदेश दिए। डीएम के निर्देश के बाद पंचायती राज विभाग और खंड विकास विभाग के अधिकारी गाँव पहुँचे और खंभों पर स्ट्रीट लाइट लगवाई। अब बच्चे रोशनी में मुस्कुरा रहे हैं। अश्विनी ने इसके लिए अब डीएम अंकल को धन्यवाद कहा है। ये पूरी कहानी यूपी के कौशाम्बी जिले के चक अहमदीपुर म्योहर गांव की है, जिसे हमने आपको कल भी दिखाया था। अपनी इस छोटी सी पहल से अश्विनी राव और उसका गांव अब दोनों चर्चा में आ गए हैं। ये देखिए, हाईवे पर दौड़ती इन कारों के बीच दिन दहाड़े चोरी हो रही है। चोरी भी किसकी, तो पौधों की। नजारा यूपी के बागपत में टटीरी कस्बे और बड़ौत के बीच दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर की है। हाईवे पर दौड़ती कार अचानक रुकती है, कार पर लिखा है पुलिस, और फिर कार से एक शख्स उतरता है और सड़क किनारे लगाए गए पौधों के बीच पहुंचता है। और ये देखिए, ये वहां पौधा निकालने गए थे, पौधे के साथ एक फूल भी ले आए हैं। पौधा कार में रखा जाता है, शख्स कार में सवार होता है और कार वहां से रवाना हो जाती है। सबसे दिलचस्प तो ये कि इस पूरी घटना को इतनी सहजता से अंजाम दिया गया, मानो जनाब पौधा चोरी नहीं कर रहे हों, इस पर उनका हक था, अपनी चीज समझकर उठा ले गए। पर उन्हें शायद मालूम नहीं कि सीसीटीवी के रूप में तीसरी नजर भी है यहाँ, जो चुपचाप सब देख रही है। और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। विदाई का पल भावुक होता ही है, और फिर जिसके लिए आपने अपनी उम्र के 40 साल कुर्बान कर दिए, उससे दूर जाने का एहसास आंखें नम कर ही जाती है। झांसी में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जब समथर थाने में तैनात रामचंद्र 40 साल की नौकरी के बाद उपनिरीक्षक पद से रिटायर हुए। थाने में आज उनका विदाई समारोह हुआ। ऐसे में जब उनके साथियों ने उनका सम्मान किया तो वो फूट फूट कर रो पड़े, इससे वहाँ मौजूद हर शख्स भावुक हो गया। हाईवे पर हेलीकॉप्टर लैंडिंग की यह तस्वीर देखी। राजस्थान के बीकानेर में दंतौर के पास

0: नेशनल हाईवे 911 के एक हिस्से को अस्थायी तौर पर मिलिट्री रनवे में तब्दील कर दिया गया और फिर आर्मी की एविएशन यूनिट ने हाईवे पर ही हेलीकॉप्टर लैंडिंग का अभ्यास किया। इस दौरान सेना के रुद्र, ध्रुव और चेतक हेलीकॉप्टरों ने पारंपरिक रनवे से अलग हाईवे पर टेक ऑफ और लैंडिंग की काबिलियत दिखाई। रेगिस्तान के इस इलाके में कई बार तेज हवाएं लैंडिंग के लिए नई चुनौतियां पेश करती हैं। इस अभ्यास के दौरान सेना के पायलट्स ने इन्हीं चुनौतियों का सामना करने का अभ्यास किया और पायलट्स ने ग्राउंड टीम के साथ बेहतरीन तालमेल के साथ सफल लैंडिंग को अंजाम दिया। आस्था, श्रद्धा और भक्ति की सुंदर तस्वीर झांसी से आई है, जहां विश्व शांति महायज्ञ का आज समापन हो गया। इस दौरान भव्य रथ यात्रा निकाली गई, ढोल नगाड़े बजे, जयकारे गूंजे, लोग श्रद्धा और भक्ति भाव से सराबोर झूमते गाते नजर आए। इस रथ यात्रा में दर्जनों घोड़े, सजी हुई बग्घियां, ढोल नगाड़े और बैंड की प्रस्तुतियां आकर्षण का केंद्र रहे। जगह जगह लोगों ने रथ यात्रा का स्वागत किया, श्रद्धालुओं के जयकारों और धार्मिक गीतों से वातावरण पूरी तरह भक्तिमय नजर आया।
1: और आइए बात करते हैं हार्ट अटैक के डर से लोग क्यों छोड़ रहे हैं रनिंग और जिम। आजकल बहुत ही चिंताजनक मामले देखने को मिल रहे हैं। कम उम्र के और शारीरिक रूप से बिल्कुल फिट दिखने वाले लोग जिम में वर्कआउट करते हुए, दौड़ते समय या फिर अपने दफ्तर के डेस्क पर अचानक गिर रहे हैं। ऐसी खबरें अक्सर हम सभी को डरा देती हैं और मन में सवाल उठाती हैं कि आखिर अपने दिल को कैसे सुरक्षित रखा जाए। तो अगर आपको अपने हार्ट को फिट रखना है तो देखिए ये रिपोर्ट।

0: हम सभी जानते हैं कि वॉक करना, दौड़ना, जिम में पसीना बहाना सेहतमंद शरीर के लिए जरूरी है। एक्सरसाइज करने से सिर्फ वजन ही कम नहीं होता है, बल्कि हम शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत भी बनते हैं। लिहाजा रोज सोचते हैं कि सुबह उठकर रनिंग करेंगे या जिम जरूर जाएंगे, लेकिन एक ख्याल आते ही हम डर जाते हैं कि कहीं अचानक अगर दौड़ते समय हार्ट अटैक आ गया तो क्या करेंगे।
1: कोरोनरी आर्टरी डिजीज हर एक में नहीं होगी, और भी कई एबनॉर्मैलिटीज हैं, जैसे मसल थिक हो जाता है जिसको हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। उसमें क्या होता है कि हार्ट मसल अनस्टेबल होता है और वो कई बार आप देखोगे सडन डेथ उसकी वजह से होती है कि, और ये फैमिलीज में चलता है। तीसरा है कि आपके इलेक्ट्रिकल सिस्टम में इंस्टेबिलिटी हो, तो अगर जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में एक्स्ट्रा हार्ट बीट्स आ रही हैं या इरेगुलर हार्ट बीट्स आ रही हैं वो भी पता होना चाहिए हमें, स्पेशली अगर जो कोई स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज रूटीन में कोई जा रहा है, जैसे जिमिंग में होती है। आपने देखा कितने लोगों को जिम में ऐसा हुआ और कितने लोगों की लाइफ बचा भी ली गई, पर कई लोग तो फिर भी ना बच सके। तो ये उसके सुझाव भी हैं, बट मेन चीज ये है कि अपने एक तो अपने आप को अगर जो कुछ फील हो रहा है तो उसका चेकअप जरूर कराएं। दूसरा, एक्सेसिव एक्टिविटी, जैसे आप ट्रैकिंग जा रहे हैं माउंटेन पे कहीं, या आप कोई विगरस स्पोर्ट्स खेलना शुरू कर रहे हो जो आपने अभी तक नहीं करी थी, या कोई एक्सेसिव जिमिंग, आप वेट लिफ्टिंग, रनिंग ऑन ट्रेडमिल वगैरह कर रहे हो, उससे पहले एक बार बड़ा सिंपल चेकअप होता है वो करवा लें और उससे पता लग जाएगा आपकी सेफ्टी सेफ है।
0: इस डर और ख्याल के पीछे एक बड़ी वजह है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में हम सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो देख चुके हैं जिनमें लोगों को जिम में एक्सरसाइज करते समय हार्ट अटैक आ गया। इस वजह से मन में एक डर बैठ गया कि कहीं कुछ हो गया तो क्या होगा, और लोगों में ये डर इतना बढ़ गया है कि अब इसे मेडिकल की भाषा में कार्डियोफोबिया नाम दिया गया है।
2: पिछले कुछ वर्षों में हम देख रहे हैं कि यंग लोगों में भी हार्ट का खतरा जो है थोड़ा सा ज़्यादा रिपोर्ट हो रहा है। तो इसके जो एक वजह जो हो सकते हैं और लगती है कि वो ज़्यादा अवेलेबिलिटी इन्फॉर्मेशन की भी है, कि कोविड के बाद बहुत सारे जो व्हाट्सएप ग्रुप जैसे आ गए, सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा हो गया, और ओवर रिसेंट ईयर्स लोग सबके पास स्मार्टफोन्स आ गए, स्मार्टफोन में कैमरे होते हैं, वीडियो कैमरे होते हैं, और वो लोग एकदम उसको फोटो खींच के उसका रील बना के एकदम शेयर करते हैं, तो इस वजह से भी रिपोर्टिंग थोड़ी सी ज़्यादा है। तो एक तो ये कारण है, दूसरा ये कारण ये भी है कि राइजिंग प्रॉस्पेरिटी की वजह से जो लोग जो हैं उनका लाइफस्टाइल थोड़ा ऑल्टर हुआ है और वो एक जो है हार्ट डिजीज का खतरा बनता है।
0: हालांकि ये कोई अलग मेडिकल बीमारी नहीं है बल्कि हार्ट अटैक का डर है। अब सवाल है कि कार्डियोफोबिया क्यों है और इससे कैसे निपटें? इस बारे में डॉक्टर त्रिहान बताते हैं, एक्सरसाइज करते समय हार्ट रेट बढ़ना, सांस तेज चलना, पसीना आना और शरीर में गर्मी महसूस होना सामान्य है, लेकिन जिस व्यक्ति को हार्ट अटैक का डर बैठ गया हो वो इन सामान्य बदलावों को भी खतरे का संकेत समझ सकता है।
1: बेसिकली आपको ट्रेडमिल टेस्ट वगैरह करके पता लग जाएगा कि आप एक्सरसाइज जब करते हैं तो क्या आपके हार्ट की रिदम, आपके हार्ट की इरेगुलरिटी कोई है या कोई चेंजेस है, लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, वो सारा पता लग जाएगा। और अगर जो हार्ट मसल थिक है उसमें भी पता लग जाएगा। सो ये बड़े सिंपल टेस्ट हैं जिससे पता लग जाता है, बट यू हैव टू बी केयरफुल टुडे बिकॉज देयर आर टू मेनी पीपल ड्रॉपिंग डेड, चाहे कोई डांस करता हुआ चला गया या साइकिल चलाता हुआ चला गया या दौड़ लगाता हुआ। सो ये बहुत सारी अनफॉर्चुनेट चीज़ें देखी गई हैं, इसलिए हमें भी बहुत चिंता है और हम चाहते हैं कि पब्लिक को पता होना चाहिए कि अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है।
0: ऐसे में सवाल ये भी है कि कार्डियोफोबिया क्या होता है, इसे हम कैसे जान सकते हैं? फोबिया किसी खास चीज या स्थिति से होने वाला बहुत ज्यादा और अक्सर बेकाबू कर देने वाला डर है। फोबिया में डर का लेवल असल खतरे के मुकाबले बहुत ज्यादा होता है। अगर आपको कार्डियोफोबिया है तो आप मानसिक तनाव होने पर अपना ध्यान अपने दिल पर लगाते हैं और ये ध्यान इतना ज्यादा होता है कि आपको लगता है कि आपको दिल की कोई असली बीमारी है, जबकि मेडिकल टेस्ट में ऐसा कुछ नहीं निकलता। आप बार बार तसल्ली करना चाहते हैं कि कहीं हार्ट की कोई बीमारी तो नहीं हो गई है, कहीं अटैक तो नहीं आ जाएगा, इस वजह से बार बार डॉक्टर के पास जा सकते हैं और उन कामों से बच सकते हैं जिनसे आपको लगता है कि आपके लक्षण बढ़ सकते हैं। और ऐसा लगता है कि एक्सरसाइज करने से हार्ट बीट बढ़ जाएगी तो हार्ट को कहीं कोई खतरा तो नहीं हो जाएगा, जबकि असल में ऐसा कुछ नहीं होता। मेडिकल की भाषा में ही लक्षणों को कार्डियोफोबिया कहा जाता है। अब सवाल ये भी है कि कार्डियोफोबिया का इलाज क्या है। कार्डियोफोबिया का इलाज भी दूसरे फोबिया के इलाज की तरह ही किया जाता है। आपके डॉक्टर आपको साइकोथेरेपी, दवाएं या दोनों का कॉम्बिनेशन लेने की सलाह दे सकते हैं। भारत में दिल की बीमारियां, खासकर कोरोनरी आर्टरी डिजीज यानी दिल की नसों में ब्लॉकेज की समस्या तेजी से बढ़ रही है और इसके पीछे कई कारण हैं। खासकर हमारे खानपान की आदतें और जीवन शैली इसका एक बड़ा कारण है। पश्चिमी देशों में जहां करीब 4-5% लोगों में कोरोनरी आर्टरी डिजीज देखने को मिलती है, वहीं भारत में ये आंकड़ा करीब 10-12% तक पहुंच गया है। लेकिन चिंता की बात ये है कि भारत में धूम्रपान और तंबाकू का सेवन अभी भी काफी ज्यादा है। तंबाकू किसी भी रूप में शरीर के लिए नुकसानदायक है। इसके अलावा देश में डायबिटीज के मरीजों की संख्या भी बहुत ज्यादा है।
2: हमें पता होना चाहिए कि बच्चों में और खासकर जैसे जो लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, कई बार वो बहुत सप्लीमेंट्स वगैरह भी लेते हैं और उसमें भी कई बार हो सकता है कि ऐसे पदार्थ हों जो कि हार्ट के लिए इतने अच्छे ना हों। फिर स्मोकिंग भी इस एज ग्रुप में थोड़ा कॉमन है और स्मोकिंग तो बहुत ही डेफिनेट जो रिस्क फैक्टर है हार्ट डिजीज़ का है। तो एक हार्ट डिजीज़ जो है कॉम्प्लेक्स कंडीशन है, इसमें मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स की वजह से हो सकती है। तो एक इम्पॉर्टेंट स्टडी हुई थी, इंटर हार्ट स्टडी, जिसमें 8 ऐसे क्लियर रिस्क फैक्टर आए थे जो कि ऑलमोस्ट 80-90% ऑफ रिस्क को डिफाइन करते थे। तो हम लोगों को सब ये 8 रिस्क फैक्टर पता होने चाहिए। तो इसमें है, नंबर 1 है स्मोकिंग, नंबर 2 है हाई ब्लड प्रेशर, और नंबर 3 है हाई कोलेस्ट्रॉल, और चौथा है डायबिटीज़। तो ये तो 4 बड़े रिस्क फैक्टर्स हैं, इनको कंट्रोल करना सबसे महत्वपूर्ण है।
0: डॉक्टर त्रिहान के मुताबिक भारतीयों में दिल की बीमारी होने की अनुवांशिक संभावना भी अधिक होती है। अमेरिका और यूरोप में आमतौर पर दिल की बीमारी, एंजाइना या स्टेंट की जरूरत 50-60 साल की उम्र में देखने को मिलती है, लेकिन भारत में पिछले कुछ वर्षों में ये समस्या 40-50 साल की उम्र में ज्यादा दिखाई देने लगी थी और अब 30-40 साल के लोगों में भी दिल की बीमारी के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं जिन लोगों के माता पिता को डायबिटीज या दिल की बीमारी है, उनके बच्चों में भी आगे चलकर दिल की बीमारी का खतरा ज्यादा रहता है।
1: देखो, एक तो मैंने बताया ना कि अपने जीन्स को पहचानिए। अपने जीन्स को पहचानिए का मतलब ये है कि अगर जो आपके फैमिली में हार्ट डिजीज है तो बच्चों को डबल रिस्क होगा। जैसे नॉर्मली इंडिया में 8-12% लोगों को हार्ट डिजीज है, ये ऑलरेडी बहुत हाई है, क्योंकि अगर जो हम वेस्टर्न वर्ल्ड में देखेंगे वहाँ पे 4-5% है। तो एज इट इज हमारी डबल है। बट अगर जो आपकी फैमिली में मदर फादर या दोनों को या अंकल्स वगैरह को है, तो देन यू नो दैट आपके चांसेस डबल है। तो एक इसका मतलब ये है कि दो चीज़ें आपको करनी है। एक तो बिफोर द एज ऑफ 25 अपना चेकअप करा लें कि कहीं आपको तो ब्लॉकेजेस नहीं आ रहे, क्योंकि ये हमने देखा है कि यंगर एंड यंगर एजेस में आ रहे हैं। दूसरा, आपको ये जो चेकअप से रिस्क फैक्टर्स मिल पता लग जाएंगे तो यू कैन मॉडिफाई कि आपने अपने आप को प्रिवेंटिव ट्रैक पे रख दिया।
0: अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हार्ट को हेल्दी कैसे रखें। ऐसे में हार्ट को फिट रखने के लिए सबसे जरूरी है कि स्ट्रेस कम करें, क्योंकि मानसिक तनाव जितना कम होगा उतना ही अच्छा है। इसके अलावा अपने खान पान पर ध्यान दें और रोज कम से कम आधा घंटा एक्सरसाइज करें और योग भी करें।
2: जो लोग सारा दिन बैठे बैठे काम करना पड़ता है उनको, तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल हम कहते हैं, तो उनको हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ा हुआ होता है। तो उनको चाहिए रेगुलर बेसिस पर एक्सरसाइज करा करें। दिन में भी अगर सारे टाइम बैठने का है तो हर घंटे उठ के 5-10 मिनट थोड़ा चल लिया, अगर सीढ़ियाँ हैं वहाँ पर तो सीढ़ी चढ़ ली, तो उससे एक्सरसाइज हो जाती है। और सवेरे के टाइम पर वॉक करके आ गए, शाम के टाइम वॉक कर सकते हैं, वीकेंड पर अच्छी एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो इस तरह रेगुलर बेसिस पर एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो फिर रिस्क फैक्टर है डाइट का। तो डाइट का उस स्टडी में पाया गया था कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बहुत प्रोटेक्टिव हैं। तो जो लोग रेगुलरली अपनी डाइट में फ्रूट्स और वेजिटेबल लेते हैं, उनको हार्ट डिजीज का रिस्क कम होता है।
0: हृदय रोग को अक्सर बढ़ती उम्र, मोटापा और डायबिटीज से जोड़कर देखा जाता है, जबकि असल में हार्ट अटैक का कारण बनने वाली प्रक्रिया काफी पहले शुरू हो सकती है। लिहाजा सावधानी ही इसका सबसे बड़ा बचाव हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: 2027-28 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की गई है। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
0: दिल्ली में आज हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में किसानों और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में साल 2027-28 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई। इसके अलावा राज्यों में नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज 3 योजना को मंजूरी मिली। वहीं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषोन्नति योजना के तहत राज्यों के लिए राशि भी जारी की गई। कीरतपुर मनाली फोर लेन प्रोजेक्ट के तहत हिमाचल प्रदेश की पहली बॉक्स टनल मंडी जिला के थलाट में बनाई जा रही है। इस टनल का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर वरुण चारी के मुताबिक 200 करोड़ की लागत से बनने वाली 500 मीटर लंबी इस बॉक्स टनल को बनाने के लिए एक साल का लक्ष्य रखा गया है। ये एक आर्टिफिशियल टनल होगी जिसे ब्लॉक्स के जरिए बनाया जा रहा है। साल 2023 की आपदा में क्षतिग्रस्त हुए कट एंड कवर हिस्से के स्थान पर थलाट में ये विशेष स्क्वायर शेप वाली बॉक्स टनल बनाई जा रही है। इससे ट्रैफिक कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में सैलानियों के स्वागत की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 1 अक्टूबर यानी कल से यहां पर्यटन का नया सत्र शुरू होने जा रहा है। ऐसे में वन विभाग द्वारा मॉनसून सत्र में बारिश से खराब हुए सभी रास्तों को दुरुस्त कर लिया गया है, ताकि पर्यटकों को सफारी के दौरान परेशानी न हो। वहीं नेचर गाइडों को भी नए सिरे से प्रशिक्षण दिया गया है। रणथंभौर के गणेश धाम प्रवेश द्वार पर इंटरप्रिटेशन सेंटर भी बनाया जा रहा है, जिसमें पर्यटकों को कॉमन बोर्डिंग प्लेस, वेटिंग एरिया और पार्किंग जैसी सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही कन्वेंशन सेंटर भी बनाया जाएगा। इसमें मीटिंग हॉल और फिल्म प्रोजेक्शन समेत कई सुविधाएं होंगी। पुरी के प्रसिद्ध श्री गुंडीचा मंदिर को 6 साल के लंबे इंतजार के बाद आज आम श्रद्धालुओं के लिए फिर से खोल दिया गया। कोरोना काल के दौरान ही इसे आम श्रद्धालुओं के लिए बंद किया गया था, जिसे अब सौंदर्यीकरण और विकास कार्यों के बाद दोबारा श्रद्धालुओं के लिए खोला गया है। जगन्नाथ मंदिर प्रशासन के मुख्य प्रशासक अरविंद पाड़ी की मौजूदगी में सुबह पूजा अर्चना के बाद मंदिर के कपाट खोले गए। पश्चिम बंगाल का दुर्गा पूजा दुनिया भर में मशहूर है। ऐसे में नवरात्रि से पहले यहां कारीगरों और पूजा कमेटियों की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस साल देवी का औपचारिक आह्वान 10 अक्टूबर को महालया और 16 अक्टूबर को महाअष्टमी के साथ होगा। ऐसे में वर्धमान में त्योहार का माहौल अभी से छा गया है। मिट्टी के कारीगरों से लेकर कम्युनिटी पूजा कमेटियों तक हर कोई व्यस्त है।
3: और अब बात एशियन गेम्स की। भारतीय खिलाड़ियों ने जापान की धरती पर आज ऐसा इतिहास रचा जिसकी गूंज पूरे एशिया में सुनाई दे रही है, जहां भारतीय तीरंदाजों ने सटीक निशाना साधकर कंपाउंड वर्क के तीनों स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिए। वहीं ट्रैप मिक्स टीम के फाइनल में नीरू डांडा और किनान चिनाई की जोड़ी ने चौथा गोल्ड मेडल भारत के नाम कर दिया। जापान में भारतीय खिलाड़ियों की बड़ी कामयाबी से देश भर में जश्न का माहौल है।

0: जापान में चल रहे एशियन गेम्स में आज भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तीरंदाजी और निशानेबाजी में पदकों की झड़ी लगा दी। आज भारत के लिए सबसे सफल दिन रहा, जहां देश ने एक ही दिन में 4 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज समेत कुल 6 मेडल अपने नाम कर लिए। आईटी नागोया में भारतीय खिलाड़ियों ने ऐसा दम दिखाया कि पूरा एशियन गेम्स तिरंगे के रंग में रंगा नजर आया। सबसे पहले तीरंदाजी के मैदान से गोल्ड पदक जीतने की खबर आई। कंपाउंड आर्चरी में भारतीय महिला टीम ने चीन को हराकर गोल्ड अपने नाम किया। ज्योति चिकिता तनिपर्थी और पृथिका की तिकड़ी ने फाइनल में चीन को 238-234 के अंतर से हराया। वहीं गोल्ड मेडल मैच में भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने 238 के स्कोर के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली।
1: तीरंदाजी और भारत का जो संबंध है वो पौराणिक काल से बहुत अद्भुत और गहरा है, लेकिन 2026 में अगर ये बात कहूं तो शायद लोगों को लगेगा कि ये क्या बात हो रही है। एशियाई खेल 2026 में हमने देखा कि तीरंदाजों ने किस अंदाज से इंडिया को स्वर्ण पदक दिलाया। शुरुआत करते हैं महिलाओं के कंपाउंड आर्चरी टीम में। दक्षिण कोरिया को हराकर उन्होंने साबित कर दिया कि हां, वो दुनिया में विजय हासिल करने के लिए बहुत लायक है। विमेन्स कंपाउंड टीम ने गोल्ड जीता, लेकिन वो आखिरी गोल्ड नहीं था। सितंबर 30 का जो ये दिन है, हमें मानना चाहिए कि ये बहुत ही सुनहरा दिन है भारतीय खेलकूद के इतिहास में, क्योंकि आज के दिन में हमने देखा महिलाओं के कंपाउंड टीम के बाद पुरुषों के कंपाउंड टीम ने भी गोल्ड मेडल दिलवाया। हालांकि वो गोल्ड मेडल जो था वो लगभग जाने वाला था, लेकिन चीन की एक गलती ने हमें वो गोल्ड दे दिया। उसके साथ मिक्स्ड टीम का जो मुकाबला था आर्चरी में, उसमें भी हमने जबरदस्त प्रदर्शन किया। तो 3 लगातार गोल्ड तीरंदाजी में, और इसके लिए आज भारत ने अपना परचम ऊंचा लहराया एशियाई खेल आईची नगोया में।
0: भारत का सुनहरा सफर यही नहीं थमा। इसके बाद कंपाउंड मिक्स्ड आर्चरी के फाइनल में चिकिता तनिपर्थी और साहिल जाधव की जोड़ी ने कंपाउंड मिक्स्ड टीम फाइनल में दक्षिण कोरिया को शूट ऑफ में हराकर गोल्ड मेडल जीता। ये जीत इसलिए भी बेहद खास रही क्योंकि इसके साथ भारत ने लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक के मिक्स्ड कंपाउंड इवेंट का कोटा भी हासिल कर लिया।
2: ज्योति, आपने पिछली बार भी मेडल हासिल किया था, और अगर हम 2023 से देखें, आप वर्ल्ड चैंपियन भी हैं आर्चरी के अंदर में, यू नो, जो प्रोग्रेस हुई है हमारी इंडिया की, आप उसको कैसे देखती हैं? और बैक टू बैक मेडल्स, पिछली बार आपके 3 मेडल्स थे अलग अलग इवेंट्स में मिलाकर, इस बार भी आपके गोल्ड मेडल है। सो ओवर द ईयर्स आप अपनी जर्नी को कैसे देखती हैं, और इंडिया का आर्चरी में ये जो प्रमोशन है आप उसको कैसे देखती हैं?
3: आई थिंक इंडिया में आर्चरी एज अ स्पोर्ट बहुत ग्रो कर रहा है, एंड बहुत यंग आर्चर्स है जो आ रहे हैं। आई मीन यंग मैं कहूंगी चिल्ड्रन या स्टूडेंट्स जो भी है वो टेकअप कर रहे हैं एज अ स्पोर्ट आर्चरी, एंड वो भी सीरियस वे में। एंड आई थिंक फैमिलीज का सपोर्ट है तभी ये सब मुमकिन हो पा रहा है। स्पोर्ट्स का, स्पोर्ट्स को लेकर जो मैं कहूँगी कि एक उनका नजरिया बदल गया कि पहले होता था कि स्पोर्ट्स बहुत कम इंटरेस्ट लेते थे ज्वाइन करने के लिए, बट आई थिंक अभी सबका नजरिया बदल रहे धीरे धीरे, एंड वो अच्छा है एक तरह का, क्योंकि इंडिया एज अ स्पोर्टिंग नेशन ग्रो करने को मिलेगा, सिर्फ आर्चरी नहीं सारे स्पोर्ट्स में, तो बहुत अच्छी बात है। एंड स्पेशली मैं आर्चरी की बात करूँ तो कॉम्पिटिशन भी बहुत टफ होता जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे है जो अच्छे स्कोर्स मार रहे हैं, एंड कॉम्पिटिशन इतना टफ हो गया कि एक पॉइंट भी आपको टीम में सेलेक्ट होने को मिलता है, एंड एक पॉइंट की वजह से भी आप रह भी सकते हो।
0: विजय रथ पर सवार आर्चरी में भारत की गोल्डन हैट्रिक अभी बाकी थी। पुरुष कंपाउंड टीम फाइनल में कुशल दलाल, साहिल जाधव और गणेश मणिरत्नम थिरुमुरु का सामना चीन से था, और आखिरकार भारतीय तिकड़ी ने चीनी टीम को 238-237 से मात देकर खिताब अपने नाम कर लिया। सिर्फ 1 अंक के अंतर से मिली जीत के साथ कंपाउंड आर्चरी में भारत ने गोल्ड की हैट्रिक पूरी कर ली।
4: बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे किसी भी एथलीट को गोल्ड जीतने पे बहुत अच्छा ही लगेगा, और इतने दिनों से जो हमने हार्ड वर्क किया था, पैशनेट थे इसके लिए, तो वो हार्ड वर्क पेज ऑफ।
5: तो क्या कुछ चल रहा था आज दिमाग में, क्योंकि सुबह से आपके दो टीम से जो है गोल्ड मेडल निकाला था, तो प्रेशर आ गया था कि अब गोल्ड के बिना नहीं जाना है?
4: नहीं, प्रेशर तो नहीं था, बस वही था दिमाग में कि जो करते आए हैं वही करना है, वैसे ही परफॉर्म करना है, और ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि हमारे जो सीनियर्स थे उन्होंने हमें बहुत अच्छा गाइड किया था, और हमारे पास कोच भी थे, फिजियो साइकोलॉजिस्ट, मतलब पूरी टीम ने हमें इतना अच्छे से सपोर्ट किया कि प्रेशर का फील ही नहीं हुआ हमें कहीं पे।
6: मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि ये टूर्नामेंट ऑफकोर्स एक अपने लेवल पे बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, और इसमें इंडिया को दो गोल्ड मेडल देना, अपने पेरेंट्स को, अपने कोचेस को, अपने सपोर्ट स्टाफ को, जो स्पॉन्सर जो उनको प्राउड फील कराना, ऑफकोर्स इट्स लाइक ये मतलब मेरा ही काम है, और मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है कि मैंने उस चीज़ को डिलीवर किया।
0: आर्चरी के बाद अब बारी थी शूटिंग रेंज की। यहाँ भी भारतीय निशानेबाजों ने सोने पर सटीक निशाना लगाया। नीरू ढांडा और किनान चेन्नई की जोड़ी ने मिक्स्ड ट्रैप टीम फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए कतर को एक अंक से हराकर गोल्ड मेडल जीता। नीरू ढांडा के लिए तो ये उपलब्धि और भी खास रही, क्योंकि नीरू के लिए एशियन गेम्स में उनका ये लगातार दूसरा गोल्ड है। एक दिन पहले ही नीरू ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड जीता था।
1: आज एक चौथा और सबसे बेहतरीन गोल्ड जो मिला था वो था नीरू ढांडा और काइनन चेन्नई से। नीरू ढांडा को आपको याद रखना चाहिए कि उन्होंने दो मेडल ऑलरेडी जीत चुके थे, वो टीम सिल्वर जो ट्रैप में था और इंडिविजुअल सुनहरा जो था इंडिविजुअल गोल्ड मेडल, और आज इन्होंने काइनन चेन्नई के साथ तीन गोल्ड, तीसरा अपना मेडल जीत लिया और दूसरा गोल्ड मेडल। अब उसमें सबसे बेहतरीन बात यह थी कि उन्होंने पहले सीरीज में स्ट्रगल किया था, लेकिन बाकी के जो तीन सीरीज थे लाजवाब शूटिंग के चक्कर में नीरू ढांडा अब बन गई है दो बार एशियाई खेल के गोल्ड मेडलिस्ट और साथ साथ एक सिल्वर।
0: गोल्डन डे पर ब्रॉन्ज का भी जलवा कायम रहा। महिला बॉक्सिंग में प्रिया घंघास ने 60 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में ब्रॉन्ज मेडल पक्का कर लिया। वहीं पुरुष 90 किलोग्राम वर्ग में कपिल पोखरिया को सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कांस्य पदक जीतकर भारत की झोली में एक और मेडल डाल दिया। इस बीच एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय कबड्डी टीम के सदस्य अयान लोहचप का झज्जर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। चारों तरफ उत्सव का माहौल दिखा, परिजनों और गांव वालों ने मिठाई खिलाकर बधाई दी। इस मौके पर अयान लोहचप ने कहा कि एशियन गेम्स में हमारी टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और आगे भी अच्छा प्रदर्शन करेगी।
7: टीम का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा, टीम ने गोल्ड मेडल जीता और आगे भविष्य के लिए इंडिया के लिए और अच्छा करे। यूं से यही है, नशे पत्ते से दूर रहे, अच्छी अपनी मेहनत करे, अच्छे अपने गेम पे फोकस करे।
0: एक तरफ जापान में भारतीय खिलाड़ी मेडल जीत रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने मेडल वीरों के घर पर जीत कर जश्न मनाया जा रहा है। हरियाणा में भिवानी के जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीतने वाली यशवीर सिंह के घर जश्न का माहौल है। परिवार वालों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां साझा की और आतिशबाजी करके मेडल जीतने का जश्न मनाया। दिल्ली से नितिन श्रीवास्तव के साथ सिद्धार्थ विश्वनाथन, गुड न्यूज टुडे।
8: न्यूज पत्र आगे है धनबाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धनबाजार।
0: शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। आज बुधवार 30 सितंबर को सेंसेक्स 49 अंक गिरकर 72,480 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 96 अंक फिसला, ही गिरकर 22,620 पर आ गया। सोने की कीमतों में सुधार हुआ। आज बुधवार 30 सितंबर को दिल्ली में सोना 700 रुपए महंगा हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 149,300 रुपए हो गई। हालांकि चांदी की कीमत में कोई बदलाव नहीं आया। दिल्ली में किलो चांदी की कीमत 2,32,000 रुपए पर स्थिर रही। डॉलर के मुकाबले रुपए को मजबूती मिली। बुधवार 30 सितंबर को रुपया 13 पैसे ऊपर चढ़ा। इस तरह एक डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 95.81 रुपए हो गई।
8: उज्ज्वल निकम पर बनी फिल्म प्रहार का ट्रेलर जारी हो गया है। इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे आपको लिए चले फिल्मी मोड पर।
9: हर अब स्टेट ऑफ महाराष्ट्र को नहीं पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
0: दिग्गज वकील उज्जवल निकम की कहानी और उनके किरदार में राजकुमार राव। फिल्म प्रहार द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ उज्जवल निकम का दमदार ट्रेलर रिलीज हो चुका है। मुंबई के मशहूर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर ट्रेलर लॉन्च हुआ, जहां महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उज्जवल निकम भी मौजूद रहे।
9: बता सकते हैं कौन सी वाली?
10: नो सर, दिस केस इज फुल ऑफ होल्स योर ऑनर।
0: प्रोड्यूसर दिनेश विजयन और मैडॉक फिल्म्स की इस फिल्म में राजकुमार राव उज्जवल निकम का रोल निभा रहे हैं। ट्रेलर में कहानी के कई असरदार और दमदार पल नजर आ रहे हैं। फिल्म 16 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
9: अगर आपके पास कोई सबूत है तो वो सबके सब हमें पेश कर दीजिए। सब चाहिए तो जाके हाफिज सईद से मांगिए, नहीं तो दाऊ के घर चले जाइए कराची में, उससे तो बातचीत होती होगी। आप
11: जनाब निकम, अपने ईमान का हिसाब मुझे अपने रब को देना, आपको नहीं जनाब।
9: ना तो उज्जवल निकम भी हनुमान जयंती के दिन पैदा हुआ था, मेरा हिसाब भी बजरंग बली लेंगे और मेरे दुश्मनों का भी।
0: आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की फिल्म उड़ता तीर ने म्यूजिकल सफर शुरू कर दिया है। फिल्म का पहला गाना भूतनी का रिलीज हो चुका है। सचिन जिगर के कंपोजिशन वाले इस गाने को काका, ट्विंकल अग्रवाल और अमिताभ भट्टाचार्य ने आवाज दी है, जबकि इसके बोल अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखे हैं। आकाश कौशिक के निर्देशन में बनी इस फिल्म में आयुष्मान खुराना और सारा अली खान लीड रोल में हैं। करण जौहर समेत कई प्रोड्यूसर्स ने फिल्म को प्रोड्यूस किया है। उड़ता तीर 9 अक्टूबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। गांव की पृष्ठभूमि, डरावनी कहानी और जैकी श्रॉफ और शरद केलकर जैसे दमदार कलाकार। फिल्म काली खेती को लेकर मेकर्स ने रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है। जैकी श्रॉफ, शरद केलकर और नेहा सरकम स्टारर ये ग्रामीण हॉरर फिल्म 23 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। मेकर्स ने पोस्टर जारी करते हुए फिल्म की रिलीज डेट बताई है, जिसमें इसकी डरावनी दुनिया की झलक भी देखने को मिल रही है। हारिस इम्तियाज खान के लेखन और निर्देशन में बनी इस फिल्म को सना खान ने ब्लैक कैनवस स्टूडियो के बैनर तले प्रोड्यूस किया है।
8: न्यूज वक्त में खबरों के सफर को आगे बढ़ाएं, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
8: कोलकाता में नवरात्र की तैयारियां जोर शोर से जारी। वर्धमान में माँ दुर्गा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे कारीगर। पिछले 5 वर्षों में इस साल सितंबर महीने में सबसे ज्यादा साफ रही दिल्ली की हवा, औसत AQI 102 दर्ज किया गया। रणथंभौर में नए पर्यटन सत्र की तैयारियां पूरी, सैलानियों का इंतजार। 1 अक्टूबर से खुल रहा टाइगर रिजर्व, नियम तोड़ने वाले गाइड और ड्राइवर्स पर होगी सख्ती। छत्तीसगढ़ के बस्तर में सरेंडर करने वाले 8 पूर्व नक्सलियों ने फर्स्ट डिवीजन से पास की 10वीं कक्षा की परीक्षा, आगे की पढ़ाई जारी रखने का इरादा। एशियन गेम्स में भारत की चमक बरकरार। 87 किलोग्राम ग्रीको रोमन रेसलिंग इवेंट में सुनील कुमार ने जीता ब्रोंज। आज तीरंदाजी में 3 और शूटिंग में आया 1 गोल्ड। भारत के खाते में कुल 10 गोल्ड मेडल। चलिए न्यूज पथ में खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको हैरान कर देंगे और कुछ आपको हंसने पर मजबूर।
0: सुर है, ताल है और धूल की थाप पर झूमते लोगों की मस्ती है, लेकिन इस महफिल में सबसे खास है एक छोटा सा कलाकार जो कभी ढोल बजा रहा है तो कभी उसी की धुन पर खुद थिरक रहा है। बच्चे के हाथों में ढोल आते ही माहौल और भी रंगीन हो जाता है। उसकी मासूम अदाएं देखकर आसपास मौजूद लोग भी खुद को नाचने से रोक नहीं पाते। लोग बच्चे का हौसला बढ़ा रहे हैं और उसकी मासूमियत भरी अदाओं का खूब आनंद ले रहे हैं। एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में हैंडल और सड़क की सफाई का ऐसा अंदाज कि देखने वाले भी तारीफ किए बिना नहीं रह पाए। महिला पूरे जोश और उत्साह के साथ सड़क की सफाई में जुटी है। काम चाहे कोई भी हो, अगर उसे करने का हौसला और जज्बा हो तो हर काम आसान लगने लगता है। महिला का यही जज्बा इस वीडियो में नजर आ रहा है। अपने काम को लेकर उसकी मेहनत और लगन लोगों का ध्यान खींच रही है और लोग उसकी खूब सराहना कर रहे हैं। एक वक्त था जब मोबाइल फोन नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं था और गांव की गलियों में ही मनोरंजन के कई रास्ते मिल जाते थे। खासकर लड़कियों के बीच ऐसे देसी खेल बेहद लोकप्रिय हुआ करते थे। काम से थोड़ी फुर्सत मिली नहीं कि खेल शुरू, लेकिन वक्त बदला और ये खेल पीछे छूट गए। अब एक महिला ने पुराने दिनों की याद ताज़ा करते हुए उसी खेल को फिर से खेला। वीडियो देखकर लोगों को अपना बचपन याद आ रहा है और पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं। कबड्डी का खेल तो आपने खूब देखा होगा, दो टीमें, एक मैदान और जीत के लिए जोर आजमाइश। लेकिन इस वीडियो में नजारा कुछ अलग, क्योंकि यहाँ इंसानों की नहीं बल्कि बंदरों की टीम आमने सामने नजर आ रही है। एक तरफ बंदरों का झुंड है तो दूसरी तरफ दूसरा झुंड, और दोनों के बीच कुछ ऐसा खेल चल रहा है जिसे देखकर लोग हैरान भी हैं और खुश भी। बंदरों की सनों की मस्ती का वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का खूब ध्यान खींच रहा है। बस में यात्री आ रहे हैं, अपनी सीट पर बैठ रहे हैं, लेकिन इस सफर की सबसे खास बात है बस का ड्राइवर, जो यात्रियों का स्वागत किसी आम अंदाज में नहीं बल्कि मुस्कुराते हुए और गाना गाकर कर रहा है। ड्राइवर के चेहरे की मुस्कान और उसकी आवाज ने बस के माहौल को खुशनुमा बना दिया। बस में बैठने वाले यात्री भी उसके गाने को खूब एंजॉय कर रहे हैं। आते जाते लोगों के चेहरे पर भी मुस्कान नजर आ रही है और सफर यादगार बन रहा है।
8: न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी दिल्ली NCR में वाहन चलाने वालों के लिए एक जरूरी नियम की। देश की राजधानी में प्रदूषण रोकने के लिए कल यानी कि 1 अक्टूबर से एक बड़ा नियम लागू होने जा रहा है। दिल्ली NCR में गाड़ी चलाने वालों के लिए 1 अक्टूबर से पेट्रोल पंप और CNG स्टेशन पर एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 1 अक्टूबर से पेट्रोल पंप पर ऐसे वाहनों में पेट्रोल, डीजल या फिर CNG नहीं भरी जाएगी जिनके पास वैध POCC यानी कि पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट नहीं। ये नियम सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि पूरे NCR में लागू होगा, जिसमें नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव और फरीदाबाद शहर शामिल है। अब तक प्रदूषण सर्टिफिकेट की जांच सड़क पर गाड़ी चलाते समय होती थी, लेकिन नए नियम के बाद पेट्रोल पंप और CNG स्टेशन पर भी इसकी जांच की जाएगी। इसके लिए 500 पेट्रोल पंप पर ANPR यानी कि ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरों की मदद ली जाएगी। ये हाईटेक कैमरे गाड़ी की नंबर प्लेट पहचान कर ये पता लगाने में मदद करेंगे कि उस वाहन का वैध POCC है या नहीं। यही नहीं, गाड़ी का वैध POCC नहीं होने पर पेट्रोल पंप पर मोटर वाहन नियमों के तहत ₹10,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के मुताबिक वाहनों से निकलने वाला धुआं दिल्ली NCR के वायु प्रदूषण की एक बड़ी वजह है। इसी को देखते हुए 1 अक्टूबर से वैध POCC के बिना वाहनों को ईंधन देने पर रोक लगाने का फैसला किया गया है। जाहिर है दिल्ली NCR में एयर क्वालिटी में सुधार के लिए अब वाहनों पर सख्त नजर रहेगी। ऐसे में जरूरी है कि लोग अपने वाहन वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट के साथ चलाएं। इस नए नियम को लेकर हमने दिल्ली में लोगों से बात की और उनकी राय जानी।
13: बहुत अच्छा स्टेटमेंट है गवर्नमेंट का कि जिस भी व्यक्ति के पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट ना हो उसको किसी भी प्रकार से फ्यूल नहीं देना चाहिए। गवर्नमेंट को ये भी इंश्योर करना चाहिए कि हम जब एक लेवल के बाद जब हम पोल्यूशन कराने के लिए जाते हैं तो कई जगह पे वो बंद मिलते हैं, लंबी लाइन मिलती है, तो गवर्नमेंट को जगह जगह इस तरीके के कैंप और चलाने चाहिए, तो छोटी सी जगह के अंदर बन के तैयार हो जाते हैं तो और जगह व्यवस्थित जो कैंप हैं वो खोलने चाहिए, क्योंकि बंदे जाते हैं वहाँ देखते हैं भीड़ है तो वो जाके नहीं कराते हैं और वापसी निकल आते हैं, जिसको लगता है मुझे टाइम लगने वाला है तो वो निकल आता है। तो गवर्नमेंट को इसके साथ ये भी इनिशिएट लेने चाहिए कि जगह जगह इस तरीके के कैंप चलाए जाएं और लोगों को असुविधा नहीं होनी चाहिए, और ये एक गुड इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट को तैयारी करनी चाहिए इसके लिए।
14: आपको ये तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, दिल्ली पॉल्यूटेड सिटी है तो आपको भी एक मतलब रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह लेना चाहिए POC अपनी गाड़ी के लिए। बाकी उसके अलावा गवर्नमेंट को और भी इश्यूज़ पे ध्यान देना चाहिए, मतलब ये एक अकेला रीजन नहीं है पोल्यूशन का, तो गवर्नमेंट को अलग चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए। बाकी ये भी एक अच्छा स्टेप है,
15: इनिशिएटिव तो अच्छा है बट ग्राउंड रियलिटी भी पता होनी चाहिए। अगर मुझे मेरी गाड़ी से धुआं निकल रहा है मतलब एक लेवल के बाद और मुझे पोल्यूशन करवाना ही है तो ऑब्वियसली मुझे पोल्यूशन POCC सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, राइट। बट हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं वहाँ पर जाकर उसको कुछ मॉनेटरी वैल्यू दे दूँ और वो मुझे वो सर्टिफिकेट उसके बिहाफ पे दे दे। तो अगर इसको हमें रोबस्ट करना है तो उसके लिए हमें जो ग्राउंड रियलिटी है, ग्राउंड लेवल पे अगर कोई व्हीकल पोल्यूशन कर रहा है तो उसका सर्टिफिकेट एनी हाउ मिलना ही नहीं चाहिए। तो एक स्टेप तो ये बहुत ज़रूरी है कि ग्राउंड लेवल पर आप इसको ठीक कीजिए। और दूसरा नहीं गुड इनिशिएटिव, हम भी दिल्ली में रह रहे हैं और दिल्ली दिसंबर तक जाकर बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, हमें भी अच्छा नहीं लगता, हम क्या करते हैं फिर, हम 15 दिन के लिए दिल्ली से बाहर जाके सर्वाइव बट स्टे करते हैं फॉर हेल्दी
16: नहीं मिले जिनके पास सर्टिफिकेट।
15: ऑफ कोर्स दिस इज गुड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस लेवल ऑफ पॉल्यूशन इन दिल्ली। दिल्ली आई थिंक इज द ओनली स्टेट या कैपिटल जिसमें इस लेवल पे पोल्यूशन चल रहा है दिसंबर एंड जनवरी में।
8: जोधपुर एयरबेस पर तरंग शक्ति युद्धाभ्यास का दूसरा एडिशन चल रहा है। इस युद्धाभ्यास में भारत समेत 8 देशों की वायुसेना के 3,000 से ज्यादा जवान हिस्सा ले रहे हैं। खास बात यह है कि इस साल के तरंग शक्ति अभ्यास में पहली बार अमेरिका के 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट F-35 हिस्सा ले रहे हैं। भारत की सरजमी पर हुए किसी भी युद्धाभ्यास में यह पहली बार है जब अमेरिका का F-35 फाइटर जेट शामिल हुआ है। जोधपुर एयरबेस पर 26 सितंबर से शुरू हुआ इस साल का यह सबसे बड़ा युद्धाभ्यास 12 अक्टूबर तक चलेगा।

0: राजस्थान का आसमान इन दिनों शक्तिशाली लड़ाकू विमानों की गर्जना से गूंज रहा है। जोधपुर एयरबेस पर हलचल बढ़ी हुई है। भारत की अगुवाई में दुनिया का शक्तिशाली देशों की वायुसेना अपने अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों के साथ पराक्रम का प्रदर्शन कर रही है। तरंग शक्ति अभ्यास 2.0 को शुरू हुए 6 दिन बीत चुके हैं। हर गुजरते दिन के साथ कड़ी होती जा रही है सैन्य एक्सरसाइज। दुश्मन के हवाई हमलों को रोकने और डॉग फाइट से लेकर एयरलिफ्ट और टैक्टिकल ड्रॉप्स को अंजाम दिया जा रहा है। भारतीय और विदेशी फाइटर जेट्स आसमान में उड़ान भरते हुए टैंकर विमानों से ईंधन रिफिल कर रहे हैं ताकि उनके स्ट्राइक रेंज को कई गुना बढ़ाया जा सके। इस युद्धाभ्यास का खास आकर्षण है अमेरिकी एयरफोर्स का 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट F-35, जो भारत की सरजमी पर हो रहे युद्धाभ्यास में पहली बार शामिल हुआ है। तरंग शक्ति युद्धाभ्यास को इस साल का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास बताया जा रहा है। भारत समेत 7 मित्र देश अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, UAE, बांग्लादेश और श्रीलंका अपने लड़ाकू विमानों के साथ हिस्सा ले रहे हैं। 80 से ज्यादा अत्याधुनिक एयरक्राफ्ट अपनी ताकत की नुमाइश कर रहे हैं। 3000 से ज्यादा जवान अपने कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं। तरंग शक्ति युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना की तरफ से तेजस, सुखोई 30 MKI, राफेल, मिराज 2000, जगुआर और मिग 29 जैसे लड़ाकू विमानों को उतारा गया है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना की एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल विमान, ट्रांसपोर्ट विमान और हवा में ही ईंधन भरने वाले एयर टू एयर रिफ्यूलिंग टैंकर भी शामिल किए गए हैं। अमेरिका के F-35 लाइटनिंग 2 स्टेल्थ फाइटर जेट पहली बार भारत में हो रहे किसी युद्धाभ्यास में शामिल हुआ है। अमेरिकी एयरफोर्स के 2 KC-135 हवा में ईंधन भरने वाले विमान भी अपनी क्षमता का प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। फ्रांस वायुसेना की ओर से 7 राफेल लड़ाकू विमान, 3 A-400 सैन ट्रांसपोर्ट विमान और 2 हवा में ईंधन भरने वाले विमान अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात वायुसेना ने इस युद्धाभ्यास में 6 F-16 लड़ाकू विमान और 1 सैन्य निगरानी विमान भेजा है। ऑस्ट्रेलिया की वायुसेना की ओर से 1 C-30J सैन्य ट्रांसपोर्ट विमान इस युद्धाभ्यास में शामिल हुआ है। जर्मनी की वायुसेना की ओर से 1 A-400M एटलस सैन्य ट्रांसपोर्ट विमान इस युद्धाभ्यास में हिस्सा ले रहा है। बांग्लादेश वायुसेना की 1 C-130J ट्रांसपोर्ट विमान और श्रीलंका के 1 King Air 350 निगरानी विमान भी इस युद्धाभ्यास में अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर रहे हैं। युद्धाभ्यास के दौरान अलग अलग देशों के ये लड़ाकू विमान एक साथ उड़ान भरकर रणनीतिक तालमेल और हवाई युद्ध की बारीकियों को आपस में साझा कर रहे हैं। एयर क्रू और मिशन प्लानर्स के साथ बैठकर जटिल रणनीतियों को अंजाम दे रहे हैं ताकि जंग के मैदान में किसी भी हालात से निपटा जा सके और भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों के लिए एक कम्बाइंड एयर ऑपरेशन आर्किटेक्चर विकसित किया जा सके। तरंग शक्ति युद्धाभ्यास का ये दूसरा संस्करण है। 12 अक्टूबर तक ये एक्सरसाइज चलेगी। 2024 में पहली बार 2 चरणों में सुलूर और जोधपुर में इस युद्धाभ्यास को आयोजित किया गया था। तब अमेरिका के A-10 और F-16 जैसे विमान पहुंचे थे, लेकिन अब पहली बार अमेरिका का सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान F-35 अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। जाहिर है वैश्विक मंच पर भारत के मजबूत होते रक्षा संबंध के बुलंद तस्वीर की ये एक नई वानगी है। शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
1: ने सऊदी की पारंपरिक पोशाक पहनकर किया लोक नृत्य। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां विदेश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
2: चीन का हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज खुलने के 1 साल बाद भी दुनिया का ध्यान खींच रहा है। इस पुल ने करीब 2 घंटे के सफर को महज 2 मिनट में बदल दिया। अगस्त 2026 तक पुल के युंजू सर्विस एरिया में 33,65,000 से ज्यादा विजिटर्स पहुंच चुके हैं। वहीं जेनफेंग काउंटी में 54,73,000 से ज्यादा पर्यटक आए। चीन इसे ब्रिज टूरिज्म मॉडल के तौर पर विकसित कर रहा है। लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में कोरिया की 2000 साल पुरानी कला और विरासत की खास प्रदर्शनी लगी है। यहां बौद्ध घंटी से लेकर गोरियो सेलाडोन और पुराने स्क्रॉल तक प्रदर्शित किए गए हैं। सोने की पत्ती से बना फ्लावर गारलैंड सूत्र भी खास आकर्षण है। मशहूर पेंटिंग टाइगर एंड मैगपाई भी प्रदर्शनी का हिस्सा है। क्यूरेटर को उम्मीद है के पॉप डेमन हंटर्स देखने वाले युवा इस पेंटिंग को पहचान कर चौंकेंगे। प्रदर्शनी में 20वीं सदी के मुश्किल दौर में कोरियाई कलाकारों की रचनात्मकता और संघर्ष को भी दिखाया गया है। चीन में राष्ट्रीय दिवस के मौके पर बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर में फूलों की विशाल टोकरी सजाई गई है। मातृभूमि को आशीर्वाद थीम वाली ये संरचना 18 मीटर ऊंची है। इसके फूलों वाले आधार का व्यास 45 मीटर है। टोकरी में 15 तरह के फूल और 5 तरह के फल लगाए गए हैं जो खिलते फूलों और भरपूर फसल का प्रतीक है। दक्षिणी हिस्से पर मातृभूमि को आशीर्वाद 1949 से 2026 लिखा है, जबकि उत्तरी हिस्से पर राष्ट्रीय दिवस का संदेश है। स्क्वायर के दोनों ओर फूलों की प्रदर्शनी 5050 वर्ग मीटर में फैली है। अलास्का के कटमई नेशनल पार्क में एक बार फिर भालुओं के वजन और ताकत की चर्चा है। भालू नंबर 89, जिसे बैकपैक के नाम से जाना जाता है, इस साल फैट बियर वीक का चैंपियन घोषित किया गया है। ऑनलाइन वोटिंग के आखिरी दौर में उसने भालू नंबर 910 को पीछे छोड़ा। बैकपैक एक वयस्क नर भूरा भालू है जो अपने सुनहरे कानों के लिए पहचाना जाता है। उसका उपनाम बचपन से जुड़ा है। जब वो ब्रुक्स नदी पार करते वक्त अपनी माँ की पीठ पर सवारी करता था, अब उसने 2025 के चैंपियन भालू नंबर 32 चंक की जगह ली है। रियाद में तकनीक और परंपरा का अनोखा संगम देखने को मिला। चीनी रोबोट्स ने सऊदी की पारंपरिक पोशाक पहनकर लोक नृत्य किया। खास बात यह रही कि रोबोट्स ने ये प्रस्तुति रियाद के मेयर और चीनी राजदूत के सामने दी। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की 77वीं वर्षगांठ के मौके पर चीनी दूतावास में समारोह आयोजित किया गया था। इसी समारोह में रोबोट्स ने सऊदी लोक नृत्य की प्रस्तुति दी और सऊदी राष्ट्रगान भी बजाया। तकनीक और संस्कृति के इस अनोखे मेल ने समारोह में मौजूद लोगों का ध्यान खींचा।
1: ब्रेक प्लाजा पर हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मिल जाएगा। ब्रेक के बाद लिए चलेंगे खेल चक्कर।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच।
9: और इस वक्त खेल की दुनिया से जो शानदार खबर सामने आ रही है, आपको हम बता दें कि गुवाहाटी में चल रहे वेस्टइंडीज और इंडिया के बीच ओडीआई में दूसरे ओडीआई में शुभमन गिल ने दोहरा शतक जड़कर रिकॉर्ड बना लिया है। शुभमन गिल का यह वनडे में बड़ा रिकॉर्ड है, सबसे तेज डबल सेंचुरी 117 बॉल में जड़ा है उन्होंने ये दोहरा शतक। शानदार खेल यहां पर देखने को मिला, शुभमन ने सबसे तेज दोहरे शतक का यह रिकॉर्ड बनाया है। आपको बता दें कि गुवाहाटी में ये मैच चल रहा है और भारत को 406 रन का लक्ष्य मिला है वेस्टइंडीज की तरफ से। वेस्टइंडीज ने 405 रन बनाए 7 विकेट के नुकसान पर और इस वक्त जो मैच चल रहा है शुभमन ने सबसे तेज यहां पर डबल सेंचुरी जड़कर रिकॉर्ड बना दिया है। इसके अलावा आपको हम बता दें कि रोहित और कप्तान शुभमन गिल के बीच 255 रनों की बड़ी साझेदारी यहां पर रही, लेकिन अब शुभमन जो है उन्होंने दोहरा शतक जड़कर एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। गिल का वनडे में ये सबसे बड़ा और तेज शतक है, 117 बॉल में जड़ा है दोहरा शतक। एशियन गेम्स में गोल से बस एक कदम दूर है भारतीय महिला हॉकी टीम। खेल जगत से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चलें खेल चक्कर।
2: शानदार फॉर्म में चल रही भारतीय महिला हॉकी टीम ने आज दक्षिण कोरिया को 2-0 से हराकर एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल का 44 साल का इंतजार खत्म करने की उम्मीद जगा दी है। टीम ने फाइनल में जगह बना ली है, ऐसे में भारत अब एशियाई खेलों में महिला हॉकी का अपना दूसरा गोल्ड मेडल जीतने से बस एक कदम दूर है। फाइनल में भारत का मुकाबला मौजूदा चैंपियन चीन से होगा। विराट कोहली आईसीसी की वनडे बैटर्स रैंकिंग में दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे में नाबाद 139 रन की पारी खेलने का उन्हें फायदा मिला। कोहली के अब 796 रेटिंग पॉइंट हैं। वे टॉप पर मौजूद भारतीय कप्तान शुभमन गिल से सिर्फ 20 पॉइंट पीछे हैं। रैंकिंग हर हफ्ते बुधवार को जारी की जाती है। भारत के पूर्व तेज गेंदबाज मोहित शर्मा चेन्नई सुपर किंग्स के नए बॉलिंग कोच होंगे, वे साउथ अफ्रीका के एरिक सिमंस की जगह लेंगे। मोहित शर्मा सीएसके के लिए 4 आईपीएल सीजन खेल चुके हैं। उन्होंने अपने आईपीएल करियर की शुरुआत भी 2013 में सीएसके के साथ ही की थी। पिछले साल दिसंबर में उन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया था।
9: इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
1: किस तरह के आहार का आपके विचार पर प्रभाव पड़ता है? सात्विक आहार ग्रहण करने के लाभ क्या हैं? और अपने मन को बदलने के लिए आहार में किस तरह का बदलाव किया जाए, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है
6: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
7: गुवाहाटी वनडे में कप्तान शुभमन गिल ने रचा इतिहास, 117 गेंद में जड़ा दोहरा शतक, सबसे तेज शतक बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड। कोलकाता में नवरात्र की तैयारियां जोर शोर से जारी, बर्दवान ने मां दुर्गा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे कारीगर। पिछले 5 वर्षों में इस साल सितंबर महीने में सबसे ज्यादा साफ रही दिल्ली की हवा, औसत AQI 102 दर्ज। छत्तीसगढ़ के बस्तर में सरेंडर करने

0: वाले 8 पूर्व नक्सलियों ने फर्स्ट डिवीजन से पास की 10वीं कक्षा की परीक्षा, आगे भी पढ़ाई जारी रखने का इरादा। एशियन गेम्स में भारत की चमक बरकरार, 87 किलोग्राम ग्रीको रोमन रेसलिंग इवेंट में सुनील कुमार ने जीता ब्रॉन्ज। आशा तीरंदाजी में 3 और शूटिंग में आया 1 गोल्ड, भारत के खाते में कुल 10 गोल्ड बन।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों
0: नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं सोने की यानी गोल्ड की, जो लगता है कि दौड़ते भागते अब संभल चुका है। पिछले महीने जो उसकी रफ्तार थी, अंदाजा लगाया जा रहा था कि दिवाली तक कहीं कीमत 2 लाख प्रति 10 ग्राम ना हो जाए, पर हुआ इसका उल्टा। सितंबर में न सिर्फ इस रफ्तार पर लगाम लगी, बल्कि कीमतों में 8 से 10 हजार तक की कमी दर्ज की गई है। पिछले दिनों ऐसा भी हुआ कि यह कीमत 1.5 लाख के नीचे चली गई। हालांकि मामूली उतार चढ़ाव का दौर बना हुआ है, पर सोने की कीमतों में आई कमी से ग्राहकों में जोश हाय है। पिछले दिवाली और उसके बाद शादी के सीजन को देखते हुए चेहरों पर स्माइल आ चुकी है और लोग खरीदारी के लिए न सिर्फ तैयार हैं, बल्कि पितृपक्ष के दौरान खरीदारी ना करके बुकिंग करा रहे हैं। जानकार मान रहे हैं कि दिवाली तक कीमतों में ज्यादा बदलाव आने की उम्मीद नहीं है, इसलिए पूरी संभावना है कि गहनों की दुकानों में रौनक रहने वाली है। आज आपको दिल्ली, मुंबई और जयपुर के ज्वेलरी शोरूम में लिए चलेंगे और वहां ग्राहकों के साथ दुकानदारों से समझने की कोशिश करेंगे कि सस्ता हुआ सोना कितनी बड़ी राहत है। भाई, शुरुआत करते हैं सोने के भाव में आई गिरावट से। सोमवार को 24 कैरेट गोल्ड की कीमत प्रति 10 ग्राम 1,48,000 के आसपास तक पहुंच गई। मंगलवार की सुस्ती के बाद हालांकि बुधवार को कीमतों में थोड़ी रफ्तार देखने को मिली, लेकिन मोटे तौर पर अगर हम देखें तो सितंबर में सोने की कीमतों में आई सुस्ती आम ग्राहकों के लिए खुशखबरी है। दिवाली और उसके बाद शादी विवाह के लिए गहनों की खरीदारी की परंपरा है। जाहिर सी बात है कि सोने की कीमत होगी अगर कम तो आम लोगों को राहत जरूर मिलेगी। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि दिल्ली और मुंबई के ज्वेलरी शॉप में क्या माहौल है।

0: चमक, ये दमक, ये रंगो रूप, चेहरे पर खिली जैसे पीली धूप। वैसे देखा जाए तो ये जो सोने के गहने हैं ना, असल में जादू है। जादू जो अपनी ओर खींचता है और जिसका असर कभी कम नहीं होता। शादी विवाह हो, तीज त्योहार हो, तब तो गहने खरीदे ही जाते हैं। इसके अलावा भी जेब में भरपूर पैसा हो और सोने की कीमतों में अच्छी खासी गिरावट आ जाए तो ज्वेलरी शॉप में चहल पहल बढ़ना लाजमी है। मुंबई के एक शोरूम की तस्वीर देख लीजिए।
1: रोज देखते हैं आज क्या प्राइस है, भाव का क्या बढ़ा है, कम हुआ है। तो जब भी कम होता है तभी महावीर ज्वेलर्स जैसे हमारा ही दुकान है, देखे हम लोग फटाक करके आ जाते हैं।
2: इसके लिए ही आए, कुछ ना कुछ अभी लेके जाएंगे।
3: अच्छा, क्या नाम है आपका?
2: शिल्पा।
3: तो क्या सोच के आए हो, क्या नेकलेस ले रहे हो, अंगूठी ले रहे हो, चैन ले रहे हो, क्या कर रहे हो? ब्रेसलेट लेंगे। तो कौन सी डिजाइन आपने सोच कर आए हो?
2: नहीं, अभी देखेंगे तभी पता चलेगा।
3: अच्छा, तो अभी दीपावली भी आ रही है और नवरात्रि भी आ रही है, थोड़ा सा बहुत जरूरी हो गया अब अपना थोड़ा मैचिंग करना, आभूषण करना लगता आपको?
1: वो तो लेडीज लोग का कायम रहता ही है, ये लेना एक के बाद एक।
3: अच्छा मैम, क्या नाम है आपका?
2: हेमलता।
3: अच्छा, महंगाई तो है फिर भी खरीदारी जारी है?
2: हाँ, वो जरूरी है ना, लेडीज है इसलिए। अच्छा, इसलिए आते हैं बार बार इधर।
3: अच्छा, ये बताइए कि अभी थोड़ा सा कम हुआ है रेट्स वगैरह, तो आपको लगता है कि खुशी है या थोड़ा और कम होना चाहिए?
2: कम होना चाहिए तो ज्यादा खुशी होगा।
3: अच्छा, अभी दीपावली भी है, आपको लगता है रेट बढ़ेगा?
2: नहीं, कम होगा।
3: कम होने वाला है? हाँ। आपका एक्सपीरियंस कहता है?
2: ऐसा लगता है मुझे।
3: आपको भी ऐसा लगता है?
2: हाँ, लगता है।
3: मतलब इस दीपावली रेट नहीं बढ़ेगा ऐसा लगता?
2: नहीं, कम होगा और हम लोग ज्यादा लेंगे।
3: आपको भी यही लगता है?
2: यस।
0: सीधी सी बात है, सोने के भाव अगर गिरेंगे तो आम ग्राहकों के चेहरे पर स्माइल आएगी ही। सामने दिवाली है, उसके बाद शादी ब्याह का सीजन है, इसीलिए अगर ट्रेंड यही रहा तो गहनों के हिसाब से आम लोगों के लिए राहत की बात है, और अगर ग्राहक आएंगे तो ज्वेलर्स को भी खुशी होगी।
4: रेट डाउन हुआ है और बहुत लोगों के, जैसे अभी शादी ब्याह आने वाला है, उनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है रेट डाउन आया है। वो बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे खरीदारी की, तो अब ये उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सर।
3: अच्छा, मतलब दिसंबर महीने में सही में बहुत सारी शादी है, शादी के बहुत सारे दिन हैं
4: सर। नवंबर दिसंबर बहुत सारी शादी है, बहुत सारी इंक्वायरी है, तो उनके लिए इससे अच्छा कोई मौका नहीं हो सकता है सर।
3: अच्छा, मैं आपसे ये बातें पूछूंगा कि क्या कुछ चला, लेकिन उसके पहले ये बताइए कि ये जो सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट हुई है, इसकी वजह से क्या कुछ परिवर्तन आ गया आपके बिजनेस में, व्यवसाय में क्या चल रहा है, या फिर जैसा था वैसा ही है?
4: देखो, सोने की कीमतें कम होना हमारे व्यवसाय के लिए पॉजिटिव है।
0: ग्राहक हो या दुकानदार, दोनों के चेहरे खिले हुए हैं, और इसकी वजह है सितंबर महीने में सोने का सस्ता होना। सितंबर में सोने की कीमतों में 8,000 रुपए की बड़ी गिरावट आई है, वही चांदी भी 14,000 रुपए सस्ती हुई है। 31 अगस्त को सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 1,56,000 रुपए थी, जिसमें इस दौरान लगातार उतार चढ़ाव आता रहा। हालांकि मंगलवार को कीमत 1,49,000 के आसपास रही। बुधवार को सोने ने थोड़ी रफ्तार पकड़ी और करीब 1,200 की बढ़ोतरी के साथ सोना एक बार फिर से 1,50,000 का आंकड़ा पार कर गया। थोड़ा ऊपर या नीचे, लेकिन सोने की कीमतों में मोटे तौर पर सुस्ती है, और ग्राहकों के साथ दुकानदारों को भी लग रहा है कि अगर स्थिरता बनी रही तो खरीदारी ज्यादा होगी।
4: अपन कैसा होता है ना, एक साथ में अगर कीमतें गिरती है तो एक बार कस्टमर वेट एंड वॉच में आ जाता है कि और कितनी गिरेगी, और कुछ ज्यादा मंदी तो नहीं है। पर एक बार स्टेबल होके जब वो थोड़ा सा ऊपर जाने लगता है ना, तब कस्टमर मन बनाता है, नहीं चलो अब ठीक है, अब मैं इसकी खरीदारी करता हूँ।
3: मतलब सही समय का इंतजार,
4: सही समय का इंतजार कर।
0: बात सिर्फ सोने की नहीं है, दिवाली को देखते हुए चांदी की कीमतों में भी कमी आई है, और स्थिरता ग्राहकों के लिए गुड न्यूज है। पिछले दिनों जब चांदी आसमान पर पहुंच गई थी, उसके बाद उसकी कीमतों में करेक्शन आया, और दुकानदार भी मान रहे हैं कि ग्राहकों के नजरिए से ये खरीदारी का बिल्कुल सही मौका है।
4: चांदी 2,300 रुपया 230 रुपया चल रहा है सर।
3: तो मार्केट के लिए ठीक है अभी फिलहाल?
4: मार्केट देखो, अगर हम लोग पहले का पॉजिटिव देख ले, 180-185 का जो भाव गया, उस हिसाब से ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव, अच्छा पॉजिटिव है।
3: अच्छा, तो मिला जुला करके जो फेस्टिवल आ रहा है, फिर नवरात्रि हो, दीपावली हो, या शादी की बात हो, मतलब कस्टमर्स के लिए खुशी की बात है। तो क्या लोग आ रहे हैं आपके पास अभी? आपने बताया कि अभी लोग तो होल्ड पे हैं, लेकिन अभी की सिचुएशन क्या कह रही है?
4: अभी कैसा है ना, अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है सर, तो किसको कोई नई खरीदारी करनी है तो एक शुभ मुहूर्त का वो लोग इंतजार करते हैं। पर इंक्वायरी बहुत अच्छी है सर, वो लोग आ रहे हैं, हमसे पैटर्न डिजाइन देख रहे हैं, और उन्होंने बोला भाई ये आप साइड में रखिए, हम आपको जरूर कंफर्म करेंगे।
0: मतलब ये कि गहनों की दुकानों में अगर इस वक्त भीड़ कुछ कम है तो इसकी वजह पितृपक्ष है, जिसमें आमतौर पर नई खरीदारी नहीं होती, लेकिन 10 अक्टूबर के बाद ये तस्वीर निश्चित तौर पर बदलेगी, खासकर तब जब अनुमान के उलट सोने की कीमत न सिर्फ कंट्रोल में हो और इन दिनों उसे खरीदना सस्ता हो। जानकारों का भी यही मानना है।
5: प्राइस इस यही बम्प एंड डंप में रहेगा। अभी कोई भी ऐसे बड़े इन्वेस्टर नहीं है बाजार में कि गोल्ड में बहुत ज्यादा चंक डाल देंगे, और कोई ऐसे नहीं है जो कि कहेंगे चलो चलते हैं गोल्ड का प्राइस नीचे। गोल्ड विल रिमेन गोल्ड, लेकिन गोल्ड का प्राइस को बहुत सस्ता देख रहे हैं वो भी नहीं होगा, ऊपर देख रहे हैं। हमारे अकॉर्डिंग इलेक्शन से इस पे गोल्ड पे फर्क नहीं पड़ेगा, जो प्राइस ऊपर नीचे चल रहा है एक वो हर्ट बीट की तरह चलता रहेगा।
0: माना जाता है कि अपने शौक या जरूरत और बजट के हिसाब से अपने देश में गहनों की खरीदारी जारी रहती है, और अगर कीमतें अच्छी खासी कम हो तो शोरूम में चहल पहल लाजमी है। ये तस्वीर दिल्ली की है। देखिए इस शोरूम में कंगन, झुमके या फिर हार खरीदने की कैसी होड़ मची है। दिवाली है इसीलिए चांदी के गहनों और मूर्तियों की भी मांग है, यानी कीमतों में जो करेक्शन आया है उसका लोग ज्यादा फायदा उठाना चाहते हैं।
6: कलेक्शन मान सकते हैं इसको, लगभग 5-6 हजार रुपए रेट कम हुआ है। हम इसको खरीदना है और इज द बेस्ट टाइम टू बाय। ऐसा नहीं है कि आगे फ्यूचर में रेट कम होंगे, मैं नहीं मानता। बाकी हो भी सकते हैं, पर मेरे ख्याल में ऐसा कुछ नहीं है कि रेट कम होंगे, क्योंकि जब डिमांड निकलेगी तो रेट बढ़ना ही चाहिए।
0: त्योहार हो या शादी ब्याह, सोने के गहने खरीदने की परंपरा हमेशा रही है। इसका सोने के भाव से ज्यादा लेना देना नहीं होता। हाँ, लेकिन लोगों के मन में एक बात जरूर रहती है कि अभी खरीदे या थोड़ा इंतजार कर ले। जानकारों से पूछिए तो वो बताते हैं कि निवेशक के उलट आम ग्राहक को इतना सोचने की जरूरत नहीं होती। सोना खरीदना कभी भी फायदे का सौदा ही माना जाता है।
7: आम निवेशक का कभी किसी भी भाव में नुकसान नहीं होता। आप चाहे 26,000 रुपए से लेकर के और 1,90,000 रुपए तक के मेरे सारे स्टेटमेंट को उठाकर देखेंगे, मैंने हमेशा आम निवेशक को यही राय दी है कि आप जब जेब में पैसा हो खरीदिए, आपका कभी नुकसान नहीं। मैं आज भी बोलता हूँ, आज के भाव में भी उसका नुकसान नहीं होगा। 1,90,000 रुपए खरीदेगा तो भी उसका नुकसान नहीं होगा।
0: फिलहाल ग्राहकों की नजर सोने की सुस्ती पर है, साथ ही मौका भी है और दस्तूर भी। इसीलिए नवरात्र, दिवाली और उसके बाद शादियों का मौसम देखते हुए चेहरों पर मुस्कान के साथ गहनों की दुकान पर रौनक बढ़ने वाली है। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे और दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: सोने की कीमतों में सबसे ज्यादा तेजी पिछले 2 साल में देखी गई है। युद्ध, तनाव, वैश्विक महंगाई और केंद्रीय बैंकों द्वारा सोने की भारी खरीदारी की वजह से सोने ने ऐतिहासिक रफ्तार पकड़ी, और जहां 2024 में रेट करीब 77,000 रुपए था, वो 2026 में 1.5 लाख प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया। यहां तक कयास लगाए गए कि इस साल के आखिर तक आंकड़ा 2 लाख पार कर जाएगा, लेकिन इसके उलट लगता है कि सोने की रफ्तार पर लगाम लगी है। जानकार मान रहे हैं कि फिलहाल सोना संभला हुआ है और दिवाली तक कीमतें कंट्रोल में रहने की उम्मीद है। इसका असर यह है कि जयपुर जैसे शहरों में शादी विवाह के लिए जमकर बुकिंग शुरू हो चुकी है। रिपोर्ट देखिए।
9: कहते हैं हर चमकती चीज सोना नहीं होती, मगर ये भी सच है कि सिर्फ सोना ही है जिसकी चमक कभी गुम नहीं होती। चाहे वो चमक इसके रंग रूप की हो या बाजार में इसकी कीमत की, ना तो सोना कभी पुराना पड़ता है और ना ही इसे खरीदना कभी घाटे का सौदा होता है। और जब बाजार में सोना प्रति 10 ग्राम 8 से 10 हजार सस्ता मिल रहा हो तो लाजमी है कि इसे खरीदने का जोश होगा। जयपुर के शोरूम की तस्वीरें देख लीजिए, जहाँ गहने परिवार के लिए भी खरीदे जा रहे हैं और निवेश के लिए भी।
10: शॉपिंग करने में देख रही थी, आप चेंज ले रही हैं, तो कुछ ओकेजन है या फिर अभी रेट्स में चेंजेस आए?
11: अभी रेट्स में चेंजेस आए तो इन्वेस्टमेंट के लिए हम ले रहे थे।
10: तो कितना फायदा आपको हो रहा है?
11: हाँ, अभी तो काफी लास्ट ईयर से तो बहुत नीचे कम हो गया रेट्स, तो इसलिए ऑफ है तभी।
10: मतलब आपको ऑफर्स भी यहाँ पे अवेलेबल?
11: तभी आए।
10: तो क्या क्या लिया जा रहा है, कितने ग्राम का आपका बजट?
11: अभी तो चैन देखिए 10 ग्राम की, अब देखो और देख रहे हैं रिंग वगैरह। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ कोई एक ओकेजन के लिए नहीं पर साथ ही में इन्वेस्टमेंट पर्पस से भी लोगों ने यहाँ पे खरीदारी करना शुरू कर दिया, क्योंकि अभी गिरावट आई है। पता नहीं है किस तरीके से मार्केट में फ्लक्चुएशंस आगे देखने को मिलेगी, तो उसी हिसाब से अभी इन्वेस्टमेंट हो रहा है और अभी ही खरीदारी हो रही है। फेस्टिवल के हिसाब से भी लोग खरीद रहे हैं, सोना और चांदी दोनों के कस्टमर्स इस समय पे मार्केट में नजर आ रहे हैं।
9: महीने भर पहले की बात है जब अमेरिका में ब्याज दरों की कीमत बढ़ने की खबरों के बीच सोना कुछ इस कदर घोड़े पर सवार हुआ कि आम लोगों के माथे पर पसीना आ गया। कयास लगाए जाने लगे कि कहीं सोना 2 लाख के पार न चला जाए, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि करीब 1,60,000 की कीमत से सोने के भाव फिसले और अब मोटे तौर पर भाव 1.5 लाख के आसपास आ चुका है। ये राहत बड़ी है और इसीलिए दुकानों में अच्छी खासी भीड़ है।
12: फेस्टिव सीजन स्टार्ट होने वाला है और उस पे गोल्ड के रेटों में करीब करीब 10,000 रुपए की गिरावट जो सितंबर महीने में आई है उसमें मार्केट में एक सकारात्मक और निर्णय लोग ले रहे हैं, क्योंकि 10,000 रुपए की गिरावट मामूली गिरावट नहीं है। और अभी लोग श्राद्ध में भी माल आकर के, पिछले 3-4 साल से ट्रेंड हुआ, पहले लोग श्राद्ध में माल खरीदते नहीं थे, लेकिन अभी 4-5 सालों में ट्रेंड ये चेंज हो गया है कि लोग श्राद्ध में आते हैं, माल खरीदते हैं, एडवांस दे देते हैं और उसको ब्लॉक कर देते हैं, और डिलीवरी जो लेते हैं वो नवरात्रा के अंदर लेते हैं। उसका बेनिफिट ये रहता है कि एक तो श्राद्ध के जो टाइम है उसमें उनको सिलेक्शन के लिए वेरायटी पूरी वाइड मिल जाती है, और दूसरा उनके पास में सिलेक्शन के लिए टाइम मिल जाता है। तो और दूसरा इसका रीजन अभी गोल्ड की रेटें कम होने से और नई जो इन्वेंट्री अभी आई है लाइट वेट ज्वेलरी की, जो सभी ज्वेलर्स ने ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट पे लाइट वेट ज्वेलरी लेकर के आ रहे हैं, उससे मार्केट के ऊपर सकारात्मक और फर्क पड़ रहा है। लोग लाइट वेट ज्वेलरी को पसंद भी कर रहा है, क्योंकि जो चीज पहले 100 ग्राम की आती थी वही लुक वही फीलिंग जो है वो आज के दिन 60 से 65 ग्राम सोने की और चीज में दिखने को मिल गई है। तो लोगों को फीलिंग भी वही आ रही है, कम वैल्यू लग रही है। हालांकि गोल्ड के रेट तो बढ़े हुए, लेकिन गोल्ड रेट बढ़ने का मतलब एक बेनिफिट भी उनको लगता है कि उनका इन्वेस्टमेंट है वो आज भी खराब नहीं हो रहा है।
9: एक तो कीमतों में भी राहत है और दूसरा ज्वेलरी बनाने में भी सोने की किफायत हो रही है। यानी तीज त्योहार या शादी विवाह के मद्देनजर कस्टमरी बाइंग को देखते हुए दुकानदार अब ग्राहकों को सस्ता विकल्प भी दे रहे हैं।
12: आजकल जो बहुत ज्यादा लाइट है, ये नॉर्मली अपन ज्वेलरी देखेंगे इस टाइप की तो करीब 150 ग्राम के करीब का पूरा ये सेट बनता है, लेकिन अभी जो ये सेट जो आप इसको देख रहे हैं इसका मात्र दोनों सेट का मिला करके
8: पर गुड न्यूज आपको दे दें। देखिए गुवाहाटी दूसरे वनडे में भारत की ऐतिहासिक जीत, भारत ने 8 विकेट से वेस्टइंडीज को हरा दिया। वेस्टइंडीज ने 406 रनों का विशाल टारगेट दिया था, भारत ने 44वें ओवर में ही जीत दर्ज कर दी। वनडे में भारत ने दूसरा सबसे बड़ा यह रन चेस किया है। 3 मैचों की श्रृंखला की अगर बात की जाए तो भारत अब 2-0 से आगे बढ़ चुका है, अजेय है भारत। शुभमन गिल की अगर बात की जाए तो देखिए शुभमन गिल ने वनडे का सबसे तेज दोहरा शतक जड़ दिया है, 117 गेंदों में मात्र उन्होंने ये दोहरा शतक जड़ दिया। शुभमन गिल ने सबसे तेज ये दोहरा शतक का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। शुभमन ने 223 रन के नाबाद शानदार पारी खेली। और रोहित शर्मा की अगर बात करी जाए तो उन्होंने 20 सेंचुरी ठोकी है 72 गेंद में, उन्होंने अपने वनडे का 35वां शतक जड़ दिया। रोहित शर्मा ने 75 गेंद में शानदार 101 रन बनाए हैं और आपको बता दें कि उनके अब टोटल 12,000 रन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर वनडे के लिहाज से देखा जाए कुलदीप, रविंद्र और गुरनूर ने 2-2 विकेट झटके। गेंदबाजों की बात की जाए तो प्रसिद्ध कृष्णा को भी एक सफलता मिली, लेकिन आज के मैच के हीरो रहे हैं कैप्टन शुभमन गिल, जिन्होंने शानदार तरीके से दोहरा शतक जमाया और मात्र 117 गेंदों में यह करिश्मा करके दिखाई है। वनडे के लिहाज से देखा जाए तो सबसे तेज सेंचुरी है अभी तक अगर देखा जाए तो, और ऐसे करने वाले ये पहले खिलाड़ी बन गए हैं साथ ही साथ। तो शानदार खबर आपको बता रहे हैं, इंडिया ने सेकेंड ओडीआई जो वेस्टइंडीज के खिलाफ चल रहा है वो जीत लिया है और सबसे दमदार पारी अगर किसी की देखने को मिली है तो वो कैप्टन की है शुभमन गिल की। राहुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, आपसे समझने की कोशिश करूंगा कैसे देखा जाएगा आज का ये मैच, क्योंकि जब दोहरा शतक उन्होंने जमा दिया था उसके बाद भी जो लय थी वो थोड़ी धीमी हुई, लेकिन जिता पा रही थी। वो चाह रहे थे कि मैच खत्म करके ही स्टेडियम से निकले।
13: कंडीशन के लिहाज से अगर आप देखें, बहुत लोग आपको कहेंगे कि यार विकेट बहुत ही सीधा था, बहुत ही पाटा था, पोस भी गिरी हुई थी, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन जब आप सामने 400 रन देखते हो ना, अक्सर आप ये कहोगे यार 400 रन चेज होते नहीं है। उस हिसाब से शुभमन गिल ने जो बैटिंग करी और आखिरी तक करी, ये वहां पर ह्यूमिडिटी बहुत है, गर्मी बहुत है। अगर आप देखें अक्सर दो तीन बार ऐसा हुआ कि शुभमन को क्रैम्प्स भी आए, फिजियो भी ग्राउंड पर आए, पर 223 रन हर रोज लगते नहीं है। और शुभमन गिल उनका अगर आप ओडीआई करियर देखें, बहुत ज्यादा लंबा है नहीं, ठीक है उन्होंने 2019 में डेब्यू किया था, लेकिन अब अक्सर अब इतने ओडीआई मैचेस खेले नहीं जाते। उसमें शुभमन गिल खुद 200 बना चुके हैं दो बार। तो वो सब चीजें आप अगर देखें, और इंडिया का टॉप ऑर्डर रोहित शर्मा, शुभमन गिल और उसके बाद विराट कोहली, अगर 2027 वर्ल्ड कप में आप ये टॉप ऑर्डर लेकर जाते हैं, ज्यादातर आपके जो ऑपोजिशन टीम्स होंगी उनको ये पता होगा इन तीन खिलाड़ियों के पास तजुर्बे के साथ साथ रन बनाने का तरीका भी है। 223 रन जो शुभमन ने बनाए आज, आपके पास सामने रोहित शर्मा भी थे जिनको आदत है, 300 रोहित शर्मा के खुद के हैं। तो शुभमन गिल कप्तानी पारी,
8: कितना मुश्किल हो जाता है अगर हम देखें लिहाज से कि हम रन चेस कर रहे हैं, क्योंकि अगर बाकी हम बात करें ईशान किशन की 126 गेंदों में या फिर ग्लेन मैक्सवेल की, आज का मैच कितना चैलेंजिंग रहा होगा, क्योंकि पहले 400 रन बनाए गए और जैसा कि आप जानते हैं उसमें भी फील्डिंग होती है, और उसके बाद ये 200 रनों का करिश्मा करना और इतनी स्पीड में इतने बड़े स्ट्राइक रेट के साथ, कितना मुश्किल होता है राहुल?
13: बहुत मुश्किल बहुत है, और अक्सर जो 400 रन के चेजेस, अगर आप जो बात भी कर रहे हैं, आपने ग्लेन मैक्सवेल की 400 की बात करी, वो भी चेज में, तो 400 रन जब आप चेज कर रहे होते हैं, और आपको याद होगा 434 जब साउथ अफ्रीका ने 2006 में जोबर्ग में चेज करे थे, वो मैचेस आखिर तक जाते हैं। बट अगर आप देखिए डोमिनेशन की, अगर आप सिर्फ डोमिनेशन की बात कीजिए, शुभमन गिल ने कहीं ना कहीं मैच 25 ओवर में आपको पता लग गया था कि मैच किस तरफ जा रहा है। 400 रन अक्सर ये होता है कि यार 200 रन आपने बना दिए, उसके बाद भी आपको 200 रन और बनाने।
8: बिल्कुल राहुल, आज तो यही लग रहा था कि आज 434 होते तो वो भी शायद बोर्ड पर लग जाते। बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो बड़ी खबर आपको एक बार फिर से बता दें, इंडिया ने मैच जीत लिया सेकेंड ओडीआई और शुभमन गिल ने दोहरा शतक जमाया।
14: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
15: और दुर्भाग्य कहता है
16: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
17: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
18: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
14: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
19: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
17: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
15: और दुर्भाग्य कहता है
16: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
17: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
19: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
18: किस तरह के आहार का आपके विचार पर प्रभाव पड़ता है? सात्विक आहार ग्रहण करने के लाभ क्या हैं? और अपने मन को बदलने के लिए आहार में किस तरह का बदलाव किया जाए, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
17: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
15: और दुर्भाग्य कहता है
16: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
17: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
19: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
14: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
19: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
17: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
15: और दुर्भाग्य कहता है
16: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
17: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
19: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
14: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
19: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: गुवाहाटी वनडे में भारत की शानदार जीत, वेस्ट इंडीज को 8 विकेटों से हराया। सीरीज में 2-0 की बढ़त, 44वें ओवर में चेस किया 406 रन का लक्ष्य। कप्तान शुभमन गिल ने रचा इतिहास, 117 गेंद में जड़ा दोहरा शतक, सबसे तेज शतक बनाने वाले का विश्व रिकॉर्ड। एशियन गेम्स में भारत की चमक बरकरार, 87 किलोग्राम ग्रीको रोमन रेसलिंग इवेंट में सुनील कुमार ने जीता ब्रॉन्ज। आज तीरंदाजी में 3 और शूटिंग में आया 1 गोल्ड, भारत के खाते में कुल 10 गोल्ड। कोलकाता में नवरात्र की तैयारियां जोर शोर से जारी, बर्दवान में मां दुर्गा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे कारीगर। पिछले 5 वर्षों में इस साल सितंबर महीने में सबसे ज्यादा साफ रही दिल्ली की हवा, औसत AQI 102। छत्तीसगढ़ के बस्तर में सरेंडर करने वाले 8 पूर्व नक्सलियों ने फर्स्ट डिवीजन से पास की 10वीं कक्षा की परीक्षा, आगे भी पढ़ाई जारी रखने का इरादा। नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। बड़ी खबर आपको एक बार फिर से दे दें, गुवाहाटी दूसरे वनडे में भारत की ऐतिहासिक जीत दर्ज हुई है। देखिए, भारत ने 8 विकेट से वेस्ट इंडीज को हरा दिया, रन बड़ा था, रन चेस बड़ा था, 406 रन का विशाल टारगेट था। भारत ने 44वें ओवर में ही ये शानदार जीत अपने नाम कर ली, भारत ने दूसरा सबसे बड़ा रन चेस भी कर लिया है। और देखिए, 3 मैचों की वनडे सीरीज में भारत को 2-0 की अजेय बढ़त, शुभमन गिल ने, आपको बड़ी खबर ये बताएं जो आज की हेडलाइंस रहेंगी, शुभमन गिल ने वनडे का दूसरा दोहरा शतक जमाया और सबसे तेज शतक है ये, 117 गेंदों में उन्होंने डबल सेंचुरी लगा दी। शुभमन गिल ने सबसे तेज दोहरे शतक का बना दिया है रिकॉर्ड और शुभमन ने 223 रन की शानदार नाबाद पारी खेली, जिताऊ पारी खेली। और रोहित शर्मा ने 72 गेंद में शतक जड़ दिया, उनका भी यह 35वां शतक रहा। आपको बता दें, रोहित शर्मा ने मात्र 75 गेंदों में 101 रन जड़े, शतक के साथ रोहित ने वनडे 12,000 रन अब पूरे कर लिए हैं। और अगर हम बात करें कुलदीप, रविंद्र और गुरनूर ने 2-2 विकेट झटके और प्रसिद्ध कृष्णा को भी 1 सफलता प्राप्त हुई। लेकिन आज का दिन बल्लेबाजों का था और बल्लेबाजी के लिहाज से देखा जाए तो एक विशाल टारगेट था, लेकिन पहले कैसे जश्न मनाया जा रहा है, पूरे देश में ये भी तस्वीरें आपको साथ साथ दिखा रहे हैं, क्योंकि ये रनजेस कोई आम नहीं था, ये बार बार आपको देखने को नहीं मिलता इतना बड़ा रनजेस, ये वर्षों में एक बार देखने को मिलता है। सेकेंड ODI वेस्ट इंडीज के खिलाफ टीम इंडिया उतरी और इरादे जो हैं शुरुआत के 5 ओवर में ही उसने जाहिर कर दिए थे और ये सिलसिला लगातार आगे बढ़ा और फाइनली मात्र 4 ओवर रहते हुए, आप कल्पना कीजिए 406 रनों का विशाल लक्ष्य, लेकिन 4 ओवर रहते हुए 8 विकेट से ये मैच हरा दिया गया। बहुत बड़ी जीत है ये, सबसे बड़ी जीत दूसरी अगर रनचेज के लिहाज से हम देखें। और अगर दोहरे शतक की बात की जाए शुभमन गिल की तो वो सुर्खियां बटोर रहा है, क्योंकि मात्र 117 गेंदों में शुभमन गिल ने ये शानदार गुवाहाटी का 2026 में ये दर्ज हो चुका है। और आपको बता देंगे करियर का दूसरा ये दोहरा शतक उन्होंने जमाया। और ये भी आपको बता दें, ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है, क्योंकि रोहित शर्मा के अलावा ये भारत के दूसरे बल्लेबाज अब बन गए जिनके दोहरे शतक भी अब 2 हो गए हैं। क्योंकि देखिए, इससे पहले बात होती थी ईशान किशन की, ग्लेन मैक्सवेल की, लेकिन अब ये रिकॉर्ड दर्ज हो चुका है शुभमन गिल के नाम, मात्र 117 गेंद में डबल 100 लगाने के। देखिए कितना जबरदस्त प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है पूरे देश से और कितना जबरदस्त जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। दूसरा वनडे है, शानदार जीत दर्ज की गई, जिसने भी आज टेलीविजन में इस मैच को देखा बस वो देखता ही रह गया, क्योंकि शुभमन गिल ने जो प्रदर्शन दिखाया है वो जबरदस्त है, अद्भुत है, उसको हमेशा याद रखा जाएगा। गुवाहाटी का ये दिन हमेशा ये शुभमन गिल के नाम पर हमेशा के लिए दर्ज हो गया है। दूसरा वनडे तीन मैचों की श्रृंखला इस वक्त चल रही है। आपको बता दें पहला मैच भी हिंदुस्तान अपने नाम कर चुका है। दूसरे मैच की अगर बात करें तो दूसरा मैच भी एक विशाल टारगेट रन चेस के लिए भारतीय टीम उतरी, लेकिन इतना जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया गया कि ऐसा लगा ही नहीं कि इतना बड़ा रन चेस हो रहा है। क्योंकि देखिए विकेट हमारे गिरे नहीं, रोहित शर्मा ने भी शतक जड़ दिया और शुभमन गिल का कहना ही क्या, दोहरे शतक के साथ ये रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम कर लिया है और इसी के साथ ये सेकंड मैच भी भारतीय टीम जीत गई है 406 रनों का शानदार।
3: बहुत अच्छा लगा, पर विराट कोहली जल्दी आउट हो गया उसके लिए थोड़ा बुरा लग गया सबको बस। और
4: बहुत अच्छा बोले
5: रोहित शर्मा का सेंचुरी।
4: हाँ बहुत अच्छा, ये लोग तो अभी सीनियर है वो, उससे हम एक मतलब हम लोग को विश्वास है वो करेगा, अच्छा लगा देख के।
5: लेकिन शुभमन गिल का फास्टेस्ट डबल सेंचुरी।
4: यस एक्चुअली आप देखेंगे तो वेस्ट इंडीज का 400 रन ही आज के लिए ज्यादा है, हम देखेंगे तो गुवाहाटी का मार्ग थोड़ा छोटा है उस हिसाब से भी देखेंगे अच्छा किया इंडिया ने। और डबल सेंचुरी इसके लिए शुभमन गिल को बहुत बहुत शुभकामनाएं, अच्छा किया वो अभी फॉर्म में है, अच्छा खेला, अच्छा लगा देख के, थैंक यू।
2: दिखा रहे हैं किस प्रकार से प्रतिक्रिया निकल कर आ रही है पूरे देश में से और जबरदस्त तरीके से अगर देखा जाए तो ये भी अपने आप में देखने वाली बात है कि ओडीआई के लिहाज से अगर आप देखें तो फास्टेस्ट 200 है ये। और बाकी अगर हम स्ट्राइक रेट से लिहाज से एक बार आपको बता दें तो रोहित शर्मा ने 134 के स्ट्राइक रेट से 75 गेंदों में 101 रन बनाए और जबकि और ये भी आपको बता दें कि देखिए पूरी लिस्ट जैसा कि हमने भी बताई, जैसा कि जिक्र किया था अभी थोड़ी देर पहले कि फास्टेस्ट 200 की अगर हम बात करें तो पहले ईशान किशन के नाम पे था और अब ये एक और इंडियन के नाम यानी शुभमन गिल के नाम हो गया है 167 के स्ट्राइक रेट के साथ।
3: कि अगर विराट कोहली का ये लास्ट मैच होगा तो बहुत बैड इनिंग्स का है उनका लिए, बट दैट्स ओके, सबका होता है, नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छे से खेलेंगे वो।
5: रोहित शर्मा ने भी
3: रोहित सर बहुत अच्छा खेला आज, उनको एक्चुअली मेरा ये लाइव मतलब देखने का बहुत मतलब बकेट लिस्ट में था, मैं बहुत एक्साइटेड थी। अच्छा से गया इनिंग, अच्छे से मैच एंजॉय हुआ, सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ, अभी मतलब बहुत सारा हैप्पीनेस लेके मैं अभी डिब्रूगढ़ जाऊंगी, थैंक यू।
2: तो देखिए प्रतिक्रिया आपको लगातार दिखा रहे हैं किस प्रकार से जोश देखने को मिल रहा है क्योंकि जश्न अब लगता है कि रात भर देखने को मिलेगा। और आपको बता दें वनडे की तीसरी सबसे बड़ी पारी है शुभमन गिल की, 223 रन जो उन्होंने बनाए हैं, नाबाद रहे हैं, मैच जिताकर ही वो वापस पवेलियन पर लौटे हैं, मतलब नाबाद वो रहे हैं। और अगर हम बाकी दोहरे शतकों की बात करें जैसा कि हमने जिक्र किया 126 गेंदों में ईशान किशन ने, 128 गेंदों में ग्लेन मैक्सवेल ने, 136 गेंदों में पाथुम ने, 138 गेंद में क्रिस गेल ने, लेकिन अब सबसे तेज फास्टेस्ट 117 गेंद में शुभमन गिल ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ गुवाहाटी में शानदार रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर लिया। और शुरुआत से ही ऐसा देखने को मिल रहा था, बिल्कुल भी डगमगाए नहीं।
6: बहुत मजा आया, मतलब पैसा वसूल खेल, अच्छा लगा बीसीसीआई मतलब
5: रोहित शर्मा
6: आसान नहीं था लेकिन वो किया है इंडिया ने तो बहुत अच्छा लगा हो गया।
2: तो आपको बता दें कि गिल की ओपनिंग जोड़ीदार रोहित के नाम ये तीन दोहरे शतक लगाने का अब तक रिकॉर्ड है, लेकिन शुभमन गिल भी इस लिस्ट में शामिल हो चुके हैं।
7: बहुत अच्छा लगा, लाइफ का फर्स्ट टाइम खेलते हैं, इतना अच्छा मतलब दिल खुश हो गया, बहुत गिल ने बहुत अच्छा खेला। और एक्चुअली मैं रोहित शर्मा का फैन हूँ, रोहित ने भी 100 मारा।
8: तड़ी को विराट कोहली फिर से नया सेंचुरी मारेगा, फिर से एक सेंचुरी मारेगा विराट कोहली।
9: रोहित और कोहली का जो कॉम्बिनेशन है मतलब वो थोड़ा देखने का मन था लेकिन कोई नहीं, दोनों ने बहुत अच्छे ही खेला है,
10: बहुत अच्छा लग रहा है। लाइक उन लोग एक्सपेक्ट किए थे उन लोग मारेंगे तो ऑब्वियसली 400 का टारगेट दिया था, 400 चेस करना तो बहुत रेयर होता है।
11: आज हम गुवाहाटी का होके प्राउड फील कर रहे हैं, शुभमन गिल ने हम लोगों की गुवाहाटी का नाम रोशन कर दिया पूरे दुनिया में, हम लोगों का उन्होंने 200 रन बना के हम लोगों का गुवाहाटी का नाम रोशन किया है।
12: तो शिलोंग से आए हम, असम से ही है लेकिन शिलोंग से ये मैच देखने के लिए आए हैं, तो आज शुभमन गिल ने जो खेला पूरा वर्ल्ड उसको मतलब तारीफ पे तारीफ जो होता है ना वो करेंगे आज।
3: बहुत ज्यादा बहुत अच्छा लगा, सबसे ज्यादा अच्छा तो रोहित शर्मा का सेंचुरी लाइव देखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा लकी फील हो रहा है खुद को, और शुभमन का तो बहुत ब्रिलियंट परफॉर्मेंस था।
2: तो शानदार मैच रहा आज का सेकेंड ODI में। आज 406 रन का विशाल टारगेट हमने रन चेस कर लिया और आपको बता दें कि शुभमन गिल ने 200 रन बनाए, फास्टेस्ट ODI की हम बात करें अगर उस लिहाज से देखा जाए तो। और आइए अब देखते हैं खबरें फटाफट GNT एक्सप्रेस।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: गुवाहाटी में खेले गए वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे में टीम इंडिया का रिकॉर्ड 602 विकेट खोकर 406 रन का टारगेट आसानी से पीछा किया, 44वें ओवर में मैच जीता। कप्तान शुभमन गिल ने जड़ा दोहरा शतक, 117 गेंदों पर लगा सबसे तेज दोहरा शतक, शुभमन ने लगाया करियर का दूसरा दोहरा शतक। गिल ने बनाया 223 नाबाद रन, गिल की पारी में 26 चौके और 8 छक्के। शुभमन गिल ने लगाई रिकॉर्ड्स की जड़ियां, सीरीज में जड़ी बैक टू बैक सेंचुरी। ओपनिंग विकेट के लिए कप्तान शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने बनाया 255 रन, दोनों बल्लेबाजों ने जड़े शतक। रोहित शर्मा ने भी खेली शतकीय पारी, 75 गेंदों में बनाए शानदार 101 रन। विराट कोहली ने खेली 19 गेंदों पर 29 रन की तेज पारी, विराट ने अपनी पारी में जड़े 3 चौके 1 छक्का। इससे पहले वेस्ट इंडीज ने बल्लेबाजी करते हुए बनाए थे 405 रन, वेस्ट इंडीज के 3 बल्लेबाजों ने लगाए शतक। वेस्ट इंडीज के लिए कैंपबेल, शाय होप और अमीर यूंग ने लगाया शतक। टीम इंडिया की तरफ से कुलदीप जडेजा और गुरनूर को मिले 2-2 विकेट्स। एशियन गेम्स में भारत का गोल्डन दिन, तीरंदाजी और शूटिंग मिक्स टैप टीम ने जीता 4 गोल्ड। एशियन गेम्स में भारतीय महिला तीरंदाजी टीम ने चीन की टीम को हराया, भारत को दिलाया गोल्ड। चिकिता प्रतीक्ता और ज्योति की तिकड़ी ने किया कमाल, 238 अंक के स्कोर के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी। एशियन गेम्स में भारतीय कंपाउंड मिक्स्ड आर्चर तनी पार्थ और राजेश जाधव की जोड़ी ने कोरियाई तीरंदाजी में हराकर गोल्ड जीता। एशियाई खेलों में भारत का लगातार प्रदर्शन शानदार, शूटिंग मिक्स्ड ट्रैप टीम ने जीता गोल्ड। नीरू ढांडा और कायन चेनाई की भारतीय जोड़ी ने किया कमाल, 7वें स्थान पर पहुंचा भारत। भारतीय पुरुष कंपाउंड तीरंदाजी की टीम साहिल कुशल और गणेश की जोड़ी ने जीता गोल्ड। एशियन गेम्स में महिला 60 किलोग्राम वर्ग कैटेगरी में प्रिया खांगस ने किया कमाल, जीता ब्रॉन्ज। एशियाई खेलों में भारत के कपिल पोखरिया ने भी किया कमाल, 90 किलोग्राम वर्ग में जीता ब्रॉन्ज। एशियन गेम्स में भारत ने अब तक कुल 10 गोल्ड, 21 सिल्वर और 29 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिए, कुल संख्या 7। एशियन गेम्स में ग्रीको रोमन कुश्ती में भारत को ब्रॉन्ज। सुनील ने फिलीपींस के कैलम रिपोर्ट्स रॉबर्ट्स को 9-0 से हराया। एशियाई खेलों में 2 ग्रीको रोमन मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए सुनील। एशियन गेम्स में भारतीय महिला हॉकी टीम ने 1 पदक किया पक्का, दक्षिण कोरिया को 2-0 से हराकर फाइनल में प्रवेश। भारतीय महिला हॉकी टीम की अब गोल्ड पर नजर, फाइनल जीतने पर 44 साल का सूखा होगा खत्म। कोलकाता में शक्ति उपासना की तैयारियां तेज, मां दुर्गा की प्रतिमा को अंतिम रूप दे रहे हैं कारीगर। कोलकाता का कुमार टोला इलाके में कलाकार दिन रात कर रहे हैं मेहनत, छोटी से लेकर बड़ी प्रतिमाएं बना रहे हैं कारीगर, खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। रामनगरी अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारियां तेज, राम की पैड़ी पर रंग रोगन का काम तेज। राम की पैड़ी में साफ सफाई का काम भी जारी है, इस बार 30 लाख दीयों से जगमगाएगा धर्मनगरी। अयोध्या में एनएसजी की मॉक ड्रिल, कनक भवन पर सुरक्षा अभ्यास किया, आपात स्थिति में रेस्क्यू और त्वरित कार्रवाई की तैयारियों पर था। एनएसजी कमांडोज ने संभावित खतरे की स्थिति से निपटने के लिए तमाम अभ्यास किए। एनएसजी कमांडोज ने कनक भवन के हर हिस्से को परखा, चप्पे चप्पे पर पैनी नजर। कनक भवन की छत पर से बनाई गई सुरक्षा की रणनीति, राम मंदिर और आसपास के इलाकों को बनाया वीडियो। एनएसजी कमांडोज के जवानों ने कनक भवन में रहने वाले लोगों से भी बातचीत की। तीन महीने बाद 1 अक्टूबर से रणथंभौर में फिर पर्यटकों की चहल पहल देखने को मिलेगी। वन विभाग ने सफारी और पर्यटन व्यवस्था की तैयारियां पूरी की। मानसून में खराब हुए पर्यटन जोन के रास्तों की मरम्मत पूरी कर ली गई। रणथंभौर में सभी 280 गाइडों की कार्यकुशलता जांची गई। गणेश धाम में कॉमन बोर्डिंग प्लेस, वेटिंग एरिया और पार्किंग की सुविधा विकसित होगी। नए पर्यटन सत्र में कैंटर से सफारी करने वाले पर्यटकों को सीट नंबर अलॉट किए जाएंगे। दिल्ली के गांधी स्मृति में आज भी उनके आखिरी 144 दिनों की यादें मौजूद। लाठी, चश्मा, कपड़े और बर्तन उनकी सादगी की कहानी। गांधी स्मृति में फोन रिसीवरी के जरिए उनकी आवाज सुनने की है सुविधा। गांधी जी की हत्या से जुड़ी गोलियां और खून से सने कपड़े भी मौजूद। संग्रहालय में गांधी जी के दो दांत भी रखे गए हैं। छोटी सी ये चीज है, उनके निजी जीवन से जुड़ा हुआ खास याद है। गांधी स्मृति में उनकी लाठी से लेकर खादी से कपड़े भी मौजूद। नेपाल में लगातार बारिश से गंडक नदी का बढ़ा जलस्तर। टीम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। बगहा में सांसद पप्पू यादव ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। टिहरी गढ़वाल में अचानक दरकी पहाड़ी, या सड़क पर आया मलबा। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ के बाद मिशन जिंदगी तेज। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ जुटी। बाढ़ प्रभावित इलाकों में जवानों का राहत बचाव काम युद्ध स्तर पर तेज। प्रयागराज में फिर बढ़ने लगा संगम का जलस्तर। निचले इलाकों में अलर्ट। संगम का जलस्तर बढ़ने से कई घाट पानी में डूबे। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। मुरादाबाद में रामगंगा और कोसी नदी का बढ़ा जलस्तर। निचले इलाकों में पानी। साहिबागंज में, महाराजपुर में गंगा कटाव से रेलवे ट्रैक पर बढ़ा खतरा। बांदा में बाढ़ के बीच सड़कों पर बने गड्ढे, कई वाहन फंसे। बांदा में लगातार 3 दिन से बारिश, स्कूल समेत कई इलाके जलमग्न। बाराबंकी में नेपाल में 1 दिन में 5 बार में छोड़ा गया 70.64 लाख क्यूसेक पानी। बाढ़ से कई एकड़ फसल को नुकसान पहुंचा, किसान परेशान। पूर्णा में घाघरा नदी का बढ़ा जलस्तर। 15 गांवों में जल जमाव। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोग ले रहे नाव का सहारा। चौंकिंग में 2026 हॉटपॉट फूड कार्निवल शुरू हुआ। 10 मीटर चौड़े विशाल हॉटपॉट पर तैयार हुए। चौंकिंग में नदी किनारे 270 से ज्यादा हॉटपॉट टेबल लगाई गई। बेजियासी यांगसे रिवर ब्रिज पर 10 मीटर का विशाल हॉटपॉट लगाया गया। फूड कार्निवल में दसियों हजारों लोगों ने शिरकत की। सर्विस कंजप्शन सीजन के तहत खास आयोजन किया गया। नहरों में जगमगाती नावों ने 2026 लैंटन बोटिंग शो की शुरुआत कर दी। जियांगसू के प्राचीन जल शहर में लालटेन से सजी नावें नहरों की गुजरी। रोंगजांग में नावें पानी पर चलती हुई नजर आई। कार्यक्रम में स्थानीय विरासत और पारंपरिक लालटेन कला का शानदार नजारा। जोंगजोंग में अपनी सांस्कृतिक विरासत को नए अंदाज में पेश किया गया। तियान आन मेन स्क्वायर के बीच 18 मीटर ऊंचे फूलों की टोकरी सजाई गई है। टोकरी में 15 तरह के फूल और 5 तरह के फल भी लगाए गए हैं। टोकरी के नीचे 45 मीटर व्यास और फूलों का बनाया गया है ये व्यास। टोकरी के एक तरफ मातृभूमि को आशीर्वाद और दूसरी तरफ राष्ट्रीय दिवस की बधाई। तियान आन मेन के दोनों तरफ 5050 वर्ग मीटर फूलों की सजावट। मैक्सिको नेशनल गार्ड में शामिल हुआ नन्हा कमांडो 7 किलो वजन वाला चिहुआउ सर्च रेस्क्यू टीम। छोटे चश्मे और टेक्टिकल जैकेट में दिखा कमांडो। 13 महीने का कमांडो कभी था एक पालतू डॉग। स्कूल और सिविक इवेंट्स में जवानों के साथ जाता है कमांडो। मैक्सिको नेशनल गार्ड में करीब 350 स्निफर डॉग्स। अमूर लेपर्ड ने 16 सितंबर को एक बच्चे को दिया जन्म, सीसीटीवी में कैद। कैमरे में अमूर लेपर्ड का बच्चा अपनी मां के साथ आराम करता हुआ नजर आया।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
13: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
14: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
15: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
13: अविश्वास में विश्वास बसता है,
14: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
16: गुड न्यूज टुडे।
14: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
16: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
14: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
1: किस तरह के आहार का आपके विचार पर प्रभाव पड़ता है, सात्विक आहार ग्रहण करने के लाभ क्या हैं, और अपने मन को बदलने के लिए आहार में किस तरह का बदलाव किया जाए, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
8: एवरेस्ट दिखा लाल, सही दिखा सही लाल।
9: गुवाहाटी वनडे में भारत की शानदार जीत, वेस्ट इंडीज को 8 विकेटों से हराया, सीरीज में 2-0 की बढ़त, 44वें ओवर में चेस किया 406 रन का लक्ष्य। कप्तान शुभमन गिल ने रचा इतिहास, 117 गेंद में जड़ा दोहरा शतक, सबसे तेज शतक बनाने का बनाया विश्व रिकॉर्ड। एशियन गेम्स में भारत की चमक बरकरार, 87 किलोग्राम ग्रीको रोमन रेसलिंग इवेंट में सुनील कुमार ने जीता ब्रॉन्ज, आज तीरंदाजी में 3 और शूटिंग में आया 1 गोल्ड, भारत के खाते में कुल 10 गोल्ड। पिछले 5 वर्षों में इस साल सितंबर महीने में सबसे ज्यादा साफ रही दिल्ली की हवा, औसत EQI 102 दर्ज किया गया। कोलकाता में नवरात्र की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं, वर्धमान में मां दुर्गा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे कारीगर।

0: स्पर्श करके उसको छू करके घर से निकलिएगा। आप जिस काम के लिए निकलेंगे आपको कार्यों में सफलता अवश्य मिलेगी।
1: और आइए अब जान लेते हैं 1 अक्टूबर 2026 यानी कि बृहस्पतिवार का पंचांग क्या है।
0: दिनांक 1 अक्टूबर 2026 दिन बृहस्पतिवार, तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, दोपहर 12:35 तक। नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र, चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
1: तो आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं आपके जीवन में आप किस तरह का आहार लेते हैं उसके बारे में। तो क्या है हमारे जीवन में आहार की भूमिका, आइए जान लेते हैं पंडित जी से।
0: जी, आज हम बात कर रहे हैं आपके आहार के बारे में और आपके विचार के बारे में। हमारे जीवन में आहार की क्या भूमिका है? देखिए, जीव की मुख्य रूप से 4 आवश्यकताएं हैं, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। इनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आहार। आहार से निर्माण और विकास की प्रक्रिया पूरी होती है। आप भले ही भोजन से, खाद्य पदार्थ से आहार ग्रहण न करें, लेकिन कहीं न कहीं से आपको ऊर्जा लेनी होगी। जैसे संत महात्मा प्रकृति से, सूर्य की किरणों से ऊर्जा लेते हैं। बिना ऊर्जा के जीवन की लंबे समय तक कल्पना नहीं की जा सकती। तो आहार ग्रहण करके, चाहे भोजन से चाहे इनडायरेक्टली, आप अपने शरीर में ऊर्जा पहुंचाते हैं और उस ऊर्जा से आपके शरीर का निर्माण होता है और काम करने की क्षमता आपके अंदर आ जाती है।
1: और अब वक्त हो गया आज के राशिफल के बारे में जानने का, तो आइए जानते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि वालों का क्या कहता है राशिफल।
0: मेष राशि, स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर अच्छा बना रहेगा, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, काम की अधिकता रहेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, मानसिक चिंता समाप्त होगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, परिवार में मंगल कार्य होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो

0: बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, चोट चपेट लग सकती है, महत्वपूर्ण काम आपका रुक सकता है, वाद विवाद से बचाव करें। अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
1: और चलिए अब जान लेते हैं कि किस प्रकार से आहार हमारे ऊपर असर डालता है।
0: अब ये जानते हैं कि किस प्रकार से जो ये आहार है ये हमारे ऊपर असर डालता है। देखिए, शरीर के मानसिक स्तर का, मेंटल लेवल का निर्माण अलग अलग कोशों से होता है। इसमें एक कोश है अन्नमय कोश, जो अन्न से बनता है। इस कोश की शुद्धि के बिना आप अपने मन को शुद्ध नहीं कर सकते। आहार से ही आपकी कोशिकाओं का निर्माण होता है, और फिर उन्हीं कोशिकाओं से हमारे शरीर में हार्मोन्स आते हैं, रस का क्षरण होता है। हार्मोन जो है, रस जो है, ये हमारी सोच और हमारे विकास में परिवर्तन कर देते हैं। जिस तरह का आहार हम ग्रहण करते हैं उसी तरह का व्यवहार और उसी तरह का विचार हमारे अंदर उत्पन्न होता है। पुरानी कहावत है, जैसा होगा आहार वैसे होंगे विचार, जैसे पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। तो आहार से आपके मन पर, आपके विचारों पर और आपकी सोच पर गहरा प्रभाव पड़ता है।
1: और अब वक्त हो गया है कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के राशिफल को जानने का।
0: कर्क राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी, छोटी यात्रा हो सकती है, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, महत्वपूर्ण काम में सफलता मिलेगी, करियर की बाधाएं दूर होंगी, यात्रा के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन प्राप्ति के रास्ते बनेंगे, मनोरंजन में व्यस्त रहेंगे, भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और गुड लक में अब जानेंगे आज के सवालों और उनके जवाब के बारे में। तो चलिए जान लेते हैं आज का पहला सवाल पंडित जी को किसने भेजा है।
0: जी आज का पहला प्रश्न द्रौपदी जी ने हमें बिहार से लिखा है। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 13 नवंबर 1994, शाम को 5:40। जन्म स्थान है बेगूसराय, बिहार। ये पूछ रही हैं कि मेरी पुत्री का विवाह कब होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। द्रौपदी जी, आपके पुत्री के विवाह का समय फिलहाल चल रहा है और ज्योतिष के हिसाब से जुलाई 2027 के पहले इनके विवाह की संभावना बनती है। उस समय इनका विवाह हो जाना चाहिए। जब भी विवाह किया जाए कुंडली मिला करके सोच समझ करके विवाह का निर्णय लिया जाए तो जीवन बेहतर होगा। एक अपनी बेटी को ओपल बनवा करके पहना दें, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को इनको ओपल पहनाइए और इनसे कहिए कि रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं।
1: अगर आपके मन में भी कोई सवाल है और आप चाहते हैं पंडित जी से उसका जवाब, तो आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। इसी के साथ अब वक्त हो गया आज के दूसरे प्रश्न का। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, आज का दूसरा प्रश्न आप किसका ले रहे हैं?
0: जी, अगला प्रश्न हमें आकाश जी ने लिखा है और आकाश जी हमें जोधपुर से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 23 मार्च 1980, जन्म का समय सुबह के 8:05, जन्म का स्थान है जोधपुर। आकाश कह रहे हैं कि काफी समय से मैं और मेरे परिवार वाले मिल करके एक प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं, उसमें बहुत अड़चन आ रही है। तो मेरे परिवार में संपत्ति का लाभ कब होगा? आकाश जी, आपकी कुंडली के हिसाब से जून 2027 से दिसंबर 2027 का जो समय है, उस समय में कोई बना बनाया मकान या बना बनाया फ्लैट आप खरीदेंगे, कोई प्रॉपर्टी लेंगे और प्रॉपर्टी का लाभ उस समय आपको मिलेगा। स्वास्थ्य का मामला आपकी कुंडली में कुल मिलाकर बेहतर है और सेहत के मामले में आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। संपत्ति का लाभ हो सके इसके लिए सुबह शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और हर मंगलवार को गुड़ का या मिठाई का अगर दान करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और चलिए अब जान लेते हैं किन चीजों को हम सात्विक आहार नहीं कह सकते।
0: अब हम ये जानते हैं कि किन चीजों को हम सात्विक आहार नहीं कह सकते। प्याज और लहसुन को तामसिक आहार माना गया है, ये सात्विक आहार नहीं है। सरसों का साग और मशरूम, इसको भी तामसिक आहार मानते हैं, सात्विक आहार नहीं कहेंगे। मांस मछली और मादक पदार्थ भी सात्विक आहार नहीं है। जो खाद्य पदार्थ स्टोर करके बेचे जाते हैं, डब्बा बंद जो खाद्य पदार्थ होते हैं, वो भी सात्विक नहीं है। बासी खाना भी सामान्यतः सात्विक नहीं माना जाता। जो लोग आध्यात्मिक रास्ते पर ध्यान या साधना के मार्ग पर चलते हैं, सामान्यतः बासी भोजन ग्रहण नहीं करते हैं।
1: तो चलिए अब जानते हैं कि किन चीजों को हम सात्विक आहार की श्रेणी में रखते हैं।
0: अब ये जानते हैं कि किन चीजों को हम सात्विक आहार की श्रेणी में रखते हैं। सभी प्रकार की अनाजें और सभी प्रकार की दालें, ये सात्विक हैं। दूध और इनसे निर्मित पदार्थ भी सात्विक हैं। सभी प्रकार की सब्जियां, फल और मेवे, ये सामान्यतः सात्विक माने जाते हैं। सब्जियों में प्याज लहसुन को छोड़ करके ज्यादातर सब्जियां, मैक्सिमम सब्जियां सात्विक मानी जाती हैं।
1: और जानेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के राशिफल के बारे में।
0: तुला राशि, करियर में किसी तरह की लापरवाही मत करिएगा। परिवार में विवादों से बचाव करें। वाहन सावधानी से चलाएं। केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, नए काम में सफलता मिलेगी। रुके हुए काम पूरे होंगे। धन की स्थिति अच्छी रहेगी। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, मानसिक तनाव समाप्त होगा। धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार के स्वभाव के लिए किस तरह का आहार हमें ग्रहण करना चाहिए।
0: अब आपका जो आहार है वो आपके स्वभाव पर, आपके विचार पर, आपकी सोच पर असर डालेगा। तो किस तरह के स्वभाव के लिए किस तरह का आहार ग्रहण करना चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनल हैं, बहुत ज्यादा भावुक हैं, तो गुड़ और मीठी चीजें खाइए, आपको लाभ होगा। रोटी जरूर खाइए और बासी खाना खाने से आपको बचना चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा क्रोधी हैं, बहुत गुस्सा आता है, तो प्याज लहसुन मांस मदिरा से परहेज करिए और कच्चा प्याज लहसुन बिल्कुल मत खाइए। इससे तामसिक स्थिति और आपका क्रोध बढ़ेगा। अगर आपको तनाव पालने की आदत हो, छोटी छोटी बात पर आपको टेंशन हो जाती हो, तो दूध और दूध से बनी चीजें आपको खानी चाहिए। मशरूम और कंद, ये अगर आप ना खाएं तो आपके लिए बेहतर होगा। अगर आप स्वास्थ्य से परेशान हो, शरीर से परेशान हो, कोई ना कोई समस्या लगी रहती हो, तो ज्यादा से ज्यादा सब्जियां खाइए और अनाज कम से कम खाइए। अगर आप बुरे विचारों से परेशान हो, निगेटिव थॉट्स से, अश्लील या बुरे विचारों से पीड़ित हो, तो मांस मछली प्याज लहसुन इसका सेवन ना करें और मसूर की दाल से भी आपको परहेज करना चाहिए। यानी आप अगर अपने आहार में सात्विकता लाएं, थोड़ा सा अपने आहार में अगर आप परिवर्तन करें, तो आपकी समस्याएं भी दूर होंगी, आपके सोच विचार और स्वभाव में सुधार होगा।
1: और अब वक्त हो गया आज के अंतिम राशिफल के बारे में जानने का, तो आइए जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के राशिफल के बारे में।
0: मकर राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, परिवार में व्यस्तता रहेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, काम का बोझ कम करिए, खान पान पर ध्यान बनाए रखें, जीवन साथी के सलाह से आपको लाभ होगा। केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।

0: क्षमता बढ़ी रहेगी, करियर में नए अवसर मिलेंगे, धन की बाधाएं दूर होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: तो चलिए जान लेते हैं आज का तीसरा प्रश्न पंडित जी को कहां से और किसने भेजा है।
0: जी अगला प्रश्न देवेश जी ने हमें लिखा है और देवेश जी हमें लखनऊ से मेल लिखते हैं, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 4 नवंबर 2008, जन्म का समय सुबह के 6:55, जन्म स्थान है लखनऊ। ये कह रहे हैं कि मेरा पुत्र अभी 12वीं की पढ़ाई कर रहा है, आगे उसे किस क्षेत्र में ले जाना बेहतर होगा, किस तरह के करियर में मेरे बेटे को सफलता मिलेगी। देवेश जी मैं कहूंगा कि आप अपने पुत्र को ग्रेजुएशन करवाइए और ग्रेजुएशन करवाने के बाद उनको गवर्नमेंट जॉब में ले जाने का प्रयास करिए, उस क्षेत्र में इनको बेहतर सफलता मिलेगी। अगर ये बैंक, फाइनेंस या अकाउंट्स आदि के क्षेत्र में अपना करियर बनाने की कोशिश करें तो उसमें इनको सफलता ज्यादा मिलेगी। अपने बेटे को एक पन्ना बनवा करके पहना दें, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी के लॉकेट में, काले धागे में, बुधवार की शाम को गले में धारण करवाएं और अपने पुत्र से कहें कि वो रोज सुबह अगर सूर्य भगवान को जल चढ़ाए तो काफी बेहतर होगा।
1: और गुड लक में वक्त हो गया आज के अंतिम प्रश्न का, तो चलिए जान लेते हैं आज का अंतिम और चौथा प्रश्न पंडित जी किसका लेने वाले हैं।
0: जी आज का अंतिम प्रश्न वसुधा जी ने हमें लिखा है, मध्य प्रदेश से लिखती हैं। वसुधा जी की जन्म की तारीख है 24 मार्च 1996, जन्म का समय दोपहर में 1 बजे, जन्म का स्थान है भोपाल मध्य प्रदेश। ये कह रही हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूं शिक्षा क्षेत्र में, क्या मुझे शिक्षा क्षेत्र में गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। वसुधा जी आपकी कुंडली के हिसाब से आप शिक्षा क्षेत्र में अपनी नौकरी के लिए प्रयास करती रहिए। कुंडली आपकी कहती है कि साल 2027 के मध्य में आपको प्रयास करने से गवर्नमेंट जॉब की प्राप्ति होनी चाहिए। प्रयास बढ़ाइए, मेहनत बढ़ाइए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। एक माणिक्य बनवा के पहन लें, 6 से 8 रत्ती का माणिक्य, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार को प्रातः माणिक्य धारण करें और रोज सुबह सूर्य भगवान को अगर जल चढ़ाएं तो आपके लिए बेहतर होगा।
1: जिनका जन्मदिन आने वाला है उन्हें हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे टू यू। आइए जान लेते हैं कि आपका आने वाला वर्ष कैसा रहने वाला है।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 1 अक्टूबर को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होगा, करियर में बड़े परिवर्तन और लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य की स्थिति में थोड़ी समस्याएं रह सकती हैं, विवाह और संतान के मामलों में अभी विलंब होगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर सूर्य भगवान की उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और अब वक्त हो गया आज की जिज्ञासा के बारे में जानने का, तो आइए जान लेते हैं क्या कहती है आज की जिज्ञासा।
0: आज की जिज्ञासा है कि क्या राहु काल में पूजा उपासना और मंत्र जप नहीं करना चाहिए? देखिए, राहु काल में सामान्यतः नए काम की मनाही की जाती है, लेकिन इस समय में पूजा करने में उपासना करने में कोई प्रतिबंध नहीं है। आप राहु काल में साधना पूजा उपासना निश्चिंत हो करके कर सकते हैं।
1: और इसी के साथ हम जानेंगे 1 अक्टूबर 2026 यानी कि बृहस्पतिवार का शुभ पहर कौन सा है।
0: दिनांक 1 अक्टूबर 2026 दिन बृहस्पतिवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय भगवान कृष्ण की पूजा पीले फूलों से करिएगा। ऐसा करने से आपके नाम, यश और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी।
1: गुडलक में अब जानेंगे आज की गुडलक राशि के बारे में, तो चलिए जान लेते हैं क्या कहती है आज की गुडलक राशि।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग पूजा में क्या करें जिससे उनको लाभ हो। आज की गुडलक राशि है मीन। आपको पूजा में सफेद वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य और आपका मन बेहतर बना रहेगा।
1: और गुडलक में हम पहुंच गए आज के अंतिम पड़ाव पर, जहां पंडित जी रोज हमें एक नया महा उपाय बताते हैं, तो चलिए जान लेते हैं पंडित जी से ही कि आज का महा उपाय क्या है।
0: जी,

0: कि अगर आप खेल कूद के क्षेत्र में सफलता चाहते हैं तो क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, सादा जल। सुबह और शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए और सलाह लेकर एक मूंगा या एक पन्ना धारण करिए और मेहनत करते जाइए, आपको खेल कूद के क्षेत्र में सफलता अवश्य मिलेगी।
1: पंडित जी, तमाम जानकारी के लिए और महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
1: तो पंडित जी से महा उपाय तो आपने जान लिया, बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: 11 अक्टूबर को कलश स्थापना के साथ ही शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो जाएगी। 9 दिनों तक माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना होगी। कोलकाता समेत पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की अद्भुत छटा देखने को मिलती है, जिसकी तैयारियां तेजी से चल रही हैं। आज हम आपको कोलकाता की एक ऐसी जगह दिखाने जा रहे हैं जो देवी देवताओं की मूर्ति बनाने के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है।

0: आस्था का पर्व और माता रानी के स्वागत की तैयारी। कहीं माँ दुर्गा की भव्य प्रतिमाएं बनाई जा रही है तो कहीं पंडाल सजाए जा रहे हैं। आदि शक्ति आएंगी, अपने भक्तों पर कृपा बरसाएंगी। 9 दिनों के भक्ति के इस उत्सव में हर तरफ जय माता दी के जय घोष की गूंज सुनाई देगी। इसी के चलते देश भर में नवरात्र की तैयारियां तेजी से आगे बढ़ रही है। पश्चिम बंगाल और विशेषकर कोलकाता के लिए दुर्गा पूजा केवल एक धार्मिक त्योहार नहीं बल्कि बंगाली संस्कृति, कला, भाईचारे और अर्थव्यवस्था की धड़कन है। इसलिए यहाँ इन दिनों मूर्तिकारों की व्यस्तता कहीं अधिक बढ़ी हुई है। माँ दुर्गा की छोटी से लेकर बड़ी मूर्तियों को वो तेजी से आकार देने में जुटे हुए हैं। रंग रोगन का काम चल रहा है।
1: माता दुर्गा की मूर्ति सज धज के बन ठन के जाती है इसी कुमोटुली से। और इस बीच कुमोटुली में अभी बहुत ही व्यस्तता चल रहा है, लोगों का भी यहाँ पे आना जाना बन रहा है। कोई लोग आ रहा है दोस्तों के साथ फोटो खींचने, कोई यहाँ पे पूजा के पहले ही पूजा का वाइब्स लेने कुमोटुली पहुंच रहा है, माता दुर्गा की मूर्ति को दर्शन कर रहा है।
0: कोलकाता का कुम्हार टोली इलाका दुनिया भर में माँ दुर्गा की पारंपरिक और कलात्मक मूर्तियां बनाने के लिए प्रसिद्ध है। करीब 300 साल पुरानी कुम्हारों और मूर्तिकारों की इस बस्ती को पॉटर्स कॉलोनी कहा जाता है। यहाँ देवी दुर्गा की मूर्तियां विशेष रूप से गंगा की मिट्टी, बांस और भूसे के ढांचे पर हाथों से गढ़ी जाती है।
2: स्टूडियो में कोई 20 बना रहा है, कि 15 बना रहा है, कि 10 बना रहा है, ऐसा करके होता। कोई 50 भी बनाया है, ऐसा नहीं है जो 10-20 ना, 50 भी बना रहा ऐसा होता है। ये तो गुण नहीं पाएगा तो सारा कलकत्ता में बाहर में सब हम लोग की मूर्ति भेज रहा है।
0: कुम्हार टोली में मिट्टी की मूर्तियां बनाने वाले लगभग 300 स्टूडियो है, जहां कारीगर मूर्तियों को अब अंतिम रूप देने में व्यस्त है। लगभग सभी स्टूडियो को पहले ही एडवांस बुकिंग मिल चुकी है। यहां बनी दुर्गा प्रतिमाओं की केवल कोलकाता या देश के दूसरे हिस्सों में ही नहीं बल्कि विदेश तक डिमांड है। अब तो यहां के मूर्तिकार प्रतिमाओं के निर्माण में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक का इस्तेमाल कर रहे हैं।
3: मेरा असल जो हम जो ठाकुर बनाते हैं 12-14 उन्हें वो आज से 2 मास पहले वो बुकिंग हो गया। अभी जो AI से मैं रोबोटिक दुर्गा किया है उत्तर दिनाजपुर कालियागंज में, वो मारात्मक वायरल हो गया, ठीक है। उसका जो प्रतिमा है वो रोबोटिक है, उसका जो AI दुर्गा और उसका जो फेस है वो माँ का जो फेस वही फेस मैंने रखा है, लेकिन AI नहीं किया। जो तस्वीर मेरे पास आया है वो माँ का थोड़ा सा AI था, लेकिन ये तो माँ है, इसलिए माँ को मैं एक मिनमय रूप मैंने दिया, ठीक है। उसको जो आक्स, उसको जो सारीज, उसको जो सरस्वती लक्ष्मी कार्तिक गणेश जो है, उसको जो महिषासुर, उसके जो लायन, सब आंखों में LED लाइट्स जलेंगे।
1: अच्छा,
3: साड़ी में भी, और जो अस्त्र है फाइबर का, उसका भीतर में LED लाइट्स है, वो ब्लिंक करेगा।
1: अच्छा।
3: ठीक में, और उसका जो पैंडल है, वो जो रोबोट है वो घूमेगा।
1: अच्छा।
3: वो बातचीत करेगा, अब जो बोला वो बात वो आंसर दे देंगे।
4: बागमारी का जो है और आदर्श जगह जो सब नया बना हुआ है, ये ब्रिटिश जमाना से चला हुआ आ रहा है और अभी तक लोग आप देख, अगर आप यहाँ सर्वे कीजिएगा देखिएगा, सबसे ज्यादा मूर्ति यहीं पर
5: है। यहाँ पे मूर्ति, सारा मूर्ति यहीं पे बनता है, यहीं से स्टार्टिंग हुआ है और हम लोग भी आज बचर यहीं से आके लेके जा रहे हैं।
0: यहाँ मूर्ति का ऑर्डर दे चुके लोग ही नहीं पहुँच रहे बल्कि बड़ी संख्या में कला प्रेमी भी आ रहे हैं, जो मूर्तिकारों और कारीगरों की मेहनत को करीब से देखने और समझने की इच्छा रखते हैं। यहाँ देवी माँ की दिव्य मूर्तियों को देखकर वो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। मोबाइल में तस्वीरें कैद करने के साथ खुद की तस्वीर खिंचवाते भी नजर आते हैं।
6: मैंने बहुत सुना था बट आज महसूस किया और बहुत अच्छा लग रहा है, अद्भुत जिसको बोलते हैं ना वो एक्सपीरियंस हुआ और बहुत ऐसे डिवाइन सी फीलिंग हो रही है।
7: मैं तो उत्साहित थी ये देखने के लिए कि क्या कैसे बनता है, वो मुझे बहुत जानना था। तो इतना सुंदर है कि मतलब उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते हम, तो बहुत ही सुंदर है, अद्भुत है ये नज़ारा। अभी मैंने माँ का जो मूर्ति बनते हुए कैसे बनाते हैं और कितने मेहनत से बनाते हैं वो देखा, और कितने लगन से बनाते वो चीज़ देखा, तो वो चीज़ महसूस कर रही हूँ।
8: यहाँ पर आज हम कैसे शुरुआत होती है, कैसे पुआल और मिट्टी से उनको एक पहले एक स्ट्रक्चर देते हैं, फिर उसकी आप प्लास्टर ऑफ पैरिस करते हैं, प्राइमर और कलर और फिर ज्वेलरी, तो वो जो पूरी की पूरी जर्नी हम पहले शुरू गली से शुरू होते और गली के अंत तक आते आते माँ का पूरा प्रारूप ही चेंज हो जाता है, और यहाँ से फिर जो पंडाल तक का सफर है वो बिल्कुल ही अद्भुत रहता है।
9: दुर्गा पूजा के शुरू होने से पहले ही ये जगह लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, इसके चलते यहाँ लोगों की आवाजाही बढ़ी हुई है और त्योहार से पहले ही उत्सव जैसा माहौल बन चुका है। कोलकाता से राही हलदार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
10: बात करेंगे अवधपुरी की, जहां पर 7 नवंबर को दिव्य आयोजन की तैयारियां चल रही हैं। इस दिन वहां की छठा देखने वाली रहेगी। अयोध्या का कोना कोना रोशनी से सराबोर हो जाएगा। इस विशेष अवसर के लिए विशेष टूर पैकेज की घोषणा भी कर दी गई है। इन सबके बीच अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक अलग तैयारियां चल रही है।

0: प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या, जहां बड़ी संख्या में भक्त रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। यहां इन दिनों दीपोत्सव की तैयारियां चल रही हैं। साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर एनएसजी कमांडोज की चहलकदमी भी देखी जा सकती है। अवधपुरी में इस बार और भव्यता के साथ दीपोत्सव मनाने की तैयारी है, और इसी को लेकर जहां एक तरफ मजदूर कामकाज में जुटे हैं, तो वहीं अधिकारी लगातार निरीक्षण करते नजर आए।
1: हम लोग यहां क्वीन हो पार्क में उपस्थित हैं। यहां पर हम लोग की प्लानिंग है कि कुछ प्रदर्शनी या झांकी जैसा कुछ दीपोत्सव के दौरान लगाया जाएगा, तो उसी के संबंध में इस पार्क का निरीक्षण किया जा रहा है। इसके अलावा राम की पैड़ी, चौधरी चरण सिंह घाट, सरयू तीर्थग्रह, जो हेलीपैड बनता है, रामकथा पार्किंग, सभी स्थानों का निरीक्षण किया जा रहा है। और कहीं पर भी जो छोटी मोटी चीजें पाई जा रही है, जिनके बारे में निर्देश दिए जाने हैं, जिनको ठीक किया जाना है, वो लगातार किया जा रहा है। लगातार इस प्रकार के निरीक्षण जारी रहे।
0: इस बार के दीपोत्सव को और ज्यादा शानदार बनाने के लिए श्रद्धालुओं के लिए एक खास योजना तैयार की गई है। UPSTDC ने दीपोत्सव अयोध्या टूर पैकेज तैयार किया है। श्रद्धालु और पर्यटक राम मंदिर, हनुमान गढ़ी, कनक भवन, नागेश्वर नाथ मंदिर के दर्शन भी कर पाएंगे।
2: एक अलग नजारा है, एक अलग दृश्य होगा, जब इस बार देश से नहीं विदेशों से भी खास मेहमान आएंगे, इस दीपोत्सव में शामिल होंगे, जहां अब की बार एक वर्ल्ड रिकॉर्ड एक नया बनाया जाएगा। यहाँ अगर आते हैं टूरिस्ट तो उनके लिए खास इंतजाम भी किए गए हैं। राम मंदिर हो, कनक भवन हो या हनुमान गढ़ी, हर जगह वो दर्शन करेंगे, उनके रुकने के खास इंतजाम किए गए हैं। तो ये पूरी राम की पैड़ी को जो है पूरा दुल्हन की तरीके सजाया जा रहा है, क्योंकि बहुत जल्द वो 7 नवंबर की तारीख है जब विशालकाय दिए, इलेक्ट्रॉनिक दिए, हर एक चीज वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा इस राम की पैड़ी पे, इसको भव्य और दिव्य रूप दिया जा रहा है।
0: दीपोत्सव को लेकर तैयारियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं। राम की पैड़ी पर विजिटर गैलरी और सेल्फी पॉइंट्स भी तैयार किए जा रहे हैं। इस बार 30 लाख दीप जलाने का लक्ष्य है। श्रद्धालु लेजर और ड्रोन शो का आनंद भी उठा पाएंगे। सरयू घाट पर 2100 वैदिक आचार्य महाआरती करेंगे। 240 से अधिक मंदिर और मठों में भी दीप प्रज्वलित होंगे। रामकथा पार्क से लेकर राम की परिधि तक लगभग 1 दर्जन जगहों पर अलग अलग कार्यक्रम होंगे। सरयू के तट पर श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, नए घाट, एम्फीथिएटर और फूड कोर्ट्स जैसे आकर्षक केंद्र भी बनाए जाएंगे। इन सब के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी की टीम अयोध्या में समीक्षा और मॉक ड्रिल करती नजर आई। एनएसजी की टीम राम मंदिर से लेकर हनुमान गढ़ी तक सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेती नजर आई। कनक भवन में भी एनएसजी की टीम सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रही थी। एनएसजी की टीम सभी महत्वपूर्ण स्थलों का निरीक्षण कर रही है और मौजूदा व्यवस्था की समीक्षा के साथ साथ संभावित आपात परिस्थितियों से निपटने की तैयारियों को भी परखा जा रहा है।
2: निरीक्षण किया जा रहा है, एनएसजी कमांडेंट यहाँ पे लगातार घूम रहे हैं। राम मंदिर हो चाहे हनुमान गढ़ी हो, हनुमान गढ़ी परिसर में पूरी डायरेक्शन दी गई है, बाकायदे कंट्रोल रूम पूरे चेक किए गए हैं। तो यहाँ लगातार जो है अयोध्या की राम नगरी की सुरक्षा को लेकर खास इंतजाम किए जा रहे हैं। लगातार यहाँ पे निगरानी की जा रही है, लगातार चप्पे चप्पे पर एनएसजी की तैयारी है।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अयोध्या में एक नया एनएसजी क्षेत्रीय केंद्र बनाने की घोषणा की है। माना जा रहा है कि एनएसजी कमांडोज की मौजूदगी और लगातार चल रही मॉक ड्रिल उसी का हिस्सा है, और आने वाले समय में अयोध्या की पूरी सुरक्षा व्यवस्था में एनएसजी की अहम भूमिका तय की जा सकती है। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: अभी तक हरी सब्जी को सेहत और स्वास्थ्य के लिहाज से सबसे पौष्टिक आहार माना जाता रहा है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के वनस्पति विज्ञान विभाग की माने तो यमुना के किनारे उगाई जाने वाली सब्जियों के जरिए दिल्ली की थाली में यमुना का प्रदूषण पहुंच रहा है। जी हां, DU की रिसर्च के मुताबिक टेस्ट के दौरान कई सब्जियों के सैंपल्स में क्रोमियम, लेड, कैडमियम और ऐसे पदार्थ पाए गए हैं जिनसे मेटल्स मिले हैं, जो स्वास्थ्य के लिए अगर देखा जाए तो बहुत हानिकारक हैं। शरीर में इनके पहुंचने से कैंसर होने तक का खतरा बढ़ जाता है।

0: स्वस्थ और सेहतमंद रहने की ख्वाहिश हर किसी की होती है। नियमित व्यायाम, भरपूर नींद के अलावा संतुलित आहार को अपनाने की सलाह दी जाती है। और जब पौष्टिक भोजन की बात आती है तो उनमें सबसे ऊपर हरी सब्जियों की गिनती होती है। हालांकि दिल्ली में हरी सब्जियां खाने की सलाह देना भारी पड़ सकता है, वो भी तब जब ये सब्जियां यमुना नदी के किनारे उगाई गई हों। दिल्ली में गंदगी, प्रदूषण और दुर्गंध की वजह से अभिशप्त यमुना से एक नई चिंता जुड़ गई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के वनस्पति विभाग की चौंकाने वाली एक रिसर्च सामने आई है जो सीधे तौर पर आपकी सेहत पर बुरा असर डाल सकती है। सिर्फ यही नहीं बल्कि आपको अपने खान पान के आदतों में बदलाव के लिए मजबूर भी कर सकती है। रिसर्च के मुताबिक यमुना के आसपास की मिट्टी और उसमें उगाई जा रही कुछ सब्जियों के सैंपल में हैवी मेटल्स यानी भारी धातुएं पाई गई हैं।
1: दिल्ली में यमुना किनारे इस वक्त हम उसी जगह पर मौजूद हैं जहां से प्रोफेसर दीनबंधु साहू ने सैंपल कलेक्ट किए थे। ये यमुना का किनारा आप देख रहे हैं और यमुना का पानी अभी भी पूरी तरह से काला है, बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, पारदर्शी नहीं है, मतलब पानी बिल्कुल भी साफ़ नहीं है। इसी इलाके से, यमुना के इसी स्ट्रेच से लगातार 2 साल तक प्रोफेसर दीनबंधु साहू सैंपल लेते रहे। उन्होंने पानी का सैंपल लिया, मिट्टी का सैंपल लिया, फिर उनसे जो सब्जियां उगाई जा रही थी उनका सैंपल लिया। और सब्जियों में भी जो सैंपल लिया वो सिर्फ एक बार नहीं बल्कि किसी सब्जी के 3 से 4 बार उसके सैंपल अलग अलग उसकी फसल के वक्त लिए गए और उन सैंपल में वो सारी खतरनाक चीज़ें मिली हैं।
0: दिल्ली यूनिवर्सिटी के वनस्पति विज्ञान विभाग की एक टीम यमुना के जल में प्रदूषण के स्तर को लेकर लंबे समय से रिसर्च कर रही है। इसी कड़ी में यमुना के आसपास में मिट्टी की भी जांच पड़ताल की गई। तब उसमें क्रोमियम, लेड, कैडमियम, आर्सेनिक और निकेल जैसी भारी धातुएं पाई गई। इसके बाद टीम ने उसी इलाके में उगाई जाने वाली सब्जियों के सैंपल भी लिए। प्याज, आलू, मेथी, धनिया, सरसों, पालक और सफेद मूली में क्रोमियम, लेड, कैडमियम, आर्सेनिक और निकेल जैसे हैवी मेटल्स मिले जो स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है।
2: पहले हमने देखा कि पानी जो है अलग अलग जगह से जब हमने लिए देखा कि हाईली पॉल्यूटेड है और वही पानी में जब आपका सिंचाई हो रहा है सारे चीज़ें यमुना के किनारे, तो फिर हमने पहले सॉयल का टेस्टिंग किया। सॉयल टेस्टिंग में देखा गया है कि ये काफ़ी मात्रा में उसमें हैवी मेटल्स है। तो हमने सोचा है कि जो आपका यहाँ खेती हो रहा है अलग अलग टाइप का सब्जी का, तो क्यों उसको ला के हम टेस्टिंग ना करें। तो उसको जब हमने टेस्टिंग किए उसमें देखे कि काफ़ी भारी मात्रा में आपको हैवी मेटल्स पाया गया है, चाहे कैडमियम हो, क्रोमियम हो, आर्सेनिक हो, अलग अलग वेजिटेबल्स है, प्याज है, आलू है, मेथी है, धनिया है। तो उसमें हमने देखा कि ये जो कैंसर कॉजिंग हैवी मेटल्स है वो काफ़ी हैवी मात्रा में पाया गया है।
0: दिल्ली में यमुना नदी की 22 किलोमीटर लंबाई है। कई इलाकों में नदी के दोनों किनारों पर खेती होती है। यही वजह है कि रिसर्च टीम ने किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले पानी, मिट्टी और सब्जियों के 3 अलग अलग बार सैंपल लिए। हर बार एक ही तरह का परिणाम सामने आया। कुछ मामलों में हैवी मेटल्स की मात्रा तय अंतर्राष्ट्रीय मानकों से कई गुना ज्यादा मिली। इस दौरान यमुना के पानी में अलग अलग तरह के केमिकल के अलावा कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया भी काफी ज्यादा मात्रा में मिला।
2: एक सैंपल्स में आप कभी कोई डाटा को वैलिडेट नहीं कर पाएंगे। सैंपल्स हमेशा ट्रिप्लिकेट में होता है, तो 3 बार सैंपल्स को ट्रिप्लिकेट में हमने किया और रिजल्ट्स वही निकला कि हर हैवी मेटल्स का जो है काफ़ी हाई लेवल में पाया गया है। अगर आप देखेंगे दिल्ली में यमुना 22 किलोमीटर का स्ट्रेच है, पानी बिल्कुल काला है। यमुना 7-8 स्टेट में लगभग 1800 किलोमीटर का स्ट्रेच है, बट ये जो स्ट्रेच है ये काफ़ी हेविली पॉल्यूटेड है और पानी में तो कोलीफॉर्म बैक्टीरिया जो है जो सेहत के लिए पूरा हानिकारक है, उसका लोड भी बहुत ज़्यादा है। तो जब खेती होता है तो पानी वहां से आता है और सीपेज होकर भी पानी आता है।
0: दिल्ली में आजीविका चलाने के लिए कई लोग यमुना किनारे सब्जियां उगाने के काम से जुड़े हैं, जिनकी वजह से जहरीली सब्जियां बाजार में बिकने के लिए पहुंच जाती हैं। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि अगर इसी तरह के प्रदूषित पानी का इस्तेमाल खेती में किया जा रहा है तो उसका असर सब्जियों पर कितना पड़ सकता है और वो स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है, यह समझना मुश्किल नहीं है। सब्जियों में सुरक्षित सीमा से कई गुना अधिक भारी मात्रा में भारी धातुओं का मिलना जानलेवा कैंसर को न्योता देना है।
1: जैसे अभी यमुना किनारा है और मैं आपको दिखाऊं तो आप वहां पर एक वो झोपड़ी देख पा रहे हैं और उसी जगह पर ठीक उसके पास में खेती की जा रही है सब्जियों की। फिलहाल वहां जाना अभी हमारे लिए संभव नहीं है, लेकिन ऐसे पूरे ही स्ट्रेच पर आपको यमुना के जगह जगह पर लोग दिख जाएंगे जो कि सब्जियों को उगाते हैं। और आप किसी भी कोई भी ऐसे भारी तत्व जो किसी सब्जी में होते हैं या फिर फसल में होते हैं तो वो जब शरीर में जाते हैं तो आपके शरीर को वो कैंसर की तरफ ले जाते हैं, चाहे वो निकेल हो, चाहे वो क्रोमियम हो या फिर लेड हो। इन सारी चीज़ों की मात्रा सब्जियों में कई गुना ज़्यादा मिली है, वो सब्जियां जो इसी पानी से उगाई जा रही हैं।
0: दरअसल दिल्ली में यमुना में छोटे बड़े 22 नाले गिरते हैं, केवल 11 नालों का पानी ट्रीट हो रहा है। ऐसे में घरों से निकलने वाला गंदा पानी यमुना में सीधा गिर रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली की लाइफ कहे जाने वाली यमुना के किनारे पैदा होने वाली सब्जियों का ये हाल हो गया है। सबसे बड़ी बात, खेतों से लेकर हमारे किचन तक पहुंचने के बाद सब्जियों को 3-4 बार साफ पानी से धोने का भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। सब्जियों की संरचना के लिए जिम्मेदार पादप कोशिकाएं यानी प्लांट सेल से हैवी मेटल्स का निकलना नामुमकिन होता है।
1: एक बात आपको हम और बता दें कि अमूमन ये मिथ हम लोग मानते हैं कि किसी सब्जी को अगर लेकर आए हैं तो उसे 3-4 बार आप गर्म पानी से साफ कर लीजिए ताकि जो उसमें कीटाणु हैं, जो दिक्कतें हैं वो निकल जाएं। लेकिन प्रोफेसर दीनबंधु साहू का साफ साफ कहना है कि सब्जी को महज गर्म पानी से धोने भर से उसमें जो दिक्कतें हैं वो बाहर नहीं निकलने वाली, क्योंकि अगर इसी पानी से उनकी खेती की जा रही है, इसी पानी का इस्तेमाल उन सब्जियों को उगाने में किया जा रहा है तो वो सारी चीज़ें उन सब्जियों के सेल्स में होंगी जिसे निकालना साफ करना बेहद मुश्किल है। मतलब साफ है कि अगर आप इस सब्जी का सेवन कर रहे हैं तो आपके शरीर में दिक्कत होना तय है, आज नहीं तो कल सही। कुल मिलाकर इससे बचने के क्या तरीके हो सकते हैं वो तमाम तरीके भी बताए गए हैं, लेकिन फिलहाल आप लोगों के पास क्या ऑप्शन है, आपके पास बस एक ही ऑप्शन है कि जब भी आप सब्जी वाले के पास जाएँ तो पहले उससे पूछें कि ये सब्जी कहाँ उगाई गई है, इसका सोर्स क्या है, ताकि आपको जानकारी मिल सके कि उसे उगाने में किस तरह के पानी का इस्तेमाल किया गया है। कहीं वो पानी यमुना के नदी का तो नहीं है, बिल्कुल काला तो नहीं है, क्योंकि अगर उसकी उगाई सब्जियाँ आप पीते हैं तो शायद आप धीरे धीरे कैंसर की तरफ बढ़ रहे हैं। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, दिल्ली।
3: खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज़ टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। देश में त्योहारों के मौसम की शुभ शुरुआत होने वाली है। 11 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र का शुभारंभ हो रहा है। ऐसे में देश के अलग अलग शहरों में मंदिर और पंडाल सजाए जा रहे हैं। मां दुर्गा की मूर्तियों के निर्माण का काम अब अंतिम चरण में है। यूं तो देश भर में नवरात्र पर मां दुर्गा की भक्ति का उत्सव मनाया जाता है, लेकिन नवरात्र का सबसे गाढ़ा रंग चढ़ता है पश्चिम बंगाल पर। बाकी जगहों पर तो उत्सव के रंग नवरात्र में बिखरेंगे, लेकिन कोलकाता का एक कोना ऐसा भी है जहां वास्तव में उत्सव पूजों की शुरुआत से पहले नजर आता है। कोलकाता का कुमारटुली इलाका देवी प्रतिमाओं के निर्माण के लिए दुनिया भर में काफी प्रसिद्ध है। कुमारटुली में इन दिनों मां दुर्गा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यहां पीढ़ियों से रहते आ रहे मूर्तिकार अपनी अपनी कल्पना के आधार पर मां के स्वरूप को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिर क्या है

0: एक ऐसा शहर जो सोता है इतिहास के पालने में। और एक रोज जब शरद ऋतु की हवाओं में घुल जाती है शिवली फूलों की महक, तब हुगली की ओर से आते मध्यम झोंकों के बीच कला की उंगलियां सहलाकर जगाती हैं जिसे, और जाग उठता है ये शहर साल के सबसे बड़े उत्सव के लिए। और इसी शहर के कोने में चुपचाप शुरू हो जाती है ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति को आकार देने की कहानी। वो कहानी जो शुरू होती है एक काठ के टुकड़े से, एक बिना तराशे पत्थर से और माँ गंगा की मिट्टी से। ये कहानी है उसी मिट्टी के साक्षात महामाया बन जाने की।
1: माँ का इतना अद्भुत यहाँ होता है कि माँ आती हैं और मतलब बेटी हैं वो, तो कैसे उसका सब कुछ होता है, उनका सजावट और वो देखने को मिल रहा है, तो वो बहुत ही सुंदर है।
2: कलकत्ता का नहीं, वो सारा वर्ल्ड में फेमस है।
0: उत्तरी कोलकाता में हुगली के किनारे बसा कुम्हार टोली, बंगाली में कुमोर यानी कुम्हार और टोली यानी बस्ती। लगभग 300 साल पुराना ये इलाका सिर्फ एक मोहल्ला नहीं बल्कि कला का एक जीवंत संग्रहालय है, जहां हर साल आकार लेता है माँ दुर्गा का वो भव्य रूप जिस पर शब्दकारों ने मुक्त कंठ से स्तुतियां पढ़ी, चित्रकारों ने प्रतिबद्ध होकर चित्र बनाए और मूर्तिकारों ने गढ़ी मूर्तियां। कोलकाता का कुम्हार टोली उन्हीं मूर्तिकारों की बस्ती है जहां के कारीगर अपने अपने दृष्टिकोण से रचते हैं माँ का ये महारूप।
3: कुम्हार टोली की मिट्टी की खुशबू ये एहसास दिलाता है कि बंगाल की सबसे श्रेष्ठ उत्सव दुर्गा पूजा बहुत नजदीक है, और इस समय हम कुम्हार टोली में ही उपस्थित है जहां से बंगाल के मैक्सिमम पंडाल्स में माता दुर्गाओं की मूर्ति पहुंचती है। माता दुर्गाओं की मूर्ति सज धज के बन ठन के जाती है इसी कुम्हार टोली से, और इस बीच कुम्हार टोली में अभी बहुत ही व्यस्तता चल रहा है। जो मृत शिल्पी है, जो आर्टिस्ट है, वो लोग दिन भर काम कर रहे हैं माताओं की मूर्ति रेडी करने के लिए।
0: बताया जाता है कि 18वीं शताब्दी के मध्य में जब राजा नवकृष्ण देव ने अपने घर में दुर्गा पूजा की शुरुआत करवाई, तब वे देवी देवताओं की सुंदर मूर्तियां बनाने के लिए बंगाल के ही कृष्णा नगर और आसपास के इलाकों से कुछ कुशल कारीगरों को लेकर यहाँ आए। धीरे धीरे ये कारीगर हुगली नदी के पास इसी इलाके में बस गए, जिसे आज कुम्हार टोली या कुम्हार टोली कहा जाता है। दिन गुजरते गए, गंगा नदी के किनारे की ये उपजाऊ और चिकनी मिट्टी इन कारीगरों का नसीब बन गई। पीढ़ी दर पीढ़ी, दादा से पिता और पिता से बेटे तक ये हुनर इस मिट्टी की तरह ही यही ठहर गया। आज भी इन कलाकारों के वंशज कुम्हार टोली की छोटी तंग गलियों में माँ की प्रतिमा गढ़ते हैं। जगह कम है पर माँ का आशीर्वाद बड़ा है। अब के साल भी ये कलाकार तन मन से माँ का स्वरूप गढ़ने में जुटे हैं।
4: जो इतना दिन बारिश था उससे तकलीफ हुआ था, अभी जो बारिश दिया है सूर्योदेव ने, दो दिन से जो खड़ा रोद उठा वो हम लोग का अच्छा है। माने एक घंटा दो घंटा में जो मिट्टी का काम होता है, अभी लास्ट टाइम में जो मिट्टी का काम को होता है वही अभी सूख रही है, ठीक है। तो और दो दिन लगेगा, फिर रंग पेंट पेंट होगा, फिर हो जाएगा कपड़ा। और मेरा 90% काम हो गया कलर का, अभी चल रही है साड़ी। माँ का जो साड़ी है अभी साड़ी चल रही है, इसके बाद आएगा ऑर्नामेंट्स, ठीक है। ये ऑर्नामेंट्स बाल जो है उस लगा के फिर मौला जब आएगा तब वो मेरा घर से चाटो प्रतिमा पार्टी आके ले जाएगी।
0: कोलकाता के कई बड़े पंडाल कुम्हार टोली से ही मूर्तियां ले जाते हैं। महीनों पहले

0: मूर्तिकारों को बता दिया जाता है कि माँ के स्वरूप में अब की बार क्या खास होना चाहिए। ग्राहकों की मांग और अपनी कल्पना के आधार पर कुम्हार टोली के कलाकार मूर्ति बनाने में जुट जाते हैं। महीनों तक काम चलता है और आखिरकार नवरात्र से पहले माँ का स्वरूप बनकर तैयार हो जाता है।
1: यहाँ पर हम जो चाहते वही मिल जाता है। वहाँ पर बागमारी में ये फैसिलिटी नहीं था। यहाँ पर हम जैसा बोलते हैं ये लोग वैसे ही बना देते हैं। अलग है, ये बहुत पुराना, ये प्राचीन काल से चला हुआ रहा है। बागमारी का जो है और आदर्श जगह जो सब नया बना हुआ है, ये ब्रिटिश जमाना से चला हुआ आ रहा है और अभी तक लोग आप देख, अगर आप यहाँ सर्वे कीजिएगा देखिएगा सबसे ज्यादा मूर्ति यहीं पर है।
0: वास्तव में माँ दुर्गा की प्रतिमा का निर्माण केवल कला का प्रदर्शन भर नहीं है बल्कि ये एक सर्वोच्च आध्यात्मिक अनुष्ठान है। माँ की मूर्ति का निर्माण शरीर की तरह ही पांच तत्वों से शुरू होता है, लकड़ी, बांस, पुआल, रस्सी और गंगा की मिट्टी। सबसे पहले बांस और लकड़ियों की मदद से मूर्ति का मजबूत ढांचा तैयार किया जाता है, जिसे बंगाली भाषा में काठमो कहा जाता है। इस ढांचे पर काम शुरू करने से पहले भगवान गणेश की पूजा होती है। फिर बांस के ढांचे को सूखे पुआल से अच्छी तरह बांधा जाता है। इसके बाद गंगा नदी के तट की चिकनी मिट्टी, जिसे एटेल माटी कहते हैं, उसे धान की भूसी के साथ मिलाकर पहली मोटी परत चढ़ाई जाती है। मूर्ति को धूप में सुखाया जाता है और दरारों को कपड़ों की पट्टी से भरा जाता है। पहली परत सूखने के बाद बेले माटी यानी बारीक चिकनी मिट्टी की दूसरी परत लगाई जाती है। इससे मूर्ति को चिकना, गोल और सुंदर आकार मिलता है। इस चरण में चेहरे, हाथों और उंगलियों को बारीकी से गढ़ा जाता है। मूर्ति पूरी तरह सूखने के बाद उस पर सफेद रंग का प्राइमर या बेस कोट लगाया जाता है। इसके बाद स्प्रे या ब्रश का इस्तेमाल करके माँ की प्रतिमा को सुंदर रंगों से सजाया जाता है। फिर बारी आती है सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम धार्मिक अनुष्ठान चोखू दान की, जिसमें महालया या पूजा से ठीक पहले देवी की आंखें बनाई जाती हैं। अंत में मूर्ति को सुंदर वस्त्रों, आभूषणों और बालों से सजाया जाता है।
2: इट्स अ वेरी डिवाइन फीलिंग, है ना। माँ को हम लोग पंडाल हॉपिंग में जब जाते हैं तो उनका पूरा सजा हुआ रूप देखते हैं, और यहाँ पर आज हम कैसे शुरुआत होती है, कैसे पुआल और मिट्टी से उनको एक पहले एक स्ट्रक्चर देते हैं, फिर उसकी आप प्लास्टर ऑफ पेरिस करते हैं, प्राइमर और कलर और फिर ज्वेलरी, तो वो जो पूरी की पूरी जर्नी हम पहले शुरू गली से शुरू होते हैं और गली के अंत तक आते आते माँ का पूरा प्रारूप ही चेंज हो जाता है, और यहाँ से फिर जो पंडाल तक का सफर है वो बिल्कुल ही अद्भुत रहता है। आप सोच नहीं सकते कि वो पंडाल में लाइट्स के साथ में जो वो इफेक्ट आता है, ये मूर्ति जो यहाँ पे हम देखते हैं वो और भी भव्य हो जाती है।
3: वेट करने के बाद ये वाला माँ का रूप देखने को मिलता है, नहीं तो आप देखेंगे बस सजी धजी माँ पंडाल स्वयं दिख जाती है लेकिन ये वाली चीज कहीं नहीं दिखती, तो इसके लिए वेट करने के लिए तो आना ही पड़ेगा यहाँ पे। और इसकी जो मिट्टी की जो खुशबू आ रही है और कलर्स की जो महक आ रही है बहुत अच्छी है।
0: कुम्हार टोली में अब कई तरह की मूर्तियाँ बनती हैं, जिनमें मुख्य रूप से पारंपरिक एकचाला मूर्तियाँ होती हैं, जिनमें सारे देवता एक ही ढांचे में बनाए जाते हैं, तो वहीं आधुनिक थीम पर आधारित मूर्तियाँ भी ऑर्डर पर अब तैयार होती हैं, जिनमें सामाजिक संदेश देने वाली कलाकृतियाँ भी गढ़ी जाती हैं। बदलते वक्त के साथ कुम्हार टोली भी बदला है। अब तो यहाँ माँ की मूर्ति के निर्माण में AI की झलक भी दिखाई देने लगी है।
4: इस साल में AI बनाया है मैंने। आजकल AI से सब हो रहा है, AI से पढ़ना होता है, AI से एडिट हो रहा है, AI से आपका 20 साल का, 50 साल, 100 साल, 300 साल का वही देश में कौन राजा था वो AI अभी तो सब हो जाएगा AI से। अभी जो AI से मैं रोबोटिक दुर्गा किया है उत्तर दिनाजपुर कालियागंज में, वो मारात्मक वायरल हो गया, ठीक है। उसका जो प्रतिमा है वो रोबोटिक है, इसका जो AI दुर्गा, और उसका जो फेस है वो माँ का जो फेस वही फेस मैंने रखा है, लेकिन AI नहीं किया। जो तस्वीर मेरे पास आया है वो माँ का थोड़ा सा AI था, लेकिन ये तो माँ है, इसलिए माँ को मैं एक मीनमय रूप मैंने दिया।
0: एक ही छत के नीचे माँ के अनंत रूप यहाँ नजर आते हैं। यही वजह है कि कोलकाता ही नहीं बल्कि आसपास के शहरों से भी लोग मूर्तियाँ लेने यहाँ पहुँचते हैं।
5: ये बहुत पुराना संबंध है, यहाँ पे आज प्राचीन काल से चले आ रहा है। एक यहाँ पे मूर्ति, सारा मूर्ति यहीं पे बनता है, यहीं से स्टार्टिंग हुआ है और हम लोग भी आज बचर बचर यहीं से आके लेके जा रहे हैं। हाँ, यहीं से हम लोग पूजा कबड्डी मूर्ति लेता है। आज बहुत दिन से हम लोग यहीं से लिए जा रहे हैं। ये जैसा चाहते हैं वैसा मिल भी जाता है, आते हैं हर बार, हर तरह का देख के लेके जाते हैं।
6: तो यही क्या माता दुर्गा का प्राण केंद्र बन चुका है?
1: एकदम 100%, इसमें कोई दो राय नहीं है।
6: आप लोगों का पंडाल के दुर्गा प्रतिमा के यहाँ से ले जा रहे हैं?
1: यहीं से ले जा रहे हैं, सामने ही मेरा मूर्ति बन रहा है, आप उसको भी देख सकते हैं।
5: ये बहुत पुराना संबंध है, यहाँ पे आज प्राचीन काल से चले आ रहा है। एक यहाँ पे मूर्ति, सारा मूर्ति यहीं पे बनता है, यहीं से स्टार्टिंग हुआ है और हम लोग भी आज बचर बचर यहीं से आके लेके जा रहे हैं। इसके इतना बड़ा जगह तो कहीं है भी नहीं ना, अगर है भी तो वहाँ पे दो चार मूर्ति बन रहा है, चाहे 10 मूर्ति बन रहा है, मगर यहाँ पे तो आप एक एक घर में 10-15 मूर्ति बन रहा है।
0: दुर्गा पूजा के शुभारंभ से पहले कुम्हार टोली में मूर्तियाँ लेने वालों के बीच ही सेल्फी लेते माँ के अर्ध निर्मित रूपों को निहारते सैलानियों की भी भरमार है। कहते हैं दुर्गा पूजा में कोलकाता की रौनक निराली होती है, लेकिन पूजों से पहले वो सारी रौनक कोलकाता के इस एक इलाके में सिमटी नजर आती है, जहां माटी से माँ को गढ़े जाने की यात्रा को अपनी आँखों से देखने बड़ी तादाद में सैलानी पहुँचते हैं।
7: एक्चुअली ये मेरा फर्स्ट टाइम है और मैंने बहुत सुना था, बट आज महसूस किया और बहुत अच्छा लग रहा है। अद्भुत जिसको बोलते हैं ना, वो एक्सपीरियंस हुआ और बहुत ऐसे डिवाइन सी फीलिंग हो रही है।
6: आज क्या घूमने ही आए थे?
7: जी बिल्कुल, ये दर्शन देवी माँ के अभी दर्शन करने आए थे हम लोग।
8: मैं भी पहली बार कोलकाता में आई हूँ और ये मतलब ये सुना बहुत था, मैम लोग से बहुत सुना था, तो मुझे बहुत ही मैं उत्साहित थी ये देखने के लिए कि क्या कैसे बनता है, वो मुझे बहुत जानना था। तो इतना सुंदर है कि मतलब उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते हम, तो बहुत ही सुंदर है, अद्भुत है ये नज़ारा। अभी मैंने माँ का जो मूर्ति बनते हुए कैसे बनाते हैं और कितने मेहनत से बनाते हैं वो देखा, और कितने लगन से बनाते वो चीज़ देखा, तो वो चीज़ महसूस कर रही हूँ कि सच में माँ का कैसे, माँ मतलब वो फील आता है ना, वो फील आ रही है, बहुत सुंदर।
0: और महीनों की कड़ी मेहनत और समर्पण के बाद इसी यात्रा के अंत में आता है वो पल जिसे चोखू दान कहा जाता है। महालया के दिन जब मूर्तिकार माँ की आँखों की अंतिम लकीर खींचते हैं तो मिट्टी का वो ढांचा जीवित हो उठता है। कुम्हार टोली की संकरी अंधेरी गलियों से निकलकर जब ये मिट्टी की प्रतिमा कोलकाता के भव्य पंडालों में रोशनी से चमकती है तो पूरा शहर उत्सव के उल्लास से गमक उठता है। ये मूर्तियाँ गवाह हैं उस अटूट विश्वास की, जहाँ इंसान अपनी आस्था और मेहनत के दम पर मिट्टी से निराकार को साकार कर लेता है। कोलकाता के कुम्हार टोली से राही हल्दर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
9: तो ये तो बात थी बंगाल की, अब आपको लिए चलते हैं दिल्ली में बसे छोटे बंगाल यानी दिल्ली का सीआर पार्क। सीआर पार्क को दिल्ली का मिनी बंगाल भी कहा जाता है। शारदीय नवरात्र के दौरान यहाँ थीम आधारित कई दुर्गा पंडाल सजाए जाते हैं। इनमें कालीबाड़ी मंदिर में लगने वाला पंडाल की चर्चा और तैयारी तो दुर्गा पूजा के कई महीनों पहले शुरू कर दी जाती है। कोलकाता के कुमार टुली की तरह ही यहाँ भी प्रतिमा निर्माण की अपनी परंपरा है। हर साल शारदीय नवरात्र से करीब 4 महीने पहले यहाँ वर्कशॉप लगाई जाती है, जिसमें पुआल, मिट्टी और रंगों का इस्तेमाल करके भव्य दुर्गा मूर्तियां तैयार की जाती हैं। 1970 के दशक से ये परंपरा यूं ही निभाई जा रही है। फर्क यह है कि शुरुआत में इस वर्कशॉप में कुछ ही मूर्तियां आकार लेती थीं, लेकिन अब यहां हर साल करीब 800 मूर्तियां तैयार की जाती हैं। हर साल पूजों के समय सीआर पार्क की रौनक देखने लायक होती है। तो चलिए आपको दिखाते हैं और लेकर चलते हैं सीआर पार्क और दिखा देते हैं तैयारी दुर्गा पूजा की।

0: दिल्ली में बंगाल की संस्कृति, कला, साहित्य, संगीत और समृद्ध ऐतिहासिक विरासत की पहचान चितरंजन पार्क है, जो माँ दुर्गा के आगमन का इंतजार कर रहा है। 11 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र की शुरुआत होने जा रही है। नवरात्र माँ दुर्गा की आराधना और उनके 9 विशेष स्वरूपों को पूजने का पवित्र त्योहार है। हर साल शारदीय नवरात्र के दौरान चितरंजन पार्क यानी कि सीआर पार्क कोलकाता का प्रतिबिंब बन जाता है। शारदीय नवरात्र के करीब एक महीने पहले से पंडालों में अटूट आस्था, श्रद्धा, विश्वास और संकल्प के साथ माँ दुर्गा के आह्वान की तैयारी शुरू हो जाती है। 1960 के दशक में पहली बार यहाँ बसे बंगाली परिवारों ने शारदीय नवरात्र से जुड़ी सांस्कृतिक विरासत की नींव रखी थी। तब से यहाँ माँ दुर्गा की प्रतिमा को स्थापित करने की परंपरा को संजोने और समृद्ध करने का संकल्प पीढ़ी दर पीढ़ी लिया जा रहा है। यहाँ माँ दुर्गा की अलग अलग तरह की प्रतिमाओं को बनाने का काम पूरा साल चलता रहता है, लेकिन शारदीय नवरात्र के लिए माँ की मूर्तियों को तैयार करना अपने आप में विशेष अनुष्ठान की तरह होता है। चितरंजन पार्क में 3 दुर्गा पूजा समितियों की तरफ से 3 बड़े पंडाल बनाए जाते हैं। इनमें कालीबाड़ी मंदिर में दुर्गा पूजा बेहद भव्य और सबसे मशहूर है। कालीबाड़ी मंदिर में विराजमान होने वाली माँ दुर्गा की भव्य मूर्ति, रंग बिरंगी सजावट और 9 दिनों तक शाम को होने वाले सांस्कृतिक उत्सव हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं।
1: तो भाई देखिए, कोलकाता के साथ साथ दिल्ली भी पूरी तरह से तैयार हो रही है दुर्गा पूजा के लिए, क्योंकि माँ आने वाली है। और उसके लिए सबसे बढ़िया जो जगह होती है सीआर पार्क, जहाँ हर साल मैं आपको लेकर आती हूँ, और ये बिल्कुल सीआर पार्क का वही कालीबाड़ी मंदिर है। जरा तस्वीरें देख लीजिए, तैयारियां भी हो रही है, शुरुआत हो चुकी है। हालांकि बहुत जोर शोर से यहाँ तैयारियां हो रही है। ये वही पंडाल है जहाँ पर हर साल दुर्गा पूजा मनाई जाती है कालीबाड़ी मंदिर का। और अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर शुरुआत हुई है, यानी पंडाल अभी तैयार हो रहा है। पंडाल का थीम क्या है बहुत ही सीक्रेट रखा गया है, लेकिन इसके साथ ही साथ सबसे ज्यादा जो इंतजार रहता है वो रहता है मूर्तियों का। तो इस बार किस तरह की मूर्ति होगी, थीम क्या होगा, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर लोगों में एक्साइटमेंट होती है। क्योंकि भाई जो लोग बंगाल से बाहर रहते हैं, स्पेशली अगर हम दिल्ली की बात करें, तो उनके लिए सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट यही सीआर पार्क का एरिया होता है। तो आज मैं आपको सीधा वर्कशॉप लिए चलती हूँ जहाँ पर मूर्तियों को बनाने का काम लगातार चल रहा है, और आपको मिलवाऊंगी उन कलाकारों से, उन कारीगरों से जो हर साल इन मूर्तियों को आकार देते हैं। और फिर उसके बाद फाइनली, अगर आपको याद हो तो ये वो स्टेज होती है सामने जहाँ पर पंडाल सजाया जाता है, माँ की मूर्ति को लाया जाता है। अभी भी अगर आप देखेंगे तो रफ यहाँ पर स्टेज तैयार की गई है, लेकिन चलिए मेरे साथ आपको मैं वर्कशॉप में लिए चलती हूँ और देखते हैं कि मूर्ति बनाने का काम कहाँ तक पहुँचा है। आइए।
0: हर साल दुर्गा पूजा से पहले दुर्गा प्रतिमा के निर्माण से जुड़ी कार्यशाला आयोजित की जाती है, जहाँ कुशल कारीगर बांस, पुआल और मिट्टी से देवी की भव्य मूर्तियाँ तैयार करते हैं। 1970 के दशक से कालीबाड़ी मंदिर के सहयोग से चली आ रही इस विशेष कार्यशाला में हर साल सैकड़ों प्रतिमाओं को आकार दिया जाता है, जो दिल्ली एनसीआर की 300 से अधिक पूजा समितियों को भेजी जाती है।
1: तो देखिए, मंदिर है और मंदिर के ठीक पीछे ये वो वर्कशॉप है, कार्यशाला है, जहाँ पर मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, मूर्तियों को आकार दिया जाता है। वैसे तो यहाँ पर जो काम है वो पूरा साल चलता रहता है, लेकिन जो आखिरी का समय होता है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उनमें कलर भरना है, फाइनल टच देना है। और ये वो कार्यशाला है जहाँ से मूर्तियाँ दिल्ली एनसीआर और साथ ही साथ अगल बगल के जितने राज्य हैं वहाँ पर मूर्तियाँ यहाँ से भेजी जाती हैं, और यहीं पर आकार इनको दिया जाता है, और यहाँ से फिर ये मूर्तियाँ राजस्थान, पंजाब, दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, जहाँ जहाँ भी जरूरत होती है वहाँ इनको भेजा जाता है। सबसे बड़ी और ख़ास बात यह है, अगर आपको ध्यान हो तो कोलकाता में स्पेशली और पूरे बंगाल में जहाँ जहाँ मूर्तियाँ बनाई जाती हैं वहाँ पर मिट्टी कुमारतुली से लाई जाती है, और यहाँ पर भी इन मूर्तियों को आकार देने से पहले उस पवित्र मिट्टी को इनमें शामिल किया जाता है।
0: मूर्तिकार गोविंद अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी है जो पारंपरिक रूप से माँ दुर्गा की प्रतिमाएं बनाने के काम में खुद को समर्पित कर चुके हैं। दुर्गा माँ की प्रतिमा उनके हुनर और विरासत को भी दर्शाती है।
1: तो गोविंद जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और माँ की जो मूर्ति है उसके चेहरे को आकार दिया जा रहा है, और साथ ही साथ मैं इनका परिचय कराऊं, ये तीसरी पीढ़ी है जो लगातार माँ की मूर्तियों को और दुर्गा पूजा की तमाम मूर्तियों को बनाते आए हैं। गोविंद जी
2: नमस्कार जी।
1: नमस्ते। कहाँ तक पहुँचा है काम?
2: काम अभी बस पेंटिंग का इंतजार कर रहा है, कल से नहीं तो परसों से पेंटिंग चालू हो जाएगा हमारा, और कुछ एक दो मूर्ति में मिट्टी का काम बाकी है, वो भी अभी काम चल रहा है, तो उसी का भी तैयारी हो रहा है। इधर पेंटिंग का भी थोड़ा फिनिशिंग करके, मिट्टी का फिनिशिंग करके तो कल परसों से ही पेंटिंग चालू।
0: इस शारदीय नवरात्र की शुरुआत 11 अक्टूबर से हो रही है और इसका समापन 20 अक्टूबर को विजयदशमी यानी दशहरे के दिन होगा। कोलकाता का कुमारटोली पवित्र दुर्गा प्रतिमाएं बनाने के लिए मशहूर है। उनमें वहां बहने वाली गंगा नदी की मिट्टी को मूर्तियों के लिए सबसे अच्छा और शुभ माना जाता है। सियार पार्क के कालीबाड़ी मंदिर में मौजूद कार्यशाला में भी परंपरा और शुद्धता बनाए रखने के लिए मिट्टी वहीं से आती है।
1: अच्छा, मिट्टी आप वहां से लेकर आते हैं?
2: वहां से मिट्टी ले आते हैं, और कुछ मिट्टी यूपी का उस साइड से आता है, खेत का भी मिट्टी होता है, तो मिला के आता है। इतना सारा मिट्टी तो लाना पॉसिबल नहीं है, तो जो फेस वगैरह होता है, जो हमारा जो कलकत्ता मिट्टी स्पेशल
1: जो आप बना ही रहे हैं,
2: बिल्कुल बिल्कुल ये कलकत्ता का मिट्टी ले आते हैं, और बाकी यूपी का पंजाब का जो खेत होता है ना, खेत का मिट्टी भी आता है।
1: ठीक है, यानी कि ये पर्टिकुलर रहता है कि माँ का और जो तमाम मूर्तियों का जो फेस है वो जो बंगाल से मिट्टी आती है वो उसी से बना है।
2: फिनिशिंग अच्छा होता है, चिकनवर अच्छा होता है, उसमें कंकड़ कम होता है, फिनिशिंग अच्छा है, काम करने में अच्छा वो होता है। और दूसरी जगह मिट्टी थोड़ा कंकड़ होता है, रेत होता है, वो दूसरा काम पे आता है।
0: सनातन परंपरा में शारदीय नवरात्र का विशेष महत्व है। माना जाता है कि इस दौरान माता की पूजा अर्चना से देवी दुर्गा की खास कृपा प्राप्त होती है। माँ दुर्गा के 9 रूपों की विधिवत पूजा अर्चना भक्तों के लिए शुभ मानी जाती है। ऐसे में शारदीय नवरात्र की विशेष तैयारियां होती हैं। प्रतिमाओं के आकार लेने के दौरान हर तरफ माँ के जयकारे गूंजने लगते हैं। दिल्ली से नवजोत चंधावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: तो जैसा कि हम हर बार कहते हैं कि उत्सव यानी गुड न्यूज टुडे, तो तैयार हो जाइए, तमाम रंग आपको लगातार जीएनटी पर दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, अच्छी खबरें जारी हैं, देखते रहिए जीएनटी।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है।
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: देखिए, इन दिनों पितृपक्ष में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भू वैकुंठ नगरी श्री बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं, जहां वो भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के बाद ब्रह्म कपाल तीर्थ में अपने पितरों का तर्पण और पिंडदान कर रहे हैं। पितरों की मुक्ति के लिए श्री हरि के इस पावन धाम की दिव्यता ही ऐसी है कि ब्रह्म कपाल में पिंडदान और तर्पण की मान्यता और परंपरा को अब विदेशी भी आत्मसात करते नजर आ रहे हैं। रूसी तीर्थयात्रियों ने यहां विधि विधान के साथ अपने पितरों के निमित्त पिंडदान और तर्पण किए।
2: जहाँ बहती है अलकनंदा की पवित्र धारा, उसी बद्रीनाथ के आंगन में पितरों की आत्मिक शांति के लिए पिंडदान हो रहा है। देवभूमि उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में जहाँ चार धाम यात्रा दर्शन के रंग बिखरे हैं, हर तरफ श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है, तो वहीं इन दिनों पितृपक्ष के दौरान भगवान विष्णु का ये धाम सिर्फ चार धाम दर्शन का केंद्र ही नहीं, बल्कि पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता और स्मरण का भी पवित्र स्थल बना हुआ है। दरअसल यहाँ के ब्रह्म कपाल में मोक्ष की कामना और पितरों के प्रति श्रद्धा जैसी भावनाओं को लेकर अच्छी खासी संख्या में श्रद्धालु तर्पण के लिए पहुँच रहे हैं, अपने पूर्वजों के निमित्त पिंडदान कर रही है। श्राद्ध परंपरा का भगवान बद्री विशाल के आंगन में होना ही इन तमाम श्रद्धालुओं को पुरखों के प्रति सम्मान और आध्यात्मिकता की अनुभूति दे रहा है।
3: कहा गया है इस स्थान पर पिंड देने से सात पीढ़ियों के पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ पर भगवान बद्री विशाल के बाल मोक्ष मनुष्य अपने पितरों को पिंड और तर्पण देता है, सात पीढ़ियों के पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और आप देख रहे हैं आजकल पितृपक्ष में काफी संख्या में लोग अपने पितरों को उद्धार के लिए ब्रह्म कपाल आए।
2: पितरों की मुक्ति के लिए श्री हरि के इस पावन धाम की दिव्यता ही ऐसी है कि यहाँ कराए जाने वाले पिंडदान और तर्पण को लेकर श्रद्धालुओं का विश्वास अटूट है। यही कारण है कि ब्रह्म कपाल में पिंडदान और तर्पण की मान्यता और परंपरा को अब विदेशी भी आत्मसात करते दिख रहे हैं। दरअसल भारत आए सात रूसी तीर्थयात्रियों ने भी यहाँ विधि विधान के साथ अपने पितरों के निमित्त पिंडदान और तर्पण किया। वैसे पहले भी सनातनी परंपरा उसके प्रति आस्था विदेशियों को काफी आकर्षित करती रही है, ऐसे में बद्रीनाथ धाम में विदेशी श्रद्धालुओं का अपने पुरखों का पिंडदान एक बार फिर दर्शा रहा है कि आस्था की कोई सीमा नहीं होती। ब्रह्म कपाल में पिंडदान का धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कर इन विदेशी श्रद्धालुओं का सनातनी परंपराओं और मान्यताओं के प्रति भाव जता रहा है कि संस्कृति अलग हो सकती है, लेकिन पूर्वजों के प्रति श्रद्धा का भाव कमोबेश सभी जगह पर एक ही जैसा है। चमोली से कमल नयन सिलोरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, बुद्ध स्टूडियो।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: गुवाहाटी वनडे में भारत की शानदार जीत, वेस्ट इंडीज को 8 विकेटों से हराया, सीरीज में 2-0 की बढ़त, 44वें ओवर में चेस किया 406 रन का लक्ष्य। कप्तान शुभमन गिल ने रचा इतिहास, 117 गेंद में जड़ा दोहरा शतक, सबसे तेज शतक बनाने का बनाया विश्व रिकॉर्ड। एशियन गेम्स में भारत की चमक बरकरार, 87 किलोग्राम ग्रीको रोमन रेसलिंग इवेंट में सुनील कुमार ने जीता ब्रॉन्ज, आज तीरंदाजी में 3 और शूटिंग में आया 1 गोल्ड, भारत के खाते में कुल 10 गोल्ड। पिछले 5 वर्षों में इस साल सितंबर महीने में सबसे ज्यादा साफ रही दिल्ली की हवा, औसत EQI 102 दर्ज किया गया। कोलकाता में नवरात्र की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं, बर्धमान में मां दुर्गा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे कारीगर। ग्यारह अक्टूबर को कलश स्थापना के साथ ही शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो जाएगी, 9 दिनों तक माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना होगी। कोलकाता समेत पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की अद्भुत छटा देखने को मिलती है, जिसकी तैयारियां तेजी से चल रही हैं। आज हम आपको कोलकाता की एक ऐसी जगह दिखाने जा रहे हैं जो देवी देवताओं की मूर्ति बनाने के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है।

0: आस्था का पर्व और माता रानी के स्वागत की तैयारी। कहीं माँ दुर्गा की भव्य प्रतिमाएं बनाई जा रही है, तो कहीं पंडाल सजाए जा रहे हैं। आदि शक्ति आएंगी, अपने भक्तों पर कृपा बरसाएंगी। 9 दिनों के भक्ति के इस उत्सव में हर तरफ जय माता दी के जय घोष की गूंज सुनाई देगी। इसी के चलते देश भर में नवरात्र की तैयारियां तेजी से आगे बढ़ रही है। पश्चिम बंगाल और विशेषकर कोलकाता के लिए दुर्गा पूजा केवल एक धार्मिक त्योहार नहीं, बल्कि बंगाली संस्कृति, कला, भाईचारे और अर्थव्यवस्था की धड़कन है। इसलिए यहाँ इन दिनों मूर्तिकारों की व्यस्तता कहीं अधिक बढ़ी हुई है। माँ दुर्गा की छोटी से लेकर बड़ी मूर्तियों को वो तेजी से आकार देने में जुटे हुए हैं। रंग रोगन का काम चल रहा है।
1: माता दुर्गा की मूर्ति सज धज के बन ठन के जाती है इसी कुमोटुली से, और इस बीच कुमोटुली में अभी बहुत ही व्यस्तता चल रहा है। लोगों का भी यहाँ पे आना जाना बन रहा है। कोई लोग आ रहा है दोस्तों के साथ फोटो खींचने, कोई यहाँ पे पूजा के पहले ही पूजा का वाइब्स लेने कुमोटुली पहुंच रहा है, माता दुर्गा की मूर्ति को दर्शन कर रहा है।
0: कोलकाता का कुम्हार टोली इलाका दुनिया भर में माँ दुर्गा की पारंपरिक और कलात्मक मूर्तियां बनाने के लिए प्रसिद्ध है। करीब 300 साल पुरानी कुम्हारों और मूर्तिकारों की इस बस्ती को पॉटर्स कॉलोनी कहा जाता है। यहाँ देवी दुर्गा की मूर्तियां विशेष रूप से गंगा की मिट्टी, बांस और भूसे के ढांचे पर हाथों से गढ़ी जाती है।
2: स्टूडियो में कोई 20 बना रहा, के 15 बना रहा, के 10 बना रहा, ऐसा करके होता। कोई 50 भी बनाया, ऐसा नहीं है जो 10-20 ना, 50 भी बना रहा, ऐसा होता है। ये तो गुण नहीं पाएगा, तो सारा कलकत्ता में बाहर में सब हम लोग की मूर्ति भेज रहा है।
0: कुम्हार टोली में मिट्टी की मूर्तियां बनाने वाले लगभग 300 स्टूडियो है, जहां कारीगर मूर्तियों को अब अंतिम रूप देने में व्यस्त है। लगभग सभी स्टूडियो को पहले ही एडवांस बुकिंग मिल चुकी है। यहां बनी दुर्गा प्रतिमाओं की केवल कोलकाता या देश के दूसरे हिस्सों में ही नहीं, बल्कि विदेश तक डिमांड है। अब तो यहां के मूर्तिकार प्रतिमाओं के निर्माण में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक का इस्तेमाल कर रहे हैं।
3: मेरा इस साल जो हम जो ठाकुर बनाते हैं 12-14 माने, वो आज से 2 मास पहले वो बुकिंग हो गया। अभी जो AI से मैं रोबोटिक दुर्गा किया है उत्तर दिनाजपुर कालियागंज में, वो मारात्मक वायरल हो गया, ठीक है। उसका जो प्रतिमा है वो रोबोटिक है, इसका जो AI दुर्गा, और उसका जो फेस है वो माँ का जो फेस, वही फेस मैंने रखा है, लेकिन AI नहीं किया। जो तस्वीर मेरे पास आया है वो माँ का थोड़ा सा AI था, लेकिन ये तो माँ है, इसलिए माँ को मैं एक मिन्मय रूप मैंने दिया, ठीक है। उसको जो आँख, उसको जो सारीज, उसको जो सरस्वती, लक्ष्मी, कार्तिक, गणेश जो है, उसको जो महिषासुर, उसके जो लायन, सब आँखों में LED लाइट्स जलेंगे।
1: अच्छा,
3: साड़ी में भी, और जो अस्त्र है फाइबर का, उसका भीतर में LED लाइट्स है, वो ब्लिंक करेगा।
1: अच्छा।
3: ठीक में, और उसका जो पैंडल है, वो जो रोबोट है वो घूमेगा।
1: अच्छा।
3: वो बातचीत करेगा, अब जो बोला वो बात वो आंसर दे देंगे।
4: बागमारी का जो है और आदर्श जगह जो सब नया बना हुआ है, ये ब्रिटिश जमाना से चला हुआ आ रहा है, और अभी तक लोग, आप देख, अगर आप यहाँ सर्वे कीजिएगा, देखिएगा सबसे ज्यादा मूर्ति यहीं पर,
5: यहाँ पे मूर्ति, सारा मूर्ति यहीं पे बनता है, यहीं से स्टार्टिंग हुआ है, और हम लोग भी आज बचर बचर यहीं से आके लेके जा रहे हैं।
0: यहाँ मूर्ति का ऑर्डर दे चुके लोग ही नहीं पहुँच रहे, बल्कि बड़ी संख्या में कला प्रेमी भी आ रहे हैं, जो मूर्तिकारों और कारीगरों की मेहनत को करीब से देखने और समझने की इच्छा रखते हैं। यहाँ देवी माँ की दिव्य मूर्तियों को देखकर वो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। मोबाइल में तस्वीरें कैद करने के साथ खुद की तस्वीर खिंचवाते भी नजर आते हैं।
6: मैंने बहुत सुना था बट आज महसूस किया और बहुत अच्छा लग रहा है, अद्भुत जिसको बोलते हैं ना वो एक्सपीरियंस हुआ और बहुत ऐसे डिवाइन सी फीलिंग हो रही है।
7: मैं तो उत्साहित थी ये देखने के लिए कि क्या कैसे बनता है, वो मुझे बहुत जानना था। तो इतना सुंदर है कि मतलब उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते हम, तो बहुत ही सुंदर है, अद्भुत है ये नज़ारा। अभी मैंने माँ का जो मूर्ति बनते हुए कैसे बनाते हैं और कितने मेहनत से बनाते हैं वो देखा, और कितने लगन से बनाते वो चीज़ देखा, तो वो चीज़ महसूस कर रही हूँ।
8: यहाँ पर आज हम कैसे शुरुआत होती है, कैसे पुआल और मिट्टी से उनको एक पहले एक स्ट्रक्चर देते हैं, फिर उसकी आप प्लास्टर ऑफ पेरिस करते हैं, प्राइमर और कलर और फिर ज्वेलरी, तो वो जो पूरी की पूरी जर्नी हम पहले शुरू गली से शुरू होते और गली के अंत तक आते आते माँ का पूरा प्रारूप ही चेंज हो जाता है, और यहाँ से फिर जो पंडाल तक का सफर है वो बिल्कुल ही अद्भुत रहता है।
9: दुर्गा पूजा के शुरू होने से पहले ही ये जगह लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, इसके चलते यहाँ लोगों की आवाजाही बढ़ी हुई है और त्योहार से पहले ही उत्सव जैसा माहौल बन चुका है। कोलकाता से राही हलदार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
10: बात करेंगे अवधपुरी की, जहां पर 7 नवंबर को दिव्य आयोजन की तैयारियां चल रही हैं। इस दिन वहां की छठा देखने वाली रहेगी। अयोध्या का कोना कोना रोशनी से सराबोर हो जाएगा। इस विशेष अवसर के लिए विशेष टूर पैकेज की घोषणा भी कर दी गई है। इन सबके बीच अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक अलग तैयारियां चल रही है।

0: प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या, जहां बड़ी संख्या में भक्त रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। यहां इन दिनों दीपोत्सव की तैयारियां चल रही हैं। साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर एनएसजी कमांडोज की चहलकदमी भी देखी जा सकती है। अवधपुरी में इस बार और भव्यता के साथ दीपोत्सव मनाने की तैयारी है, और इसी को लेकर जहां एक तरफ मजदूर कामकाज में जुटे हैं, तो वहीं अधिकारी लगातार निरीक्षण करते नजर आए।
1: हम लोग यहां क्वीन हो पार्क में उपस्थित हैं। यहां पर हम लोग की प्लानिंग है कि कुछ प्रदर्शनी या झांकी जैसा कुछ दीपोत्सव के दौरान लगाया जाएगा, तो उसी के संबंध में इस पार्क का निरीक्षण किया जा रहा है। इसके अलावा राम की पैड़ी, चौधरी चरण सिंह घाट, सरयू तीर्थग्रह, जो हेलीपैड बनता है, रामकथा पार्किंग, सभी स्थानों का निरीक्षण किया जा रहा है। और कहीं पर भी जो छोटी मोटी चीजें पाई जा रही है, जिनके बारे में निर्देश दिए जाने हैं, जिनको ठीक किया जाना है, वो लगातार किया जा रहा है। लगातार इस प्रकार के निरीक्षण जारी रहे।
0: इस बार के दीपोत्सव को और ज्यादा शानदार बनाने के लिए श्रद्धालुओं के लिए एक खास योजना तैयार की गई है। UPSTDC ने दीपोत्सव अयोध्या टूर पैकेज तैयार किया है। श्रद्धालु और पर्यटक राम मंदिर, हनुमान गढ़ी, कनक भवन, नागेश्वर नाथ मंदिर के दर्शन भी कर पाएंगे।
2: एक अलग नजारा है, एक अलग दृश्य होगा जब इस बार देश से नहीं विदेशों से भी खास मेहमान आएंगे, इस दीपोत्सव में शामिल होंगे, जहां अब की बार एक वर्ल्ड रिकॉर्ड एक नया बनाया जाएगा। यहाँ अगर आते हैं टूरिस्ट तो उनके लिए खास इंतजाम भी किए गए हैं। राम मंदिर हो, कनक भवन हो या हनुमानगढ़ी, हर जगह वो दर्शन करेंगे, उनके रुकने के खास इंतजाम किए गए हैं। तो ये पूरी राम की पैड़ी को जो है पूरा दुल्हन की तरीके सजाया जा रहा है, क्योंकि बहुत जल्द वो 7 नवंबर की तारीख है जब विशालकाय दिए, इलेक्ट्रॉनिक दिए, हर एक चीज वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा इस राम की पैड़ी पे। इसको भव्य और दिव्य रूप दिया जा रहा है।
0: दीपोत्सव को लेकर तैयारियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं। राम की पैड़ी पर विजिटर गैलरी और सेल्फी पॉइंट्स भी तैयार किए जा रहे हैं। इस बार 30 लाख दीप जलाने का लक्ष्य है। श्रद्धालु लेजर और ड्रोन शो का आनंद भी उठा पाएंगे। सरयू घाट पर 2100 वैदिक आचार्य महाआरती करेंगे। 240 से अधिक मंदिर और मठों में भी दीप प्रज्वलित होंगे। रामकथा पार्क से लेकर राम की परिधि तक लगभग 1 दर्जन जगहों पर अलग अलग कार्यक्रम होंगे। सरयू के तट पर श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, नए घाट, एम्फीथिएटर और फूड कोर्ट्स जैसे आकर्षक केंद्र भी बनाए जाएंगे। इन सब के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG की टीम अयोध्या में समीक्षा और मॉक ड्रिल करती नजर आई। NSG की टीम राम मंदिर से लेकर हनुमानगढ़ी तक सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेती नजर आई। कनक भवन में भी NSG की टीम सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रही थी। NSG की टीम सभी महत्वपूर्ण स्थलों का निरीक्षण कर रही है और मौजूदा व्यवस्था की समीक्षा के साथ साथ संभावित आपात परिस्थितियों से निपटने की तैयारियों को भी परखा जा रहा है।
2: निरीक्षण किया जा रहा है। NSG कमांडेंट यहाँ पे लगातार घूम रहे हैं। राम मंदिर हो चाहे हनुमानगढ़ी हो, हनुमानगढ़ी परिसर में पूरी डायरेक्शन दी गई है। बाकायदे कंट्रोल रूम पूरे चेक किए गए हैं। तो यहाँ लगातार जो है अयोध्या की राम नगरी की सुरक्षा को लेकर खास इंतजाम किए जा रहे हैं। लगातार यहाँ पे निगरानी की जा रही है, लगातार चप्पे चप्पे पर NSG की तैयारी है।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अयोध्या में एक नया NSG क्षेत्रीय केंद्र बनाने की घोषणा की है। माना जा रहा है कि NSG कमांडोज की मौजूदगी और लगातार चल रही मॉक ड्रिल उसी का हिस्सा है, और आने वाले समय में अयोध्या की पूरी सुरक्षा व्यवस्था में NSG की अहम भूमिका तय की जा सकती है। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: अभी तक हरी सब्जी को सेहत और स्वास्थ्य के लिहाज से सबसे पौष्टिक आहार माना जाता रहा है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के वनस्पति विज्ञान विभाग की माने तो यमुना के किनारे उगाई जाने वाली सब्जियों के जरिए दिल्ली की थाली में यमुना का प्रदूषण पहुंच रहा है। जी हां, DU की रिसर्च के मुताबिक टेस्ट के दौरान कई सब्जियों के सैंपल्स में क्रोमियम, लेड, कैडमियम और ऐसे पदार्थ पाए गए हैं जिनसे मेटल्स मिले हैं, जो स्वास्थ्य के लिए अगर देखा जाए तो बहुत हानिकारक हैं। शरीर में इनके पहुंचने से कैंसर होने तक का खतरा बढ़ जाता है।

0: स्वस्थ और सेहतमंद रहने की ख्वाहिश हर किसी की होती है। नियमित व्यायाम, भरपूर नींद के अलावा संतुलित आहार को अपनाने की सलाह दी जाती है। और जब पौष्टिक भोजन की बात आती है तो उनमें सबसे ऊपर हरी सब्जियों की गिनती होती है। हालांकि दिल्ली में हरी सब्जियां खाने की सलाह देना भारी पड़ सकता है, वो भी तब जब ये सब्जियां यमुना नदी के किनारे उगाई गई हों। दिल्ली में गंदगी, प्रदूषण और दुर्गंध की वजह से अभिशप्त यमुना से एक नई चिंता जुड़ गई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के वनस्पति विभाग की चौंकाने वाली एक रिसर्च सामने आई है जो सीधे तौर पर आपकी सेहत पर बुरा असर डाल सकती है। सिर्फ यही नहीं बल्कि आपको अपने खान पान के आदतों में बदलाव के लिए मजबूर भी कर सकती है। रिसर्च के मुताबिक यमुना के आसपास की मिट्टी और उसमें उगाई जा रही कुछ सब्जियों के सैंपल में हैवी मेटल्स यानी भारी धातुएं पाई गई हैं।
1: दिल्ली में यमुना किनारे इस वक्त हम उसी जगह पर मौजूद हैं जहां से प्रोफेसर दीनबंधु साहू ने सैंपल कलेक्ट किए थे। ये यमुना का किनारा आप देख रहे हैं और यमुना का पानी अभी भी पूरी तरह से काला है, बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, पारदर्शी नहीं है, मतलब पानी बिल्कुल भी साफ नहीं है। इसी इलाके से, यमुना के इसी स्ट्रेच से लगातार 2 साल तक प्रोफेसर दीनबंधु साहू सैंपल लेते रहे। उन्होंने पानी का सैंपल लिया, मिट्टी का सैंपल लिया, फिर उनसे जो सब्जियां उगाई जा रही थी उनका सैंपल लिया। और सब्जियों में भी जो सैंपल लिया वो सिर्फ एक बार नहीं बल्कि किसी सब्जी के 3 से 4 बार उसके सैंपल अलग अलग उसकी फसल के वक्त लिए गए और उन सैंपल में वो सारी खतरनाक चीजें मिली हैं।
0: दिल्ली यूनिवर्सिटी के वनस्पति विज्ञान विभाग की एक टीम यमुना के जल में प्रदूषण के स्तर को लेकर लंबे समय से रिसर्च कर रही है। इसी कड़ी में यमुना के आसपास में मिट्टी की भी जांच पड़ताल की गई, तब उसमें क्रोमियम, लेड, कैडमियम, आर्सेनिक और निकेल जैसी भारी धातुएं पाई गई। इसके बाद टीम ने उसी इलाके में उगाई जाने वाली सब्जियों के सैंपल भी लिए। प्याज, आलू, मेथी, धनिया, सरसों, पालक और सफेद मूली में क्रोमियम, लेड, कैडमियम, आर्सेनिक और निकेल जैसे हैवी मेटल्स मिले जो स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है।
2: पहले हमने देखा कि पानी जो है अलग अलग जगह से जब हमने लिए देखा कि हाईली पॉल्यूटेड है, और वही पानी में जब आपका सिंचाई हो रहा है सारे चीज़ें यमुना के किनारे, तो फिर हमने पहले सॉयल का टेस्टिंग किया। सॉयल टेस्टिंग में देखा गया है कि ये काफ़ी मात्रा में उसमें हैवी मेटल्स है। तो हमने सोचा है कि जो आपका यहाँ खेती हो रहा है अलग अलग टाइप का सब्जी का, तो क्यों उसको ला के हम टेस्टिंग ना करें। तो उसको जब हमने टेस्टिंग किए उसमें देखे कि काफ़ी भारी मात्रा में आपको हैवी मेटल्स पाया गया है, चाहे कैडमियम हो, क्रोमियम हो, आर्सेनिक हो, अलग अलग वेजिटेबल्स है, प्याज है, आलू है, मेथी है, धनिया है। तो उसमें हमने देखा कि ये जो कैंसर कॉजिंग हैवी मेटल्स है वो काफ़ी हैवी मात्रा में पाया गया है।
0: दिल्ली में यमुना नदी की 22 किलोमीटर लंबाई है। कई इलाकों में नदी के दोनों किनारों पर खेती होती है। यही वजह है कि रिसर्च टीम ने किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले पानी, मिट्टी और सब्जियों के 3 अलग अलग बार सैंपल लिए। हर बार एक ही तरह का परिणाम सामने आया। कुछ मामलों में हैवी मेटल्स की मात्रा तय अंतर्राष्ट्रीय मानकों से कई गुना ज्यादा मिली। इस दौरान यमुना के पानी में अलग अलग तरह के केमिकल के अलावा कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया भी काफी ज्यादा मात्रा में मिला।
2: एक सैंपल्स में आप कभी कोई डाटा को वैलिडेट नहीं कर पाएंगे। सैंपल्स हमेशा ट्रिप्लिकेट में होता है, तो 3 बार सैंपल्स को ट्रिप्लिकेट में हमने किया और रिजल्ट्स वही निकला कि हर हैवी मेटल्स का जो है काफ़ी हाई लेवल में पाया गया है। अगर आप देखेंगे दिल्ली में यमुना 22 किलोमीटर का स्ट्रेच है, पानी बिल्कुल काला है। यमुना 7-8 स्टेट में लगभग 1800 किलोमीटर का स्ट्रेच है, बट ये जो स्ट्रेच है ये काफ़ी हेविली पॉल्यूटेड है और पानी में तो कोलीफॉर्म बैक्टीरिया जो है जो सेहत के लिए पूरा हानिकारक है, उसका लोड भी बहुत ज़्यादा है। तो जब खेती होता है तो पानी वहाँ से आता है और सीपेज होकर भी पानी आता है।
0: दिल्ली में आजीविका चलाने के लिए कई लोग यमुना किनारे सब्जियां उगाने के काम से जुड़े हैं, जिनकी वजह से जहरीली सब्जियां बाजार में बिकने के लिए पहुंच जाती हैं। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि अगर इसी तरह के प्रदूषित पानी का इस्तेमाल खेती में किया जा रहा है तो उसका असर सब्जियों पर कितना पड़ सकता है और वो स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है। यह समझना मुश्किल नहीं है, सब्जियों में सुरक्षित सीमा से कई गुना अधिक भारी मात्रा में भारी धातुओं का मिलना जानलेवा कैंसर को न्योता देना है।
1: जैसे अभी यमुना किनारा है और मैं आपको दिखाऊं तो आप वहां पर एक वो झोपड़ी देख पा रहे हैं और उसी जगह पर ठीक उसके पास में खेती की जा रही है सब्जियों की। फिलहाल वहां जाना अभी हमारे लिए संभव नहीं है, लेकिन ऐसे पूरे ही स्ट्रेच पर आपको यमुना के जगह जगह पर लोग दिख जाएंगे जो कि सब्जियों को उगाते हैं। और आप किसी भी कोई भी ऐसे भारी तत्व जो किसी सब्जी में होते हैं या फिर फसल में होते हैं तो वो जब शरीर में जाते हैं तो आपके शरीर को वो कैंसर की तरफ ले जाते हैं, चाहे वो निकेल हो, चाहे वो क्रोमियम हो या फिर लेड हो। इन सारी चीज़ों की मात्रा सब्जियों में कई गुना ज़्यादा मिली है, वो सब्जियां जो इसी पानी से उगाई जा रही हैं।
0: दरअसल दिल्ली में यमुना में छोटे बड़े 22 नाले गिरते हैं, केवल 11 नालों का पानी ट्रीट हो रहा है। ऐसे में घरों से निकलने वाला गंदा पानी यमुना में सीधा गिर रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली की लाइफ कहे जाने वाली यमुना के किनारे पैदा होने वाली सब्जियों का ये हाल हो गया है। सबसे बड़ी बात, खेतों से लेकर हमारे किचन तक पहुंचने के बाद सब्जियों को 3-4 बार साफ पानी से धोने का भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। सब्जियों की संरचना के लिए जिम्मेदार पादप कोशिकाएं यानी प्लांट सेल से हैवी मेटल्स का निकलना नामुमकिन होता है।
1: एक बात आपको हम और बता दें कि अमूमन ये मिथ हम लोग मानते हैं कि किसी सब्जी को अगर लेकर आए हैं तो उसे 3-4 बार आप गर्म पानी से साफ कर लीजिए ताकि जो उसमें कीटाणु हैं, जो दिक्कतें हैं वो निकल जाएं। लेकिन प्रोफेसर दीनबंधु साहू का साफ साफ कहना है कि सब्जी को महज गर्म पानी से धोने भर से उसमें जो दिक्कतें हैं वो बाहर नहीं निकलने वाली, क्योंकि अगर इसी पानी से उनकी खेती की जा रही है, इसी पानी का इस्तेमाल उन सब्जियों को उगाने में किया जा रहा है तो वो सारी चीज़ें उन सब्जियों के सेल्स में होंगी, जिसे निकालना साफ करना बेहद मुश्किल है। मतलब साफ है कि अगर आप इस सब्जी का सेवन कर रहे हैं तो आपके शरीर में दिक्कत होना तय है, आज नहीं तो कल सही। कुल मिलाकर इससे बचने के क्या तरीके हो सकते हैं वो तमाम तरीके भी बताए गए हैं, लेकिन फिलहाल आप लोगों के पास क्या ऑप्शन है, आपके पास बस एक ही ऑप्शन है कि जब भी आप सब्जी वाले के पास जाएं तो पहले उससे पूछें कि ये सब्जी कहाँ उगाई गई है, इसका सोर्स क्या है, ताकि आपको जानकारी मिल सके कि उसे उगाने में किस तरह के पानी का इस्तेमाल किया गया है, कहीं वो पानी यमुना के नदी का तो नहीं है, बिल्कुल काला तो नहीं है, क्योंकि अगर उसकी उगाई सब्जियाँ आप पीते हैं तो शायद आप धीरे धीरे कैंसर की तरफ बढ़ रहे हैं। कैनामिन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, दिल्ली।
3: खास कार्यक्रम में इतना ही, देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज़ टुडे के साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। Good News Today, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: Good News Today इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
6: और वक्त है फैक्ट चेक की आखिरी सफर का, आपको लिए चलते हैं वायरल दुनिया में, दिखाते ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं और जिन्हें खूब पसंद किया जा रहा है।
7: छोटे छोटे बच्चे और दूसरी तरफ सिक्योरिटी गार्ड, दोनों के बीच शुरू हुआ टग ऑफ वॉर का मुकाबला। बच्चे भी पूरी ताकत लगाकर रस्सी खींच रहे थे, लेकिन तभी सिक्योरिटी गार्ड ने ऐसा दाव चला कि पूरा खेल ही पलट गया। गार्ड ने बच्चों की तरफ कैंडी फेंक दी, कैंडी देखते ही बच्चों ने रस्सी छोड़ दी और कैंडी उठाने दौड़ पड़े। बस फिर क्या था, गार्ड ने मुकाबला जीत लिया। दिल्ली मेट्रो में सफर के दौरान अगर फोन या पर्स कहीं छूट जाए तो परेशानी होती है, लेकिन सोचिए अगर इसी भीड़ में किसी का छोटा बच्चा अपने माता पिता से बिछड़ जाए तो उस वक्त परिवार पर क्या गुजरती होगी। ऐसा ही एक भावुक मामला दिल्ली मेट्रो की मजेंटा लाइन से सामने आया है। करीब 8 से 10 साल का एक बच्चा अपनी माँ से बिछड़ गया। बच्चे को अपने माता पिता के नाम और घर का पता तो मालूम था, लेकिन घर में किसी का मोबाइल नंबर याद नहीं था। ऐसे में मेट्रो स्टाफ ने जिम्मेदारी संभाली और आखिरकार बच्चे को उसकी माँ से मिलवा ही दिया। लोगों को ये वीडियो खूब पसंद आ रहा है।
8: बच्चे के पिताजी आप हैं?
7: क्लासरूम में आमतौर पर बच्चे पढ़ाई करते हुए नजर आते हैं, लेकिन कभी कभी पढ़ाई के बीच कुछ ऐसे पल भी आ जाते हैं जो पूरे माहौल को खुशनुमा बना देते हैं। ऐसा ही एक प्यारा वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है। बच्चे एक एक भजन पर डांस करते दिखाई दे रहे हैं। बच्चे के चेहरे की मासूम मुस्कान और उसका उत्साह देखकर आसपास मौजूद टीचर्स भी खुश हो गए। बच्चों के डांस का सबसे प्यारा हिस्सा उनका एक्सप्रेशन और खुशी दिखाई देती है। वो जिस तरह से गाने पर झूमते हैं उसे देखकर किसी के भी चेहरे पर मुस्कान आ सकती है।

0: फिल्म हनुमान अंश का लोकप्रिय गाना मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान को इस विदेशी शख्स ने अपने अंदाज में गाकर लोगों का दिल जीत लिया।
1: भरोसे हनुमान सागर में नया
0: आवाज में भक्ति का भाव साफ महसूस किया जा सकता है। लोग विदेशी शख्स की आवाज और उसके अंदाज की तारीफ कर

0: सर्च का विकल्प है, उस पर टैप करें और व्हाट्सएप लिख कर खोजें।
1: बार सब खोल लिया मैंने।
0: अब आप व्हाट्सएप में हैं, नीचे बाईं ओर जो अपडेट्स का विकल्प है उसे दबाएं।
2: माँ को व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाना सीखना था तो उन्होंने मदद के लिए बेटे को नहीं बल्कि गूगल के एआई टूल जेमिनी को अपना गाइड बना लिया।
0: जी हाँ, स्क्रीन के निचले बाएं कोने में जो गोल आइकॉन है वो अपडेट्स का है, उसे दबाएं।
1: अच्छा, दबा दिया।
0: जी हाँ, आप अपडेट्स वाली स्क्रीन पर आ गई हैं। अब नया स्टेटस लगाने के लिए सबसे ऊपर ऐड स्टेटस पर टैप करें या फिर ऊपर कोने में दिए गए कैमरा या पेंसिल आइकॉन का उपयोग करें।
2: माँ और एआई के बीच हुई ये बातचीत इतनी प्यारी और मजेदार है कि लोग इस वीडियो को बार बार भी देख रहे हैं।
0: बहुत अच्छी। अब नीचे दाहिने कोने में दिए गए हरे रंग के तीर वाले बटन को दबा दें ताकि आपके स्टेटस पर लग जाए।
1: लगा दी।
0: बहुत बढ़िया, अब आपकी फोटो स्टेटस पर सफलतापूर्वक लग चुकी है।
1: सुंदर आई
3: हो गए 3-2, 3-2 हो गए, 3-1 हो गए, ये भी एक जादू है।
2: ट्रैफिक के बीच बाइक पर तीन लोग जा रहे थे तभी सामने पुलिसकर्मी नजर आ गया। इसके बाद ऐसा जुगाड़ हुआ कि बाइक पर अचानक सिर्फ दो लोग रह गए। लगा कि चलान से बचने की तरकीब काम कर गई, लेकिन कांस्टेबल की नजरों से इस जादू बच नहीं पाया। उसने तुरंत पूरी कहानी समझ ली और फिर जो अंदाज अपनाया उसे देख कर लोग मुस्कुरा उठे।
3: हो गए 3-2, 3-2 हो गए, 3-1 हो गए, ये भी एक जादू।
2: दरअसल पुलिसकर्मी के पास पहुंचते ही बाइक पर बैठा एक व्यक्ति तुरंत नीचे उतर गया और बिना कुछ कहे ऐसे आगे बढ़ने लगा जैसे उसका बाइक से कोई लेना देना ही ना हो। उसे शायद लगा कि इस तरह पुलिस की नजरों से बच जाएगा, लेकिन कांस्टेबल की नजरें पहले ही उसकी चाल पकड़ चुकी थी। पुलिसकर्मी ने उसे जाते हुए देखा तो तुरंत रोक लिया, फिर मजेदार अंदाज में पूछा, अरे कहाँ जा रहे हो, 3-2 कैसे हो गए?
3: हो गए 3-2, 3-2 हो गए, 3-1 हो गए, ये भी एक जादू है। अरे कहाँ जा रहे हो,
4: क्या होगा,
3: 3-2 कैसे हो गए?
2: बस यही वो पल था जिसने पूरे वीडियो को मजेदार बना दिया। इसके बाद मामला सिर्फ चालान तक नहीं पहुंचा। कांस्टेबल ने शख्स को समझाया कि बाइक पर तीन लोगों के बैठने के बजाय वह ऑटो से जाए, यानी पुलिस से बचने के लिए की गई छोटी सी तरकीब आखिरकार काम नहीं आई।
3: ये तो बहुत जरूरी है।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ला,
6: इसीलिए खबर के
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
7: गुवाहाटी वनडे में भारत की शानदार जीत, वेस्ट इंडीज को 8 विकेटों से हराया। सीरीज में 2-0 की बढ़त, 44वें ओवर में चेस किया 406 रन का लक्ष्य। कप्तान शुभमन गिल ने रचा इतिहास, 117 गेंद में जड़ा दोहरा शतक, सबसे तेज शतक बनाने का बनाया विश्व रिकॉर्ड। एशियन गेम्स में भारत की चमक बरकरार, 87 किलोग्राम ग्रीको रोमन रेसलिंग इवेंट में सुनील कुमार ने जीता ब्रॉन्ज। आज तीरंदाजी में 3 और शूटिंग में आया 1 गोल्ड, भारत के खाते में कुल 10 गोल्ड। पिछले 5 वर्षों में इस साल सितंबर महीने में सबसे ज्यादा साफ रही दिल्ली की हवा, औसत EQI 102 दर्ज किया गया। कोलकाता में नवरात्र की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं, वर्धमान में मां दुर्गा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे कारीगर।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। देश में त्योहारों की मौसम की शुभ शुरुआत होने वाली है। 11 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र का शुभारंभ हो रहा है। ऐसे में देश के अलग अलग शहरों में मंदिर और पंडाल सजाए जा रहे हैं। माँ दुर्गा की मूर्तियों के निर्माण का काम अब अंतिम चरण में है। यूं तो देश भर में नवरात्र पर माँ दुर्गा की भक्ति का उत्सव मनाया जाता है, लेकिन नवरात्र का सबसे गाढ़ा रंग चढ़ता है पश्चिम बंगाल पर। बाकी जगहों पर तो उत्सव के रंग नवरात्र में बिखरेंगे, लेकिन कोलकाता का एक कोना ऐसा भी है जहां वास्तव में उत्सव पूजों की शुरुआत से पहले नजर आता है। कोलकाता का कुमारटुली इलाका देवी प्रतिमाओं के निर्माण के लिए दुनिया भर में काफी प्रसिद्ध है। कुमारटुली में इन दिनों माँ दुर्गा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यहाँ पीढ़ियों से रहते आ रहे मूर्तिकार अपनी अपनी कल्पना के आधार पर माँ के स्वरूप को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिर क्या है कुमारटुली की कहानी और क्यों सारा कोलकाता माँ की प्रतिमाओं के लिए हुगली किनारे बसे इसी मोहल्ले का रुख करता है।

एक ऐसा शहर जो सोता है इतिहास के पालने में। और एक रोज जब शरद ऋतु की हवाओं में घुल जाती है शिवली फूलों की महक, तब हुगली की ओर से आते मध्यम झोंकों के बीच कला की उंगलियां सहलाकर जगाती हैं जिसे, और जाग उठता है ये शहर साल के

0: सबसे बड़ी शक्ति को आकार देने की कहानी। वो कहानी जो शुरू होती है एक काठ के टुकड़े से, एक बिना तराशे पत्थर से और माँ गंगा की मिट्टी से। ये कहानी है उसी मिट्टी के साक्षात महामाया बन जाने की।
1: माँ का इतना अद्भुत यहाँ होता है कि माँ आती हैं और मतलब बेटी हैं वो, तो कैसे उसका सब कुछ होता है, उनका सजावट और वो देखने को मिल रहा है, तो वो बहुत ही सुंदर है।
2: कलकत्ता का नहीं, वो सारा वर्ल्ड में फेमस है।
0: उत्तरी कोलकाता में हुगली के किनारे बसा कुम्हार टोली, बंगाली में कुमोर यानी कुम्हार और टोली यानी बस्ती। लगभग 300 साल पुराना ये इलाका सिर्फ एक मोहल्ला नहीं बल्कि कला का एक जीवंत संग्रहालय है, जहां हर साल आकार लेता है माँ दुर्गा का वो भव्य रूप जिस पर शब्दकारों ने मुक्त कंठ से स्तुतियां पढ़ी, चित्रकारों ने प्रतिबद्ध होकर चित्र बनाए और मूर्तिकारों ने गढ़ी मूर्तियां। कोलकाता का कुम्हार टोली उन्हीं मूर्तिकारों की बस्ती है, जहां के कारीगर अपने अपने दृष्टिकोण से रचते हैं माँ का ये महारूप।
3: कुम्हार टोली की मिट्टी की खुशबू ये एहसास दिलाता है कि बंगाल की सबसे श्रेष्ठ उत्सव दुर्गा पूजा बहुत नजदीक है और इस समय हम कुम्हार टोली में ही उपस्थित है, जहां से बंगाल के मैक्सिमम पंडाल्स में माता दुर्गाओं की मूर्ति पहुंचती है। माता दुर्गाओं की मूर्ति सज धज के बन ठन के जाती है इसी कुम्हार टोली से, और इस बीच कुम्हार टोली में अभी बहुत ही व्यस्तता चल रहा है। जो मृत शिल्पी है, जो आर्टिस्ट है, वो लोग दिन भर काम कर रहे हैं माताओं की मूर्ति रेडी करने के लिए।
0: बताया जाता है कि 18वीं शताब्दी के मध्य में जब राजा नवकृष्ण देव ने अपने घर में दुर्गा पूजा की शुरुआत करवाई, तब वे देवी देवताओं की सुंदर मूर्तियां बनाने के लिए बंगाल के ही कृष्णा नगर और आसपास के इलाकों से कुछ कुशल कारीगरों को लेकर यहाँ आए। धीरे धीरे ये कारीगर हुगली नदी के पास इसी इलाके में बस गए, जिसे आज कुम्हार टोली या कुम्हार टोली कहा जाता है। दिन गुजरते गए, गंगा नदी के किनारे की ये उपजाऊ और चिकनी मिट्टी इन कारीगरों का नसीब बन गई। पीढ़ी दर पीढ़ी, दादा से पिता और पिता से बेटे तक ये हुनर इस मिट्टी की तरह ही यही ठहर गया। आज भी इन कलाकारों के वंशज कुम्हार टोली की छोटी तंग गलियों में माँ की प्रतिमा गढ़ते हैं। जगह कम है पर माँ का आशीर्वाद बड़ा है। अब के साल भी ये कलाकार तन मन से माँ का स्वरूप गढ़ने में जुटे हैं।
4: जो इतना दिन बारिश था उससे तकलीफ हुआ था, अभी जो बारिश दिया है सूर्यदेव ने, दो दिन से जो खरा रोद उठा वो हम लोग का अच्छा है। माने एक घंटा दो घंटा में जो मिट्टी का काम होता है, अभी लास्ट टाइम में जो मिट्टी का काम को होता है वही अभी सूख रही है, ठीक है। तो और दो दिन लगेगा, फिर रंग पेंट पेंट होगा, फिर हो जाएगा कपड़ा। और मेरा 90% काम हो गया कलर का, अभी चल रही है साड़ी। माँ का जो साड़ी है अभी साड़ी चल रही है, इसके बाद आएगा ऑर्नामेंट्स, ठीक है। ये ऑर्नामेंट्स बाल जो है उस लगा के फिर मौला जब आएगा तब वो मेरा घर से चाटो प्रतिमा पार्टी आके ले जाएगी।
0: कोलकाता के कई बड़े पंडाल कुम्हार टोली से ही मूर्तियां ले जाते हैं। महीनों पहले मूर्तिकारों को बता दिया जाता है कि माँ के स्वरूप में अब की बार क्या खास होना चाहिए। ग्राहकों की मांग और अपनी कल्पना के आधार पर कुम्हार टोली के कलाकार मूर्ति बनाने में जुट जाते हैं। महीनों तक काम चलता है और आखिरकार नवरात्र से पहले मां का स्वरूप बनकर तैयार हो जाता है।
5: यहां पर हम जो चाहते वही मिल जाता है। वहां पर बागमारी में ये फैसिलिटी नहीं था, यहां पर हम जैसा बोलते हैं ये लोग वैसे ही बना देते हैं। अलग है, ये बहुत पुराना है, ये प्राचीन काल से चला हुआ रहा है। बागमारी का जो है और आदर्श जगह जो सब नया बना हुआ है, ये ब्रिटिश जमाना से चला हुआ आ रहा है और अभी तक लोग, आप देख अगर आप यहाँ सर्वे कीजिएगा देख

0: का सबसे ज्यादा मूर्ति यहीं पर है।
1: वास्तव में माँ दुर्गा की प्रतिमा का निर्माण केवल कला का प्रदर्शन भर नहीं है, बल्कि ये एक सर्वोच्च आध्यात्मिक अनुष्ठान है। माँ की मूर्ति का निर्माण शरीर की तरह ही पांच तत्वों से शुरू होता है, लकड़ी, बांस, पुआल, रस्सी और गंगा की मिट्टी। सबसे पहले बांस और लकड़ियों की मदद से मूर्ति का मजबूत ढांचा तैयार किया जाता है, जिसे बंगाली भाषा में काठमो कहा जाता है। इस ढांचे पर काम शुरू करने से पहले भगवान गणेश की पूजा होती है। फिर बांस के ढांचे को सूखे पुआल से अच्छी तरह बांधा जाता है। इसके बाद गंगा नदी के तट की चिकनी मिट्टी, जिसे एटेल माटी कहते हैं, उसे धान की भूसी के साथ मिलाकर पहली मोटी परत चढ़ाई जाती है। मूर्ति को धूप में सुखाया जाता है और दरारों को कपड़ों की पट्टी से भरा जाता है। पहली परत सूखने के बाद बेले माटी यानी बारीक चिकनी मिट्टी की दूसरी परत लगाई जाती है। इससे मूर्ति को चिकना, गोल और सुंदर आकार मिलता है। इस चरण में चेहरे, हाथों और उंगलियों को बारीकी से गढ़ा जाता है। मूर्ति पूरी तरह सूखने के बाद उस पर सफेद रंग का प्राइमर या बेस कोट लगाया जाता है। इसके बाद स्प्रे या ब्रश का इस्तेमाल करके माँ की प्रतिमा को सुंदर रंगों से सजाया जाता है। फिर बारी आती है सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम धार्मिक अनुष्ठान चोखू दान की, जिसमें महालया या पूजा से ठीक पहले देवी की आंखें बनाई जाती हैं। अंत में मूर्ति को सुंदर वस्त्रों, आभूषणों और बालों से सजाया जाता है।
2: इट्स अ वेरी डिवाइन फीलिंग, है ना। माँ को हम लोग पंडाल हॉपिंग में जब जाते हैं तो उनका पूरा सजा हुआ रूप देखते हैं, और यहाँ पर आज हम कैसे शुरुआत होती है, कैसे पुआल और मिट्टी से उनको एक पहले एक स्ट्रक्चर देते हैं, फिर उसकी आप प्लास्टर ऑफ पेरिस करते हैं, प्राइमर और कलर और फिर ज्वेलरी, तो वो जो पूरी की पूरी जर्नी हम पहले शुरू गली से शुरू होते और गली के अंत तक आते आते माँ का पूरा प्रारूप ही चेंज हो जाता है, और यहाँ से फिर जो पंडाल तक का सफ़र है वो बिल्कुल ही अद्भुत रहता है। आप सोच नहीं सकते कि वो पंडाल में लाइट्स के साथ में जो वो इफेक्ट आता है, ये मूर्ति जो यहाँ पे हम देखते हैं वो और भी भव्य हो जाती है।
3: वेट करने के बाद ये वाला माँ का रूप देखने को मिलता है, नहीं तो आप देखेंगे बस सजी धजी माँ पंडाल में दिख जाती है, लेकिन ये वाली चीज़ कहीं नहीं दिखती, तो इसके लिए वेट करने के लिए तो आना ही पड़ेगा यहाँ पे। और इसकी जो मिट्टी की जो खुशबू आ रही है और कलर्स की जो महक आ रही है बहुत अच्छी है।
1: कुमार टोली में अब कई तरह की मूर्तियाँ बनती हैं, जिनमें मुख्य रूप से पारंपरिक एकचाला मूर्तियाँ होती हैं, जिनमें सारे देवता एक ही ढांचे में बनाए जाते हैं, तो वहीं आधुनिक थीम पर आधारित मूर्तियाँ भी ऑर्डर पर अब तैयार होती हैं, जिनमें सामाजिक संदेश देने वाली कलाकृतियाँ भी गढ़ी जाती हैं। बदलते वक्त के साथ कुम्हार टोली भी बदला है। अब तो यहाँ माँ की मूर्ति के निर्माण में AI की झलक भी दिखाई देने लगी है।
4: इस साल में AI बनाया है मैंने। आजकल AI से सब हो रहा है, AI से पढ़ना होता है, AI से एडिट हो रहा है, AI से आपका 20 साल का 20, 50 साल, 100 साल, 300 साल का वही देश में कौन राजा था वो AI अभी तो सब हो जाएगा AI से। अभी जो AI से मैं रोबोटिक दुर्गा किया है उत्तर दिनाजपुर कालियागंज में, वो मारात्मक वायरल हो गया, ठीक है। उसको जो प्रतिमा है वो रोबोटिक है, इसका जो AI दुर्गा, और उसका जो फेस है वो माँ का जो फेस वही फेस मैंने रखा है, लेकिन AI नहीं किया। जो तस्वीर मेरे पास आया है वो माँ का थोड़ा सा AI था, लेकिन ये तो माँ है, इसलिए माँ को मैं एक मिनमय रूप मैंने दिया।
1: एक ही छत के नीचे माँ के अनंत रूप यहाँ नजर आते हैं। यही वजह है कि कोलकाता ही नहीं बल्कि आसपास के शहरों से भी लोग मूर्तियाँ लेने यहाँ पहुँचते हैं।
5: ये बहुत पुराना संबंध है, यहाँ पे आज प्राचीन काल से चले आ रहा है। एक यहाँ पे मूर्ति, सारा मूर्ति यहीं पे बनता है, यहीं से स्टार्टिंग हुआ है, और हम लोग भी आज बचर बचर यहीं से आके लेके जा रहे हैं। हाँ, यहीं से हम लोग का पूजा कबड्डी मूर्ति लेता है। आज बहुत दिन से हम लोग यहीं से लिए जा रहे हैं। ये जैसा चाहते हैं वैसा मिल भी जाता है, आते हैं हर बार, हर तरह का देख के लेके जाते हैं।
6: तो यही क्या माता दुर्गा क्या प्राण केंद्र बन चुका है?
7: एकदम 100% इसमें कोई दो राय नहीं है।
6: आप लोगों का पंडाल के दुर्गा प्रतिमा के यहाँ से ले जा रहे हैं?
0: यहीं से ले जा रहे हैं, सामने ही मेरा मूर्ति बन रहा है, आप उसको भी देख सकते हैं।
5: ये बहुत पुराना संबंध है यहाँ पे, आज प्राचीन काल से चले आ रहा है। एक यहाँ पे मूर्ति, सारा मूर्ति यहीं पे बनता है, यहीं से स्टार्टिंग हुआ है और हम लोग भी आज बचर बचर यहीं से आके लेके जा रहे हैं। इसके इतना बड़ा जगह तो कहीं है भी नहीं ना, अगर है भी तो वहाँ पे दो चार मूर्ति बन रहा है, चाहे 10 मूर्ति बन रहा है, मगर यहाँ पे तो आप एक एक घर में 10-10-15 मूर्ति बन रहा है।
1: दुर्गा पूजा के शुभारंभ से पहले कुम्हार टोली में मूर्तियाँ लेने वालों के बीच ही सेल्फी लेते माँ के अर्ध निर्मित रूपों को निहारते सैलानियों की भी भरमार है। कहते हैं दुर्गा पूजा में कोलकाता की रौनक निराली होती है, लेकिन पूजो से पहले वो सारी रौनक कोलकाता के इस एक इलाके में सिमटी नजर आती है, जहां माटी से माँ को गढ़े जाने की यात्रा को अपनी आँखों से देखने बड़ी तादाद में सैलानी पहुँचते हैं।
7: एक्चुअली ये मेरा फर्स्ट टाइम है और मैंने बहुत सुना था, बट आज महसूस किया और बहुत अच्छा लग रहा है। अद्भुत जिसको बोलते हैं ना, वो एक्सपीरियंस हुआ और बहुत ऐसे डिवाइन सी फीलिंग हो रही है।
6: आज क्या घूमने ही आए थे?
7: जी बिल्कुल, ये दर्शन देवी माँ के अभी दर्शन करने आए थे हम लोग।
8: मैं भी पहली बार कोलकाता में आई हूँ और ये मतलब ये सुना बहुत था, मैम लोग से बहुत सुना था, तो मुझे बहुत ही मैं उत्साहित थी ये देखने के लिए कि क्या कैसे बनता है, वो मुझे बहुत जानना था। तो इतना सुंदर है कि मतलब इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते हम, तो बहुत ही सुंदर है, अद्भुत है ये नज़ारा। अभी मैंने माँ का जो मूर्ति बनते हुए कैसे बनाते हैं और कितने मेहनत से बनाते हैं वो देखा, और कितने लगन से बनाते वो चीज़ देखा, तो वो चीज़ महसूस कर रही हूँ कि सच में माँ का कैसे माँ मतलब वो फील आता है ना, वो फील आ रही है, बहुत सुंदर।
1: और महीनों की कड़ी मेहनत और समर्पण के बाद इसी यात्रा के अंत में आता है वो पल जिसे चोखू दान कहा जाता है। महालया के दिन जब मूर्तिकार माँ की आँखों की अंतिम लकीर खींचते हैं, तो मिट्टी का वो ढांचा जीवित हो उठता है। कुम्हार टोली की संकरी अंधेरी गलियों से निकलकर जब ये मिट्टी की प्रतिमा कोलकाता के भव्य पंडालों में रोशनी से चमकती है, तो पूरा शहर उत्सव के उल्लास से गमक उठता है। ये मूर्तियाँ गवाह हैं उस अटूट विश्वास की, जहाँ इंसान अपनी आस्था और मेहनत के दम पर मिट्टी से निराकार को साकार कर लेता है। कोलकाता के कुम्हार टोली से राही हल्दर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
9: तो ये तो बात थी बंगाल की, अब आपको लिए चलते हैं दिल्ली में बसे छोटे बंगाल यानी दिल्ली का सीआर पार्क। सीआर पार्क को दिल्ली का मिनी बंगाल भी कहा जाता है। शारदीय नवरात्र के दौरान यहाँ थीम आधारित कई दुर्गा पंडाल सजाए जाते हैं। इनमें कालीबाड़ी मंदिर में लगने वाला पंडाल की चर्चा और तैयारी तो दुर्गा पूजा के कई महीनों पहले शुरू कर दी जाती है। कोलकाता के कुमार टुली की तरह ही यहाँ भी प्रतिमा निर्माण की अपनी परंपरा है। हर साल शारदीय नवरात्र से करीब 4 महीने पहले यहाँ वर्कशॉप लगाई जाती है, जिसमें पुआल, मिट्टी और रंगों का इस्तेमाल करके भव्य दुर्गा मूर्तियां तैयार की जाती हैं। 1970 के दशक से ये परंपरा यूं ही निभाई जा रही है। फर्क ये है कि शुरुआत में इस वर्कशॉप में कुछ ही मूर्तियां आकार लेती थीं, लेकिन अब यहां हर साल करीब 800 मूर्तियां तैयार की जाती हैं। हर साल पूजो के समय सीआर पार्क की रौनक देखने लायक होती है। तो चलिए आपको दिखाते हैं और लेकर चलते हैं सीआर पार्क और दिखा देते हैं तैयारी दुर्गा पूजा की।

0: दिल्ली में बंगाल की संस्कृति, कला, साहित्य, संगीत और समृद्ध ऐतिहासिक विरासत की पहचान चितरंजन पार्क है, जो माँ दुर्गा के आगमन का इंतजार कर रहा है। 11 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र की शुरुआत होने जा रही है। नवरात्र माँ दुर्गा की आराधना और उनके 9 विशेष स्वरूपों को पूजने का पवित्र त्योहार है। हर साल शारदीय नवरात्र के दौरान चितरंजन पार्क यानी कि सीआर पार्क कोलकाता का प्रतिबिंब बन जाता है। शारदीय नवरात्र के करीब एक महीने पहले से पंडालों में अटूट आस्था, श्रद्धा, विश्वास और संकल्प के साथ माँ दुर्गा के आह्वान की तैयारी शुरू हो जाती है। 1960 के दशक में पहली बार यहाँ बसे बंगाली परिवारों ने शारदीय नवरात्र से जुड़ी सांस्कृतिक विरासत की नींव रखी थी। तब से यहाँ माँ दुर्गा की प्रतिमा को स्थापित करने की परंपरा को संजोने और समृद्ध करने का संकल्प पीढ़ी दर पीढ़ी लिया जा रहा है। यहाँ माँ दुर्गा की अलग अलग तरह की प्रतिमाओं को बनाने का काम पूरा साल चलता रहता है, लेकिन शारदीय नवरात्र के लिए माँ की मूर्तियों को तैयार करना अपने आप में विशेष अनुष्ठान की तरह होता है। चितरंजन पार्क में 3 दुर्गा पूजा समितियों की तरफ से 3 बड़े पंडाल बनाए जाते हैं। इनमें कालीबाड़ी मंदिर में दुर्गा पूजा बेहद भव्य और सबसे मशहूर है। कालीबाड़ी मंदिर में विराजमान होने वाली माँ दुर्गा की भव्य मूर्ति, रंग बिरंगी सजावट और 9 दिनों तक शाम को होने वाले सांस्कृतिक उत्सव हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं।
1: तो भाई देखिए, कोलकाता के साथ साथ दिल्ली भी पूरी तरह से तैयार हो रही है दुर्गा पूजा के लिए, क्योंकि माँ आने वाली हैं। और उसके लिए सबसे बढ़िया जो जगह होती है सीआर पार्क, जहाँ हर साल मैं आपको लेकर आती हूँ, और ये बिल्कुल सीआर पार्क का वही कालीबाड़ी मंदिर है। जरा तस्वीरें देख लीजिए, तैयारियां भी हो रही हैं, शुरुआत हो चुकी है। हालांकि बहुत जोर शोर से यहाँ तैयारियां हो रही हैं। ये वही पंडाल है जहाँ पर हर साल दुर्गा पूजा मनाई जाती है कालीबाड़ी मंदिर का। और अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर शुरुआत हुई है, यानी पंडाल अभी तैयार हो रहा है। पंडाल का थीम क्या है वो बहुत ही सीक्रेट रखा गया है, लेकिन इसके साथ ही साथ सबसे ज्यादा जो इंतजार रहता है वो रहता है मूर्तियों का। तो इस बार किस तरह की मूर्ति होगी, थीम क्या होगा, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर लोगों में एक्साइटमेंट होती है। क्योंकि भाई जो लोग बंगाल से बाहर रहते हैं, स्पेशली अगर हम दिल्ली की बात करें, तो उनके लिए सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट यही सीआर पार्क का एरिया होता है। तो आज मैं आपको सीधा वर्कशॉप लिए चलती हूँ जहाँ पर मूर्तियों को बनाने का काम लगातार चल रहा है, और आपको मिलवाऊंगी उन कलाकारों से, उन कारीगरों से जो हर साल इन मूर्तियों को आकार देते हैं। और फिर उसके बाद फाइनली, अगर आपको याद हो तो ये वो स्टेज होती है सामने जहाँ पर पंडाल सजाया जाता है, माँ की मूर्ति को लाया जाता है। अभी भी अगर आप देखेंगे तो रफ यहाँ पर स्टेज तैयार की गई है, लेकिन चलिए मेरे साथ आपको मैं वर्कशॉप में लिए चलती हूँ और देखते हैं कि मूर्ति बनाने का काम कहाँ तक पहुँचा है। आइए।
0: हर साल दुर्गा पूजा से पहले दुर्गा प्रतिमा के निर्माण से जुड़ी कार्यशाला आयोजित की जाती है, जहाँ कुशल कारीगर बांस, पुआल और मिट्टी से देवी की भव्य मूर्तियाँ तैयार करते हैं। 1970 के दशक से कालीबाड़ी मंदिर के सहयोग से चली आ रही इस विशेष कार्यशाला में हर साल सैकड़ों प्रतिमाओं को आकार दिया जाता है, जो दिल्ली एनसीआर की 300 से अधिक पूजा समितियों को भेजी जाती है।
1: तो देखिए, मंदिर है और मंदिर के ठीक पीछे ये वो वर्कशॉप है, कार्यशाला है, जहाँ पर मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, मूर्तियों को आकार दिया जाता है। वैसे तो यहाँ पर जो काम है वो पूरा साल चलता रहता है, लेकिन जो आखिरी का समय होता है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उनमें कलर भरना है, फाइनल टच देना है। और ये वो कार्यशाला है जहाँ से मूर्तियाँ दिल्ली एनसीआर और साथ ही साथ अगल बगल के जितने राज्य हैं वहाँ पर मूर्तियाँ यहाँ से भेजी जाती हैं, और यहीं पर आकार इनको दिया जाता है, और यहाँ से फिर ये मूर्तियाँ राजस्थान, पंजाब, दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, जहाँ जहाँ भी जरूरत होती है वहाँ इनको भेजा जाता है। सबसे बड़ी और ख़ास बात यह है, अगर आपको ध्यान हो तो कोलकाता में स्पेशली और पूरे बंगाल में जहाँ जहाँ मूर्तियाँ बनाई जाती हैं वहाँ पर मिट्टी कुमारतुली से लाई जाती है, और यहाँ पर भी इन मूर्तियों को आकार देने से पहले उस पवित्र मिट्टी को इनमें शामिल किया जाता है।
0: मूर्तिकार गोविंद अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी है जो पारंपरिक रूप से माँ दुर्गा की प्रतिमाएं बनाने के काम में खुद को समर्पित कर चुके हैं। दुर्गा माँ की प्रतिमा उनके हुनर और विरासत को भी दर्शाती है।
1: तो गोविंद जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और माँ की जो मूर्ति है उसके चेहरे को आकार दिया जा रहा है, और साथ ही साथ मैं इनका परिचय कराऊं। ये तीसरी पीढ़ी है जो लगातार माँ की मूर्तियों को और दुर्गा पूजा की तमाम मूर्तियों को बनाते आए हैं। गोविंद जी
2: नमस्कार जी।
1: नमस्ते। कहाँ तक पहुँचा है काम?
2: काम अभी बस पेंटिंग का इंतजार कर रहा है, कल से नहीं तो परसों से पेंटिंग चालू हो जाएगा हमारा, और कुछ एक दो मूर्ति में मिट्टी का काम बाकी है, वो भी अभी काम चल रहा है, तो उसी का भी तैयारी हो रहा है। इधर पेंटिंग का भी थोड़ा फिनिशिंग करके, मिट्टी का फिनिशिंग करके कल परसों से ही पेंटिंग चालू।
0: इस शारदीय नवरात्र की शुरुआत 11 अक्टूबर से हो रही है और इसका समापन 20 अक्टूबर को विजयदशमी यानी दशहरे के दिन होगा। कोलकाता का कुमारटोली पवित्र दुर्गा प्रतिमाएं बनाने के लिए मशहूर है। उनमें वहां बहने वाली गंगा नदी की मिट्टी को मूर्तियों के लिए सबसे अच्छा और शुभ माना जाता है। सियार पार्क के कालीबाड़ी मंदिर में मौजूद कार्यशाला में भी परंपरा और शुद्धता बनाए रखने के लिए मिट्टी वहीं से आती है।
1: अच्छा, मिट्टी आप वहां से लेकर आते हैं?
2: वहां से मिट्टी ले आते हैं, और कुछ मिट्टी यूपी का उस साइड से आता है, खेत का भी मिट्टी होता है, तो मिला के आता है। इतना सारे मिट्टी तो लाना पॉसिबल नहीं है, तो जो फेस वगैरह होता है, जो हमारा जो कलकत्ता मिट्टी स्पेशल
1: जो आप बना ही रहे हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल, ये कलकत्ता का मिट्टी ले आते हैं, और बाकी यूपी का पंजाब का जो खेत होता है ना, खेत का मिट्टी भी आता है।
1: ठीक है, यानी कि ये पर्टिकुलर रहता है कि माँ का और जो तमाम मूर्तियों का जो फेस है वो जो बंगाल से मिट्टी आती है वो उसी से बना है।
2: फिनिशिंग अच्छा होता है, चिकनवर अच्छा होता है, उसमें कंकड़ कम होता है, फिनिशिंग अच्छा है, काम करने में अच्छा वो होता है। और दूसरी जगह मिट्टी थोड़ा कंकड़ होता है, रेत होता है, वो दूसरा काम पे आता है।
0: सनातन परंपरा में शारदीय नवरात्र का विशेष महत्व है। माना जाता है कि इस दौरान माता की पूजा अर्चना से देवी दुर्गा की खास कृपा प्राप्त होती है। माँ दुर्गा के 9 रूपों की विधिवत पूजा अर्चना भक्तों के लिए शुभ मानी जाती है। ऐसे में शारदीय नवरात्र की विशेष तैयारियां होती हैं। प्रतिमाओं के आकार लेने के दौरान हर तरफ माँ के जयकारे गूंजने लगते हैं। दिल्ली से नवजोत चंधावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: तो जैसा कि हम हर बार कहते हैं कि उत्सव यानी गुड न्यूज टुडे, तो तैयार हो जाइए, तमाम रंग आपको लगातार जीएनटी पर दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, अच्छी खबरें जारी हैं, देखते रहिए जीएनटी।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: देखिए, इन दिनों पितृपक्ष में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भू वैकुंठ नगरी श्री बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं, जहां वो भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के बाद ब्रह्म कपाल तीर्थ में अपने पितरों का तर्पण और पिंडदान कर रहे हैं। पितरों की मुक्ति के लिए श्री हरि के इस पावन धाम की दिव्यता ही ऐसी है कि ब्रह्म कपाल में पिंडदान और तर्पण की मान्यता और परंपरा को अब विदेशी भी आत्मसात करते नजर आ रहे हैं। रूसी तीर्थयात्रियों ने यहां विधि विधान के साथ अपने पितरों के निमित्त पिंडदान और तर्पण किए।
3: जहाँ बहती है अलकनंदा की पवित्र धारा, उसी बद्रीनाथ के आंगन में पितरों की आत्मिक शांति के लिए पिंडदान हो रहा है। देवभूमि उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में जहाँ चार धाम यात्रा दर्शन के रंग बिखरे हैं, हर तरफ श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है, तो वहीं इन दिनों पितृपक्ष के दौरान भगवान विष्णु का ये धाम सिर्फ चार धाम दर्शन का केंद्र ही नहीं, बल्कि पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता और स्मरण का भी पवित्र स्थल बना हुआ है। दरअसल यहाँ के ब्रह्म कपाल में मोक्ष की कामना और पितरों के प्रति श्रद्धा जैसी भावनाओं को लेकर अच्छी खासी संख्या में श्रद्धालु तर्पण के लिए पहुँच रहे हैं, अपने पूर्वजों के निमित्त पिंडदान कर रही है। श्राद्ध परंपरा का भगवान बद्री विशाल के आंगन में होना ही इन तमाम श्रद्धालुओं को पुरखों के प्रति सम्मान और आध्यात्मिकता की अनुभूति दे रहा है।
4: कहा गया है इस स्थान पर पिंड देने से सात पीढ़ियों के पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ पर भगवान बद्री विशाल के बाल भूक्ष मनुष्य अपने पितरों को पिंड और तर्पण देता है, सात पीढ़ियों के पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और आप देख रहे हैं आजकल पितृपक्ष में काफी संख्या में लोग अपने पितरों को उद्धार के लिए ब्रह्म कपाली आए।
3: पितरों की मुक्ति के लिए श्री हरि के इस पावन धाम की दिव्यता ही ऐसी है कि यहाँ कराए जाने वाले पिंडदान और तर्पण को लेकर श्रद्धालुओं का विश्वास अटूट है। यही कारण है कि ब्रह्म कपाल में पिंडदान और तर्पण की मान्यता और परंपरा को अब विदेशी भी आत्मसात करते दिख रहे हैं। दरअसल भारत आए सात रूसी तीर्थयात्रियों ने भी यहाँ विधि विधान के साथ अपने पितरों के निमित्त पिंडदान और तर्पण किया। वैसे पहले भी सनातनी परंपरा उसके प्रति आस्था विदेशियों को काफी आकर्षित करती रही है, ऐसे में बद्रीनाथ धाम में विदेशी श्रद्धालुओं का अपने पुरखों का पिंडदान एक बार फिर दर्शा रहा है कि आस्था की कोई सीमा नहीं होती। ब्रह्म कपाल में पिंडदान का धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कर इन विदेशी श्रद्धालुओं का सनातनी परंपराओं और मान्यताओं के प्रति भाव जता रहा है कि संस्कृति अलग हो सकती है, लेकिन पूर्वजों के प्रति श्रद्धा का भाव कमोबेश सभी जगह पर एक ही जैसा है। चमोली से कमल नयन सिलोरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़
1: टुडे। इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
9: गुवाहाटी वनडे में भारत की शानदार जीत, वेस्ट इंडीज को 8 विकेटों से हराया। सीरीज में 2-0 की बढ़त, 44वें ओवर में चेस किया 406 रन का लक्ष्य। कप्तान शुभमन गिल ने रचा इतिहास, 117 गेंद में जड़ा दोहरा शतक, सबसे तेज शतक बनाने का बनाया विश्व रिकॉर्ड। एशियन गेम्स में भारत की चमक बरकरार। 87 किलोग्राम ग्रीको रोमन रेसलिंग इवेंट में सुनील कुमार ने जीता ब्रॉन्ज। आज तीरंदाजी में 3 और शूटिंग में आया 1 गोल्ड। भारत के खाते में कुल 10 गोल्ड। पिछले 5 वर्षों में इस साल सितंबर महीने में सबसे ज्यादा साफ रही दिल्ली की हवा। औसत EQI 102 दर्ज किया गया। कोलकाता में नवरात्र की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। बर्धमान में मां दुर्गा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे कारीगर। ग्यारह अक्टूबर को कलश स्थापना के साथ ही शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो जाएगी। 9 दिनों तक माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना होगी। कोलकाता समेत पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की अद्भुत छटा देखने को मिलती है, जिसकी तैयारियां तेजी से चल रही हैं। आज हम आपको कोलकाता की एक ऐसी जगह दिखाने जा रहे हैं जो देवी देवताओं की मूर्ति बनाने के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है।

0: आस्था का पर्व और माता रानी के स्वागत की तैयारी। कहीं माँ दुर्गा की भव्य प्रतिमाएं बनाई जा रही है तो कहीं पंडाल सजाए जा रहे हैं। आदि शक्ति आएंगी, अपने भक्तों पर कृपा बरसाएंगी। 9 दिनों के भक्ति के इस उत्सव में हर तरफ जय माता दी के जय घोष की गूंज सुनाई देगी। इसी के चलते देश भर में नवरात्र की तैयारियां तेजी से आगे बढ़ रही है। पश्चिम बंगाल और विशेषकर कोलकाता के लिए दुर्गा पूजा केवल एक धार्मिक त्योहार नहीं बल्कि बंगाली संस्कृति, कला, भाईचारे और अर्थव्यवस्था की धड़कन है। इसलिए यहाँ इन दिनों मूर्तिकारों की व्यस्तता कहीं अधिक बढ़ी हुई है। माँ दुर्गा की छोटी से लेकर बड़ी मूर्तियों को वो तेजी से आकार देने में जुटे हुए हैं। रंग रोगन का काम चल रहा है।
1: माता दुर्गाओं की मूर्ति सज धज के बन ठन के जाती है इसी कुमोटुली से। और इस बीच कुमोटुली में अभी बहुत ही व्यस्तता चल रहा है, लोगों का भी यहाँ पे आना जाना बन रहा है। कोई लोग आ रहा है दोस्तों के साथ फोटो खींचने, कोई यहाँ पे पूजा के पहले ही पूजा का वाइब्स लेने कुमोटुली पहुंच रहा है, माता दुर्गाओं की मूर्ति को दर्शन कर रहा है।
0: कोलकाता का कुम्हार टोली इलाका दुनिया भर में माँ दुर्गा की पारंपरिक और कलात्मक मूर्तियां बनाने के लिए प्रसिद्ध है। करीब 300 साल पुरानी कुम्हारों और मूर्तिकारों की इस बस्ती को पॉटर्स कॉलोनी कहा जाता है। यहाँ देवी दुर्गा की मूर्तियां विशेष रूप से गंगा की मिट्टी, बांस और भूसे के ढांचे पर हाथों से गढ़ी जाती है।
2: स्टूडियो में कोई 20 बना रहा है, कि 15 बना रहा है, कि 10 बना रहा है, ऐसा करके होता। कोई 50 भी बनाया है, ऐसा नहीं है जो 10-20 ना, 50 भी बना रहा है, ऐसा होता है। ये तो गुण नहीं पाएगा तो सारा कलकत्ता में बाहर में सब हम लोग की मूर्ति भेज रहा है।
0: कुम्हार टोली में मिट्टी की मूर्तियां बनाने वाले लगभग 300 स्टूडियो है, जहां कारीगर मूर्तियों को अब अंतिम रूप देने में व्यस्त है। लगभग सभी स्टूडियो को पहले ही एडवांस बुकिंग मिल चुकी है। यहां बनी दुर्गा प्रतिमाओं की केवल कोलकाता या देश के दूसरे हिस्सों में ही नहीं बल्कि विदेश तक डिमांड है। अब तो यहां के मूर्तिकार प्रतिमाओं के निर्माण में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक का इस्तेमाल कर रहे हैं।
3: मेरा इस साल जो हम जो ठाकुर बनाते हैं 12-14 मैंने वो आज से 2 मास पहले वो बुकिंग हो गया। अभी जो AI से मैं रोबोटिक दुर्गा किया है उत्तर दिनाजपुर कालियागंज में, वो मारात्मक वायरल हो गया, ठीक है। उसका जो प्रतिमा है वो रोबोटिक है, उसका जो AI दुर्गा और उसका जो फेस है वो माँ का जो फेस, वही फेस मैंने रखा है, लेकिन AI नहीं किया। जो तस्वीर मेरे पास आया है वो माँ का थोड़ा सा AI था, लेकिन ये तो माँ है, इसलिए माँ को मैं एक मिनमय रूप मैंने दिया, ठीक है। उसको जो आक्स, उसको जो सारिस, उसको जो सरस्वती, लक्ष्मी, कार्तिक, गणेश जो है, उसको जो महिषासुर, उसके जो लायन, सब आंखों में LED लाइट्स जलेंगे।
1: अच्छा,
3: साड़ी में भी, और जो अस्त्र है फाइबर का, उसका भीतर में LED लाइट्स है, वो ब्लिंक करेगा।
1: अच्छा।
3: ठीक में, और उसका जो पैंडल है, वो जो रोबोट है वो घूमेगा।
1: अच्छा।
3: वो बातचीत करेगा, अब जो बोला वो बात वो आंसर दे देंगे।
4: बागमारी का जो है और आदर्श जगह जो सब नया बना हुआ है, ये ब्रिटिश जमाना से चला हुआ आ रहा है और अभी तक लोग आप देख, अगर आप यहाँ सर्वे कीजिएगा देखिएगा सबसे ज्यादा मूर्ति यहीं पर
5: है। यहाँ पे मूर्ति, सारा मूर्ति यहीं पे बनता है, यहीं से स्टार्टिंग हुआ है और हम लोग भी आज बचर बचर यहीं से आके लेके जा रहे हैं।
0: यहाँ मूर्ति का ऑर्डर दे चुके लोग ही नहीं पहुँच रहे बल्कि बड़ी संख्या में कला प्रेमी भी आ रहे हैं, जो मूर्तिकारों और कारीगरों की मेहनत को करीब से देखने और समझने की इच्छा रखते हैं। यहाँ देवी माँ की दिव्य मूर्तियों को देखकर वो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। मोबाइल में तस्वीरें कैद करने के साथ खुद की तस्वीर खिंचवाते भी नजर आते हैं।
6: मैंने बहुत सुना था बट आज महसूस किया और बहुत अच्छा लग रहा है, अद्भुत जिसको बोलते हैं ना वो एक्सपीरियंस हुआ और बहुत ऐसे डिवाइन सी फीलिंग हो रही है।
7: मैं तो उत्साहित थी ये देखने के लिए कि क्या कैसे बनता है, वो मुझे बहुत जानना था। तो इतना सुंदर है कि मतलब उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते हम, तो बहुत ही सुंदर है, अद्भुत है ये नज़ारा। अभी मैंने माँ का जो मूर्ति बनते हुए कैसे बनाते हैं और कितने मेहनत से बनाते हैं वो देखा, और कितने लगन से बनाते वो चीज़ देखा, तो वो चीज़ महसूस कर रही हूँ।
8: यहाँ पर आज हम कैसे शुरुआत होती है, कैसे पुआल और मिट्टी से उनको एक पहले एक स्ट्रक्चर देते हैं, फिर उसकी आप प्लास्टर ऑफ पैरिस करते हैं, प्राइमर और कलर और फिर ज्वेलरी, तो वो जो पूरी की पूरी जर्नी हम पहले शुरू गली से शुरू होते और गली के अंत तक आते आते माँ का पूरा प्रारूप ही चेंज हो जाता है, और यहाँ से फिर जो पंडाल तक का सफर है वो बिल्कुल ही अद्भुत रहता है।
9: दुर्गा पूजा के शुरू होने से पहले ही ये जगह लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, इसके चलते यहाँ लोगों की आवाजाही बढ़ी हुई है और त्योहार से पहले ही उत्सव जैसा माहौल बन चुका है। कोलकाता से राही हलदार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
10: बात करेंगे अवधपुरी की, जहां पर 7 नवंबर को दिव्य आयोजन की तैयारियां चल रही हैं। इस दिन वहां की छटा देखने वाली रहेगी। अयोध्या का कोना कोना रोशनी से सराबोर हो जाएगा। इस विशेष अवसर के लिए विशेष टूर पैकेज की घोषणा भी कर दी गई है। इन सबके बीच अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक अलग तैयारियां चल रही हैं।

0: प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या, जहां बड़ी संख्या में भक्त रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। यहां इन दिनों दीपोत्सव की तैयारियां चल रही हैं। साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर एनएसजी कमांडोज की चहलकदमी भी देखी जा सकती है। अवधपुरी में इस बार और भव्यता के साथ दीपोत्सव मनाने की तैयारी है, और इसी को लेकर जहां एक तरफ मजदूर कामकाज में जुटे हैं, तो वहीं अधिकारी लगातार निरीक्षण करते नजर आए।
1: हम लोग यहां क्वीन हो पार्क में उपस्थित हैं। यहां पर हम लोग की प्लानिंग है कि कुछ प्रदर्शनी या झांकी जैसा कुछ दीपोत्सव के दौरान लगाया जाएगा, तो उसी के संबंध में इस पार्क का निरीक्षण किया जा रहा है। इसके अलावा राम की पैड़ी, चौधरी चरण सिंह घाट, सरयू तीर्थग्रह, जो हेलीपैड बनता है, रामकथा पार्किंग, सभी स्थानों का निरीक्षण किया जा रहा है। और कहीं पर भी जो छोटी मोटी चीजें पाई जा रही है, जिनके बारे में निर्देश दिए जाने हैं, जिनको ठीक किया जाना है, वो लगातार किया जा रहा है। लगातार इस प्रकार के निरीक्षण जारी रहे।
0: इस बार के दीपोत्सव को और ज्यादा शानदार बनाने के लिए श्रद्धालुओं के लिए एक खास योजना तैयार की गई है। UPSTDC ने दीपोत्सव अयोध्या टूर पैकेज तैयार किया है। श्रद्धालु और पर्यटक राम मंदिर, हनुमान गढ़ी, कनक भवन, नागेश्वर नाथ मंदिर के दर्शन भी कर पाएंगे।
2: एक अलग नजारा है, एक अलग दृश्य होगा, जब इस बार देश से नहीं विदेशों से भी खास मेहमान आएंगे, इस दीपोत्सव में शामिल होंगे, जहां अब की बार एक वर्ल्ड रिकॉर्ड एक नया बनाया जाएगा। यहाँ अगर आते हैं टूरिस्ट तो उनके लिए खास इंतजाम भी किए गए हैं। राम मंदिर हो, कनक भवन हो या हनुमान गढ़ी, हर जगह वो दर्शन करेंगे, उनके रुकने के खास इंतजाम किए गए हैं। तो ये पूरी राम की पैड़ी को जो है पूरा दुल्हन की तरीके सजाया जा रहा है, क्योंकि बहुत जल्द वो 7 नवंबर की तारीख है जब विशालकाय दिए, इलेक्ट्रॉनिक दिए, हर एक चीज वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा इस राम की पैड़ी पे। इसको भव्य और दिव्य रूप दिया जा रहा है।
0: दीपोत्सव को लेकर तैयारियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं। राम की पैड़ी पर विजिटर गैलरी और सेल्फी पॉइंट्स भी तैयार किए जा रहे हैं। इस बार 30 लाख दीप जलाने का लक्ष्य है। श्रद्धालु लेजर और ड्रोन शो का आनंद भी उठा पाएंगे। सरयू घाट पर 2100 वैदिक आचार्य महाआरती करेंगे। 240 से अधिक मंदिर और मठों में भी दीप प्रज्वलित होंगे। रामकथा पार्क से लेकर राम की परिधि तक लगभग 1 दर्जन जगहों पर अलग अलग कार्यक्रम होंगे। सरयू के तट पर श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, नए घाट, एम्फीथिएटर और फूड कोर्ट्स जैसे आकर्षक केंद्र भी बनाए जाएंगे। इन सब के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी की टीम अयोध्या में समीक्षा और मॉक ड्रिल करती नजर आई। एनएसजी की टीम राम मंदिर से लेकर हनुमान गढ़ी तक सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेती नजर आई। कनक भवन में भी एनएसजी की टीम सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रही थी। एनएसजी की टीम सभी महत्वपूर्ण स्थलों का निरीक्षण कर रही है और मौजूदा व्यवस्था की समीक्षा के साथ साथ संभावित आपात परिस्थितियों से निपटने की तैयारियों को भी परखा जा रहा है।
2: निरीक्षण किया जा रहा है। एनएसजी कमांडेंट यहाँ पे लगातार घूम रहे हैं। राम मंदिर हो चाहे हनुमान गढ़ी हो, हनुमान गढ़ी परिसर में पूरी डायरेक्शन दी गई है। बाकायदे कंट्रोल रूम पूरे चेक किए गए हैं। तो यहाँ लगातार जो है अयोध्या की राम नगरी की सुरक्षा को लेकर खास इंतजाम किए जा रहे हैं। लगातार यहाँ पे निगरानी की जा रही है, लगातार चप्पे चप्पे पर एनएसजी की तैयारी है।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अयोध्या में एक नया एनएसजी क्षेत्रीय केंद्र बनाने की घोषणा की है। माना जा रहा है कि एनएसजी कमांडोज की मौजूदगी और लगातार चल रही मॉक ड्रिल उसी का हिस्सा है, और आने वाले समय में अयोध्या की पूरी सुरक्षा व्यवस्था में एनएसजी की अहम भूमिका तय की जा सकती है। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: अभी तक हरी सब्जी को सेहत और स्वास्थ्य के लिहाज से सबसे पौष्टिक आहार माना जाता रहा है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के वनस्पति विज्ञान विभाग की माने तो यमुना के किनारे उगाई जाने वाली सब्जियों के जरिए दिल्ली की थाली में यमुना का प्रदूषण पहुंच रहा है। जी हां, DU की रिसर्च के मुताबिक टेस्ट के दौरान कई सब्जियों के सैंपल्स में क्रोमियम, लेड, कैडमियम और ऐसे पदार्थ पाए गए हैं जिनसे मेटल्स मिले हैं, जो स्वास्थ्य के लिए अगर देखा जाए तो बहुत हानिकारक हैं। शरीर में इनके पहुंचने से कैंसर होने तक का खतरा बढ़ जाता है।

0: स्वस्थ और सेहतमंद रहने की ख्वाहिश हर किसी की होती है। नियमित व्यायाम, भरपूर नींद के अलावा संतुलित आहार को अपनाने की सलाह दी जाती है। और जब पौष्टिक भोजन की बात आती है तो उनमें सबसे ऊपर हरी सब्जियों की गिनती होती है। हालांकि दिल्ली में हरी सब्जियां खाने की सलाह देना भारी पड़ सकता है, वो भी तब जब ये सब्जियां यमुना नदी के किनारे उगाई गई हों। दिल्ली में गंदगी, प्रदूषण और दुर्गंध की वजह से अभिशप्त यमुना से एक नई चिंता जुड़ गई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के वनस्पति विभाग की चौंकाने वाली एक रिसर्च सामने आई है जो सीधे तौर पर आपकी सेहत पर बुरा असर डाल सकती है। सिर्फ यही नहीं बल्कि आपको अपने खान पान के आदतों में बदलाव के लिए मजबूर भी कर सकती है। रिसर्च के मुताबिक यमुना के आसपास की मिट्टी और उसमें उगाई जा रही कुछ सब्जियों के सैंपल में हैवी मेटल्स यानी भारी धातुएं पाई गई हैं।
1: दिल्ली में यमुना किनारे इस वक्त हम उसी जगह पर मौजूद हैं जहां से प्रोफेसर दीनबंधु साहू ने सैंपल कलेक्ट किए थे। ये यमुना का किनारा आप देख रहे हैं और यमुना का पानी अभी भी पूरी तरह से काला है, बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, पारदर्शी नहीं है, मतलब पानी बिल्कुल भी साफ नहीं है। इसी इलाके से, यमुना के इसी स्ट्रेच से लगातार 2 साल तक प्रोफेसर दीनबंधु साहू सैंपल लेते रहे। उन्होंने पानी का सैंपल लिया, मिट्टी का सैंपल लिया, फिर उनसे जो सब्जियां उगाई जा रही थी उनका सैंपल लिया। और सब्जियों में भी जो सैंपल लिया वो सिर्फ एक बार नहीं बल्कि किसी सब्जी के 3 से 4 बार उसके सैंपल अलग अलग उसकी फसल के वक्त लिए गए और उन सैंपल में वो सारी खतरनाक चीज़ें मिली हैं।
0: दिल्ली यूनिवर्सिटी के वनस्पति विज्ञान विभाग की एक टीम यमुना के जल में प्रदूषण के स्तर को लेकर लंबे समय से रिसर्च कर रही है। इसी कड़ी में यमुना के आसपास में मिट्टी की भी जांच पड़ताल की गई, तब उसमें क्रोमियम, लेड, कैडमियम, आर्सेनिक और निकेल जैसी भारी धातुएं पाई गई। इसके बाद टीम ने उसी इलाके में उगाई जाने वाली सब्जियों के सैंपल भी लिए। प्याज, आलू, मेथी, धनिया, सरसों, पालक और सफेद मूली में क्रोमियम, लेड, कैडमियम, आर्सेनिक और निकेल जैसे हैवी मेटल्स मिले जो स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है।
2: पहले हमने देखा कि पानी जो है अलग अलग जगह से जब हमने लिए देखा कि हाईली पॉल्यूटेड है, और वही पानी में जब आपका सिंचाई हो रहा है सारे चीजें यमुना के किनारे, तो फिर हमने पहले सॉइल का टेस्टिंग किया। सॉइल टेस्टिंग में देखा गया कि ये काफी मात्रा में उसमें हैवी मेटल्स है। तो हमने सोचा है कि जो आपका यहाँ खेती हो रहा है अलग अलग टाइप का सब्जी का, तो क्यों उसको ला के हम टेस्टिंग ना करें। तो उसको जब हमने टेस्टिंग किए उसमें देखे कि काफ़ी भारी मात्रा में आपको हैवी मेटल्स पाया गया है, चाहे कैडमियम हो, क्रोमियम हो, आर्सेनिक हो, अलग अलग वेजिटेबल्स है, प्याज है, आलू है, मेथी है, धनिया है। तो उसमें हमने देखा कि ये जो कैंसर कॉजिंग हैवी मेटल्स है वो काफ़ी हैवी मात्रा में पाया गया है।
0: दिल्ली में यमुना नदी की 22 किलोमीटर लंबाई है। कई इलाकों में नदी के दोनों किनारों पर खेती होती है। यही वजह है कि रिसर्च टीम ने किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले पानी, मिट्टी और सब्जियों के 3 अलग अलग बार सैंपल लिए। हर बार एक ही तरह का परिणाम सामने आया। कुछ मामलों में हैवी मेटल्स की मात्रा तय अंतर्राष्ट्रीय मानकों से कई गुना ज्यादा मिली। इस दौरान यमुना के पानी में अलग अलग तरह के केमिकल के अलावा कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया भी काफी ज्यादा मात्रा में मिला।
2: एक सैंपल्स में आप कभी कोई डाटा को वैलिडेट नहीं कर पाएंगे। सैंपल्स हमेशा ट्रिप्लिकेट में होता है, तो 3 बार सैंपल्स को ट्रिप्लिकेट में हमने किया और रिजल्ट्स वही निकला कि हर हैवी मेटल्स का जो है काफ़ी हाई लेवल में पाया गया है। अगर आप देखेंगे दिल्ली में यमुना 22 किलोमीटर का स्ट्रेच है, पानी बिल्कुल काला है। यमुना 7-8 स्टेट में लगभग 1800 किलोमीटर का स्ट्रेच है, बट ये जो स्ट्रेच है ये काफ़ी हेविली पॉल्यूटेड है और पानी में तो कोलीफॉर्म बैक्टीरिया जो है जो सेहत के लिए पूरा हानिकारक है, उसका लोड भी बहुत ज़्यादा है। तो जब खेती होता है तो पानी वहाँ से आता है और सीपेज होकर भी पानी आता है।
0: दिल्ली में आजीविका चलाने के लिए कई लोग यमुना किनारे सब्जियां उगाने के काम से जुड़े हैं, जिनकी वजह से जहरीली सब्जियां बाजार में बिकने के लिए पहुंच जाती हैं। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि अगर इसी तरह के प्रदूषित पानी का इस्तेमाल खेती में किया जा रहा है तो उसका असर सब्जियों पर कितना पड़ सकता है और वो स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है, यह समझना मुश्किल नहीं है। सब्जियों में सुरक्षित सीमा से कई गुना अधिक भारी मात्रा में भारी धातुओं का मिलना जानलेवा कैंसर को न्योता देना है।
1: जैसे अभी यमुना किनारा है और मैं आपको दिखाऊं तो आप वहां पर एक वो झोपड़ी देख पा रहे हैं और उसी जगह पर ठीक उसके पास में खेती की जा रही है सब्जियों की। फिलहाल वहां जाना अभी हमारे लिए संभव नहीं है, लेकिन ऐसे पूरे ही स्ट्रेच पर आपको यमुना के जगह जगह पर लोग दिख जाएंगे जो कि सब्जियों को उगाते हैं। और आप किसी भी कोई भी ऐसे भारी तत्व जो किसी सब्जी में होते हैं या फिर फसल में होते हैं तो वो जब शरीर में जाते हैं तो आपके शरीर को वो कैंसर की तरफ ले जाते हैं, चाहे वो निकेल हो, चाहे वो क्रोमियम हो या फिर लेड हो। इन सारी चीज़ों की मात्रा सब्जियों में कई गुना ज़्यादा मिली है, वो सब्जियां जो इसी पानी से उगाई जा रही हैं।
0: दरअसल दिल्ली में यमुना में छोटे बड़े 22 नाले गिरते हैं, केवल 11 नालों का पानी ट्रीट हो रहा है। ऐसे में घरों से निकलने वाला गंदा पानी यमुना में सीधा गिर रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली की लाइफ कहे जाने वाली यमुना के किनारे पैदा होने वाली सब्जियों का ये हाल हो गया है। सबसे बड़ी बात, खेतों से लेकर हमारे किचन तक पहुंचने के बाद सब्जियों को 3-4 बार साफ पानी से धोने का भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। सब्जियों की संरचना के लिए जिम्मेदार पादप कोशिकाएं यानी प्लांट सेल से हैवी मेटल्स का निकलना नामुमकिन होता है।
1: एक बात आपको हम और बता दें कि अमूमन ये मिथ हम लोग मानते हैं कि किसी सब्जी को अगर लेकर आए हैं तो उसे 3-4 बार आप गर्म पानी से साफ कर लीजिए ताकि जो उसमें कीटाणु हैं, जो दिक्कतें हैं वो निकल जाएं। लेकिन प्रोफेसर दीनबंधु साहू का साफ साफ कहना है कि सब्जी को महज गर्म पानी से धोने भर से उसमें जो दिक्कतें हैं वो बाहर नहीं निकलने वाली, क्योंकि अगर इसी पानी से उनकी खेती की जा रही है, इसी पानी का इस्तेमाल उन सब्जियों को उगाने में किया जा रहा है तो वो सारी चीज़ें उन सब्जियों के सेल्स में होंगी, जिसे निकालना साफ करना बेहद मुश्किल है। मतलब साफ है कि अगर आप इस सब्जी का सेवन कर रहे हैं तो आपके शरीर में दिक्कत होना तय है, आज नहीं तो कल सही। कुल मिलाकर इससे बचने के क्या तरीके हो सकते हैं वो तमाम तरीके भी बताए गए हैं, लेकिन फिलहाल आप लोगों के पास क्या ऑप्शन है, आपके पास बस एक ही ऑप्शन है कि जब भी आप सब्जी वाले के पास जाएँ तो पहले उससे पूछें कि ये सब्जी कहाँ उगाई गई है, इसका सोर्स क्या है, ताकि आपको जानकारी मिल सके कि उसे उगाने में किस तरह के पानी का इस्तेमाल किया गया है। कहीं वो पानी यमुना के नदी का तो नहीं है, बिल्कुल काला तो नहीं है, क्योंकि अगर उसकी उगाई सब्जियाँ आप पीते हैं तो शायद आप धीरे धीरे कैंसर की तरफ बढ़ रहे हैं। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, दिल्ली।
3: खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज़ टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
4: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे।
4: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला।
5: और वक्त है फैक्ट चेक की आखिरी सफर का, आपको लिए चलते हैं वायरल दुनिया में, दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं और जिन्हें खूब पसंद किया जा रहा है।
7: एक तरफ छोटे छोटे बच्चे और दूसरी तरफ सिक्योरिटी गार्ड, दोनों के बीच शुरू हुआ टग ऑफ वॉर का मुकाबला। बच्चे भी पूरी ताकत लगाकर रस्सी खींच रहे थे, लेकिन तभी सिक्योरिटी गार्ड ने ऐसा दाव चला कि पूरा खेल ही पलट गया। गार्ड ने बच्चों की तरफ कैंडी फेंक दी, कैंडी देखते ही बच्चों ने रस्सी छोड़ दी और कैंडी उठाने दौड़ पड़े। बस फिर क्या था, गार्ड ने मुकाबला जीत लिया। दिल्ली मेट्रो में सफर के दौरान अगर फोन या पर्स कहीं छूट जाए तो परेशानी होती है, लेकिन सोचिए अगर इसी भीड़ में किसी का छोटा बच्चा अपने माता पिता से बिछड़ जाए तो उस वक्त परिवार पर क्या गुजरती होगी। ऐसा ही एक भावुक मामला दिल्ली मेट्रो की मजेंटा लाइन से सामने आया है। करीब 8 से 10 साल का एक बच्चा अपनी माँ से बिछड़ गया। बच्चे को अपने माता पिता के नाम और घर का पता तो मालूम था, लेकिन घर में किसी का मोबाइल नंबर याद नहीं था। ऐसे में मेट्रो स्टाफ ने जिम्मेदारी संभाली और आखिरकार बच्चे को उसकी माँ से मिलवा ही दिया। लोगों को ये वीडियो खूब पसंद आ रहा है।
8: बच्चे के पिताजी आप हैं?
7: क्लासरूम में आमतौर पर बच्चे पढ़ाई करते हुए नजर आते हैं, लेकिन कभी कभी पढ़ाई के बीच कुछ ऐसे पल भी आ जाते हैं जो पूरे माहौल को खुशनुमा बना देते हैं। ऐसा ही एक प्यारा वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है। बच्चे एक एक भजन पर डांस करते दिखाई दे रहे हैं। बच्चे के चेहरे की मासूम मुस्कान और उसका उत्साह देख कर आसपास मौजूद टीचर्स भी खुश हो गए। बच्चों के डांस का सबसे प्यारा हिस्सा उनका एक्सप्रेशन और खुशी दिखाई देती है। वो जिस तरह से गाने पर झूमते हैं उसे देखकर किसी के भी चेहरे पर मुस्कान आ सकती है।

0: फिल्म हनुमान अंश का लोकप्रिय गाना मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान को इस विदेशी शख्स ने अपने अंदाज में गाकर लोगों का दिल जीत लिया।
1: भरोसे हनुमान सागर में
0: आवाज में भक्ति का भाव साफ महसूस किया जा सकता है। लोग विदेशी शख्स की आवाज और उसके अंदाज की तारीफ कर रहे हैं।

0: सर्च का विकल्प है, उस पर टैप करें और व्हाट्सएप लिखकर खोजें।
1: बार सब खोल लिया मैंने।
0: अब आप व्हाट्सएप में नीचे बाईं ओर जो अपडेट्स का विकल्प है उसे दबाएं।
2: माँ को व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाना सीखना था तो उन्होंने मदद के लिए बेटे को नहीं बल्कि गूगल के एआई टूल जेमिनी को अपना गाइड बना लिया।
0: जी हाँ, स्क्रीन के निचले बाएं कोने में जो गोल आइकॉन है वो अपडेट्स का है, उसे दबाएं।
1: अच्छा, दबा दिया।
0: जी हाँ, आप अपडेट्स वाली स्क्रीन पर आ गई हैं। अब नया स्टेटस लगाने के लिए सबसे ऊपर एड स्टेटस पर टैप करें या फिर ऊपर कोने में दिए गए कैमरा या पेंसिल आइकॉन का उपयोग करें।
2: माँ और एआई के बीच हुई ये बातचीत इतनी प्यारी और मजेदार है कि लोग इस वीडियो को बार बार भी देख रहे हैं।
0: बहुत अच्छी। अब नीचे दाहिने कोने में दिए गए हरे रंग के तीर वाले बटन को दबा दें ताकि आपके स्टेटस पर लग जाए।
1: लगा दी।
0: बहुत बढ़िया, अब आपकी फोटो स्टेटस पर सफलतापूर्वक लग चुकी है।
1: अरे सुंदर आई ना।
3: हो गए 3-2, 3-2 हो गए, 3-1 हो गए, ये भी एक जादू ही है।
2: ट्रैफिक के बीच बाइक पर तीन लोग जा रहे थे तभी सामने पुलिसकर्मी नजर आ गया। इसके बाद ऐसा जुगाड़ हुआ कि बाइक पर अचानक सिर्फ दो लोग रह गए। लगा कि चलान से बचने की तरकीब काम कर गई, लेकिन कांस्टेबल की नजरों से इस जादू बच नहीं पाया। उसने तुरंत पूरी कहानी समझ ली और फिर जो अंदाज अपनाया उसे देख कर लोग मुस्कुरा उठे।
3: हो गए 3-2, 3-2 हो गए, 3-1 हो गए, ये भी एक जादू।
2: दरअसल पुलिसकर्मी के पास पहुंचते ही बाइक पर बैठा एक व्यक्ति तुरंत नीचे उतर गया और बिना कुछ कहे ऐसे आगे बढ़ने लगा जैसे उसका बाइक से कोई लेना देना ही ना हो। उसे शायद लगा कि इस तरह पुलिस की नजरों से बच जाएगा, लेकिन कांस्टेबल की नजरें पहले ही उसकी चाल पकड़ चुकी थी। पुलिसकर्मी ने उसे जाते हुए देखा तो तुरंत रोक लिया, फिर मजेदार अंदाज में पूछा, अरे कहाँ जा रहे हो, 3-2 कैसे हो गए?
3: हो गए 3-2, 3-2 हो गए, 3-1 हो गए, ये भी एक जादू ही है। अरे कहाँ जा रहे हो,
4: क्या हुआ,
3: 3-2 कैसे हो गए?
2: बस यही वो पल था जिसने पूरे वीडियो को मजेदार बना दिया। इसके बाद मामला सिर्फ चालान तक नहीं पहुंचा। कांस्टेबल ने शख्स को समझाया कि बाइक पर तीन लोगों के बैठने के बजाय वह ऑटो से जाए, यानी पुलिस से बचने के लिए की गई छोटी सी तरकीब आखिरकार काम नहीं आई।
3: ये तो बहुत जरूरी है।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़। और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से

44. कप्तान शुभमन गिल ने रचा इतिहास, 117 गेंद में जड़ा दोहरा शतक, सबसे तेज शतक बनाने का बनाया विश्व रिकॉर्ड। एशियन गेम्स में भारत की चमक बरकरार, 87 किलोग्राम ग्रीको रोमन रेसलिंग इवेंट में सुनील कुमार ने जीता ब्रॉन्ज, आज तीरंदाजी में 3 और शूटिंग में आया 1 गोल्ड, भारत के खाते में कुल 10 गोल्ड। पिछले 5 वर्षों में इस साल सितंबर महीने में सबसे ज्यादा साफ रही दिल्ली की हवा, औसत EQI 102 दर्ज किया गया। कोलकाता में नवरात्र की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं, वर्धमान में मां दुर्गा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे कारीगर।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। देश में त्योहारों के मौसम की शुभ शुरुआत होने वाली है। 11 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र का शुभारंभ हो रहा है। ऐसे में देश के अलग अलग शहरों में मंदिर और पंडाल सजाए जा रहे हैं। माँ दुर्गा की मूर्तियों के निर्माण का काम अब अंतिम चरण में है। यूं तो देश भर में नवरात्र पर माँ दुर्गा की भक्ति का उत्सव मनाया जाता है, लेकिन नवरात्र का सबसे गाढ़ा रंग चढ़ता है पश्चिम बंगाल पर। बाकी जगहों पर तो उत्सव के रंग नवरात्र में बिखरेंगे, लेकिन कोलकाता का एक कोना ऐसा भी है जहां वास्तव में उत्सव पूजों की शुरुआत से पहले नजर आता है। कोलकाता का कुमारटुली इलाका देवी प्रतिमाओं के निर्माण के लिए दुनिया भर में काफी प्रसिद्ध है। कुमारटुली में इन दिनों माँ दुर्गा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यहाँ पीढ़ियों से रहते आ रहे मूर्तिकार अपनी अपनी कल्पना के आधार पर माँ के स्वरूप को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिर क्या है कुमारटुली की कहानी और क्यों सारा कोलकाता माँ की प्रतिमाओं के लिए हुगली किनारे बसे इसी मोहल्ले का रुख करता है।

0: एक ऐसा शहर जो सोता है इतिहास के पालने में। पर एक रोज जब शरद ऋतु की हवाओं में घुल जाती है शिवली फूलों की महक, तब हुगली की ओर से आते मध्यम झोंकों के बीच कला की उंगलियां सहलाकर जगाती हैं जिसे, और जाग उठता है ये शहर साल के सबसे बड़े उत्सव के लिए। और इसी शहर के कोने में चुपचाप शुरू हो जाती है ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति को आकार देने की कहानी। वो कहानी जो शुरू होती है एक काट के टुकड़े से, एक बिना तराशे पत्थर से और माँ गंगा की मिट्टी से। ये कहानी है उसी मिट्टी के साक्षात महामाया बन जाने की।
1: माँ का इतना अद्भुत यहाँ होता है कि माँ आती हैं और मतलब बेटी हैं वो, तो कैसे उसका सब कुछ होता है, उनका

0: किनारे बसा कुम्हार टोली, बंगाली में कुमोर यानी कुम्हार और टोली यानी बस्ती। लगभग 300 साल पुराना ये इलाका सिर्फ एक मोहल्ला नहीं बल्कि कला का एक जीवंत संग्रहालय है, जहां हर साल आकार लेता है माँ दुर्गा का वो भव्य रूप जिस पर शब्दकारों ने मुक्त कंठ से स्तुतियां पढ़ी, चित्रकारों ने प्रतिबद्ध होकर चित्र बनाए और मूर्तिकारों ने गढ़ी मूर्तियां। कोलकाता का कुम्हार टोली उन्हीं मूर्तिकारों की बस्ती है, जहां के कारीगर अपने अपने दृष्टिकोण से रचते हैं माँ का ये महारूप।
1: कुम्हार टोली की मिट्टी की खुशबू ये एहसास दिलाता है कि बंगाल की सबसे श्रेष्ठ उत्सव दुर्गा पूजा बहुत नजदीक है और इस समय हम कुम्हार टोली में ही उपस्थित है, जहां से बंगाल के मैक्सिमम पंडाल्स में माता दुर्गाओं की मूर्ति पहुंचती है। माता दुर्गाओं की मूर्ति सज धज के बन ठन के जाती है इसी कुम्हार टोली से। और इस बीच कुम्हार टोली में अभी बहुत ही व्यस्तता चल रहा है, जो मृत शिल्पी है, जो आर्टिस्ट है, वो लोग दिन भर काम कर रहे हैं माताओं की मूर्ति रेडी करने के लिए।
0: बताया जाता है कि 18वीं शताब्दी के मध्य में जब राजा नवकृष्ण देव ने अपने घर में दुर्गा पूजा की शुरुआत करवाई, तब वे देवी देवताओं की सुंदर मूर्तियां बनाने के लिए बंगाल के ही कृष्णा नगर और आसपास के इलाकों से कुछ कुशल कारीगरों को लेकर यहाँ आए। धीरे धीरे ये कारीगर हुगली नदी के पास इसी इलाके में बस गए, जिसे आज कुम्हार टोली या कुम्हार टोली कहा जाता है। दिन गुजरते गए, गंगा नदी के किनारे की ये उपजाऊ और चिकनी मिट्टी इन कारीगरों का नसीब बन गई। पीढ़ी दर पीढ़ी, दादा से पिता और पिता से बेटे तक ये हुनर इस मिट्टी की तरह ही यही ठहर गया। आज भी इन कलाकारों के वंशज कुम्हार टोली की छोटी तंग गलियों में माँ की प्रतिमा गढ़ते हैं। जगह कम है पर माँ का आशीर्वाद बड़ा है। अब के साल भी ये कलाकार तन मन से माँ का स्वरूप गढ़ने में जुटे हैं।
2: जो इतना दिन बारिश था उससे तकलीफ हुआ था, अभी जो बारिश दिया है सूर्योदय ने, दो दिन से जो खरा रोद उठा वो हम लोग का अच्छा है। माने एक घंटा दो घंटा में जो मिट्टी का काम होता है, अभी लास्ट टाइम में जो मिट्टी का काम को होता है वही अभी सूख रही है, ठीक है। तो और दो दिन लगेगा, फिर रंग पेंट पेंट होगा, फिर हो जाएगा कपड़ा। और मेरा 90% काम हो गया कलर का, अभी चल रही है साड़ी, माँ का जो साड़ी है अभी साड़ी चल रही है, इसके बाद आएगा ऑर्नामेंट्स, ठीक है। ये ऑर्नामेंट्स बाल जो है उस लगा के फिर मौला जब आएगा तब वो मेरा घर से चाटो प्रतिमा पार्टी आके ले जाएगी।
0: कोलकाता के कई बड़े पंडाल कुम्हार टोली से ही मूर्तियां ले जाते हैं। महीनों पहले मूर्तिकारों को बता दिया जाता है कि माँ के स्वरूप में अब की बार क्या खास होना चाहिए। ग्राहकों की मांग और अपनी कल्पना के आधार पर कुम्हार टोली के कलाकार मूर्ति बनाने में जुट जाते हैं। महीनों तक काम चलता है और आखिरकार नवरात्र से पहले मां का स्वरूप बनकर तैयार हो जाता है।
3: यहां पर हम जो चाहते हैं वही मिल जाता है, वहां पर बागमारी में ये फैसिलिटी नहीं था, यहां पर हम जैसा बोलते हैं ये लोग वैसे ही बना देते हैं। अलग है, ये बहुत पुराना है, ये प्राचीन काल से चला हुआ रहा है। बागमारी का जो है और आदर्श जगह जो सब नया बना हुआ है, ये ब्रिटिश जमाना से चला हुआ आ रहा है और अभी तक लोग आप देख अगर आप यहाँ सर्वे कीजिएगा देखिएगा सबसे ज्यादा मूर्ति यहीं पर।
0: वास्तव में माँ दुर्गा की प्रतिमा का निर्माण केवल कला का प्रदर्शन भर नहीं है बल्कि ये एक सर्वोच्च आध्यात्मिक अनुष्ठान है। माँ की मूर्ति का निर्माण शरीर की तरह ही 5 तत्वों से शुरू होता है, लकड़ी, बांस, पुआल, रस्सी और गंगा की मिट्टी। सबसे पहले बांस और लकड़ियों की मदद से मूर्ति का मजबूत ढांचा तैयार किया जाता है, जिसे बंगाली भाषा में काठमो कहा जाता है। इस ढांचे पर काम शुरू करने से पहले भगवान गणेश की पूजा होती है, फिर बांस के ढांचे को सूखे पुआल से अच्छी तरह बांधा जाता है। इसके बाद गंगा नदी के तट की चिकनी मिट्टी, जिसे एटेल माटी कहते हैं, उसे धान की

0: भूसी के साथ मिलाकर पहली मोटी परत चढ़ाई जाती है। मूर्ति को धूप में सुखाया जाता है और दरारों को कपड़ों की पट्टी से भरा जाता है। पहली परत सूखने के बाद बेले माटी यानी बारीक चिकनी मिट्टी की दूसरी परत लगाई जाती है। इससे मूर्ति को चिकना, गोल और सुंदर आकार मिलता है। इस चरण में चेहरे, हाथों और उंगलियों को बारीकी से गढ़ा जाता है। मूर्ति पूरी तरह सूखने के बाद उस पर सफेद रंग का प्राइमर या बेस कोट लगाया जाता है। इसके बाद स्प्रे या ब्रश का इस्तेमाल करके माँ की प्रतिमा को सुंदर रंगों से सजाया जाता है। फिर बारी आती है सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम धार्मिक अनुष्ठान चोखू दान की, जिसमें महालया या पूजा से ठीक पहले देवी की आंखें बनाई जाती हैं। अंत में मूर्ति को सुंदर वस्त्रों, आभूषणों और बालों से सजाया जाता है।
1: इट्स अ वेरी डिवाइन फीलिंग है ना। माँ को हम लोग पंडाल हॉपिंग में जब जाते हैं तो उनका पूरा सजा हुआ रूप देखते हैं, और यहाँ पर आज हम कैसे शुरुआत होती है, कैसे पुआल और मिट्टी से उनको एक पहले एक स्ट्रक्चर देते हैं, फिर उसकी आप प्लास्टर ऑफ पेरिस करते हैं, प्राइमर और कलर और फिर ज्वेलरी, तो वो जो पूरी की पूरी जर्नी हम पहले शुरू गली से शुरू होते और गली के अंत तक आते आते माँ का पूरा प्रारूप ही चेंज हो जाता है, और यहाँ से फिर जो पंडाल तक का सफ़र है वो बिल्कुल ही अद्भुत रहता है। आप सोच नहीं सकते कि वो पंडाल में लाइट्स के साथ में जो वो इफेक्ट आता है, ये मूर्ति जो यहाँ पे हम देखते हैं वो और भी भव्य हो जाती हैं।
2: वेट करने के बाद ये वाला माँ का रूप देखने को मिलता है, नहीं तो आप देखेंगे बस सजी धजी माँ पंडाल में दिख जाती है, लेकिन ये वाली चीज़ कहीं नहीं दिखती। तो इसके लिए वेट करने के लिए तो आना ही पड़ेगा यहाँ पे। और इसकी जो मिट्टी की जो खुशबू आ रही है और कलर्स की जो महक आ रही है बहुत अच्छी है।
0: कुमार टोली में अब कई तरह की मूर्तियाँ बनती हैं, जिनमें मुख्य रूप से पारंपरिक एकचाला मूर्तियाँ होती हैं, जिनमें सारे देवता एक ही ढांचे में बनाए जाते हैं। तो वहीं आधुनिक थीम पर आधारित मूर्तियाँ भी ऑर्डर पर अब तैयार होती हैं, जिनमें सामाजिक संदेश देने वाली कलाकृतियाँ भी गढ़ी जाती हैं। बदलते वक्त के साथ कुम्हार टोली भी बदला है। अब तो यहाँ माँ की मूर्ति के निर्माण में AI की झलक भी दिखाई देने लगी है।
3: इस साल में AI बनाया है मैंने। आजकल AI से सब हो रहा है, AI से पढ़ना होता है, AI से एडिट हो रहा है, AI से आपका 20 साल का 50 साल, 100 साल, 300 साल का वही देश में कौन राजा था ओ AI अभी तो सब हो जाएगा AI से। अभी जो AI से मैं रोबोटिक दुर्गा किया है उत्तर दिनाजपुर कालियागंज में, वो मारात्मक वायरल हो गया, ठीक है। उसको जो प्रतिमा है वो रोबोटिक है, उसका जो AI दुर्गा, और उसका जो फेस है वो माँ का जो फेस वही फेस मैंने रखा है, लेकिन AI नहीं किया। जो तस्वीर मेरे पास आया है वो माँ का थोड़ा सा AI था, लेकिन ये तो माँ है, इसलिए माँ को मैं एक मिन्मय रूप मैंने दिया।
0: एक ही छत के नीचे माँ के अनंत रूप यहाँ नजर आते हैं। यही वजह है कि कोलकाता ही नहीं बल्कि आसपास के शहरों से भी लोग मूर्तियाँ लेने यहाँ पहुँचते हैं।
4: ये बहुत पुराना संबंध है, यहाँ पे आज प्राचीन काल से चले आ रहा है। एक यहाँ पे मूर्ति, सारा मूर्ति यहीं पे बनता है, यहीं से स्टार्टिंग हुआ है, और हम लोग भी आज बचर बचर यहीं से आके लेके जा रहे हैं। हाँ, यहीं से हम लोग का पूजा कबड्डी मूर्ति लेता है, आज बहुत दिन से हम लोग यहीं से लिए जा रहे हैं। ये जैसा चाहते हैं वैसा मिल भी जाता है, आते हैं हर बार हर तरह का देख के लेके जाते हैं।
5: तो यही क्या माता दुर्गा का प्राण केंद्र बन चुका है
6: एकदम 100%, इसमें कोई दो राय नहीं है।
5: आप लोगों का पंडाल्स के दुर्गा प्रतिमा की यहाँ से ले जा रहे हैं?
6: यहीं से ले जा रहे हैं, सामने ही मेरा मूर्ति बन रहा है, आप उसको भी देख सकते हैं।
4: ये बहुत पुराना संबंध है, यहाँ पे आज प्राचीन काल से चले आ रहा है। एक यहाँ पे मूर्ति, सारा मूर्ति यहीं पे बनता है, यहीं से स्टार्टिंग हुआ है, और हम लोग भी आज बचर बचर यहीं से आके लेके जा रहे हैं। इसके इतना बड़ा जगह तो कहीं है भी नहीं ना, अगर है भी तो वहाँ पे दो चार मूर्ति बन रहा है, चाहे 10 मूर्ति बन रहा है, मगर यहाँ पे तो आप एक एक घर में 10-15 मूर्ति बन रहा है।
0: दुर्गा पूजा के शुभारंभ से पहले कुम्हार टोली में मूर्तियाँ लेने वालों के बीच ही सेल्फी लेते माँ के अर्ध निर्मित रूपों को निहारते सैलानियों की भी भरमार है। कहते हैं दुर्गा पूजा में कोलकाता की रौनक निराली होती है, लेकिन पूजो से पहले वो सारी रौनक कोलकाता के इस एक इलाके में सिमटी नजर आती है, जहां माटी से मां को गढ़े जाने की यात्रा को अपनी आंखों से देखने बड़ी तादाद में सैलानी पहुंचते हैं।
7: एक्चुअली ये मेरा फर्स्ट टाइम है और मैंने बहुत सुना था, बट आज महसूस किया और बहुत अच्छा लग रहा है। अद्भुत जिसको बोलते हैं ना, वो एक्सपीरियंस हुआ और बहुत ऐसे डिवाइन सी फीलिंग हो रही है।
5: आज क्या घूमने ही आए थे?
7: जी बिल्कुल, ये दर्शन देवी माँ के अभी दर्शन करने आए थे हम लोग।
8: मैं भी पहली बार कोलकाता में आई हूँ और ये मतलब ये सुना बहुत था, मैम लोग से बहुत सुना था, तो मुझे बहुत ही मैं उत्साहित थी ये देखने के लिए कि क्या कैसे बनता है, वो मुझे बहुत जानना था। तो इतना सुंदर है कि मतलब इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते हम, तो बहुत ही सुंदर है, अद्भुत है ये नज़ारा। अभी मैंने माँ का जो मूर्ति बनते हुए कैसे बनाते हैं और कितने मेहनत से बनाते हैं वो देखा, और कितने लगन से बनाते वो चीज़ देखा, तो वो चीज़ महसूस कर रही हूँ कि सच में माँ का कैसे माँ मतलब वो फील आता है ना, वो फील आ रही है, बहुत सुंदर।
0: और महीनों की कड़ी मेहनत और समर्पण के बाद इसी यात्रा के अंत में आता है वो पल जिसे चोखू दान कहा जाता है। महालया के दिन जब मूर्तिकार माँ की आंखों की अंतिम लकीर खींचते हैं, तो मिट्टी का वो ढांचा जीवित हो उठता है। कुम्हार टोली की संकरी अंधेरी गलियों से निकलकर जब ये मिट्टी की प्रतिमा कोलकाता के भव्य पंडालों में रोशनी से चमकती है, तो पूरा शहर उत्सव के उल्लास से गमक उठता है। ये मूर्तियाँ गवाह हैं उस अटूट विश्वास की, जहाँ इंसान अपनी आस्था और मेहनत के दम पर मिट्टी से निराकार को साकार कर लेता है। कोलकाता के कुम्हार टोली से राही हल्दर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
9: तो ये तो बात थी बंगाल की, अब आपको लिए चलते हैं दिल्ली में बसे छोटे बंगाल यानी दिल्ली का सीआर पार्क। सीआर पार्क को दिल्ली का मिनी बंगाल भी कहा जाता है। शारदीय नवरात्र के दौरान यहाँ थीम आधारित कई दुर्गा पंडाल सजाए जाते हैं। इनमें कालीबाड़ी मंदिर में लगने वाला पंडाल की चर्चा और तैयारी तो दुर्गा पूजा के कई महीनों पहले शुरू कर दी जाती है। कोलकाता के कुमार टुली की तरह ही यहाँ भी प्रतिमा निर्माण की अपनी परंपरा है। हर साल शारदीय नवरात्र से करीब 4 महीने पहले यहाँ वर्कशॉप लगाई जाती है, जिसमें पुआल, मिट्टी और रंगों का इस्तेमाल करके भव्य दुर्गा मूर्तियां तैयार की जाती हैं। 1970 के दशक से यह परंपरा यूं ही निभाई जा रही है। फर्क यह है कि शुरुआत में इस वर्कशॉप में कुछ ही मूर्तियां आकार लेती थीं, लेकिन अब यहां हर साल करीब 800 मूर्तियां तैयार की जाती हैं। हर साल पूजो के समय सीआर पार्क की रौनक देखने लायक होती है। तो चलिए आपको दिखाते हैं और लेकर चलते हैं सीआर पार्क और दिखा देते हैं तैयारी दुर्गा पूजा की।

0: दिल्ली में बंगाल की संस्कृति, कला, साहित्य, संगीत और समृद्ध ऐतिहासिक विरासत की पहचान चितरंजन पार्क है, जो माँ दुर्गा के आगमन का इंतजार कर रहा है। 11 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र की शुरुआत होने जा रही है। नवरात्र माँ दुर्गा की आराधना और उनके 9 विशेष स्वरूपों को पूजने का पवित्र त्योहार है। हर साल शारदीय नवरात्र के दौरान चितरंजन पार्क यानी कि सीआर पार्क कोलकाता का प्रतिबिंब बन जाता है। शारदीय नवरात्र के करीब एक महीने पहले से पंडालों में अटूट आस्था, श्रद्धा, विश्वास और संकल्प के साथ माँ दुर्गा के आह्वान की तैयारी शुरू हो जाती है। 1960 के दशक में पहली बार यहाँ बसे बंगाली परिवारों ने शारदीय नवरात्र से जुड़ी सांस्कृतिक विरासत की नींव रखी थी। तब से यहाँ माँ दुर्गा की प्रतिमा को स्थापित करने की परंपरा को संजोने और समृद्ध करने का संकल्प पीढ़ी दर पीढ़ी लिया जा रहा है। यहाँ माँ दुर्गा की अलग अलग तरह की प्रतिमाओं को बनाने का काम पूरा साल चलता रहता है, लेकिन शारदीय नवरात्र के लिए माँ की मूर्तियों को तैयार करना अपने आप में विशेष अनुष्ठान की तरह होता है। चितरंजन पार्क में 3 दुर्गा पूजा समितियों की तरफ से 3 बड़े पंडाल बनाए जाते हैं। इनमें कालीबाड़ी मंदिर में दुर्गा पूजा बेहद भव्य और सबसे मशहूर है। कालीबाड़ी मंदिर में विराजमान होने वाली माँ दुर्गा की भव्य मूर्ति, रंग बिरंगी सजावट और 9 दिनों तक शाम को होने वाले सांस्कृतिक उत्सव हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं।
1: तो भाई देखिए, कोलकाता के साथ साथ दिल्ली भी पूरी तरह से तैयार हो रही है दुर्गा पूजा के लिए, क्योंकि माँ आने वाली हैं। और उसके लिए सबसे बढ़िया जो जगह होती है सीआर पार्क, जहाँ हर साल मैं आपको लेकर आती हूँ, और ये बिल्कुल सीआर पार्क का वही कालीबाड़ी मंदिर है। जरा तस्वीरें देख लीजिए, तैयारियां भी हो रही हैं, शुरुआत हो चुकी है। हालांकि बहुत जोर शोर से यहाँ तैयारियां हो रही हैं। ये वही पंडाल है जहाँ पर हर साल दुर्गा पूजा मनाई जाती है कालीबाड़ी मंदिर का। और अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर शुरुआत हुई है, यानी पंडाल अभी तैयार हो रहा है। पंडाल का थीम क्या है बहुत ही सीक्रेट रखा गया है, लेकिन इसके साथ ही साथ सबसे ज्यादा जो इंतजार रहता है वो रहता है मूर्तियों का। तो इस बार किस तरह की मूर्ति होगी, थीम क्या होगा, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर लोगों में एक्साइटमेंट होती है। क्योंकि भाई जो लोग बंगाल से बाहर रहते हैं, स्पेशली अगर हम दिल्ली की बात करें, तो उनके लिए सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट यही सीआर पार्क का एरिया होता है। तो आज मैं आपको सीधा वर्कशॉप लिए चलती हूँ, जहाँ पर मूर्तियों को बनाने का काम लगातार चल रहा है, और आपको मिलवाऊंगी उन कलाकारों से, उन कारीगरों से, जो हर साल इन मूर्तियों को आकार देते हैं। और फिर उसके बाद फाइनली, अगर आपको याद हो तो ये वो स्टेज होती है सामने, जहाँ पर पंडाल सजाया जाता है, माँ की मूर्ति को लाया जाता है। अभी भी अगर आप देखेंगे तो रफ यहाँ पर स्टेज तैयार की गई है, लेकिन चलिए मेरे साथ आपको मैं वर्कशॉप में लिए चलती हूँ और देखते हैं कि मूर्ति बनाने का काम कहाँ तक पहुँचा है। आइए।
0: हर साल दुर्गा पूजा से पहले दुर्गा प्रतिमा के निर्माण से जुड़ी कार्यशाला आयोजित की जाती है, जहाँ कुशल कारीगर बांस, पुआल और मिट्टी से देवी की भव्य मूर्तियाँ तैयार करते हैं। 1970 के दशक से कालीबाड़ी मंदिर के सहयोग से चली आ रही इस विशेष कार्यशाला में हर साल सैकड़ों प्रतिमाओं को आकार दिया जाता है, जो दिल्ली एनसीआर की 300 से अधिक पूजा समितियों को भेजी जाती है।
1: तो देखिए, मंदिर है और मंदिर के ठीक पीछे ये वो वर्कशॉप है, कार्यशाला है, जहाँ पर मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, मूर्तियों को आकार दिया जाता है। वैसे तो यहाँ पर जो काम है वो पूरा साल चलता रहता है, लेकिन जो आखिरी का समय होता है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उनमें कलर भरना है, फाइनल टच देना है। और ये वो कार्यशाला है जहाँ से मूर्तियाँ दिल्ली एनसीआर और साथ ही साथ अगल बगल के जितने राज्य हैं वहाँ पर मूर्तियाँ यहाँ से भेजी जाती हैं, और यहीं पर आकार इनको दिया जाता है, और यहाँ से फिर ये मूर्तियाँ राजस्थान, पंजाब, दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, जहाँ जहाँ भी जरूरत होती है वहाँ इनको भेजा जाता है। सबसे बड़ी और ख़ास बात यह है, अगर आपको ध्यान हो तो कोलकाता में स्पेशली और पूरे बंगाल में जहाँ जहाँ मूर्तियाँ बनाई जाती हैं वहाँ पर मिट्टी कुमारतुली से लाई जाती है, और यहाँ पर भी इन मूर्तियों को आकार देने से पहले उस पवित्र मिट्टी को इनमें शामिल किया जाता है।
0: मूर्तिकार गोविंद अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी है, जो पारंपरिक रूप से माँ दुर्गा की प्रतिमाएं बनाने के काम में खुद को समर्पित कर चुके हैं। दुर्गा माँ की प्रतिमा उनके हुनर और विरासत को भी दर्शाती है।
1: तो गोविंद जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और माँ की जो मूर्ति है उसके चेहरे को आकार दिया जा रहा है, और साथ ही साथ मैं इनका परिचय कराऊं, ये तीसरी पीढ़ी है जो लगातार माँ की मूर्तियों को और दुर्गा पूजा की तमाम मूर्तियों को बनाते आए हैं। गोविंद जी
2: नमस्कार जी।
1: नमस्ते। कहाँ तक पहुँचा है काम?
2: काम अभी बस पेंटिंग का इंतजार कर रहा है, कल से नहीं तो परसों से पेंटिंग चालू हो जाएगा हमारा, और कुछ एक दो मूर्ति में मिट्टी का काम बाकी है, वो भी अभी काम चल रहा है, तो उसी का भी तैयारी हो रहा है। इधर पेंटिंग का भी थोड़ा फिनिशिंग करके, मिट्टी का फिनिशिंग करके तो कल परसों से ही पेंटिंग चालू।
0: इस शारदीय नवरात्र की शुरुआत 11 अक्टूबर से हो रही है और इसका समापन 20 अक्टूबर को विजयदशमी यानी दशहरे के दिन होगा। कोलकाता का कुमारटोली पवित्र दुर्गा प्रतिमाएं बनाने के लिए मशहूर है। उनमें वहां बहने वाली गंगा नदी की मिट्टी को मूर्तियों के लिए सबसे अच्छा और शुभ माना जाता है। सियार पार्क के कालीबाड़ी मंदिर में मौजूद कार्यशाला में भी परंपरा और शुद्धता बनाए रखने के लिए मिट्टी वहीं से आती है।
1: अच्छा, मिट्टी आप वहां से लेकर आते हैं?
2: वहां से मिट्टी ले आते हैं, और कुछ मिट्टी यूपी का उस साइड से आता है, खेत का भी मिट्टी होता है, तो मिला के आता है। इतना सारा मिट्टी तो लाना पॉसिबल नहीं है, तो जो फेस वगैरह होता है, जो हमारा जो कलकत्ता मिट्टी स्पेशल
1: जो आप बना ही रहे हैं,
2: बिल्कुल बिल्कुल ये कलकत्ता का मिट्टी ले आते हैं, और बाकी यूपी का पंजाब का जो खेत होता है ना, खेत का मिट्टी भी आता है।
1: ठीक है, यानी कि ये पर्टिकुलर रहता है कि माँ का और जो तमाम मूर्तियों का जो फेस है, वो जो बंगाल से मिट्टी आती है वो उसी से बना है।
2: फिनिशिंग अच्छा होता है, चिकनवर अच्छा होता है, उसमें कंकड़ कम होता है, फिनिशिंग अच्छा है, काम करने में अच्छा वो होता है। और दूसरी जगह मिट्टी थोड़ा कंकड़ होता है, रेत होता है, वो दूसरा काम पे आता है।
0: सनातन परंपरा में शारदीय नवरात्र का विशेष महत्व है। माना जाता है कि इस दौरान माता की पूजा अर्चना से देवी दुर्गा की खास कृपा प्राप्त होती है। माँ दुर्गा के 9 रूपों की विधिवत पूजा अर्चना भक्तों के लिए शुभ मानी जाती है। ऐसे में शारदीय नवरात्र की विशेष तैयारियां होती हैं। प्रतिमाओं के आकार लेने के दौरान हर तरफ माँ के जयकारे गूंजने लगते हैं। दिल्ली से नवजोत संधावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: तो जैसा कि हम हर बार कहते हैं कि उत्सव यानी गुड न्यूज टुडे, तो तैयार हो जाइए, तमाम रंग आपको लगातार जीएनटी पर दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, अच्छी खबरें जारी हैं, देखते रहिए जीएनटी।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: देखिए इन दिनों पितृपक्ष में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भू वैकुंठ नगरी श्री बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं, जहां वो भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के बाद ब्रह्म कपाल तीर्थ में अपने पितरों का तर्पण और पिंडदान कर रहे हैं। पितरों की मुक्ति के लिए श्री हरि के इस पावन धाम की दिव्यता ही ऐसी है कि ब्रह्म कपाल में पिंडदान और तर्पण की मान्यता और परंपरा को अब विदेशी भी आत्मसात करते नजर आ रहे हैं। रूसी तीर्थ यात्रियों ने यहां विधि विधान के साथ अपने पितरों के निमित्त पिंडदान और तर्पण किए।
2: जहाँ बहती है अलकनंदा की पवित्र धारा, उसी बद्रीनाथ के आंगन में पितरों की आत्मिक शांति के लिए पिंडदान हो रहा है। देवभूमि उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में जहाँ चार धाम यात्रा दर्शन के रंग बिखरे हैं, हर तरफ श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है, तो वहीं इन दिनों पितृपक्ष के दौरान भगवान विष्णु का ये धाम सिर्फ चार धाम दर्शन का केंद्र ही नहीं बल्कि पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता और स्मरण का भी पवित्र स्थल बना हुआ है। दरअसल यहाँ के ब्रह्म कपाल में मोक्ष की कामना और पितरों के प्रति श्रद्धा जैसी भावनाओं को लेकर अच्छी खासी संख्या में श्रद्धालु तर्पण के लिए पहुँच रहे हैं, अपने पूर्वजों के निमित्त पिंडदान कर रहे हैं। श्राद्ध परंपरा का भगवान बद्री विशाल के आंगन में होना ही इन तमाम श्रद्धालुओं को पुरखों के प्रति सम्मान और आध्यात्मिकता की अनुभूति दे रहा है।
3: कहा गया है इस स्थान पर पिंड देने से सात पीढ़ियों के पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ पर भगवान बद्री विशाल के बाल भोग से मनुष्य अपने पितरों को पिंड और तर्पण देता है, सात पीढ़ियों के पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और आप देख रहे हैं आजकल पितृपक्ष में काफी संख्या में लोग अपने पितरों को उद्धार के लिए ब्रह्म कपाली आए।
2: पितरों की मुक्ति के लिए श्री हरि के इस पावन धाम की दिव्यता ही ऐसी है कि यहाँ कराए जाने वाले पिंडदान और तर्पण को लेकर श्रद्धालुओं का विश्वास अटूट है। यही कारण है कि ब्रह्म कपाल में पिंडदान और तर्पण की मान्यता और परंपरा को अब विदेशी भी आत्मसात करते दिख रहे हैं। दरअसल भारत आए सात रूसी तीर्थयात्रियों ने भी यहाँ विधि विधान के साथ अपने पितरों के निमित्त पिंडदान और तर्पण किया। वैसे पहले भी सनातनी परंपरा उसके प्रति आस्था विदेशियों को काफी आकर्षित करती रही है, ऐसे में बद्रीनाथ धाम में विदेशी श्रद्धालुओं का अपने पुरखों का पिंडदान एक बार फिर दर्शा रहा है कि आस्था की कोई सीमा नहीं होती। ब्रह्म कपाल में पिंडदान का धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कर इन विदेशी श्रद्धालुओं का सनातनी परंपराओं और मान्यताओं के प्रति भाव जता रहा है कि संस्कृति अलग हो सकती है लेकिन पूर्वजों के प्रति श्रद्धा का भाव कमोबेश सभी जगह पर एक ही जैसा है। चमोली से कमल नयन सिलोरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: गुवाहाटी वनडे में भारत की शानदार जीत, वेस्ट इंडीज को 8 विकेटों से हराया, सीरीज में 2-0 की बढ़त, 44वें ओवर में चेस किया 406 रन का लक्ष्य। कप्तान शुभमन गिल ने रचा इतिहास, 117 गेंद में जड़ा दोहरा शतक, सबसे तेज शतक बनाने का बनाया विश्व रिकॉर्ड। एशियन गेम्स में भारत की चमक बरकरार, 87 किलोग्राम ग्रीको रोमन रेसलिंग इवेंट में सुनील कुमार ने जीता ब्रॉन्ज, आज तीरंदाजी में तीन और, शूटिंग में आया एक गोल्ड, भारत के खाते में कुल 10 गोल्ड। पिछले 5 वर्षों में इस साल सितंबर महीने में सबसे ज्यादा साफ रही दिल्ली की हवा, औसत EQI 102 दर्ज किया गया। कोलकाता में नवरात्र की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं, बर्धमान में मां दुर्गा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे कारीगर। ग्यारह अक्टूबर को कलश स्थापना के साथ ही शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो जाएगी। 9 दिनों तक माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना होगी। कोलकाता समेत पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की अद्भुत छटा देखने को मिलती है, जिसकी तैयारियां तेजी से चल रही हैं। आज हम आपको कोलकाता की एक ऐसी जगह दिखाने जा रहे हैं जो देवी देवताओं की मूर्ति बनाने के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है।

0: आस्था का पर्व और माता रानी के स्वागत की तैयारी। कहीं माँ दुर्गा की भव्य प्रतिमाएं बनाई जा रही है तो कहीं पंडाल सजाए जा रहे हैं। आदि शक्ति आएंगी, अपने भक्तों पर कृपा बरसाएंगी। 9 दिनों के भक्ति के इस उत्सव में हर तरफ जय माता दी के जय घोष की गूंज सुनाई देगी। इसी के चलते देश भर में नवरात्र की तैयारियां तेजी से आगे बढ़ रही है। पश्चिम बंगाल और विशेषकर कोलकाता के लिए दुर्गा पूजा केवल एक धार्मिक त्योहार नहीं बल्कि बंगाली संस्कृति, कला, भाईचारे और अर्थव्यवस्था की धड़कन है। इसलिए यहाँ इन दिनों मूर्तिकारों की व्यस्तता कहीं अधिक बढ़ी हुई है। माँ दुर्गा की छोटी से लेकर बड़ी मूर्तियों को वो तेजी से आकार देने में जुटे हुए हैं। रंग रोगन का काम चल रहा है।
1: माता दुर्गा की मूर्ति सज धज के बन ठन के जाती है इसी कुमोटुली से। और इस बीच कुमोटुली में अभी बहुत ही व्यस्तता चल रहा है, लोगों का भी यहाँ पे आना जाना बन रहा है। कोई लोग आ रहा है दोस्तों के साथ फोटो खींचने, कोई यहाँ पे पूजा के पहले ही पूजा का वाइब्स लेने कुमोटुली पहुंच रहा है, माता दुर्गा की मूर्ति को दर्शन कर रहा है।
0: कोलकाता का कुम्हार टोली इलाका दुनिया भर में माँ दुर्गा की पारंपरिक और कलात्मक मूर्तियाँ बनाने के लिए प्रसिद्ध है। करीब 300 साल पुरानी कुम्हारों और मूर्तिकारों की इस बस्ती को पॉटर्स कॉलोनी कहा जाता है। यहाँ देवी दुर्गा की मूर्तियाँ विशेष रूप से गंगा की मिट्टी, बांस और भूसे के ढांचे पर हाथों से गढ़ी जाती है।
2: स्टूडियो में कोई 20 बना रहा, कि 15 बना रहा, कि 10 बना रहा, ऐसा करके होता। कोई 50 भी बनाया है, ऐसा नहीं है जो 10-20 ना, 50 भी बना रहा ऐसा होता है। ये तो गुण नहीं पाएगा तो सारा कलकत्ता में बाहर में सब हम लोग की मूर्ति भेज रहा है।
0: कुम्हार टोली में मिट्टी की मूर्तियां बनाने वाले लगभग 300 स्टूडियो है, जहां कारीगर मूर्तियों को अब अंतिम रूप देने में व्यस्त है। लगभग सभी स्टूडियो को पहले ही एडवांस बुकिंग मिल चुकी है। यहां बनी दुर्गा प्रतिमाओं की केवल कोलकाता या देश के दूसरे हिस्सों में ही नहीं बल्कि विदेश तक डिमांड है। अब तो यहां के मूर्तिकार प्रतिमाओं के निर्माण में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक का इस्तेमाल कर रहे हैं।
3: मेरा इस साल जो हम जो ठाकुर बनाते हैं 12-14 माने वो आज से 2 मास पहले वो बुकिंग हो गया। अभी जो AI से मैं रोबोटिक दुर्गा किया है उत्तर दिनाजपुर कालियागंज में, वो मारात्मक वायरल हो गया, ठीक है। उसका जो प्रतिमा है वो रोबोटिक है, उसका जो AI दुर्गा और उसका जो फेस है वो माँ का जो फेस, वही फेस मैंने रखा है, लेकिन AI नहीं किया। जो तस्वीर मेरे पास आया है वो माँ का थोड़ा सा AI था, लेकिन ये तो माँ है, इसलिए माँ को मैं एक मिनमय रूप मैंने दिया, ठीक है। उसको जो आक्स, उसको जो सारिस, उसको जो सरस्वती, लक्ष्मी, कार्तिक, गणेश जो है, उसको जो महिषासुर, उसको जो लायन, सब आंखों में LED लाइट्स जलेंगे।
1: अच्छा,
3: साड़ी में, साड़ी में भी, और जो अस्त्र है फाइबर का, उसका उसका भीतर में LED लाइट्स है, वो ब्लिंक करेगा।
1: अच्छा।
3: ठीक में, और उसका जो पैंडल है, वो जो रोबोट है वो घूमेगा।
1: अच्छा।
3: वो बातचीत करेगा, अब जो बोला वो बात वो आंसर दे देंगे।
4: बागमारी का जो है और आदर्श जगह जो सब नया बना हुआ है, ये ब्रिटिश जमाना से चला हुआ आ रहा है और अभी तक लोग, आप देख, अगर आप यहाँ सर्वे कीजिएगा देखिएगा, सबसे ज्यादा मूर्ति यहीं पर,
5: यहाँ पे मूर्ति, सारा मूर्ति यहीं पे बनता है, यहीं से स्टार्टिंग हुआ है और हम लोग भी आज बचर बचर यहीं से आके लेके जा रहे हैं।
0: यहाँ मूर्ति का ऑर्डर दे चुके लोग ही नहीं पहुँच रहे बल्कि बड़ी संख्या में कला प्रेमी भी आ रहे हैं, जो मूर्तिकारों और कारीगरों की मेहनत को करीब से देखने और समझने की इच्छा रखते हैं। यहाँ देवी माँ की दिव्य मूर्तियों को देखकर वो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। मोबाइल में तस्वीरें कैद करने के साथ खुद की तस्वीर खिंचवाते भी नजर आते हैं।
6: मैंने बहुत सुना था बट आज महसूस किया और बहुत अच्छा लग रहा है, अद्भुत जिसको बोलते हैं ना वो एक्सपीरियंस हुआ और बहुत ऐसे डिवाइन सी फीलिंग हो रही है।
7: मैं तो उत्साहित थी ये देखने के लिए कि क्या कैसे बनता है, वो मुझे बहुत जानना था। तो इतना सुंदर है कि मतलब इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते हम, तो बहुत ही सुंदर है, अद्भुत है ये नज़ारा। अभी मैंने माँ का जो मूर्ति बनते हुए कैसे बनाते हैं और कितने मेहनत से बनाते हैं वो देखा, और कितने लगन से बनाते वो चीज़ देखा, तो वो चीज़ महसूस कर रही हूँ।
8: यहाँ पर आज हम कैसे शुरुआत होती है, कैसे पुआल और मिट्टी से उनको एक पहले एक स्ट्रक्चर देते हैं, फिर उसकी आप प्लास्टर ऑफ पैरिस करते हैं, प्राइमर और कलर और फिर ज्वेलरी, तो वो जो पूरी की पूरी जर्नी हम पहले शुरू गली से शुरू होते और गली के अंत तक आते आते माँ का पूरा प्रारूप ही चेंज हो जाता है, और यहाँ से फिर जो पंडाल तक का सफर है वो बिल्कुल ही अद्भुत रहता है।
9: दुर्गा पूजा के शुरू होने से पहले ही ये जगह लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, इसके चलते यहाँ लोगों की आवाजाही बढ़ी हुई है और त्योहार से पहले ही उत्सव जैसा माहौल बन चुका है। कोलकाता से राही हलदार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
10: बात करेंगे अवधपुरी की, जहां पर 7 नवंबर को दिव्य आयोजन की तैयारियां चल रही हैं। इस दिन वहां की छठा देखने वाली रहेगी। अयोध्या का कोना कोना रोशनी से सराबोर हो जाएगा। इस विशेष अवसर के लिए विशेष टूर पैकेज की घोषणा भी कर दी गई है। इन सबके बीच अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक अलग तैयारियां चल रही हैं।

0: प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या, जहां बड़ी संख्या में भक्त रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। यहां इन दिनों दीपोत्सव की तैयारियां चल रही हैं। साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर एनएसजी कमांडोज की चहलकदमी भी देखी जा सकती है। अवधपुरी में इस बार और भव्यता के साथ दीपोत्सव मनाने की तैयारी है, और इसी को लेकर जहां एक तरफ मजदूर कामकाज में जुटे हैं, तो वहीं अधिकारी लगातार निरीक्षण करते नजर आए।
1: हम लोग यहां क्वीन हो पार्क में उपस्थित हैं। यहां पर हम लोग की प्लानिंग है कि कुछ प्रदर्शनी या झांकी जैसा कुछ दीपोत्सव के दौरान लगाया जाएगा, तो उसी के संबंध में इस पार्क का निरीक्षण किया जा रहा है। इसके अलावा राम की पैड़ी, चौधरी चरण सिंह घाट, सरयू तीर्थग्रह, जो हेलीपैड बनता है, रामकथा पार्किंग, सभी स्थानों का निरीक्षण किया जा रहा है। और कहीं पर भी जो छोटी मोटी चीजें पाई जा रही है, जिनके बारे में निर्देश दिए जाने हैं, जिनको ठीक किया जाना है, वो लगातार किया जा रहा है। लगातार इस प्रकार के निरीक्षण जारी रहे।
0: इस बार के दीपोत्सव को और ज्यादा शानदार बनाने के लिए श्रद्धालुओं के लिए एक खास योजना तैयार की गई है। UPSTDC ने दीपोत्सव अयोध्या टूर पैकेज तैयार किया है। श्रद्धालु और पर्यटक राम मंदिर, हनुमानगढ़ी, कनक भवन, नागेश्वर नाथ मंदिर के दर्शन भी कर पाएंगे।
2: एक अलग नजारा है, एक अलग दृश्य होगा, जब इस बार देश से नहीं विदेशों से भी खास मेहमान आएंगे, इस दीपोत्सव में शामिल होंगे, जहां अब की बार एक वर्ल्ड रिकॉर्ड एक नया बनाया जाएगा। यहाँ अगर आते हैं टूरिस्ट तो उनके लिए खास इंतजाम भी किए गए हैं। राम मंदिर हो, कनक भवन हो या हनुमानगढ़ी, हर जगह वो दर्शन करेंगे, उनके रुकने के खास इंतजाम किए गए हैं। तो पूरी राम की पैड़ी को जो है पूरा दुल्हन की तरीके सजाया जा रहा है, क्योंकि बहुत जल्द वो 7 नवंबर की तारीख है जब विशालकाय दिए, इलेक्ट्रॉनिक दिए, हर एक चीज वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा इस राम की पैड़ी पे। इसको भव्य और दिव्य रूप दिया जा रहा है।
0: दीपोत्सव को लेकर तैयारियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं। राम की पैड़ी पर विजिटर गैलरी और सेल्फी पॉइंट्स भी तैयार किए जा रहे हैं। इस बार 30 लाख दीप जलाने का लक्ष्य है। श्रद्धालु लेजर और ड्रोन शो का आनंद भी उठा पाएंगे। सरयू घाट पर 2100 वैदिक आचार्य महाआरती करेंगे। 240 से अधिक मंदिर और मठों में भी दीप प्रज्वलित होंगे। रामकथा पार्क से लेकर राम की परिधि तक लगभग 1 दर्जन जगहों पर अलग अलग कार्यक्रम होंगे। सरयू के तट पर श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, नए घाट, एम्फीथिएटर और फूड कोर्ट्स जैसे आकर्षक केंद्र भी बनाए जाएंगे। इन सब के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG की टीम अयोध्या में समीक्षा और मॉक ड्रिल करती नजर आई। NSG की टीम राम मंदिर से लेकर हनुमानगढ़ी तक सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेती नजर आई। कनक भवन में भी NSG की टीम सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रही थी। NSG की टीम सभी महत्वपूर्ण स्थलों का निरीक्षण कर रही है और मौजूदा व्यवस्था की समीक्षा के साथ साथ संभावित आपात परिस्थितियों से निपटने की तैयारियों को भी परखा जा रहा है।
2: निरीक्षण किया जा रहा है। NSG कमांडेंट यहाँ पे लगातार घूम रहे हैं। राम मंदिर हो चाहे हनुमानगढ़ी हो, हनुमानगढ़ी परिसर में पूरी डायरेक्शन दी गई है, बाकायदे कंट्रोल रूम पूरे चेक किए गए हैं। तो यहाँ लगातार जो है अयोध्या की राम नगरी की सुरक्षा को लेकर खास इंतजाम किए जा रहे हैं। लगातार यहाँ पे निगरानी की जा रही है, लगातार चप्पे चप्पे पर NSG की तैयारी है।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अयोध्या में एक नया NSG क्षेत्रीय केंद्र बनाने की घोषणा की है। माना जा रहा है कि NSG कमांडोज की मौजूदगी और लगातार चल रही मॉक ड्रिल उसी का हिस्सा है, और आने वाले समय में अयोध्या की पूरी सुरक्षा व्यवस्था में NSG की अहम भूमिका तय की जा सकती है। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: अभी तक हरी सब्जी को सेहत और स्वास्थ्य के लिहाज से सबसे पौष्टिक आहार माना जाता रहा है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के वनस्पति विज्ञान विभाग की माने तो यमुना के किनारे उगाई जाने वाली सब्जियों के जरिए दिल्ली की थाली में यमुना का प्रदूषण पहुंच रहा है। जी हां, DU की रिसर्च के मुताबिक टेस्ट के दौरान कई सब्जियों के सैंपल्स में क्रोमियम, लेड, कैडमियम और ऐसे पदार्थ पाए गए हैं जिनसे मेटल्स मिले हैं, जो स्वास्थ्य के लिए अगर देखा जाए तो बहुत हानिकारक हैं। शरीर में इनके पहुंचने से कैंसर होने तक का खतरा बढ़ जाता है।

0: स्वस्थ और सेहतमंद रहने की ख्वाहिश हर किसी की होती है। नियमित व्यायाम, भरपूर नींद के अलावा संतुलित आहार को अपनाने की सलाह दी जाती है। और जब पौष्टिक भोजन की बात आती है तो उनमें सबसे ऊपर हरी सब्जियों की गिनती होती है। हालांकि दिल्ली में हरी सब्जियां खाने की सलाह देना भारी पड़ सकता है, वो भी तब जब ये सब्जियां यमुना नदी के किनारे उगाई गई हों। दिल्ली में गंदगी, प्रदूषण और दुर्गंध की वजह से अभिशप्त यमुना से एक नई चिंता जुड़ गई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के वनस्पति विभाग की चौंकाने वाली एक रिसर्च सामने आई है जो सीधे तौर पर आपकी सेहत पर बुरा असर डाल सकती है। सिर्फ यही नहीं बल्कि आपको अपने खान पान के आदतों में बदलाव के लिए मजबूर भी कर सकती है। रिसर्च के मुताबिक यमुना के आसपास की मिट्टी और उसमें उगाई जा रही कुछ सब्जियों के सैंपल में हैवी मेटल्स यानी भारी धातुएं पाई गई हैं।
1: दिल्ली में यमुना किनारे इस वक्त हम उसी जगह पर मौजूद हैं जहां से प्रोफेसर दीनबंधु साहू ने सैंपल कलेक्ट किए थे। ये यमुना का किनारा आप देख रहे हैं और यमुना का पानी अभी भी पूरी तरह से काला है, बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, पारदर्शी नहीं है, मतलब पानी बिल्कुल भी साफ नहीं है। इसी इलाके से, यमुना के इसी स्ट्रेच से लगातार 2 साल तक प्रोफेसर दीनबंधु साहू सैंपल लेते रहे। उन्होंने पानी का सैंपल लिया, मिट्टी का सैंपल लिया, फिर उनसे जो सब्जियां उगाई जा रही थी उनका सैंपल लिया। और सब्जियों में भी जो सैंपल लिया वो सिर्फ एक बार नहीं बल्कि किसी सब्जी के 3 से 4 बार उसके सैंपल अलग अलग उसकी फसल के वक्त लिए गए और उन सैंपल में वो सारी खतरनाक चीजें मिली हैं।
0: दिल्ली यूनिवर्सिटी के वनस्पति विज्ञान विभाग की एक टीम यमुना के जल में प्रदूषण के स्तर को लेकर लंबे समय से रिसर्च कर रही है। इसी कड़ी में यमुना के आसपास में मिट्टी की भी जांच पड़ताल की गई, तब उसमें क्रोमियम, लेड, कैडमियम, आर्सेनिक और निकेल जैसी भारी धातुएं पाई गई। इसके बाद टीम ने उसी इलाके में उगाई जाने वाली सब्जियों के सैंपल भी लिए। प्याज, आलू, मेथी, धनिया, सरसों, पालक और सफेद मूली में क्रोमियम, लेड, कैडमियम, आर्सेनिक और निकेल जैसे हैवी मेटल्स मिले जो स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है।
2: पहले हमने देखा कि पानी जो है अलग अलग जगह से जब हमने लिए देखा कि हाईली पॉल्यूटेड है, और वही पानी में जब आपका सिंचाई हो रहा है सारे चीजें यमुना के किनारे, तो फिर हमने पहले सॉयल का टेस्टिंग किया। सॉयल टेस्टिंग में देखा गया है कि ये काफी मात्रा में उसमें हैवी मेटल्स है। तो हमने सोचा है कि जो आपका यहाँ खेती हो रहा है अलग अलग टाइप का सब्जी का, तो क्यों उसको ला के हम टेस्टिंग ना करें। तो उसको जब हमने टेस्टिंग किए उसमें देखे कि काफ़ी भारी मात्रा में आपको हैवी मेटल्स पाया गया है, चाहे कैडमियम हो, क्रोमियम हो, आर्सेनिक हो, अलग अलग वेजिटेबल्स है, प्याज है, आलू है, मेथी है, धनिया है। तो उसमें हमने देखा कि ये जो कैंसर कॉजिंग हैवी मेटल्स है वो काफ़ी हैवी मात्रा में पाया गया है।
0: दिल्ली में यमुना नदी की 22 किलोमीटर लंबाई है। कई इलाकों में नदी के दोनों किनारों पर खेती होती है। यही वजह है कि रिसर्च टीम ने किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले पानी, मिट्टी और सब्जियों के 3 अलग अलग बार सैंपल लिए। हर बार एक ही तरह का परिणाम सामने आया। कुछ मामलों में हैवी मेटल्स की मात्रा तय अंतर्राष्ट्रीय मानकों से कई गुना ज्यादा मिली। इस दौरान यमुना के पानी में अलग अलग तरह के केमिकल के अलावा कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया भी काफी ज्यादा मात्रा में मिला।
2: एक सैंपल्स में आप कभी कोई डाटा को वैलिडेट नहीं कर पाएंगे। सैंपल्स हमेशा ट्रिप्लिकेट में होता है, तो 3 बार सैंपल्स को ट्रिप्लिकेट में हमने किया और रिजल्ट्स वही निकला कि हर हैवी मेटल्स का जो है काफ़ी हाई लेवल में पाया गया है। अगर आप देखेंगे दिल्ली में यमुना 22 किलोमीटर का स्ट्रेच है, पानी बिल्कुल काला है। यमुना 7-8 स्टेट में लगभग 1800 किलोमीटर का स्ट्रेच है, बट ये जो स्ट्रेच है ये काफ़ी हेविली पॉल्यूटेड है और पानी में तो कोलीफॉर्म बैक्टीरिया जो है जो सेहत के लिए पूरा हानिकारक है, उसका लोड भी बहुत ज़्यादा है। तो जब खेती होता है तो पानी वहाँ से आता है और सीपेज होकर भी पानी आता है।
0: दिल्ली में आजीविका चलाने के लिए कई लोग यमुना किनारे सब्जियां उगाने के काम से जुड़े हैं, जिनकी वजह से जहरीली सब्जियां बाजार में बिकने के लिए पहुंच जाती हैं। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि अगर इसी तरह के प्रदूषित पानी का इस्तेमाल खेती में किया जा रहा है तो उसका असर सब्जियों पर कितना पड़ सकता है और वो स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है। यह समझना मुश्किल नहीं है, सब्जियों में सुरक्षित सीमा से कई गुना अधिक भारी मात्रा में भारी धातुओं का मिलना जानलेवा कैंसर को न्योता देना है।
1: जैसे अभी यमुना किनारा है और मैं आपको दिखाऊं तो आप वहां पर एक वो झोपड़ी देख पा रहे हैं और उसी जगह पर ठीक उसके पास में खेती की जा रही है सब्जियों की। फिलहाल वहां जाना अभी हमारे लिए संभव नहीं है, लेकिन ऐसे पूरे ही स्ट्रेच पर आपको यमुना के जगह जगह पर लोग दिख जाएंगे जो कि सब्जियों को उगाते हैं। और आप किसी भी कोई भी ऐसे भारी तत्व जो किसी सब्जी में होते हैं या फिर फसल में होते हैं तो वो जब शरीर में जाते हैं तो आपके शरीर को वो कैंसर की तरफ ले जाते हैं, चाहे वो निकेल हो, चाहे वो क्रोमियम हो या फिर लेड हो। इन सारी चीज़ों की मात्रा सब्जियों में कई गुना ज़्यादा मिली है, वो सब्जियां जो इसी पानी से उगाई जा रही हैं।
0: दरअसल दिल्ली में यमुना में छोटे बड़े 22 नाले गिरते हैं, केवल 11 नालों का पानी ट्रीट हो रहा है। ऐसे में घरों से निकलने वाला गंदा पानी यमुना में सीधा गिर रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली की लाइफ कहे जाने वाली यमुना के किनारे पैदा होने वाली सब्जियों का ये हाल हो गया है। सबसे बड़ी बात, खेतों से लेकर हमारे किचन तक पहुंचने के बाद सब्जियों को 3-4 बार साफ पानी से धोने का भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। सब्जियों की संरचना के लिए जिम्मेदार पादप कोशिकाएं यानी प्लांट सेल से हैवी मेटल्स का निकलना नामुमकिन होता है।
1: एक बात आपको हम और बता दें कि अमूमन ये मिथ हम लोग मानते हैं कि किसी सब्जी को अगर लेकर आए हैं तो उसे 3-4 बार आप गर्म पानी से साफ कर लीजिए ताकि जो उसमें कीटाणु हैं, जो दिक्कतें हैं वो निकल जाएं। लेकिन प्रोफेसर दीन बंधु साहू का साफ साफ कहना है कि सब्जी को महज गर्म पानी से धोने भर से उसमें जो दिक्कतें हैं वो बाहर नहीं निकलने वाली, क्योंकि अगर इसी पानी से उनकी खेती की जा रही है, इसी पानी का इस्तेमाल उन सब्जियों को उगाने में किया जा रहा है तो वो सारी चीज़ें उन सब्जियों के सेल्स में होंगी, जिसे निकालना साफ करना बेहद मुश्किल है। मतलब साफ है कि अगर आप इस सब्जी का सेवन कर रहे हैं तो आपके शरीर में दिक्कत होना तय है, आज नहीं तो कल सही। कुल मिलाकर इससे बचने के क्या तरीके हो सकते हैं वो तमाम तरीके भी बताए गए हैं, लेकिन फिलहाल आप लोगों के पास क्या ऑप्शन है, आपके पास बस एक ही ऑप्शन है कि जब भी आप सब्जी वाले के पास जाएँ तो पहले उससे पूछें कि ये सब्जी कहाँ उगाई गई है, इसका सोर्स क्या है, ताकि आपको जानकारी मिल सके कि उसे उगाने में किस तरह के पानी का इस्तेमाल किया गया है। कहीं वो पानी यमुना के नदी का तो नहीं है, बिल्कुल काला तो नहीं है, क्योंकि अगर उसकी उगाई सब्जियाँ आप पीते हैं तो शायद आप धीरे धीरे कैंसर की तरफ बढ़ रहे हैं। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, दिल्ली।
3: खास कार्यक्रम में इतना ही, देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज़ टुडे के साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे,
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़।
11: और वक्त है फैक्ट चेक की आखिरी सफर का, आपको लिए चलते हैं वायरल दुनिया में, दिखाते ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं और जिन्हें खूब पसंद किया जा रहा है।
12: छोटे छोटे बच्चे और दूसरी तरफ सिक्योरिटी गार्ड, दोनों के बीच शुरू हुआ टग ऑफ वॉर का मुकाबला। बच्चे भी पूरी ताकत लगाकर रस्सी खींच रहे थे, लेकिन तभी सिक्योरिटी गार्ड ने ऐसा दाव चला कि पूरा खेल ही पलट गया। गार्ड ने बच्चों की तरफ कैंडी फेंक दी, कैंडी देखते ही बच्चों ने रस्सी छोड़ दी और कैंडी उठाने दौड़ पड़े। बस फिर क्या था, गार्ड ने मुकाबला जीत लिया। दिल्ली मेट्रो में में सफर के दौरान अगर फोन या पर्स कहीं छूट जाए तो परेशानी होती है, लेकिन सोचिए अगर इसी भीड़ में किसी का छोटा बच्चा अपने माता पिता से बिछड़ जाए तो उस वक्त परिवार पर क्या गुजरती होगी। ऐसा ही एक भावुक मामला दिल्ली मेट्रो की मजेंटा लाइन से सामने आया है। करीब 8 से 10 साल का एक बच्चा अपनी माँ से बिछड़ गया। बच्चे को अपने माता पिता के नाम और घर का पता तो मालूम था, लेकिन घर में किसी का मोबाइल नंबर याद नहीं था। ऐसे में मेट्रो स्टाफ ने जिम्मेदारी संभाली और आखिरकार बच्चे को उसकी माँ से मिलवा ही दिया। लोगों को ये वीडियो खूब पसंद आ रहा है।
10: बच्चे के पिताजी आप हैं?
12: क्लासरूम में आमतौर पर बच्चे पढ़ाई करते हुए नजर आते हैं, लेकिन कभी कभी पढ़ाई के बीच कुछ ऐसे पल भी आ जाते हैं जो पूरे माहौल को खुशनुमा बना देते हैं। ऐसा ही एक प्यारा वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है। बच्चे एक एक भजन पर डांस करते दिखाई दे रहे हैं। बच्चे के चेहरे की मासूम मुस्कान और उसका उत्साह देख कर आसपास मौजूद टीचर्स भी खुश हो गए। बच्चों के डांस का सबसे प्यारा हिस्सा उनका एक्सप्रेशन और खुशी दिखाई देती है। वो जिस तरह से गाने पर झूमते हैं उसे देखकर किसी के भी चेहरे पर मुस्कान आ सकती है।

0: फिल्म हनुमान अंश का लोकप्रिय गाना मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान को इस विदेशी शख्स ने अपने अंदाज में गाकर लोगों का दिल जीत लिया।
1: भरोसे हनुमान सागर में नया
0: आवाज में भक्ति का भाव साफ महसूस किया जा सकता है। लोग विदेशी शख्स की आवाज और उसके अंदाज की तारीफ कर रहे हैं।

0: के नीचे सर्च का विकल्प है, उस पर टैप करें और व्हाट्सएप लिखकर खोजें।
1: व्हाट्सएप खोल लिया मैंने।
0: अब आप व्हाट्सएप में हैं, नीचे बाईं ओर जो अपडेट्स का विकल्प है उसे दबाएं।
2: माँ को व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाना सीखना था तो उन्होंने मदद के लिए बेटे को नहीं बल्कि गूगल के एआई टूल जेमिनी को अपना गाइड बना लिया।
0: हाँ, स्क्रीन के निचले बाएं कोने में जो गोल आइकॉन है वो अपडेट्स का है, उसे दबाएं।
1: अच्छा, दबा दिया।
0: जी हाँ, आप अपडेट्स वाली स्क्रीन पर आ गई हैं। अब नया स्टेटस लगाने के लिए सबसे ऊपर एड स्टेटस पर टैप करें या फिर ऊपर कोने में दिए गए कैमरा या पेंसिल आइकॉन का उपयोग करें।
2: माँ और एआई के बीच हुई ये बातचीत इतनी प्यारी और मजेदार है कि लोग इस वीडियो को बार बार भी देख रहे हैं।
0: बहुत अच्छी। अब नीचे दाहिने कोने में दिए गए हरे रंग के तीर वाले बटन को दबा दें ताकि आपके स्टेटस पर लग जाए।
1: लगा दी।
0: बहुत बढ़िया, अब आपकी फोटो स्टेटस पर सफलता पूर्वक लग चुकी है।
1: अरे सुंदर आई ना।
3: हो गए 3-2, 3-2 हो गए, 3-1-2 हो गए, ये भी एक जादू ही है।
2: ट्रैफिक के बीच बाइक पर तीन लोग जा रहे थे तभी सामने पुलिसकर्मी नजर आ गया। इसके बाद ऐसा जुगाड़ हुआ कि बाइक पर अचानक सिर्फ दो लोग रह गए। लगा कि चलान से बचने की तरकीब काम कर गई, लेकिन कांस्टेबल की नजरों से इस जादू बच नहीं पाया। उसने तुरंत पूरी कहानी समझ ली और फिर जो अंदाज अपनाया उसे देखकर लोग मुस्कुरा उठे।
3: हो गए 3-2, 3-2 हो गए, 3-1-2 हो गए, ये भी एक जादू।
2: दरअसल पुलिसकर्मी के पास पहुंचते ही बाइक पर बैठा एक व्यक्ति तुरंत नीचे उतर गया और बिना कुछ कहे ऐसे आगे बढ़ने लगा जैसे उसका बाइक से कोई लेना देना ही ना हो। उसे शायद लगा कि इस तरह पुलिस की नजरों से बच जाएगा, लेकिन कांस्टेबल की नजरें पहले ही उसकी चाल पकड़ चुकी थी। पुलिसकर्मी ने उसे जाते हुए देखा तो तुरंत रोक लिया, फिर मजेदार अंदाज में पूछा, अरे कहाँ जा रहे हो, 3-2 कैसे हो गए?
3: हो गए 3-2, 3-2 हो गए, 3-1-2 हो गए, ये भी एक जादू ही है। अरे कहाँ जा रहे हो, क्या हुआ, 3-2 कैसे हो गए?
2: बस यही वो पल था जिसने पूरे वीडियो को मजेदार बना दिया। इसके बाद मामला सिर्फ चालान तक नहीं पहुंचा। कांस्टेबल ने शख्स को समझाया कि बाइक पर तीन लोगों के बैठने के बजाय वह ऑटो से जाए, यानी पुलिस से बचने के लिए की गई छोटी सी तरकीब आखिरकार काम नहीं आई।
3: ये तो बहुत जरूरी है।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: गुवाहाटी वनडे में भारत की शानदार जीत, वेस्ट इंडीज को 8 विकेटों से हराया, सीरीज में 2-0 की बढ़त, 44वें ओवर में चेस किया 406 रन का लक्ष्य। कप्तान शुभमन गिल ने रचा इतिहास, 117 गेंद में जड़ा दोहरा शतक, सबसे तेज शतक बनाने का बनाया विश्व रिकॉर्ड। एशियन गेम्स में भारत की चमक बरकरार, 87 किलोग्राम ग्रीको रोमन रेसलिंग इवेंट में सुनील कुमार ने जीता ब्रॉन्ज, आज तीरंदाजी में 3 और शूटिंग में आया 1 गोल्ड, भारत के खाते में कुल 10 गोल्ड। पिछले 5 वर्षों में इस साल सितंबर महीने में सबसे ज्यादा साफ रही दिल्ली की हवा, औसत EQI 102 दर्ज किया गया। कोलकाता में नवरात्र की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं, वर्धमान में मां दुर्गा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे कारीगर।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। देश में त्योहारों के मौसम की शुभ शुरुआत होने वाली है। 11 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र का शुभारंभ हो रहा है। ऐसे में देश के अलग अलग शहरों में मंदिर और पंडाल सजाए जा रहे हैं। मां दुर्गा की मूर्तियों के निर्माण का काम अब अंतिम चरण में है। यूं तो देश भर में नवरात्र पर मां दुर्गा की भक्ति का उत्सव मनाया जाता है, लेकिन नवरात्र का सबसे गाढ़ा रंग चढ़ता है पश्चिम बंगाल पर। बाकी जगहों पर तो उत्सव के रंग नवरात्र में बिखरेंगे, लेकिन कोलकाता का एक कोना ऐसा भी है जहां वास्तव में उत्सव पूजों की शुरुआत से पहले नजर आता है। कोलकाता का कुमारटुली इलाका देवी प्रतिमाओं के निर्माण के लिए दुनिया भर में काफी प्रसिद्ध है। कुमारटुली में इन दिनों मां दुर्गा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यहां पीढ़ियों से रहते आ रहे मूर्तिकार अपनी अपनी कल्पना के आधार पर मां के स्वरूप को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिर क्या है कुमारटुली की कहानी और क्यों सारा कोलकाता मां की प्रतिमाओं के लिए हुगली किनारे बसे इसी मोहल्ले का रुख करता है।

0: एक ऐसा शहर जो सोता है इतिहास के पालने में। पर एक रोज जब शरद ऋतु की हवाओं में घुल जाती है शिवली फूलों की महक, तब हुगली की ओर से आते मध्यम झोंकों के बीच कला की उंगलियां सहलाकर जगाती हैं जिसे, और जाग उठता है ये शहर साल के सबसे बड़े उत्सव के लिए। और इसी शहर के कोने में चुपचाप शुरू हो जाती है ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति को आकार देने की कहानी। वो कहानी जो शुरू होती है एक काट के टुकड़े से, एक बिना तराशे पत्थर से और माँ गंगा की मिट्टी से। ये कहानी है उसी मिट्टी के साक्षात महामाया बन जाने की।
1: माँ का इतना अद्भुत यहाँ होता है कि माँ आती हैं और मतलब बेटी हैं वो, तो कैसे उसका सब कुछ होता है, उनका सजावट और वो देखने को मिल रहा है, तो वो बहुत ही सुंदर है।
2: कलकत्ता का नहीं, वो सारा वर्ल्ड में फेमस है।
0: उत्तरी कोलकाता में हुगली के किनारे बसा

0: मूर्तिकारों ने गढ़ी मूर्तियाँ। कोलकाता का कुम्हार टोली उन्हीं मूर्तिकारों की बस्ती है, जहाँ के कारीगर अपने अपने दृष्टिकोण से रचते हैं माँ का ये महारूप।
1: कुम्हार टोली की मिट्टी की खुशबू ये एहसास दिलाता है कि बंगाल की सबसे श्रेष्ठ उत्सव दुर्गा पूजा बहुत नजदीक है, और इस समय हम कुम्हार टोली में ही उपस्थित है, जहां से बंगाल के मैक्सिमम पंडाल्स में माता दुर्गाओं की मूर्ति पहुंचती है। माता दुर्गाओं की मूर्ति सज धज के बन ठन के जाती है इसी कुम्हार टोली से, और इस बीच कुम्हार टोली में अभी बहुत ही व्यस्तता चल रहा है। जो मृत शिल्पी है, जो आर्टिस्ट है, वो लोग दिन भर काम कर रहे हैं माताओं की मूर्ति रेडी करने के लिए।
0: बताया जाता है कि 18वीं शताब्दी के मध्य में जब राजा नवकृष्ण देव ने अपने घर में दुर्गा पूजा की शुरुआत करवाई, तब वे देवी देवताओं की सुंदर मूर्तियां बनाने के लिए बंगाल के ही कृष्णा नगर और आसपास के इलाकों से कुछ कुशल कारीगरों को लेकर यहाँ आए। धीरे धीरे ये कारीगर हुगली नदी के पास इसी इलाके में बस गए, जिसे आज कुम्हार टोली या कुम्हार टोली कहा जाता है। दिन गुजरते गए, गंगा नदी के किनारे की ये उपजाऊ और चिकनी मिट्टी इन कारीगरों का नसीब बन गई। पीढ़ी दर पीढ़ी, दादा से पिता और पिता से बेटे तक ये हुनर इस मिट्टी की तरह ही यही ठहर गया। आज भी इन कलाकारों के वंशज कुम्हार टोली की छोटी तंग गलियों में माँ की प्रतिमा गढ़ते हैं। जगह कम है पर माँ का आशीर्वाद बड़ा है। अब के साल भी ये कलाकार तन मन से माँ का स्वरूप गढ़ने में जुटे हैं।
2: जो इतना दिन बारिश था उससे तकलीफ हुआ था, अभी जो बारिश दिया है सूर्योदय ने, दो दिन से जो खरा रोद उठ रहा वो हम लोग का अच्छा है। माने एक घंटा दो घंटा में जो मिट्टी का काम होता है, अभी लास्ट टाइम में जो मिट्टी का काम को होता है वही अभी सूख रही है, ठीक है। तो और दो दिन लगेगा, फिर रंग पेंट पेंट होगा, फिर हो जाएगा कपड़ा। और मेरा 90% काम हो गया कलर का, अभी चल रही है साड़ी। माँ का जो साड़ी है अभी साड़ी चल रही है, इसके बाद आएगा ऑर्नामेंट्स, ठीक है। ये ऑर्नामेंट्स बाल जो है उस लगा के फिर मौला जब आएगा तब वो मेरा घर से चाटो प्रतिमा पार्टी आके ले जाएगा।
0: कोलकाता के कई बड़े पंडाल कुम्हार टोली से ही मूर्तियां ले जाते हैं। महीनों पहले मूर्तिकारों को बता दिया जाता है कि माँ के स्वरूप में अब की बार क्या खास होना चाहिए। ग्राहकों की मांग और अपनी कल्पना के आधार पर कुम्हार टोली के कलाकार मूर्ति बनाने में जुट जाते हैं। महीनों तक काम चलता है और आखिरकार नवरात्र से पहले मां का स्वरूप बनकर तैयार हो जाता है।
3: यहां पर हम जो चाहते वही मिल जाता है। वहां पर बागमारी में ये फैसिलिटी नहीं था, यहां पर हम जैसा बोलते हैं ये लोग वैसे ही बना देते हैं। अलग है, ये बहुत पुराना, ये प्राचीन काल से चला हुआ रहा है। बागमारी का जो है और आदर्श जगह जो सब नया बना हुआ है, ये ब्रिटिश जमाना से चला हुआ आ रहा है, और अभी तक लोग आप देख अगर आप यहाँ सर्वे कीजिएगा देखिएगा सबसे ज्यादा मूर्ति यहीं पर है।
0: वास्तव में माँ दुर्गा की प्रतिमा का निर्माण केवल कला का प्रदर्शन भर नहीं है, बल्कि ये एक सर्वोच्च आध्यात्मिक अनुष्ठान है। माँ की मूर्ति का निर्माण शरीर की तरह ही पांच तत्वों से शुरू होता है, लकड़ी, बांस, पुआल, रस्सी और गंगा की मिट्टी। सबसे पहले बांस और लकड़ियों की मदद से मूर्ति का मजबूत ढांचा तैयार किया जाता है, जिसे बंगाली भाषा में काठमो कहा जाता है। इस ढांचे पर काम शुरू करने से पहले भगवान गणेश की पूजा होती है, फिर बांस के ढांचे को सूखे पुआल से अच्छी तरह बांधा जाता है। इसके बाद गंगा नदी के तट की चिकनी मिट्टी, जिसे एटेल माटी कहते हैं, उसे धान की भूसी के साथ मिलाकर पहली मोटी परत चढ़ाई जाती है। मूर्ति को धूप में सुखाया जाता है और दरारों को कपड़ों की पट्टी से भरा जाता है। पहली परत सूखने के बाद बेले माटी यानी बारीक चिकनी मिट्टी की दूसरी परत लगाई जाती है। इससे मूर्ति को चिकना, गोल और सुंदर आकार मिलता है। इस चरण में चेहरे, हाथों और उंगलियों को बारीकी से गढ़ा जाता है। मूर्ति पूरी तरह सूखने के बाद उस पर सफेद रंग का प्राइमर

0: इसके बाद स्प्रे या ब्रश का इस्तेमाल करके माँ की प्रतिमा को सुंदर रंगों से सजाया जाता है। फिर बारी आती है सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम धार्मिक अनुष्ठान चोखू दान की, जिसमें महालया या पूजा से ठीक पहले देवी की आंखें बनाई जाती हैं। अंत में मूर्ति को सुंदर वस्त्रों, आभूषणों और बालों से सजाया जाता है।
1: इट्स अ वेरी डिवाइन फीलिंग, है ना। माँ को हम लोग पंडाल हॉपिंग में जब जाते हैं तो उनका पूरा सजावा रूप देखते हैं, और यहाँ पर आज हम कैसे शुरुआत होती है, कैसे पुआल और मिट्टी से उनको एक पहले एक स्ट्रक्चर देते हैं, फिर उसकी आप प्लास्टर ऑफ पेरिस करते हैं, प्राइमर और कलर और फिर ज्वेलरी, तो वो जो पूरी की पूरी जर्नी हम पहले शुरू गली से शुरू होते हैं और गली के अंत तक आते आते माँ का पूरा प्रारूप ही चेंज हो जाता है, और यहाँ से फिर जो पंडाल तक का सफ़र है वो बिल्कुल ही अद्भुत रहता है। आप सोच नहीं सकते कि वो पंडाल में लाइट्स के साथ में जो वो इफेक्ट आता है, ये मूर्ति जो यहाँ पे हम देखते हैं वो और भी भव्य हो जाती है।
2: वेट करने के बाद ये वाला माँ का रूप देखने को मिलता है, नहीं तो आप देखेंगे बस सजी धजी माँ पंडाल में दिख जाती है, लेकिन ये वाली चीज़ कहीं नहीं दिखती, तो इसके लिए वेट करने के लिए तो आना ही पड़ेगा यहाँ पे। और इसकी जो मिट्टी की जो खुशबू आ रही है और कलर्स की जो महक आ रही है बहुत अच्छी है।
0: कुमार टोली में अब कई तरह की मूर्तियाँ बनती हैं, जिनमें मुख्य रूप से पारंपरिक एकचाला मूर्तियाँ होती हैं, जिनमें सारे देवता एक ही ढांचे में बनाए जाते हैं, तो वहीं आधुनिक थीम पर आधारित मूर्तियाँ भी ऑर्डर पर अब तैयार होती हैं, जिनमें सामाजिक संदेश देने वाली कलाकृतियाँ भी गढ़ी जाती हैं। बदलते वक्त के साथ कुम्हार टोली भी बदला है। अब तो यहाँ माँ की मूर्ति के निर्माण में AI की झलक भी दिखाई देने लगी है।
3: इस साल में AI बनाया है मैंने। आजकल AI से सब हो रहा है, AI से पढ़ना होता है, AI से एडिट हो रहा है, AI से आपका 20 साल का 50 साल 100 साल 300 साल का वही देश में कौन राजा था वो AI अभी तो सब हो जाएगा AI से। अभी जो AI से मैं रोबोटिक दुर्गा किया है उत्तर दिनाजपुर कालियागंज में, वो मारात्मक वायरल हो गया, ठीक है। उसका जो प्रतिमा है वो रोबोटिक है, उसका जो AI दुर्गा, और उसका जो फेस है वो माँ का जो फेस वही फेस मैंने रखा है, लेकिन AI ने किया। जो तस्वीर मेरे पास आया है वो माँ का थोड़ा सा AI था, लेकिन ये तो माँ है, इसलिए माँ को मैं एक मिनमय रूप मैंने दिया।
0: एक ही छत के नीचे माँ के अनंत रूप यहाँ नजर आते हैं। यही वजह है कि कोलकाता ही नहीं बल्कि आसपास के शहरों से भी लोग मूर्तियाँ लेने यहाँ पहुँचते हैं।
4: ये बहुत पुराना संबंध है, यहाँ पे आज प्राचीन काल से चले आ रहा है। एक यहाँ पे मूर्ति, सारा मूर्ति यहीं पे बनता है, यहीं से स्टार्टिंग हुआ है, और हम लोग भी आज बचर यहीं से आके लेके जा रहे हैं। यहीं से हम लोग पूजा कबड्डी मूर्ति लेता है, आज बहुत दिन से हम लोग यहीं से लिए जा रहे हैं। ये जैसा चाहते हैं वैसा मिल भी जाता है, आते हैं हर बार, हर तरह का देख के लेके जाते हैं।
5: तो यही क्या माता दुर्गा का प्राण केंद्र बन चुका है?
6: एकदम 100%, इसमें कोई दो राय नहीं है।
5: आप लोगों का पंडाल के दुर्गा प्रतिमा के यहाँ से ले जा रहे हैं?
6: यहीं से ले जा रहे हैं, सामने ही मेरा मूर्ति बन रहा है, आप उसको भी देख सकते हैं।
4: ये बहुत पुराना संबंध है, यहाँ पे आज प्राचीन काल से चले आ रहा है। एक यहाँ पे मूर्ति, सारा मूर्ति यहीं पे बनता है, यहीं से स्टार्टिंग हुआ है, और हम लोग भी आज बचर यहीं से आके लेके जा रहे हैं। इसके इतना बड़ा जगह तो कहीं है भी नहीं ना, अगर है भी तो वहाँ पे दो चार मूर्ति बन रहा है, चाहे 10 मूर्ति बन रहा है, मगर यहाँ पे तो आप एक एक घर में 10-15 मूर्ति बन रहा है।
0: दुर्गा पूजा के शुभारंभ से पहले कुम्हार टोली में मूर्तियाँ लेने वालों के बीच ही सेल्फी लेते माँ के अर्ध निर्मित रूपों को निहारते सैलानियों की भी भरमार है। कहते हैं दुर्गा पूजा में कोलकाता की रौनक निराली होती है, लेकिन पूजों से पहले वो सारी रौनक कोलकाता के इस एक इलाके में सिमटी नजर आती है, जहां माटी से माँ को गढ़े जाने की यात्रा को अपनी आंखों से देखने बड़ी तादाद में सैलानी पहुंचते हैं।
7: एक्चुअली ये मेरा फर्स्ट टाइम है और मैंने बहुत सुना था, बट आज महसूस किया और बहुत अच्छा लग रहा है। अद्भुत जिसको बोलते हैं ना, वो एक्सपीरियंस हुआ और बहुत ऐसे डिवाइन सी फीलिंग हो रही है।
5: आज क्या घूमने ही आए थे?
7: जी बिल्कुल, ये दर्शन देवी माँ के अभी दर्शन करने आए थे हम लोग।
8: मैं भी पहली बार कोलकाता में आई हूँ और ये मतलब ये सुना बहुत था मैम लोग से, बहुत सुना था, तो मुझे बहुत ही मैं उत्साहित थी ये देखने के लिए कि क्या कैसे बनता है, वो मुझे बहुत जानना था। तो इतना सुंदर है कि मतलब उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते हम, तो बहुत ही सुंदर है, अद्भुत है ये नज़ारा। अभी मैंने माँ का जो मूर्ति बनते हुए कैसे बनाते हैं और कितने मेहनत से बनाते हैं वो देखा, और कितने लगन से बनाते वो चीज़ देखा, तो वो चीज़ महसूस कर रही हूँ कि सच में माँ का कैसे माँ मतलब वो फील आता है ना, वो फील आ रही है, बहुत सुंदर।
0: और महीनों की कड़ी मेहनत और समर्पण के बाद इसी यात्रा के अंत में आता है वो पल जिसे चोखू दान कहा जाता है। महालया के दिन जब मूर्तिकार माँ की आंखों की अंतिम लकीर खींचते हैं तो मिट्टी का वो ढांचा जीवित हो उठता है। कुम्हार टोली की संकरी अंधेरी गलियों से निकलकर जब ये मिट्टी की प्रतिमा कोलकाता के भव्य पंडालों में रोशनी से चमकती है तो पूरा शहर उत्सव के उल्लास से गमक उठता है। ये मूर्तियां गवाह हैं उस अटूट विश्वास की जहां इंसान अपनी आस्था और मेहनत के दम पर मिट्टी से निराकार को साकार कर लेता है। कोलकाता के कुम्हार टोली से राही हल्दर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
9: तो ये तो बात थी बंगाल की, अब आपको लिए चलते हैं दिल्ली में बसे छोटे बंगाल यानी दिल्ली का सीआर पार्क। सीआर पार्क को दिल्ली का मिनी बंगाल भी कहा जाता है। शारदीय नवरात्र के दौरान यहाँ थीम आधारित कई दुर्गा पंडाल सजाए जाते हैं। इनमें कालीबाड़ी मंदिर में लगने वाला पंडाल की चर्चा और तैयारी तो दुर्गा पूजा के कई महीनों पहले शुरू कर दी जाती है। कोलकाता के कुमार टुली की तरह ही यहाँ भी प्रतिमा निर्माण की अपनी परंपरा है। हर साल शारदीय नवरात्र से करीब 4 महीने पहले यहाँ वर्कशॉप लगाई जाती है जिसमें पुआल, मिट्टी और रंगों का इस्तेमाल करके भव्य दुर्गा मूर्तियां तैयार की जाती हैं। 1970 के दशक से ये परंपरा यूं ही निभाई जा रही है। फर्क यह है कि शुरुआत में इस वर्कशॉप में कुछ ही मूर्तियां आकार लेती थीं, लेकिन अब यहां हर साल करीब 800 मूर्तियां तैयार की जाती हैं। हर साल पूजों के समय सीआर पार्क की रौनक देखने लायक होती है। तो चलिए आपको दिखाते हैं और लेकर चलते हैं सीआर पार्क और दिखा देते हैं तैयारी दुर्गा पूजा की।

0: दिल्ली में बंगाल की संस्कृति, कला, साहित्य, संगीत और समृद्ध ऐतिहासिक विरासत की पहचान चितरंजन पार्क है, जो माँ दुर्गा के आगमन का इंतजार कर रहा है। 11 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र की शुरुआत होने जा रही है। नवरात्र माँ दुर्गा की आराधना और उनके 9 विशेष स्वरूपों को पूजने का पवित्र त्योहार है। हर साल शारदीय नवरात्र के दौरान चितरंजन पार्क यानी कि सीआर पार्क कोलकाता का प्रतिबिंब बन जाता है। शारदीय नवरात्र के करीब एक महीने पहले से पंडालों में अटूट आस्था, श्रद्धा, विश्वास और संकल्प के साथ माँ दुर्गा के आह्वान की तैयारी शुरू हो जाती है। 1960 के दशक में पहली बार यहाँ बसे बंगाली परिवारों ने शारदीय नवरात्र से जुड़ी सांस्कृतिक विरासत की नींव रखी थी। तब से यहाँ माँ दुर्गा की प्रतिमा को स्थापित करने की परंपरा को संजोने और समृद्ध करने का संकल्प पीढ़ी दर पीढ़ी लिया जा रहा है। यहाँ माँ दुर्गा की अलग अलग तरह की प्रतिमाओं को बनाने का काम पूरा साल चलता रहता है, लेकिन शारदीय नवरात्र के लिए माँ की मूर्तियों को तैयार करना अपने आप में विशेष अनुष्ठान की तरह होता है। चितरंजन पार्क में 3 दुर्गा पूजा समितियों की तरफ से 3 बड़े पंडाल बनाए जाते हैं। इनमें कालीबाड़ी मंदिर में दुर्गा पूजा बेहद भव्य और सबसे मशहूर है। कालीबाड़ी मंदिर में विराजमान होने वाली माँ दुर्गा की भव्य मूर्ति, रंग बिरंगी सजावट और 9 दिनों तक शाम को होने वाले सांस्कृतिक उत्सव हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं।
1: तो भाई देखिए, कोलकाता के साथ साथ दिल्ली भी पूरी तरह से तैयार हो रही है दुर्गा पूजा के लिए, क्योंकि माँ आने वाली हैं। और उसके लिए सबसे बढ़िया जो जगह होती है सीआर पार्क, जहाँ हर साल मैं आपको लेकर आती हूँ, और ये बिल्कुल सीआर पार्क का वही कालीबाड़ी मंदिर है। जरा तस्वीरें देख लीजिए, तैयारियां भी हो रही हैं, शुरुआत हो चुकी है। हालांकि बहुत जोर शोर से यहाँ तैयारियां हो रही हैं। ये वही पंडाल है जहाँ पर हर साल दुर्गा पूजा मनाई जाती है कालीबाड़ी मंदिर का। और अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर शुरुआत हुई है, यानी पंडाल अभी तैयार हो रहा है। पंडाल का थीम क्या है बहुत ही सीक्रेट रखा गया है, लेकिन इसके साथ ही साथ सबसे ज्यादा जो इंतजार रहता है वो रहता है मूर्तियों का। तो इस बार किस तरह की मूर्ति होगी, थीम क्या होगा, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर लोगों में एक्साइटमेंट होती है। क्योंकि भाई जो लोग बंगाल से बाहर रहते हैं, स्पेशली अगर हम दिल्ली की बात करें, तो उनके लिए सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट यही सीआर पार्क का एरिया होता है। तो आज मैं आपको सीधा वर्कशॉप लिए चलती हूँ, जहाँ पर मूर्तियों को बनाने का काम लगातार चल रहा है, और आपको मिलवाऊंगी उन कलाकारों से, उन कारीगरों से, जो हर साल इन मूर्तियों को आकार देते हैं। और फिर उसके बाद फाइनली, अगर आपको याद हो तो ये वो स्टेज होती है सामने, जहाँ पर पंडाल सजाया जाता है, माँ की मूर्ति को लाया जाता है। अभी भी अगर आप देखेंगे तो रफ यहाँ पर स्टेज तैयार की गई है, लेकिन चलिए मेरे साथ आपको मैं वर्कशॉप में लिए चलती हूँ और देखते हैं कि मूर्ति बनाने का काम कहाँ तक पहुँचा है। आइए।
0: हर साल दुर्गा पूजा से पहले दुर्गा प्रतिमा के निर्माण से जुड़ी कार्यशाला आयोजित की जाती है, जहाँ कुशल कारीगर बांस, पुआल और मिट्टी से देवी की भव्य मूर्तियाँ तैयार करते हैं। 1970 के दशक से कालीबाड़ी मंदिर के सहयोग से चली आ रही इस विशेष कार्यशाला में हर साल सैकड़ों प्रतिमाओं को आकार दिया जाता है, जो दिल्ली एनसीआर की 300 से अधिक पूजा समितियों को भेजी जाती है।
1: तो देखिए, मंदिर है और मंदिर के ठीक पीछे ये वो वर्कशॉप है, कार्यशाला है, जहाँ पर मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, मूर्तियों को आकार दिया जाता है। वैसे तो यहाँ पर जो काम है वो पूरा साल चलता रहता है, लेकिन जो आखिरी का समय होता है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उनमें कलर भरना है, फाइनल टच देना है। और ये वो कार्यशाला है जहाँ से मूर्तियाँ दिल्ली एनसीआर और साथ ही साथ अगल बगल के जितने राज्य हैं वहाँ पर मूर्तियाँ यहाँ से भेजी जाती हैं, और यहीं पर आकार इनको दिया जाता है, और यहाँ से फिर ये मूर्तियाँ राजस्थान, पंजाब, दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, जहाँ जहाँ भी जरूरत होती है वहाँ इनको भेजा जाता है। सबसे बड़ी और खास बात यह है, अगर आपको ध्यान हो तो कोलकाता में स्पेशली और पूरे बंगाल में जहाँ जहाँ मूर्तियाँ बनाई जाती हैं वहाँ पर मिट्टी कुमारतुली से लाई जाती है, और यहाँ पर भी इन मूर्तियों को आकार देने से पहले उस पवित्र मिट्टी को इनमें शामिल किया जाता है।
0: मूर्तिकार गोविंद अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी है, जो पारंपरिक रूप से माँ दुर्गा की प्रतिमाएं बनाने के काम में खुद को समर्पित कर चुके हैं। दुर्गा माँ की प्रतिमा उनके हुनर और विरासत को भी दर्शाती है।
1: तो गोविंद जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और माँ की जो मूर्ति है उसके चेहरे को आकार दिया जा रहा है, और साथ ही साथ मैं इनका परिचय कराऊं, ये तीसरी पीढ़ी है जो लगातार माँ की मूर्तियों को और दुर्गा पूजा की तमाम मूर्तियों को बनाते आए हैं। गोविंद जी
2: नमस्कार जी।
1: नमस्ते। कहाँ तक पहुँचा है काम?
2: काम अभी बस पेंटिंग का इंतजार कर रहा है, कल से नहीं तो परसों से पेंटिंग चालू हो जाएगा हमारा, और कुछ एक दो मूर्ति में मिट्टी का काम बाकी है, वो भी अभी काम चल रहा है, तो उसी का भी तैयारी हो रहा है। इधर पेंटिंग का भी थोड़ा फिनिशिंग करके, मिट्टी का फिनिशिंग करके तो कल परसों से ही पेंटिंग चालू।
0: इस शारदीय नवरात्र की शुरुआत 11 अक्टूबर से हो रही है और इसका समापन 20 अक्टूबर को विजयदशमी यानी दशहरे के दिन होगा। कोलकाता का कुमारटोली पवित्र दुर्गा प्रतिमाएं बनाने के लिए मशहूर है। उनमें वहां बहने वाली गंगा नदी की मिट्टी को मूर्तियों के लिए सबसे अच्छा और शुभ माना जाता है। सियार पार्क के कालीबाड़ी मंदिर में मौजूद कार्यशाला में भी परंपरा और शुद्धता बनाए रखने के लिए मिट्टी वहीं से आती है।
1: अच्छा, मिट्टी आप वहां से लेकर आते हैं?
2: वहाँ से मिट्टी ले आते हैं, और कुछ मिट्टी यूपी का उस साइड से आता है, खेत का भी मिट्टी होता है, तो मिला के आता है। इतना सारे मिट्टी तो लाना पॉसिबल नहीं है, तो जो फेस वगैरह होता है, जो हमारा जो कलकत्ता मिट्टी स्पेशल
1: जो आप बना ही रहे हैं,
2: बिल्कुल बिल्कुल ये कलकत्ता का मिट्टी ले आते हैं, और बाकी यूपी का पंजाब का जो खेत होता है ना, खेत का मिट्टी भी आता है।
1: ठीक है, यानी कि ये पर्टिकुलर रहता है कि माँ का और जो तमाम मूर्तियों का जो फेस है वो जो बंगाल से मिट्टी आती है वो उसी से बना है।
2: फिनिशिंग अच्छा होता है, चिकनावट अच्छा होता है, उसमें कंकड़ कम होता है, फिनिशिंग अच्छा है, काम करने में अच्छा वो होता है। और दूसरी जगह मिट्टी थोड़ा कंकड़ होता है, रेत होता है, वो दूसरा काम पे आता है।
0: सनातन परंपरा में शारदीय नवरात्र का विशेष महत्व है। माना जाता है कि इस दौरान माता की पूजा अर्चना से देवी दुर्गा की खास कृपा प्राप्त होती है। माँ दुर्गा के 9 रूपों की विधिवत पूजा अर्चना भक्तों के लिए शुभ मानी जाती है। ऐसे में शारदीय नवरात्र की विशेष तैयारियां होती हैं। प्रतिमाओं के आकार लेने के दौरान हर तरफ माँ के जयकारे गूंजने लगते हैं। दिल्ली से नवजोत संधावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: तो जैसा कि हम हर बार कहते हैं कि उत्सव यानी गुड न्यूज टुडे, तो तैयार हो जाइए, तमाम रंग आपको लगातार जीएनटी पर दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, अच्छी खबरें जारी हैं, देखते रहिए जीएनटी।

मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
1: देखिए, इन दिनों पितृपक्ष में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भू वैकुंठ नगरी श्री बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं, जहां वो भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के बाद ब्रह्म कपाल तीर्थ में अपने पितरों का तर्पण और पिंडदान कर रहे हैं। पितरों की मुक्ति के लिए श्री हरि के इस पावन धाम की दिव्यता ही ऐसी है कि ब्रह्म कपाल में पिंडदान और तर्पण की मान्यता और परम्परा को अब विदेशी भी आत्मसात करते नजर आ रहे हैं। रूसी तीर्थयात्रियों ने यहाँ विधि विधान के साथ अपने पितरों के निमित्त पिंडदान और तर्पण किए।
2: जहाँ बहती है अलकनंदा की पवित्र धारा, उसी बद्रीनाथ के आंगन में पितरों की आत्मिक शांति के लिए पिंडदान हो रहा है। देवभूमि उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में जहाँ चार धाम यात्रा दर्शन के रंग बिखरे हैं, हर तरफ श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है, तो वहीं इन दिनों पितृपक्ष के दौरान भगवान विष्णु का ये धाम सिर्फ चार धाम दर्शन का केंद्र ही नहीं, बल्कि पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता और स्मरण का भी पवित्र स्थल बना हुआ है। दरअसल यहाँ के ब्रह्म कपाल में मोक्ष की कामना और पितरों के प्रति श्रद्धा जैसी भावनाओं को लेकर अच्छी खासी संख्या में श्रद्धालु तर्पण के लिए पहुँच रहे हैं, अपने पूर्वजों के निमित्त पिंडदान कर रहे हैं। श्राद्ध परंपरा का भगवान बद्री विशाल के आंगन में होना ही इन तमाम श्रद्धालुओं को पुरखों के प्रति सम्मान और आध्यात्मिकता की अनुभूति दे रहा है।
3: कहा गया है इस स्थान पर पिंड देने से सात पीढ़ियों के पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ पर भगवान बद्री विशाल के बाल मोक्ष से मनुष्य अपने पितरों को पिंड और तर्पण देता है, सात पीढ़ी के पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और आप देख रहे हैं आजकल पितृपक्ष में काफी संख्या में लोग अपने पितरों को उद्धार के लिए कुंभ का पानी आए।
2: पितरों की मुक्ति के लिए श्री हरि के इस पावन धाम की दिव्यता ही ऐसी है कि यहाँ कराए जाने वाले पिंडदान और तर्पण को लेकर श्रद्धालुओं का विश्वास अटूट है। यही कारण है कि ब्रह्म कपाल में पिंडदान और तर्पण की मान्यता और परंपरा को अब विदेशी भी आत्मसात करते दिख रहे हैं। दरअसल भारत आए सात रूसी तीर्थयात्रियों ने भी यहाँ विधि विधान के साथ अपने पितरों के निमित्त पिंडदान और तर्पण किया। वैसे पहले भी सनातनी परंपरा उसके प्रति आस्था विदेशियों को काफी आकर्षित करती रही है, ऐसे में बद्रीनाथ धाम में विदेशी श्रद्धालुओं का अपने पुरखों का पिंडदान एक बार फिर दर्शा रहा है कि आस्था की कोई सीमा नहीं होती। ब्रह्म कपाल में पिंडदान का धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कर इन विदेशी श्रद्धालुओं का सनातनी परंपराओं और मान्यताओं के प्रति भाव जता रहा है कि संस्कृति अलग हो सकती है, लेकिन पूर्वजों के प्रति श्रद्धा का भाव कमोबेश सभी जगह पर एक ही जैसा है। चमोली से कमल नयन सिलोरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, बुद्धिस्ट रिपोर्ट।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। Good News Today, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ Good News Today में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
6: गुवाहाटी वनडे में भारत की शानदार जीत, वेस्ट इंडीज को 8 विकेटों से हराया, सीरीज में 2-0 की बढ़त, 44वें ओवर में चेस किया 406 रन का लक्ष्य। कप्तान शुभमन गिल ने रचा इतिहास, 117 गेंद में जड़ा दोहरा शतक, सबसे तेज शतक बनाने का बनाया विश्व रिकॉर्ड। एशियन गेम्स में भारत की चमक बरकरार, 87 किलोग्राम ग्रीको रोमन रेसलिंग इवेंट में सुनील कुमार ने जीता ब्रॉन्ज, आज तीरंदाजी में 3 और शूटिंग में आया 1 गोल्ड, भारत के खाते में कुल 10 गोल्ड। पिछले 5 वर्षों में इस साल सितंबर महीने में सबसे ज्यादा साफ रही दिल्ली की हवा, औसत EQI 102 दर्ज किया गया। कोलकाता में नवरात्र की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। बर्धमान में मां दुर्गा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे कारीगर। ग्यारह अक्टूबर को कलश स्थापना के साथ ही शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो जाएगी। 9 दिनों तक माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना होगी। कोलकाता समेत पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की अद्भुत छटा देखने को मिलती है, जिसकी तैयारियां तेजी से चल रही हैं। आज हम आपको कोलकाता की एक ऐसी जगह दिखाने जा रहे हैं जो देवी देवताओं की मूर्ति बनाने के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है।

0: आस्था का पर्व और माता रानी के स्वागत की तैयारी। कहीं माँ दुर्गा की भव्य प्रतिमाएं बनाई जा रही है तो कहीं पंडाल सजाए जा रहे हैं। आदि शक्ति आएंगी, अपने भक्तों पर कृपा बरसाएंगी। 9 दिनों के भक्ति के इस उत्सव में हर तरफ जय माता दी के जय घोष की गूंज सुनाई देगी। इसी के चलते देश भर में नवरात्र की तैयारियां तेजी से आगे बढ़ रही है। पश्चिम बंगाल और विशेषकर कोलकाता के लिए दुर्गा पूजा केवल एक धार्मिक त्योहार नहीं बल्कि बंगाली संस्कृति, कला, भाईचारे और अर्थव्यवस्था की धड़कन है। इसलिए यहाँ इन दिनों मूर्तिकारों की व्यस्तता कहीं अधिक बढ़ी हुई है। माँ दुर्गा की छोटी से लेकर बड़ी मूर्तियों को वो तेजी से आकार देने में जुटे हुए हैं। रंग रोगन का काम चल रहा है।
1: माता दुर्गा की मूर्ति सज धज के बन ठन के जाती है इसी कुमोटुली से। और इस बीच कुमोटुली में अभी बहुत ही व्यस्तता चल रहा है, लोगों का भी यहाँ पे आना जाना बन रहा है। कोई लोग आ रहा है दोस्तों के साथ फोटो खींचने, कोई यहाँ पे पूजा के पहले ही पूजा का वाइब्स लेने कुमोटुली पहुंच रहा है, माता दुर्गा की मूर्ति को दर्शन कर रहा है।
0: कोलकाता का कुम्हार टोली इलाका दुनिया भर में माँ दुर्गा की पारंपरिक और कलात्मक मूर्तियाँ बनाने के लिए प्रसिद्ध है। करीब 300 साल पुरानी कुम्हारों और मूर्तिकारों की इस बस्ती को पॉटर्स कॉलोनी कहा जाता है। यहाँ देवी दुर्गा की मूर्तियाँ विशेष रूप से गंगा की मिट्टी, बांस और भूसे के ढांचे पर हाथों से गढ़ी जाती है।
2: स्टूडियो में कोई 20 बना रहा, कि 15 बना रहा, कि 10 बना रहा, ऐसा करके होता। कोई 50 भी बनाया है, ऐसा नहीं है जो 10-20 ना, 50 भी बना रहा, ऐसा होता है। ये तो गुण नहीं पाएगा तो सारा कलकत्ता में बाहर में सब हम लोग की मूर्ति भेज रहा है।
0: कुम्हार टोली में मिट्टी की मूर्तियां बनाने वाले लगभग 300 स्टूडियो है, जहां कारीगर मूर्तियों को अब अंतिम रूप देने में व्यस्त है। लगभग सभी स्टूडियो को पहले ही एडवांस बुकिंग मिल चुकी है। यहां बनी दुर्गा प्रतिमाओं की केवल कोलकाता या देश के दूसरे हिस्सों में ही नहीं बल्कि विदेश तक डिमांड है। अब तो यहां के मूर्तिकार प्रतिमाओं के निर्माण में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक का इस्तेमाल कर रहे हैं।
3: मेरा असल जो हम जो ठाकुर बनाते हैं 12-14 मैंने वो आज से 2 मास पहले वो बुकिंग हो गया। अभी जो AI से मैं रोबोटिक दुर्गा किया है उत्तर दिनाजपुर कालियागंज में, वो मारात्मक वायरल हो गया, ठीक है। उसको जो प्रतिमा है वो रोबोटिक है, उसका जो AI दुर्गा और उसका जो फेस है वो माँ का जो फेस, वही फेस मैंने रखा है, लेकिन AI नहीं किया। जो तस्वीर मेरे पास आया है वो माँ का थोड़ा सा AI था, लेकिन ये तो माँ है, इसलिए माँ को मैं एक मिनमय रूप मैंने दिया, ठीक है। उसको जो आक्स, उसको जो सारीज, उसको जो सरस्वती, लक्ष्मी, कार्तिक, गणेश जो है, उसको जो महिषासुर, उसके जो लायन, सब आंखों में LED लाइट्स जलेंगे।
1: अच्छा।
3: साड़ी में, साड़ी में भी, और जो अस्त्र है फाइबर का, उसका उसका भीतर में LED लाइट्स है, वो ब्लिंक करेगा।
1: अच्छा।
3: ठीक में, और उसका जो पैंडल है, वो जो रोबोट है वो घूमेगा।
1: अच्छा।
3: वो बातचीत करेगा, अब जो बोला वो बात वो आंसर दे देंगे।
4: बागमारी का जो है और आदर्श जगह जो सब नया बना हुआ है, ये ब्रिटिश जमाना से चला हुआ आ रहा है और अभी तक लोग, आप देख, अगर आप यहाँ सर्वे कीजिएगा देखिएगा, सबसे ज्यादा मूर्ति यहीं पर,
5: यहाँ पे मूर्ति, सारा मूर्ति यहीं पे बनता है, यहीं से स्टार्टिंग हुआ है और हम लोग भी आज बचर बचर यहीं से आके लेके जा रहे हैं।
0: यहाँ मूर्ति का ऑर्डर दे चुके लोग ही नहीं पहुँच रहे बल्कि बड़ी संख्या में कला प्रेमी भी आ रहे हैं, जो मूर्तिकारों और कारीगरों की मेहनत को करीब से देखने और समझने की इच्छा रखते हैं। यहाँ देवी माँ की दिव्य मूर्तियों को देखकर वो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। मोबाइल में तस्वीरें कैद करने के साथ खुद की तस्वीर खिंचवाते भी नजर आते हैं।
6: मैंने बहुत सुना था बट आज महसूस किया और बहुत अच्छा लग रहा है, अद्भुत जिसको बोलते हैं ना वो एक्सपीरियंस हुआ और बहुत ऐसे डिवाइन सी फीलिंग हो रही है।
7: मैं तो उत्साहित थी ये देखने के लिए कि क्या कैसे बनता है, वो मुझे बहुत जानना था। तो इतना सुंदर है कि मतलब इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते हम, तो बहुत ही सुंदर है, अद्भुत है ये नज़ारा। अभी मैंने माँ का जो मूर्ति बनते हुए कैसे बनाते हैं और कितने मेहनत से बनाते हैं वो देखा, और कितने लगन से बनाते वो चीज़ देखा, तो वो चीज़ महसूस कर रही हूँ।
8: यहाँ पर आज हम कैसे शुरुआत होती है, कैसे पुआल और मिट्टी से उनको एक पहले एक स्ट्रक्चर देते हैं, फिर उसकी आप प्लास्टर ऑफ पेरिस करते हैं, प्राइमर और कलर और फिर ज्वेलरी, तो वो जो पूरी की पूरी जर्नी हम पहले शुरू गली से शुरू होते हैं और गली के अंत तक आते आते माँ का पूरा प्रारूप ही चेंज हो जाता है, और यहाँ से फिर जो पंडाल तक का सफ़र है वो बिल्कुल ही अद्भुत रहता है।
9: दुर्गा पूजा के शुरू होने से पहले ही ये जगह लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, इसके चलते यहाँ लोगों की आवाजाही बढ़ी हुई है और त्योहार से पहले ही उत्सव जैसा माहौल बन चुका है। कोलकाता से राही हलदार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
10: बात करेंगे अवधपुरी की, जहां पर 7 नवंबर को दिव्य आयोजन की तैयारियां चल रही हैं। इस दिन वहां की छठा देखने वाली रहेगी। अयोध्या का कोना कोना रोशनी से सराबोर हो जाएगा। इस विशेष अवसर के लिए विशेष टूर पैकेज की घोषणा भी कर दी गई है। इन सबके बीच अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक अलग तैयारियां चल रही हैं।

0: प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या, जहां बड़ी संख्या में भक्त रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। यहां इन दिनों दीपोत्सव की तैयारियां चल रही हैं। साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर एनएसजी कमांडोज की चहलकदमी भी देखी जा सकती है। अवधपुरी में इस बार और भव्यता के साथ दीपोत्सव मनाने की तैयारी है, और इसी को लेकर जहां एक तरफ मजदूर कामकाज में जुटे हैं, तो वहीं अधिकारी लगातार निरीक्षण करते नजर आए।
1: हम लोग यहां क्वीन हो पार्क में उपस्थित हैं। यहां पर हम लोग की प्लानिंग है कि कुछ प्रदर्शनी या झांकी जैसा कुछ दीपोत्सव के दौरान लगाया जाएगा, तो उसी के संबंध में इस पार्क का निरीक्षण किया जा रहा है। इसके अलावा राम की पैड़ी, चौधरी चरण सिंह घाट, सरयू तीर्थग्रह, जो हेलीपैड बनता है, रामकथा पार्किंग, सभी स्थानों का निरीक्षण किया जा रहा है। और कहीं पर भी जो छोटी मोटी चीजें पाई जा रही है, जिनके बारे में निर्देश दिए जाने हैं, जिनको ठीक किया जाना है, वो लगातार किया जा रहा है। लगातार इस प्रकार के निरीक्षण जारी रहे।
0: इस बार के दीपोत्सव को और ज्यादा शानदार बनाने के लिए श्रद्धालुओं के लिए एक खास योजना तैयार की गई है। UPSTDC ने दीपोत्सव अयोध्या टूर पैकेज तैयार किया है। श्रद्धालु और पर्यटक राम मंदिर, हनुमान गढ़ी, कनक भवन, नागेश्वर नाथ मंदिर के दर्शन भी कर पाएंगे।
2: एक अलग नजारा है, एक अलग दृश्य होगा, जब इस बार देश से नहीं विदेशों से भी खास मेहमान आएंगे, इस दीपोत्सव में शामिल होंगे, जहां अब की बार एक वर्ल्ड रिकॉर्ड एक नया बनाया जाएगा। यहाँ अगर आते हैं टूरिस्ट तो उनके लिए खास इंतजाम भी किए गए हैं। राम मंदिर हो, कनक भवन हो या हनुमान गढ़ी, हर जगह वो दर्शन करेंगे, उनके रुकने के खास इंतजाम किए गए हैं। तो पूरी राम की पैड़ी को जो है पूरा दुल्हन की तरीके सजाया जा रहा है, क्योंकि बहुत जल्द वो 7 नवंबर की तारीख है जब विशालकाय दिए, इलेक्ट्रॉनिक दिए, हर एक चीज वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इस राम की पैड़ी पे इसको भव्य और दिव्य रूप दिया जा रहा है।
0: दीपोत्सव को लेकर तैयारियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं। राम की पैड़ी पर विजिटर गैलरी और सेल्फी पॉइंट्स भी तैयार किए जा रहे हैं। इस बार 30 लाख दीप जलाने का लक्ष्य है। श्रद्धालु लेजर और ड्रोन शो का आनंद भी उठा पाएंगे। सरयू घाट पर 2100 वैदिक आचार्य महाआरती करेंगे। 240 से अधिक मंदिर और मठों में भी दीप प्रज्वलित होंगे। रामकथा पार्क से लेकर राम की परिधि तक लगभग 1 दर्जन जगहों पर अलग अलग कार्यक्रम होंगे। सरयू के तट पर श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, नए घाट, एम्फीथिएटर और फूड कोर्ट्स जैसे आकर्षक केंद्र भी बनाए जाएंगे। इन सब के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG की टीम अयोध्या में समीक्षा और मॉक ड्रिल करती नजर आई। NSG की टीम राम मंदिर से लेकर हनुमान गढ़ी तक सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेती नजर आई। कनक भवन में भी NSG की टीम सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रही थी। NSG की टीम सभी महत्वपूर्ण स्थलों का निरीक्षण कर रही है और मौजूदा व्यवस्था की समीक्षा के साथ साथ संभावित आपात परिस्थितियों से निपटने की तैयारियों को भी परखा जा रहा है।
2: निरीक्षण किया जा रहा है, NSG कमांडेंट यहाँ पे लगातार घूम रहे हैं। राम मंदिर हो चाहे हनुमान गढ़ी हो, हनुमान गढ़ी परिसर में पूरी डायरेक्शन दी गई है, बाकायदे कंट्रोल रूम पूरे चेक किए गए हैं। तो यहाँ लगातार जो है अयोध्या की राम नगरी की सुरक्षा को लेकर खास इंतजाम किए जा रहे हैं। लगातार यहाँ पे निगरानी की जा रही है, लगातार चप्पे चप्पे पर NSG की तैयारी है।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अयोध्या में एक नया NSG क्षेत्रीय केंद्र बनाने की घोषणा की है। माना जा रहा है कि NSG कमांडोज की मौजूदगी और लगातार चल रही मॉक ड्रिल उसी का हिस्सा है, और आने वाले समय में अयोध्या की पूरी सुरक्षा व्यवस्था में NSG की अहम भूमिका तय की जा सकती है। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: अभी तक हरी सब्जी को सेहत और स्वास्थ्य के लिहाज से सबसे पौष्टिक आहार माना जाता रहा है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के वनस्पति विज्ञान विभाग की माने तो यमुना के किनारे उगाई जाने वाली सब्जियों के जरिए दिल्ली की थाली में यमुना का प्रदूषण पहुंच रहा है। जी हां, DU की रिसर्च के मुताबिक टेस्ट के दौरान कई सब्जियों के सैंपल्स में क्रोमियम, लेड, कैडमियम और ऐसे पदार्थ पाए गए हैं जिनसे मेटल्स मिले हैं, जो स्वास्थ्य के लिए अगर देखा जाए तो बहुत हानिकारक हैं। शरीर में इनके पहुंचने से कैंसर होने तक का खतरा बढ़ जाता है।

0: स्वस्थ और सेहतमंद रहने की ख्वाहिश हर किसी की होती है। नियमित व्यायाम, भरपूर नींद के अलावा संतुलित आहार को अपनाने की सलाह दी जाती है। और जब पौष्टिक भोजन की बात आती है तो उनमें सबसे ऊपर हरी सब्जियों की गिनती होती है। हालांकि दिल्ली में हरी सब्जियां खाने की सलाह देना भारी पड़ सकता है, वो भी तब जब ये सब्जियां यमुना नदी के किनारे उगाई गई हों। दिल्ली में गंदगी, प्रदूषण और दुर्गंध की वजह से अभिशप्त यमुना से एक नई चिंता जुड़ गई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के वनस्पति विभाग की चौंकाने वाली एक रिसर्च सामने आई है जो सीधे तौर पर आपकी सेहत पर बुरा असर डाल सकती है। सिर्फ यही नहीं बल्कि आपको अपने खान पान के आदतों में बदलाव के लिए मजबूर भी कर सकती है। रिसर्च के मुताबिक यमुना के आसपास की मिट्टी और उसमें उगाई जा रही कुछ सब्जियों के सैंपल में हैवी मेटल्स यानी भारी धातुएं पाई गई हैं।
1: दिल्ली में यमुना किनारे इस वक्त हम उसी जगह पर मौजूद हैं जहां से प्रोफेसर दीनबंधु साहू ने सैंपल कलेक्ट किए थे। ये यमुना का किनारा आप देख रहे हैं और यमुना का पानी अभी भी पूरी तरह से काला है, बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, पारदर्शी नहीं है, मतलब पानी बिल्कुल भी साफ नहीं है। इसी इलाके से, यमुना के इसी स्ट्रेच से लगातार 2 साल तक प्रोफेसर दीनबंधु साहू सैंपल लेते रहे। उन्होंने पानी का सैंपल लिया, मिट्टी का सैंपल लिया, फिर उनसे जो सब्जियां उगाई जा रही थी उनका सैंपल लिया। और सब्जियों में भी जो सैंपल लिया वो सिर्फ एक बार नहीं बल्कि किसी सब्जी के 3 से 4 बार उसके सैंपल अलग अलग उसकी फसल के वक्त लिए गए और उन सैंपल में वो सारी खतरनाक चीज़ें मिली हैं।
0: दिल्ली यूनिवर्सिटी के वनस्पति विज्ञान विभाग की एक टीम यमुना के जल में प्रदूषण के स्तर को लेकर लंबे समय से रिसर्च कर रही है। इसी कड़ी में यमुना के आसपास में मिट्टी की भी जांच पड़ताल की गई। तब उसमें क्रोमियम, लेड, कैडमियम, आर्सेनिक और निकेल जैसी भारी धातुएं पाई गई। इसके बाद टीम ने उसी इलाके में उगाई जाने वाली सब्जियों के सैंपल भी लिए। प्याज, आलू, मेथी, धनिया, सरसों, पालक और सफेद मूली में क्रोमियम, लेड, कैडमियम, आर्सेनिक और निकेल जैसे हैवी मेटल्स मिले जो स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है।
2: पहले हमने देखा कि पानी जो है अलग अलग जगह से जब हमने लिए देखा कि हाईली पॉल्यूटेड है और वही पानी में जब आपका सिंचाई हो रहा है सारे चीजें यमुना के किनारे, तो फिर हमने पहले सॉयल का टेस्टिंग किया। सॉयल टेस्टिंग में देखा गया है कि ये काफी मात्रा में उसमें हैवी मेटल्स है। तो हमने सोचा है कि जो आपका यहाँ खेती हो रहा है अलग अलग टाइप का सब्जी का, तो क्यों उसको ला के हम टेस्टिंग ना करें। तो उसको जब हमने टेस्टिंग किए उसमें देखे कि काफ़ी भारी मात्रा में आपको हैवी मेटल्स पाया गया है, चाहे कैडमियम हो, क्रोमियम हो, आर्सेनिक हो, अलग अलग वेजिटेबल्स है, प्याज है, आलू है, मेथी है, धनिया है। तो उसमें हमने देखा कि ये जो कैंसर कॉजिंग हैवी मेटल्स है वो काफ़ी हैवी मात्रा में पाया गया है।
0: दिल्ली में यमुना नदी की 22 किलोमीटर लंबाई है। कई इलाकों में नदी के दोनों किनारों पर खेती होती है। यही वजह है कि रिसर्च टीम ने किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले पानी, मिट्टी और सब्जियों के 3 अलग अलग बार सैंपल लिए। हर बार एक ही तरह का परिणाम सामने आया। कुछ मामलों में हैवी मेटल्स की मात्रा तय अंतर्राष्ट्रीय मानकों से कई गुना ज्यादा मिली। इस दौरान यमुना के पानी में अलग अलग तरह के केमिकल के अलावा कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया भी काफी ज्यादा मात्रा में मिला।
2: एक सैंपल्स में आप कभी कोई डाटा को वैलिडेट नहीं कर पाएंगे। सैंपल्स हमेशा ट्रिप्लिकेट में होता है, तो 3 बार सैंपल्स को ट्रिप्लिकेट में हमने किया और रिजल्ट्स वही निकला कि हर हैवी मेटल्स का जो है काफ़ी हाई लेवल में पाया गया है। अगर आप देखेंगे दिल्ली में यमुना 22 किलोमीटर का स्ट्रेच है, पानी बिल्कुल काला है। यमुना 7-8 स्टेट में लगभग 1800 किलोमीटर का स्ट्रेच है, बट ये जो स्ट्रेच है ये काफ़ी हेविली पॉल्यूटेड है और पानी में तो कोलीफॉर्म बैक्टीरिया जो है जो सेहत के लिए पूरा हानिकारक है, उसका लोड भी बहुत ज़्यादा है। तो जब खेती होता है तो पानी वहाँ से आता है और सीपेज होकर भी पानी आता है।
0: दिल्ली में आजीविका चलाने के लिए कई लोग यमुना किनारे सब्जियां उगाने के काम से जुड़े हैं, जिनकी वजह से जहरीली सब्जियां बाजार में बिकने के लिए पहुंच जाती हैं। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि अगर इसी तरह के प्रदूषित पानी का इस्तेमाल खेती में किया जा रहा है तो उसका असर सब्जियों पर कितना पड़ सकता है और वो स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है, यह समझना मुश्किल नहीं है। सब्जियों में सुरक्षित सीमा से कई गुना अधिक भारी मात्रा में भारी धातुओं का मिलना जानलेवा कैंसर को न्योता देना है।
1: जैसे अभी यमुना किनारा है और मैं आपको दिखाऊं तो आप वहां पर एक वो झोपड़ी देख पा रहे हैं और उसी जगह पर ठीक उसके पास में खेती की जा रही है सब्जियों की। फिलहाल वहां जाना अभी हमारे लिए संभव नहीं है, लेकिन ऐसे पूरे ही स्ट्रेच पर आपको यमुना के जगह जगह पर लोग दिख जाएंगे जो कि सब्जियों को उगाते हैं। और आप किसी भी कोई भी ऐसे भारी तत्व जो किसी सब्जी में होते हैं या फिर फसल में होते हैं तो वो जब शरीर में जाते हैं तो आपके शरीर को वो कैंसर की तरफ ले जाते हैं, चाहे वो निकेल हो, चाहे वो क्रोमियम हो या फिर लेड हो। इन सारी चीज़ों की मात्रा सब्जियों में कई गुना ज़्यादा मिली है, वो सब्जियां जो इसी पानी से उगाई जा रही हैं।
0: दरअसल दिल्ली में यमुना में छोटे बड़े 22 नाले गिरते हैं, केवल 11 नालों का पानी ट्रीट हो रहा है। ऐसे में घरों से निकलने वाला गंदा पानी यमुना में सीधा गिर रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली की लाइफ कहे जाने वाली यमुना के किनारे पैदा होने वाली सब्जियों का ये हाल हो गया है। सबसे बड़ी बात, खेतों से लेकर हमारे किचन तक पहुंचने के बाद सब्जियों को 3-4 बार साफ पानी से धोने का भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। सब्जियों की संरचना के लिए जिम्मेदार पादप कोशिकाएं यानी प्लांट सेल से हैवी मेटल्स का निकलना नामुमकिन होता है।
1: एक बात आपको हम और बता दें कि अमूमन ये मिथ हम लोग मानते हैं कि किसी सब्जी को अगर लेकर आए हैं तो उसे 3-4 बार आप गर्म पानी से साफ कर लीजिए ताकि जो उसमें कीटाणु हैं, जो दिक्कतें हैं वो निकल जाएं। लेकिन प्रोफेसर दीनबंधु साहू का साफ साफ कहना है कि सब्जी को महज गर्म पानी से धोने भर से उसमें जो दिक्कतें हैं वो बाहर नहीं निकलने वाली, क्योंकि अगर इसी पानी से उनकी खेती की जा रही है, इसी पानी का इस्तेमाल उन सब्जियों को उगाने में किया जा रहा है तो वो सारी चीज़ें उन सब्जियों के सेल्स में होंगी जिसे निकालना साफ करना बेहद मुश्किल है। मतलब साफ है कि अगर आप इस सब्जी का सेवन कर रहे हैं तो आपके शरीर में दिक्कत होना तय है, आज नहीं तो कल सही। कुल मिलाकर इससे बचने के क्या तरीके हो सकते हैं वो तमाम तरीके भी बताए गए हैं, लेकिन फिलहाल आप लोगों के पास क्या ऑप्शन है, आपके पास बस एक ही ऑप्शन है कि जब भी आप सब्जी वाले के पास जाएं तो पहले उससे पूछें कि ये सब्जी कहाँ उगाई गई है, इसका सोर्स क्या है, ताकि आपको जानकारी मिल सके कि उसे उगाने में किस तरह के पानी का इस्तेमाल किया गया है। कहीं वो पानी यमुना के नदी का तो नहीं है, बिल्कुल काला तो नहीं है, क्योंकि अगर उसकी उगाई सब्जियाँ आप पीते हैं तो शायद आप धीरे धीरे कैंसर की तरफ बढ़ रहे हैं। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, दिल्ली।
3: खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज़ टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे,
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
11: और वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, आपको लिए चलते हैं वायरल दुनिया में, दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं और जिन्हें खूब पसंद किया जा रहा है।
12: छोटे छोटे बच्चे और दूसरी तरफ सिक्योरिटी गार्ड, दोनों के बीच शुरू हुआ टग ऑफ वॉर का मुकाबला। बच्चे भी पूरी ताकत लगाकर रस्सी खींच रहे थे, लेकिन तभी सिक्योरिटी गार्ड ने ऐसा दाव चला कि पूरा खेल ही पलट गया। गार्ड ने बच्चों की तरफ कैंडी फेंक दी, कैंडी देखते ही बच्चों ने रस्सी छोड़ दी और कैंडी उठाने दौड़ पड़े। बस फिर क्या था, गार्ड ने मुकाबला जीत लिया।
13: आ जाए, आ जाए।
12: दिल्ली मेट्रो मेट्रो में सफर के दौरान अगर फोन या पर्स कहीं छूट जाए तो परेशानी होती है, लेकिन सोचिए अगर इसी भीड़ में किसी का छोटा बच्चा अपने माता पिता से बिछड़ जाए तो उस वक्त परिवार पर क्या गुजरती होगी। ऐसा ही एक भावुक मामला दिल्ली मेट्रो की मजेंटा लाइन से सामने आया है। करीब 8 से 10 साल का एक बच्चा अपनी माँ से बिछड़ गया। बच्चे को अपने माता पिता के नाम और घर का पता तो मालूम था, लेकिन घर में किसी का मोबाइल नंबर याद नहीं था। ऐसे में मेट्रो स्टाफ ने जिम्मेदारी संभाली और आखिरकार बच्चे को उसकी माँ से मिलवा ही दिया। लोगों को ये वीडियो खूब पसंद आ रहा है।
10: बच्चे के पिताजी आप हैं?
12: क्लासरूम में आमतौर पर बच्चे पढ़ाई करते हुए नजर आते हैं, लेकिन कभी कभी पढ़ाई के बीच कुछ ऐसे पल भी आ जाते हैं जो पूरे माहौल को खुशनुमा बना देते हैं। ऐसा ही एक प्यारा वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है। बच्चे एक एक भजन पर डांस करते दिखाई दे रहे हैं। बच्चे के चेहरे की मासूम मुस्कान और उसका उत्साह देख कर आसपास मौजूद टीचर्स भी खुश हो गए। बच्चों के डांस का सबसे प्यारा हिस्सा उनका एक्सप्रेशन और खुशी दिखाई देती है। वो जिस तरह से गाने पर झूमते हैं उसे देखकर किसी के भी चेहरे पर मुस्कान आ सकती है।

0: फिल्म हनुमान अंश का लोकप्रिय गाना मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान को इस विदेशी शख्स ने अपने अंदाज में गाकर लोगों का दिल जीत लिया।
1: भरोसे हनुमान सागर में नाया
0: आवाज में भक्ति का भाव साफ महसूस किया जा सकता है। लोग विदेशी शख्स की आवाज और उसके अंदाज की तारीफ कर

0: सर्च का विकल्प है, उस पर टैप करें और व्हाट्सएप लिखकर खोजें।
1: व्हाट्सएप खोल लिया मैंने।
0: अब आप व्हाट्सएप में हैं, नीचे बाईं ओर जो अपडेट्स का विकल्प है उसे दबाएं।
2: माँ को व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाना सीखना था तो उन्होंने मदद के लिए बेटे को नहीं बल्कि गूगल के एआई टूल जेमिनी को अपना गाइड बना लिया।
0: जी हाँ, स्क्रीन के निचले बाएं कोने में जो गोल आइकॉन है वो अपडेट्स का है, उसे दबाएं।
1: अच्छा, दबा दिया।
0: जी हाँ, आप अपडेट्स वाली स्क्रीन पर आ गई हैं। अब नया स्टेटस लगाने के लिए सबसे ऊपर एड स्टेटस पर टैप करें या फिर ऊपर कोने में दिए गए कैमरा या पेंसिल आइकॉन का उपयोग करें।
2: माँ और एआई के बीच हुई ये बातचीत इतनी प्यारी और मजेदार है कि लोग इस वीडियो को बार बार भी देख रहे हैं।
0: बहुत अच्छी। अब नीचे दाहिने कोने में दिए गए हरे रंग के तीर वाले बटन को दबा दें ताकि आपके स्टेटस पर लग जाए।
1: लगा दी।
0: बहुत बढ़िया, अब आपकी फोटो स्टेटस पर सफलता पूर्वक लग चुकी है।
1: अरे सुंदर आई ना।
3: हो गए 3-2, 3-2 हो गए, 3-1 हो गए, ये भी एक जादू ही है।
2: ट्रैफिक के बीच बाइक पर तीन लोग जा रहे थे तभी सामने पुलिसकर्मी नजर आ गया। इसके बाद ऐसा जुगाड़ हुआ कि बाइक पर अचानक सिर्फ दो लोग रह गए। लगा कि चलान से बचने की तरकीब काम कर गई, लेकिन कांस्टेबल की नजरों से इस जादू बच नहीं पाया। उसने तुरंत पूरी कहानी समझ ली और फिर जो अंदाज अपनाया उसे देखकर लोग मुस्कुरा उठे।
3: हो गए 3-2, 3-2 हो गए, 3-1 हो गए, ये भी एक जादू।
2: दरअसल पुलिसकर्मी के पास पहुंचते ही बाइक पर बैठा एक व्यक्ति तुरंत नीचे उतर गया और बिना कुछ कहे ऐसे आगे बढ़ने लगा जैसे उसका बाइक से कोई लेना देना ही ना हो। उसे शायद लगा कि इस तरह पुलिस की नजरों से बच जाएगा, लेकिन कांस्टेबल की नजरें पहले ही उसकी चाल पकड़ चुकी थी। पुलिसकर्मी ने उसे जाते हुए देखा तो तुरंत रोक लिया, फिर मजेदार अंदाज में पूछा, अरे कहाँ जा रहे हो, 3-2 कैसे हो गए?
3: हो गए 3-2, 3-2 हो गए, 3-1 हो गए, ये भी एक जादू ही है। अरे कहाँ जा रहे हो, क्या हुआ, 3-2 कैसे हो गए?
2: बस यही वो पल था जिसने पूरे वीडियो को मजेदार बना दिया। इसके बाद मामला सिर्फ चालान तक नहीं पहुंचा। कांस्टेबल ने शख्स को समझाया कि बाइक पर तीन लोगों के बैठने के बजाय वह ऑटो से जाए, यानी पुलिस से बचने के लिए की गई छोटी सी तरकीब आखिरकार काम नहीं आई।
3: ये तो बहुत जरूरी है।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
5: गुवाहाटी वनडे में भारत की शानदार जीत, वेस्ट इंडीज को 8 विकेटों से हराया। सीरीज में 2-0 की बढ़त, 44वें ओवर में चेज किया 406 रन का लक्ष्य। कप्तान शुभमन गिल ने रचा इतिहास, 117 गेंद में जड़ा दोहरा शतक, सबसे तेज शतक बनाने का बनाया विश्व रिकॉर्ड। एशियन गेम्स में भारत की चमक बरकरार, 87 किलोग्राम ग्रीको रोमन रेसलिंग इवेंट में सुनील कुमार ने जीता ब्रॉन्ज। आज तीरंदाजी में 3 और शूटिंग में आया 1 गोल्ड, भारत के खाते में कुल 10 गोल्ड। पिछले 5 वर्षों में साल सितंबर महीने में सबसे ज्यादा साफ रही दिल्ली की हवा, औसत EQI 102 दर्ज किया गया। कोलकाता में नवरात्र की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। वर्धमान में मां दुर्गा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे कारीगर।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। देश में त्योहारों के मौसम की शुभ शुरुआत होने वाली है। 11 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र का शुभारंभ हो रहा है। ऐसे में देश के अलग अलग शहरों में मंदिर और पंडाल सजाए जा रहे हैं। माँ दुर्गा की मूर्तियों के निर्माण का काम अब अंतिम चरण में है। यूं तो देश भर में नवरात्र पर माँ दुर्गा की भक्ति का उत्सव मनाया जाता है, लेकिन नवरात्र का सबसे गाढ़ा रंग चढ़ता है पश्चिम बंगाल पर। बाकी जगहों पर तो उत्सव के रंग नवरात्र में बिखरेंगे, लेकिन कोलकाता का एक कोना ऐसा भी है जहां वास्तव में उत्सव पूजों की शुरुआत से पहले नजर आता है। कोलकाता का कुमारटुली इलाका देवी प्रतिमाओं के निर्माण के लिए दुनिया भर में काफी प्रसिद्ध है। कुमारटुली में इन दिनों माँ दुर्गा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यहाँ पीढ़ियों से रहते आ रहे मूर्तिकार अपनी अपनी कल्पना के आधार पर माँ के स्वरूप को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिर क्या है कुमारटुली की कहानी और क्यों सारा कोलकाता माँ की प्रतिमाओं के लिए हुगली किनारे बसे इसी मोहल्ले का रुख करता है।

0: एक ऐसा शहर जो सोता है इतिहास के पालने में। पर एक रोज जब शरद ऋतु की हवाओं में घुल जाती है शिवली फूलों की महक, तब हुगली की ओर से आते मध्यम झोंकों के बीच कला की उंगलियां सहलाकर जगाती हैं जिसे, और जाग उठता है ये शहर साल के सबसे बड़े उत्सव के लिए। और इसी शहर के कोने में चुपचाप शुरू हो जाती है ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति को आकार देने की कहानी। वो कहानी जो शुरू होती है एक काट के टुकड़े से, एक बिना तराशे पत्थर से और माँ गंगा की मिट्टी से। ये कहानी है उसी मिट्टी के साक्षात महामाया बन जाने की।
1: माँ का इतना अद्भुत यहाँ होता है कि माँ आती हैं और मतलब बेटी हैं वो, तो कैसे उसका सब कुछ होता है, उनका सजावट और वो देखने को मिल रहा है, तो वो बहुत ही सुंदर है।
2: कलकत्ता का नहीं, वो सारा वर्ल्ड में फेमस है।
0: उत्तरी कोलकाता में हुगली के किनारे बसा कुम्हार टोली, बंगाली में कुमोर यानी कुम्हार और टोली यानी बस्ती। लगभग 300 साल पुराना ये इलाका सिर्फ एक मोहल्ला नहीं बल्कि कला का एक जीवंत संग्रहालय है, जहां हर साल आकार लेता है माँ दुर्गा का वो भव्य रूप जिस पर शब्दकारों ने मुक्त कंठ से स्तुतियां पढ़ी, चित्रकारों ने प्रतिबद्ध होकर चित्र बनाए और मूर्तिकारों ने गढ़ी मूर्तियां। कोलकाता का कुम्हार टोली उन्हीं मूर्तिकारों की बस्ती है जहां के कारीगर अपने अपने दृष्टिकोण से रचते हैं माँ का ये महारूप।
3: कुम्हार टोली की मिट्टी की खुशबू ये एहसास दिलाता है कि बंगाल की सबसे श्रेष्ठ उत्सव दुर्गा पूजा बहुत नजदीक है, और इस समय हम कुम्हार टोली में ही उपस्थित है जहां से बंगाल के मैक्सिमम पंडाल्स में माता दुर्गाओं की मूर्ति पहुंचती है। माता दुर्गाओं की मूर्ति सज धज के बन ठन के जाती है इस

0: मूर्ति रेडी करने के लिए।
1: बताया जाता है कि 18वीं शताब्दी के मध्य में जब राजा नवकृष्ण देव ने अपने घर में दुर्गा पूजा की शुरुआत करवाई, तब वे देवी देवताओं की सुंदर मूर्तियां बनाने के लिए बंगाल के ही कृष्णा नगर और आसपास के इलाकों से कुछ कुशल कारीगरों को लेकर यहाँ आए। धीरे धीरे ये कारीगर हुगली नदी के पास इसी इलाके में बस गए, जिसे आज कुमुरतुली या कुम्हार टोली कहा जाता है। दिन गुजरते गए, गंगा नदी के किनारे की ये उपजाऊ और चिकनी मिट्टी इन कारीगरों का नसीब बन गई। पीढ़ी दर पीढ़ी, दादा से पिता और पिता से बेटे तक ये हुनर इस मिट्टी की तरह ही यही ठहर गया। आज भी इन कलाकारों के वंशज कुम्हार टोली की छोटी तंग गलियों में माँ की प्रतिमा गढ़ते हैं। जगह कम है पर माँ का आशीर्वाद बड़ा है। अब के साल भी ये कलाकार तन मन से माँ का स्वरूप गढ़ने में जुटे हैं।
2: जो इतना दिन बारिश था उससे तकलीफ हुआ था, अभी जो बारिश दिया है सूर्यदेव ने, दो दिन से जो खरा रोद उठा वो हम लोग का अच्छा है। माने एक घंटा दो घंटा में जो मिट्टी का काम होता है, अभी लास्ट टाइम में जो मिट्टी का काम को होता है वही अभी सूख रही है, ठीक है। तो और दो दिन लगेगा, फिर रंग पेंट पेंट होगा, फिर हो जाएगा कपड़ा। और मेरा 90% काम हो गया कलर का, अभी चल रही है साड़ी। माँ का जो साड़ी है अभी साड़ी चल रही है, इसके बाद आएगा ऑर्नामेंट्स, ठीक है। ये ऑर्नामेंट्स बाल जो है उस लगा के फिर मौला जब आएगा तब वो मेरा घर से चाटो प्रतिमा पार्टी आके ले जाएगी।
1: कोलकाता के कई बड़े पंडाल कुम्हार टोली से ही मूर्तियां ले जाते हैं। महीनों पहले मूर्तिकारों को बता दिया जाता है कि माँ के स्वरूप में अब की बार क्या खास होना चाहिए। ग्राहकों की मांग और अपनी कल्पना के आधार पर कुम्हार टोली के कलाकार मूर्ति बनाने में जुट जाते हैं। महीनों तक काम चलता है और आखिरकार नवरात्र से पहले मां का स्वरूप बनकर तैयार हो जाता है।
3: यहां पर हम जो चाहते वही मिल जाता है। वहां पर बागमारी में ये फैसिलिटी नहीं था, यहां पर हम जैसा बोलते हैं ये लोग वैसे ही बना देते हैं। अलग है, ये बहुत पुराना है, ये प्राचीन काल से चला हुआ रहा है। बागमारी का जो है और आदर्श जगह जो सब नया बना हुआ है, ये ब्रिटिश जमाना से चला हुआ आ रहा है और अभी तक लोग आप देख अगर आप यहाँ सर्वे कीजिएगा देखिएगा सबसे ज्यादा मूर्ति यहीं पर है।
1: वास्तव में माँ दुर्गा की प्रतिमा का निर्माण केवल कला का प्रदर्शन भर नहीं है बल्कि ये एक सर्वोच्च आध्यात्मिक अनुष्ठान है। माँ की मूर्ति का निर्माण शरीर की तरह ही 5 तत्वों से शुरू होता है, लकड़ी, बांस, पुआल, रस्सी और गंगा की मिट्टी। सबसे पहले बांस और लकड़ियों की मदद से मूर्ति का मजबूत ढांचा तैयार किया जाता है, जिसे बंगाली भाषा में काटमो कहा जाता है। इस ढांचे पर काम शुरू करने से पहले भगवान गणेश की पूजा होती है, फिर बांस के ढांचे को सूखे पुआल से अच्छी तरह बांधा जाता है। इसके बाद गंगा नदी के तट की चिकनी मिट्टी, जिसे एटेल माटी कहते हैं, उसे धान की भूसी के साथ मिलाकर पहली मोटी परत चढ़ाई जाती है। मूर्ति को धूप में सुखाया जाता है और दरारों को कपड़ों की पट्टी से भरा जाता है। पहली परत सूखने के बाद बेले माटी यानी बारीक चिकनी मिट्टी की दूसरी परत लगाई जाती है। इससे मूर्ति को चिकना, गोल और सुंदर आकार मिलता है। इस चरण में चेहरे, हाथों और उंगलियों को बारीकी से गढ़ा जाता है। मूर्ति पूरी तरह सूखने के बाद उस पर सफेद रंग का प्राइमर या बेस कोट लगाया जाता है। इसके बाद स्प्रे या ब्रश का इस्तेमाल करके माँ की प्रतिमा को सुंदर रंगों से सजाया जाता है। फिर बारी आती है सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम धार्मिक अनुष्ठान चोखू दान की, जिसमें महालया या पूजा से ठीक पहले देवी की आंखें बनाई जाती हैं। अंत में मूर्ति को सुंदर वस्त्रों, आभूषणों और बालों से सजाया जाता है।
4: इट्स अ वेरी डिवाइन फीलिंग है ना। माँ को हम लोग पंडाल हॉपिंग में जब जाते हैं तो उनका पूरा सजावा रूप देखते हैं और यहाँ पर आज हम कैसे शुरुआत होती है, कैसे पुआल और मिट्टी से उनको एक पहले एक स्ट्रक्चर देते हैं, फिर उसकी आप प्लास्टर ऑफ पेरिस करते हैं, प्राइमर और कलर और फिर ज्वेलरी, तो वो जो पूरी की पूरी जर्नी हम पहले शुरू गली से

0: शुरू होते और गली के अंत तक आते आते माँ का पूरा प्रारूप ही चेंज हो जाता है। और यहाँ से फिर जो पंडाल तक का सफर है वो बिल्कुल ही अद्भुत रहता है। आप सोच नहीं सकते कि वो पंडाल में लाइट्स के साथ में जो वो इफेक्ट आता है, ये मूर्ति जो यहाँ पे हम देखते हैं वो और भी भव्य हो जाती है।
1: वेट करने के बाद ये वाला माँ का रूप देखने को मिलता है, नहीं तो आप देखेंगे बस सजी धजी पंडाल में दिख जाती है, लेकिन ये वाली चीज कहीं नहीं दिखती। तो इसके लिए वेट करने के लिए तो आना ही पड़ेगा यहाँ पे। और इसकी जो मिट्टी की जो खुशबू आ रही है और कलर्स की जो महक आ रही है बहुत अच्छी है।
2: कुमार टोली में अब कई तरह की मूर्तियाँ बनती हैं, जिनमें मुख्य रूप से पारंपरिक एकचाला मूर्तियाँ होती हैं, जिनमें सारे देवता एक ही ढांचे में बनाए जाते हैं। तो वहीं आधुनिक थीम पर आधारित मूर्तियाँ भी ऑर्डर पर अब तैयार होती हैं, जिनमें सामाजिक संदेश देने वाली कलाकृतियाँ भी गढ़ी जाती हैं। बदलते वक्त के साथ कुम्हार टोली भी बदला है। अब तो यहाँ माँ की मूर्ति के निर्माण में AI की झलक भी दिखाई देने लगी है।
3: इस साल में AI बनाया है मैंने। आजकल AI से सब हो रहा है, AI से पढ़ना होता है, AI से एडिट हो रहा है, AI से आपका 20 साल का 50 साल 100 साल 300 साल का वही देश में कौन राजा था वो AI अभी तो सब हो जाएगा AI से। अभी जो AI से मैं रोबोटिक दुर्गा किया है उत्तर दिनाजपुर कालियागंज में, वो मारात्मक वायरल हो गया, ठीक है। उसको जो प्रतिमा है वो रोबोटिक है, उसका जो AI दुर्गा, और उसका जो फेस है वो माँ का जो फेस वही फेस मैंने रखा है, लेकिन AI ने किया। जो तस्वीर मेरे पास आया है वो माँ का थोड़ा सा AI था, लेकिन ये तो माँ है, इसलिए माँ को मैं एक मिन्मय रूप मैंने दिया।
2: एक ही छत के नीचे माँ के अनंत रूप यहाँ नजर आते हैं। यही वजह है कि कोलकाता ही नहीं बल्कि आसपास के शहरों से भी लोग मूर्तियाँ लेने यहाँ पहुँचते हैं।
4: ये बहुत पुराना संबंध है, यहाँ पे आज प्राचीन काल से चले आ रहा है। एक यहाँ पे मूर्ति, सारा मूर्ति यहीं पे बनता है, यहीं से स्टार्टिंग हुआ है, और हम लोग भी आज बचर यहीं से आके लेके जा रहे हैं। हाँ, यहीं से हम लोग का पूजा कबड्डी मूर्ति लेता है। आज बहुत दिन से हम लोग यहीं से लिए जा रहे हैं। ये जैसा चाहते हैं वैसा मिल भी जाता है, आते हैं हर बार, हर तरह का देख के लेके जाते हैं।
5: तो यही क्या माता दुर्गा का प्राण केंद्र बन चुका है?
6: एकदम 100%, इसमें कोई दो राय नहीं है।
5: आप लोगों का पंडाल के दुर्गा प्रतिमा के यहाँ से ले जा रहे हैं?
6: यहीं से ले जा रहे हैं, सामने ही मेरा मूर्ति बन रहा है, आप उसको भी देख सकते हैं।
4: ये बहुत पुराना संबंध है, यहाँ पे आज प्राचीन काल से चले आ रहा है। एक यहाँ पे मूर्ति, सारा मूर्ति यहीं पे बनता है, यहीं से स्टार्टिंग हुआ है, और हम लोग भी आज बचर यहीं से आके लेके जा रहे हैं। इसके इतना बड़ा जगह तो कहीं है भी नहीं ना, अगर है भी तो वहाँ पे 2-4 मूर्ति बन रहा है, चाहे 10 मूर्ति बन रहा है, मगर यहाँ पे तो आप एक एक घर में 10-15 मूर्ति बन रहा है।
2: दुर्गा पूजा के शुभारंभ से पहले कुम्हार टोली में मूर्तियाँ लेने वालों के बीच ही सेल्फी लेते माँ के अर्ध निर्मित रूपों को निहारते सैलानियों की भी भरमार है। कहते हैं दुर्गा पूजा में कोलकाता की रौनक निराली होती है, लेकिन पूजों से पहले वो सारी रौनक कोलकाता के इस एक इलाके में सिमटी नजर आती है, जहां माटी से माँ को गढ़े जाने की यात्रा को अपनी आंखों से देखने बड़ी तादाद में सैलानी पहुंचते हैं।
7: एक्चुअली ये मेरा फर्स्ट टाइम है और मैंने बहुत सुना था, बट आज महसूस किया और बहुत अच्छा लग रहा है। अद्भुत जिसको बोलते हैं ना, वो एक्सपीरियंस हुआ और बहुत ऐसे डिवाइन सी फीलिंग हो रही है।
5: आज क्या घूमने ही आए थे?
7: जी बिल्कुल, ये दर्शन देवी माँ के अभी दर्शन करने आए थे हम लोग।
8: मैं भी पहली बार कोलकाता में आई हूँ और ये मतलब ये सुना बहुत था, मैम लोग से बहुत सुना था, तो मुझे बहुत ही मैं उत्साहित थी ये देखने के लिए कि क्या कैसे बनता है, वो मुझे बहुत जानना था। तो इतना सुंदर है कि मतलब उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते हम, तो बहुत ही सुंदर है, अद्भुत है ये नज़ारा। अभी मैंने माँ का जो मूर्ति बनते हुए कैसे बनाते हैं और कितने मेहनत से बनाते हैं वो देखा, और कितने लगन से बनाते वो चीज़ देखा, तो वो चीज़ महसूस कर रही हूँ कि सच में माँ का कैसे माँ मतलब वो फील आता है ना, वो फील आ रही है, बहुत सुंदर।
2: और महीनों की कड़ी मेहनत और समर्पण के बाद इसी यात्रा के अंत में आता है वो पल जिसे चोखू दान कहा जाता है। महालया के दिन जब मूर्तिकार माँ की आंखों की अंतिम लकीर खींचते हैं तो मिट्टी का वो ढांचा जीवित हो उठता है। कुम्हार टोली की संकरी अंधेरी गलियों से निकलकर जब ये मिट्टी की प्रतिमा कोलकाता के भव्य पंडालों में रोशनी से चमकती है तो पूरा शहर उत्सव के उल्लास से गमक उठता है। ये मूर्तियां गवाह हैं उस अटूट विश्वास की जहां इंसान अपनी आस्था और मेहनत के दम पर मिट्टी से निराकार को साकार कर लेता है। कोलकाता के कुम्हार टोली से राही हल्दर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
9: तो ये तो बात थी बंगाल की, अब आपको लिए चलते हैं दिल्ली में बसे छोटे बंगाल यानी दिल्ली का सीआर पार्क। सीआर पार्क को दिल्ली का मिनी बंगाल भी कहा जाता है। शारदीय नवरात्र के दौरान यहाँ थीम आधारित कई दुर्गा पंडाल सजाए जाते हैं। इनमें कालीबाड़ी मंदिर में लगने वाला पंडाल की चर्चा और तैयारी तो दुर्गा पूजा के कई महीनों पहले शुरू कर दी जाती है। कोलकाता के कुमार टुली की तरह ही यहाँ भी प्रतिमा निर्माण की अपनी परंपरा है। हर साल शारदीय नवरात्र से करीब 4 महीने पहले यहाँ वर्कशॉप लगाई जाती है जिसमें पुआल, मिट्टी और रंगों का इस्तेमाल करके भव्य दुर्गा मूर्तियां तैयार की जाती हैं। 1970 के दशक से ये परंपरा यूं ही निभाई जा रही है। फर्क यह है कि शुरुआत में इस वर्कशॉप में कुछ ही मूर्तियां आकार लेती थीं, लेकिन अब यहां हर साल करीब 800 मूर्तियां तैयार की जाती हैं। हर साल पूजों के समय सीआर पार्क की रौनक देखने लायक होती है। तो चलिए आपको दिखाते हैं और लेकर चलते हैं सीआर पार्क और दिखा देते हैं तैयारी दुर्गा पूजा की।

0: दिल्ली में बंगाल की संस्कृति, कला, साहित्य, संगीत और समृद्ध ऐतिहासिक विरासत की पहचान चितरंजन पार्क है, जो माँ दुर्गा के आगमन का इंतजार कर रहा है। 11 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र की शुरुआत होने जा रही है। नवरात्र माँ दुर्गा की आराधना और उनके 9 विशेष स्वरूपों को पूजने का पवित्र त्योहार है। हर साल शारदीय नवरात्र के दौरान चितरंजन पार्क यानी कि सीआर पार्क कोलकाता का प्रतिबिंब बन जाता है। शारदीय नवरात्र के करीब एक महीने पहले से पंडालों में अटूट आस्था, श्रद्धा, विश्वास और संकल्प के साथ माँ दुर्गा के आह्वान की तैयारी शुरू हो जाती है। 1960 के दशक में पहली बार यहाँ बसे बंगाली परिवारों ने शारदीय नवरात्र से जुड़ी सांस्कृतिक विरासत की नींव रखी थी। तब से यहाँ माँ दुर्गा की प्रतिमा को स्थापित करने की परंपरा को संजोने और समृद्ध करने का संकल्प पीढ़ी दर पीढ़ी लिया जा रहा है। यहाँ माँ दुर्गा की अलग अलग तरह की प्रतिमाओं को बनाने का काम पूरा साल चलता रहता है, लेकिन शारदीय नवरात्र के लिए माँ की मूर्तियों को तैयार करना अपने आप में विशेष अनुष्ठान की तरह होता है। चितरंजन पार्क में 3 दुर्गा पूजा समितियों की तरफ से 3 बड़े पंडाल बनाए जाते हैं। इनमें कालीबाड़ी मंदिर में दुर्गा पूजा बेहद भव्य और सबसे मशहूर है। कालीबाड़ी मंदिर में विराजमान होने वाली माँ दुर्गा की भव्य मूर्ति, रंग बिरंगी सजावट और 9 दिनों तक शाम को होने वाले सांस्कृतिक उत्सव हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं।
1: तो भाई देखिए, कोलकाता के साथ साथ दिल्ली भी पूरी तरह से तैयार हो रही है दुर्गा पूजा के लिए, क्योंकि माँ आने वाली हैं। और उसके लिए सबसे बढ़िया जो जगह होती है सीआर पार्क, जहाँ हर साल मैं आपको लेकर आती हूँ, और ये बिल्कुल सीआर पार्क का वही कालीबाड़ी मंदिर है। जरा तस्वीरें देख लीजिए, तैयारियां भी हो रही हैं, शुरुआत हो चुकी है। हालांकि बहुत जोर शोर से यहाँ तैयारियां हो रही हैं। ये वही पंडाल है जहाँ पर हर साल दुर्गा पूजा मनाई जाती है कालीबाड़ी मंदिर का। और अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर शुरुआत हुई है, यानी पंडाल अभी तैयार हो रहा है। पंडाल का थीम क्या है बहुत ही सीक्रेट रखा गया है, लेकिन इसके साथ ही साथ सबसे ज्यादा जो इंतजार रहता है वो रहता है मूर्तियों का। तो इस बार किस तरह की मूर्ति होगी, थीम क्या होगा, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर लोगों में एक्साइटमेंट होती है। क्योंकि भाई जो लोग बंगाल से बाहर रहते हैं, स्पेशली अगर हम दिल्ली की बात करें, तो उनके लिए सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट यही सीआर पार्क का एरिया होता है। तो आज मैं आपको सीधा वर्कशॉप लिए चलती हूँ, जहाँ पर मूर्तियों को बनाने का काम लगातार चल रहा है, और आपको मिलवाऊंगी उन कलाकारों से, उन कारीगरों से, जो हर साल इन मूर्तियों को आकार देते हैं। और फिर उसके बाद फाइनली, अगर आपको याद हो तो ये वो स्टेज होती है सामने, जहाँ पर पंडाल सजाया जाता है, माँ की मूर्ति को लाया जाता है। अभी भी अगर आप देखेंगे तो रफ यहाँ पर स्टेज तैयार की गई है, लेकिन चलिए मेरे साथ आपको मैं वर्कशॉप में लिए चलती हूँ और देखते हैं कि मूर्ति बनाने का काम कहाँ तक पहुँचा है। आइए।
0: हर साल दुर्गा पूजा से पहले दुर्गा प्रतिमा के निर्माण से जुड़ी कार्यशाला आयोजित की जाती है, जहाँ कुशल कारीगर बांस, पुआल और मिट्टी से देवी की भव्य मूर्तियाँ तैयार करते हैं। 1970 के दशक से कालीबाड़ी मंदिर के सहयोग से चली आ रही इस विशेष कार्यशाला में हर साल सैकड़ों प्रतिमाओं को आकार दिया जाता है, जो दिल्ली एनसीआर की 300 से अधिक पूजा समितियों को भेजी जाती है।
1: तो देखिए, मंदिर है और मंदिर के ठीक पीछे ये वो वर्कशॉप है, कार्यशाला है, जहाँ पर मूर्तियां बनाई जाती हैं, मूर्तियों को आकार दिया जाता है। वैसे तो यहाँ पर जो काम है वो पूरा साल चलता रहता है, लेकिन जो आखिरी का समय होता है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उनमें कलर भरना है, फाइनल टच देना है। और ये वो कार्यशाला है जहाँ से मूर्तियां दिल्ली एनसीआर और साथ ही साथ अगल बगल के जितने राज्य हैं वहां पर मूर्तियां यहाँ से भेजी जाती हैं, और यहीं पर आकार इनको दिया जाता है, और यहां से फिर ये मूर्तियां राजस्थान, पंजाब, दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, जहां जहां भी जरूरत होती है वहां इनको भेजा जाता है। सबसे बड़ी और खास बात यह है, अगर आपको ध्यान हो तो कोलकाता में स्पेशली और पूरे बंगाल में जहाँ जहाँ मूर्तियाँ बनाई जाती हैं वहाँ पर मिट्टी कुमारतुली से लाई जाती है, और यहाँ पर भी इन मूर्तियों को आकार देने से पहले उस पवित्र मिट्टी को इनमें शामिल किया जाता है।
0: मूर्तिकार गोविंद अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी है, जो पारंपरिक रूप से माँ दुर्गा की प्रतिमाएं बनाने के काम में खुद को समर्पित कर चुके हैं। दुर्गा माँ की प्रतिमा उनके हुनर और विरासत को भी दर्शाती है।
1: तो गोविंद जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और माँ की जो मूर्ति है उसके चेहरे को आकार दिया जा रहा है, और साथ ही साथ मैं इनका परिचय कराऊं, ये तीसरी पीढ़ी है जो लगातार माँ की मूर्तियों को और दुर्गा पूजा की तमाम मूर्तियों को बनाते आए हैं। गोविंद जी
2: नमस्कार जी।
1: नमस्ते। कहाँ तक पहुँचा है काम?
2: काम अभी बस पेंटिंग का इंतजार कर रहा है, कल से नहीं तो परसों से पेंटिंग चालू हो जाएगा हमारा, और कुछ एक दो मूर्ति में मिट्टी का काम बाकी है, वो भी अभी काम चल रहा है, तो उसी का भी तैयारी हो रहा है। इधर पेंटिंग का भी थोड़ा फिनिशिंग करके, मिट्टी का फिनिशिंग करके तो कल परसों से ही पेंटिंग चालू।
0: इस शारदीय नवरात्र की शुरुआत 11 अक्टूबर से हो रही है और इसका समापन 20 अक्टूबर को विजयदशमी यानी दशहरे के दिन होगा। कोलकाता का कुमारटोली पवित्र दुर्गा प्रतिमाएं बनाने के लिए मशहूर है। उनमें वहां बहने वाली गंगा नदी की मिट्टी को मूर्तियों के लिए सबसे अच्छा और शुभ माना जाता है। सियार पार्क के कालीबाड़ी मंदिर में मौजूद कार्यशाला में भी परंपरा और शुद्धता बनाए रखने के लिए मिट्टी वहीं से आती है।
1: अच्छा, मिट्टी आप वहां से लेकर आते हैं?
2: वहां से मिट्टी ले आते हैं, और कुछ मिट्टी यूपी का उस साइड से आता है, खेत का भी मिट्टी होता है, तो मिला के आता है। इतना सारा मिट्टी तो लाना पॉसिबल नहीं है, तो जो फेस वगैरह होता है, जो हमारा जो कलकत्ता मिट्टी स्पेशल
1: जो आप बना ही रहे हैं,
2: बिल्कुल बिल्कुल ये कलकत्ता का मिट्टी ले आते हैं, और बाकी यूपी का पंजाब का जो खेत होता है ना, खेत का मिट्टी भी आता है।
1: ठीक है, यानी कि ये पर्टिकुलर रहता है कि माँ का और जो तमाम मूर्तियों का जो फेस है वो जो बंगाल से मिट्टी आती है वो उसी से बना है।
2: फिनिशिंग अच्छा होता है, चिकनवर अच्छा आता है, उसमें कंकड़ कम होता है, फिनिशिंग अच्छा है, काम करने में अच्छा वो होता है। और दूसरी जगह मिट्टी थोड़ा कंकड़ होता है, रेत होता है, वो दूसरा काम पे आता है।
0: सनातन परंपरा में शारदीय नवरात्र का विशेष महत्व है। माना जाता है कि इस दौरान माता की पूजा अर्चना से देवी दुर्गा की खास कृपा प्राप्त होती है। माँ दुर्गा के 9 रूपों की विधिवत पूजा अर्चना भक्तों के लिए शुभ मानी जाती है। ऐसे में शारदीय नवरात्र की विशेष तैयारियां होती हैं। प्रतिमाओं के आकार लेने के दौरान हर तरफ माँ के जयकारे गूंजने लगते हैं। दिल्ली से नवजोत चंधावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: तो जैसा कि हम हर बार कहते हैं कि उत्सव यानी गुड न्यूज टुडे, तो तैयार हो जाइए, तमाम रंग आपको लगातार जीएनटी पर दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, अच्छी खबरें जारी हैं, देखते रहिए जीएनटी।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
6: देखिए, इन दिनों पितृपक्ष में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भू वैकुंठ नगरी श्री बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं, जहां वो भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के बाद ब्रह्म कपाल तीर्थ में अपने पितरों का तर्पण और पिंडदान कर रहे हैं। पितरों की मुक्ति के लिए श्री हरि के इस पावन धाम की दिव्यता ही ऐसी है कि ब्रह्म कपाल में पिंडदान और तर्पण की मान्यता और परंपरा को अब विदेशी भी आत्मसात करते नजर आ रहे हैं। रूसी तीर्थयात्रियों ने यहां विधि विधान के साथ अपने पितरों के निमित्त पिंडदान और तर्पण किए।
7: जहाँ बहती है अलकनंदा की पवित्र धारा, उसी बद्रीनाथ के आंगन में पितरों की आत्मिक शांति के लिए पिंडदान हो रहा है। देवभूमि उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में जहाँ चार धाम यात्रा दर्शन के रंग बिखरे हैं, हर तरफ श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है, तो वहीं इन दिनों पितृपक्ष के दौरान भगवान विष्णु का ये धाम सिर्फ चार धाम दर्शन का केंद्र ही नहीं, बल्कि पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता और स्मरण का भी पवित्र स्थल बना हुआ है। दरअसल यहाँ के ब्रह्म कपाल भी मोक्ष की कामना और पितरों के प्रति श्रद्धा जैसी भावनाओं को लेकर अच्छी खासी संख्या में श्रद्धालु तर्पण के लिए पहुँच रहे हैं, अपने पूर्वजों के निमित्त पिंडदान कर रही है। श्राद्ध परंपरा का भगवान बद्री विशाल के आंगन में होना ही इन तमाम श्रद्धालुओं को पुरखों के प्रति सम्मान और आध्यात्मिकता की अनुभूति दे रहा है।
8: कहा गया है इस स्थान पर पिंड देने से सात पीढ़ियों के पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ पर भगवान बद्री विशाल के बाल मोक्ष से मनुष्य अपने पितरों को पिंड और तर्पण देता है, सात पीढ़ियों के पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और आप देख रहे हैं आज के पितृपक्ष में काफी संख्या में लोग अपने पितरों को उद्धार के लिए ब्रह्म कपाल आए।
7: पितरों की मुक्ति के लिए श्री हरि के इस पावन धाम की दिव्यता ही ऐसी है कि यहाँ कराए जाने वाले पिंडदान और तर्पण को लेकर श्रद्धालुओं का विश्वास अटूट है। यही कारण है कि ब्रह्म कपाल में पिंडदान और तर्पण की मान्यता और परंपरा को अब विदेशी भी आत्मसात करते दिख रहे हैं। दरअसल भारत आए सात रूसी तीर्थयात्रियों ने भी यहाँ विधि विधान के साथ अपने पितरों के निमित्त पिंडदान और तर्पण किया। वैसे पहले भी सनातनी परंपरा उसके प्रति आस्था विदेशियों को काफी आकर्षित करती रही है, ऐसे में बद्रीनाथ धाम में विदेशी श्रद्धालुओं का अपने पुरखों का पिंडदान एक बार फिर दर्शा रहा है कि आस्था की कोई सीमा नहीं होती। ब्रह्म कपाल में पिंडदान का धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कर इन विदेशी श्रद्धालुओं का सनातनी परंपराओं और मान्यताओं के प्रति भाव जता रहा है कि संस्कृति अलग हो सकती है, लेकिन पूर्वजों के प्रति श्रद्धा का भाव कमोबेश सभी जगह पर एक ही जैसा है। चमोली से कमल नयन सिलोरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके